0: সার্চ কমিটি নে সঁপি রিপোর্ট। यूपी में अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुके हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक बेनामी पोस्टर लगाया गया है जिसके जरिए बीजेपी पर हमला किया गया है। पोस्टर लगा तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी के बयान पर भी बवाल बढ़ा हुआ है।
1: 27 के समर की शुरुआत इन पोस्टर्स के साथ शुरू हो गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये विशाल पोस्टर लगाया गया है। इसमें राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भगवान राम को श्राप देते हुए दिखाया गया है। पोस्टर में ऊपर लिखा है कि अयोध्या मंदिर को लूटने वाले नरक के भागी होंगे। दूसरी तरफ लिखा है कि महाश्राप से लुटेरों और उनके सहयोगियों की 7 पीढ़ियों का महाविनाश निश्चित है।
2: आप तस्वीर पहले देखें और देखें कि यहाँ पर श्री रामचंद्र को दिखाया गया है। उनके हाथ में धनुष है, बाण है और वो एक हाथ से एक तरीके से श्राप देते नजर आ रहे हैं। सामने जो है तमाम आप देखें तो पंडित बैठे हुए हैं, उनको और पीछे तमाम और लोग हैं और जो लोग कार्य में लगे हैं राम मंदिर के, वो सब इसमें दिखाए गए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि राम जी श्राप देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
1: अब यूपी की पूरी राजनीति धर्म पर आकर अटक गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का अपमान कर रही है।
3: कभी आप कह देंगे कि ब्राह्मण से भली वेश्या आज भी ब्राह्मणों के मन में और ब्राह्मणों के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह जा रहा। मुझे बहुत बेहद आपत्ति है, मैं अपनी आपत्ति जताता हूं और समाजवादी पार्टी से कहता हूं कि अगर ब्राह्मणों को इसी तरीके से अपमानित करती रहेगी तो ब्राह्मण समाज आने वाले दिनों में, पहले भी सबक सिखाया है, आने वाले दिनों में भी इनको सबक सिखाएगा।
1: हालांकि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लिखा है वो किसने लगाया है ये पता नहीं। अनाम AI वीडियो की तरह ही अनाम पोस्टरबाजी शुरू हुई है।
4: देखिए होर्डिंग किसने लगवाई, किस भावना से लगवाई, ये जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसकी जांच होनी चाहिए कि किस उद्देश्य से, किस भावना से उसने होर्डिंग लगवाई। लेकिन साथ ही साथ ये भी सही है, प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या में जिस तरीके से चंदे की डकैती हुई, आखिर आप होर्डिंग तो फाड़ दोगे, होर्डिंग का तो अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंची उसको कैसे मिटा पाओगे आप।
1: पोस्टर्स के साथ साथ अब बयानबाजी भी तेज हो रही है। इन्हें देखिए, ये समाजवादी पार्टी के MLC लाल बिहारी यादव है। कुत्ते के गले में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारी का पट्टा देखकर वोट देने की नसीहत दे रहे हैं।
5: लोगों से कोई मतलब नहीं है, अगर वो कुत्ते के गले में घंटी अगर बांध के भेज दे तब भी आपको वोट उसी को देना है क्योंकि उसी से आपकी समस्या का समाधान होना है।
1: अब जब SP के MLC का ऐसा बयान आया तो बीजेपी ने विरोध जताया।
6: मुझे लगता है शीघ्र ही समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर तमाम कुत्ते पट्टा बांध करके टिकट की लाइन में खड़े होंगे। इससे बड़ा अपमान लोकतंत्र का कुछ नहीं हो सकता है।
1: जब बवाल बढ़ा तो लाल बिहारी ने अपने बयान पर सफाई दी।
7: इसका आशय यही हमारा था कि हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के प्रति और इतना पूर्ण विश्वास है हम लोगों को कि वह जिसको भी प्रत्याशी बना करके भेजे उस पर कोई इफ बट नहीं है।
1: अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे तारीखें बीतेंगी यूपी में चुनावी जंग और तीखी होती जाएगी। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश में इस बार की चुनावी जंग की शुरुआत ही मुद्दों के आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए वीडियो और जुबानी हमलों के साथ हुई है। चुनावी मुद्दों का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर किस दिशा में बढ़ रहा है, इस सबके मन में सवाल है।

0: उत्तर प्रदेश की सियासी जंग अब आर्टिफिशियल अवतार में दिखने लगी है, क्योंकि इसे बाकायदा अब अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति के तहत वार पलटवार का हिस्सा बता दिया है।
1: सरकार के लोग मिलकर के उनको और बना रहे हैं, तो किसी ने हमें एक बहुत अच्छा वीडियो एआई का बना करके भेजा है। पहले हम अपना दिखाते हैं जो हमारे लिए बनाया उन्होंने, जिससे उनका जब वो देखें खुद का तो वो बुरा ना लगे उन्हें।

0: निर्देशन हुआ।
1: भगवाधारी गोरखनाथ पीठ के महंत और प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिलम पीते हुए दिखाया है, डांस करते हुए दिखाया है, यह घोर निंदनीय है।
2: श्री अखिलेश यादव जी जो इंडिया गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है, उनके खिलाफ भद्दा अभद्र नीच निर्लज्ज वीडियो डालते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी को उसका करारा जवाब समाजवादी पार्टी के आईटी सेल से चिल्लाता मिलता है तो फिर वो कांव कांव करके चिल्लाने लगते हैं।
3: अखिलेश यादव ने रिपीट कर करके ये वीडियो अपने दफ्तर में 3 बार चलाया और बीजेपी को चेतावनी भी दी।
4: हद तो तब हो गई कि जब डिंपल के लिए भी बना रहे हैं और नाम उनका भी ले जा रहे हैं।
5: घोटाला जमकर था तुमने करा।
3: अखिलेश ने बीजेपी के समर्थकों की ओर से बनाए जा रहे एआई वीडियो की सीरीज का जिक्र किया जो लगातार उन पर चुनावी हमले कर रहे हैं।
6: जिस तरीके से एआई का प्रयोग समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के लिए कर रही है 2027 के चुनाव में, जरूर ये बताना चाहती है जनता को या फिर वोट वो किसे दें। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव आज तक।
7: सुप्रीम कोर्ट से सीजेपी के लिए राहत भरी खबर आई है। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर हुई एफआईआर रद्द करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद सीजेपी ने 5 सितंबर को होने वाले दिल्ली मार्च को रद्द करने का ऐलान किया है।
8: सितंबर 5 को जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च था इंडिया गेट से न्यू पुलिस हेडक्वार्टर्स तक, वो हम लोग कॉल ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे डिमांड्स सरकार ने मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ब्लेस किया। तो इसलिए सारे देश के युवाओं को बहुत बहुत बहुत बड़ी मुबारक और शुभकामनाएं।
3: कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 5 सितंबर को होने वाले मार्च को रद्द करने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उन्हें इस राहत का फायदा नहीं मिलेगा। यह आदेश देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज मामलों पर लागू होगा।
9: तो अब मुझे लगता है ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे हर स्टेट में जो एफआईआर अभी लोगों के अगेंस्ट है फॉर द प्रोटेस्ट, उनको हटाया जाएगा, उनको क्वॉश करा जाएगा, उनको ही बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है अगर एफआईआर ऑनगोइंग होती है, उनके फ्यूचर के अगेंस्ट होता है वो।
3: दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से अपने यहाँ दर्ज एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से अपील की कि बाकी राज्यों के लिए भी ऐसा ही आदेश पारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत हासिल विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन एफआईआर को निरस्त कर दिया है।
10: डेलीगेशन आया था और हमारी कई 7-8 मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग्स में हमारा बस यही था कि कैसे एब्सोल्यूट जस्टिस मिल सके।
11: सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
3: जंतर मंतर में प्रोटेस्ट खत्म करने की एक शर्त छात्रों पर हुए केस वापस लेने की थी, लेकिन केस वापस ना लिए जाने पर कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले 5 सितंबर को मार्च निकालने का ऐलान किया था। आज तक ब्यूरो।
7: जीडीपी के ताजा आंकड़ों पर सरकार खुद ही पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष महंगाई, रोजगार और गिरते रुपए को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है।
12: दुनिया भर में अस्थिर माहौल के बीच 2026-27 की पहली तिमाही के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की तरक्की रुकी नहीं। वास्तविक जीडीपी दर 7.8% दर्ज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देशवासियों के संकल्प का नतीजा कहा, तो वहीं विपक्ष पर तंज भी किया।
13: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया।
12: प्रधानमंत्री की ये बधाई विपक्ष को हजम नहीं हो रही, जिनके सरकार से अपने सवाल हैं। कांग्रेस महंगाई का हवाला देकर मजबूत अर्थव्यवस्था के दावों पर सवाल उठा रही है।
14: जीडीपी कैसा बढ़ेगा मोदी को दिखता है, मोदी का चश्मा क्या है वो देखना पड़ेगा। मोदी कौन से चश्मे से देखते हैं? मोदी का अर्थशास्त्री है, मोदी का मनमोहन सिंह है, मोदी का पंडित नरसिंह राव है। आप मुझे बताइए, अगर जीडीपी बढ़ गया है तो महंगाई कैसी बढ़ रही है? रुपया कैसा नीचे गिर रहा है 89 रुपीज तक।
12: मुंबई में आज से तबेले के दूध के दाम 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। पशु आहार की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी की वजह से मुंबई में दूध महंगा हुआ है। उधर महानगर गैस लिमिटेड ने भी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी की कीमत 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 88 रुपए प्रति किलो कर दी, जबकि पीएनजी यानी पाइप से पहुंचने वाली घरेलू गैस में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
0: मैं तो तब स्ट्रेंथ मानू एक्सपोर्ट्स की, हमारी कंपेटिटिवनेस की, व्हेन वी एक्सपोर्ट और हमारा रुपी स्टेबल हो और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है?
15: तो बेरोजगार भाइयों, बेरोजगारी के लिए बधाई दीजिए मोदी जी को। 70 रुपए चीनी 70 रुपए किलो खरीदने वाले लोगों चीनी की महंगाई के लिए बधाई दीजिए। हाईवेज के गड्ढे के लिए बधाई दीजिए।
12: इस बीच जीडीपी के शानदार आंकड़ों के बीच राहुल गांधी का वो बयान भी दोबारा वायरल है जिसमें उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहने का समर्थन किया था।
16: डिस्पाइट द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग वी आर एबल टू क्लॉक दिस काइंड ऑफ अ नंबर एंड दिस इज ओनली गोइंग टू फर्दर स्ट्रेंथन दिस ईयर्स ग्रोथ एंड आई थिंक इफ द फर्स्ट क्वार्टर स्टार्टेड ऑफ लाइक दिस वी विल बी एबल टू सस्टेन सिमिलर नंबर्स।
12: अर्थव्यवस्था और जीडीपी के इन आंकड़ों को हर कोई अपने अपने सियासी चश्मे से देख रहा है। आज तक ब्यूरो।
7: क्या जीडीपी ग्रोथ में उछाल का फायदा आम आदमी को उसकी ईएमआई कम होने के रूप में मिलेगा? लेकिन महंगाई नाम की बाधा भारत की विकास यात्रा को धीमा कर सकती है, क्योंकि चीनी के बाद आम आदमी के लिए रोजमर्रा की कई चीजें हैं जो महंगी हो गई हैं। अब सवाल यह है कि जिस आम आदमी ने खपत को बढ़ाकर देश की इकोनॉमी को ताकत दी, उसकी पीठ पर महंगाई का बोझ क्या कम होगा?

0: मुंबई में महंगाई की मार, दूध 100 रुपए के पार। महंगाई का ट्रिपल अटैक, दूध CNG PNG में आग। मुंबईकर के लिए सितंबर महंगाई का सितम लेकर आया। आज से मुंबई में दूध की कीमत 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है, जिसके बाद अब दूध के दाम 93 रुपए से बढ़कर 102 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। इसके साथ ही मुंबई में आज से CNG की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। वहीं घरेलू PNG के दाम भी आज से 1 रुपए बढ़े हैं। जाहिर है कि नई दरें लागू होने के बाद मुंबई में सफर करना, खाना पकाना दोनों महंगे हो गए हैं, जिससे मुंबई के लोगों को महंगाई की नई मार का सामना करना पड़ेगा।
1: CNG का जो रेट है 4 महीने में 2 बार बढ़ा है। पहले 80 रुपए था, फिर 84 रुपए कर दिए, अभी फिर 88 कर दिए हैं। और ओला उबर में धंधा डाउन होते जा रहा है, रेट कम करते जा रही है कंपनियां, लेकिन इसका रेट जो है बढ़ते जा रहा है। CNG बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, प्रेशर नहीं आ रहा है। गाड़ी जहाँ 200 चलती थी वहाँ पे 120-130 का माइलेज दे रही है बस।
2: CNG दाम हर 2 महीने पे बढ़ रहा है, 3 महीने बढ़ रहा है, 2 रुपये 1 रुपये 3 रुपये बढ़ते जा रहा है। इतना महंगाई हो रहा है तो कहाँ से क्या चलेगा?
3: सरकार से क्या मांगे?
2: कम करो रेट CNG का।
0: मुंबई वालों को सबसे बड़ा झटका दूध की बड़ी कीमतों ने दिया, यानी पशुपालकों से दूध खरीदना 9 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने बताया कि मुंबई और आसपास के महानगरीय सप्लाई नेटवर्क में दूध की थोक कीमत में 9 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।
4: मुंबई में आज से तबेले के दूध के दाम 9 रुपए बढ़ गए हैं। पहले जो तबेले का दूध 93 रुपए प्रति लीटर आता था, अब उसकी कीमत 102 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जिसकी वजह से त्योहारों के समय में जो मुंबईकर हैं उनके जेब पर इसका असर साफ देखने को मिलेगा। हम इस वक्त मुंबई के एक दुकान में हैं जहां पर तवेले के दूध भी सप्लाई होते हैं, और हम उन्हीं से जानेंगे। सर, आज से तवेले के दूध के दाम 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे?
5: हाँ, 9 रुपए बढ़ गए हैं। अभी सब चीज का पैसा बढ़ रहा है, दूध का भी पैसा बढ़ रहा है, तो 9 रुपए अभी उन्होंने बढ़ाया। पिछली बार भी बढ़ाया था, कोई कुछ 6 महीने के हो गए उस टाइम पे बढ़ाया था, और अभी 9 रुपया बढ़ाया।
4: इससे कितना असर पड़ रहा है आपके कारोबार पे, कितना असर पड़ेगा?
5: नहीं, हमारे इस कारोबार पे नहीं असर पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा दूध मिलता है, अच्छा पनीर मिलता है, तो कुछ असर नहीं पड़ता है। जहाँ भी अगर कुछ होता है ना तो हमारी बढ़ोतरी होती है।
4: अच्छा, नहीं लेकिन दाम बढ़ने से लोगों का क्या कहना है?
5: कुछ नहीं कहना है, बोलते माल अच्छा दो। अच्छा। कभी नहीं बोलते हमको कि तुमने क्यों बढ़ाया। क्या होता है, ऊपर से बढ़ के आता है उतना हमको बढ़ाना पड़ता है, तो सबको मालूम है, पेपर में निकला है, टीवी में आया है, तो सबको मालूम है कि रेट बढ़ गया है, तो हमको कोई कुछ नहीं बोलता।
4: बिल्कुल, तो 9 रुपए जो दाम है दूध के वो तो आज से बढ़े हैं, लेकिन अब देखना होगा कि मुंबई करों का इस पर क्या कहना है। हालांकि मुंबई में एक बड़ा तबका है जो तवेले का दूध लेता है, जो खुला हुआ दूध लेता है, और इसीलिए अब उनको हर लीटर के पीछे 9 रुपए ज्यादा जो है वो देने पड़ेंगे।
0: पहले से महंगाई की मार सह रहे लोगों के लिए सफर करना भी महंगा हो गया है, क्योंकि CNG के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए। लेकिन ऑटो और टैक्सी वाले कह रहे हैं कि उनका किराया नहीं बढ़ रहा, इसलिए उनके लिए काफी मुश्किल बढ़ गई है।
4: महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों के लिए जो CNG के दाम थे उसमें 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है, जिसकी वजह से अब इसकी कीमत 88 रुपए हो गई है। हम इस वक्त मुंबई के एक CNG पंप पर हैं, जहां पर हम जानेंगे सर कितने दाम बढ़े हैं CNG के और अब क्या दाम है।
6: पहला 86 था, अभी 88 हो गया, 2 रुपया बढ़ गया।
4: कितना असर पड़ेगा कारोबार?
6: बहुत असर पड़ेगा। अभी बोला तो पैसा बढ़ता है, शेयरिंग का पैसा नहीं बढ़ता है ना, खाली भाव बढ़ते रहता है, मीटर नहीं बढ़ता है।
4: बिल्कुल, तो जैसे आप देख सकते हैं जो टैक्सी चालक हैं, जो वाहन चालक हैं, उनकी है अपनी अपनी समस्या। सर क्या कहेंगे, कितनी समस्या होंगी इससे?
7: अभी बहुत समस्या होगी, अपने गैस बढ़ गए, क्या कर सकते आप
4: इसके? आप किराया बढ़ाएंगे?
8: नहीं बढ़ाते किराया, तो कुछ नहीं बढ़ाते। 127 रुपया देते वीटी जाने का, मेरे को एक घंटा लग गया कल जाने, और वहाँ पे जाके 127 रुपए दिया, मेरा 4 बत्ती उड़ गया, 4 बत्ती गैस का उड़ गया, और दिया 127 रुपए।
4: और वैसे कितने में पड़ा, खर्च कितना आता है उतना 4 बत्ती ये कर रहे हैं?
8: मेरा 4 बत्ती 200 रुपए का आया रहेगा गैस में, और वहाँ पे जाके मुझे 127 रुपए मिला, तो कुछ मतलब नहीं। गैस का तो भाव बढ़ रहा है, लेकिन हमको तो भाव मिल रहा ही नहीं है, हमारा तो नुकसान ही हो रहा है, पर अभी क्या करेंगे, करना पड़ता है।
4: बिल्कुल, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो वाहन चालक हैं उनका कहना है कि उनको तो नुकसान ही हो रहा है, उनको इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो उनकी लागत है वो भी निकाल पाने के लिए उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
0: अब मुंबई में सीएनजी की कीमत 88 रुपए प्रति किलो हो गई है। बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर कंपनियों की लागत पर पड़ा है। वहीं दूध की कीमत बढ़ने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से पशुओं को खिलाने वाले चारे की कीमत भी बढ़ चुकी है। चारे के साथ अनाज, चूनी, खली जैसे पशु आहार की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से दूध की कीमतें आसमान छू रही हैं। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
3: और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के ठाणे से आई चौंकाने वाली खबर की, जहां 22 स्कूल आदिवासी छात्राओं ने एक कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।
9: महाराष्ट्र के ठाणे के इस आदिवासी स्कूल में एक दो नहीं बल्कि 22 छात्राओं ने एक स्कूल के कर्मचारी पर छेड़छाड़ और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है।
10: बोली कि मामा हाथ नको लाओ, मैं पुलिस केस करेन। तो बोलला हाँ का तो वरती निघून गेला डस्टबिन ठेवायला आणि मुलींच्या कमरेला पण धरलं होतं।
9: छठी से दसवीं कक्षा तक की लगभग 22 छात्राओं ने गणपत गवली पर आरोप लगाया है कि जब वे दोपहर या रात का खाना खाने के बाद अपने बर्तन रसोई में रखने जाती थीं, तो वो नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था।
10: मैडम ने सांगितलं पण अधीक्षिका मैडम ने आमचं दुर्लक्ष केलं, सर त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे।
9: 35 साल का गणपत गवली स्कूल के किचन में काम करता था। चौंकाने वाली बात यह है कि ये घिनौना खेल काफी वक्त से चल रहा था, जिसकी शिकायत करने पर स्कूल प्रशासन छात्राओं को ही धमका डरा कर चुप करा देता था। फिर एक छात्रा ने आगे बढ़कर शिकायत की तो फिर धीरे धीरे गणपत गवली के खिलाफ 21 छात्राएं और आ गईं, जिन्होंने लिखित में शिकायत दर्ज करवाई।
11: शिकायत करता है लेडीज है जो 18 साल से कम उम्र की है, उन्होंने भी बताया कि उनके साथ भी विनय भंग का प्रकार हुआ है, जैसे हाथ फहराना या उनके मन में लज्जा उत्पन्न होने जैसी कृति हुई है।
9: चौंकाने वाली बात यह है कि गणपत गवली पर 2024 में एक दूसरे आदिवासी बोर्डिंग स्कूल में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था और तब पुलिस ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इसके बावजूद उसे बहाल कर दिया गया और महाराष्ट्र के एक दूसरे आदिवासी बोर्डिंग स्कूल में फिर से नौकरी पर रख लिया गया।
11: उसी आरोपी के ऊपर एक शाहपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 99/2024 सेम विनय भंग का ही प्रकार हुआ था, उसमें भी गुना दाखिल था, उसमें भी आरोपी को अरेस्ट किया गया था।
9: अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जब गणपत पहले से ही इस तरह के मामले में दोषी था तो उसकी बच्चियों के स्कूल में नियुक्ति क्यों की गई? क्या उसका पुराना रिकॉर्ड नहीं देखा गया? प्रशासन के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है।
12: कार्रवाई करके उसको अगले बहुत कड़क मतलब शिक्षा देने वाले हैं डिपार्टमेंट की तरफ से।
9: गवली के खिलाफ FIR दर्ज की गई और पुलिस ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा जिन्होंने गवली का बिना रिकॉर्ड देखे उसकी दोबारा स्कूल में नियुक्ति की थी। दिव्येश सिंह, ठाणे आज तक।
3: महाराष्ट्र के बीड में एक मां ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा पूरे देश में है। बीड़ के अंबाजी गोई इलाके में एक मां ने सड़क पर नंगे पैर, जी हां नंगे पैर मैराथन दौड़ी है, इसलिए कि उसकी बेटी की पढ़ाई में गरीबी बाधा ना बन जाए, बेटी की पढ़ाई में रत्ती भर कमी ना रहे, इसीलिए मैराथन के महज 3,000 रुपए का पुरस्कार जीतने के लिए एक मां की दौड़ती हुई तस्वीरें सामने आई और सिस्टम पर सबसे बड़े कई सवाल खड़े कर गई।
13: पेट काट कर बच्चों को पढ़ाया वाला मुहावरा पुराने जमाने का, नए जमाने में साड़ी का पल्लू कमर में घोस कर मैराथन में भागती माँ, जिनकी रेस उस गरीबी की बाधा के खिलाफ है जो बेटी को पढ़ाने और बढ़ाने में कमजोर ना करे, इसीलिए माँ दौड़ रही हैं। खून पसीना एक एक करके बच्चों को पढ़ाया, ये तो बहुत सुना और पढ़ा होगा। आज देखिए आप 47 साल की एक माँ जो पहले चप्पल पहनकर मैराथन में दौड़ पड़ती, फिर हाथ में चप्पल लेकर दौड़ती रही ताकि बेटी की पढ़ाई में कोई कसर न रह जाए। महाराष्ट्र में बीड के अंबाजी गोई इलाके की सड़क पर दौड़ती रमाबाई रणवीर के ये कदम इस बात की गवाही देते हैं कि बेटी की पढ़ाई में रत्ती भर कमी न रहे, इसलिए मैराथन के महज 3,000 रुपए का पुरस्कार जीतने के लिए दौड़ती माँ के कदमों के साथ अभी सरकार और उन सरकारी व्यवस्था को लंबा कदम ताल करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी जहां सरकारें बेटी पढ़ाओ की बातें करती। रमाबाई इस देश की उन लाखों करोड़ों मां में से एक है जो चाहती हैं कि बेटियां कहीं पीछे ना रहें। इसीलिए बीड जिले के अंबाजुगोई इलाके में रमाबाई दो बेटियों को पढ़ाने के लिए एक जगह खाना बनाने के काम करती है। एक बेटी बीएससी पढ़ रही है, दूसरी बेटी पुलिस भर्ती की तैयारी वाली ट्रेनिंग कोचिंग में ले रही है। बेटी के सपने कभी गरीबी की आग में झुलसे नहीं, इसीलिए जब एक स्थानीय संस्था ने अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत दौड़ मैराथन का आयोजन किया, रमाबाई भी उस दौड़ का हिस्सा बन गई। जहां बाकी लोग ट्रैक सूट रनिंग शूज पहनकर दौड़े, रमाबाई दौड़ी नंगे पैर दौड़े। सिर्फ 3,000 रुपए वाले पहले पुरस्कार की चाहत में दौड़े और फिर डायलॉग तो शाहरुख खान का है, फिट रमाबाई पर अब बैठता है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। मैराथन की विजेता रमाबाई बनी।
14: माझी अशी जिद्द होती कि मला ते बक्षीस जिंकायचं होतं। पळताना खूप पायाला खडे बुडले आणि चप्पल पण हातात घेतली होती, कारण मला ते बक्षीस जिंकायचंच होतं। मी ज्यावेळेस धावत होते त्यावेळेस माझ्या मुलींचं भविष्य माझ्या डोळ्यासमोर दिसत होतं। माझी जिद्द होती मनापासून, मला ते बक्षीस घ्यायचंच होतं। मी ते बक्षीस घेतलं, त्या बक्षिसातून माझ्या मुलीला पुस्तकं आणि वह्यापेनी हेच घेऊन देणार, याच्यासाठीच मी ते बक्षीस घेतलं आहे।
13: 3,000 रुपये देश की एक बड़ी आबादी के महीने के मोबाइल फोन के बिल की कीमत। 3,000 रुपये देश में करोड़ों लोगों के लिए एक वक्त की पिज्जा पार्टी में खर्च कर दिया जाता है। दो लोग एक मूवी देख लें और मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक खरीद लें तो एक झटके में 3,000 रुपये खर्च हो जाता है। लेकिन यही 3,000 रुपये रमाबाई के लिए बेटी की फीस भरने, किताब लेने का सपना पूरा करता है। इसीलिए एक माँ की रेस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है।
15: मला वाटलं नव्हतं आई पहिला काढील म्हणून, मात्र मी आईला म्हणली होती चल म्हणून रनिंगला तू पळती सहभाग हो, आणि आई म्हणे मी पहिला काढू शकतो। आई आत्मविश्वासानं म्हणू लागली, मी आईला म्हणलं तू पहिला काढू नको, दुसरा तिसरा तरी आला तरी चालते, तेवढी रनिंग करू नको थकवा येईल, तरी आईनं हिम्मत करून पहिला काढला।
13: रमाबाई की दौड़ और रमाबाई की जीत के बाद भारतीय सरकारी व्यवस्था जागी, जहां बेटियों की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जिम्मेदारी ली। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने दावा किया कि राज्य सरकार उनके परिवार और बच्चे की पढ़ाई में मदद के लिए आर्थिक सहायता देगी।
16: त्यांना दोन मुली आहेत, एक मुलगी बँकिंगची तयारी करते आणि एक मुलगी जी आहे ते आपल्या रणदीप अकॅडमीमध्ये शिकत आहे। तर त्यांच्या आईनं काल मॅरेथॉन स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला, तिथं असंख्य अशा महिला आलेल्या होत्या, परंतु त्या महिलांना पाहून ही महिला घाबरली नाही किंवा तिच्यावर दडपण आलं नाही, का त्यांच्याकडे एकच होतं की आत्मविश्वास, मला माझ्या मुलींसाठी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे बक्षीस मिळवायचे आणि त्या मिळालेल्या बक्षिसातून कुठंतरी लेकरांना शैक्षणिक साहित्य घ्यायला किंवा आपल्या ह्याला उपजीविकेला हा आधार बनल।
14: ही आमची अपेक्षा आहे की ज्ञानदीपमध्ये शिक्षण घ्यावं म्हणून, मग ज्ञानदीपमध्ये दराडे सरकारनं आमची मुलगी टाकली, मग दराडे सरनं आमची आर्थिक माफ केली, शिक्षणाची आमची परिस्थिती नाजूक आहे।
13: रोज कितने स्टेप्स चले का स्टेटस लगाने वालों के दौर में एक माँ की ये दौड़ हमेशा याद रखी जाए, इस बात के लिए कि अभी गरीब आम आदमी के बच्चों को उनके सपनों की शिक्षा दिलाने में सरकारों को बहुत स्टेप चलने हैं, बहुत मैराथन सरकारों को दौड़नी है।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
18: कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
19: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
18: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
19: जो निचले इलाके हैं उन सब से ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
20: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
18: मैं आशुतोष मिश्रा,
20: रोहित सिंह,
19: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।
21: क्या आपका घाव नहीं भर पा रहा?
1: क्या बार बार चोट चपेट की शिकायत हो जाती है? क्या आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं? मंगल ये समस्याएं आपको दे रहा है। कौन सी है मंगल की स्वास्थ्य की समस्याएं और क्या है समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

जांच कमेटी ने न्यायिक सौंपी रिपोर्ट। आतंकवाद के खिलाफ एससीओ में पीएम मोदी का कड़ा रुख, कहा पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना जरूरी, सीमा पार पनाहगारों को कड़ा संदेश।

गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, कहा महाराष्ट्र से बंगाल तक हुई वोट चोरी, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश। दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन पर जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, राज्यों में दर्ज सभी एफआईआर होंगी वापस, सीजेआई के मार्च वापस लेने के फैसले का किया स्वागत।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पोस्टर वॉर के साथ। दरअसल यूपी में अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक बेनामी पोस्टर लगाया गया, जिसके जरिए बीजेपी पर हमला किया गया है। पोस्टर लगा तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी के बयान पर भी बवाल बढ़ा हुआ है।
1: 27 के समर की शुरुआत इन पोस्टर्स के साथ शुरू हो गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये विशाल पोस्टर लगाया गया है। इसमें राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भगवान राम को श्राप देते हुए दिखाया गया है। पोस्टर में ऊपर लिखा है कि अयोध्या मंदिर को लूटने वाले नर्क के भागी होंगे। दूसरी तरफ लिखा है कि महाश्राप से लुटेरों और उनके सहयोगियों की 7 पीढ़ियों का महाविनाश निश्चित है।
2: आप तस्वीर पहले देखें और देखें कि यहां पर श्री रामचंद्र को दिखाया गया है। उनके हाथ में धनुष है, बाण है और वो एक हाथ से एक तरीके से श्राप देते नजर आ रहे हैं। सामने जो है तमाम, आप देखें तो पंडित बैठे हुए हैं उनको, और पीछे तमाम और लोग हैं और जो लोग कार्य में लगे हैं राम मंदिर के, वो सब इसमें दिखाए गए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि राम जी श्राप देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
1: अब यूपी की पूरी राजनीति धर्म पर आकर अटक गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का अपमान कर रही है।
3: कभी आप कह देंगे कि ब्राह्मण से भली वेश्या आज भी ब्राह्मणों के मन में और ब्राह्मणों के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह जा रहा। मुझे बहुत बेहद आपत्ति है। मैं अपनी आपत्ति जताता हूं और समाजवादी पार्टी से कहता हूं कि अगर ब्राह्मणों को इसी तरीके से अपमानित करती रहेगी तो ब्राह्मण समाज आने वाले दिनों में, पहले भी सबक सिखाया, आने वाले दिनों में भी इनको सबक सिखाएगा।
1: हालांकि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लिखा है वो किसने लगाया है ये पता नहीं। अनाम एआई वीडियो की तरह ही अनाम पोस्टरबाजी शुरू हुई है।
4: देखिए, होर्डिंग किसने लगवाई, किस भावना से लगवाई, ये जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसकी जांच होनी चाहिए कि किस उद्देश्य से, किस भावना से उसने होर्डिंग लगवाई। लेकिन साथ ही साथ ये भी सही है, प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या में जिस तरीके से चंदे की डकैती हुई, आखिर आप होर्डिंग तो फाड़ दोगे, होर्डिंग का तो अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंची उसको कैसे मिटा पाओगे आप।
1: पोस्टर्स के साथ साथ अब बयानबाजी भी तेज हो रही है। इन्हें देखिए, ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव हैं। कुत्ते के गले में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारी का पट्टा देखकर वोट देने की नसीहत दे रहे हैं।
5: लोगों से कोई मतलब नहीं है, अगर वो कुत्ते के गले में घंटी अगर बांध के भेज दे तब भी आपको वोट उसी को देना है, क्योंकि उसी से आपकी समस्या का समाधान होना है।
1: अब जब एसपी के एमएलसी का ऐसा बयान आया तो बीजेपी ने विरोध जताया।
6: मुझे लगता है शीघ्र ही समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर तमाम कुत्ते पट्टा बांध करके टिकट की लाइन में खड़े होंगे। इससे बड़ा अपमान लोकतंत्र का कुछ नहीं हो सकता है।
1: जब बवाल बढ़ा तो लाल बिहारी ने अपने बयान पर सफाई दी।
7: इसका आशय यही हमारा था कि हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के प्रति, और इतना पूर्ण विश्वास है हम लोगों को कि वह जिसको भी प्रत्याशी बना करके भेजे उस पर कोई इफ बट नहीं है।
1: अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे तारीखें बीतेंगी यूपी में चुनावी जंग और तीखी होती जाएगी। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: वहीं उत्तर प्रदेश में इस बार की चुनावी जंग की शुरुआत ही मुद्दों से आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए वीडियो और जुबानी हमलों के साथ हुई है। दरअसल चुनावी मुद्दों का यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर किस दिशा में बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।

0: उत्तर प्रदेश की सियासी जंग अब आर्टिफिशियल अवतार में दिखने लगी है, क्योंकि इसे बाकायदा अब अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति के तहत वार पलटवार का हिस्सा बता दिया है।
1: सरकार के लोग मिलकर के उनको और बना रहे हैं। तो किसी ने हमें एक बहुत अच्छा वीडियो एआई का बना करके भेजा है। पहले हम अपना दिखाते हैं जो हमारे लिए बनाया उन्होंने, जिससे उनका जब वो देखें खुद का तो वो बुरा ना लगे उन्हें।

0: प्रसन्न हुआ।
1: भगवान धारी गोरखनाथ पीठ के महंत और प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिलम पीते हुए दिखाया है, डांस करते हुए दिखाया है, यह घोर निंदनीय है।
2: श्री अखिलेश यादव जी जो इंडिया गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है, उनके खिलाफ भद्दा अभद्र नीच निर्लज्ज वीडियो डालते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी को उसका करारा जवाब समाजवादी पार्टी के आईटी सेल से चिल्लाता मिलता है तो फिर वो कांव कांव करके चिल्लाने लगते
3: हैं। अखिलेश यादव ने रिपीट कर करके ये वीडियो अपने दफ्तर में 3 बार चलाया और बीजेपी को चेतावनी भी दी।
4: अब तो तब हो गई कि जब डिंपल के लिए भी बना रहे हैं और नाम उनका भी ले जा रहे हैं।
3: अखिलेश ने बीजेपी के समर्थकों की ओर से बनाए जा रहे एआई वीडियो की सीरीज का जिक्र किया जो लगातार उन पर चुनावी हमले कर रहे हैं।
5: जिस तरीके से एआई का प्रयोग समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के लिए कर रही है 2027 के चुनाव में, जरूर ये बताना चाहती है जनता को या आखिर वोट वो किसे दें। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव आज तक।
6: वहीं सुप्रीम कोर्ट से सीजेपी के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर हुई एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया, जिसके बाद सीजेपी ने 5 सितंबर को होने वाले दिल्ली मार्च को रद्द करने का ऐलान कर दिया है।
7: सितंबर 5 को जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च था इंडिया गेट से न्यू पुलिस हेडक्वार्टर्स तक, वो हम लोग कॉल ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे डिमांड्स सरकार ने मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ब्लेस किया। तो इसलिए सारे देश के युवाओं को बहुत बहुत बहुत बड़ी मुबारक और शुभकामनाएं।
3: कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 5 सितंबर को होने वाले मार्च को रद्द करने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उन्हें इस राहत का फायदा नहीं मिलेगा। ये आदेश देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज मामलों पर लागू होगा।
8: तो अब मुझे लगता है ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे हर स्टेट में जो एफआईआर अभी लोगों के अगेंस्ट है फॉर द प्रोटेस्ट, उनको हटाया जाएगा, उनको क्वॉश करा जाएगा, उनको ये बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है अगर एफआईआर ऑनगोइंग होती है, उनके फ्यूचर के अगेंस्ट होता है वो।
3: दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से अपने यहाँ दर्ज एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से अपील की कि बाकी राज्यों के लिए भी ऐसा ही आदेश पारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत हासिल विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन एफआईआर को निरस्त कर दिया है।
9: डेलीगेशन आया था और हमारी कई 7-8 मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग्स में हमारा बस यही था कि कैसे एब्सोल्यूट जस्टिस मिल सके।
10: सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
3: जंतर मंतर में प्रोटेस्ट खत्म करने की एक शर्त छात्रों पर हुए केस वापस लेने की थी, लेकिन केस वापस ना लिए जाने पर कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले 5 सितंबर को मार्च निकालने का ऐलान किया था। आज तक ब्यूरो।
6: तो वहीं जीडीपी के ताजा आंकड़ों पर सरकार खुद की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष महंगाई, रोजगार और गिरते रुपये को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है।
11: दुनिया भर में अस्थिर माहौल के बीच 2026-27 की पहली तिमाही के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की तरक्की रुकी नहीं। वास्तविक जीडीपी दर 7.8% दर्ज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देशवासियों के संकल्प का नतीजा कहा, तो वहीं विपक्ष पर तंज भी किया।
12: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया।
11: प्रधानमंत्री की ये बधाई विपक्ष को हजम नहीं हो रही, जिनके सरकार से अपने सवाल हैं। कांग्रेस महंगाई का हवाला देकर मजबूत अर्थव्यवस्था के दावों पर सवाल उठा रही है।
13: जीडीपी कैसा बढ़ेगा मोदी को दिखता है, मोदी का चश्मा क्या है वो देखना पड़ेगा। मोदी कौन से चश्मे से देखते हैं? मोदी का अर्थशास्त्री है? मोदी का मनमोहन सिंह है? मोदी का पंडित नरसिंह राव है? अब मुझे बताइए, अगर जीडीपी बढ़ गया है तो महंगाई कैसे बढ़ रही है, रुपया कैसा नीचे गिर रहा है 89 रुपए तक।
11: मुंबई में आज से तबेले के दूध के दाम 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। पशु आहार की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी की वजह से मुंबई में दूध महंगा हुआ है। उधर महानगर गैस लिमिटेड ने भी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी की कीमत 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 88 रुपए प्रति किलो कर दी, जबकि पीएनजी यानी पाइप से पहुंचने वाली घरेलू गैस में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
0: मैं तो तब स्ट्रेंथ मानूं एक्सपोर्ट्स की, हमारी कंपेटिटिवनेस की, व्हेन वी एक्सपोर्ट और हमारा रुपी स्टेबल हो और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है?
14: तो बेरोजगार भाइयों, बेरोजगारी के लिए बधाई दीजिए मोदी जी को। 70 रुपए किलो खरीदने वाले लोगों चीनी की महंगाई के लिए बधाई दीजिए, हाईवेज के गड्ढे के लिए बधाई दीजिए।
11: इस बीच जीडीपी के शानदार आंकड़ों के बीच राहुल गांधी का वो बयान भी दोबारा वायरल है जिसमें उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहने का समर्थन किया था।
15: डिस्पाइट द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग, वी आर एबल टू क्लॉक दिस काइंड ऑफ अ नंबर एंड दिस इज ओनली गोइंग टू फर्दर स्ट्रेंथन दिस ईयर्स ग्रोथ एंड आई थिंक इफ द फर्स्ट क्वार्टर स्टार्टेड ऑफ लाइक दिस वी विल बी एबल टू सस्टेन सिमिलर नंबर्स।
11: अर्थव्यवस्था और जीडीपी के इन आंकड़ों को हर कोई अपने अपने सियासी चश्मे से देख रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के ठाणे से आई चौंकाने वाली खबर की, जहां पर 22 स्कूली आदिवासी छात्राओं ने एक कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।
3: महाराष्ट्र के ठाणे के इस आदिवासी स्कूल में एक दो नहीं बल्कि 22 छात्राओं ने एक स्कूल के कर्मचारी पर छेड़छाड़ और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है।
16: मैं बोली कि मामा हाथ नको लाव, मैं पुलिस केस करें, तो बोला हाँ का तो वरती निकून गेला डस्टबिन ठेवायला आणि मुलींच्या कमरेला पण धरलं होतं।
3: छठी से दसवीं कक्षा तक की लगभग 22 छात्राओं ने गणपत गबली पर आरोप लगाया है कि जब वे दोपहर या रात का खाना खाने के बाद अपने बर्तन रसोई में रखने जाती थीं, तो वो नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था।
16: मैडम ने सांगितले पण अधीक्षक मैडम ने आमचं दुर्लक्ष केलं, सर त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे।
3: 35 साल का गणपत गबली स्कूल के किचन में काम करता था। चौंकाने वाली बात यह है कि ये घिनौना खेल काफी वक्त से चल रहा था, जिसकी शिकायत करने पर स्कूल प्रशासन छात्राओं को ही धमका डराकर चुप करा देता था। फिर एक छात्रा ने आगे बढ़कर शिकायत की तो फिर धीरे धीरे गणपत गबली के खिलाफ 21 छात्राएं और आ गईं, जिन्होंने लिखित में शिकायत दर्ज करवाई।
17: शिकायत करता है लेडीज है जो 18 साल से कम उम्र की है, उन्होंने भी बताया कि उनके साथ भी विनय भंग का प्रकार हुआ है, जैसे हाथ फहराना या उनके मन में लज्जा उत्पन्न होने जैसी कृति हुई है।
3: चौंकाने वाली बात यह है कि गणपत गबली पर 2024 में एक दूसरे आदिवासी बोर्डिंग स्कूल में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था और तब पुलिस ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इसके बावजूद उसे बहाल कर दिया गया और महाराष्ट्र के एक दूसरे आदिवासी बोर्डिंग स्कूल में फिर से नौकरी पर रख लिया गया।
17: उसी आरोपी के ऊपर एक शाहपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 99/2024 सेम विनय भंग का ही प्रकार हुआ था, उसमें भी गुना दाखिल था, उसमें भी आरोपी को अरेस्ट किया गया था।
3: अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जब गणपत पहले से ही इस तरह के मामले में दोषी था तो उसकी बच्चियों के स्कूल में नियुक्ति क्यों की गई? क्या उसका पुराना रिकॉर्ड नहीं देखा गया? प्रशासन के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है।
18: कार्रवाई करके उसको अगले बहुत कड़क मतलब शिक्षा देने वाले हैं डिपार्टमेंट के तरफ से।
3: गबली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा जिन्होंने गबली का बिना रिकॉर्ड देखे उसकी दोबारा स्कूल में नियुक्ति की थी। दिव्येश सिंह, ठाणे, आज तक।
6: तो वही एससीओ में मोदी, पुतिन और जिनपिंग ने एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और पुतिन ने पीएम मोदी की मुस्कुराते हुए पीठ भी थपथपाई है। ऐसे में शहबाज शरीफ एससीओ के मंच पर न सिर्फ अलग थलग पड़े हुए दिखाई दिए बल्कि पाकिस्तान ने एससीओ की ग्रुप फोटो को एडिट कर उसमें से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने की ओछी हरकत की है और 4 घंटे फजीहत करवाकर शहबाज शरीफ ने एडिटेड तस्वीर को हटाकर पूरी तस्वीर पोस्ट की।
3: बिश्केक में एससीओ के मंच पर कैसे बेइज्जत हुआ पाकिस्तान?
19: जब मोदी पुतिन जिनपिंग गर्म जोशी से मिले, शहबाज शरीफ जले, एससीओ की ग्रुप फोटो पर पाकिस्तान ने सबसे ओछी हरकत कर डाली। ग्रुप फोटो से पहले पीएम मोदी को हटाया, फिर शहबाज ने यू टर्न मारा। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर धो डाला, पाकिस्तान बुरी तरह खिसियाया। किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ के मंच से जब ये तस्वीरें आती हैं, तो पूरी दुनिया में इनकी चर्चा होने लगती है। एससीओ के मंच पर ग्रुप फोटो से ठीक पहले पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो केमिस्ट्री दिखाई पड़ती है, वो अपने आप में दुनिया को त्रिशक्ति का मैसेज देती है। आप देख सकते हैं कि कैसे सबसे पहले मंच पर जैसे ही पीएम मोदी पहुंचते हैं, तो शी जिनपिंग और पुतिन उन्हें देखकर रुक जाते हैं और गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। इतना ही नहीं, पुतिन मुस्कुराते हुए मोदी की पीठ भी थपथपाते हैं, जबकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान भी मोदी से बातचीत करते हुए दिखते हैं। लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू होता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पुतिन के ठीक बगल में जाकर खड़े हो जाते हैं, जबकि पुतिन ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ग्रुप फोटो खत्म हुई तो पीएम मोदी शी जिनपिंग से बात करते हुए निकल जाते हैं, और तो और पुतिन भी शहबाज शरीफ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में एससीओ के मंच पर पाकिस्तान कूटनीति के इम्तिहान में दुनिया के सामने फेल होता ना दिखाई दे, इसलिए शहबाज शरीफ दौड़कर पीछे से पुतिन का हाथ थामते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने जिस कूटनीति को साधने की कोशिश की, पाकिस्तान ने उस पर फिर पानी फेर दिया, और तो और पाकिस्तान ने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती भी करवा ली। जी हाँ, पाकिस्तान पीएमओ ने एससीओ की ग्रुप फोटो को एडिट करके पीएम मोदी की फोटो हटा दी। इतना ही नहीं, नफरत की इस इंतहा में मोदी के साथ खड़े ईरानी राष्ट्रपति से लेकर पाकिस्तान ने अपने सदाबहार दोस्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी फ्रेम से बाहर कर दिया, जो कि पुतिन के दूसरी तरफ खड़े थे। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पाकिस्तान की सबसे बचकानी और अपने प्रधानमंत्री को प्रमोट करने की ओछी हरकत थी। लेकिन चार घंटे पाकिस्तान ने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाकर शहबाज शरीफ ने यू टर्न मारा और एसईओ की पूरी ग्रुप फोटो एक्स पर शेयर की और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। सिर्फ मोदी की फोटो ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फेसबुक पोस्ट पर जारी वीडियो से भी प्रधानमंत्री मोदी को हटा दिया और मियां शहबाज शरीफ के नाम से आधिकारिक अकाउंट पर एडिटेड वीडियो जारी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाया गया, जबकि पीएम मोदी इस मीटिंग में शहबाज शरीफ के सामने ही बैठे थे। एससीओ समिट में शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते पर भी रोना पीटना शुरू किया। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एससीओ के मंच से सिंधु जल समझौते को फिर से बहाल करने की अपील की। शहबाज ने कहा कि नदियों पर हुए समझौतों को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए।
20: एक्सीलेंसीज, वाटर इज द लाइफ ब्लड ऑफ आवर रीजन, इट सस्टेन्स मिलियंस ऑफ लाइव्स, नरिशेस आवर लैंड्स एंड सिक्योर्स द वेरी फ्यूचर ऑफ आवर कमिंग जनरेशंस। इट मस्ट नेवर बी वेपनाइज्ड, इट कैनॉट बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोएर्शन, नॉर कैन इट एवर बी एक्सप्लॉइटेड for political leverage. The treaties governing our shared waters are solemn binding international commitments. They are not matters of political conveniences to be cast aside at your will. They must be honored unconditionally in both letter and spirit.
19: लेकिन पाकिस्तान ये भी जानता है कि उसका पानी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बंद किया गया है। एसईओ में शहबाज शरीफ पाकिस्तान से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने वाले आतंकवाद पर लगाम लगाने के बजाय उल्टे सिंधु जल समझौते पर बिलबिला रहे हैं। लेकिन एसईओ के मंच पर पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में और शहबाज शरीफ के सामने बैठकर आतंकवाद पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। पीएम मोदी ने कहा कि जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का हथियार बनाते हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं, उन्हें सख्त संदेश मिलना चाहिए। आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं हो सकता। बिना नाम लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर मोदी का ये प्रहार पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अगले साल यानी 2027 में एससीओ समिट की मेजबानी करने वाला है। एससीओ समिट हर साल एक नए सदस्य देश में होता है और वही इसकी अध्यक्षता करता है। जब पाकिस्तान एससीओ की अध्यक्षता संभालने के लिए जश्न मनाने की तैयारी में जुटा था, भारत ने पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतार कर आतंक वाला चेहरा दुनिया को दिखा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ एक्शन रिएक्शन वाली सोच तक सीमित रहने के बजाय आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करें, जिसमें फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित ठिकाने शामिल हैं। भारत का ये कूटनीतिक प्रहार सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं है, बल्कि उन हिमायती देशों पर भी है जो अक्सर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकियों का बचाव करते हुए दिखते हैं। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग की मौजूदगी में ये बता दिया कि आतंकियों को ढाल देने वाले देश भी उतने ही गुनहगार हैं जितना कि उन्हें पालने वाला पाकिस्तान। आज तक ब्यूरो।
6: तो वही नेपाल में अचानक से आई बाढ़ को भले ही आज सातवां दिन हो, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 1000 लोगों की मौत नेपाल में हो चुकी है, तो वहीं 4000 से ज्यादा लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इसमें एक बड़ी संख्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों की है। नेपाल के अलावा भारत और चीन की रेस्क्यू टीमें सुरंग में जान पर खेलकर वक्त से रेस लगा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बहुत ज्यादा उत्साहजनक नतीजा नहीं मिल पाया है।
1: नेपाल में सुरंगों का मुंह खोलने के लिए दिन रात काम हो रहा है। सुरंगों के जो मुहाने खुले हैं, वहाँ बाहर से लगातार अंदर आवाजें दी जा रही हैं। ये जानते हुए कि मलबे से भरी इन सुरंगों में इतने दिन बाद किसी का जिंदा रहना करीब करीब नामुमकिन है, फिर भी रेस्क्यू टीम के जवान सुरंगों के भीतर मोर्चा संभाले हुए हैं। नेपाल में बीते बुधवार को अचानक एक बाढ़ से प्रभावित 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के 900 से ज्यादा कर्मचारी लापता हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं कि इन प्रोजेक्ट्स की सुरंगों के अंदर फंसे लोगों की सही संख्या क्या है। फिर भी रसुआगढ़, लांगटांग, चिली में अपर त्रिशूली 3A और अपर त्रिशूली 3B में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेपाल की सुरंग में ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत कठिन परिस्थितियों में चल रहा है। सुरंग में अंधेरा है और पानी भरा हुआ है, जिसमें तैरकर नेपाल की रेस्क्यू टीम के जवान जान जोखिम में डालते हुए अंदर जाते हैं। नेपाल की ये वो सुरंगें जिनमें मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। तबाही के 7 दिन बाद अब इसमें पानी भर चुका है, फिर भी जिंदगी बचाने की मुहिम नेपाल की सेना चला रही है। उनके जवान पानी भरी सुरंग में किसी तरह अंदर जाते हैं ताकि अगर कोई मजदूर जिंदा हो तो उसे बचा लिया जाए। अब सवाल ये कि इन सुरंगों में पानी कहां से आया, तबाही का मलबा इनमें कहां से पहुंचा, तो उसका जवाब ये है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली सुरंग का मकसद नदी से पानी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सेंटर तक पहुंचाना होता है। हाइड्रोलिक टरल में हमेशा खतरा बना रहता है क्योंकि यहाँ नदी पास होती है। ये सुरंगें पहाड़ को काट कर बनाई जाती हैं।

0: खतरनाक हो गया है, जिसे नेपाल की सेना अंजाम दे रही है। जिस तरह से हालात हैं उसमें नेपाली सेना के जवानों की बहादुरी की चर्चा चारों तरफ है, क्योंकि टनल में मजदूरों को ढूंढने और उन्हें बचाने का काम मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं। अब ये चिमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान की तस्वीरें देखिए, जिनमें सेना के जवान बचाव के काम में लगे हुए हैं। लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भी मजदूरों के फंसे होने की आशंका है, जिन तक पहुंचने के लिए नेपाली सेना के जवान जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये देखिए कैसे रेस्क्यू टीम रस्सी के सहारे सुरंग के उस अंधेरे में जा रही है जिसमें 42 मजदूर लापता है। मुसीबत में घिरे नेपाल के साथ भारत एक सच्चे दोस्त के तौर पर चट्टान की तरह साथ खड़ा है। भारतीय सेना की टनल रेस्क्यू टीम ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर लांगटांग टनल में बचाव का काम किया। बेहद मुश्किल हालात का सामना करते हुए सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की। टीम लगभग 170 मीटर अंदर तक गई, लेकिन आगे रास्ता बंद मिला और वहां उन्हें एक शव मिला।
1: ऊपर पत्थर आएगा और पानी से क्लियर हो जाएगा, उसके ऊपर एक पाइप है, जीआई पाइप के ऊपर चलते रहना।
0: नेपाल की सुरंगों में लापता मजदूरों का मुद्दा राजनीतिक तौर पर भी बड़ा हो गया। सरकार से सवाल किया जा रहा है कि 26 तारीख को आई तबाही के बाद भारत और चीन से मदद लेने में 3-4 दिन क्यों लगा दिए। एक्सपर्ट को लगता है कि अगर इतना बड़ा टाइम न गवाया जाता तो लापता मजदूरों का आंकड़ा इतना बड़ा न होता। नेपाल में मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, 1000 के पार तक पहुँच गया है। बड़ी संख्या में शवों की पहचान नहीं हो सकी है, इस वजह से अज्ञात शवों को सामूहिक रूप से दफन किया जा रहा है। और अब ये तस्वीर देखिए, नेपाल के रसुआ में ये वो लोग हैं जिनके अपने इस बाढ़ में लापता हैं, जिनके डीएनए टेस्ट के जरिए शवों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है।
2: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
4: क्या आपका घाव नहीं भर पा रहा? क्या बार बार चोट चपेट की शिकायत हो जाती है? क्या आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं? मंगल ये समस्याएं आपको दे रहा है। कौन सी है मंगल की स्वास्थ्य की समस्याएं और क्या है समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चंद्र में।
5: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: 5,585 उम्मीदवारों में से 3 नाम शॉर्टलिस्ट, सर्च कमेटी ने न्यास को सौंपी रिपोर्ट। आतंकवाद के खिलाफ एससीओ में पीएम मोदी का कड़ा रुख, कहा पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना जरूरी, सीमा पार पनाहगाहों को कड़ा संदेश। आज नासिक दौरे पर जाने से पहले राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, कहा महाराष्ट्र से बंगाल तक हुई वोट चोरी, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश। दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन पर जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, राज्यों में दर्ज सभी एफआईआर होंगी वापस, सीजेआई के मार्च वापस लेने के फैसले का किया स्वागत। दिल्ली में चावल चोरी मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस, आम आदमी पार्टी का दावा 5 करोड़ किलो चावल की चोरी, मंत्री सिरसा की भूमिका की जांच की मांग। यूपी में अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक बेनामी पोस्टर लगाया गया जिसके जरिए बीजेपी पर हमला किया गया है। पोस्टर लगा तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी के बयान पर भी बवाल बढ़ा हुआ है।
1: 27 के समर की शुरुआत इन पोस्टर्स के साथ शुरू हो गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये विशाल पोस्टर लगाया गया है। इसमें राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भगवान राम को श्राप देते हुए दिखाया गया है। पोस्टर में ऊपर लिखा है कि अयोध्या मंदिर को लूटने वाले नर्क के भागी होंगे। दूसरी तरफ लिखा है कि महाश्राप से लुटेरों और उनके सहयोगियों की 7 पीढ़ियों का महाविनाश निश्चित है।
2: आप तस्वीर पहले देखें और देखें कि यहाँ पर श्री रामचंद्र को दिखाया गया है, उनके हाथ में धनुष है, बाण है और वो एक हाथ से एक तरीके से श्राप देते नजर आ रहे हैं। सामने जो है तमाम आप देखें तो पंडित बैठे हुए हैं उनको, और पीछे तमाम और लोग हैं और जो लोग कार्य में लगे हैं राम मंदिर के, वो सब इसमें दिखाए गए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि राम जी श्राप देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
1: अब यूपी की पूरी राजनीति धर्म पर आकर अटक गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का अपमान कर रही है।
3: कभी आप कह देंगे कि ब्राह्मण से भली वेश्या आज भी ब्राह्मणों के मन में और ब्राह्मणों के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह जा रहा। मुझे बहुत बेहद आपत्ति है, मैं अपनी आपत्ति जताता हूं और समाजवादी पार्टी से कहता हूं कि अगर ब्राह्मणों को इसी तरीके से अपमानित करती रहेगी तो ब्राह्मण समाज आने वाले दिनों में, पहले भी सबक सिखाया है, आने वाले दिनों में भी इनको सबक सिखाएगा।
1: हालांकि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लिखा है वो किसने लगाया है ये पता नहीं। अनाम एआई वीडियो की तरह ही अनाम पोस्टरबाजी शुरू हुई है।
4: देखिए होर्डिंग किसने लगवाई, किस भावना से लगवाई, ये जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसकी जांच होनी चाहिए कि किस उद्देश्य से, किस भावना से उसने होर्डिंग लगवाई। लेकिन साथ ही साथ ये भी सही है, प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या में जिस तरीके से चंदे की डकैती हुई, आखिर आप होर्डिंग तो फाड़ दोगे, होर्डिंग का तो अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंची उसको कैसे मिटा पाओगे आप।
1: पोस्टर्स के साथ साथ अब बयानबाजी भी तेज हो रही है। इन्हें देखिए, ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव है। कुत्ते के गले में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारी का पट्टा देखकर वोट देने की नसीहत दे रहे हैं।
5: लोगों से कोई मतलब नहीं है, अगर वो कुत्ते के गले में घंटी अगर बांध के भेज दे तब भी आपको वोट उसी को देना है, क्योंकि उसी से आपकी समस्या का समाधान होना है।
1: अब जब एसपी के एमएलसी का ऐसा बयान आया तो बीजेपी ने विरोध जताया।
6: मुझे लगता है शीघ्र ही समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर तमाम कुत्ते पट्टा बांध करके टिकट की लाइन में खड़े होंगे। इससे बड़ा अपमान लोकतंत्र का कुछ नहीं हो सकता है।
1: जब बवाल बढ़ा तो लाल बिहारी ने अपने बयान पर सफाई दी।
7: इसका आशय यही हमारा था कि हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के प्रति, और इतना पूर्ण विश्वास है हम लोगों को कि वह जिसको भी प्रत्याशी बना करके भेजे उस पर कोई इफ बट नहीं है।
1: अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे तारीखें बीतेंगी यूपी में चुनावी जंग और तीखी होती जाएगी। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनावी जंग की शुरुआत ही मुद्दों से आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए वीडियो और जुबानी हमलों के साथ हुई। चुनावी मुद्दों का यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर किस दिशा में बढ़ रहा है देखिए।

0: हुई थी।
1: उत्तर प्रदेश की सियासी जंग अब आर्टिफिशियल अवतार में दिखने लगी है, क्योंकि इसे बाकायदा अब अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति के तहत वार पलटवार का हिस्सा बता दिया है।
2: सरकार के लोग मिलकर के उनको और बना रहे हैं। तो किसी ने हमें एक बहुत अच्छा वीडियो एआई का बना करके भेजा है। पहले हम अपना दिखाते हैं जो हमारे लिए बनाया उन्होंने, जिससे उनका जब वो देखें खुद का तो वो बुरा ना लगे उन्हें।

0: भगवा धारी गोरखनाथ पीठ के महंत और प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिलम पीते हुए दिखाया है, डांस करते हुए दिखाया है, यह घोर निंदनीय है।
1: श्री अखिलेश यादव जी जो इंडिया गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है, उनके खिलाफ भद्दा अभद्र नीच निर्लज्ज वीडियो डालते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी को उसका करारा जवाब समाजवादी पार्टी के आईटी सेल से मिलता है तो फिर वो कांव कांव करके चिल्लाने लगते
2: हैं। अखिलेश यादव ने रिपीट कर करके ये वीडियो अपने दफ्तर में 3 बार चलाया और बीजेपी को चेतावनी भी दी।
3: हद तो तब हो गई कि जब डिंपल के लिए भी बना रहे हैं और नाम उनका भी ले जा रहे हैं।
4: घोटाला जमकर था तुमने करा।
2: अखिलेश ने बीजेपी के समर्थकों की ओर से बनाए जा रहे एआई वीडियो की सीरीज का जिक्र किया जो लगातार उन पर चुनावी हमले कर रहे हैं।
5: जिस तरीके से एआई का प्रयोग समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के लिए कर रही है 2027 के चुनाव में, जरूर ये बताना चाहती है जनता को या फिर वोट वो किसे दें। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव आज तक।
6: सुप्रीम कोर्ट से सीजेपी के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर हुई एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया, जिसके बाद सीजेपी ने 5 सितंबर को होने वाले दिल्ली मार्च को रद्द करने का ऐलान किया है।
7: नंबर 5 को जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च था इंडिया गेट से न्यू पुलिस हेडक्वार्टर्स तक, वो हम लोग कॉल ऑफ कर रहे हैं क्योंकि हमारे सारे डिमांड्स सरकार ने मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ब्लेस किया। तो इसलिए सारे सारे देश के युवाओं को बहुत बहुत बहुत बड़ी मुबारक और शुभकामनाएं।
2: कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 5 सितंबर को होने वाले मार्च को रद्द करने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उन्हें इस राहत का फायदा नहीं मिलेगा। ये आदेश देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज मामलों पर लागू होगा।
8: तो अब मुझे लगता है ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे हर स्टेट में जो एफआईआर अभी लोगों के अगेंस्ट है फॉर द प्रोटेस्ट, उनको हटाया जाएगा, उनको क्वॉश करा जाएगा, उनको ये बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है अगर एफआईआर ऑनगोइंग होती है, उनके फ्यूचर के अगेंस्ट होता है वो।
2: दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से अपने यहाँ दर्ज एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से अपील की कि बाकी राज्यों के लिए भी ऐसा ही आदेश पारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत हासिल विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन एफआईआर को निरस्त कर दिया है।
9: डेलीगेशन आया था और हमारी कई 7-8 मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग्स में हमारा बस यही था कि कैसे एब्सोल्यूट जस्टिस मिल सके।
10: सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
2: जंतर मंतर में प्रोटेस्ट खत्म करने की एक शर्त छात्रों पर हुए केस वापस लेने की थी, लेकिन केस वापस ना लिए जाने पर कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले 5 सितंबर को मार्च निकालने का ऐलान किया था। आज तक ब्यूरो।
6: जीडीपी के ताजा आंकड़ों पर सरकार खुद की ही पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष महंगाई, रोजगार और गिरते रुपए को लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रहा है।
11: दुनिया भर में अस्थिर माहौल के बीच 2026-27 की पहली तिमाही के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की तरक्की रुकी नहीं। वास्तविक जीडीपी दर 7.8% दर्ज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देशवासियों के संकल्प का नतीजा कहा, तो वहीं विपक्ष पर तंज भी किया।
12: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया।
11: प्रधानमंत्री की ये बधाई विपक्ष को हजम नहीं हो रही, जिनके सरकार से अपने सवाल हैं। कांग्रेस महंगाई का हवाला देकर मजबूत अर्थव्यवस्था के दावों पर सवाल उठा रही है।
13: जीडीपी कैसा बढ़ेगा मोदी को दिखता है, मोदी का चश्मा क्या है वो देखना पड़ेगा। मोदी कौन से चश्मे से देखते हैं? मोदी का अर्थशास्त्री है, मोदी का मनमोहन सिंह है, मोदी का पंडित नरसिंह राव है? आप मुझे बताइए, अगर जीडीपी बढ़ गया है तो महंगाई कैसी बढ़ रही है? रुपया कैसा नीचे गिर रहा है 89 रुपए तक।
11: मुंबई में आज से तबेले के दूध के दाम 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। पशु आहार की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी की वजह से मुंबई में दूध महंगा हुआ है। उधर महानगर गैस लिमिटेड ने भी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी की कीमत 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 88 रुपए प्रति किलो कर दी, जबकि पीएनजी यानी पाइप से पहुंचने वाली घरेलू गैस में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
14: मैं तो तब स्ट्रेंथ मानू एक्सपोर्ट्स की, हमारी कम्पेटिटिवनेस की, व्हेन वी एक्सपोर्ट और हमारा रुपी स्टेबल हो और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है?
15: तो बेरोजगार भाइयों, बेरोजगारी के लिए बधाई दीजिए मोदी जी को। 70 रुपए चीनी 70 रुपए किलो खरीदने वाले लोगों, चीनी की महंगाई के लिए बधाई दीजिए। हाईवेज के गड्ढे के लिए बधाई दीजिए।
11: इस बीच जीडीपी के शानदार आंकड़ों के बीच राहुल गांधी का वो बयान भी दोबारा वायरल है जिसमें उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहने का समर्थन किया था।
16: डिस्पाइट द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग, वी आर एबल टू क्लॉक दिस काइंड ऑफ अ नंबर and this is only going to further strengthen this year's growth, and I think if the first quarter started off like this we'll be able to sustain similar numbers.
11: arthvyavastha aur gdp ke in aankdon ko har koi apne apne siyasi chashme se dekh raha hai. aaj tak bureau.
6: अब बात महाराष्ट्र के ठाणे से आई चौंकाने वाली खबर की, जहां पर 22 स्कूली आदिवासी छात्राओं ने एक कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।
2: महाराष्ट्र के ठाणे के इस आदिवासी स्कूल में एक दो नहीं बल्कि 22 छात्राओं ने एक स्कूल के कर्मचारी पर छेड़छाड़ और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है।
17: तेरा मैं बोली कि मामा हाथ नको लाव, मैं पुलिस केस करेन, तो बोला हाँ का तो वरती निघून गेला डस्टबिन ठेवायला आणि मुलींच्या कमरेला पण धरलं होतं।
2: छठी से दसवीं कक्षा तक की लगभग 22 छात्राओं ने गणपत गबली पर आरोप लगाया है कि जब वे दोपहर या रात का खाना खाने के बाद अपने बर्तन रसोई में रखने जाती थीं, तो वो नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था।
17: मैडम ने सांगितले पण अधीक्षक मैडम ने हमसे तो दुर्लक्ष केले, सर त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे।
2: 35 साल का गणपत गबली स्कूल के किचन में काम करता था। चौंकाने वाली बात यह है कि ये घिनौना खेल काफी वक्त से चल रहा था, जिसकी शिकायत करने पर स्कूल प्रशासन छात्राओं को ही धमका डरा कर चुप करा देता था। फिर एक छात्रा ने आगे बढ़कर शिकायत की तो फिर धीरे धीरे गणपत गबली के खिलाफ 21 छात्राएं और आ गईं, जिन्होंने लिखित में शिकायत दर्ज करवाई।
18: शिकायत करता है लेडीज है जो 18 साल से कम उम्र की है, उन्होंने भी बताया कि उनके साथ भी विनय भंग का प्रकार हुआ है, जैसे हाथ फहराना या उनके मन में लज्जा उत्पन्न होने जैसी कृति हुई है।
2: चौंकाने वाली बात यह है कि गणपत गबली पर 2024 में एक दूसरे आदिवासी बोर्डिंग स्कूल में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था और तब पुलिस ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इसके बावजूद उसे बहाल कर दिया गया और महाराष्ट्र के एक दूसरे आदिवासी बोर्डिंग स्कूल में फिर से नौकरी पर रख लिया गया।
18: उसी आरोपी के ऊपर एक शाहपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 99/2024 सेम विनय भंग का ही प्रकार हुआ था, उसमें भी गुना दाखिल था, उसमें भी आरोपी को अरेस्ट किया गया था।
2: अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जब गणपत पहले से ही इस तरह के मामले में दोषी था तो उसकी बच्चियों के स्कूल में नियुक्ति क्यों की गई? क्या उसका पुराना रिकॉर्ड नहीं देखा गया? प्रशासन के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है।
19: कार्रवाई करके उसको अगले बहुत कड़क मतलब शिक्षा देने वाले है डिपार्टमेंट की तरफ से।
2: गबली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा जिन्होंने गबली का बिना रिकॉर्ड देखे उसकी दोबारा स्कूल में नियुक्ति की थी। दिव्येश सिंह, ठाणे, आज तक।
6: एससीओ में मोदी, पुतिन और जिनपिंग ने एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया और पुतिन ने पीएम मोदी की मुस्कुराते हुए पीठ भी थपथपाई। ऐसे में शहबाज शरीफ एससीओ के मंच पर न सिर्फ अलग थलग दिखाई दिए बल्कि पाकिस्तान ने एससीओ की ग्रुप फोटो को एडिट कर उसमें से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने की ओछी हरकत की है।
2: बिश्केक में एससीओ के मंच पर कैसे बेइज्जत हुआ पाकिस्तान, जब मोदी, पुतिन, जिनपिंग गर्मजोशी से मिले, शहबाज शरीफ जले। एससीओ की ग्रुप फोटो पर पाकिस्तान ने सबसे ओछी हरकत कर डाली।
20: ग्रुप फोटो से पहले पीएम मोदी को हटाया, फिर शहबाज ने यू टर्न मारा। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर धो डाला, पाकिस्तान बुरी तरह खिसियाया। किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ के मंच से जब ये तस्वीरें आती हैं, तो पूरी दुनिया में इनकी चर्चा होने लगती है। एससीओ के मंच पर ग्रुप फोटो से ठीक पहले पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो केमिस्ट्री दिखाई पड़ती है, वो अपने आप में दुनिया को त्रिशक्ति का मैसेज देती है। आप देख सकते हैं कि कैसे सबसे पहले मंच पर जैसे ही पीएम मोदी पहुंचते हैं तो शी जिनपिंग और पुतिन उन्हें देखकर रुक जाते हैं और गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। इतना ही नहीं, पुतिन मुस्कुराते हुए मोदी की पीठ भी थपथपाते हैं, जबकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान भी मोदी से बातचीत करते हुए दिखते हैं। लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू होता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पुतिन के ठीक बगल में जाकर खड़े हो जाते हैं, जबकि पुतिन ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ग्रुप फोटो खत्म हुई तो पीएम मोदी शी जिनपिंग से बात करते हुए निकल जाते हैं, और तो और पुतिन भी शहबाज शरीफ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में एससीओ के मंच पर पाकिस्तान कूटनीति के इम्तिहान में दुनिया के सामने फेल होता ना दिखाई दे, इसलिए शहबाज शरीफ दौड़कर पीछे से पुतिन का हाथ थामते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने जिस कूटनीति को साधने की कोशिश की, पाकिस्तान ने उस पर फिर पानी फेर दिया, और तो और पाकिस्तान ने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती भी करवा ली। जी हाँ, पाकिस्तान पीएमओ ने एससीओ की ग्रुप फोटो को एडिट करके पीएम मोदी की फोटो हटा दी। इतना ही नहीं, नफरत की इस इंतहा में मोदी के साथ खड़े ईरानी राष्ट्रपति से लेकर पाकिस्तान ने अपने सदाबहार दोस्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी फ्रेम से बाहर कर दिया, जो कि पुतिन के दूसरी तरफ खड़े थे। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पाकिस्तान की सबसे बचकानी और अपने प्रधानमंत्री को प्रमोट करने की ओछी हरकत थी। लेकिन चार घंटे पाकिस्तान ने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाकर शहबाज शरीफ ने यू टर्न मारा और एसईओ की पूरी ग्रुप फोटो एक्स पर शेयर की और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। सिर्फ मोदी की फोटो ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फेसबुक पोस्ट पर जारी वीडियो से भी प्रधानमंत्री मोदी को हटा दिया और मियां शहबाज शरीफ के नाम से आधिकारिक अकाउंट पर एडिटेड वीडियो जारी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाया गया, जबकि पीएम मोदी इस मीटिंग में शहबाज शरीफ के सामने ही बैठे थे। एससीओ समिट में शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते पर भी रोना पीटना शुरू किया। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एससीओ के मंच से सिंधु जल समझौते को फिर से बहाल करने की अपील की। शहबाज ने कहा कि नदियों पर हुए समझौतों को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए।
21: एक्सीलेंसीज, वाटर इज द लाइफ ब्लड ऑफ आवर रीजन, इट सस्टेन्स मिलियंस ऑफ लाइव्स, नरिशेस आवर लैंड्स एंड सिक्योर्स द वेरी फ्यूचर ऑफ आवर कमिंग जनरेशंस। इट मस्ट नेवर बी वेपनाइज्ड, इट कैनॉट बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोएर्शन, नॉर कैन इट एवर बी एक्सप्लॉइटेड for political leverage. The treaties governing our shared waters are solemn binding international commitments. They are not matters of political conveniences to be cast aside at your will. They must be honored unconditionally in both letter and spirit.
20: लेकिन पाकिस्तान ये भी जानता है कि उसका पानी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बंद किया गया है। एसईओ में शहबाज शरीफ पाकिस्तान से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने वाले आतंकवाद पर लगाम लगाने के बजाय उल्टे सिंधु जल समझौते पर बिलबिला रहे हैं। लेकिन एसईओ के मंच पर पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में और शहबाज शरीफ के सामने बैठकर आतंकवाद पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। पीएम मोदी ने कहा कि जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का हथियार बनाते हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं, उन्हें सख्त संदेश मिलना चाहिए। आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं हो सकता। बिना नाम लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर मोदी का ये प्रहार पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अगले साल यानी 2027 में एससीओ समिट की मेजबानी करने वाला है। एससीओ समिट हर साल एक नए सदस्य देश में होता है और वही इसकी अध्यक्षता करता है। जब पाकिस्तान एससीओ की अध्यक्षता संभालने के लिए जश्न मनाने की तैयारी में जुटा था, भारत ने पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतारकर आतंक वाला चेहरा दुनिया को दिखा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ एक्शन रिएक्शन वाली सोच तक सीमित रहने के बजाय आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करें, जिसमें फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित ठिकाने शामिल हैं। भारत का ये कूटनीतिक प्रहार सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं है, बल्कि उन हिमायती देशों पर भी है जो अक्सर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकियों का बचाव करते हुए दिखते हैं। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग की मौजूदगी में ये बता दिया कि आतंकियों को ढाल देने वाले देश भी उतने ही गुनहगार हैं जितना कि उन्हें पालने वाला पाकिस्तान। आज तक ब्यूरो।
6: इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आपका घाव नहीं भर पा रहा? क्या बार बार चोट चपेट की शिकायत हो जाती है? क्या आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं? मंगल ये समस्याएं आपको दे रहा है। कौन सी है मंगल की स्वास्थ्य की समस्याएं और क्या है समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

585 उम्मीदवारों में से 3 नाम शॉर्टलिस्ट, सर्च कमेटी ने न्यास को सौंपी रिपोर्ट। आतंकवाद के खिलाफ एससीओ में पीएम मोदी का कड़ा रुख, कहा पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना जरूरी, सीमा पार पनाहगाहों को कड़ा संदेश। आज नासिक दौरे पर जाने से पहले राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, कहा महाराष्ट्र से बंगाल तक हुई वोट चोरी, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश। दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन पर जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, राज्यों में दर्ज सभी एफआईआर होंगी वापस, सीजेआई के मार्च वापस लेने के फैसले का किया स्वागत। दिल्ली में चावल चोरी मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस, आम आदमी पार्टी का दावा 5 करोड़ किलो चावल की चोरी, मंत्री सिरसा की भूमिका की जांच की मांग।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे कि मंगल ग्रह की वजह से कौन कौन सी स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं और अगर मंगल की वजह से स्वास्थ्य की समस्याएं हो रही हैं तो ज्योतिष के अनुसार उनका समाधान क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः काल 6:12 तक, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय 12:00 से 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं मंगल की बीमारियों के बारे में और उसके समाधान के बारे में। मंगल का बीमारियों से क्या संबंध है? देखिए, मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। मंगल ग्रहों का सेनापति है और ये हर तरह की सुरक्षा प्रदान करता है आपके शरीर को, आपके जीवन को। शरीर की सुरक्षा के लिए मंगल का मजबूत होना जरूरी है क्योंकि ये आपको रोगों बीमारियों से बचाए रखता है। अगर बीमारी हो भी जाती है और कुंडली में मंगल मजबूत है तो व्यक्ति की रक्षा अवश्य होती है, व्यक्ति बीमारी से बाहर निकल आता है। मंगल आपके शरीर में रक्त का, मानसिक स्थिति खासतौर से एग्रेशन का, त्वचा के रोग का और ज्वर का नियंत्रक है, इन चीजों को नियंत्रित करता है। मंगल बोन मैरो का और मस्कुलर का स्वामी है, मसल्स का और बोन मैरो का मालिक मंगल होता है। मंगल महिलाओं के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर डालता है क्योंकि महिलाओं के मासिक चक्र से मंगल का सीधा संबंध होता है। मंगल की बीमारियों और उसके समाधान पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

सफल होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग हैं, मान सम्मान मिलेगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मंगल अगर प्रभावित करे नकारात्मक तरीके से तो रक्त की समस्या होती है, घाव हो जाता है, चोट लग जाती है और वो समस्या जल्दी ठीक नहीं होती। तो अगर मंगल के कारण रक्त या घाव की समस्या हो गई है तो क्या करें? मंगल अगर नीच का हो या काफी कमजोर हो तो रक्त संबंधी समस्या होने की संभावना बन जाती है और मंगल के कमजोर होने पर घाव जल्दी नहीं भरते और कभी कभी घाव के खराब होने से शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है। अगर मंगल की वजह से ये समस्या हो रही है तो ऐसी दशा में रोज सवेरे रोली मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तांबे के पात्र से, तांबे के गिलास या जग से जल पीने का प्रयास करें और सलाह लेकर एक इटालियन मूंगा, जो गाढ़े लाल रंग का मूंगा होता है, अगर वो धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मंगल की समस्याओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में बदलाव के योग हैं, यात्रा हो सकती है, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, करियर में लापरवाही ना करें, खर्चे बढ़ सकते हैं। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न शीतल पाटिल ने लिखा है, नासिक से लिखती हैं। 31 मार्च 1996 का जन्म है, 2 AM मध्यरात्रि में 2 बजे, मालेगांव नासिक। ये कह रही हैं कि मेरी नौकरी में लगातार अस्थिरता बनी रहती है तो क्या मुझे नौकरी छोड़ करके व्यापार की तरफ जाना चाहिए? मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और मेरा विवाह कब होगा? शीतल, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और कर्क राशि की, महादशा सूर्य की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। देखिए, नौकरी में सुधार आपके फरवरी 2027 से होगा और अभी आपको नौकरी ही करनी चाहिए। अभी व्यापार में जाने का उचित और उपयुक्त समय दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात यह है कि आपके स्वास्थ्य में ज्यादातर समस्याएं देखिए मानसिक हैं, मेंटल टेंशन की वजह से बीमारी हो रही है। कोई ऐसी बड़ी भारी समस्या नहीं दिख रही है। आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2027 के आखिरी में या 28 के आरंभ में आपका विवाह हो सकता है। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। देखिए, वैसे तो त्वचा का स्वामी है बुध, लेकिन मंगल की वजह से भी त्वचा की समस्या परेशान कर सकती है। क्या करना चाहिए? देखिए, मंगल अगर गड़बड़ हो तो शरीर में केमिकल रिएक्शन हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि दवाई सूट नहीं की तो शरीर पे निशान आ गए, दाग धब्बे आ गए, तो मंगल अगर गड़बड़ हो तो शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है और इस कारण से शरीर पर दाग धब्बे से आ जाते हैं। त्वचा पर काले काले निशान या काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं और कभी कभी घाव ना सूखने की वजह से त्वचा खराब हो जाती है। इन सब की जिम्मेदारी होती है मंगल की। मंगल के गड़बड़ होने पर त्वचा की समस्या भी होती है। ऐसी दशा में खान पान और दवाइयां खाने का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
अपने मन से उल्टी सीधी दवाएं ना खाएं और खान पान में सावधानी रखें। सप्ताह में एक दिन उपवास आपको जरूर रखना चाहिए और सलाह लेकर त्वचा की समस्याओं के मामले में एक मोती और एक देसी मूंगा ये आपको धारण करना चाहिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मंगल की बीमारियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, विवाद तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, महिलाओं के जो मासिक चक्र है उसका स्वामी होता है मंगल। मंगल और चंद्रमा मिल करके महिला के आंतरिक स्वास्थ्य को या प्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर रखते हैं। तो अगर मंगल के कारण किसी महिला को गायनिक समस्या हो गई है तो क्या करना चाहिए? मंगल के गड़बड़ होने से महिलाओं का मासिक धर्म का चक्र बिगड़ जाता है और महिलाओं को इससे जुड़ी हुई तमाम समस्याएं परेशान करने लगती हैं। ऐसी दशा में महिलाओं को सलाह लेकर एक देसी मूंगा धारण करना चाहिए और अपने कमर में एक लाल रेशम का धागा बांध कर रखना चाहिए। अगर आप विवाहिता हैं, शादी हो चुकी है, तो पैरों की उंगली में बिछिया जरूर पहननी चाहिए। अंगूठे के बगल वाली उंगली में चांदी की बिछिया पहनने से भी लाभ होता है। देखिए, मंगल हमारी सुरक्षा का स्वामी है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। तो मंगल को कैसे मजबूत करें कि शरीर स्वस्थ रहे, बीमारियों से बचा रहे? रोज सवेरे रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। तांबे के पात्र से जल पीजिए। खास तौर से रात में तांबे के बर्तन में पानी रखिए और सुबह उस जल को ग्रहण करिए। मिश्रित अनाज की, गेहूं, जौ, बाजरा, रागी, मक्का, इनको मिलवा करके आटा बनाइए और मिश्रित अनाज की रोटियां खाइए। सलाह लेकर के एक मूंगा धारण करिए और रोज सवेरे और शाम को मंगल के मंत्र का जप करिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम
अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, निर्णय लेने में सावधानी रखें, ऑफिस में विवादों से बचें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसका विवाह मांगलिक से ही कराया जाए। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है, दूसरा व्यक्ति मांगलिक नहीं है, लेकिन दूसरे की कुंडली से मंगल दोष अगर कट रहा है तो मांगलिक हो या ना हो विवाह किया जा सकता है। यानी जिसकी कुंडली मांगलिक है, दूसरे की कुंडली से उसका मंगल दोष कटना चाहिए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 4, काम

रखें। नंबर 8, चोट चपेट से सावधान रहें। और नंबर 9, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा, धन और कर्ज की समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अभिजीत कुमार ने लिखा है, रांची से लिखते हैं। 14 अप्रैल 1986 का जन्म है, 5:15 शाम को, पटना बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरे पास नौकरी अभी नहीं है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो मेरा भविष्य कैसे ठीक होगा, क्या उपाय करना चाहिए। अभिजीत, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा भी शनि की चल रही है। नौकरी आपको अभी मिलेगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के समय में, लेकिन आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा और मई 2027 के बाद जिंदगी आपकी रास्ते पे आनी शुरू हो जाएगी। आपका भविष्य बेहतर दिखाई दे रहा है। एक नीलम बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का नीलम, चांदी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में। शनिवार की रात को नीलम धारण करें। रोज सुबह शाम 1-1 बार शनि चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो हरा रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा।

मेष राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य और जीवन में सुधार होगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज सावधान रहना होगा मकर राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान

कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि के स्वामी होते हैं नाग सर्प, इसलिए आज शिव जी की पूजा सर्पों के साथ अगर आप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: आतंकवाद के खिलाफ एससीओ में पीएम मोदी का कड़ा रुख, कहा पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना जरूरी, सीमा पार पनागाहों को कड़ा संदेश। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का मेगा प्लान, वडनगर से वाराणसी तक निकलेगी खास यात्रा, दोनों शहरों से रवाना होंगी 10-10 टीम, 17 सितंबर को है प्रधानमंत्री का जन्मदिन। दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन पर जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, राज्यों में दर्ज सभी एफआईआर होंगी वापस, सीजीआई के मार्च वापस लेने के फैसले का किया स्वागत। राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, कहा महाराष्ट्र से बंगाल तक हुई वोट चोरी, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश। राहुल गांधी का फिर से सबसे तीखा प्रहार, बोले किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है बीजेपी, चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी का लगाया आरोप। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के नाम का आज ऐलान संभव, 5525 अर्जियों की जांच के बाद 3 नाम शॉर्टलिस्ट हुए, सर्च कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। राहुल गांधी आज नासिक में कांग्रेस की बैठक को करेंगे संबोधित, संगठन की तैयारियों और आगामी रणनीति पर मंथन। नासिक में आदिवासी छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी, हॉस्टल की समस्याओं और 17 दिन की भूख हड़ताल पर होगी चर्चा। यूपी पेट 2026 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 7 सितंबर तक कर सकेंगे पेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन। दिल्ली में चावल चोरी मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस, आम आदमी पार्टी का दावा 5 करोड़ किलो चावल की चोरी, मंत्री सिरसा की भूमिका की जांच की मांग। मुंबई में अस्पताल में अन्ना हजारे से मिले सीएम फडणवीस, जल्द स्वस्थ होने की कामना। फडणवीस ने अन्ना हजारे को दी कुकड़ी सिंचाई परियोजना की ये जानकारी, संशोधित खर्च को कैबिनेट की मंजूरी। जालना में ब्राह्मण समाज की विभिन्न मांगों को लेकर ब्राह्मण समाज ने अनशनकर्ता दीपक का आमरण अनशन शुरू हुआ, वहीं ब्राह्मण समाज के बच्चों की शिक्षा मुफ्त करने की प्रमुख मांग। नीट आंदोलन को अभिजीत दीपके ने बताया सफल, एससी के फैसले के बाद 5 सितंबर का प्रस्तावित आंदोलन रद्द, छात्रों पर केस वापसी और आत्महत्या पीड़ित परिवारों को मुआवजा, अभिजीत दीपके ने कहा बड़ी जीत। छत्रपति संभाजीनगर में रैपिडो के खिलाफ ऑटो चालकों का मोर्चा, बाइक ट्रैकर्स सेवा बंद करने की मांग। ऑटो चालकों ने आरटीओ के बाहर किया प्रदर्शन, अवैध यात्री परिवहन पर कार्रवाई और किराया बढ़ाने की मांग। महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 3 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित हुए, सांगली में 165 लीटर दूध नष्ट, अकोला में ब्लिंकिट का लाइसेंस भी निलंबित। मुंबई में एफडीए का बड़ा एक्शन, मलाड के दिल्ली स्वीट हाउस और कोरला के गुलजार मोहम्मदी होटल में लाइसेंस सस्पेंड। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इसरो के प्रोपेलेंट कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले, बना राज्य का 32वां महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान। नेपाल में बाढ़ भूस्खलन से मौत का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा, 3916 लोग लापता। नेपाल में रसुवा फ्लैश फ्लड पीड़ितों की पहचान के लिए भारत की 19 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने संभाला मोर्चा, डीएनए सैंपल की जांच शुरू की गई। नेपाल बाढ़ में लापता लोगों की पहचान के लिए परिजनों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, पुलिस अस्पताल में जांच प्रक्रिया जारी। नेपाल के नुवाकोट में बाढ़ से दबे घर से 24 शव बरामद हुए, वही तीर्थयात्रियों के होने की आशंका, मां बेटी का शव भी मिला। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों की जानकारी, 406 शिकायतें मिली, 206 लोग लौटे, 60 अब भी लापता। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ, त्रिशूली में मलबा हटाने में जुटी नेपाली सेना। नेपाल में बाढ़ पीड़ितों का सामूहिक अंतिम संस्कार शुरू हुआ, डीएनए सैंपल और टैगिंग के जरिए शवों की पहचान की कोशिश। नेपाल के ग्लेशियर बाढ़ भारत के लिए चेतावनी, हिमालय में तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर, विशेषज्ञ ने चेताया। हिमालय में बढ़ रहा जीएलओएफ और हैंगिंग ग्लेशियर का खतरा, अगले 70 से 100 साल में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है तापमान। नेपाल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, राहत कार्यों में करेंगे सहयोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भारी बारिश के कारण कालाकोट नदी उफान पर पहुंची, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। देहरादून और टिहरी में ऑरेंज अलर्ट, रिस्पना नदी में जलस्तर बढ़ा। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में तेज लहरों के चपेट में आई क्रेटा गाड़ी, एसडीआरएफ ने घायल महिलाओं को रेस्क्यू किया, 2 लोगों की गई जान। बिहार के भागलपुर जिले में आई भारी बाढ़, मदरौनी गांव के इलाके हुए प्रभावित। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के खटीमा शहर में जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर जल जमाव की स्थिति। चंबा में बाढ़ में फंसे युवक के लिए देवदूत बनी महिला, दुपट्टे से बाइक सवार की बचाई गई जान, लोगों ने की महिला के साहस की सराहना। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जारी मूसलाधार बारिश से अल्मोड़ा जिले में लैंडस्लाइड, रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम। झारखंड के गढ़वा जिले में मूसलाधार बारिश में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। शहर के कई घर, दुकानों और स्कूल में घुसा बारिश का पानी। नैनीताल में बारिश का रौद्र रूप, लैंडस्लाइड में दो कार फंसी। कुमाऊं में 141 सड़कें बंद, नदी नाले उफान। नैनीताल जिले में हो रही भारी बारिश के बीच उफान पर कोसी नदी, नदी किनारों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। कैची धाम के करीब उफनाई शिप्रा नदी, भारी बारिश से बढ़ा जलस्तर। गाजीपुर में गंगा उफान पर, पार किया खतरे का निशान। वहीं डीएम ने जानकारी दी और इसकी जारी की एडवाइजरी। उत्तराखंड में लगातार बारिश से यातायात बुरी तरह से प्रभावित। बागेश्वर में नेशनल हाईवे में 109 सहित 16 मोटर मार्ग बंद हुए। एम्बुलेंस सहित सैकड़ों वाहन सड़क खुलने के इंतजार। लाहौल में चंद्रभागा के उफान में जोबरंग पुल पर फंसी बुलेरो, करीब 3 घंटे गाड़ी में फंसे रहे दो युवक, देर रात किया गया रेस्क्यू। पहलगाम में बादल फटने के कारण फ्लैश फ्लड की घटना, बाजार होटल जलमग्न हुए, जान बचाने के लिए भागे लोग। वडोदरा में ट्रेलर और एलपीजी टैंकर के बीच भीषण टक्कर हुई, एलपीजी टैंकर ने संतुलन खोकर सड़क पर ही पलटा, वन वे किया गया हाईवे। नागपुर में हत्या लूट चोरी के 4 आरोपी बाल सुधार गृह से भागे, शौचालय की खिड़की के जरिए हुए फरार। फरीदाबाद में स्कूल की छत से 11वीं की छात्रा ने लगाई छलांग, छात्रा के परिजनों का स्कूल का आरोप, करीब 4 घंटे तक सजा के तौर पर क्लासरूम से बाहर खड़ा किया गया था। जयपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद थाने के बाहर धरना, शव लेने से किया इनकार, गला घोटकर हत्या का आरोप। भोपाल में फर्जी आईएएस तृप्ति सिंह राजपूत का नया वीडियो वायरल हुआ, सहेलियों संग बोली, हमारी हरकतों को देखकर कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि हम तीनों आईएएस अफसर हैं। इंदौर में बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन पड़ा भारी, कार रोककर काटा गया केक, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने सिखाया सबक। जालना में एसडीआरएफ जवान ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या की कोशिश। अयोध्या में लक्ष्मी स्वीट हाउस में लगी भीषण आग, सिविल लाइन्स इलाके में मचा हड़कंप। चंद्रपुर में गृहदोष दूर करने के बहाने तांत्रिक का घिनौना खेल, पति को सामने लाने भेजा, पत्नी से किया दुष्कर्म। उन्नाव में 10 फीट गड्ढे के बाद फिर से हुआ हंगामा, एक्सप्रेसवे पर 7 फीट गहरा गड्ढा हुआ। कटिहार के अंचल कार्यालय में मारपीट, सीओ और प्रधान लिपिक के बीच हाथापाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पंजाब के फाजिलका में बेटे ने मां को पीट पीट कर मार डाला, आरोपी ने अपनी मां के सिर पर प्रेशर कुकर से किया बार बार वार। जयपुर में थार एडवेंचर की रफ्तार ने मचाया कहर, दरअसल 50 फीट दूर जा गिरा ई रिक्शा, कांग्रेस नेता की पत्नी के नाम का। कौशाम्बी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा 13 पहुंचा, एसपी ने मौत की पुष्टि की, हादसे में एक परिवार के 4 लोगों ने गवाई जान। कौशाम्बी धमाके के आरोपी नौशाद आदिल के घर पर पीडीए की टीम चला बुलडोजर, इसी मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट। जालौर में शिक्षक की एक अनोखी पहल, दीवारों पर लिखी वर्णमाला, 32 ड्रॉपआउट बच्चों को जोड़ा शिक्षा से। भारत के एआई शिक्षा की एक नई पहल, किया गया फ्री में एआई लॉन्च फ्री प्रोग्राम, 37 करोड़ 1 लाख युवाओं को एआई स्किल से जोड़ने का लक्ष्य। देशभर में जन्माष्टमी की जोरदार तैयारियां, करनाल में कृष्ण जन्मोत्सव से पहले कान्हा को सजाने में जुटे श्रद्धालु। जन्माष्टमी पर मथुरा में भाईचारे की अनोखी मिसाल, बड़ी ही शिद्दत के साथ भगवान के अद्भुत पोशाक तैयार करते हैं मुस्लिम कारीगर। गणेश उत्सव से पहले ही देशभर में उत्सव का माहौल, मुंबई के प्रसिद्ध पंडालों में हो रहा गणपति बप्पा का स्वागत। जम्मू कश्मीर के भलेसा के कलगुनी मंदिर से मणिमहेश यात्रा का शुभारंभ, जिसमें पहले दिन करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में देश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक ने 22 साल किए पूरे, वहीं वन विभाग के अधिकारियों और वन्यजीव प्रेमियों ने काटा केक। जालौर में शिक्षक की अनोखी पहल, दीवारों पर लिखी वर्णमाला, 32 ड्रॉपआउट बच्चों को जोड़ा शिक्षा से। भारत में एआई शिक्षा की एक नई पहल, रन एआई ने लॉन्च किया फ्री प्रोग्राम, 37 करोड़ 1 लाख युवाओं को एआई स्किल से जोड़ने का लक्ष्य। डेल्टा किसानों की जीवन रेखा माना जाता है मीटर बांध, 13 जिलों में लगभग 16 लाख एकड़ कृषि भूमि को प्रदान करता है सिंचाई। आईआईटी दिल्ली में इंडिया 2047 समिट का आयोजन हुआ, शशि थरूर ने संजय कुमार को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा। जम्मू कश्मीर में बढ़ते टूरिज्म के बीच एक और अच्छी खबर, एलओसी के पास बॉर्डर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनकर उभर रही है कुपवाड़ा जिले में स्थित मछली घाट। जेफरीज का दावा है कि भारतीय परिवारों के पास 33 लाख करोड़ का 1000 टन सोना है, वही बढ़ती कीमत और गोल्ड लोन से जीडीपी को 1% तक फायदा होने का अनुमान। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लगाने पर केवल 17% कारोबार इसे देने को तैयार, वित्त मंत्रालय ने कहा कि ग्राहकों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय की मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में कहा गया है कि खाद्य महंगाई बढ़ने से गैर जरूरी सामान की खरीदारी पर असर पड़ेगा, त्योहारी और शादी के सीजन से पहले आई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। वित्त मंत्रालय के मुताबिक भारत में दूध, मीट, मछली और खाद्य तेल महंगाई की बड़ी वजह बनी। महंगाई का पैटर्न बदलने से खाद्य तेल की महंगाई 4 महीने में 2.5 गुना बढ़ी। थोक बाजार में चीनी के दाम 30% गिरकर 47 रूपये प्रति किलो के आए और वहीं इसके बावजूद 10 दिनों तक पुराना स्टॉक खत्म होने तक ग्राहकों को 64% प्रति किलो तक चुकाने पड़ेंगे। 1 सितंबर से 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 9.5 रूपये बढ़ी। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले साल 8.1% की गिरावट आई। वीजा प्रक्रिया, सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट जैसी दिक्कतों को इसकी बड़ी वजह बताया गया। एक सर्वे के मुताबिक 70% से ज्यादा लोग मॉल में बॉलिंग, प्ले जोन जैसी एक्टिविटी पसंद करते हैं। करीब 90% लोग इन पर हर महीने 4000 तक खर्च करने को तैयार। आरबीआई के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंची। सरकारी खर्च और विदेशी मुद्रा जमा के नकदी की उपलब्धता में इजाफा हुआ। एक सर्वे के मुताबिक 17.7% ओनरशिप शेयर के साथ सैमसंग सबसे आगे। हैवान का नया गाना रिलीज हुआ, 11 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। मिर्जापुर द मूवी की एडवांस बुकिंग से बंपर कमाई 1800 में कम बिक रही है ये टिकट। वहीं आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन भारत में 15 से 20 करोड़ की नेट कमाई की। फिल्म हनुमान अंश का ताबड़तोड़ कमाई 1.80 करोड़ में बनी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कायम किया रिकॉर्ड, अब तक 45 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई। यश की फिल्म टॉक्सिक की बॉक्स ऑफिस पर धीमी हुई रफ्तार। भारत ने ग्रॉस कलेक्शन करीब 264 करोड़, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 304 करोड़ रहा। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म दायरा का ट्रेलर रिलीज हुआ। 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म। वैश्विक बेइज्जती के बाद होश में आया पाकिस्तान, एससीओ समिट की एडिट की हुई ग्रुप फोटो हटाई। पाक पीएम ऑफिस के ऑफिशियल हैंडल से जारी हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाली नई तस्वीर। एससीओ की बैठक में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान का बड़ा बयान, कहा अमेरिका समझौते का पालन करेगा तभी होर्मुज से आवाजाही होगी बाहर। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया का बड़ा बयान, कहा जापान में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। यूरोपीय रक्षा मंत्रियों की आयरलैंड में अहम बैठक, यूक्रेन को समर्थन और रक्षा तैयारियों को लेकर चर्चा। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूस का भीषण हमला, अलग अलग हमलों में एक भारतीय समेत 12 लोगों की मौत हुई, 3 बच्चों समेत 13 लोग घायल। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन में खुले स्कूल, राजधानी कीव में जेलेंस्की ने स्कूल का किया दौरा, रूस को बताया घृण। गाजा में इजरायली सेना का भीषण हमला, हमले के बाद इधर उधर भागे फिलिस्तीनी, 4 लोगों की मौत, कई घायल। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर छोड़ेंगे सांसद का पद, 11 साल बाद खत्म होगा संसदीय करियर। इस्तीफे के बाद स्टार्मर की सीट पर होगा उपचुनाव।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: खाना कहाँ से मंगवाया?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जीके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट प्राइमर
6: जीके मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जीके मैक्स।
3: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
4: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
3: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
8: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
7: असली शहद, असली स्वाद।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: आगे दलदल का इलाका है, भटकुशी के एकदम किनारे पर खड़े हैं और बटार में देखे ये सोलर प्रोजेक्ट था जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है।
3: पता तो चले कि किनके अपने लापता है, क्योंकि बहुत सारे लापता लोगों की संख्या 2500 से ज्यादा है।
2: सब कुछ सब रेत से भरा हुआ था और ये तबाही के निशान अपने साथ कई सारी मानवीय त्रासदियों के निशान भी छोड़ जाते हैं।
3: सब बरामद हो, उनकी आवश्यक जरूरी चीजें हैं, उन लोगों की चीजें बरामद की जा सकती
4: है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: GK Max.
3: खाना कहाँ से मंगवाया?
2: GK Max. Best putty.
4: JK Wall Max.
2: Best primer.
5: JK Max.
2: Best paint.
5: JK Max.
2: JK Max. बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max पेंट्स।
3: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
2: JK Max पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: तेल गैस की सप्लाई प्रभावित हुई तो हुई, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई तो आई, पश्चिम एशिया के युद्ध से संकट के बादल छाए तो छाए, दुनिया भर में अस्थिरता का माहौल बना तो बना, लेकिन 2026-27 की पहली तिमाही के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की तरक्की नहीं रुकी। वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.8% दर्ज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देशवासियों के संकल्प का नतीजा कहा। साथ ही उन्होंने कथित निराशावादियों पर एक शब्द बाण छोड़ा, झूठ की गूंज।
7: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गूंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया।
6: प्रधानमंत्री का ये हमला बेहद अहम है, क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों छात्रों की गूंज नाम से जेएनजी से संवाद कर रहे हैं। लेकिन झूठ की गूंज नाम से बनी एक वेबसाइट का दावा है कि छात्रों की गूंज नाम से हुई 4 रैलियों में किए गए 40 दावों में से 29 यानी 73% गलत है और 11 यानी 27% भ्रामक है। बीजेपी ने एक्स मीडिया पोस्ट्स में इस वेबसाइट के दावों के आधार पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया है।
8: And now his claims are being fact-checked by Gen Z, who have taken it upon themselves to create a website with a comprehensive rebuttal of all his lies.
6: उधर कांग्रेस जीडीपी के नए आंकड़ों के बावजूद अर्थव्यवस्था की मजबूती पर सवाल उठा रही है।
9: उनको खुद अपने झूठ की गूंज बार बार सुनाई देती होगी। 12 साल पहले से जो प्रचार करते आए उसकी गूंज आज उनको बहुत तंग करती है, सताती है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि आप एक तरफ कहते हो जीडीपी, दूसरी तरफ कहते हो सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, किफायतशाली रखो, तीसरी तरफ आपका वीडियो निकलता है और मुंबई में दाम बढ़ जाते हैं दूध के, पेट्रोल के दाम देखो, डीजल के दाम देखो, दूध के दाम देखो, शक्कर के दाम देखो, फिर बताओ झूठ की गूंज कितनी मीठी है।
6: कांग्रेस महंगाई का हवाला देकर मजबूत अर्थव्यवस्था के दावों पर सवाल उठा रही है। मुंबई में आज से तबेले के दूध के दाम 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। पशु आहार की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी की वजह से मुंबई में दूध महंगा हुआ है। उधर महानगर गैस लिमिटेड ने भी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी की कीमत 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 88 रुपए प्रति किलो कर दी, जबकि पीएनजी यानी पाइप से पहुंचने वाली घरेलू गैस में 1 रुपए की रेट से बढ़ोतरी हुई है। उधर जब जीडीपी के आंकड़े आए हैं तब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, बिना टिप्पणी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 179 देशों में 106 स्थान पर है। वीडीएम के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्कोर 1975 के बाद के सबसे निचले स्तर पर है। जाहिर है कि अर्थव्यवस्था से लेकर लोकतंत्र पर सियासी संग्राम मचा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मजबूत अर्थव्यवस्था के आधार पर विकसित भारत का लक्ष्य रख रहे हैं।
10: मूविंग इंडिया टुवर्ड्स अ विकसित भारत 2047. So I think all factors put together, despite the challenges that we are facing, we are able to clock this kind of a number. And this is only going to further strengthen this year's growth. And I think if the first quarter started off like this, we'll be able to sustain similar numbers in the other coming quarters as well.
6: इस बीच जीडीपी के शानदार आंकड़ों के बीच राहुल गांधी का वो बयान भी दोबारा वायरल है जिसमें उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहने का समर्थन किया था।
11: आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है।
4: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आपदा को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे की चेतावनी बताया। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के नाम का ऐलान आज संभव। 5,585 उम्मीदवारों में से 3 नाम शॉर्टलिस्ट। सर्च कमेटी ने न्यास को सौंपी रिपोर्ट। अजनास्तिक दौरे पर जाने से पहले राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप। कहा महाराष्ट्र से बंगाल तक हुई वोट चोरी। खड़गे ने भी पोस्ट से किया प्रहार। चुनाव चोरी मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस। आम आदमी पार्टी का दावा 5 करोड़ किलो चावल की चोरी। मंत्री सिरसा की भूमिका की जांच की मांग।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वक्त हो गया है सुपर एट का। सुपर एट में सबसे पहले बात उन बड़ी खबरों और अहम खबरों की जिस पर पूरे दिन आपकी नजर रहेगी। दरअसल नेपाल में आए सैलाब में मरने वालों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक 1000 से ज्यादा लोगों के शव बरामद हुए हैं। तो वहीं देश के 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, उसको लेकर भी करेंगे बात, जिसके बाद लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, डिटेल में आपको बताएंगे। तो वहीं बात होगी राम मंदिर के सीईओ को लेकर, आज बड़ा फैसला आ सकता है। इसके साथ ही एसआईआर को लेकर देश में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो चुका है, इस पर भी करेंगे बात। वहीं कौशाम्बी में अवैध पटाखा फैक्ट्री के आरोपी पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही श्रीनगर में आज बीजेपी और एनसी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, डिटेल में आपको बताएंगे पूरी खबर। और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ जाने के कारण मिडल ईस्ट में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, और सबसे पहले बात अमेरिका की खबर की ही कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। तो ये अलग अलग जो बड़ी खबरें हैं आज की सुपर एट में, 8 बड़ी खबरें, उस पर हमारी नजर रहेगी। श्रीनगर में बीजेपी और एनसी के बीच टकराव चल रहा है और फिर से मिडिल ईस्ट में धमाके की आवाज सुनाई दी गई है, एक बार फिर से मिसाइलें दागी गई हैं। वहीं बारिश की वजह से कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है तबाही को लेकर, और इसी के साथ नेपाल में जो तबाही आई है उसमें मरने वालों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उसने ईरान के मिलिट्री ठिकाने और जिन पर एयर डिफेंस साइट, रडार सिस्टम और समुद्री ठिकाने शामिल हैं, साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा कि यह हमला ईरान के द्वारा मिडिल ईस्ट में कमर्शियल जहाज और अमेरिकी सेना पर हमला करने की कोशिशों के जवाब में किया गया है। ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक एक बार फिर से हुई है और जवाबी कार्रवाई, इसको अमेरिका बता रहा है, अमेरिकी सेना पर हमला करने की कोशिशों के जवाब में ये किया गया है। सेंटकॉम ने ईरान पर हमले का एक नया वीडियो भी जारी किया है। वही एयर डिफेंस साइट्स, रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया, वहां पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक एक बार दोबारा हुई और वहीं अमेरिका ने यह कहा है कि उनकी सेना पर हमला किया गया, जिसके जवाब में अमेरिका ने ये जवाब देते हुए अटैक किया। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर मिसाइलें दागी हैं, हमला किया है, तो एक बार फिर से तनाव मिडिल ईस्ट में बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने बदला लेने की कोशिश की तो अमेरिका और बड़ा हमला करेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका का यह ऑपरेशन होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की ईरान की नाकाम कोशिश और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में किया गया है। ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। बदला लेने की कोशिश अगर ईरान ने की तो उस पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया जाएगा। ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी है। होर्मुज पर बारूदी सुरंगें बिछाने पर यह ऑपरेशन किया गया।

0: हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दे दी है, पोस्ट कर ये धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान ने इसके बाद फिर से कोशिश की तो एक बड़ा हमला ईरान पर किया जाएगा, बदला लेने की कोशिश अगर ईरान करता है तो अमेरिका चुप रहने वाला नहीं है और एक बड़ा हमला ईरान पर किया जाएगा। अमेरिका का ये ऑपरेशन हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की ईरान की नाकाम कोशिश और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में किया गया है, ये ट्वीट कर ट्रंप ने बताया। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अशरफ, एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की गई है, कहां कहां पर ईरान में हमले किए गए अमेरिका द्वारा?
1: पूजा, बिल्कुल, ये पिछले 24 घंटों के दौरान हम कहें कि दूसरा अमेरिका का की तरफ से हमला था। एक महीने की खामोशी के बाद ये हमलों का नया सिलसिला जो है अमेरिका ने ईरान के खिलाफ शुरू कर दिया है और अमेरिका का कहना है कि उन जगहों पर वो हमला कर रहा है ईरान में जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है या जहाजों की आवाजाही पर हमले हो रहे हैं आईएसआई की तरफ से। लेकिन आज के हमले जो अमेरिका की तरफ से किए गए थे वो शिद्दत में ज्यादा थे क्योंकि पूरे साउदर्न ईरान के कई द्वीपों के साथ साथ बंदर अब्बास में भी ये अमेरिका की बमबारी हुई है जिसमें एक शादी की समारोह जो है वो भी एक चपेट में आया है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है जो ईरान का कहना है, उसमें एक बच्चा भी शामिल है। वहां पर शादी का समारोह चल रहा था, वहां पर ये जो है ये एक मिसाइल जो है अमेरिका का गिरा है। लेकिन अमेरिका ईरान ने तुरंत पिछली बार की तरह यहाँ पर भी जो है जवाबी कार्रवाई करके जॉर्डन में 13 मिसाइल दागे हैं। 13 में से 10 मिसाइलों को जो है ध्वस्त करने का दावा जॉर्डन की तरफ से किया जा रहा है जबकि 3 मिसाइल जो हैं वो आसपास गिरे हैं। और आईआरजीसी का कहना है कि माफ कीजिएगा, उन्होंने जो है
0: चलिए अमेरिकी नेवी को हमारे साथ एक बड़ी खबर अमेरिकी हमले को लेकर। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, एक शादी समारोह वाले घर पर अमेरिकी हमला किया गया। अमेरिकी हमले में 5 लोगों की मौत, हमले में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं ये भी सामने आया है। एक शादी समारोह पर भी हमला हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, हमले में दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से सीधी चेतावनी ईरान को दी गई है ट्रंप ने पोस्ट कर कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो उसे कड़ा जवाब जरूर मिलेगा। 5 लोगों की मौत हुई है, ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है अमेरिकी हमले को लेकर। एक शादी समारोह वाले घर पर अमेरिकी हमला हुआ, मिसाइलें गिरी जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के खिलाफ शुरू की है जवाबी कार्रवाई। दरअसल आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों से जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जबकि ईरानी मीडिया ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले की जानकारी दी है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने यह कहा है कि उसने हमलावरों को पछताने वाला जवाब दिया है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया यानी ईरान ने भी हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइलों से जॉर्डन पर अटैक किया गया है। ईरानी मीडिया ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले की जानकारी दी है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी ने कहा है कि उसने हमलावरों को पछतावा दिलाने के लिए यह जवाब दिया है। हालांकि ट्रंप ट्वीट कर चुके हैं कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है कड़ा जवाब दिया जाएगा। अशरफ बानी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अशरफ, ईरान ने भी अमेरिकी बेस पर अटैक किया है और ट्रंप का ये जो नया ट्वीट है कि अगर ईरान जवाब देगा तो कुछ बड़ा अमेरिका करने वाला है, क्या लग रहा है?
1: नहीं, बिल्कुल, अब साफ लग रहा है कि ये जो युद्ध है और एस्केलेट हो रहा है क्योंकि यहाँ इस युद्ध में ना ही ईरान की जीत हो रही है, वो तो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप को कोई जीत नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि जब वो एक तरफ दावा करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के जहाजों के लिए खुली है और वहां से सभी माइंस हटाई गई है, वहां पर आईआरजीसी और ईरान की तरफ से लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर न सिर्फ पकड़ मजबूत की गई है बल्कि पूरी तरह जहाजों की आवाजाही जो है वो रोक दी गई है। आज अगर हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बात करें तो करीब एक महीने के बाद $96 से ऊपर क्रूड ऑयल की दामें अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच गई हैं, वो साफ दर्शाता है कि किस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो गिरफ्त है वो ईरान ने मजबूत कर दी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लाख दावों के बावजूद अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पिछले 6 महीने के दौरान जहाजों की आवाजाही के लिए खोलने में असफल रहा है, वही कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की चिंता भी है। यही कारण है कि वो ईरान पर एक के बाद एक हमला कर रहा है, लेकिन जिस अंदाज से ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है वो साफ कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों की पोल खोलती है जहां पर वो कहते हैं कि हमने ईरान की सभी सैन्य शक्ति भी खत्म कर दी है, उनकी नेवी भी खत्म कर दी है और उनके हथियार भी खत्म कर दिए हैं। लगातार जिस अंदाज से तुरंत ईरान और आईआरजीसी की तरफ से जवाबी कार्रवाई अमेरिकी हमलों की होती है, उससे कहीं ना कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप अपने घर के भीतर यानी अमेरिका में ही गिर गए हैं। और कई सारे जानकार ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की तरह शायद अब ईरान युद्ध भी अमेरिका को सालों तक फंसाता रहेगा यदि जल्दी से जल्द कोई डिप्लोमेटिक पहल यानी बातचीत की प्रक्रिया शुरू ईरान के साथ अमेरिका की नहीं होती है।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात कर लेते हैं नेपाल में आई भीषण तबाही की। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 193 संख्या पहुंच गई है जबकि करीब 4000 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान में अब तक करीब 12000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। नेपाल सरकार ने इस आपदा को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे की चेतावनी संकेत बताया। वहीं आपको भी बता दें कि 8 जिलों में अब तक सबसे ज्यादा मौत दर्ज की गई है जिनमें से चितवन में 321 और नवलपरासी ईस्ट में 216 मौत शामिल है। तो नेपाल में अचानक से आई बाढ़ को भले ही आज 8वां दिन हो लेकिन अभी भी लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है और उनमें एक बड़ी संख्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों की बताई जा रही है। नेपाल के अलावा भारत और चीन की रेस्क्यू टीम सुरंगों में जान पर खेलकर वक्त से रेस लगा रही है लेकिन अभी तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया।
2: नेपाल में सुरंगों का मुंह खोलने के लिए दिन रात काम हो रहा है। सुरंगों के जो मुहाने खुले हैं वहाँ बाहर से लगातार अंदर आवाजें दी जा रही हैं। ये जानते हुए कि मलबे से भरी इन सुरंगों में इतने दिन बाद किसी का जिंदा रहना करीब करीब नामुमकिन है, फिर भी रेस्क्यू टीम के जवान सुरंगों के भीतर मोर्चा संभाले हुए हैं। रसुआगढ़, लांगटांग, चिली में अपर त्रिशूली 3A और अपर त्रिशूली 3B में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेपाल की सुरंग में ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत कठिन परिस्थितियों में चल रहा है। सुरंग में अंधेरा है और पानी भरा हुआ है जिसमें तैरकर नेपाल की रेस्क्यू टीम के जवान जान जोखिम में डालते हुए अंदर जाते हैं। नेपाल की ये वो सुरंगें जिनमें मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। तबाही के 7 दिन बाद अब इसमें पानी भर चुका है फिर भी जिंदगी बचाने की मुहिम नेपाल की सेना चला रही है। उनके जवान पानी भरी सुरंग में किसी तरह अंदर जाते हैं ताकि अगर कोई मजदूर जिंदा हो तो उसे बचा लिया जाए। जिस तरह से हालात हैं उसमें नेपाली सेना के जवानों की बहादुरी की चर्चा चारों तरफ है क्योंकि टनल में मजदूरों को ढूंढने और उन्हें बचाने का काम मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं। अब ये चिमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में चलाए जा रहे हैं। रेस्क्यू अभियान की तस्वीरें देखिए जिनमें सेना के जवान बचाव के काम में लगे हुए हैं। लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भी मजदूरों के फंसे होने की आशंका है जिन तक पहुंचने के लिए नेपाली सेना के जवान जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये देखिए कैसे रेस्क्यू टीम रस्सी के सहारे सुरंग के उस अंधेरे में जा रही है जिसमें 42 मजदूर लापता हैं। मुसीबत में घिरे नेपाल के साथ भारत एक सच्चे दोस्त के तौर पर चट्टान की तरह साथ खड़ा है। भारतीय सेना की टनल रेस्क्यू टीम ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर लांगटांग टनल में बचाव का काम किया। बेहद मुश्किल हालात का सामना करते हुए सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की। टीम लगभग 170 मीटर अंदर तक गई लेकिन आगे रास्ता बंद मिला और वहां उन्हें एक शव मिला। और अब ये तस्वीर देखिए, नेपाल के रसुआ में ये वो लोग हैं जिनके अपने इस बाढ़ में लापता है, जिनके DNA टेस्ट के जरिए शवों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है।
0: वहीं देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। दिल्ली NCR में भी आज बारिश का अनुमान है। IMD ने 17 से ज्यादा राज्यों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो वहीं कई राज्यों में तेज हवाओं, गरज चमक और आकाशीय बिजली का खतरा भी बना हुआ है। तो पहाड़ी इलाकों के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश का असर दिख रहा है। यूपी के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी पहुंचने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और जनजीवन प्रभावित हुआ है।
3: मानसूनी आफत, जहां तक नजर जाए पानी ही पानी। मंदाकिनी का रौद्र रूप, बाढ़ के पानी में डूबे रिहायशी इलाके। चित्रकूट में छतों पर जिंदगी, मदद की आस। जिन सड़कों पर दौड़ती थी गाड़ियां अब वहां नावें चल रही हैं। दुकान मकान और बाजार सब बाढ़ के पानी में समाये। यूपी में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। चित्रकूट में उफनती मंदाकिनी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। सड़कें नदी बन गई हैं, दुकानें और मकान पानी में डूबे हैं। यूपी एमपी को जोड़ने वाला रास्ता भी बाधित है। तस्वीरें चित्रकूट के तरोहार गांव की हैं। गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। लोग छतों पर बैठकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। घरों में पानी घुसने से सामान बर्बाद हो गया है। वहीं लखनऊ में भी तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। आईटी चौराहे के पास पेड़ गिरने से ट्रैफिक थम गया। बांदा में गांव से शहर तक पानी भर गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं और दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार है। नाव संचालन बंद होने से नाविकों की रोजी रोटी प्रभावित है। कई नाविक अब दूसरे काम कर रहे हैं। गंगा के बाद वरुणा भी बस्तियों के लिए आफत बनी है। कई इलाकों में सड़क और घर पानी की चपेट में हैं। यूपी के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बारिश और बढ़ते जलस्तर ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज तक ब्यूरो।
0: पहाड़ी इलाकों में मॉनसूनी आफत ने मुश्किल बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक लैंडस्लाइड और सैलाब ने हालात बिगाड़ दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।
3: कहीं लैंडस्लाइड, कहीं नदियां उफान पर, कोसी शिप्रा के रौद्र रूप से बढ़ी आफत, उत्तराखंड में बारिश बनी मुसीबत। देखिए इन तस्वीरों को, सैलाब किसे कहते हैं, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। ये चमोली के थराली देवाल रोड की तस्वीरें हैं, जहां पहाड़ भर भरा कर सड़क पर आ गिरा। मलबा सीधे सड़क से नदी तक जा पहुंचा। गनीमत रही कोई वाहन या राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया। वहीं नैनीताल में भी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर लैंडस्लाइड से दो कारें मलबे में फंस गईं। कुमाऊं में 141 सड़कें बंद हैं। जगह जगह पहाड़ से मलबा गिर रहा है। भारी बारिश के बीच कोसी नदी भी उफान पर है। तेज बहाव के साथ कोसी का रौद्र रूप डराने वाला है। नदी किनारे रहने वालों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बात करें कैंची धाम के करीब बहने वाली शिप्रा नदी की, तो वो भी उफान पर है। लगातार बारिश से जलस्तर तेजी से बढ़ा है। तेज बहाव के साथ शिप्रा का रौद्र रूप साफ दिखाई दे रहा है। बागेश्वर में भी बारिश और लैंडस्लाइड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। NH 109 समेत 16 मोटर मार्ग बंद है। रवाई खाल के पास मलबा आने से लंबा जाम लगा है। एम्बुलेंस और बसें तक घंटों फंसी रही। टिहरी में भी भारी बारिश के बीच कई जगह भूस्खलन हुआ है। सड़कें बंद है और घनसाली में कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन और आपदा टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं। उधर रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। सोनप्रयाग में बैरियर लगाकर यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में बारिश ने पहाड़ से मैदान तक आफत बढ़ा दी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं सड़कें बंद हैं और कहीं नदियां रौद्र रूप में हैं। कुदरत के इस कहर के बीच प्रशासन अलर्ट पर है।
0: रुक करते इस वक्त एक बड़ी खबर का, अयोध्या से राम मंदिर से जुड़ी खबर। दरअसल मंदिर ट्रस्ट के पहले स्थायी सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई है और आज ट्रस्ट की एक अहम बैठक में 5,585 आवेदनों में 16 उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद तैयार फाइनल शॉर्टलिस्ट पर चर्चा होगी और इसके साथ ही खाली पदों पर नियुक्ति, कमेटियों के पुनर्गठन और सीईओ महासचिव के अधिकारों को लेकर ट्रस्ट डीड में बदलाव जैसे अहम मुद्दों पर भी फैसला हो सकता है। तो आज एक अहम बैठक ट्रस्ट की होने वाली है।
4: इन तीनों ने भी अत्यंत परिश्रम पूर्वक 5,500 लोगों में से एक पद के लिए 5,500 आवेदन पत्र आए। उनमें से धीरे धीरे प्रोफेशनली चयन करते करते और हम लोगों को आज उनके सारे इस परिश्रम का फल अर्पित किया है। भगवान श्री राम लला के चरणों में इसको रखेंगे, जिसमें इस विश्व के अनन्य श्रेष्ठतम मंदिर के उत्तम व्यवस्थापन के लिए सीईओ की नियुक्ति करनी है, उसमें तीन महानुभावों का इन लोगों ने हमें सुझाव दिया है, इसमें से चयन जो होना है हमारे न्यास की बैठक में होगा।
0: चलिए अब बात राहुल गांधी की, जिन्होंने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, लेकिन उससे पहले कुछ आपको अपडेट दे देते हैं इसी से जुड़ी, क्योंकि आज एक अहम बैठक ट्रस्ट की होने वाली है। पहले स्थायी सीईओ की नियुक्ति होगी राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, ये बड़ी खबर आपको हमने बताई। आज इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी और देखना होगा कि सीईओ का नाम कब तक सामने आता है, किसको लेकर, क्योंकि जो लिस्ट शॉर्टलिस्ट हुई है उन पर चर्चा की जाएगी। फाइनल लिस्ट आज बनेगी और उस पर नाम सामने आएगा। सीईओ के 5585 का आवेदन है, जिसमें 16 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया और फाइनल शॉर्टलिस्ट पर फैसला आएगा। समर्थ हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। समर्थ, कब तक लग रहा है नाम सामने आ जाएगा? आज बैठक में कई और मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। समर्थ
5: पूजा, देखिए आज का दिन अयोध्या के लिए काफी अहम होने वाला है। बैठक दो प्रक्रियाओं में, दो चरणों में होगी। पहली बैठक 2 से 3 बजे तक होगी और दूसरी बैठक 4 से 6 बजे तक होगी। इसमें यह अंदेशा है कि सीईओ का नाम आज आखिरकार सामने आ सकता है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि तीन जो नाम है जो कि कमेटी ने डिसाइड किए हैं वो कल ट्रस्ट को सौंप दिए गए हैं। अब उन तीन नामों में से एक नाम कौन होगा जो मंदिर का सीईओ बनेगा, इसका निर्णय, आखिरी निर्णय ट्रस्ट की तरफ से लिया जाएगा। इसके अलावा ट्रस्ट को जो है आज एक नया तरीके से प्रवक्ता मिलने वाला है, पीआरओ मिलने वाला है। उन ट्रस्ट को लगता है कि कई अफवाहें इस बीच में हुई हैं और सटीक जानकारी ट्रस्ट को लेकर निकल सके, इस वजह से वो एक पीआरओ को रखने जा रहे हैं। इसके अलावा एक ट्रस्ट डीड बना रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं कई प्रशासनिक लेवल पर चेंजेस अब देखे जाएंगे, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे वो अन्य कारणों की वजह से हो। लेकिन एक बड़ी बात है कि सीईओ में राजेश पांडे का नाम प्रमुखता से चल रहा है।
0: ठीक है, अन्य दो नाम भी बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं सरकारी बैंक में कामकाज और लंच ब्रेक को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन सहारनपुर के पंजाब नेशनल बैंक से 17 करोड़ रुपए के नकली नोट मिलने के दावे ने हड़कंप मचा दिया। आरोप है कि बैंक में पार्ट टाइम हाउसकीपर को खजाने की गड्डियां संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद नकली नोट बैंक के खजाने तक पहुंच गए।
6: ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की सिविल लाइंस की पीएनबी ब्रांच है, जिसमें कहा जा रहा है कि 17 करोड़ रुपए से ज्यादा के नकली नोट बैंक के खजाने में जमा कर दिए गए। सरकारी बैंक में इतना बड़ा गबन होने का दावा है, लेकिन इसकी खबर न बैंक के किसी कर्मचारी को लगी, न ही किसी अफसर को कुछ पता चला। आम आदमी के पैसे की क्या ये लूट नहीं है, जिसकी कहानी सरकारी सिस्टम के नाकारेपन से खबरदार करती है? सवाल करती है, क्या सरकारी बैंक भगवान भरोसे चल रहे हैं? क्योंकि बैंक में करोड़ों रुपए के बंडलों को संभालने का काम एक पार्ट टाइम हाउसकीपर विशाल कुमार से करवाया गया, जिसे नियमों को ताक पर रखकर करेंसी चेस्ट यानी बैंक के खजाने में करोड़ों रुपए की नोटों की गड्डियां व्यवस्थित करने का काम दिया था, जिनमें गले कटे और दूसरी तरह के नोट थे। सहारनपुर के पंजाब नेशनल बैंक की इस ब्रांच को ये रकम आरबीआई की जयपुर करेंसी चेस्ट में भेजनी थी। 5 अगस्त को ये रकम भेजी गई तो 4,30,900 रुपए कम मिले। फौरन इसकी जानकारी मेरठ पीएनबी के अफसरों को दी गई। पीएनबी ने मेरठ के चीफ मैनेजर को जांच के लिए सहारनपुर भेजा। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो पार्ट टाइम हाउसकीपर विशाल कुमार नोटों की गड्डियों से रुपए निकालता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उसे हटाकर चोरी का केस दर्ज किया गया। गड़बड़ी सामने आने के बाद बैंक ने 9 अगस्त को करेंसी चेस्ट का ऑडिट कराया तो जांच में दावा होता है कि 17 करोड़ रुपए के नकली नोट मिले।
0: सुपर हिट में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: एक तो एक
10: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
2: असली शहद असली स्वाद।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
2: Money, money, money, money, every month.
3: Soch badlo aur bank bhi.
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए.
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश.
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स.
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स.

0: అశోకుడు.
1: శ్రామ్.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
2: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
1: असली शहद असली स्वाद।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
2: Money, money, money, money, every month.
3: Soch badlo aur bank bhi.
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए.
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश.
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स.
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
8: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट.
8: जेके मैक्स.
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट. जेके मैक्स पेंट खुशियों के रंग.

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
5: In association with
6: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
7: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
9: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
8: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
9: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
10: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
8: मैं आशुतोष मिश्रा,
10: रोहित सिंह,
9: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।

आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सामरिक ठिकानों पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले, एयर डिफेंस रडार और समुद्री ठिकाने तबाह। तेहरान ने भी जॉर्डन पर दागी मिसाइल, अमेरिकी बेस को बनाया निशाना। नेपाल में मौत का आंकड़ा 1000 के पार, अब तक करीब 12000 लोग बचाए गए। नेपाल ने आपदा को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे की चेतावनी बताया। आज राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ का नाम आ सकता है सामने, शॉर्टलिस्ट हुए 3 में से 1 नाम का होगा ऐलान। सर्च कमेटी ने न्यास को सौंप दी रिपोर्ट। आज नासिक दौरे पर जाने से पहले राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, कहा महाराष्ट्र से बंगाल तक हुई वोट चोरी। खड़गे ने भी पोस्ट से किया प्रहार। दिल्ली में चावल चोरी मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस, आम आदमी पार्टी का दावा 5 करोड़ किलो चावल की चोरी, मंत्री सिरसा की भूमिका की जांच की मांग।

जॉर्डन से बहरीन तक दहला मिडिल ईस्ट, अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने किया पलटवार। ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया, साथ ही तेहरान ने चेतावनी दी कि वो खाड़ी से तेल के निर्यात को रोक दिया। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कड़ी चेतावनी, बदला लिया तो अमेरिका करेगा और बड़ा हमला। अमेरिका ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ने से कच्चे तेल में $4 प्रति बैरल से ज्यादा का उछाल, ब्रेंट $94 के पार पहुंचा। ईरानी मीडिया के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य के पास तटीय इलाके सिरिक में शादी समारोह पर हमला, 5 की मौत और 50 से ज्यादा घायल। IRGC का जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा, RQ-4 और MQ-9 ड्रोन के हैंगर को बनाया गया निशाना। IRGC ने कई ड्रोन नष्ट किए, अमेरिकी कर्मियों की मौत और सैन्य ठिकानों के ढांचे में आग लगने का दावा। ईरान की अमेरिका की चेतावनी, सैन्य कार्रवाई जारी रही तो भुगतना पड़ेगा और भारी नुकसान। जॉर्डन ने 13 में से 10 मिसाइलें रोकी, अमेरिकी सैनिकों की मौत का IRGC दावा अमेरिका ने खारिज किया। मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका ने फिर से जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, ईरान ओमान शिपिंग फ्रेमवर्क बनाने में जुटे। नेपाल में बाढ़ भूस्खलन से मौत का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा, 3916 लापता। नेपाल में रसुवा फ्लैश फ्लड पीड़ितों की पहचान के लिए भारत की 19 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने संभाला मोर्चा, DNA सैंपल की जांच शुरू। नेपाल बाढ़ में लापता लोगों की पहचान के लिए परिजनों के DNA सैंपल लिए जा रहे, पुलिस अस्पताल में जांच प्रक्रिया जारी। नेपाल के नुवाकोट में बाढ़ से दबे घर से 24 शव बरामद हुए, तीर्थयात्रियों के होने की आशंका, मां बेटी का शव भी मिला। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों की जानकारी, 406 शिकायतें मिली, 206 लोग लौटे, 60 अभी भी लापता। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, त्रिशूली में मलबा हटाने में जुटी नेपाली सेना। नेपाल में बाढ़ पीड़ितों का सामूहिक अंतिम संस्कार शुरू हुआ, DNA सैंपल और टैगिंग के जरिए शवों की पहचान की कोशिश। नेपाल के ग्लेशियर बाढ़ भारत के लिए चेतावनी, हिमालय में तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर, विशेषज्ञ ने चेताया। हिमालय में बढ़ रहा GLOF और हैंगिंग ग्लेशियर का खतरा, अगले 70 से 100 साल में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है तापमान। नेपाल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, राहत कार्यों में करेंगे सहयोग। आतंकवाद के खिलाफ SCO में PM मोदी का कड़ा रुख, कहा पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना जरूरी, सीमा पार पनागाहों को कड़ा संदेश। PM मोदी के जन्मदिन पर BJP का मेगा प्लान, वडनगर से वाराणसी तक निकलेगी खास यात्रा, दोनों शहरों से रवाना होंगी 10-10 टीम, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन। दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन पर JP नड्डा का बड़ा ऐलान, राज्यों में दर्ज सभी FIR होंगी वापस, CJI ने मार्च वापस लेने के फैसले का स्वागत किया। राहुल गांधी का BJP और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, कहा महाराष्ट्र से बंगाल तक हुई वोट चोरी, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश। राहुल गांधी का फिर से सबसे तीखा प्रहार, बोले कि किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है BJP, चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी का लगाया आरोप। राम मंदिर ट्रस्ट के CEO के नाम का आज ऐलान संभव, 5525 अर्जियों की जांच के बाद 3 नाम शॉर्टलिस्ट, सर्च कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। राहुल गांधी आज नासिक में कांग्रेस की बैठक को करेंगे संबोधित, संगठन की तैयारियों और आगामी रणनीति पर मंथन। नासिक में आदिवासी छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी, हॉस्टल की समस्याओं और 17 दिन की भूख हड़ताल पर होगी चर्चा। UPPET 2026 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 7 सितंबर तक कर सकेंगे 2026 के ऑनलाइन आवेदन। दिल्ली में चावल चोरी मामले में CBI ने दर्ज किया केस, आम आदमी पार्टी का दावा 5 करोड़ किलो चावल की चोरी, मंत्री सिरसा की भूमिका की जांच की मांग। मुंबई में अस्पताल में अन्ना हजारे से मिले CM फडणवीस, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। फडणवीस ने अन्ना हजारे को दी कुखड़ी सिंचाई परियोजना की जानकारी, संशोधित खर्च को कैबिनेट की मंजूरी। जालना में ब्राह्मण समाज की विभिन्न मांगों को लेकर ब्राह्मण समाज के अनशनकर्ता दीपक रणवरे का आमरण अनशन, वहीं ब्राह्मण समाज के बच्चों की शिक्षा मुफ्त करने की प्रमुख मांग। नीट आंदोलन को अभिजीत दीपके ने बताया सफल, SC के फैसले के बाद 5 सितंबर का प्रस्तावित आंदोलन रद्द। छात्रों पर केस वापसी और आत्महत्या पीड़ित परिवारों को मुआवजा, अभिजीत दीपके ने कहा बड़ी जीत। छत्रपति संभाजीनगर में रैपिडो के खिलाफ ऑटो चालकों का मोर्चा, बाइक ट्रैकर सेवा बंद करने की मांग। ऑटो चालकों ने RTO के बाहर किया प्रदर्शन, अवैध यात्री परिवहन पर कार्रवाई और किराया बढ़ाने की मांग। महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा पर FDA की बड़ी कार्रवाई, 3 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित, सांगली में 165 लीटर दूध नष्ट, अकोला में ब्लिंकिट का लाइसेंस भी निलंबित। मुंबई में FDA का बड़ा एक्शन, मलाड के दिल्ली स्वीट हाउस और कुर्ला के गुलजार मोहम्मद होटल में लाइसेंस सस्पेंड। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इसरो के प्रोपेलेंट कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा अब CISF के हवाले, बना राज्य का 32वां महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा, PSLV, GSLV और LVM3 जैसे लॉन्च व्हीकल्स के लिए जरूर। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी, सोलन में नदी नाले उफान पर, कई जगहों पर सड़कें बनी सैलाब, भारी मलबे और बड़े पत्थरों से सड़कें बाधित, लोगों की बड़ी मुश्किलें, 4 सितंबर तक बारिश से राहत के आसार नहीं। उधर काशी में बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन, पहाड़ी मलबे में फंसे यात्री, बस को निकाला गया सुरक्षित।
मध्य प्रदेश के बाणसागर डैम के गेट खुलने की वजह से रोहतास में बढ़ा। सोन नदी का जलस्तर, नदी किनारे रहने वालों को दूर जाने की सलाह। बिहार के नवगछिया में गंगा का कहर, राघोपुर में कटाव से हड़कंप। मंत्री विधायक ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भारी बारिश के कारण कालाकोट नदी उफान पर, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। देहरादून और टेहरी में ऑरेंज अलर्ट, रिस्पना नदी में बढ़ा जलस्तर। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में तेज लहरों की चपेट में आए क्रेटा गाड़ी, एसडीआरएफ ने घायल महिलाओं को रेस्क्यू किया, दो लोगों की गई जान। बिहार के भागलपुर जिले में आई भारी बाढ़, मदरौनी गांव के इलाके हुए प्रभावित। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के खटीमा शहर में जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर जलजमाव की स्थिति। चंबा में बाढ़ में फंसे युवक के लिए देवदूत बनी महिला, दुपट्टे से बाइक सवार की बचाई गई जान, लोगों ने की महिला के साहस की सराहना। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मूसलाधार बारिश से अल्मोड़ा जिले में लैंडस्लाइड, रेस्क्यू में जुटी एसआरपीएफ की टीम। झारखंड के गढ़वा जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। शहर के कई घर, दुकानों और स्कूल में घुसा बारिश का पानी। नैनीताल में बारिश का रौद्र रूप, लैंडस्लाइड में दो कार फंसी। कुमाऊं में 141 सड़कें बंद, नदी नाले उफान पर। नैनीताल जिले में हो रही भारी बारिश के बीच उफान पर कोसी नदी, नदी किनारों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। कैची धाम के करीब उफनाई शिप्रा नदी, भारी बारिश से बढ़ा जलस्तर। गाजीपुर में गंगा उफान पर, पार किया गया खतरे का निशान, डीएम ने जारी की एडवाइजरी। उत्तराखंड में लगातार बारिश से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बागेश्वर में नेशनल हाईवे ने 109 सहित 16 मोटर मार्ग बंद, एम्बुलेंस सहित सैकड़ों वाहन सड़क खुलने के इंतजार में। लाहौल में चंद्रभागा के उफान में जोबरंग पुल पर फंसी बोलेरो, करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दो युवक को निकाला गया। पहलगाम में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, बाजार होटल जलमग्न, जान बचाने के लिए भागे लोग। वडोदरा में ट्रेलर और एलपीजी टैंकर के बीच भीषण टक्कर, एलपीजी टैंकर ने संतुलन खोकर सड़क पर ही पलटा, वन वे किया गया हाईवे। नागपुर में हत्या, लूट, चोरी के 4 आरोपी बाल सुधार गृह में भागे, शौचालय की खिड़की के जरिए हुए फरार। फरीदाबाद में स्कूल की छत से 11वीं की छात्रा ने लगाई छलांग, छात्रा के परिजनों का स्कूल का आरोप कि करीब 4 घंटे तक सजा के तौर पर क्लासरूम से बाहर खड़ा था। जयपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद थाने के बाहर धरना, शव लेने से किया इनकार, गला घोटकर हत्या का आरोप। भोपाल में फर्जी आईएएस तृप्ति सिंह राजपूत का नया वीडियो वायरल, सहेलियों संग बोली, हमारी हरकतों को देखकर कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हम तीनों आईएएस अफसर हैं। इंदौर में बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन पड़ा भारी, कार रोक कर काटा केक, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने सिखाया सबक। जालना में एसआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या की कोशिश। अयोध्या में लक्ष्मी स्वीट हाउस में भीषण आग लगी, सिविल लाइन इलाके में मचा हड़कंप। चंद्रपुर में गृहदोष दूर करने के बहाने तांत्रिक का घिनौना खेल, पति को सामान लेने भेजा, पत्नी से किया दुष्कर्म। उन्नाव में 10 फीट गड्ढे के बाद फिर से हुआ गंगा में फिर से गड्ढा हुआ एक्सप्रेसवे पर 7 फीट गहरा गड्ढा। बिहार के अंचल कार्यालय में मारपीट, सीओ और प्रधान लिपिक के बीच हाथापाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पंजाब के फाजिलका में बेटे के मां को पीट पीट कर मार डाला, आरोपी ने अपनी मां के सिर पर प्रेशर कुकर से कई बार वार किया। जयपुर में थार एंडेवर की रफ्तार ने मचाया कहर, 50 फीट दूर जाकर गिरा ई रिक्शा, कांग्रेस नेता की पत्नी के नाम पर कार। कौशाम्बी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा 13 पहुंचा, एसपी ने मौत की पुष्टि की। हादसे में एक परिवार के 4 लोगों ने गवाई जान। कौशाम्बी धमाके के आरोपी नौशाद आदिल के घर पर पीडीए की टीम का चला बुलडोजर, इसी मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ था विस्फोट। ऐवान का नया गाना हुआ रिलीज, 11 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म मिर्जापुर द मूवी। एडवांस बुकिंग में बंपर कमाई, 1800 में बिक रही है टिकट। आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन भारत में 15 से 20 करोड़ की नेट कमाई की। फिल्म हनुमान अंश की ताबड़तोड़ कमाई, 1,80,00,000 में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कायम किया रिकॉर्ड, अब तक 45 करोड़ से ज्यादा की कमाई। यश की फिल्म टॉक्सिक की बॉक्स ऑफिस पर धीमी हुई रफ्तार, भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब 264 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करीब 304 करोड़ रहा। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज स्टारर फिल्म दायरा का ट्रेलर रिलीज हुआ, 18 सितंबर को दस्तक देगी फिल्म। वैश्विक बेइज्जती के बाद होश में आया पाकिस्तान, एससीओ समिट की एडिट की हुई ग्रुप फोटो हटाई, पाक पीएम ऑफिस के ऑफिशियल हैंडल से जारी हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाली नई तस्वीर। एससीओ की बैठक में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान का बड़ा बयान, कहा अमेरिका समझौते का पालन करेगा तभी हॉर्मुज से आवाजाही होगी बाहर। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया का बड़ा बयान, कहा जापान में अमेरिका मिसाइलों की तैनाती रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। यूरोपीय रक्षा मंत्रियों की आयरलैंड में अहम बैठक, यूक्रेन को समर्थन और रक्षा तैयारियों को लेकर चर्चा। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूस का भीषण हमला, अलग अलग हमलों में एक भारतीय समेत 12 लोगों की मौत, 3 बच्चों समेत 13 लोग घायल। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन में खुले स्कूल, राजधानी कीव में जेलेंस्की ने स्कूल का किया दौरा,
रूस को बताया घृणित। गाजा में इजरायली सेना का भीषण हमला, हमले के बाद इधर उधर भागे फिलिस्तीनी, चार लोगों की मौत, कई घायल। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री केर स्टार्मर छोड़ेंगे सांसद का पद, 11 साल बाद खत्म होगा संसदीय करियर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः काल 6:12 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय 12:00 से 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, करियर के प्रयास सफल होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग हैं, मान सम्मान मिलेगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कर्क राशि, करियर में बदलाव के योग हैं, यात्रा हो सकती है, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

समस्याएं हो सकती हैं, करियर में लापरवाही ना करें, खर्चे बढ़ सकते हैं। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोज।

कार्य होंगे, विवाद तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

समस्या हो सकती है। निर्णय लेने में सावधानी रखें, ऑफिस में विवादों से बचें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: उत्तर प्रदेश की सियासी जंग अब आर्टिफिशियल अवतार में दिखने लगी है, क्योंकि इसे बाकायदा अब अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति के तहत वार पलटवार का हिस्सा बता दिया है।
1: सरकार के लोग मिलकर के उनको और बना रहे हैं। तो किसी ने हमें एक बहुत अच्छा वीडियो एआई का बना करके भेजा है, पहले हम अपना दिखाते हैं जो हमारे लिए बनाया उन्होंने, जिससे उनका जब वो देखें खुद का तो वो बुरा ना लगे उन्हें।

0: अखिलेश यादव ने रिपीट कर करके ये वीडियो अपने दफ्तर में 3 बार चलाया और बीजेपी को चेतावनी भी दी।
1: ये बच्चों के खेल न खेले सरकार, सरकार बचपना न करे। और हद तो तब हो गई कि जब डिंपल के लिए भी बना रहे हैं और नाम उनका भी ले जा रहे हैं। घोटाला जमकर था
0: तुमने करा। अखिलेश ने बीजेपी के समर्थकों की ओर से बनाए जा रहे AI वीडियो की सीरीज का जिक्र किया, जो लगातार उन पर चुनावी हमले कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी दफ्तर में CM योगी को लेकर बनाए गए AI वीडियो दिखाने के बावजूद सोशल मीडिया पर ऐसे अखिलेश विरोधी वीडियो की रफ्तार कम नहीं हुई है। दरअसल इस बार के चुनाव में सभी दलों का जोर जेन जी पर है, जिस पर सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा प्रभाव है। सभी दल ऐसे वीडियो से उसी जेन जी वोटर वर्ग को प्रभावित करने पर तुले हैं।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ का हो सकता है ऐलान। शॉर्टलिस्ट हुए तीन में से एक नाम का होगा ऐलान। सर्च कमिटी ने न्यास को सौंप दी है रिपोर्ट। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी रेस में शामिल। आज नासिक दौरे पर जाने से पहले राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप। कहा महाराष्ट्र बंगाल तक हुई वोट चोरी। खड़गे ने भी पोस्ट किया प्रहार। महाराष्ट्र में खटपट की खबरों के बीच आज दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कैबिनेट बैठक में निर्धारित रहने से उठे सवाल। शिंदे ने बताया अफवाह। कहा वकीलों से मिलने आया हूं। ईरान के सामरिक ठिकानों पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले। एयर डिफेंस, रडार और समुद्री ठिकाने तबाह। तेहरान ने भी जॉर्डन पर दागी मिसाइल। अमेरिकी बेस को बनाया निशाना। राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। त्रासदी से मौत का आंकड़ा 1000 के पार। करीब 4000 लापता, 12000 लोग बचाए गए। नेपाल ने बताया जलवायु परिवर्तन को आपदा की वजह।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईरान में अमेरिकी हमले के नए दौर की। बताएंगे कहां कहां मची है तबाही। सियासी खबरों का भी जिक्र होगा। महाराष्ट्र में एसआर पर हो रही है सियासत और साथ ही राहुल गांधी का नासिक दौरा भी इस बुलेटिन में शामिल होगा। खबरें कौशाम्बी के अवैध पटाखा फैक्ट्री से जहां पर बताएंगे कि कैसे आरोपियों पर कस रहा है प्रशासन का शिकंजा। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हॉर्मुज में एक बार फिर अमेरिकी हमलों की खबर के साथ। ताजा एयर स्ट्राइक में ईरान के सिरिक में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है जबकि 50 से ज्यादा जख्मी लोग बताए जा रहे हैं। कई अन्य इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला बोला। वहीं अमेरिका और ईरान दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ हमले तेज कर दिए। अमेरिका ने कहा है कि उसके हाल ही में वो ईरानी हमलों का जवाब दिया गया है और ईरान ताजा हमलों को लेकर यह कह रहा है कि इसका अंजाम अमेरिका भुगतेगा। कुल मिलाकर यह स्थिति गंभीर है। तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कैसे अमेरिका और ईरान में फिर से हमले तेज हुए हैं और कहां कहां तबाही मची है।

0: एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार हॉर्मुज सुलग उठा है। ईरानी शहरों में अमेरिका ने भारी बमबारी की है, कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के सिरिक शहर की ये तस्वीरें देखिए। अमेरिकी हमले के बाद यहाँ जबरदस्त तबाही हुई है। बताया जा रहा है कि सिरिक में हुए हमले में एक शादी कार्यक्रम में शामिल 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य जख्मी हैं। अमेरिका ने बीती रात ईरान पर हवाई हमलों का नया दौर शुरू किया। पिछले कुछ हफ्तों में तनाव का सबसे गंभीर स्तर है। हमले को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी, कहा कि IRGC के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ये हमले हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों और उस इलाके में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हाल ही में किए गए हमलों की कोशिश का जवाब है। समाचार एजेंसी एक्सियोस की माने तो अमेरिका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान के दक्षिणी पूर्वी चाबहार, कोनारक, बंदर अब्बास, केशम द्वीप, जास्क और सिरिक पर हमले किए। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA ने सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया है कि दक्षिण पूर्वी चाबहार और कोनारक के इलाकों में 4 प्रोजेक्टाइल गिरे हैं। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी, कहा कि अमेरिका को अपने इन हमलों पर पछतावा होगा। ईरान आरोप लगा रहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के दक्षिणी तट पर कई जगहों पर बमबारी की, जिसमें कई नागरिक ठिकाने भी शामिल थे। IRGC ने धमकी दी है कि करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। दावे के मुताबिक पहली जवाबी कार्रवाई में अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी हमलावर सेना के 50वें एडवांस्ड MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। आज तक ब्यूरो।
1: तो आपने देखा किस तरीके से सिरिक में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले में 5 लोग की जान चली गई। इसको लेकर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। ईरानी लेगो एनिमेशन टीम एक्सप्लोसिव मीडिया ने एक एनिमेटेड वीडियो शेयर किया, इसमें हॉर्मुज गन प्रांत के सिरिक में एक शादी पर अमेरिकी हमले को दिखाया गया। उधर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने तीसरे चरण में जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी मीडिया ने फुटेज जारी किया जिसमें वो हमलावर को सजा ऑपरेशन के तीसरे चरण के दौरान दे रहे हैं। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइली हमले बता रहे हैं। ईरान के IRGC का कहना है कि उसने ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, देखिए अमेरिका तो पहले से ही इस तरीके के हमले जारी रख रहा था, लेकिन इस बार जो ताजा हमले हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश ईरान को ये कि अभी आप आराम से आसानी से बैठ नहीं सकते हैं, हम आपका जीना मुहाल करेंगे। तो ईरान ने भी उसका जवाब देने की ठानी है।
2: बिल्कुल नेहा, और अगर आप देखें तो बीते 6 महीने के दौरान अमेरिका की जब से कार्रवाई ईरान के खिलाफ शुरू हुई है, सैनिक कार्रवाई, इस 6 महीनों के दौरान अभी तक तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो किसी सैन्य कार्रवाई से कोई समाधान निकला है, ना बातचीत से किसी तरीके का कोई नतीजा निकल पाया है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो कि एक अहम कमर्शियल रूट है दुनिया की शिपिंग के लिहाज से, एनर्जी सप्लाई के लिहाज से, वो बीते 6 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। उसमें जो आवाजाही है वो सामान्य नहीं हो पा रही है। ये सारा झगड़ा आखिर शुरू क्यों हुआ, और बीते अगर आप एक हफ्ते के घटनाक्रम को देखें तो खासतौर पर अमेरिका का डबल अटैक ईरान के खिलाफ देखने को मिल रहा है। पहला जो आर्थिक स्थिति के ऊपर है, यानी जो अमेरिका का आउटकास्ट कैंपेन है, कल ही बयान आता है अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का, और वो ये सीधे सीधे धमकी देते हैं कि हमें पता है कि ईरान के जो अधिकारी हैं, IRGC के जो अधिकारी हैं, ईरान के जो नेता हैं, उनके फॉरेन एसेट्स कहाँ कहाँ हैं, और हम इसको चलने नहीं देंगे किसी भी हालत में। और दूसरे साथ साथ अमेरिका का बीते 2 दिनों के अंदर लगातार, पहले लरक आयरलैंड के ऊपर की गई अमेरिका की कार्रवाई, और अब जो अमेरिका का दक्षिण, जो ईरान का दक्षिणी छोर है, खासतौर पर जो कोस्ट लाइन है ईरान की, उसको टारगेट की करते हुए की गई सैनिक कार्रवाई है। इन दोनों कार्रवाइयों के जरिए अमेरिका न केवल जो मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी है जो चरम दबाव की नीति है वो दिखाना चाहता है, बल्कि एक और चीज देखने को मिल रही है जो असली झगड़ा है अब वो आकर फंसा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि अमेरिका ये दावा कर चुका था एक हफ्ते पहले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माइन मुक्त कर दिया गया है, अब वो कमर्शियल जहाजों के लिए खुली है। लेकिन अब जो कार्रवाई की जा रही है उसमें अमेरिका की तरफ से ये कहा गया नेहा कि ईरान एक बार फिर माइंस चुकी बिछाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हम ये सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना अभी भी एक टग ऑफ वॉर बना हुआ है, न तो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा पाया है और न ही अभी तक ईरान ओमान के साथ मिलकर कोई प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था बना पाया है जिससे जिसको अमेरिका भी माने और जिसके बाद ये रास्ता खुल पाए।
1: ठीक है, इस बीच जॉर्डन में जो अमेरिकी बेस पर हमले हुए हैं उसमें अमेरिका को कितनी क्षति पहुंची है?
2: देखिए अमेरिका की तरफ से तो यही कहा जा रहा है नेहा कि जो ईरान की तरफ से कार्रवाई की गई थी, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी, उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है जॉर्डन के अंदर। और खासतौर पर बीते 2 दिनों के दौरान जॉर्डन के अंदर जो अमेरिका के बड़े सैनिक बेसिस हैं उनको टारगेट किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स ईरानी रिपोर्ट्स के अंदर दावा किया गया था कि यूएई को भी टारगेट किया गया है, लेकिन ये बात जरूर है कि हाल ही में यूएई के तमाम जो यूएस मिलिट्री बेसिस हैं और उसके साथ साथ जो अमेरिकी कॉन्सुलेट्स और अमेरिकी दूतावास हैं उन्होंने एक अलर्ट जारी करते हुए खाड़ी के क्षेत्र में, पश्चिम एशिया के क्षेत्र में जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं उनको आगाह किया है, उनको एक उनके लिए एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि आप सभी लोग अतिरिक्त सावधानी बरतें, खासतौर पर जो अमेरिकी दूतावास और कॉन्सुलेट्स के कामकाज हैं उनके अंदर भी कुछ जो है कटौती की गई है एहतियात के तौर पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को बड़ी धमकी दी है, उन्हें रूसी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाले विमान कंपनियों को, हर बीमा कंपनी को और हर शख्स को चेतावनी दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हवाई क्षेत्र पूरी तरह से असुरक्षित होता जा रहा है। धमकी देते हुए ज़ेलेंस्की ने यहां तक कहा कि रूस के आसमान में इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन होंगे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़ेलेंस्की के शब्दों में, हम यूक्रेन में नहीं चाहते कि बेगुनाह लोगों की जान जाए, इसलिए हम अपने सहयोगियों को चेतावनी दे रहे हैं। रूस के आसमान में सुरक्षित दिन अब खत्म हो चुके हैं।

0: बात राम मंदिर की करेंगे। यहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसकी जानकारी देते हुए ट्रस्ट ने कहा है कि 5,585 आवेदनों की समीक्षा के बाद 16 लोगों के इंटरव्यू लिए गए। फिर मंगलवार को चयन समिति ने 3 योग्य उम्मीदवारों के न्यास को नाम सौंप दिए। अब अंतिम निर्णय और आधिकारिक घोषणा न्यास करेगा। माना जा रहा है कि इसका ऐलान आज किया जा सकता है। आज राम मंदिर ट्रस्ट की एक दिवसीय बैठक हो रही है मणिराम छावनी में। 2 अलग अलग सत्रों में यह बैठक होगी। पहले सत्र में दोपहर 2 बजे विशेष बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में ट्रस्ट के रिक्त 3 पदों को भरने पर सबसे पहले विचार किया जाएगा और इसके बाद पूर्णकालिक महासचिव के नाम पर चर्चा होगी। मुख्य बैठक दूसरे सत्र में शाम 4 बजे से होगी। बैठक में धार्मिक न्यास समिति, निर्माण समिति, वित्त समिति और ऑडिट समिति समेत मैनेजिंग कमेटी के पुनर्गठन पर फैसला होगा। और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के नाम की चर्चा है, उसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश पांडे का नाम सबसे आगे चल रहा है। बिहार के आईपीएस रह चुके हैं परेश सक्सेना, उनका भी नाम सामने आ रहा है। यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस दिनेश चंद्र के नाम की चर्चा है। 3 सदस्य समिति ने अपनी रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी है। आज सीईओ पद के लिए नाम का ऐलान हो सकता है। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ 3 नाम सामने आ रहे हैं, फ्रंट रनर कौन है?
1: नहीं, देखिए तीनों ही नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश पांडे का भी नाम प्रमुखता से आगे चल रहा है, क्योंकि उनका उनके साथ बेनिफिट ये है कि वो यूपी में रहे हैं, उन्होंने यूपी को नजदीक से देखा है, प्रशासनिक स्तर पर भी उनकी दखल पहले भी रही है, तो कुल मिलाकर उनका नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा 2 और जो नाम है जिनका आपने जिक्र किया, उनके नामों की भी चर्चा है। हालांकि एक बंद लिफाफा कल कमेटी ने ट्रस्ट को दे दिया है। अब उस बंद लिफाफे में वो 3 नाम कौन से हैं ये अभी कोई नहीं जानता, ट्रस्ट ही जानता है। और ट्रस्ट की जो बैठक आज 2 बजे से होनी है, जो लगभग 5-6 बजे शाम तक चलने वाली है, उसके बाद एक आधिकारिक तौर पर ट्रस्ट ऐलान करने वाला है उस नाम का। सबसे अहम बात है सीईओ बनने के बाद जो जिम्मेदारियां होनी है उसमें भी कुछ फेरबदल किए गए हैं प्रशासनिक लेवल पर और भीतरी लेवल पर। जो ये घटना हुई, जिस तरीके से प्रकरण सामने आया, उसको लेकर वो चीजें दोबारा ना हो, उसको लेकर सिक्योरिटी कंसर्न भी है। सिक्योरिटी में भी काफी कुछ चेंज बदलाव करे जाएंगे। इसके अलावा एक पीआरओ जो है उसका भी आज उस नाम का भी ऐलान हो जाएगा। जो भी गतिविधि मंदिर में हो रही है आधिकारिक जानकारी उस पीआरओ के माध्यम से ही दी जाएगी, जिसको मुख्य प्रवक्ता का भी एक तरीके से नाम दिया जा रहा है। इसके अलावा डीड जो है टेम्पल ट्रस्ट की, उसमें बदलाव होगा। आपको बता दूं 2020 के बाद से सूत्रों के मुताबिक पहली दफा है जब डीड में ट्रस्ट की तरफ से बदलाव किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद गोविंद गिरी ने कल दी है प्रेस को। तो कुल मिलाकर ये कुछ बड़ी चीजें हैं जो आज की ट्रस्ट की बैठक में होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है नजरें हैं कि आखिर अगला सीईओ अयोध्या का कौन होगा, और उस सीईओ के पास सबसे बड़ी बात है क्या चीजें होंगी, पावर्स क्या होंगी। हालांकि ट्रस्ट के सूत्र बताते हैं की कोशिश यही रहने वाली है कि सरकार की दखल इसमें ना हो, लेकिन अब देखना ये होगा निर्णायक फैसला क्या होता है, क्योंकि कल जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है उस वक्त डीएम जो अयोध्या के हैं वो भी मौजूद रहे हैं। और शुरुआती दिनों से जब से पूरी मीटिंग चल रही है ये भी बताया गया था कि अयोध्या के डीएम की भी पावर्स बढ़ाई जाएंगे। देखना ये है कि क्या आज की बैठक में ऐसा कुछ निर्णय होता है, लेकिन जो 3 प्रमुखता से नाम चल रहे हैं उनमें से ही किसी
0: आज नाम का खुलासा हो जाएगा और इस पर से पर्दा हो जाएगा। अब खबर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की, आज वो नासिक दौरे पर जा सकते हैं और संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए नासिक में उनका प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम गंगापुर डैम के MTDC रिजॉर्ट में होगा। 2 घंटे बाद राहुल नासिक पहुंचेंगे जहां पार्टी नेताओं के साथ मंथन होगा और इस दौरे का मकसद कांग्रेस पार्टी की स्थानीय ताकत का जायजा लेना और भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करना है।
2: देखिए श्रीमान राहुल गांधी लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक दौरा करना है वे कर सकते हैं, पर दौरे के आड़ में तथ्यहीन बातें बताना, छात्रों को गुमराह करना, युवाओं को गुमराह करना, ये कौन सा न्याय है? आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब विश्व की 3री आर्थिक महासत्ता बनने जा रहा है। इतने संघर्षों के बावजूद भी वर्ल्ड वॉर के कुछ अलग अलग विश्व के कुछ देशों में वॉर चल रहे हैं, ऐसे संघर्षों के स्थिति में भारत की GDP ग्रोथ 7.8, तो इन सारी बातों को देखते हुए वे युवाओं को, छात्राओं को गुमराह न करें, जो सच्चाई है वो बताए।
0: राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। महाराष्ट्र में एसआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा सवाल उठाया है। उनके मुताबिक लोकसभा 2024 में महाराष्ट्र में 9.29 करोड़ और विधानसभा 2024 में 9.7 करोड़ मतदाता थे, जबकि एसआर 2026 की ड्राफ्ट लिस्ट में यह संख्या घटकर 7.78 करोड़ रह गई, यानी करीब 1.92 करोड़ मतदाताओं का अंतर है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर कौन सी वोटर लिस्ट सही थी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में 2 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर कर दिए गए। बात श्रीनगर की करेंगे, जहां पर आज बड़े राजनीतिक टकराव का दिन है। और उससे पहले आपको राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखा देते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके किस तरीके से आरोप लगाए हैं एसआर को लेकर, राहुल गांधी के सवाल हैं ये।

0: तो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने पोस्ट कर लिखा, बीजेपी और वोट चोरी आयोग के तरीके बदलते रहते हैं और आगे भी बदलते रहेंगे। मकसद बस एक ही है, किसी भी कीमत पर बीजेपी की जीत और भारत के लोकतंत्र का अंत। महाराष्ट्र 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच अचानक 39 लाख नए वोटर जुड़ गए। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूं, ये वोट चोरी थी। और अब महाराष्ट्र में लगभग 2 करोड़ मतदाताओं को ड्राफ्ट लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया, यानी हर 5वां वोटर। वोट चोरी से बनी सरकार के लिए जनता जरूरी नहीं है, यही कारण है ये बीजेपी ना जनता की सुनती है ना उनका आदेश मानती है।
1: 2,39,00,000 वोटर महाराष्ट्र के वोटिंग लिस्ट से निकाले गए हैं। तुमने नागपुर का देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग गवर्नमेंट हॉस्टल में रवि भवन में रह रहे हैं और गवर्नमेंट के बीएलओ भारतीय जनता पार्टी के बीएलए के माध्यम से काम कर रहे हैं। इसमें हमको शंका है, ये भारतीय जनता पार्टी के बीएलए ने इनको वोट नहीं करने वाले स्पेसिफिक एरिया के वोटर्स को काट मार दिए इस वोटर लिस्ट में। मैं समझता हूं इसमें हम जागरूकता से काम करेंगे, अभी और वोटिंग लिस्ट डिक्लेयर हो रही है, इसमें हम काम करेंगे।
2: तो ये पूरा प्रक्रिया हो रही है, एडिशन भी होगा, कंप्लीट डिलीशन भी होगा। इस वजह से आपको ये महाराष्ट्र में इतना सारा, मेरे एमएलए एरिया में अब बहुत से नाम नहीं आए हैं, तो मेरी जवाबदारी है, सारे पार्टियों की जवाबदारी है। मैं सारे पार्टियों का आह्वान करूंगा कि आने वाले महीने में नाम डालिए, मुझे भी डालना है, मुझे भी, मेरे भी कुछ नाम कटे हुए तो 6 नंबर भरेंगे हम, कुछ एनामोली है तो दुरुस्त करेंगे। लेकिन चिल्लाट रख गई नाम काट दिया, हमने थोड़ी काटा है। एसआईआर की प्रक्रिया है, इंडिपेंडेंट प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ने की प्रक्रिया है। ये जब डर जाते हैं तो इस प्रकार की बात करते हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी डरी हुई है।
0: बात श्रीनगर की, जहां पर आज बड़े राजनीतिक टकराव का दिन है। एक तरफ विपक्ष बीजेपी विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है, दूसरी ओर सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रदर्शन करेगी। बीजेपी श्रीनगर में सिविल सचिवालय की ओर विरोध मार्च निकालेगी, बिजली की दरों और बेरोजगारी को लेकर उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। तो वहीं सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर और जम्मू दोनों जगहों पर बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध करेगी। पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने, संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण से जुड़ी फाइल पर अपनी मांगों के लिए दबाव बनाना चाहती है। मीर फरीद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मीर, इस पूरे विरोध प्रदर्शन में दोनों ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष का भी, प्रशासन की क्या तैयारी है, क्योंकि जाहिर तौर पर टकराव की स्थिति बन सकती है।
3: जी नेहा, प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी है, पुलिस का बंदोबस्त है और दो अलग अलग जगह से, अगर लाल चौक जैसे आपने कहा बीजेपी प्रोटेस्ट वहां से निकालेगी, घेराव करने की कोशिश करेगी जो सिविल सेक्रेटेरिएट है, वहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो राजबाग इलाके से प्रोटेस्ट जो है निकालने का प्लान कर रही है। उनका जो टारगेट है वो बीजेपी ऑफिस है, वहां घेराव करेंगे। जैसे आपने मुद्दे बताए, अलग अलग मुद्दे हैं जहां बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, बिजली के जो दाम बढ़े हैं, उसके अलावा जो एक पॉलिसी पैरालिसिस कह रही है बीजेपी की, बिल्कुल निकम्मी सरकार है, कुछ नहीं कर पा रही है, लोग हाहाकार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वही स्टेटहुड के मुद्दे को लेके और उसके साथ साथ रिजर्वेशन फाइल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, साफ साफ नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बात नहीं करी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का एक नया नाम देके उस मुद्दे पे भी जो है बीजेपी का ऑफिस घेरने की कोशिश करेगी। और साफ तौर पे सियासत करने की कोशिश और मुद्दे जरूर अलग अलग हैं दोनों पार्टीज के। जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात कौशाम्बी के मनौरी इलाके में सोमवार हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके की, क्योंकि इस पर अब प्रशासन ने एक्शन तेज कर दिया है। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन हुआ है। मुख्य आरोपी नौशाद के बेटे आदिल की करोड़ों की इमारत पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल चुका है।
4: अवैध पटाखा फैक्ट्री धमाका मामले में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन तेज है। धमाके के बाद 31 अगस्त की रात कौशाम्बी में प्रशासन ने आरोपी मोहम्मद आदिल के गोदाम पर बुलडोजर चलाया था। अब कार्रवाई का दायरा बढ़ा है। इस बार प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मुख्य आरोपी नौशाद के बेटे आदिल की करोड़ों रुपए की इस इमारत पर बुलडोजर चलाया और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती के बीच बीती रात ये एक्शन हुआ। बताया जा रहा है कि करीब 60 वर्ग मीटर एरिया में अंडरग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर दो मंजिल का निर्माण किया गया था। पीडीए के मुताबिक इस इमारत का मैप प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं था, इसी आधार पर इमारत को गिरा दिया गया।
5: उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, अब यहां पर प्रशासन के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है आदिल और नौसाद के घर पर। आदिल नौसाद मुख्य आरोपी हैं, जो अवैध भंडारण उन्होंने किया था जिस वजह से वहां पर विस्फोट हुआ और 8 मासूम सहित 13 लोगों की जान चली गई। फिलहाल ये पीडीए के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा कहा गया है कि इनका नक्शा पास नहीं था और रिहायशी इलाकों में बिना नक्शा पास किए इन्होंने ये मकान जो अनुसार है वो बनाया था। फिलहाल बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। फिलहाल यहां पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है और आदिल और नौसाद के अलीशान मकान पर ये बुलडोजर चल रहा है। रात के 3 बज रहे हैं लेकिन अभी भी पूरी तरह इस मकान को ध्वस्त नहीं किया गया है और ये कार्रवाई लगातार कई घंटों से चल रही है। तमाम जेसीबी बुलाई गई, कोकलैंड बुलाया गया, अब ये बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है।
4: कौशाम्बी के मनोरी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद प्रशासन ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अब अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज की है।
6: ये आदिल पुत्र नौसाद हैं। ये स्थल लगभग 72 वर्ग गज का है, 60 वर्ग मीटर का। इसमें इन्होंने भूतल, बेसमेंट भूतल व 2 मंजिला का मकान बनाया। बेसमेंट व भूतल में व्यावसायिक गतिविधि चल रही है, ऊपर के 2 मंजिलों में इनके द्वारा निवास किया जा रहा है। इस यह स्थल जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण विकास क्षेत्र सीमा में लगता है, मनौरी क्षेत्र जनपद कौशाम्बी है। इनको प्रयागराज विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना था, इन्होंने नक्शा नहीं पास कराया, इस वजह से यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
4: उधर अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी है। हर चेहरे पर दर्द है, हर आंख नम है। मनौरी महमूदपुर गांव में हुए इस विस्फोट की गूंज सिर्फ धमाके तक सीमित नहीं रही बल्कि इसने कई परिवारों की खुशियां भी अपने साथ उड़ा दी। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए।
7: सरकार के लोग शामिल हैं और उनकी बचा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सरकार का भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश से गलत कामों का जो हिस्सा है वो सरकार को
8: जांच की मांग करते हैं। निष्पक्ष जांच,
7: निश्चित तौर से निष्पक्ष जांच करते हैं और इसकी न्यायिक जांच की मांग करता हूं मैं कि माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच और न्यायिक जांच।
8: बुलडोजर चल रहा है,
7: तो बुलडोजर उन अधिकारियों के घर पे कब चलेगा जिनके संरक्षण में उन भाजपा के नेताओं पर बुलडोजर घर पे कब चलेगा? जो मंत्री जो आज यहाँ बैठे हैं बड़े बड़े लोग जिनके संरक्षण में ये सारा अवैध काम फल फूल रहा था, उनके अधिकारियों पर और नेताओं के घर पर बुलडोजर योगी जी कब चलाओगे?
4: इस घटना में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अब प्रशासन ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुहिम तेज कर दी है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
0: प्रभात, नेपाल की तबाही की जहां पर मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक वहां 1093 लोगों की जान जा चुकी है। अब भी करीब 4000 से ज्यादा लोग लापता हैं। उनकी तलाश के लिए आज 8वें दिन भी रेस्क्यू अभियान चल रहा है। नेपाल में हुई त्रासदी के बाद फिल्म अभिनेता सोनू सूद पीड़ितों तक राहत सामग्री लेकर पहुंचे। त्रिशूली में उनकी मौजूदगी है, उनसे खास बातचीत की आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने।
9: में लोगों की मदद करने के लिए सोनू सूद यहाँ पहुंचे हैं। सोनू सूद, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुश्किलें हैं इस समय, जितनी मदद के लिए हाथ आए उतने कम हैं।
10: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जब आप पूरा मंजर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि

0: पहली बार देख रहे हैं इन इलाकों तक, क्योंकि ये इलाके बिल्कुल कटे हुए थे, यहाँ तक पहुंचना ही बिल्कुल मुश्किल था। जिन इलाकों में हम हैं उसी के साथ साथ ये वो त्रिभुवन स्कूल है, ये देखिए ये वो इमारत है जहां पर राजेंद्र दबाड़ी अगर समय रहते काम नहीं करते तो लोग सोचिए कितने बच्चों की जान जा सकती थी। ये वो स्कूल आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पूरा मलबे में दब गया है, ये स्कूल की प्रशासनिक बिल्डिंग है। राजेंद्र दबाड़ी ने भारतीय दूतावास में जो हाई कमिश्नर उनसे मुलाकात की, भारत ने आश्वासन दिया कि स्कूल को दोबारा बनाया जाएगा। तो एक तरफ अब रीबिल्ड की कोशिश है, लेकिन उसी के साथ साथ चुनौती है उन लोगों को निकालने की जिनको अब तक नहीं बचाया जा सका है। जिस त्रिशूली की धारा ये तबाही लेकर के आई है, ठीक उसी के ऊपर जान जोखिम में डालकर अद्भुत साहस का परिचय देते हुए इन लोगों ने यहाँ पर ये रोपवे बनाया है। इस रोपवे में उस पार से उस पार जो फंसे हुए लोग थे उनको यहाँ पर बांधा जा रहा है, बांध करके इस पार लाते हुए केबल से यहाँ तक खींचते हुए, एक ऐसा ऑपरेशन जो लगभग लगभग नामुमकिन सा लगता है, लेकिन नेपाल के लोगों ने वो कर दिखाया है। यहाँ से उन्हें खींचा जा रहा है और ये तमाम वो लोग हैं जो लंबे समय से अपने इलाके में पहुंचे ही नहीं है। इनको देखिए कोई व्यवस्था नहीं है इस तरह की, अब इस पाइपों के जरिए चढ़ करके वो ऊपर जाएंगे, लेकिन क्या है कि एक सप्ताह का समय, आप सोचिए कि बिल्कुल यही सप्ताह था नेहा, एक सप्ताह पहले बिल्कुल यही वो समय था जब अलर्ट आना शुरू हुआ था। पानी यहाँ से ठीक मेरे पीछे इन इलाकों से गुजरती है, अपनी विशाल धारा लेकर के आती है और तबाही का मंजर छोड़ जाती है। और उसके बाद ये वो जो लोग हैं, एक तरफ आप हेली ऑपरेशन भी देख रहे हैं कि लगातार जो ऊपरी इलाकों में है वहां पर पहुंचा जा रहा है, जो त्रिशूली हाइड्रो प्रोजेक्ट है वहां से लोगों को बचाया जा सके, लेकिन उन इलाकों का क्या जहां तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है तो ये नजदीक, लेकिन नदी की धारा ने दो शहरों को, दो इलाकों को काट दिया है। वहां मदद कैसे जाए, वहां खाना कैसे जाए, सोचिए नदी की धारा पर यहाँ बड़ा सा लोहे का पुल था। ये देखिए ये आप लाइव तस्वीरें उस ऑपरेशन की देख रही हैं जहां पर अब रोपवे बना करके लोगों को निकाला जा रहा है। एक बार को देख के लगता नहीं कि ये मुमकिन होगा, लेकिन ये नेपाल के लोगों का साहस है, ये उनकी हिम्मत है जो वो अविश्वसनीय है, बिल्कुल जो कल्पना से परे है उसे अंजाम दे रहे हैं। पूरी जो कहते हैं ना कि न सिर्फ हिम्मत बल्कि उसके साथ तैयारियां, और तैयारियों के नाम पर क्या, ड्रोन के जरिए, आपको बताऊं ये ड्रोन के जरिए केबल वहां भेजा गया, उस पार जो फंसे लोग थे वहां बांधा गया, और उसके बाद यहां जो पुलिस है, स्थानीय लोग है, वॉलंटियर से, देखिए आगे जो स्लोप है रोपवे को लाना आसान होता है, लेकिन उसके बाद दरअसल जैसे ही निचला इलाका होता है तब जो है आप सोचिए कि लाना कितना मुश्किल है। और उसके बाद आप रोप को यहाँ से खींचने की तैयारी की जा रही है, और यहाँ जो लोग ब्रिज पर खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, वो खींच करके लोगों को निकाल रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है, और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, छोटे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं इन्हें इस पार से उस पार ले जाने की। इनमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, जिन्हें सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है, एक ट्रॉमा जो उन्होंने देखा है, सोचिए कि इन इलाकों में ये जो आपको अब मलबा और कीचड़ दलदल नजर आ रहा है, ये एक बसा हुआ शहर था, ये शहर अब उजड़ गया, और उसी के बाद जब लोग किनारों पर भाग करके गए, सुरक्षित जगहों पर भाग कर गए, तो अब उनको यहाँ वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और इन कोशिशों में ये तस्वीरें आप त्रिशूली के देख रही हैं, उस ऑपरेशन की जो एक बार को देख करके लगता नहीं, आमतौर पर सोचिए कि हमने देखा लोगों को ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में आते हैं, लेकिन ये वो त्रिशूली नदी है।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे हेडलाइंस का।

आज राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ का आ सकता है नाम। शॉर्टलिस्ट हुए 3 में से 1 नाम का होगा ऐलान। सर्च कमेटी ने न्यास को सौंप दिया रिपोर्ट। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी रेस में शामिल। आज नासिक दौरे पर जाने से पहले राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप का महाराष्ट्र से बंगाल तक वोट चोरी हुई। खड़गे ने भी पोस्ट से किया प्रहार। महाराष्ट्र में खटपट की खबरों के बीच आज दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कैबिनेट बैठक में निर्धारित रहने से उठे सवाल। शिंदे ने बताया अफवाह का, वकीलों से मिलने आया। ईरान के सामरिक ठिकानों पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले। एयर डिफेंस रडार और समुद्री ठिकाने तबाह। तेहरान ने जॉर्डन पर दागी मिसाइलें। अमेरिकी बेस को बनाया निशाना। राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। त्रासदी से मौत का आंकड़ा 1000 के पार। करीब 4000 लापता, 12000 लोग बचाए गए। नेपाल ने बताया जलवायु परिवर्तन को आपदा की वजह।

बड़े फैसले, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में दो सत्र होंगे। ये बैठक राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास के स्थान मणि रामदास छावनी में होगी। राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक के लिए कई प्रमुख ट्रस्टी अयोध्या पहुंचे। मीटिंग में शरावा चोरी प्रकरण के बाद खाली हुई सीटों के साथ राज परिवार से जुड़ी रिक्त सीट पर भी नए नामों पर फैसला संभव। इस दौरान सीईओ की नियुक्ति के साथ साथ ट्रस्ट के डीड में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। प्रस्तावित संशोधन में सीईओ के नए अधिकार जिम्मेदारियां शामिल किए जाने की संभावना। ट्रस्ट दान की चोरी की एसआईटी जांच, सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई की स्थिति की भी समीक्षा करेगी। नेपाल में बाढ़ भूस्खलन से मौत का आंकड़ा 1000 के पार, 3916 लापता। नेपाल में रसुआ फ्लैश फ्लड पीड़ितों की पहचान के लिए भारत की 19 सदस्यीय फोरेंसिक टीम ने संभाला मोर्चा। नेपाल बाढ़ में लापता लोगों की पहचान के लिए परिजनों ने डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। पुलिस अस्पताल में जांच प्रक्रिया जारी है। नेपाल के नुवाकोट में बाढ़ से दबे घर से 24 शव बरामद, तीर्थयात्रियों के होने की आशंका, मां बेटी का शव भी बरामद। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों की जानकारी, 406 शिकायतें मिली, 206 लोग लौटे, 60 अब भी लापता। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, त्रिशूली में मलबा हटाने में जुटी नेपाली सेना। नेपाल में बाढ़ पीड़ितों का सामूहिक अंतिम संस्कार, डीएनए सैंपल और टैगिंग के जरिए शवों की पहचान की कोशिश।

0: नेपाल का ग्लेशियर बाढ़, भारत के लिए चेतावनी। हिमालय में तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर, विशेषज्ञों ने चेताया। हिमालय बढ़ रहा है GLOF और हैंगिंग ग्लेशियर का खतरा। अगले 70 से 100 साल में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है तापमान। नेपाल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, राहत कार्य का करेंगे सहयोग। हिमाचल प्रदेश बारिश का कहर जारी, सोलन में नदी नाले उफान पर, कई जगहों पर सड़कें बनी सैलाब। भारी मलबे और बड़े पत्थर से सड़कें बाधित, लोगों की बड़ी मुश्किल। 4 सितंबर तक बारिश से राहत के आसार नहीं। उत्तरकाशी बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन, पहाड़ी मलबे में फंसे यात्री बस को निकाला गया सुरक्षित। मध्यप्रदेश के बाढ़सागर डैम से गेट खुलने से रोहतास में बड़ी सोन नदी का जलस्तर, नदी किनारे रहने वालों को दूर जाने की सलाह। गया के नवगछिया में गंगा कहर, राघोपुर में कटाव सड़कम, मंत्री विधायक ने किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भारी बारिश के कारण कालाकोट नदी उफान पर, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। देहरादून और टेहरी में ऑरेंज अलर्ट जारी, रिस्पना नदी में जलस्तर बढ़ा। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में तेज लहरों की चपेट में आई फेटा गाड़ी, SDRF ने घायल महिलाओं को किया रेस्क्यू, दो लोगों की गई जान। बिहार के भागलपुर जिले में आई बाढ़, मदरौनी गांव के कई इलाके हुए प्रभावित। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में खटीमा शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर जल जमाव की स्थिति। चंबा में बाढ़ में फंसे युवक के लिए देवदूत बनी महिला, दुपट्टे से बाइक सवार की बचाई जान। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जारी मूसलाधार बारिश, अल्मोड़ा जिले में लैंडस्लाइड, रेस्क्यू में जुटी SDRF। झारखंड के गढ़वा जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर के कई घरों, दुकानों और स्कूल में घुसा बारिश का पानी। नैनीताल में बारिश का रौद्र रूप, लैंडस्लाइड में 2 कारें फंसी, कुमाऊं में 141 सड़कें बंद। नैनीताल जिले में हो रही भारी बारिश के बीच उफान पर कोसी नदी, नदी किनारों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। कैची धाम के करीब उफनाई शिप्रा नदी, भारी बारिश से बढ़ा जलस्तर। गाजीपुर में गंगा उफान पर, पार किया खतरे का निशान, DM ने एडवाइजरी जारी की। उत्तराखंड में लगातार बारिश से यातायात ठप, बागेश्वर में नेशनल हाईवे में 109 सहित 16 मोटर मार्ग बंद। लाहौल में चंद्रभागा के उफान में जोरबंग पुल पर फंसी बुलेरो, करीब 3 घंटे गाड़ी के फंसे रहे 2 युवक, देर रात किया गया रेस्क्यू। पहलगाम में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, बाजार होटल जलमग्न, जान बचाने के लिए भागे लोग। जॉर्डन से बहरीन तक डेरा मिलीस, अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने किया पलटवार। ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया, साथ ही तेहरान ने चेतावनी दी कि वह खाड़ी से तेल के निर्यात को रोक देगा। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कड़ी चेतावनी, बदला लिया तो अमेरिका करेगा और बड़ा हमला। अमेरिका ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ने से कच्चे तेल में $4 प्रति बैरल से ज्यादा का उछाल, ब्रेंट 94 डॉलर के पार। ईरानी मीडिया के अनुसार हॉर्मुज जलजम बंद के पास तटीय इलाके सिरिक में शादी समारोह पर हमला, 5 की मौत। IGC का जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा, RQ-4 और MQ-9 ड्रोन से हैंगर को बनाया निशाना। IGC के कई ड्रोन नष्ट, अमेरिकी कर्मियों की मौत और सैन्य ठिकानों के ढांचे में आग लगने का दावा। ईरान की अमेरिका को चेतावनी, सैन्य कार्रवाई जारी रही तो भुगतान पड़ेगा और भारी नुकसान। जॉर्डन में 13 में से 10 मिसाइलें रोकी गई, अमेरिकी सैनिकों की मौत पर IGC का दावा अमेरिका ने खारिज किया। मिडल ईस्ट के लिए अमेरिका ने फिर जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, ईरान ओमान शिपिंग फ्रेमवर्क बनाने में जुटे। जम्मू कश्मीर में बिजली दरों और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी का उमर सरकार खिलाफ प्रदर्शन, जवाबी कार्रवाई में श्रीनगर जम्मू में बीजेपी दफ्तरों के बाहर NC करेगी विरोध प्रदर्शन। राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी पर NC का प्रदर्शन, संवैधानिक सुरक्षा उपायों में देरी के खिलाफ उठाएगी आवाज। PAC रेड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ममता बनर्जी खिलाफ ED की याचिका पर होगी सुनवाई। केंद्र सरकार ने चीनी की स्टॉक सीमा घटाकर 2000 क्विंटल की, 15 सितंबर से लागू होगी नई सीमा। भू घोटाले में FIR की मांग, ED ने पंजाब DGP को तीसरी बार लिखा खत। आतंकवाद के खिलाफ ACO में PM मोदी का खड़ा रुख, पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना जरूरी है, सीमा पार पनाहगारों को कड़ा संदेश। PM मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का मेगा प्लान, वडनगर से वाराणसी तक निकलेगी खास यात्रा, दोनों शहरों से रवाना होंगी 10-10 टीमें। दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन पर JP नड्डा का बड़ा ऐलान, राज्यों में दर्ज सभी FIR होंगी वापस, CJP के मार्च वापस लेने के फैसले का किया स्वागत। राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, कहा महाराष्ट्र से बंगाल तक हुई वोट चोरी, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश। राहुल गांधी का फिर सबसे तीखा प्रहार, बोले किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है बीजेपी, चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी का लगाया आरोप। राहुल गांधी आज नासिक में कांग्रेस के बैठक करेंगे संबोधित, संगठन की तैयारियों और आगामी रणनीति पर मंथन। नासिक में आदिवासी छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी, हॉस्टल की समस्याओं और 17 दिन की भूख हड़ताल पर होगी चर्चा। UP पेट 2026 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 7 सितंबर तक करेंगे पेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन। दिल्ली में चावल चोरी मामले में CBI ने दर्ज किया मामला, आम आदमी पार्टी का दावा 5 करोड़ किलो चावल की चोरी। मुंबई में अस्पताल में अन्ना हजारे से मिले सीएम फडणवीस, जल्द स्वस्थ होने की कामना। फडणवीस से अन्ना हजारे को दी कुकरी सिंचाई परियोजना की जानकारी, संशोधित खर्च को कैबिनेट की मंजूरी। जालना में ब्राह्मण समाज की विभिन्न मांगों को लेकर ब्राह्मण समाज के अनशनकर्ता दीपक रणवरे का आमरण अनशन। नीट आंदोलन को अभिजीत दीपके ने बताया सफल, एसी के बाद फैसले के बाद 5 सितंबर का प्रस्तावित आंदोलन रद्द। छात्रों पर केस वापसी और आत्महत्या पीड़ित परिवारों को मुआवजा, अभिजीत दीपके ने कहा बड़ी जीत। छत्रपति संभाजीनगर में रावड़ियों के खिलाफ ऑटो चालकों का मोर्चा, बाइक टैक्सी सेवा बंद करने की मांग। ऑटो चालकों ने आरटीओ के बाहर किया प्रदर्शन, अवैध यात्री परिवहन पर कार्रवाई और किराया बढ़ाने की मांग। महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 3 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस लंबित, सांगली में 165 लीटर दूध नष्ट। मुंबई में एफडीए का बड़ा एक्शन, मलाड के दिल्ली स्वीट हाउस और कुर्ला के गुलजार मोहम्मदी होटल का लाइसेंस सस्पेंड। नोएडा में बिजली की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने के आरोप में विधायक कार्यालय का किया घेराव। दिल्ली कश्मीरी गेट बस गैंग रेप में अहम सबूत मिले, घटना के समय बस का सीसीटीवी बंद था, बस से पीड़िता और दोनों आरोपियों के फिंगरप्रिंट से हुआ खुलासा। दिल्ली के रोहिणी बुजुर्ग की हत्या का 2.5 घंटे में खुलासा, लूट के इरादे से वारदात को अंजाम, 4 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 63 का फुटवेयर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की आशंका, कोई जनहानि नहीं। तेलंगाना के हैदराबाद में मार्केट में लगी भीषण आग, कोई जनहानि नहीं। झांसी में तेज रफ्तार कार ने पेड़ और गैस पाइपलाइन को मारी टक्कर, गैस रिसाव से मची अफरा तफरी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी में तेज रफ्तार ट्रक चालक ने मचाई तबाही, नशे में धुत ड्राइवर ने गेट में घुसा ट्रक, 4 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में धारदार हथियार से युवक पर हमला, 2 की को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। बिहार के हाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की दबिश जारी। छपरा में 50 लाख रुपए के संदिग्ध साइबर लेन देन के नोटिस से परेशान होकर युवक टावर पर चढ़ा, पुलिस ने अपनी सूझबूझ से नीचे उतारा। बिहार के वैशाली बदमाशों का आतंक, पशु व्यापारी पिता पुत्र को मारी गोली, मौके पर हुई पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से जख्मी। वडोदरा में ट्रेलर और एलपीजी टैंकर के बीच भीषण टक्कर, टैंकर ने संतुलन खोकर ट्रक सड़क पर पलटा, वन वे किया गया हाईवे। नागपुर में हत्या और लूट चोरी के मामले में 4 आरोपी बाल सुधार गृह से भागे, शौचालय की खिड़की के जरिए हुए फरार। फरीदाबाद में स्कूल की छत से 11वीं की छात्रा ने लगाई छलांग, छात्रा के परिजनों का स्कूल पर आरोप, करीब 4 घंटे तक सजा के तौर पर क्लासरूम से बाहर खड़ा किया गया। जयपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद थाने के बाहर प्रदर्शन, शव लेने से किया इनकार, गला घोटकर हत्या का आरोप। भोपाल में फर्जी आए तृप्ति सिंह राजपूत का नया वीडियो वायरल, सहेलियों संग बोली हमारी हरकतों को देखकर कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हम तीनों आईएएस अफसर। इंदौर में बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन, बड़ा भारी कार रोककर काटा केक, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सिखा सबक। जालना में एसआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या की कोशिश। अयोध्या में लक्ष्मी स्वीट हाउस में लगी भीषण आग, सिविल लाइन्स इलाके में मचा हड़कंप। चंद्रपुर में गृह दोष दूर करने के बहाने तांत्रिक का घिनौना खेल, पति को सामाना ने भेजा, पत्नी से किया दुष्कर्म। उन्नाव में 10 फीट गड्ढे के बाद फिर से हुआ गंगा एक्सप्रेसवे पर 7 फीट गहरा गड्ढा। कटिहार में अंचल कार्यालय में मारपीट, सीओ और प्रधान लिपिक के बीच हाथापाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पंजाब के फजिलका में बेटे ने मां को पीट पीट कर मार डाला, आरोपी ने अपनी मां के सिर पर प्रेशर कुकर से किया वार। जयपुर में थार एंडेवर की रफ्तार ने मचाया कहर, 50 फीट दूर जा गिरा ई रिक्शा, कांग्रेस नेता की पत्नी के नाम है कार। कौशाम्बी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा 13, एसपी ने की मौत की पुष्टि, हादसे में परिवार को 4 लोगों ने गवाई जान। कौशाम्बी धमाके के आरोपी नौशाद आदल के घर पर पीडीए की टीम ने चलाया बुलडोजर, इसी मकान में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री। ऐवान का नया गाना रंग्यारा रिलीज, 11 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में होगी लॉन्च। मिर्जापुर द मूवी की एडवांस बुकिंग से बंपर कमाई, 1800 में बिक रही है टिकट। फिल्म हनुमान अंश की ताबड़तोड़ कमाई, 1.8 करोड़ मनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कायम किया रिकॉर्ड, अब तक 45 करोड़ से ज्यादा की कमाई। यश की फिल्म टॉक्सिक की बॉक्स ऑफिस पर धूम, भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब 264 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करीब 304 करोड़ रहा। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टार फिल्म दायरा का ट्रेलर लॉन्च, 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी दायरा। सरकारी बैंक से कर्मचारियों के कामकाज के तौर तरीके और उनके लंच ब्रेक को लेकर चुटकुले तो आपने कई बार सुने होंगे। जिस सरकारी बैंक में आम आदमी के जमा किए जाने वाले नोटों को आगे पीछे से घुमा फिरा कर देखा जाता हो, छोटे से काम के लिए इंतजार करवाने की शिकायतें मिलती हैं, उसी सरकारी बैंक में 17 करोड़ रुपए के नकली नोट मिलने का दावा किया गया।
1: ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की सिविल लाइंस की पीएनबी ब्रांच है, जिसमें कहा जा रहा है कि 17 करोड़ रुपए से ज्यादा के नकली नोट बैंक के खजाने में जमा कर दिए गए। सरकारी बैंक में इतना बड़ा गबन होने का दावा है, लेकिन इसकी खबर न बैंक के किसी कर्मचारी को लगी, न ही किसी अफसर को कुछ पता चला। आम आदमी के पैसे की क्या ये लूट नहीं है, जिसकी कहानी सरकारी सिस्टम के नाकारेपन से खबरदार करती है? सवाल करती है, क्या सरकारी बैंक भगवान भरोसे चल रहे हैं? क्योंकि बैंक में करोड़ों रुपए के बंडलों को संभालने का काम एक पार्ट टाइम हाउसकीपर विशाल कुमार से करवाया गया, जिसे नियमों को ताक पर रखकर करेंसी चेस्ट यानी बैंक के खजाने में करोड़ों रुपए की नोटों की गड्डियां व्यवस्थित करने का काम दिया था, जिनमें गले कटे और दूसरी तरह के नोट थे। सहारनपुर के पंजाब नेशनल बैंक की इस ब्रांच को ये रकम आरबीआई की जयपुर करेंसी चेस्ट में भेजनी थी। 5 अगस्त को ये रकम भेजी गई तो 4,30,900 रुपए कम मिले। फौरन इसकी जानकारी मेरठ पीएनबी के अफसरों को दी गई। पीएनबी ने मेरठ के चीफ मैनेजर को जांच के लिए सहारनपुर भेजा। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो पार्ट टाइम हाउसकीपर विशाल कुमार नोटों की गड्डियों से रुपए निकालता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उसे हटाकर चोरी का केस दर्ज किया गया। गड़बड़ी सामने आने के बाद बैंक ने 9 अगस्त को करेंसी चेस्ट का ऑडिट कराया तो जांच में दावा होता है कि 17 करोड़ रुपए के नकली नोट मिले। इतने बड़े गबन के आरोप से हंगामा तो मचना ही था। फौरन सीनियर डिविजनल मैनेजर रवि कुमार कासे, करेंसी चेस्ट मैनेजर सुशील कुमार और यमुनानगर जगाधरी में तैनात करेंसी चेस्ट मैनेजर से सवाल जवाब हुए और बाद में तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधन का कहना है कि जाली नोटों को न तो सर्कुलेशन में भेजा गया और न ही किसी दूसरी शाखा में। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी तादाद में जाली नोट बैंक के खजाने तक कैसे पहुंचे, इसमें बैंक का कौन कौन सा कर्मचारी शामिल है। सहारनपुर की एक खबर बता रही है कि चाहे आम आदमी से कुछ बैंक कर्मचारियों का बर्ताव हो या फिर मिलीभगत करके सरकारी पैसे का गबन, इससे जुड़ी बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है।
0: रुके यहाँ इस से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
10: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
11: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
10: असली शहद, असली स्वाद।
12: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
13: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
14: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवा के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: तेल गैस की सप्लाई प्रभावित हुई तो हुई, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई तो आई, पश्चिम एशिया के युद्ध से संकट के बादल छाए तो छाए, दुनिया भर में अस्थिरता का माहौल बना तो बना, लेकिन 2026-27 की पहली तिमाही के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की तरक्की नहीं रुकी। वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.8% दर्ज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देशवासियों के संकल्प का नतीजा कहा। साथ ही उन्होंने कथित निराशावादियों पर एक शब्द बाण छोड़ा, झूठ की गूंज।
5: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गूंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया।
4: प्रधानमंत्री का ये हमला बेहद अहम है क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों छात्रों की गूंज नाम से जेएनजी से संवाद कर रहे हैं, लेकिन झूठ की गूंज नाम से बनी एक वेबसाइट का दावा है कि छात्रों की गूंज नाम से हुई 4 रैलियों में किए गए 40 दावों में से 29 यानी 73% गलत है और 11 यानी 27% भ्रामक है। बीजेपी ने एक्स मीडिया पोस्ट्स में इस वेबसाइट के दावों के आधार पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया है।
6: नाउ हिज क्लेम्स आर बीइंग फैक्ट चेक्ड बाय जेन ज़ी हु हैव टेकन इट अपॉन देमसेल्व्स टू क्रिएट अ वेबसाइट विद अ कॉम्प्रिहेंसिव रिबटल ऑफ ऑल हिज लाइज।
4: उधर कांग्रेस जीडीपी के नए आंकड़ों के बावजूद अर्थव्यवस्था की मजबूती पर सवाल उठा रही है।
7: उनको खुद अपने झूठ की गूंज बार बार सुनाई देती होगी। 12 साल पहले से जो प्रचार करते आए उसकी गूंज आज उनको बहुत तंग करती है, सताती है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि आप एक तरफ कहते हो जीडीपी, दूसरी तरफ कहते हो सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, किफायतशारी रखो, तीसरी तरफ आपका वीडियो निकलता है और मुंबई में दाम बढ़ जाते हैं दूध के, पेट्रोल के दाम देखो, डीजल के दाम देखो, दूध के दाम देखो, शक्कर के दाम देखो, फिर बताओ झूठ की गूंज कितनी मीठी है।
4: कांग्रेस महंगाई का हवाला देकर मजबूत अर्थव्यवस्था के दावों पर सवाल उठा रही है। मुंबई में आज से तबेले के दूध के दाम 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। पशु आहार की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी की वजह से मुंबई में दूध महंगा हुआ है। उधर महानगर गैस लिमिटेड ने भी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी की कीमत 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 88 रुपए प्रति किलो कर दी, जबकि पीएनजी यानी पाइप से पहुंचने वाली घरेलू गैस में 1 रुपए की रेट से बढ़ोतरी हुई है। उधर जब जीडीपी के आंकड़े आए हैं तब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, बिना टिप्पणी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 179 देशों में 106 स्थान पर है। वीडीएम के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्कोर 1975 के बाद के सबसे निचले स्तर पर है। जाहिर है कि अर्थव्यवस्था से लेकर लोकतंत्र पर सियासी संग्राम मचा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मजबूत अर्थव्यवस्था के आधार पर विकसित भारत का लक्ष्य रख रहे हैं।
8: मूविंग इंडिया टुवर्ड्स अ विकसित भारत 2047. So I think all factors put together, despite the challenges that we are facing, we are able to clock this kind of a number. And this is only going to further strengthen this year's growth. And I think if the first quarter started off like this, we'll be able to sustain similar numbers in the other coming quarters as well.
4: इस बीच जीडीपी के शानदार आंकड़ों के बीच राहुल गांधी का वो बयान भी दोबारा वायरल है जिसमें उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहने का समर्थन किया था।
9: आपको मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आज सामने आ सकता है राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ का नाम. शॉर्टलिस्ट हुए तीन में से चुने जाएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सर्च कमेटी ने न्यास को सौंप दी फाइनल रिपोर्ट. आज नासिक दौरे पर जाने से पहले राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप. कहा, महाराष्ट्र से बंगाल तक हुई वोट चोरी. खड़गे ने भी पोस्ट से किया प्रहार. ईरान के सामरिक ठिकानों पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले. एयर डिफेंस, रडार और समुद्री ठिकाने तबाह. तेहरान ने भी जॉर्डन पर दागी मिसाइलें. अमेरिकी बेस को बनाया निशाना. रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन की सीधी चेतावनी. जेलेंस्की ने कहा, सुरक्षित नहीं है रूस का एयर स्पेस. खतरा झेलने के लिए तैयार रहे मॉस्को के हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने वाली एयरलाइंस.

0: राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, त्रासदी से मौत का आंकड़ा 1000 के पार, करीब 4000 लोग लापता, 12000 लोग बचाए गए। नेपाल ने बताया जलवायु परिवर्तन को आपदा की वजह।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज क्या क्या खास है। आगे बात होगी राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ की, जिसके नाम पर आज मुहर लग सकती है। बताएंगे कि रेस में सबसे आगे कौन है और क्या है उनकी खासियत। बात होगी राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एसआईआर पर बड़े प्रहार की। बताएंगे कि राहुल के मिशन महाराष्ट्र से पहले क्या दांव है। और बात होगी महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे की, जिन्होंने कैबिनेट बैठक छोड़ दिल्ली कूच कर अटकलों का बाजार अब गर्म कर दिया है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अयोध्या से, राम मंदिर की बात से, जहां मंदिर ट्रस्ट के पूर्णकालिक सीईओ के नाम का आज ऐलान हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज शाम 4 बजे एक अहम बैठक होने जा रही है और इसी बैठक में सीईओ के नाम पर अंतिम मुहर लगने की पूरी संभावना है। सीईओ के चयन के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय सर्च कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट ट्रस्ट को अब सौंप दी है। कमेटी ने हजारों आवेदनों की स्क्रीनिंग, ऑनलाइन इंटरव्यू और अयोध्या में अंतिम दौर की बातचीत के बाद 3 नामों का पैनल तैयार किया है। अब इन 3 नामों से किसी एक को राम मंदिर की व्यवस्था और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट ही करेगा। और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का। समर्थ, कौन कौन से बड़े नाम हैं? सुना है कई आईपीएस, डीएम, कई रिटायर्ड अधिकारी जो कि सरकार में काम कर चुके हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम आगे है, लेकिन चुना किस बेसिस पर जाएगा? समर्थ, हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो 3 नाम हम आपको बता रहे थे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप एक पूर्व आईपीएस जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहे जाते हैं, उनको देख रहे हैं। इसके अलावा पूर्व डीजीपी बिहार, वो भी इस पैनल में शामिल हैं। तो कई बड़े ऐसे नाम हैं जो इसमें शामिल हैं। एक पूर्व आईएएस भी हैं, दिनेश चंद्र। तो ये 3 नाम हैं जिन पर आज हमारा खास फोकस रहेगा। हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, ये 3 नाम अब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो रेस में फाइनल हैं। ये बताएं कि चुनते वक्त ट्रस्ट क्या क्या देख रहा है?
1: देखिए अंजलि, कुल मिलाकर ट्रस्ट की शुरुआत से भूमिका रही है कि जो भी आए इस पद पर, क्योंकि सीईओ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, प्रशासनिक आपका जो एक्सपीरियंस रहा है अपने अपने पदों में, चाहे वो आईएएस रहे हों, चाहे वो आईपीएस रहे हों अपने अपने जिलों में या मंडल में, उन्होंने उस कार्य प्रणाली को देखा होगा। तो मंदिर में सीईओ का प्रमुखता से काम प्रशासनिक लेवल पर जो बड़े निर्णय लेने होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो या कुछ अब फेरबदल भी चीजों को लेकर होगा, क्योंकि चंदा चोरी का जो प्रकरण हुआ है उसके बाद से ट्रस्ट बहुत अलर्ट हो गया है और इसी वजह सिक्योरिटी रीजंस को लेकर भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो 3 नाम चल रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो पूर्व आईपीएस है राजेश पांडे, उनका नाम भी प्रमुखता से चल रहा है। और ये जो लिफाफा है, ये बंद लिफाफा कल शाम को ट्रस्ट पहुंच चुका है। ट्रस्ट इस लिफाफे को आज की बैठक में खोलने वाला है। उनमें से जो 3 नाम होंगे उन नामों को लेकर आज बैठक में चर्चा होगी और उन 3 में से सर्वसम्मति से जो एक निर्णय एक नाम को लेकर होगा उसका ऐलान शाम होते होते बैठक पूर्ण होने पर ट्रस्ट करने वाला है। ट्रस्ट को इस बात का ध्यान रखना है, उसे मालूम है कि जिस भी तरीके से जो भी नाम का ऐलान होगा उसका जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है अपने मंडल में, अपने जिले में, अपने थ्रू आउट एक्सपीरियंस जो उनका अपने करियर में रहा है, चाहे वो आईपीएस हो चाहे वो आईएएस रहे हो, वो किस तरह का रहा है। हालांकि कई ऐसे नियम भी लागू हुए थे जब आवेदन दिए जाता, आप समझिए ना इस प्रक्रिया को, 5,500 से ज्यादा आवेदन हुए, जिसके बाद आवेदक जब पहुंचे तो 3,500 के ऊपर आवेदक पहुंचे। गूगल फॉर्म के जरिए 600 अंकों का एक फॉर्म तैयार किया गया, जिनके 450 अंक से ज्यादा आए उनको शॉर्टलिस्ट किया गया। 100-200 लोग, 150 लोग लगभग शॉर्टलिस्ट हुए। अंत होते होते 17 आए, 17 के बाद 16 कुल लोगों ने इंटरव्यू दिया और उन 16 इंटरव्यूज में से कुल मिलाकर अब 3 बचे हैं। तो प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से निर्धारित था, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से इसमें आवेदन हुए थे, कई शर्तें रखी गई थी, चाहे वो वेज नॉनवेज वाली पॉइंट हो, धार्मिक कितने हैं सनातनी, तो तमाम सारे एंगल्स रखे गए थे। और आज की जो बैठक है उसमें इसके साथ साथ ट्रस्ट को एक पीआर भी मिलने वाला है।
0: जी समर्थ, आप हमारे साथ बने रहे, एक बार सुन लेते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं।
2: इन तीनों ने भी अत्यंत परिश्रम पूर्वक 5,500 लोगों में से एक पद के लिए 5,500 आवेदन पत्र आए, उनमें से धीरे धीरे प्रोफेशनली चयन करते करते और हम लोगों को आज उनके सारे इस परिश्रम का फल अर्पित किया है। भगवान श्री राम लला के चरणों में इसको रखेंगे, जिसमें इस विश्व के अनन्य श्रेष्ठतम मंदिर के उत्तम व्यवस्थापन के लिए सीईओ की नियुक्ति करनी है, उसमें 3 महानुभावों का इन लोगों ने हमें सुझाव दिया है, इसमें से चयन जो होना है हमारे न्यास की बैठक में होगा।
0: तो चलते हैं समर्थ के पास। समर्थ, आज कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि नाम का ऐलान हो?
1: अंजलि देखिए, समय जो निर्धारित ट्रस्ट की तरफ से किया गया है वो 2:00 से बैठक शुरू होगी। पहली बैठक 2:00 से 3:00 तक होगी, उसके बाद 4:00 से 6:00 तक दूसरी बैठक होगी। हालांकि जो एक तरीके से ऐलान की बात हो रही है, अब मानकर चले लगभग 5 से 6:00 के बीच में मीडिया वालों को खुद ही संबोधित यहां पर ट्रस्ट करेगा। लेकिन पिछली बार भी जितनी बार भी अभी तक इनकी बैठकें हुई है 2 से 3 बार, उसमें बैठक में जो भी निकलता है ग्रक्स शाम को खुद ही प्रेस के सामने रखते हैं, और आज भी उम्मीद यही है कि एक तरीके से ऐलान उसी वक्त किया जाएगा। चर्चाएं तो देखिए बहुत नामों की है, 3-4 नामों की चर्चाएं चल रही हैं। प्रवीण सक्सेना है, राजेश पांडे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरस्टेट तमाम लोगों के चल रहे हैं, कई लोगों ने आवेदन दिया था इसमें। लेकिन जो आधिकारिक घोषणा है वो शाम को बैठक के बाद
0: बिल्कुल, और उसी पर रहेगी हमारी नजर। शुक्रिया समर्थ। अब बढ़ते हैं सियासी खबरों की तरफ। राहुल गांधी के नासिक दौरे से पहले कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। एक तरफ राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2 करोड़ से ज्यादा नाम बाहर होने पर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग पर बेहद तीखा हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोरी के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और उनका निशाना सीधे बीजेपी और चुनाव आयोग पर रहा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को बीजेपी कुर्सी बचाओ आयोग तक कह दिया है। राहुल और खड़गे के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है, एसआईआर को वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण बता दिया है।
3: देखिए श्रीमान राहुल गांधी लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक दौरा करना है वे कर सकते हैं, पर दौरे के आड़ में तथ्यहीन बातें बताना, छात्रों को गुमराह करना, युवाओं को गुमराह करना, ये कौन सा न्याय है? आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब विश्व की 3री आर्थिक महासत्ता बनने जा रहा है। इतने संघर्षों के बावजूद भी वर्ल्ड वॉर के कुछ अलग अलग विश्व के कुछ देशों में वॉर चल रहे हैं, ऐसे संघर्षों के स्थिति में भारत की GDP ग्रोथ 7.8, तो इन सारी बातों को देखते हुए वे युवाओं को छात्राओं को गुमराह न करें, जो सच्चाई है वो बताएं।
0: राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने वोटर लिस्ट में आंकड़ों के उतार चढ़ाव की वजह घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं को बताया है।
4: 2,39,00,000 वोटर महाराष्ट्र के वोटिंग लिस्ट से निकाले गए हैं। तुमने नागपुर का देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग गवर्नमेंट हॉस्टल में रवि भवन में रह रहे हैं और गवर्नमेंट के BLO भारतीय जनता पार्टी के BLA के माध्यम से काम कर रहे हैं। इसमें हमको शंका है कि ये भारतीय जनता पार्टी के BLA ने इनको वोट नहीं करने वाले स्पेसिफिक एरिया के वोटर्स को काट मार दिए इस वोटर लिस्ट में। मैं समझता हूं इसमें हम जागरूकता से काम करेंगे, अभी और वोटिंग लिस्ट डिक्लेयर हो रही है, इसमें हम काम करेंगे।
5: तो ये पूरा प्रक्रिया हो रही है, एडिशन भी होगा, कंप्लीट डिलीशन भी होगा। इस वजह से आपको ये महाराष्ट्र में इतना सारा, मेरे ML एरिया में अब बहुत से नाम नहीं आए हैं, तो मेरी जवाबदारी है, सारे पार्टियों की जवाबदारी है। मैं सारे पार्टियों का आह्वान करूंगा कि आने वाले महीने में नाम डालिए, मुझे भी डालना है, मुझे भी मेरे भी कुछ नाम कटे हुए तो 6 नंबर भरेंगे हम, कुछ एनामोली है तो दुरुस्त करेंगे, लेकिन चिल्लाट गई नाम काट दिया, हमने थोड़ी काटा है। इस तरह की प्रक्रिया है, इंडिपेंडेंट प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ने की प्रक्रिया है। ये जब डर जाते हैं तो इस प्रकार की बात करते हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी डरी हुई है।
0: और इस पर चर्चा के लिए रुक करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, राहुल का नासिक का दौरा भी है, ट्रेनिंग कैंप खत्म हो रहा है वहां कांग्रेस का, और साथ में ये मुद्दा नया नहीं है, तो अब एक बार फिर से क्यों उठाया है राहुल ने, क्या स्ट्रैटेजी लग रही है आपको?
6: देखिए, लगातार एसआईआर की प्रक्रिया अलग अलग जगह चल रही है, दिल्ली में हुई है, और जिस तरीके से ना सिर्फ महाराष्ट्र, लगातार राहुल गांधी महाराष्ट्र, कर्नाटक और 2024 के चुनाव से लेके अब तक एसआईआर को एक तरीके से वोट चोरी अभियान करार दे चुके हैं। तो महाराष्ट्र में क्योंकि राहुल गांधी हैं तो एक तरीके से वो अपनी बात को ही दोहरा रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि ये वोट चोरी हो रही है, और चुनाव आयोग जो है वो लगातार चाहे वो खड़गे हो या राहुल गांधी, कांग्रेस के निशाने पर चुनाव आयोग रहा है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव की भी आप कह लीजिए तरीके से पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी जिस तरीके से।
0: जी मौसमी, शुक्रिया आपका, और आइए सीधा रुक करते मुंबई का, जहां पर हमारे सहयोगी दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम कदम के साथ। दीपेश, ओवर टू यू।
7: जी बिल्कुल, देखिए आज एकनाथ शिंदे जो हैं वो कल दिल्ली में थे, कल कैबिनेट मीटिंग स्किप करके वो दिल्ली में गए थे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हुई थी कि शिंदे फिर एक बार बीजेपी से नाराज हैं। हमारे साथ हैं बात करने के लिए बीजेपी के नेता राम कदम जी। सर, क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज हैं, लगातार दिल्ली जा रहे हैं, कल भी कैबिनेट मीटिंग इतनी अहम बैठक छोड़कर वो दिल्ली गए थे?
8: बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को कहना होगा कि महाराष्ट्र में जो असली शिवसेना जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं, उनका दल, हमारा दल और सुनेत्रा पवार जी का दल, ये तीनों दलों की साझा सरकार है, तीनों में कोई नाराजगी नहीं है। अब ये कुछ मनगढ़ंत कहानियां जिनके पेट में दर्द है वो जानबूझ करके फैलाते हैं, और ऐसी कहानियां फैलाने में उनको आनंद मिलता है। और ये पेट में दर्द महाराष्ट्र में किसके, आपको पता है? उबाटा गुट के नेता, उनको पता है कि उनके बचे कुचे विधायक भी असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ चले जा रहे हैं, तो विधायक न जाए और रुक जाए, तो इसके लिए ऐसी बातें जानबूझ करके परक्युलेट की जाती है। देखो, नाराजगी।
7: सर,
8: कोई नाराजगी नहीं है, उनके सारे मंत्री थे। अब हर बैठक में हर व्यक्ति शामिल हो, यह संभव नहीं होता। अच्छा, वो लोगों को मिलने वाले नेता है, हर काम में हर कार्यक्रम में जाने वाले नेता है, तो कुछ कार्यक्रम ऐसे जरूर होंगे जहां पर कोई पहुंच पाएगा, कोई नहीं पहुंच पाएगा। कुछ कार्यक्रम में सुनेत्रा पवार जी नहीं आ पाती व्यस्तता के कारण, कुछ कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे जी नहीं आ पाते अपनी व्यस्तता के कारण, पर इस व्यस्तता को नाराजगी के साथ अगर कोई जोड़ रहा है तो उस पर कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है। ये केवल और केवल उबाटा की ओर से बार बार फैलाने जा रहा है ऐसा झूठ है।
7: सर, पर अगर कार्यक्रम थे तो कैबिनेट के एक दिन बाद भी रखे जा सकते थे, मुलाकातें एक दिन बाद भी कैबिनेट के दिन, क्योंकि कैबिनेट तो पहले से शेड्यूल होती है।
8: नहीं, अभी उनकी उस समय क्या व्यस्तता थी इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, पर आपका जो मूल सटीक सवाल है, नाराजगी, तो बिल्कुल नाराजगी नहीं है, बल्कि तीनों नेता मिलकर के महाराष्ट्र को समूचे देश में इंफ्रा में नंबर वन कैसे बनाए, इसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अब मुंबई का आके चित्र देखो, ऐसा लगता है कि विदेश में आ गए, इतना सुंदर धीरे धीरे मुंबई बन रहा है, ये किसके प्रयासों के कारण हो रहा है? आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में ये दोनों उप मुख्यमंत्रियों को साथ में लेकर के हो रहा है, और कैबिनेट में सारे निर्णय सभी को साथ में लेकर के होते हैं। और मैं आपको विशेष तौर पर बाबत बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका एक स्वभाव है, वो सबको साथ में लेकर चलते हैं, वो छल कपट, किसी को दबाओ ये करो, इस प्रकार की ओछे राजनीति को कभी अपनाते नहीं है, वो स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति है। उनकी आंखों के सामने एक ही संकल्प है, विकास विकास और विकास, और इसी सपने को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जो कांग्रेस दल या अन्य दलों में जो छल कपट वाली राजनीति होती है वो उनके दिल में, मुख्यमंत्री जी के दिल में कभी भी नहीं है। और वैसे ही एक शिंदे जी भी है, वो भी पारदर्शिता के साथ स्पष्ट बोलते हैं
9: जी।
8: बिल्कुल, इसके लिए ये जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी है। अब ये मत पूछो राम कौन लक्ष्मण कौन, तो इसके लिए ये जोड़ी में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अच्छे से काम चल रहा है।
7: बिल्कुल, तो बीजेपी के नेताओं का तो मानना है कि कोई नाराजगी नहीं है। एकनाथ शिंदे अपने निजी और पहले से ही तय कार्यक्रम के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन राजनीतिक गलियारे जो हैं उनमें चर्चाएं कुछ और हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे जो हैं उन्होंने भी कहा है कि वो कोर्ट की सुनवाई थी, वकीलों से चर्चा थी और लोगों से मिलना था जिनसे मिलना नहीं हो पाता, इसीलिए वो दिल्ली गए थे। हालांकि देखना होगा कि आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे के इस दिल्ली दौरे के क्या मायने निकलते हैं।
0: शुक्रिया दिनेश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल ये मुद्दा है क्या, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं और खास बात यह है कि कल दोपहर 12 बजे देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन एकनाथ शिंदे उसमें शामिल नहीं हुए। वो 2 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या शिंदे बीजेपी से नाराज हैं।
10: शिवसेना पार्टी तो पूरे देश भर में हर राज्य में है और राज्य प्रमुख लोगों को उनकी भी मंशा होती है, उनकी इच्छा होती है कि हमारे प्रमुख से मिले, और दिल्ली में आकर बैठक होती है, उनको भी आसान होता है, और इसलिए हर राज्य में संगठन बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए हमारे राज्य प्रमुख काम कर रहे हैं। उनके साथ कल संगठनात्मक पार्टी की बैठक भी है, चर्चा भी होगी, और इसके लिए मैं आया हूँ। और सुप्रीम कोर्ट की कल से हमारी शिवसेना की भूमिका को सुप्रीम कोर्ट में रखने का काम हमारे जो सीनियर काउंसिल करेंगे उनके साथ भी चर्चा होगी।
5: मुझे लगता है कि आज का कोई ऐसा सवाल नहीं है, एकनाथ जी कैबिनेट में नहीं आए, कुछ वहां पर उनका कुछ प्रवास ठहरा होगा या कुछ उनके कार्यक्रम ठहरे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से एकनाथ जी हर बैठक में आते हैं। मेरी आज बात नहीं हुई है, निश्चित रूप से मैं बात करूंगा तो उनका आज का नहीं आने का कारण मुझे भी समझ जाएगा।
0: और अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत का। श्रीनगर में आज बड़े राजनीतिक टकराव का दिन है। एक तरफ विपक्षी बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी ओर सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी श्रीनगर में सिविल सचिवालय की ओर विरोध मार्च कर रही है। बीजेपी का मार्च बिजली की दरों और बेरोजगारी को लेकर है। तो सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर और जम्मू दोनों जगहों पर बीजेपी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने, संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण से जुड़ी फाइल पर अपनी मांगों के लिए दबाव बनाना चाहती है। तो आइए सीधा रुख करते हैं श्रीनगर का, जहां हमारे सहयोगी मीर फरीद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, एक तरफ विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन जो कि अक्सर रहता ही है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं सत्ताधारी पार्टी भी प्रदर्शन करना चाह रही है और मुद्दा वही है जो बार बार उठता है। तो कैसे होंगे ये दो प्रदर्शन, कोई टकराव की कहीं आशंका तो नहीं?
11: जी, घेराव की राजनीति आज होने वाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि रूलिंग पार्टी है और बीजेपी के बीच। इस वक्त हम राजबाग में हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट है। कुछ नेता आ चुके हैं, वर्कर आ चुके हैं, लेकिन आसपास पुलिस का पूरा घेराव है। साफ तौर पे जो तरीका रहा है यहाँ प्रशासन का पिछले 5-6 साल से, खासकर 370 हटने के बाद, कि किसी भी किसी का किस्म का प्रोटेस्ट जो है अलाउ नहीं होता है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लेटर भी दी थी एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर को कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि हम बीजेपी ऑफिस की तरफ से आए तो 3 से 4 नाके लगाए हुए हैं, तो इनको वहां की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर लाल चौक जो कि सिटी सेंटर है घंटाघर के पास, उनके भी जो वर्कर हैं जमा हो रहे हैं। उनका प्लान है कि वो जो सिविल सेक्रेटेरिएट है वहां की तरफ जाएंगे, घेराव करेंगे। दोनों पार्टीज के साफ तौर पर अलग अलग मुद्दे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और उसके साथ साथ जो रिजर्वेशन की फाइल।
0: बिल्कुल मीर, और लगातार हम इस पर नजर बनाए रखेंगे, शुक्रिया इस जानकारी का। अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर का, ये बताता है कि कैसा हाल है हमारे देश के शहरों का। लखनऊ जहां पर बीच सड़क में ऐसा गड्ढा बन गया कि एक शख्स की जान चली गई। दरअसल ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास हुआ है जहां 10 से 12 फीट चौड़ा एक गड्ढा बन गया जिसमें एक युवक गिर गया और उसको अस्पताल भेजना पड़ा है। अब जो खबर आ रही है आपको अपडेट कर देते हैं, जान इस वक्त जो कहा था हमने नहीं गई है, लेकिन एक शख्स गिर गया इस गड्ढे में, गड्ढे को भरने का काम किया जा रहा है।
9: लखनऊ में जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद यहाँ पर पूर्व डिप्टी सीएम है उनके घर के पास से लेके आप अगर गड्ढा हो गया बहुत बड़ा सा रोड में और मोटरसाइकिल अंदर गिर गई है और इस मोटरसाइकिल को निकाला जा रहा है यहाँ पर बाहर लोगों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो जो आए हैं नगर निगम के लोग उनके द्वारा गाड़ी खड़ी हुई है नगर निगम की उसके द्वारा, क्योंकि ये गड्ढा जो बारिश से हुआ है उसकी वजह से इसकी जो गहराई है वो अगर हम देखेंगे वो हो गया तकरीबन 10 से 12 फुट चौड़ा ये गड्ढा हुआ है। और ये मेन रोड है वहाँ पर ये गड्ढा हुआ है जो बारिश की वजह से, और इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो पूर्व डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा उनका घर है और उसके ठीक सामने ये रोड है जहाँ पर प्रयास किया जा रहा है पुलिस और जो नगर निगम की टीम है उसके द्वारा गड्ढे को कैसे ही भरा जाए, गड्ढे को पहले तो ये मोटरसाइकिल जो है वो निकाली जाए, क्योंकि प्रयास चल रहा है यहाँ पर मोटरसाइकिल निकालने का जो अंदर गिरी है कई कर्मचारी और यहाँ पर अलग अलग लोग पहुंचे हुए हैं जो की मौजूदा इस गड्ढे को निकालने की गड्ढे मोटरसाइकिल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो गड्ढे का जो वो है गहराई वो मैं आपको दिखा दूँ कि तकरीबन गहराई इसकी 10 से 12 फीट उसी जो गहराई जहाँ पर मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है यहाँ पर
12: है। अच्छा ये गिरे कैसे, इसमें कैसे चलते चलते गिर गया ये पता नहीं, कोई यहाँ था नहीं, हम लोगों को सूचना मिली तब आए।
9: आप लोग नगर निगम से? अच्छा, यहाँ पर आप लोग क्या सूचना मिली आप लोगों को, कैसे आए यहाँ पर? बारिश की वजह से अगले बैठी और यहाँ पर आप देखिए जो लोग है वो निकाल रहे हैं लेकिन मोटरसाइकिल निकल नहीं पा रही है। वैसे हालात में कितना समय लगेगा कुछ नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई ये 10 से 12 फीट थोड़ा लंबा गड्ढा मेन रोड पर हो गया। लखनऊ से आशीष श्रीवास आज तक।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो एक
3: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: खाना कहाँ से मंगवाया?
6: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
8: जीके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट प्राइमर
9: जीके मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
9: जीके मैक्स।
6: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
10: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
6: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: खाना कहाँ से मंगवाया?
9: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
11: जीके वॉल मैक्स।
9: बेस्ट प्राइमर
12: जीके मैक्स।
9: बेस्ट पेंट
12: जीके मैक्स।
9: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जीके मैक्स पेंट्स।
10: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूँ?
9: जीके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: खाना कहाँ से मंगवाया?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
4: बेस्ट प्राइमर
7: जेके मैक्स।
4: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
4: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
4: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सुंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
2: In association with
3: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल,
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
6: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
5: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
6: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
7: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
5: मैं आशुतोष मिश्रा,
7: रोहित सिंह,
6: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।
8: What is the difference between normal cold, allergy and sinus?
9: जो inhalers लोग use करते हैं, that unfortunately becomes a crutch in times of crisis. मैं कोई inhaler ले लूँ मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा. Whereas there is no relationship between the two. Horns and जो traffic noise है, India is a very very loud country. वहाँ से भी कहीं ना कहीं hearing loss होता है. हमने हिंदी में ear wax को मैल कह दिया. वो मैल नहीं है, वो कान को बैक्टीरिया, वायरस, ऐसी चीज़ों से बचा के रखता है। कान में तेल नहीं डालना। इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आप ये नहीं कर सकते।
8: सर, हियरिंग लॉस के अर्ली साइंस क्या होते हैं?
9: द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन ऑफ अर्ली हियरिंग लॉस विल बी आस्किंग पीपल टू रिपीट, क्या कहा आपने, क्या कहा।

0: आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात सितंबर में सैलाबी सितम की, जिसका असर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक दिख रहा है। उत्तराखंड में जहां भारी बारिश के बाद हालात काफी खराब हो गए हैं, सबसे ज्यादा कुमाऊं जिले का बुरा हाल है, जहां लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कें टूट गई हैं या रास्ता बंद हो गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल है जो सामने आ रहा है। यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। यहां नदियों में पानी ने रिहायशी इलाकों का रुख कर दिया है, जिसके बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बिहार में भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। नवगछिया, मुंगेर और बक्सर में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 17 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है। पहाड़ी और तटीय इलाकों में भी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात उत्तराखंड की, जहां भारी बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई है। उत्तरकाशी में धरासू के पास लैंडस्लाइड होने से मलबा गंगोत्री नेशनल हाईवे पर आ गया, जिससे हाईवे बंद हो गया है। वहीं नैनीताल, बागेश्वर और देहरादून में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों ने आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं।
1: पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद हालात ऐसे बने हैं कि डर लग रहा है। ये भीमताल ब्लॉक के अलचौना ग्राम सभा की तस्वीरें हैं, जहां पांडे छोर में घरों के अंदर पानी का फव्वारा फूटा है। इतनी बारिश हुई कि घरों के अंदर पानी घुस गया। लोगों के घरों के अंदर से मलबा और पानी एक साथ आ रहा है। नैनीताल जिले में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नैनीताल का सड़क संपर्क देश से लगभग कट गया है।
2: हे भगवान, बीच में फंस गए हैं। हल्द्वानी जा सकते हैं ना वापस स्कूल पे।
1: मंगलवार को हुई भारी बारिश की वजह से भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से नैनीताल को हल्द्वानी और काला ढूंगी से जोड़ने वाले दोनों प्रमुख मार्ग बाधित हो गए हैं। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर दो अलग अलग स्थानों पर दो कारें लैंडस्लाइड की चपेट में आ गईं। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। पिथौरागढ़ से लेकर अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल तक 141 सड़कें बंद हैं। इनमें बॉर्डर रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से लेकर गांवों को जोड़ने वाली सड़कें तक शामिल हैं। जगह जगह पहाड़ों से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है।

0: लगातार बारिश के चलते नदी नाले और गढ़ेरे उफान पर हैं। हल्द्वानी से होकर बहने वाली ग्वाला नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। कई नदियां खतरे के निशान के करीब या ऊपर बह रही हैं। नैनीताल में हो रही बारिश की वजह से कोसी नदी भी उफान पर है। नदी किनारों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अल्मोड़ा से होकर नैनीताल जिले के गर्म पानी खैरना बेताल घाट से होते हुए रामनगर के बीच बहने वाली कोसी नदी बहुत ज्यादा पानी है। कोसी के अलावा शिप्रा नदी भी उफान पर है। ये नैनीताल जिले का कैंची धाम है। यहाँ लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और शिप्रा का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। नदी के तेज बहाव को देखते हुए आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं बागेश्वर में भी हालात ठीक नहीं है। कपकोट और गरुड़ क्षेत्रों में तेज बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई। बागेश्वर में NH 109 सहित 16 अलग अलग मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। बंद हुई सड़कों की वजह से कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क कट गया है। बागेश्वर देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग NH 109 रवाईखाल के पास पहाड़ दरकने से मार्ग बाधित हो गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। बंद मार्ग के कारण एम्बुलेंस, टैक्सी और देहरादून से आ रही बस 4 घंटे से जाम में फंसी हुई है। यही हाल टेहरी में भी है। यहाँ भी सोमवार की देर रात से लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर है। कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। कई सड़कें बंद हैं। चंबा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 34 मलबा आने से बाधित है। घनसाली के हिंदाव पट्टी में जगदीगाढ़ कठोड़ मार्ग के नौलागाढ़ में भारी भूस्खलन हुआ। उधर लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। सोनप्रयाग में यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन ने सोनप्रयाग में बैरियर लगाकर यात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया है और सभी से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है। ये सारी गाड़ियां सोनप्रयाग में ही रुकी हुई हैं। फिलहाल केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को रोक दिया गया है। ये चमोली की तस्वीरें हैं, जहां कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। मंगलवार को थराली देवाल मोटर मार्ग पर नंद केसरी और कोठी के बीच अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। तस्वीरों में देख सकते हैं, पहाड़ से ऐसा मलबा आ रहा है कि जैसे कोई झरना बह रहा हो। यहाँ मलबा, मिट्टी, पत्थर सब कुछ टूटकर सड़क, मार्ग और नदी में जा रहा है। पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हो गई। सिर्फ उत्तराखंड के ही पहाड़ों पर नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की स्थिति है। ये पहलगाम की तस्वीरें हैं, जहां अचानक से बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आ गया। सैलाब का पानी बाजार की कई दुकानों, होटलों और घरों में घुस गया। इस टूरिस्ट स्पॉट में आए फ्लैश फ्लड से पैनिक की स्थिति पैदा हो गई। आज तक ब्यूरो।
1: पहाड़ के अलावा मैदानी इलाकों का भी हाल बुरा है। यूपी के कई जिलों में 6 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कई जिलों में बाढ़ की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए योगी सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जहां नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों का रुख भी कर दिया है, जिसके बाद लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही।

0: चित्रकूट की ये तस्वीरें आसमान से बरस रही आफत की कहानी बयां कर रही हैं। मंदाकिनी नदी ने उफान मारा तो रुख रिहायशी इलाकों की ओर कर दिया। जिन सड़कों पर गाड़ियां सरपट दौड़ती थी वहां नाव चल रही है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सड़क, दुकान, मकान सब डूबे हुए हैं।
1: आप देख सकते हैं कि मेरे घुटनों के बराबर से यहाँ से पानी पहुंच गया है और लगातार धीमे धीमे जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो लोग हैं यहाँ से अपने घरों से जो अपना सामान निकाल के सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। ये मंदाकिनी नदी तीसरी से चौथी बार यह मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर बढ़ा है लगभग 4 मीटर के ऊपर बढ़ रही है और जो पिछली बार की जो बाढ़ आई थी वह लगभग 135 मीटर के पास पहुंची थी, जो अपने 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था।
0: बाढ़ का पानी यूपी एमपी की सीमा को जोड़ने वाले मार्ग पर आ गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। जो लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं उन्हें एनडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है।
2: सुबह लगभग 7-8 बजे एकदम काफी स्पीड से जलस्तर बढ़ने लगा, उसके कारण जो है यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट की गई और हमारे पास सभी लोगों से निकलने का अनुरोध किया गया। काफ़ी लोग सुरक्षित जगह पे जो है निकल चुके हैं, कुछ लोग अभी भी अपने ऊपर छतों पे चले गए हैं, हायर पॉइंट्स पे चले गए हैं। लगातार उसमें हमारी एनडीआरएफ टीम्स लगी हैं। लेवल अभी 131 के अराउंड पहुंचा है और अभी भी पानी बढ़ रहा है, बारिश एमपी साइड काफ़ी हुई है, इसकी वजह से लगातार वॉच करते हैं।
0: स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है।
3: सर यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ चल रही है और बहुत सारा यहाँ से नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश में से लोगों को निकलने में आने जाने में समस्या हो रही है। सर पूरा स्टाफ से लगा हुआ है।
0: मंदाकिनी नदी अपना रौद्र रूप धारण करने लगी है, जिससे खतरे के निशान 126 मीटर से 131 मीटर के ऊपर पहुंच गई और लगातार अभी जल स्तर बरतता जा रहा है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है जो मंदाकिनी नदी ने 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है कहीं इस बार उसको भी पार न कर जाए। घाट के किनारे के इलाके ही बेहाल नहीं है, गलियों का हाल भी देखिए, ग्राउंड फ्लोर डूबे हुए हैं, लोग पहले माले पर शिफ्ट हो रहे हैं।
1: इस समय हम मौजूद है तरौहा गांव में, जहां आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाढ़ का पानी है वो तरौहा गांव में लोगों के घरों में घुस गया है। पूरी तरीके से लोगों के घर जलमग्न है, लोग अपने घर के बाहर यहां पर मदद का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि यहां पर अभी प्रशासन की किसी प्रकार की कोई मदद नहीं पहुंची है। जो लोग हैं इनके घरों में पूरी तरीके से बाढ़ का पानी घुस चुका है, जो इनके घरों में रखा सामान है वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है।
0: शहर मुख्यालय से तरौहा गांव को जो सड़क जाती है वह पूरी तरह नदी में तब्दील हो गई है। आलम यह है कि पूरा गांव पानी की जद में आ गया है। लोग अपने घरों के छत पर और घरों के बारजे पर बैठकर प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं। लोगों के घरों में खाना बनाने तक का सामान नहीं बचा है, किसी तरह वह छत पर बैठकर अपनी जान बचा रहे हैं। अब लखनऊ में भी चंद घंटे की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। झमाझम बारिश के चलते शहर के कई रिहायशी और व्यस्त इलाकों में भीषण जलभराव हो गया है। बारिश के बीच शहर के प्रमुख आईटी चौराहे के पास पेड़ अचानक सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। पेड़ गिरते ही मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। यूपी के बांदा में भी मूसलाधार बारिश का कहर है। बीते एक हफ्ते से रुक रुक कर हो रही बारिश से चारों तरफ आफत शुरू हो गई है। आलम यह है कि गांव से लेकर शहर तक गलियों में कई फीट पानी भरा हुआ है। सड़कों में पानी भरने से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है।
4: ये पूरा कच्चा मकान गिर गए, तब खाने की हमारी सब व्यवस्था थी जो सब वहाँ दब गए।
5: पानी भर गया, गेहूँ आटा जो भी मतलब हमारे यहाँ पे सब पूरा सामान गिर गया, रहने की जगह पूरा पानी भरा, यहाँ पे पानी नहीं रुक रहा था।
6: इतनी बारिश हो रही है और यहाँ से पानी नहीं जा रहा,
7: निकासी नहीं है पानी।
6: हाँ, निकासी नहीं है।
0: वाराणसी की ये तस्वीरें भी गंगा नदी के रौद्र रूप की कहानी बयां कर रही हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार चला गया है। और नौका संचालन पर भी रोक हफ्तों से लगी हुई है। अब जब काशी के हजारों नाविक नाव का संचालन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मौसमी बेरोजगारी में दूसरा हुनर में अपने आप को ढाल लिया है। कोई वहीं गंगा घाट पर फोटोग्राफी सीखकर सैलानियों और आस्थावानों की तस्वीरें खींच रहा है, तो कोई छोटी फूल माला की दुकान ही खोल लिया है।
8: नाव बंद होने के कारण देखिए अभी तो हम लोग को कोई चांस ही नहीं था। ऊपर में हम लोग काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग का डेली का काम है भाई, डेली कमाना, डेली खाना, और डेली हम लोग को पैसा मिल जाना।
9: नाव चलाते थे, नाव बंद हो गया है तो माला पूरा दुकान पर बैठते हैं। नाव से तो 2,000-1,500 मतलब मिल जाता रहा, इसमें तो 500-600 मिल जाए।
10: फिलहाल बैठे तो फोटोग्राफी कर सकते हैं, जीवन यापन के लिए कुछ करना जरूरी है। इस समय फोटोग्राफी करे पानी नीचे जाएगा तो फिर बोटिंग करेंगे, नाव चलाएंगे।
0: हालांकि नाव वालों के इस काम से भी यहां आए भक्त काफी खुश नजर आ रहे हैं।
11: बोट वगैरह चल नहीं रही है तो अब हम ऐसे ही घाट तो आना ही था, तो देखना ही था। काम अच्छा है, मतलब काम बढ़िया है, जैसा फोटो इन्होंने तुरंत निकाल के दे दिया।
12: तो ये बोट वालों का और इनका जो पेट पानी है वो ठीक से नहीं हो रहा है, इसीलिए वो पूजा पाठ कर रहे हैं।
0: वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने न केवल गंगा किनारे बसे लोगों को प्रभावित किया है, बल्कि गंगा की सहायक नदी वरुणा के किनारे दर्जनों बस्तियों और कॉलोनी में बसे हजारों लोगों को भी प्रभावित कर दिया है।
13: वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु को पार कर चुकी है और खतरे के निशान की ओर लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। यही वजह है कि न केवल गंगा के तटवर्ती इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, बल्कि जो सहायक नदी वरुणा है वहां भी गंगा का पलट प्रवाह का असर देखने को मिल रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के इस कुनिया घाट कुनिया पुल पर है, जो शहर के एक हिस्से से दूसरे इस कुनिया के इलाके को जोड़ता है। लेकिन जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ जो वरुणा का पानी है वह इस रिहायशी इलाके में यानी कुनिया और आसपास के तमाम इलाकों में घुस चुका है।
0: पूरे इलाके में लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। जहां सड़कें पूरी तरह से पानी पानी है, वहीं घरों में भी पानी की घुसपैठ शुरू हो गई है।
14: बहुत आने जाने में परेशानी हो रहा है, घर में सबके लोग घुस गया है।
15: आने जाने में दिक्कत हो रही है, फिलहाल भी बच्चे लोग नहीं जा पा रहे हैं, बाहर भीतर ना हम ही जा पा रहे हैं।
16: बहुत गंदगी हो रहा, अब घर में घुस जाएगा ताऊ गंदगी हो जाएगा, लाइन कट जाएगा, पानी भी नहीं आता है।
17: साफ मिल रहा है पानी?
16: नहीं, पानी भी साफा नहीं मिला, एकदम गंदा पानी मिल रहा।
0: यूपी के 19 जिले फिलहाल बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां प्रशासन की ओर से लगातार राहत पहुंचाने का काम चल रहा है, लेकिन इस बीच मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज तक ब्यूरो।
18: वहीं अब बात बिहार की, जहां मौसम की मार देखने को मिल रही है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। नवगछिया, मुंगेर और बक्सर में हालात बिगड़ रहे हैं। गंगा में कटान के चलते कई मकान ध्वस्त हो रहे हैं, कहीं कहीं तो कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। जहां सड़कें थी अब वहां नाव चलने की नौबत आ गई है।
0: गंगा में उफान आया तो ये हाहाकारी तस्वीरें देखने को मिली। गंगा का बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू है। भीषण कटाव के चलते राघोपुर काजी को रैया बांध ध्वस्त हो गया, जिसके चलते गंगा की लहरें भयानक हो गई। इन तस्वीरों को देखिए, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ ही सेकंड में दुर्गा मंदिर ताश के पत्तों की तरह गंगा में कटकर समा गया। अब लोगों में खौफ है, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं।
19: यहाँ का पूरा समाज ग्रस्त होने के लिए लगार पे है।
20: अभी क्या सब बेकार है?
19: अभी मंदिर कट गया, दोनों मंदिर दुर्गा स्थान और बजरंगबली का स्थान दोनों चले। ये पुरखों से बना हुआ था जो नष्ट हो चुका
21: है। सुबह से प्रशासन सब लगा है, उतना जियो सर नहीं आए हैं, हम तो आए हैं सुबह से देख रहे हैं, बहुत जनता लोग है, बहुत
22: दिक्कत वहाँ पे हुआ।
21: यहीं पे दुर्गा माता
23: जी को खाली कर दीजिए, हम लोगों से अपील है इस जगह को खाली करिए।
0: गंगा की धारा जिस तेजी से राघोपुर में जमीन को काट रही है, उसने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। ब्रह्म बाबा स्थान से महादेवपुर घाट तक रेलवे लाइन के आसपास के इलाके को सुरक्षा के लिहाज से खाली कराया गया है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जबकि जल संसाधन विभाग की टीमें कटाव रोकने के लिए लगातार फ्लड फाइटिंग में जुटी हैं।
24: जी, काफी प्रयासों के बावजूद यहाँ पर जो गंगा की धारा है वो चेंज हुई है, और प्लस काफी तेज होने की वजह से नदी भी ये संभव नहीं हो सका है भरसक प्रयासों के बावजूद कि कटाव को बहुत हद तक हम लोग रोक सकें। तो अभी रेलवे बांध को प्रोटेक्ट करने का कार्य अभी भी किया जा रहा है, लगातार हम लोगों का प्रयास है कि रेलवे बांध जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, और साथ साथ में इवैक्यूएशन के लिए भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है।
0: नवगछिया की ही ये तस्वीर देखिए, पूरा इलाका दरिया हो गया है, लोगों के घरों में कमर तक पानी भरा हुआ है, मंदिरों में सैलाब आया है और सड़कें तो समंदर हो गई हैं। देखिए किस तरह से गलियों में लोग डूब डूब कर निकल रहे हैं, लोगों के घरों में सैलाब घुस आया है, लोग परेशान हैं। अब स्थिति ये है कि यहाँ नाव ही सहारा है।
1: कुछ नहीं दिया, नहीं दिया। रेलवे लाइन से बगल में सबका माल जाल लेके रहता है, बनी टंकर कुछ नहीं दिया।
2: खाना पीना कैसे हो रहा है?
1: खाना पैसा दिक्कत से आरो, यही बात।
2: कोई सरकारी मदद अभी नहीं मिला है?
1: नहीं, कुछ
3: सूखा मतलब समझिए चूड़ा मुढ़ी खाकर जो है ये 3 महीना हम सबको कष्टदायी गुजारना पड़ता है, और यहाँ की जनता को जो है जिसको नाव है वो नाव से जाता है, जो इसको नाव नहीं है वो भर छाती पानी, अभी तो कुछ दिन के लिए ही पानी कमा है लेकिन फिर बढ़ेगा। यहाँ की जनता को बहुत कष्ट है, यहाँ के पशु पाल जितने भी है वो सबको तो पूरा कष्ट है सब।
18: हर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
25: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
26: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
27: सोच बदलो और बैंक भी।
17: In association with
28: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
29: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: स्वाद और सुविधा के इस दौर में पैकेज्ड फूड हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर ग्राहक को ये साफ साफ क्यों नहीं बताया जाता कि वो जो खा रहा है उसमें चीनी, नमक और फैट कितना ज्यादा है। अदालत ने केंद्र सरकार और फसाई को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो अदालत खुद आदेश जारी करेगी। कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पूछा है कि क्या इस मामले में कॉरपोरेट दबाव काम कर रहा है। वहीं बढ़ते बच्चों और आम नागरिकों की सेहत को प्राथमिकता देने पर जोर देने की बात कही है। इसके लिए सरकार और FSSAI को 2 हफ्तों में कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट की सख्ती के पीछे लंबे समय से चल रही बहस है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि फसाई पैकेट के सामने साफ चेतावनी देने की जगह दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है। वहीं फूड इंडस्ट्री का तर्क है कि पैकेट पर चेतावनी वाले निशान लगाने से बिक्री प्रभावित हो सकती है। फसाई ने विकल्प के तौर पर न्यूट्रिशन टेबल को प्रमुखता देने का सुझाव दिया है। वहीं सरकार ने कहा है कि कई पारंपरिक भारतीय स्नैक्स में नमक और फैट स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है और ऐसे मानक लागू होने पर कई उत्पादों पर चेतावनी चिन्ह लग सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कंपनियों का कारोबार जनता की सेहत से बड़ा नहीं हो सकता। अदालत के मुताबिक ग्राहक को ये जानने का पूरा अधिकार है कि वो क्या खा रहा है, उसमें कितनी चीनी, नमक या फैट मौजूद है। दरअसल दुनिया के कई देशों में फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल पहले से लागू है और वहाँ इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं। इन लेबल्स का मकसद किसी उत्पाद की बिक्री रोकना नहीं, ग्राहक को खरीदारी के समय जरूरी जानकारी देना है। इन लेबल के लागू होने के बाद कई देशों में कंपनियों ने अपने उत्पादों की संरचना में बदलाव किए हैं और ग्राहकों में हेल्दी विकल्प चुनने की जागरूकता भी बढ़ गई है। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि चेतावनी लेबल लगाने का मतलब किसी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, क्योंकि फैसला ग्राहक का ही रहेगा, लेकिन खरीदने से पहले उसे पूरी जानकारी मिलनी ही चाहिए। अगर भारत में फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल का नियम लागू होता है तो पैकेट के सामने ही साफ दिखाई देगा कि किसी प्रोडक्ट में चीनी, नमक या फैट की मात्रा तय सीमा से ज्यादा है या नहीं। जाहिर है ये कदम करोड़ों ग्राहकों को ज्यादा जागरूक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इसमें चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन या कोई पैकेज्ड फूड खरीदने पर उन्हें कीमत और एक्सपायरी डेट के साथ ही उसमें मौजूद चीनी, नमक और फैट की मात्रा की भी जानकारी मिल जाएगी। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: सकता है राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ का नाम शॉर्टलिस्ट हुए तीन लोगों में से चुने जाएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर्च कमिटी ने न्यास को सौंप दी है फाइनल रिपोर्ट।
1: मोहन यादव सरकार बदलेगी। भोपाल के राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम मध्य भारत मालवा और महाकौशल के नाम से तीन भागों में बांटा जाएगा विश्वविद्यालय। कैबिनेट का बड़ा फैसला।
0: कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतरी दोनों पार्टियां। वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर उमर अब्दुल्ला सरकार से बढ़ा टकराव।
1: दिल्ली गैंगरेप केस में पुलिस को मिले कई सबूत। काम नहीं कर रहा था बस का सीसीटीवी सीट और स्टेयरिंग से लिए गए सैंपल्स। 4 अगस्त को ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट के बीच में वारदात हुई थी।
0: ईरान के सामरिक ठिकानों पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले। एयर डिफेंस रडार और समुद्री ठिकाने तबाह। तेहरान ने भी जॉर्डन पर दागी मिसाइलें। अमेरिकी बेस को बनाया निशाना।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के शतक आज तक के साथ। नेपाल राजधानी में मरने वालों की संख्या 1100 के पार, अब तक 1126 डेड बॉडीज बरामद। लापता लोगों की संख्या 8400 के पार, 25 पुलिसकर्मी अब भी लापता। त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर से जिंदा लौटे श्रमिक ने सुनाई वहां के भयानक हालत की आपबीती। चीनी सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप लगाए। श्रमिक के मुताबिक बाढ़ के समय नंबर 3 टनल में लगभग 265 लोग काम कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि सुरंग के अंदर कई लोगों की मौत हो चुकी है। संकट में नेपाल के साथ खड़ा हुआ भारत, 5.5 टन दवाइयों के साथ 5वीं खेप भी भेजी। इसमें 11 सदस्य बचाव दल विशेष उपकरण शामिल है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद। भारत से लाए गए कंबल, राशन, बोले कि अगले महीने तक मदद रखेंगे जारी। दिल्ली बस गैंगरेप केस में बड़ा खुलासा, फिंगरप्रिंट से आरोपियों की मौजूदगी कंफर्म हुई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि बस में लगा हुआ सीसीटीवी फंक्शनल ही नहीं था। सीटों और स्टीयरिंग से फॉरेंसिक सैंपल लिए गए। डीएनए जांच में रिपोर्ट सामने आने के बाद से मामले में फॉरेंसिक सबूतों की कड़ी और मजबूत होने की उम्मीद है। पुलिस बहुत जल्द इन केसेस के चार्जशीट दाखिल करेगी। दिल्ली के संजय झील में 3 की डूबने से मौत, 22 से 25 साल के बीच में थी तीनों की उम्र, परिवार में कोहरा। एक दोस्त झील में नहाने के दौरान डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए उसके दो दोस्त भी पानी में कूदे, लेकिन देखते ही तीनों ही डूब गए।

0: आज तय होगा अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ। हजारों में चुने गए केवल 3 नाम। बैठक में 12 बड़े फैसले। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में 2 सत्रों में होगी यह बैठक। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास के स्थान मणि रामदास छावनी में होगी। राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक के लिए कई प्रमुख ट्रस्टी अयोध्या पहुंचे। मीटिंग में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद खाली हुई सीटों के साथ राज परिवार से जुड़ी रिक्त सीट पर भी नए नामों पर फैसला संभव। इस दौरान सीईओ की नियुक्ति के साथ साथ ट्रस्ट के डीड में भी बदलाव पर चर्चा हो सकती है। ट्रस्ट दान की चोरी की एसआईटी जांच और सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई की स्थगित की स्थिति की भी समीक्षा करेगा। पीएसी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर होगी सुनवाई। कोलकाता में शेक्सपियर सरणी पर ऊंची इमारत में ईडी का रेड। टोल रेवेन्यू की हेराफेरी के आरोप के कारण की जांच शुरू। आंध्र प्रदेश के पल्लावरम में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। मलेरिया की दवा खाते ही 50 से अधिक बीमार। 7 साल की बच्ची की मौत। केंद्र सरकार ने चीनी के स्टॉक सीमा घटाकर 2000 क्विंटल की। 15 सितंबर से लागू होगी नई सीमा। भू घोटाले में एफआईआर की मांग। ईडी ने पंजाब बीजेपी को तीसरी बार लिखा पत्र। पंजाब हरियाणा एचसी में ईडी ने दाखिल किया था 200 पेज का जवाब।
1: जॉर्डन से बेरिन तक दहला मिडिल ईस्ट। अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान ने किया जबरदस्त पलटवार। ईरान ने जॉर्डन बेरिन और इराक में अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना। साथ ही तेहरान ने चेतावनी दी कि खाड़ी तेल के निर्यात को पूरी तरह से रोक देगा। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कड़ी चेतावनी बदला लिया तो फिर अमेरिका और बड़ा हमला करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच में सैन्य तनाव बढ़ने से कच्चे तेल में $4 प्रति बैरल से ज्यादा का उछाल। ब्रेंट $94 के पार। ईरानी मीडिया के अनुसार होर्मुज में तटीय इलाके सिरिक में शादी समारोह पर हमला किया गया। 5 की मौत इसमें हुई। 50 से ज्यादा घायल है। IRGC का जॉर्डन में प्रिंस हसन एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा। RQ-4 और MQ-9 ड्रोन को उनके हैंगर को निशाना बनाया गया। IRGC ने नए ड्रोन के नष्ट, अमेरिकी कर्मियों की मौत और सैन्य ठिकानों के ढांचों में आग लगने का भी दावा किया। ईरान का अमेरिका को बड़ी चेतावनी। सैन्य कार्रवाई जारी रही तो फिर आपको और ज्यादा नुकसान भुगतना होगा। जॉर्डन ने 13 में से 10 मिसाइलें रोकी। अमेरिकी सैनिकों की मौत का IRGC का दावा। अमेरिका ने खर्च किया। मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका ने फिर से जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। ईरान ओमान शिपिंग फ्रेमवर्क बनाने में जुटे।
0: आतंकवाद के खिलाफ एससीओ में पीएम मोदी का कड़ा रुख। कहा पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना जरूरी है। सीमा पार पनागाहों को कड़ा संदेश। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का मेगा प्लान। वडनगर से वाराणसी तक निकलेगी खास यात्रा। दोनों शहरों से रवाना होंगी 10-10 टीमें। 17 सितंबर को है प्रधानमंत्री का जन्मदिन। दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन पर जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान। राज्यों में दर्ज सभी FIR होंगी वापस। CJP के मार्च वापस लेने के फैसले का किया स्वागत। राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप। कहा महाराष्ट्र से बंगाल तक हुई वोट चोरी। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश। राहुल गांधी का फिर सबसे तीखा प्रहार। बोले किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है बीजेपी। चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी का लगाया आरोप। राहुल गांधी आज नासिक में कांग्रेस की बैठक करेंगे संबोधित। संगठन और तैयारियों की आगामी रणनीति पर मंथन। नासिक में आदिवासी छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। हॉस्टल की समस्या और 17 दिन की भूख हड़ताल पर होगी चर्चा। यूपी पेट 2026 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी। अब 7 सितंबर तक कर सकेंगे पेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन। दिल्ली में चावल चोरी मामले में CBI ने दर्ज किया मामला। आम आदमी पार्टी का दावा 5 करोड़ किलो चावल की चोरी। मंत्री सिरसा की भूमिका की जांच की मांग।
1: मुंबई में अस्पताल में अन्नाहजारे से मिले सीएम फडणवीस। जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। देवेंद्र फडणवीस ने अन्ना हजारे को कुकड़ी सिंचाई परियोजना की जानकारी दी। संबंधित खर्च को कैबिनेट की मंजूरी। जालना में ब्राह्मण समाज की विभिन्न मांगों को लेकर ब्राह्मण समाज के अनशनकर्ता दीपक रणनवरे का अमरण। अनशन ब्राह्मण समाज के बच्चों की शिक्षा मुफ्त करने की प्रमुख मांग है। नीट आंदोलन को अभिजीत दीपके ने बताया सफल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 सितंबर का प्रस्तावित आंदोलन रद्द किया गया। छात्रों पर केस वापसी और आत्महत्या पीड़ित परिवारों को मुआवजा। दीपके ने कहा कि यह बड़ी जीत है। छत्रपति संभाजी नगर में रैपिडो के खिलाफ ऑटो चालकों का मोर्चा। बाइक टैक्सी सेवा बंद करने की सीधी मांग। ऑटो चालकों ने RTO के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। अवैध यात्री परिवहन पर कार्रवाई और किराया बढ़ाने की भी मांग। महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा पर FDA की बड़ी कार्रवाई। 3 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड। सांगली में 165 लीटर दूध नष्ट। अकोला में ब्लिंकिट का लाइसेंस निलंबित। मुंबई में FDA का बड़ा एक्शन। मलाड के दिल्ली स्वीट हाउस और कुर्ला के गुलजार मोहम्मदी होटल का लाइसेंस सस्पेंड किया गया। नोएडा में बिजली की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन। मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने के आरोप में विधायक कार्यालय का घेराव कर दिया गया।
0: हिमाचल प्रदेश बारिश का कहर जारी। सोलन में नदी नाले उफान पर। कई जगहों पर सड़कें बनी सैलाब। भारी मलबे और बड़े पत्थरों से सड़कें बाधित, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। 4 सितंबर तक बारिश से राहत के आसार नहीं। उत्तरकाशी में बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन। पहाड़ी मलबे में फंसे यात्री बस को निकालना गया सुरक्षित। प्रदेश के बाणसागर डैम के गेट खुलने से रोहतास बढ़ा। सोन नदी का जलस्तर, नदी किनारे रहने वालों को दूर जाने की सलाह। बिहार के नवगछिया में गंगा का कहर, राघोपुर में कटाव से हड़कंप, मंत्री विधायक ने किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भारी बारिश के कारण कालाकोट नदी उफान पर, आम जनजीवन प्रभावित। देहरादून और टिहरी में ऑरेंज अलर्ट, रिस्पना नदी में जलस्तर बढ़ा। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में तेज लहरों की चपेट में आई क्रेटा गाड़ी, एसडीआरएफ ने घायल महिलाओं को किया रेस्क्यू, 2 की गई जान। बिहार के भागलपुर जिले में आई बाढ़, मदरौना गांव के इलाके हुए प्रभावित। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के खटीमा शहर में जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर जल जमाव की स्थिति।
1: चंबा में बाढ़ में फंसे युवक के लिए देवदूत बनी महिला, दुपट्टे से बाइक सवार की बचाई गई जान, लोगों ने महिला के साहस की सराहना की। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जारी मूसलाधार बारिश के चलते अल्मोड़ा जिले में भी लैंडस्लाइड, रेस्क्यू में एसडीआरएफ की टीम। झारखंड के गढ़वा जिले में मूसलाधार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर के कई घरों, दुकानों और स्कूलों में बारिश का पानी घुसा। नैनीताल में बारिश का रौद्र रूप, लैंडस्लाइड में 2 कारें फंस गए। कुमाऊं में 141 सड़कें बंद, नदी नाले उफान पर। नैनीताल जिले में हो रहे भारी बारिश के बीच में उफान पर कोसी नदी, नदी के किनारों के लिए प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। कैच धाम के ऊपर उपनाई शिप्रा नदी भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ा है। गाजीपुर में गंगा उफान पर है, खतरे का निशान पार किया नदी ने और डीएम ने एडवाइजरी की जारी। उत्तराखंड में लगातार बारिश से यातायात बुरी तरह प्रभावित, बागेश्वर में नेशनल हाईवे में 109 समेत 16 मोटर मार्ग बंद, एम्बुलेंस समेत सैकड़ों वाहन सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लाहौल में चंद्रभागा के उफान में जोरबंग में पुल पर एक बुलेरो गाड़ी फंस गई, लगभग 3 घंटे तक गाड़ी फंसी रही, इसमें 2 युवक और देर रात हुआ इनका रेस्क्यू। पहलगाम में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, बाजार होटल सब जलमग्न, जान बचाने के लिए लोग भागते दिखे।
0: दिल्ली के रोहिणी में बुजुर्ग की हत्या का 2.5 घंटे में खुलासा, लूट के इरादे से वारदात को दिया गया अंजाम, लड़की समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 63 की फुटवेयर फैक्ट्री में आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कोई जनहानि नहीं। तेलंगाना के हैदराबाद में लगी भीषण आग, कोई जनहानि नहीं। झांसी में तेज रफ्तार कार ने पेड़ और गैस पाइपलाइन को मारी टक्कर, गैस रिसाव से मची अफरा तफरी, चालक पुलिस की हिरासत में। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी में तेज रफ्तार ट्रक चालक ने मचाई तबाही, नशे में धुत ड्राइवर ने गेट में घुसाई ट्रक, 4 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में धारदार हत्या से युवक पर हमला, 2 लोग हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। बिहार के हाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। छपरा में 50 लाख रुपए के संदिग्ध साइबर लेन देन के नोटिस से परेशान होकर एक युवक टावर पर चढ़ा, पुलिस ने समझा बुझाकर उतारा नीचे। बिहार के वैशाली में बदमाशों का आतंक, पशु व्यापारी पिता पुत्र को मारी गोली, मौके पर हुई पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल।
1: वडोदरा में ट्रेलर और एलपीजी टैंकर में जबरदस्त टक्कर, एलपीजी टैंकर ने संतुलन खोकर सड़क पर वो पलट गया, वन वे किया गया भाई। नागपुर में हत्या, लूट और चोरी के 4 आरोपी बाल सुधार गृह से भागे, शौचालय की खिड़की के जरिए फरार हो गए। फरीदाबाद में स्कूल की छत से 11वीं की छात्रा ने छलांग लगा दी, छात्रा के परिवार वालों का स्कूल पर आरोप कि लगभग 4 घंटे तक सजा के तौर पर क्लासरूम से बाहर खड़ा किया गया था। जयपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद थाने के बाहर धरना, शव लेने से किया इनकार, गला घोंटकर हत्या का आरोप। भोपाल में फर्जी आईएएस तृप्ति सिंह राजपूत का नया वीडियो वायरल, सहेलियों के साथ हमारी हरकतों को देखकर कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हम तीनों आईएएस ऑफिसर हैं, कहती दिखी। इंदौर में 20 सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन पड़ा भारी, कार रोककर काटा गया केक, वीडियो वायरल होते पुलिस ने सबक भी सिखाया। जालना में एसडीआरएफ जवान ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या की कोशिश की। अयोध्या में लक्ष्मी स्वीट हाउस में लगी आग, सिविल लाइन्स इलाके में हड़कंप मचा। चंद्रपुर में ग्रह दोष दूर करने के बहाने तांत्रिक का घिनौना खेल, पति को सामान लेने भेजा और पत्नी के साथ किया दुष्कर्म। उन्नाव में 10 फीट गहरे गड्ढे में, उसके बाद से गंगा का प्रभाव दिख रहा है और एक्सप्रेस वे पर 7 फीट गहरा गड्ढा हुआ है। कटिहार के अंचल कार्यालय में मारपीट, सीओ और प्रधान लिपिक के बीच हाथापाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। पंजाब के फाजिलका में बेटे ने मां की पीट पीट कर हत्या कर दी, आरोपी ने अपनी मां के सिर पर प्रेशर कुकर से कई बार वार किया। जयपुर में थार एडवेंचर की रफ्तार ने मचाया कहर, 50 फीट दूर जाकर गिरा ई रिक्शा, कांग्रेस नेता की पत्नी के नाम पर एक कार रजिस्टर्ड। कौशाम्बी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा पहुंचा 13, समाजवाद जो है एसपी ने इसकी पुष्टि की, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। कौशाम्बी धमाके के आरोपी नौशाद आदिल के घर पर पीडीए की टीम का बुलडोजर और इसी मकान में अवैध फैक्ट्री चल रही थी।

0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के सांसदों ने सवर्ण आयोग बनाने की मांग की है। सवर्णों के साथ अन्याय दूर करने के लिए मांग की गई है, सवर्ण आयोग बनाया जाए, सरकार के सामने ये मांग रखी गई है। एससी एसटी आयोग तो है, तो सवर्ण आयोग क्यों नहीं हो सकता, ये बीजेपी सांसद तर्क दे रहे हैं।
1: ये बड़ी खबर, आरक्षण को लेकर एक लंबा प्रोटेस्ट देखने को मिला, फिर बातचीत भी हुई, लेकिन एक वर्ग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि उनकी भी यही मांग है कि एक आयोग होना चाहिए, और अब तो बीजेपी के सांसद भी ये मांग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, ये कितने सांसद हैं जो मांग कर रहे हैं? अब तो खुद सांसद हैं, तो उनको तो सरकार से कहना चाहिए।
2: देखिए, बिल्कुल, कई सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि स्वर्ण आयोग जो है वो बनाया जाना चाहिए, और वो भी बिहार सरकार की तर्ज पर, क्योंकि बिहार के अंदर जो है वो स्वर्ण आयोग है। और इन सांसदों का ये भी कहना है कि देखिए, अगर ओबीसी आयोग है, उसके साथ साथ एससी एसटी कमीशन है, आयोग है, तो क्यों ना जो है स्वर्ण आयोग होना चाहिए, माइनॉरिटी आयोग है, तो उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि एससी एसटी आयोग अगर क्यों नहीं बनाया गया, और आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को आरक्षण की व्यवस्था को क्यों दुरुस्त करने के लिए बनाया जाए स्वर्ण आयोग, क्योंकि सरकार पहले ही जो है अपर कास्ट के अंदर जो है वो ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए 10% जो है रिजर्वेशन पहले ही सरकार ने सुनिश्चित कर लिया था 2018 के अंदर। अब ये मांग जो है उठाई जा रही है, और आपको याद होगा कुछ दिन पहले जेपी नड्डा से एक डेलीगेशन मिला था ब्रिजेश पाठक के नेतृत्व में, जिन्होंने इस मांग को दोहराया था कि स्वर्ण आयोग जो है वो बनाया जाए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच बड़ी खबर मध्यप्रदेश से, जहां की राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को लेकर मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। विश्वविद्यालय मध्य भारत मालवा और महाकौशल के नाम से तीन भागों में बंट जाएगा। कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है।
1: तो ये बड़ी खबर, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसका नाम अब बदला जाएगा और नाम भी अलग अलग भागों में बांटा जाएगा। हमारे साथ संवाददाता रविश पाल सिंह जुड़ गए। रविश, नाम बदलने को लेकर पहले भी हमने काफी पॉलिटिक्स देखी है, लेकिन क्या तर्क दे रहे हैं नाम बदलने के पीछे मध्य प्रदेश की सरकार?
3: देखिए, सिर्फ नाम नहीं बदला जाएगा बल्कि यूनिवर्सिटी के तीन अलग अलग टुकड़े भी होंगे। फिलहाल ये जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये सिर्फ एक जगह कैंपस है भोपाल में, लेकिन अब इसके तीन अलग अलग कैंपस किए जाएंगे। भोपाल कैंपस तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जबलपुर और उज्जैन, ये दो नए कैंपस बनेंगे। और इसके साथ ही अब जो राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसका नाम है, इसका नाम बदल करके जो जबलपुर में यूनिवर्सिटी होगी उसका नाम महाकौशल यूनिवर्सिटी किया जाएगा। जो भोपाल में है उसका नाम राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बदल के मध्य भारत टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगा, तो वहीं उज्जैन में जो यूनिवर्सिटी स्थापित होगी उसका नाम होगा मालवा टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो यानी ना केवल नाम बदलेगा, राजीव गांधी का नाम हटेगा, बल्कि तीन नए नामों के साथ ही तीन अलग अलग टुकड़े भी इस यूनिवर्सिटी के होंगे। 1998 में यूनिवर्सिटी बनी थी राजीव गांधी के नाम से, और करीब 200 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में है। सरकार का तर्क है कि अभी जिस स्तर पर इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेज संचालित होते हैं वो पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, और अगर पूरे प्रदेश में कोई भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ कोई मामला होता तो छात्रों को काफी लंबी दूरी तय करके आना पड़ता था। देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, और ऐसे में सरकार का तर्क है कि अगर तीन अलग अलग यूनिवर्सिटीज होंगी अलग अलग क्षेत्रों में, तो महाकौशल का संभाग जितना पड़ेगा वहां के जितने छात्र होंगे वो जबलपुर में जाकर के अपनी समस्या या यूनिवर्सिटी से जुड़े कामकाज करवा सकेंगे, मध्य भारत के अंतर्गत भोपाल समेत आसपास के जितने जिले हैं वहां छात्र आ सकेंगे, और मालवा यानी इंदौर उज्जैन रतलाम नीमच समेत जितने छात्र वहां के होंगे वो उज्जैन यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना काम करा सकेंगे। तो सरकार का तर्क यह है कि कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ साथ में काम आसानी से हो सके और सुविधा बढ़ सके छात्रों की, इसके लिए तीन अलग अलग जगहों पर अब यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जिस शख्स को भारत रत्न मिल चुका है उसके नाम को आखिर हटाने के पीछे सरकार क्या तर्क देगी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।
1: इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। श्रीनगर में आज बड़े राजनीतिक टकराव का दिन है, क्योंकि बीजेपी और सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में सिविल सचिवालय की ओर विरोध मार्च किया है। तो बीजेपी का यह मार्च बिजली की दरों, बेरोजगारी को लेकर है। वहीं सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस को श्रीनगर और जम्मू दोनों ही जगहों पर बीजेपी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए निकली, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक किया। दरअसल पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों को और आरक्षण से जुड़ी हुई फाइल पर अपनी मांगों के लिए दबाव बनाना चाहती है। तो ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला, बीजेपी भी है और सत्ताधारी पार्टी भी, यानी कि ऑपोजिशन और सत्ताधर दोनों ही सड़कों पर है और अपनी अपनी मांगों को लेकर एक केंद्र सरकार से मांग कर रहा है और एक राज्य सरकार से मांग कर रहा है, एक बिजली और एक बेरोजगारी का विषय उठा रहा है। और तो एक राज्य के राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, उसे यूनियन टेरिटरी है, तो जो आपका वादा था वो पूरा किया जाए, वो लगातार मांग कर रहे हैं। हमने संसद में भी देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोटेस्ट किया था और अब एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये प्रोटेस्ट किया है।
0: दोनों प्रदर्शन आप देख रहे हैं इस वक्त शुरू हो गए हैं। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट जारी है जिसमें उनके झंडों के साथ कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है दरअसल, क्योंकि इसमें दोनों सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष सड़क पर उतर आए हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए भी कड़ी चुनौती है वहां पर शांति व्यवस्था बहाल करने की। और ये देखिए लाल चौक पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर बीजेपी के झंडों के साथ प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं।
4: और इस वक्त हम राजबाग इलाका है श्रीनगर का, वहां पे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रोटेस्ट है, अब वो कोशिश कर रहे हैं यहां से बीजेपी जो है ऑफिस की तरफ जाने की, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त है, पुलिस का कंटिंजेंट सीआरपीएफ यहां है, रास्ते को बंद कर दिया गया है और कोशिश यही है कि इससे आगे किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट मार्च करने की कोशिश जो है जो बीजेपी है वो कर रही है। और बीजेपी की बात करें तो वो जो लाल चौक है ऐतिहासिक, वहां से सिविल सेक्रेटेरिएट जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं यहां पुलिस ने इनको रोक लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता हैं, कुछ वर्कर हैं, हालांकि बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि यहां से बीजेपी के ऑफिस की तरफ जाएं। कोशिश बीजेपी का ऑफिस घेराव करने की, डिमांड्स क्या है, स्टेटहुड की वापसी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, गोल्ड पोस्ट, थोड़ा सा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लफ्ज इधर उधर किए हैं, जो 370 है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का नाम दे दिया है, लेकिन स्टेटहुड और उसके साथ रिजर्वेशन की जो फाइल है, रिजर्वेशन की जो फाइल एलजी ऑफिस में इनके मुताबिक है, वो जो है पास नहीं हो रही है। तो आज प्रोटेस्ट का दिन, जो राजनीति है, गरमाई है इन सारे मुद्दों को लेकर, हालांकि अलग अलग गोल पोस्ट है, मुद्दे हैं दोनों पार्टीज के। बीजेपी मांग कर रही है कि उमर की अब्दुल्ला की सरकार है नाकाम रही है, कोई जो है लोगों के मसले हल नहीं हो रहे, बिजली की जो दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं, लोगों पे बर्डन बढ़ रहा है और जो भी वादे किए थे इन्होंने चुनावी वादे वो पूरे नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनको जो है रिजाइन कर देना चाहिए। और उसी डिमांड को लेकर वो सिविल सेक्रेटेरिएट जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोटेस्टर हैं बीजेपी के ऑफिस जाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: और अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
11: जेके वॉल मैक्स।
12: बेस्ट पेंट
13: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
15: जेके मैक्स पेंट्स।
14: जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: इन एसोसिएशन विद
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
6: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
7: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर।

0: राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम मध्य भारत मालवा और महाकौशल के नाम से तीन भागों में बढ़ जाएगा विश्वविद्यालय। कैबिनेट का बड़ा फैसला।
1: जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरी दोनों पार्टियां। वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर उमर अब्दुल्ला सरकार से टकराव बढ़ा।

0: आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया आदेश।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत पर अब सीबीआई जांच होगी। दिशा सालियान केस में हाईकोर्ट ने फैसला लिया है कि उसकी मौत की जांच सीबीआई करेगी।
2: ये बहुत बड़ी खबर है। दिशा सालियान मौत की जांच होगी। साल 2020 में उनकी मौत हुई थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता विद्या भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विद्या, क्या क्या निर्देश है कोर्ट के?
3: अदालत ने साफ साफ कहा है कि जो मुंबई के आला सीबीआई के अधिकारी हैं वो एक केपेबल अधिकारी को अपॉइंट करेंगे। इस पूरे मामले में कंप्लेंट जो है सतीश सालियान की वो ली जाएगी और साथ ही इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जाहिर सी बात है अदालत ने, क्योंकि आदित्य ठाकरे अदालत पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि ये पूरी पॉलिटिकल रीजन से ये एलिगेशन उन पे लगाए जा रहे हैं इस पूरे मामले में, तो यही वजह है कि अदालत ने साफ किया है अपने आदेश में कि जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ती है तब तक किसी को भी आरोपी नहीं माना जाए, उनके ऊपर दोषारोपण नहीं किया जाए और जब तक कोई पुख्ता सबूत ना होते हैं। तो जाहिर सी बात है अदालत ने साफ किया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है सीनियर ऑफिसर कोई सीबीआई के करेंगे और इस पूरे मामले में जब तक पूरी कोई पुख्ता खबर बात नहीं आती सामने, किसी के पर उंगलियां नहीं उठती, तब तक उसके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया जाए।
0: इसके अलावा अब इस केस को काफी वक्त बीत चुका है, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, कई ऐसे साक्ष्य होंगे जो काफी हद तक मैनिपुलेटेड होंगे या नहीं पाए जाएंगे, इस बारे में फिर किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी?
3: देखिए, अक्सर हमने देखा है बहुत पुराने जो मामले होते हैं वो डॉक्यूमेंट बेस्ड ही होते हैं। जाहिर सी बात है उस समय के जो पोस्टमार्टम, और अगर आपको याद हो क्योंकि मुंबई पुलिस ने उस समय भी एक इंक्वायरी की थी 2022 में जब बीजेपी की सरकार आई, तब उसके बाद फिर एक एसआईटी गठित किया गया था और उसके बाद भी जांच पड़ताल फिर से इंक्वायरी की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट का साफ कहना था कि जब एलिगेशन रेप एंड मर्डर का है तो इंक्वायरी नहीं हो सकती है, एफआईआर होना चाहिए और यही वजह है कि जो कंप्लेंट है उसके आधार पर एफआईआर की जाए। लेकिन इसका पूरा का पूरा जो दारोमदार है, अगर आप देखें तो जो डॉक्यूमेंट्स उस समय के हैं 2020 के, वो उस समय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पे ही पूरे इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई को करनी पड़ेगी।
2: विदिप, उनके पिता बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे जांच की मांग को लेकर, क्या सीबीआई जांच के जो अब आदेश दिया गया है परिवार अब इससे संतुष्ट है? क्या उनको लगता है न्याय मिलेगा?
3: जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो इस पूरे मामले में जब 2020 में ये मामला सामने आया था तब सतीश सालियान या किसी ने ये आरोप उस समय नहीं लगाए थे। उस समय महाविकास अघाड़ी सरकार थी और आदित्य ठाकरे खुद नेता थे, उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे, उस समय ये एलिगेशंस नहीं लगाए गए थे। लेकिन बाद में कुछ साल बाद सतीश सालियान खुद बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया उन्होंने और कहा कि ऐसे ऐसे एलिगेशंस हैं और सीधे आरोप लगाया आदित्य ठाकरे के ऊपर ही। तो यही वजह है कि पूरे मामले में काफी लीगल पेचे आई थी, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि सतीश सालियान को तब तक क्लोजर नहीं मिल पाएगा जब तक इस पूरे मामले की जांच पड़ताल ढंग से नहीं होती है और यही वजह है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को सौंपी गई है। और इसके बाद सतीश सालियान ने जाहिर सी बात है कहा कि वो उन्हें लग रहा है, अभी उम्मीद है कि उन्हें जस्टिस जरूर मिलेगा।
0: ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी ने दिशा सालियान के पिता से बातचीत की है, सुनिए।
4: उसमें मोड़ आए, आपको कब ये चीज में कन्विंस हुआ कि कहीं ना कहीं कोई दोषी है, कोई आरोपी है? पहले इसको सुसाइड केस बताया जा रहा
5: है। दोषी तो रहेगा, दोषी के बिना थोड़ी होएगा, मर्डर होएगा, ऐसा है।
4: लेकिन क्या ऐसे सरकमस्टेंस जो आपको लगता है जिसमें अभी तक जांच नहीं हो पाई और सीबीआई को उस चीज में फोकस करना
5: चाहिए? मैं तो कुछ नहीं उसके बारे में बोलता है। जो लोग नीलेश साहब बोलते हैं सही बोलते हैं, उनको दिमाग चाणक्य दिमाग है उनका।
4: आप लगता है आदित्य ठाकरे आरोपी है इसमें?
5: अभी जो

0: मैं नहीं बोलूंगा, जो जांच कर रहे हैं वो लोग बोलेंगे।
1: लेकिन खुश है आप इस फैसले से?
0: हाँ जरूर जरूर, 100%।
1: धन्यवाद। सतीश सालियान जी थे, दिशा सालियान जी के पिता, जो कह रहे हैं इस फैसले से संतुष्ट है, केस में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सिद्धेश के साथ मुस्तफा शेख आज तक।
2: आखिर दिशा सालियान के परिवार को न्यायपालिका ने न्याय दे दिया और उस वक्त की उद्धव ठाकरे सरकार ने इस मामले को रफा दफा करने का दुष्कर्म किया किसी बड़े नेता को बचाने के लिए। सवाल यह उठता है कि उस दौरान की उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही थी? रातों रात इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया गया? इस बात का जवाब श्रीमान उद्धव ठाकरे समेत जिन जिन लोगों को बचाने का प्रयास किया गया उन सबको न्यायपालिका के सामने देना होगा। अब इस सारे प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी और मुकदमा दर्ज होगा।
3: बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया थी, लेकिन बड़ी खबर, दिशा सालियान मामले की अब फिर से जांच होगी। इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन करेगी वो सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है। 8 से 9 जून 2020 की रात को मुंबई में दिशा सालियान की मौत हुई थी। उनकी मौत को एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, आधिकारिक जांच भी हुई, फिर से एक आत्महत्या माना गया, लेकिन परिवार इसे संतुष्ट नहीं था। इस मामले में कई नेताओं पर भी आरोप लगाया गया, आदित्य ठाकरे पर भी आरोप लगाया गया, लेकिन आधिकारिक जांच हुई थी, उसमें जो है सबको क्लीन चिट एक तरीके से मिले, लेकिन परिवार असंतुष्ट था। परिवार फिर कोर्ट गया है, उनके पिता कोर्ट गए और बॉम्बे हाईकोर्ट से उनको एक बड़ी जो है बॉम्बे हाईकोर्ट से एक तरीके से उनके पक्ष में फैसला है, जहां उन्होंने जांच की मांग की थी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे भी दिया है। और दिशा सालियान केस की अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी और तब सरकार अलग थी।
4: पार्टली अलाउड कर दी है, सीबीआई को डायरेक्शन दिया है वो सतीश सालियान जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके एफआईआर रजिस्टर करे और सीनियर ऑफिसर अपॉइंट करके इन्वेस्टिगेट करे, और मालवनी पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया है सारे रिकॉर्ड हैंड ओवर करे सीबीआई को। जिस किसी के खिलाफ सबूत नहीं रहेगा उसको आरोपी नहीं बनाया जाएगा। और इसमें अगर कुछ सीबीआई का निगेटिव रिपोर्ट आया तो हमारे को उसको ऑब्जेक्शन लेने का, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का अधिकार है, ये भी ऑर्डर में कोर्ट ने कह दिया है।
1: इस वक्त दिशा सालियान के वकील जो है नीलेश ओझा जी हमारे साथ है। इस केस को जब कोर्ट में लाया गया तब एसआईटी के पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था, मालवनी पुलिस स्टेशन ने इसको एक्सीडेंटल रिपोर्ट बता दिया था, कई चैलेंजेस के खिलाफ ये पिटीशन फाइल की गई थी, किसी को लगा नहीं था सीबीआई इंक्वायरी इसमें होगी।
4: अरे आपने अगर देखा होगा कोर्ट ने इनका पूरा झूठ पकड़ लिया। पहली चीज, इसमें उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट बनाए थे सब झूठे पाए गए। इन्होंने खुद जो सीसीटीवी प्रोड्यूस किया उसमें भी इनका सुसाइड थ्योरी झूठा साबित हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी, आपको याद होगा कोर्ट ने पहला सवाल पूछा
1: इंजरी को लेकर।
4: हाँ, कोर्ट ने कहा आप कह रहे हो 14वें माले से लड़की गिर रही है, मुंह पर गिर रही है, वो फोर्स क्या होता है 14वें माले का, और नाक ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, होठ भी ठीक है, अंदर का एक दांत टूटा हुआ दिखा रहे हो। तो इतना बोगस इन्वेस्टिगेशन, इनको लगता है गरीब है तो हम कुछ भी कवर कर लेंगे, ये ऐसा नहीं होता है।
1: क्या ग्राउंड्स आपको लगता है जो कोर्ट ने इसमें सीबीआई सीनियर सीबीआई ऑफिशियल को है इन्वेस्टिगेट करने को कहा है?
4: क्योंकि सीनियर पुलिस अधिकारी आरोपी है, आदित्य ठाकरे आरोपी है, उद्धव ठाकरे आरोपी है, परमवीर सिंह आरोपी है, तो ऐसे इतनी बड़ी पूरी रिया चक्रवर्ती आरोपी है, तो इतने सब लोग आरोपी है, तो इसमें सीबीआई बेटर है और वो भी सीनियर ऑफिसर।
1: एफआईआर रजिस्टर करने को कहा गया सीबीआई की तरफ?
4: हाँ, कोर्ट ने क्लियर कहा है सतीश सालियान जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है और एफआईआर रजिस्टर करना है और बाद में इन्वेस्टिगेट करना है।
1: किसी को आरोपी ना समझा जाए जब तक उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिल पाते, तो क्या इतने साल बाद क्राइम होने के एविडेंसेस मिल पाएंगे?
4: सब एविडेंस है, चिंता मत कीजिए, आई विटनेस से लेके वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके सब विटनेस है। हम पहले दिन से कह रहे हैं एफिडेविट पे कंप्लेंट है, कंप्लेंट झूठी है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कंप्लेंट सही है तो इनको अरेस्ट कीजिए।
5: महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। खास बात यह है कि कल दोपहर 12 बजे फडणवीस की कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, लेकिन शिंदे उसमें शामिल नहीं हुए, वो 2 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही कि क्या शिंदे बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं।
3: अब जहां तक शिंदे का सवाल है तो वो किसी भी तरह के मतभेद से तो इनकार कर रहे हैं, बीजेपी भी तमाम तरह की अटकलों को बेबुनियाद बता रहे हैं, लेकिन मुंबई से आ रहे संकेत बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में ना जाकर शिंदे के दिल्ली जाने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। आज दिल्ली के दौरे पर है डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे।
6: कैबिनेट की बैठक से शिंदे दूर क्यों? क्या एकनाथ शिंदे नाराज हैं? महायुति में सब ठीक ठाक है? जी हाँ, ये सारे सवाल इसलिए सुलगे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद दिल्ली तशरीफ लाए हैं। यूं तो शिंदे जब भी दिल्ली आते हैं उनके पीछे पीछे अटकलों की गर्म बयार भी दिल्ली आने लगती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है और इसकी एक बड़ी वजह ये है,
7: कल मुंबई में 12 बजे फडणवीस कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक में खुद डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए। दोपहर 2 बजे शिंदे दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
6: तो आखिर शिंदे की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि उन्होंने कैबिनेट की बैठक को भी दरकिनार कर दिया और दौड़ते दौड़ते दिल्ली आ गए? इसकी वजह आप खुद एकनाथ शिंदे से सुनिए।
8: धनुषबाण चुनाव चिन्ह को फ्रीज करना, ये मांग करना, ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के एक अस्मिता का धनुषबाण, एक श्रद्धा का विषय धनुषबाण, और उसे फ्रीज करने की मांग करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बाला साहब ठाकरे जी के विचार को खत्म करना और महाराष्ट्र के जनता के मैंडेट को फ्रीज करना, हिंदुत्व को फ्रीज करना, ये ऐसी बात जो विपक्ष के ओर से जो मांग की है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
6: तो शिंदे की माने तो वो कानूनी सलाह मशवरा के लिए दिल्ली आए हैं। पार्टी के सिंबल और झंडे को लेकर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। लेकिन क्या वाकई हकीकत यही है या शिंदे कुछ बता रहे हैं और बहुत कुछ छिपा रहे हैं? जहां तक अनबन या मतभेद का सवाल है तो शिंदे इससे साफ साफ इनकार कर रहे हैं और बीजेपी भी नाना कर रही है।
8: शिवसेना पार्टी तो पूरे देश भर में हर राज्य में है और राज्य प्रमुख लोगों को उनकी भी मंशा होती है, उनकी इच्छा होती है कि हमारे प्रमुख से मिले और दिल्ली में आकर बैठक होती है, उनको भी आसान होता है और इसलिए हर राज्य में संगठन बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए हमारे राज्य प्रमुख काम कर रहे हैं। उनके साथ कल संगठनात्मक पार्टी की बैठक भी है, चर्चा भी होगी और इसके लिए मैं आया हूँ और सुप्रीम कोर्ट की कल से हमारी शिवसेना की भूमिका को सुप्रीम कोर्ट में रखने का काम हमारे जो सीनियर काउंसिल करेंगे उनके साथ भी चर्चा होगी।
6: शिंदे दिल्ली आने का मकसद चाहे जो बताएं, लेकिन हाल के उनके अंदाज कुछ और बता रहे हैं। खासकर बीएमसी मेयर पद को लेकर शिंदे की दावेदारी ने बीजेपी से उनके रिश्ते पर दबाव बढ़ा दिया है। शिंदे की निगाह दौलतमंद बीएमसी के मेयर पद पर है जिसे वो हर हाल में हासिल करना चाहते हैं।
9: लगातार एकनाथ शिंदे की इस तरह से बैठकों से नदारद रहना या अनुपस्थित रहना उनकी नाराजगी के संकेत है। नाराजगी क्यों? नाराजगी इसलिए क्योंकि आए दिन शिवसेना और बीजेपी के बीच कई सारे मुद्दों को लेकर मतभेद सामने नजर आ रहे हैं। अगर बात करें मुंबई के बीएमसी मेयर पद की, तो इस मेयर पद पर अगले 1.25 साल के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना अब दावा ठोक रही है, जिसे पूरी तरह से बीजेपी के नेता खारिज कर रहे हैं। अब क्या यही कारण है कि एकनाथ शिंदे इन बैठकों में शामिल नहीं होते? हालांकि वो इसे सिरे से इनकार कर रहे हैं और बीजेपी के मंत्री भी कह रहे हैं कि वो एकनाथ शिंदे से इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थमते नजर नहीं आ रही।
6: ऋत्युत भालेकर, मुंबई आज तक।
5: इस पूरे मामले पर हमने बीजेपी के नेता राम कदम से बातचीत की। राम कदम ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी तो भाइयों की जोड़ी जैसी है।
10: एकनाथ शिंदे जी आज दिल्ली में हैं, कल दिल्ली में थे, ऐसा कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं और पार्टी के आलाकमान से मिलने गए हैं, बीजेपी के नेताओं से मिलने गए हैं, कैसे देखते हैं उनके इस दिल्ली दौरे को?
2: देखिए कि न्यायपालिका जो फैसला आएगा वो आएगा, पर न्यायपालिका से ही उतना ही महत्वपूर्ण लोकतंत्र में जनता की न्यायालय में क्या फैसला आता है वो महत्वपूर्ण है। और आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने लोकसभा, विधानसभा, कॉरपोरेशन सारे चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने उनका फैसला एकनाथ शिंदे जी के पक्ष में दिया है, उद्धव को उन्होंने नकारा है। तो इसलिए जनता के न्यायपालिका पहले से ही फैसला दे चुकी है। अब देश की सर्वोच्च न्यायपालिका क्या फैसला देती है इसका इंतजार है, पर वह न्यायपालिका भी असली शिवसेना के साथ न्याय करेगी।
3: जिस दिन और वक्त का इंतजार था वो आखिरकार आ गया। राम मंदिर के इतिहास में आज का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्णकालिक सीईओ के नाम का ऐलान हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज शाम को 4 बजे अहम बैठक होने जा रही है और इसी बैठक में सीईओ के नाम पर अंतिम मोहर लगने की संभावना भी है।
5: सीईओ के चयन के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय सर्च कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी है। कमेटी ने हजारों आवेदनों की स्क्रीनिंग, ऑनलाइन इंटरव्यूज और अयोध्या में अंतिम दौर की बातचीत के बाद 3 नाम प्रस्तावित किए हैं। अब इन 3 नामों में किसे राम मंदिर की व्यवस्था और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट करेगा।
3: तो आज बड़ा दिन है, सीईओ पर आज फैसला संभव है।

0: See you con. किनके हाथों में होगी मंदिर की कमान? तीन नामों से किस पर लगेगी मुहर? राम मंदिर पर सबसे बड़ा फैसला। राम मंदिर में चंदा चोरी के खुलासे ने जो खलबली पैदा की थी वो अभी तक थमी नहीं है। मॉनसून सत्र का हाल तो आप देख ही चुके हैं। जब तक सत्र चला, संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन भी साथ साथ चला। राजनीति के इस सिलसिले के बीच राम मंदिर विवाद में एक बड़ा पड़ाव आने वाला है। आज राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ का ऐलान होना है।
1: इन तीनों ने भी अत्यंत परिश्रम पूर्वक 5,500 लोगों में से एक पद के लिए 5,500 आवेदन पत्र आए। उनमें से धीरे धीरे प्रोफेशनली चयन करते करते और हम लोगों को आज उनके सारे इस परिश्रम का फल अर्पित किया है। भगवान श्री राम लला के चरणों में इसको रखेंगे, जिसमें इस विश्व के अनन्य श्रेष्ठतम मंदिर के उत्तम व्यवस्थापन के लिए सीईओ की नियुक्ति करनी है। उसमें तीन महानुभावों का इन लोगों ने हमें सुझाव दिया है। इसमें से चयन जो होना है हमारे न्यास की बैठक में होगा।
0: सीईओ के चयन के लिए शुरू हुई प्रक्रिया में कुल 5,585 आवेदन, 3,577 आवेदकों ने स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। स्क्रीनिंग के बाद 470 या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले 108 उम्मीदवार अगले चरण के लिए चुने गए। इन उम्मीदवारों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्षात्कार हुआ। 4 दिन चली इस प्रक्रिया के बाद 17 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। अंतिम चरण के लिए सभी को अयोध्या बुलाया गया और आखिर में 3 नाम फाइनल किए गए।
2: कुल मिलाकर 3,500 से में से 108 लोग ऐसे थे जिनके अंक 470 के ऊपर आए। इसके बाद उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया, आखिरी चरण के लिए बुलाया गया। फिर बचे 17 लोग जिन्होंने लास्ट राउंड भी क्लियर किया। 17 में से एक व्यक्ति इंटरव्यू के दौरान नहीं पहुंचे और 16 लोगों ने कुल मिलाकर आखिरी चरण में अयोध्या प्रकरण में हिस्सा लिया, जिसके बाद कमिटी ने 3 नाम फाइनल किए और उन 3 नामों को लिफाफे में बंद कर ट्रस्ट को सौंप दिया है। अब ये बंद लिफाफा ट्रस्ट आज खोलने वाला है और सामने आने वाला है सीईओ का नाम, जिसकी कहनी और कथनी चलेगी अब अयोध्या राम मंदिर में, खासकर प्रशासनिक मामलों में। और देखना होगा कि सीईओ के आने के बाद कैसे व्यवस्था ट्रस्ट की बदलती है।
0: तो अब बड़ा सवाल ये है कि जिन 3 नामों को चयन समिति ने शॉर्टलिस्ट किया है उनमें कौन कौन है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक संभावित नामों में सबसे ऊपर पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे का नाम बताया जा रहा है। सीईओ के लिए सामने आ रहे नामों में बिहार के पूर्व डीजीपी डॉक्टर परेश सक्सेना का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। आईएएस दिनेश चंद्र का नाम भी चर्चा में है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इन 3 नामों में से एक वो लकी नाम किनका होगा जिन्हें राम मंदिर के सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आज शाम तक इस सस्पेंस से पर्दा हट जाएगा। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: अब राम मंदिर के सीईओ के सिलेक्शन को लेकर अयोध्या के साधु संतों में बेहद उत्साह है। उन्हें यह लग रहा है कि राम मंदिर में गड़बड़ियों पर रोक लगेगी, लेकिन साथ ही उनके मन में कुछ आशंकाएं भी हैं, कुछ सवाल भी हैं। आपको सुनाते हैं कि साधु संत क्या कह रहे हैं।
4: श्री राम मंदिर में बीते दिनों वित्तीय अनियमितता को लेकर के धर्म विरोधियों के द्वारा तिल का ताड़ बनाया गया और पूरे देश दुनिया में सनातन को बदनाम करने के लिए साजिशें की गईं, जिसके मद्देनजर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हर तरह से जो है सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में सीईओ की नियुक्ति को लेकर के विचार किया गया था कि बहुत बेहद जरूरी है, जिसकी आज घोषणा होनी है।
5: पूजा की व्यवस्था संतों के पास होनी चाहिए, वैष्णव परंपरा से वहां पूजा होना चाहिए। कोई भी सीईओ बने उसका ध्यान दे कि वैष्णव परंपरा से और संतों की व्यवस्था होनी चाहिए। साधु जो पूजा करता है वो कोई नहीं कर सकता है। जो महात्मा विरक्त, जो महात्मा जो सेवा कर सकता है ठाकुर जी का, वो कोई नहीं कर सकता है। आप देख लो किसी भी मंदिर में जाकर तुम वीडियो बना लेना, विजुअल बना लेना, पूछ लेना किस प्रकार से साधु महात्मा ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं।
6: ये सदस्य का मामला है, पूरा प्यार सब सदस्य आने का प्रयास करेंगे, रामलला जो इच्छा होगा काम सब पूरा हो जाएगा। इस मीटिंग में जो निर्णय होगा वो सब मानने के लिए तैयार रहेंगे। ये ट्रस्ट का मामला है।
7: रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
11: EU
12: सोच बदलो और बैंक भी।

मंच एसईओ का था, सामने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन मौजूद थे और ठीक बगल में बैठे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कूटनीतिक प्रहार किया जिसने इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का हथियार बनाते हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं, उन्हें सख्त संदेश मिलना चाहिए। आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं हो सकता। ये बयान किसी देश का नाम लिए बिना दिया गया, लेकिन इशारा साफ था कि निशाने पर पाकिस्तान ही है। ये पाकिस्तान के लिए किसी बड़े कूटनीतिक सदमे से कम नहीं है। पाकिस्तान अगले साल यानी 2027 में एसईओ समिट की मेजबानी करने वाला है। एसईओ समिट हर साल एक नए सदस्य देश में होता है और वही इसकी अध्यक्षता करता है। अगली मीटिंग पाकिस्तान में होगी और वो इसकी अध्यक्षता संभालने का जश्न मनाने की तैयारी में था, लेकिन कमान हाथ में आने से ठीक पहले भारत ने दुनिया के सामने साफ कर दिया कि जो देश खुद आतंकवाद का गढ़ है, उसकी बातों पर अब कोई दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, सिर्फ एक्शन रिएक्शन वाली सोच तक सीमित रहने के बजाय आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करें, जिसमें फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित ठिकाने शामिल हैं। ये प्रहार सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं था, बल्कि उसके सबसे बड़े पैरोकार चीन पर भी था। चीन अक्सर यूएन में पाकिस्तानी आतंकियों का बचाव करता आया है। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग की मौजूदगी में ये बता दिया कि आतंकियों को ढाल देने वाले देश भी उतने ही गुनहगार हैं जितना कि उन्हें पालने वाला पाकिस्तान। बिश्केक की धरती से भारत ने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि एक्शन रिएक्शन का दौर खत्म हो चुका है। अब निशाना सिर्फ आतंकियों पर नहीं बल्कि आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम पर होगा। शहबाज शरीफ देखते रह गए और भारत ने एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की दुखती रग दबा दी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मिस्ट्रेस सुलझाएगी सीबीआई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश, मुंबई में 14वें फ्लोर से गिरकर गई थी जान। आसाम में आ सकता है राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ का नाम। शॉर्टलिस्ट में 3 लोगों में से चुने जाएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर्च कमेटी ने न्यास को सौंप दी है फाइनल रिपोर्ट। मोहन यादव सरकार बदलेगी भोपाल की राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम। मध्य भारत, मालवा और महाकौशल के नाम से 3 भागों में बढ़ जाएगा विश्वविद्यालय। कैबिनेट का फैसला। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरी दोनों पार्टियां। वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर उमर अब्दुल्ला सरकार से बड़ा टकराव। ईरान के सामरिक ठिकानों पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले, एयर डिफेंस रडार और समुद्री ठिकाने तबाह। तेहरान ने भी जॉर्डन पर दागी मिसाइलें, अमेरिकी बेस को बनाया निशाना।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, 12:12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। इस बुलेटिन की शुरुआत आज बड़ी खबर से और मुंबई से बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर हाईकोर्ट ने दिशा सालियान केस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच के लिए सीबीआई के एक सीनियर अधिकारी को नियुक्त करने को कहा है, साथ ही याचिकाकर्ता का बयान दर्ज करने के लिए भी कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सतीश सालियान की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई से इस मामले की जांच कराने का निर्देश दिया है। मुंबई क्षेत्र के प्रभारी सीबीआई के ज्वाइंट निदेशक इस मामले की जांच अधिकारी के तौर पर सीबीआई के किसी भी अनुभवी या वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करेंगे। ये अधिकारी याचिकाकर्ता का बयान भी दर्ज करेंगे और एफआईआर भी दर्ज करेगा। जांच अधिकारी उन सभी पहलुओं की जांच करेगा जिनसे जुड़ी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता की बेटी की मौत हुई थी।
2: पार्टली अलाउड कर दी है, सीबीआई को डायरेक्शन दिया है वो सतीश सालियान जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके एफआईआर रजिस्टर करे और सीनियर ऑफिसर अपॉइंट करके इन्वेस्टिगेट करे, और मालवनी पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया है सारे रिकॉर्ड हैंड ओवर करे सीबीआई को। जिस किसी के खिलाफ सबूत नहीं रहेगा उसको आरोपी नहीं बनाया जाएगा। और इसमें अगर कुछ सीबीआई का निगेटिव रिपोर्ट आया तो हमारे को उसको ऑब्जेक्शन लेने का, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का अधिकार है, ये भी ऑर्डर में कोर्ट ने कह दिया है।
3: उसमें मोड़ आए, आपको कब ये चीज में कन्विंस हुआ कि कहीं ना कहीं कोई दोषी है, कोई आरोपी है? पहले इसको सुसाइड केस बताया जा रहा है।
4: दोषी तो रहेगा, दोषी के बिना थोड़ी होएगा, मर्डर होएगा, ऐसा है।
3: लेकिन क्या ऐसे सरकमस्टेंसेस जो आपको लगता है जिसमें अभी तक जांच नहीं हो पाई और सीबीआई को उस चीज में फोकस करना
4: चाहिए? मैं तो कुछ नहीं उसके बारे में बोल रहा, जो लोग दिल्ली सब बोलते हैं सही बोलते हैं, उनको दिमाग चाणक्य दिमाग है
3: उनका। अब तो आप लगता है आदित्य ठाकरे आरोपी है इसमें?
4: अभी जो मैं नहीं बोलूंगा, जो जांच कर रहे हैं वो लोग बोलेंगे।
3: लेकिन खुश है आप इस फैसले से?
4: हाँ जरूर जरूर, 100%।
0: हमारे संवाददाता मुस्तफा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मुस्तफा, सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया है कि जो पहले आत्महत्या की बात कही गई थी, जो जांच हुई थी, उस जांच को एक तरीके से कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अब कोर्ट को क्या संदेहास्पद लगा कि सीबीआई जांच करने का आदेश कोर्ट ने दिया?
3: जी बिल्कुल, सबसे पहली प्रमुख बात यह है कि दिशा सालियान के जो पिता है सतीश सालियान, वो इस केस में पेटिशनर है, उसको कोर्ट ने मद्देनजर लिया। दूसरा, जो उनके वकील है सतीश सालियान के, नीलेश ओझा, उन्होंने कई चीज़ें बॉम्बे हाईकोर्ट में पॉइंट आउट की है, जिसमें जो विक्टिम है यानी कि दिशा है, उसको जिस तरीके की इंजरी लगी हुई है उसका बात किया गया। उसके बाद जो सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ था दिशा सालियान की सुसाइड के समय पर ही, उसमें से भी इसको जोड़कर देखा गया है। ये सभी मुद्दे जो एक तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखे गए थे, तो कोर्ट ने पिछली हियरिंग में ये कहा था कि परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए और उससे ये लग रहा था कि एफआईआर का आदेश दिया जाएगा। और आज कोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, इन्हीं सभी जो आप कह सकते हैं ग्राउंड्स है उस पर सीबीआई को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कहा है, सतीश सालियान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा है, और किसी को भी इस केस में आरोपी ना माना जाए जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाते हैं। इस तरीके की बात कोर्ट ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने की है।
0: बहुत शुक्रिया मुस्तफा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर अयोध्या की, जहां पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसकी जानकारी देते हुए ट्रस्ट ने कहा है कि 5,585 आवेदनों की समीक्षा के बाद 16 अभ्यर्थियों के इंटरव्यूज लिए गए, फिर मंगलवार को चयन समिति ने 3 योग्य उम्मीदवारों के नाम न्यास को सौंप दिए। अब अंतिम निर्णय और आधिकारिक घोषणा न्यास करेगा। माना जा रहा है कि इसका ऐलान आज किया जा सकता है। आज राम मंदिर ट्रस्ट की एक दिवसीय बैठक होने जा रही है। मणिराम छावनी में 2 अलग अलग सत्रों में यह बैठक होगी। पहले सत्र में दोपहर 2 बजे विशेष बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में ट्रस्टियों के रिक्त 3 पदों को भरने पर सबसे पहले विचार किया जाएगा। इसके बाद पूर्णकालिक महासचिव के नाम पर भी चर्चा होगी। मुख्य बैठक दूसरे सत्र में शाम 4 बजे से होगी। बैठक में धार्मिक न्यास समिति, निर्माण समिति, वित्त समिति और ऑडिट समिति समेत मैनेजिंग कमेटी के पुनर्गठन पर भी फैसला होगा।
5: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आज अपना सीईओ मिलना लगभग तय माना जा रहा है। रामनगरी में आज बैठकों का दौर होगा, बैठकों में चिंतन होगा, समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा और सबसे अहम बात है सीईओ के नाम को लेकर कहीं ना कहीं एक सहमति बन सकती है। बैठक पहले चरण की दोपहर 2 बजे से होगी, जबकि दूसरे चरण की बैठक शाम 4 बजे से होनी है। पहले चरण की बैठक में जो 3 रिक्त स्थान ट्रस्ट में बने हैं उन पर चर्चा हो सकती है। अगली बैठक में सीईओ के नाम, प्रवक्ता के नाम और अन्य जो बदलाव डीड में हो सकते हैं उस पर चर्चा हो सकती है। बड़ी बात यह है कि 3 से 4 ऐसे नाम हैं जो सीईओ पद के लिए चल रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं थी।
0: श्रीनगर में सियासी हलचल जबरदस्त है। एक तरफ विपक्षी दल बीजेपी है जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनका प्रोटेस्ट चल रहा है। बीजेपी ने श्रीनगर में सिविल सचिवालय की ओर विरोध मार्च किया है। बीजेपी ने बिजली की दरों और बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर उमर सरकार को घेरा है। तो सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर और जम्मू दोनों जगहों पर बीजेपी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा बहाल करने, संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण से जुड़ी फाइल पर अपनी मांगों के लिए दबाव बनाना चाहती है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का हल्ला बोल है बिजली बेरोजगारी के खिलाफ, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो राज्य का दर्जा वापस मिले ये मांग कर रहे हैं। संवैधानिक अधिकारों के बाद आर्टिकल 370 का जिक्र न करके अब संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं और उसको लेकर बीजेपी दफ्तरों का घेराव।
5: बीजेपी वर्सेज नेशनल कॉन्फ्रेंस आज घेराव पॉलिटिक्स का दिन, और इस वक्त हम राजबाग इलाका है श्रीनगर का, वहां पे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रोटेस्ट है। अब वो कोशिश कर रहे हैं यहां से बीजेपी जो है ऑफिस की तरफ जाने की, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त है, पुलिस का कंटिंजेंट सीआरपीएफ यहां है, रास्ते को बंद कर दिया गया है और कोशिश यही है कि इससे आगे किसी को आने नहीं दिया जाएगा। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट मार्च करने की कोशिश जो है जो बीजेपी है वो कर रही है, और बीजेपी की बात करें तो वो जो लाल चौक है ऐतिहासिक, वहां से सिविल सेक्रेटेरिएट जाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी मांग कर रही है कि उमर की अब्दुल्ला की सरकार है, नाकाम रही है, कोई जो है लोगों के मसले हल नहीं हो रहे, बिजली की जो दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं, लोगों पे बर्डन बढ़ रहा है और जो भी वादे किए थे इन्होंने चुनावी वादे वो पूरे नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनको जो है रिजाइन कर देना चाहिए।
0: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज नासिक के दौरे पर जा रहे हैं। वहां पर उस संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में करीब 2 करोड़ वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कटने पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए।
6: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में नासिक दौरे पर होंगे। नासिक दौरे में संगठन सूजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो शामिल होंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। ये पिछले 1 महीने में लगातार दूसरी बार होगा जब राहुल गांधी मुंबई महाराष्ट्र में होंगे। इससे पहले वो पुणे में छात्रों के गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए थे जहां पर उन्होंने छात्रों से बात की थी। महाराष्ट्र में आई एसआई रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बीजेपी की एक बड़ी साजिश है और 2 करोड़ से ज्यादा नाम काटने के पीछे बीजेपी की मंशा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी के मन का हो तो उन्हें सही लगता है और अगर मन का ना हो तो उन्हें गलत लगता है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस की यह तकरार कहां पहुंचती है।
0: अब खबर बंगाल के सियासत के, जहां पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन कोलकाता पुलिस के सामने पेश हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने चार नेताओं को 28 अगस्त को अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर में पुलिस के साथ हुई हाथापाई के मामले में समन भेजा था। उस मामले में पहले हुमायूं कबीर, बैशनर चट्टोपाध्याय को भी नोटिस भेजा गया है। अभिषेक बैनर्जी के बाद अब आज डेरेक ओब्रायन का बयान कोलकाता पुलिस दर्ज कर रही है।
7: 28 अगस्त कोलकाता में अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर पहुंची कोलकाता पुलिस और कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी, और वो वहां पहुंचे थे बिलबोर्ड जो गैर कानूनी तरीके से छत के ऊपर लगाया गया था उसे खोलने के लिए, लेकिन उनका सामना हुआ अभिषेक बैनर्जी, डेरेक ओब्रायन, बैशनर चट्टोपाध्याय और पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर। उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी। अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर में मौजूद लोगों के साथ पुलिस की हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। ये बताया जा रहा है कि कुछ महिला पुलिस कर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था, और उसके बाद एक पुलिस के तरफ से FIR दर्ज किया गया था जिनमें महिला पुलिस कर्मियों के साथ खराब व्यवहार का मामला दर्ज किया गया। इसके साथ सरकारी अधिकारियों को अपने काम करने से रोकने की भी धाराएं उसमें लगाई गई, और इस पूरे मामले में चार तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं को नोटिस धराया गया था। और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी कल पहुंचे थे शक्तिशरणी पुलिस स्टेशन, जहां तकरीबन 6 घंटे के आसपास उनसे पूछताछ की गई थी, और आज डेरेक ओब्रायन पहुंचे हैं शक्तिशरणी पुलिस स्टेशन। उन्हें सोमवार बुलाया गया था लेकिन उन्होंने कुछ मोहलत मांगी थी और आज वो सुबह पहुंचे थे, और आगे जाकर बाकी दो नेताओं से भी पूछताछ करेगी पुलिस।
0: दिल्ली में बस में गैंगरेप केस को लेकर अहम खुलासा हुआ और सामने आया कि बस में लगा हुआ CCTV कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। वारदात के समय आरोपियों ने इसी बात का फायदा उठाया। जांच के दौरान पुलिस को अहम फॉरेंसिक सबूत भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़िता और दोनों ही आरोपियों के फिंगरप्रिंट बस से मिले हैं। बस ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप के कपड़े भी पुलिस ने जब्त किए हैं। अब DNA रिपोर्ट का इंतजार, और पुलिस बहुत जल्दी ही इस केस में चार्जशीट भी दाखिल करने वाली है।
8: चलती बस के अंदर गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। इनमें से एक सुराग तो ये है जो ये साबित करता है कि वारदात के वक्त दोनों आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर बस के अंदर मौजूद थे। उनके तमाम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, उनके फिंगरप्रिंट मिले हैं, पुलिस को वो कपड़ा मिल गया है जो दोनों ने उस वक्त पहना हुआ था, उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा पीड़िता के भी फिंगरप्रिंट मिले हैं। पुलिस ने कई जगहों से फॉरेंसिक टीम ने अंदर से सबूत उठाए हैं। DNA का रिपोर्ट आने वाला है, और जैसे ही फॉरेंसिक और DNA की रिपोर्ट पुलिस को मिलेगी, पुलिस इस मामले में चार्जशीट तैयार कर देगी, क्योंकि पुलिस ने काफी हद तक अपनी जांच पूरी कर ली है। कई ऐसे लोग हैं जिनके स्टेटमेंट पुलिस ने इस पूरे मामले में आई विटनेस के तौर पर रिकॉर्ड भी किया है। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: इधर ईरान और अमेरिका में एक बार फिर से हमले तेज हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अमेरिका ने जोरदार हमला किया। अमेरिकी फौज ने कई अन्य इलाकों को भी निशाना बनाया। अब ताजा एयर स्ट्राइक में ईरान के सिरिक में 5 लोगों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं।
9: अमेरिका ईरान के खिलाफ इस समय डबल अटैक कर रहा है। एक तरफ सख्त आर्थिक नाकेबंदी तो दूसरी तरफ ईरान के तटीय इलाकों पर जबरदस्त बमबारी। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाकों को निशाना बनाया है। वहीं ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, और ईरान की मिसाइलें जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही नतीजा ये कि खाड़ी के देशों में एक बार फिर खतरे के सायरन बजने लगे हैं। मगर बीते 6 महीनों की तस्वीर में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, क्योंकि इतनी बारूद झोंकने के बावजूद अभी तक अमेरिका न तो ईरान को झुका पाया है और न ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा पाया है। ऐसे में ये खतरा अब भी बरकरार है कि ये लड़ाई न केवल और लंबी खिंच सकती है बल्कि इसका दायरा भी बढ़ सकता है।
0: अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला बुलाया, और वहां पर कई मिसाइलें दागे जाने का दावा किया गया। साथ ही सिरिक में हुए हमलों को लेकर ईरान की तरफ से बयान आया। ईरान ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। ईरानी टीम की तरफ से एक्सक्लूसिव मीडिया ने एक एनिमेटेड वीडियो शेयर किया है। इसमें होर्मुज़गंज प्रांत में सिरिक में एक शांति पर अमेरिकी हमले को दिखाया गया है।
10: 48 घंटे के भीतर अमेरिका की तरफ से दक्षिणी ईरान पर हुए ताबड़तोड़ हमलों में कई सारे लोग मारे गए हैं, जिनमें 5 सिविलियन भी जो एक शादी समारोह में शामिल हुए थे वो मारे गए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। जबकि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन न सिर्फ जॉर्डन में अमरीकी बेसिस पर दागे गए, बल्कि साथ ही साथ बहरीन में भी जो है US बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। शादी समारोह पर हुए इस अमरीकी हमले को लेकर ईरान का दावा है कि ये एक वार क्राइम है और मिनाब सुकूल के बाद दूसरी बार अमरीका की तरफ से किए गए हमलों में एक बच्चे की मौत हुई है। यहां तक कि ईरान की एक निजी टीवी चैनल ने एक एनिमेशन वीडियो जारी करते हुए शादी समारोह पर हुए अमरीकी हमले का वीडियो भी जारी किया है। आईआरजीसी का कहना है कि सिविलियंस पर अमरीका के इस हमले का बदला लिया जाएगा।
0: तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को बड़ी धमकी दे दी और उन्होंने रूसी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाले विमान कंपनियों को, हर बीमा कंपनी को और हर शख्स को चेतावनी दी है। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी हवाई क्षेत्र पूरी तरह से असुरक्षित होता जा रहा है। धमकी देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि रूस के आसमान में इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन होंगे कि उन्हें अंदाजा तक नहीं है। जेलेंस्की के शब्दों में, हम यूक्रेन में नहीं चाहते कि बेगुनाह लोगों की जान जाए, इसीलिए हम अपने सहयोगियों को चेतावनी दे रहे हैं। रूस के आसमान में सुरक्षित दिन अब खत्म हो चुके हैं, ये जेलेंस्की ने कहा है।
11: यूक्रेन के शहर कीव में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी है और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को धमकी दी है। उन्होंने रूसी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाली तमाम विमान कंपनियों और बीमा कंपनियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि रूसी हवाई क्षेत्र अब सुरक्षित नहीं है। रूस को धमकी देते हुए जेलेंस्की ने कहा है कि आने वाले दिनों में रूसी हवाई क्षेत्र में इतने ड्रोन दिखेंगे कि इसको नजरअंदाज कर पाना मुश्किल होगा।
0: अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में तबाही के बाद मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 1126 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी लगभग 4000 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश के लिए आज 8वां दिन है जब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ देर पहले खबर आई है कि रसुवा के चिली में बाढ़ से प्रभावित हाइड्रो पावर टनल में बचाव अभियान चल रहा है। इस अभियान में भारत की तकनीकी टीम नेपाली सेना के साथ मिलकर चिली में और लांगटांग दोनों ही जगहों पर काम कर रही है।
12: यहाँ ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां तक पहुंचने के लिए अभी भी सड़क मार्ग नहीं है और उन इलाकों में जो एकदम पतले रास्ते हैं वहां पर आप सिर्फ दो पहिया रास्तों के जरिए ही, थोड़ा ये जोखिम भरा इलाका है। लेकिन अब ये देखिए, ये जो सारा मलबा इसलिए क्योंकि कुछ रास्तों को बनाने की कोशिश की जा रही है सड़कों को फिर से सही करने के लिए, लेकिन मलबे की ऊंचाई और ये पूरा इलाका बताता है कि तबाही की तस्वीर कितनी भयानक है। भटपोशी अपने साथ जो तबाही लेकर के आई है, जो उसमें जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आखिर इस त्रासदी में कितने लोगों ने जान गंवाई है। आमतौर पर जब धारा बढ़ती थी हर साल लोगों को लगता था कि त्रिशूली भटकोशी की धारा है, मानसून है, तिब्बत में पहाड़ों से पानी आ रहा है तो जलस्तर सामान्य रूप से बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये साल हर साल की तरह नहीं है। इस साल की जो तबाही है, इस साल जो जलस्तर है वो सिर्फ सामान्य नहीं है बल्कि ये असामान्य घटना होगी और इसीलिए बहुत सारे लोग समय रहते जिन्हें अंदाज़ा लगा वो जंगलों में पहाड़ों में ऊँचे भाग गए, उनकी जान बच गई। जो नहीं भाग पाए वो इस धारा का शिकार हो गए। इसीलिए मरने वालों का आंकड़ा 1000 पार कर चुका है।
0: त्रिशूली से हमारे संवाददाता आशुतोष की एक और रिपोर्ट आप देखिए।
12: मैं त्रिशूली के उस इलाके में हूँ जहाँ पहले कभी एक पुल हुआ करता था। ठीक एक सप्ताह पहले जब ये पुल बह गया, गांव का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बिल्कुल कट गया। एक सप्ताह के बाद एक रोपवे ब्रिज बनाया गया है और अब जो गांव में वहां लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर लाने के लिए, क्योंकि हेली ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो रहा है, अब इस तरह की एक चेन बनाई गई है और उस चेन में देखिए जो गांव के लोग हैं अपना बचा खुचा सामान लेकर के इस रोपवे ब्रिज से एक एक करके धीरे धीरे उन्हें खींच करके लाया गया है। इन रस्सियों के सहारे दरअसल खींच करके अब देखिए जरूरत का सामान है वो एलिवेशन पर है, बिल्कुल त्रिशूली के धारा के ठीक ऊपर से। ये जोखिम भरा है लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि गांव के वो लोग एक सप्ताह से बिल्कुल अलग थलग पड़े हैं। वहां मदद पहुंचाना, खाना पहुंचाना और जैसे और लोगों की जरूरत पड़ती है, देखिए इस तरह वहां एक बुजुर्ग नागरिक हैं, उन्हें बाकायदा लाइफ वेस्ट पहना करके उनके घर में बचा खुचा जरूरत का सामान लेकर के उन्हें इवैक्यूएट किया गया है। अब ये लोग अपना सामान लेकर के इस इलाके पर पहुंच रहे। एक बहुत बड़ी त्रासदी है और ऐसे में जो कोशिशें हैं वो भी अविश्वसनीय कोशिशें हैं।
0: तो ये आपने त्रिशूल से रिपोर्ट देखी जो कि हैरान करने वाली है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में की बात करते हैं जहां पर हालात ऐसे हो गए कि सड़क पर वहां 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा हो गया। अब राजधानी के आईटी चौराहे के पास ये घटना है। उस गड्ढे में एक बाइक सवार युवक भी गिर गया, उसे निकालकर तुरंत अस्पताल भेजा गया। अब गड्ढे को भरने का काम किया जा रहा है।
13: देखिए ये जो गड्ढा है यहाँ पर 10 से 12 फीट का है और इसमें क्रेन को बुलाया गया है क्योंकि क्रेन की मदद से ही इस मोटरसाइकिल को निकाला जा रहा है जो कि राहगीर था, इसके अंदर गिर गया था, जिसको अस्पताल भेजा गया है। और अब यहाँ पर इस मोटरसाइकिल को इस जो गाड़ी है यानी कि ट्रेन है उसके जरिए निकाला गया है। और ये 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा हो गया था जिसमें एक युवक गिर गया था, इसको अस्पताल भेजा गया है। और इस पूरे मामले पर बताया गया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये गड्ढा हुआ है उसको लेकर यहाँ पर नगर निगम की टीम, प्रशासन की टीम भी पहुंची है और लगातार जो है वो जांच कर रही है, लगातार जो है इस गड्ढे को अब रिपेयर का काम होगा।
0: अब बात करते हैं उत्तराखंड और यूपी में भारी बारिश और बाढ़ के गंभीर हालात की। कई शहरों में सैलाब से तबाही दिखी है, कहीं पर गाड़ियां फंसी नजर आई, कहीं पर रिहायशी इलाकों में पानी भरना नजर आया। उधम सिंह नगर में बारिश से जिले के कई इलाकों में स्थिति गंभीर है, बारिश आसमानी आफत बनकर बरस रहे हैं। सितारगंज इलाके में फायर और SDRF की टीम ने आधा दर्जन परिवारों को रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाला है। मंगलवार को उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। कई जगहों पर भूस्खलन तो घर गिरने और अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अभी भी लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर की तस्वीरें जहां सैलाब में लोग फंस गए, फिर लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। अभी तक की बारिश में 7 लोगों की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। और ये कुछ और तस्वीरें हैं जहां रिहायशी इलाकों में इतना पानी भर गया है कि अब खेतों के ऊपर एक तरीके से बोट से चलते हुए दिखाई दी। और कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, कहीं पर घर ही गिर गए हैं, कहीं पर अचानक बाढ़ ने हालात खराब कर दिए, कहीं सड़कों के ऊपर से ऐसा सैलाब बहता दिखाई दे रहा है।
14: उत्तराखंड में मॉनसून हर साल परेशानी का सबब बनता जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं, चाहे वो अल्मोड़ा हो या फिर कोटद्वार हो या फिर नैनीताल जिला हो, जहां पर बारिश की वजह से तीनों नैनीताल को जोड़ने वाले रास्ते कट गए। इसके साथ ही देहरादून की अगर हम बात करें तो सोमवार रात को जिस तरह से कंडोली के पास जलस्तर बढ़ा नदी का, उसके बाद वहां पर दो गाड़ियों के बहने की सूचना आई जिसमें कि 3 लोगों की मौत दर्ज हुई। अगले 4 दिन के लिए मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट है और ज्यादातर क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं आज भी तेज बारिश को देखते हुए उत्तराखंड के 5 जिलों में छुट्टी भी घोषित की गई है।
0: और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: खाना कहाँ से मंगवाया?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
4: जीके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट प्राइमर
5: जीके मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
5: जीके मैक्स।
2: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
3: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
2: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
4: In association with
5: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: खाना कहाँ से मंगवाया?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट प्राइमर
6: जेके मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
3: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
4: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
3: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: आगे दलदल का इलाका है, भरपूशी के एकदम किनारे पर खड़े हैं और बटार में देखे ये सोलर प्रोजेक्ट था जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है।
1: पता तो चले कि किनके अपने लापता है, क्योंकि बहुत सारे लापता लोगों की संख्या 2500 से ज्यादा है।
0: सब कुछ सब रेत से भरा हुआ था और ये तबाही के निशान अपने साथ कई सारी मानवीय त्रासदियों के निशान भी छोड़ जाते हैं।
1: सब बरामद हो, उनकी आवश्यक जरूरी चीजें हैं, उन लोगों की चीजें बरामद की जा सकती
2: है।

लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में आउटसोर्स कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी की सौगात। 20 लाख कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा और हितों के संरक्षण का भरोसा दिया। कार्यक्रम में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले कि सरकार और कर्मचारी का रिश्ता केवल वेतन का नहीं बल्कि विश्वास का होता है। आज तय होगा अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ। हजारों में से चुने गए केवल 3 नाम है। बैठक में 12 बड़े फैसले भी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक 2 सत्रों में होने वाली है। यह बैठक राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के स्थान मणिराम दास छावनी में होगी और ट्रस्ट की बैठक के लिए मुख्य ट्रस्ट से भी पहुंचे। मीटिंग में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद खाली हुई सीटों के साथ साथ राज परिवार से जुड़े रिक्त सीट पर भी नए नामों पर फैसला संभव। आज सहारनपुर दौरे पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, चौधरी इंद्र सेन समेत स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव के सहारनपुर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तंज, बोले कि एसपी पूरी तरह से दिग्भ्रमित, दिन में देख रहे हैं सपने। ब्रजेश पाठक को समाजवादी पार्टी पर उनका तीखा हमला, बोले कि एसपी सरकार में माफियाओं को संरक्षण मिला, आज अपराधियों में खौफ है, बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत से जीतेगी। त्योहारों से पहले यूपी में बिजली व्यवस्था अब दुरुस्त होगी। योगी सरकार 15 सितंबर से चलाएगी अनुरक्षण माह। जर्जर तार और पेड़ की डालियों की छंटाई भी होगी। यूपी टीईटी 2026 रिजल्ट पर आपत्तियों के निस्तारण के लिए 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित, जांच की जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट भी होगी पेश। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट भर्ती पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा आश्वासन, 3,284 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई, अब 7 सितंबर तक कर सकेंगे पीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन। नोएडा में बिजली की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने के आरोप में विधायक कार्यालय का घेराव कर दिया गया। नोएडा पुलिस को किया गया सम्मानित, मासूम से दुष्कर्म हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में किया गया था ढेर। प्रतापगढ़ में बच्चों के सामने शिक्षक के साथ मारपीट, स्कूल में घुसकर बाल खींचे गए, लात घूसों से पीटा गया, सीसीटीवी फुटेज वायरल। लखनऊ में आई

तीर्थयात्रियों की बस रोडवेज बस से जा टकराए, 35 से ज्यादा इसमें घायल। नोएडा सेक्टर 63 में फुटवेयर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका, कोई जनहानि नहीं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ताम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी में तेज रफ्तार ट्रक चालक ने मचाई तबाही, नशे में धुत ड्राइवर ने गेट में ट्रक घुसा दिया, 4 लोग इसमें घायल। झांसी में तेज रफ्तार कार ने पेड़ और गैस पाइपलाइन को टक्कर मार दी, गैस रिसाव से अफरा तफरी, चालक हिरासत में। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेस वे के अप्रोच रोड पर जल भरा, वाहनों की आवाजाही से प्रभावित। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, बाढ़ का खतरा बढ़ा। सोनभद्र में मूसलाधार बारिश के बाद रिहंद बांध के 3 फाटक खोले गए हैं, सोन नदी में जलस्तर बढ़ा। यूपी के बांदा में बारिश बनी आफत और गोखरही गांव में 4 कच्चे मकान गिर गए, जल भराव से भी परेशानियां। लखनऊ में मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव लगा जाम, आईटी चौराहे के पास में एक विशाल पेड़ भी गिर गया।

0: और अब यूपी चुनाव में जुड़ी हुई बड़ी खबर इसे मैं आपको देते हैं। यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। चुनाव नजदीक है और उससे पहले बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम के तहत कर्मचारियों को सरकार पूरा समर्थन है और अब 20 लाख कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवर देने का काम सरकार करने जा रही है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने और भी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में औपचारिक रूप से इस निगम के डिजिटल पोर्टल और वेबसाइट्स का लोकार्पण कर दिया है, इसकी शुरुआत की है। इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की उपस्थिति और वेतन का डिजिटल प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट होगा, जिससे हर महीने की 5 तारीख तक सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में सैलरी ट्रांसफर की जा सकेगी। हर कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी स्लिप के साथ ईपीएफ और ईएसआईसी कटौती की रियल टाइम ट्रैकिंग भी हो सकेगी।
1: संख्या में उनकी भर्ती होने जा रही है, यानी प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में जो नियुक्ति की प्रक्रिया हुई है उसने इसे और पारदर्शी बनाया है। प्रदेश के अंदर 50 लाख सुरक्षा का माहौल बना तो 50 लाख करोड़ से अधिक का निवेश के प्रस्ताव आए, उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही, नए उद्योग लग रहे हैं। 14,000 मात्र उद्यम उद्योग थे बड़े यूपी में, बड़े उद्योग आज उनकी संख्या लगभग 35,000 होने जा रही। 35,000 परिणाम क्या है? इसके माध्यम से युवाओं को नौकरी मिली अपने गांव में, अपने शहर में। बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर स्टार्टअप लगने शुरू कर दिए। 24,120 स्टार्टअप थे 17 के पहले, आज उनकी संख्या 24,000 से ज्यादा है। यानी हम युवाओं को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़कर मार्केट रेडी और इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स के रूप में भी उसको तैयार कर रहे हैं। आज युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, रोबोटिक्स के साथ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ 3D प्रिंटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। IT इलेक्ट्रॉनिक्स में, AI, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और डेटा सेंटर में से लेकर के MSME और डिफेंस तक में उसके लिए अवसर खुले हुए हैं। हर एक
0: योगी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके मानदेय में भारी वृद्धि की है और उनकी योग्यता के आधार पर 4 कैटेगरीज तय की गई हैं। कैटेगरी 1 40,000 प्रति माह, कैटेगरी 2 में 25,000 रुपए प्रति महीने, कैटेगरी 3 में 22,000 रुपए प्रति महीने और कैटेगरी 4 में 20,000 रुपए प्रति माह की जो सैलरी है उनको दी जाएगी। या अलग अलग कैटेगरीज बनाए गए, कुल 4 कैटेगरीज हैं जिनमें उनको प्रति माह ये पैसा दिया जाएगा। तो इस निगम के माध्यम से नियुक्त होने वाले लगभग 3 लाख से ज्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भर्तियों में नियमों के अनुसार आरक्षण का पूरा लाभ भी दिया जाएगा। कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और चिकित्सकीय अवकाश की सुविधा भी इसमें मिलेगी। सभी कर्मचारियों के लिए 50 लाख के दुर्घटना बीमा भी सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। 2017 से पहले बहुत बड़ी गड़बड़ियां होती थी लेकिन हमने बदलाव किया है। अभी गड़बड़ी हुई तो दोषियों की संपत्ति सील होगी और उन्हें जेल भेजा जाए।

0: पहले क्या था, 17 के पहले भर्ती निकलती थी तो युवा को पेपर लीक होने की चिंता होने लगती थी, परीक्षा दी तो परिणाम की चिंता, परिणाम आया तो जो कार्य पद्धति थी पिछली सरकारों की वह अवश्य इस प्रकार की व्यवस्था कर देता था कि कोर्ट उसमें स्टे जरूर देगा, यह भी युवा की चिंता। चयन हुआ तो नियुक्ति की चिंता, और नौकरी में अगर आ ही गया तो अपनी सेवा की चिंता। हमने इस पूरी मानसिकता को बदला। आज आयोग और बोर्ड जितने भी यूपी गवर्नमेंट के हैं उन्हें सुनिश्चित किया गया है कि युवाओं के भविष्य के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसके लिए केवल और केवल जेल होगी और प्रॉपर्टी पूरी जब्त कर दी जाएगी।
1: और अब एक बड़ी खबर आपको देते हैं। चुनावों से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपीएससी मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कौशल किशोर ने खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी है। कौशल किशोर ने कहा है कि पार्टी के लोगों ने ही उन्हें 2024 का चुनाव हरवाया था और अब लगातार पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है। कौशल किशोर ने पिछले दो दिनों में किए गए अपने दो ट्वीट्स को लेकर आज तक से विशेष बातचीत में पार्टी के अंदर खुद के साथ हो रहे राजनीतिक भेदभाव को लेकर बड़े आरोप लगाए।
2: मुझे मेरे एक मित्र थे, उनसे बात हो रही, पार्टी से इस संबंध से कोई लेना देना नहीं, मैंने तो पार्टी का नेता का किसी का जिक्र ही नहीं किया। वो जो हमारे मित्र की कही हुई बात को मैंने ट्वीट कर दिया, फेसबुक पे भी लिखा और ट्वीट कर दिया। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तमाम संगठन हैं, तमाम है, व्यक्ति पर भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जिन विचारों को लेकर के आगे बढ़ा है उन विचारों को छोड़ देगा तो निश्चित तरीके से उसका डाउनफॉल होगा। अब इसका अलग अलग लोगों ने अर्थ लगाया कि ये भाजपा में है तो भाजपा के लिए तो नहीं कह रहे। मैंने किसी पार्टी का या पर्टिकुलर किसी संगठन का पर्टिकुलर नेता के बारे में बात नहीं किया, मैंने सबके लिए भी ये बात बोली है कि अपने उद्देश्यों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब मेरा नाराजगी का कोई मतलब ही नहीं, मेरा उद्देश्य ही दूसरा है। देखिए, मैं तो निर्दलीय चुनाव जीत के आया हूं और 2024 का जो चुनाव था उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने डटकर हमारा विरोध किया था, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में है। धोखाधड़ी किया, गद्दारी किया, विश्वासघात किया, और जिन लोगों ने खुलेआम, तमाम लोग हैं, नाम लेंगे सैकड़ों लोग निकलेंगे, वो सब जानते हैं। और उसके बाद भी सरेआम पार्टी भी जानती है, उसके बाद भी वो सब पार्टी में भी है और उनके साथ जाकर के अपना उनके यहाँ बैठते हैं, बैठते हैं, जाकर के अपना फंक्शन में भी शामिल होने का काम करते हैं। तो ये पार्टी की विचारधारा, पार्टी के विरोध में काम करने वाले लोग, मोदी जी और योगी जी की विचारधारा का विरोध करने वाले लोग भी पार्टी में बन करके रह करके, और पार्टी के कुछ लोग उनको लगातार संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अपने उद्देश्यों से भटके हैं कि नहीं भटके हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? क्यों नहीं हुई? क्या पार्टी नहीं जानती क्या? या मैं पार्टी में मैंने शिकायत नहीं किया? तो निश्चित तरीके से एक तरीके से मुझे धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं कि इतना इग्नोर करो, इतनी वो करो कि धीरे धीरे। अब जैसे कोई भी कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, बहुत कम मुझे बुलाया जाता है, जिनमें बुलाया जाता मैं उसमें जाता हूं। या मैं 15 चुनाव लड़ा हूं, 12 चुनाव हारा हूं, मैं विचलित होने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं तब तक इस बात को समझना चाहता हूं कि पार्टी का टारगेट क्या है, मेरे प्रति इच्छा क्या है। रही टिकट की बात, हो तो पार्टी को तय करना है कि उसे देना है, लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है। फिलहाल ना तो मैं वहां से विधायक का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैंने जैसे वो कहे कि नहीं यहां के बजाय वहां लड़ लो, तो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं लड़ना है। और जयदेवी विधायक जी को भी चुनाव नहीं लड़ना है। लड़का हमारा बेटा है विकास किशोर, जो लगातार काम कर रहा है पार्टी में और उपाध्यक्ष भी रहा है अनुसूचित जाति मोर्चे का। इस्तीफा दे दिया था, शायद इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ उसी वाले घटना में कि हम क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे के, उसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, गेट नहीं लगा रहा, तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। तो उन्हीं को चुनाव लड़ाएंगे, विकास किशोर को। पार्टी को इस पर निर्णय करना है कि पार्टी क्या निर्णय लेती है। जब पार्टी जो निर्णय लेगी उस हिसाब से निर्णय लेने का काम करेंगे। वो मुझे अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस बात की चर्चा करते हैं कि वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, कोई कहेगा वो कांग्रेस में जा रहे हैं, वो कहेगा फला से कोई बात हो गई। अब तमाम लीडरों की एक दूसरे से मुलाकात होती रहती, मेरी तो मुलाकात भी किसी से नहीं हुई। गलत कहते अगर कोई कहते हैं, लोगों ने कहा अखिलेश जी से बात हो गई, मेरी तो कभी नहीं बात हुई, और हुई कोई तो बताए। लेकिन हमारी पार्टी में ही लोग कहते सपा में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मुझे भगाना चाह रहे हैं, मुझे अपमानित कर रहे हैं, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं।
1: तो यूपी बीजेपी में कुछ आवाजें अभी से नाराजगी वाली सुनाई दे रहे हैं, और अब अपनी इस नाराजगी को खुलकर दिखाने के लिए कौशल किशोर ने 13 सितंबर को लखनऊ में एक आत्म सम्मान समारोह करने की घोषणा की है, जिसे बीजेपी के खिलाफ उनके शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले कौशल किशोर के 2 सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है, जिसमें पहले तो उन्होंने एक मित्र से बातचीत का हवाला दिया, ऊपर उठ चुकी गेंद को नीचे गिरने के प्राकृतिक रुख का जिक्र करते हुए क्रिप्टिक पोस्ट किया। गेंद के गिरने की स्पीड को जो है उन्होंने, कौशल किशोर ने जो है कुछ इस तरह से व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक दी नहीं गई है, लेकिन कुछ घंटों के भीतर कौशल किशोर ने एक और पोस्ट भी कर दिया और संगठन या आंदोलन को उसूलों से डिगने पर खत्म हो जाने की चेतावनी देते हुए उसूलों पर टिके रहने की नसीहत भी उन्होंने दे डाली। कौशल किशोर के इन तंज भरे हुए सोशल मीडिया पोस्ट के आखिर मायने क्या है? क्या कौशल किशोर का पार्टी से अब मोह भंग हो चुका है, या चुनाव नजदीक देखकर अंतरात्मा से आवाज उठने लगी है? यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। और वो आंकड़े क्या आपको बताते हैं? कौशल किशोर की पत्नी और मलिहाबाद के बीजेपी के विधायक जय देवी कौशल 2022 का चुनाव सिर्फ 7,745 वोटों से जीत पाई थी, जबकि 2017 में जीत का अंतर 22,668 था। इसी तरह 2019 में 90,229 वोट से मोहनलालगंज सीट जीतने वाले कौशल किशोर 2024 में 70,292 वोट से हार चुके हैं। ऐसे में आशंका है कि आगामी चुनाव में अगर बीजेपी ने इनके घटते हुए प्रभाव को देखकर कोई फैसला लिया तो अपने सुरक्षित सियासी भविष्य के लिए कौशल किशोर कहीं पाला बदलने के लिए तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह की संभावनाएं चल रही हैं। लेकिन बढ़ते हैं आगे यूपी की सियासी खबरों में। बीजेपी की चुनावी तैयारी में एक और बड़ी खबर आई है। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्री पीएम पद पर 25 साल पूरे होने के मौके पर इस बार बड़े अभियान की तैयारियां हैं, और इस महाअभियान की निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्रियों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की विशेष टीम बनाई गई, जो कि लगभग 10 लाख बूथों तक जाकर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। और इस अभियान में वडनगर टू वाराणसी बीजेपी का एक प्लान यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रचार का भी एक बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है।

0: यूपी में चुनाव से पहले ही आखिरी मौका है जब पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केंद्र और राज्य की योजनाओं को इतने बड़े पैमाने पर प्रचार की तैयारी की जा चुकी है। सत्रह सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी तो देश भर में एक महीने का आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है, लेकिन यूपी में ये ज्यादा प्रभावी हो सकता है क्योंकि इस अभियान में वाराणसी एक बड़ा सेंटर है। बीजेपी ने तय किया है कि पीएम मोदी के सीएम पीएम रहते 25 साल पूरे होने के मौके पर अब तक के माइलस्टोन्स को जनता तक पहुंचाया जाए। इसके लिए 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू होने वाला है। इसमें गुजरात के वडनगर और यूपी के वाराणसी से बीजेपी की टीमें प्रचार के लिए निकलेंगी। दोनों शहरों से 10-10 टीमें रवाना की जाएंगी, जिसमें वडनगर से निकली टीम वाराणसी और वाराणसी से निकली टीम वडनगर जाएगी। हर टीम में 10 या अधिक बाइकर्स बसें शामिल होगी। हर टीम रोज 100 किलोमीटर का सफर करेगी। ये बीजेपी सरकार का संदेश लोगों तक पहुंचाएगी। कुल 1500 किलोमीटर के सफर में ये टीम 60 से अधिक कार्यक्रम में शामिल होगी। रोज 100 किलोमीटर के सफर के बाद ठहरने वाली बीजेपी की टीम पहले से तय 4 कार्यक्रमों में शामिल होगी और वहां बीजेपी सरकार की योजनाओं और कामयाबियों को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस सेवा संकल्प अभियान को यूपी में और जोर शोर से चलाने का संकल्प पहले ही लिया जा चुका है। 31 अगस्त को लखनऊ में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक में ही कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो चुकी है।
1: देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्ष सेवा की, उनके जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक एक माह का कार्यकाल, ये बहुत सारे सेवा कार्य, 13 सेवा कार्य जो प्रदेश भर में चलेंगे, जिसमें ब्लड डोनेशन है, वृक्षारोपण है, जनता के बीच में जाना है, कार्यक्रम करने हैं, रथ यात्राएं हैं, जनता के बीच में जाकर के उनकी भावनाओं का सम्मान करना है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम लगातार चलेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो लगातार चलाए गए हैं, उनको घर घर तक जाना, विकास योजना तो लोगों तक पहुँचाना, उनके विषय को समझना, और आगामी सबको मालूम ही है कि चुनाव भी आ गया है, तो चुनाव की दृष्टि से भी उन सब के बीच में जाकर के सरकार की लोग जो चर्चा करें।
0: सेवा संकल्प अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए यूपी में विशेष तैयारी पहले ही हो चुकी है। दिल्ली के साथ तालमेल बैठाकर इस अभियान को यूपी में प्रभावी तरीके से चलाने के लिए बूथ बूथ तक के कार्यकर्ताओं को ताकीद दी जा चुकी है।
2: हम लोगों को बताया गया है कि बहुत सारी योजनाएं हैं वो बताई गई हैं।
3: तो आप लोग क्षेत्र में बूथ स्तर तक लेकर जाने वाले हैं?
2: जी जी, वो क्षेत्र से, जिले से, बूथ से, सभी जगह लेकर जाने।
4: हमारी सरकार 17 में बनी, अब उनको बताएंगे कि 14 के पहले का कैसा भारत था और आज का कैसा।
0: वैसे 17 सितंबर से जो बीजेपी अभियान शुरू करने जा रही है, उसमें कई और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मसलन हर जिले और मंडल स्तर पर रक्तदान शिविर और मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगेंगे। 2 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान चलेगा। एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण भी चलता रहेगा। पार्टी कार्यकर्ता कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घर जाकर आशीर्वाद दीप कार्यक्रम में दीप जलाएंगे। यूपी जैसे राज्य में करीब 25 करोड़ स्कूली बच्चों तक कई स्कूली प्रतियोगिताएं खेल कार्यक्रम के जरिए पहुँच बनाई जाएगी। इस पूरे अभियान का मूल मंत्र ये रहेगा कि बीजेपी कांग्रेस के 55 साल बनाम मोदी के 12 साल की तुलना जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करेगी।

0: See you con. किनके हाथों में होगी मंदिर की कमान? तीन नामों से किस पर लगेगी मुहर? राम मंदिर पर सबसे बड़ा फैसला, राम मंदिर में चंदा चोरी के खुलासे ने जो खलबली पैदा की थी वो अभी तक थमी नहीं है। मानसून सत्र का हाल तो आप देख ही चुके हैं, जब तक सत्र चला संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन भी साथ साथ चला। राजनीति के इस सिलसिले के बीच राम मंदिर विवाद में एक बड़ा पड़ाव आने वाला है। आज राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ का ऐलान होना है।
1: इन तीनों ने भी अत्यंत परिश्रम पूर्वक 5,500 लोगों में से एक पद के लिए 5,500 आवेदन पत्र आए, उनमें से धीरे धीरे प्रोफेशनली चयन करते करते और हम लोगों को आज उनके सारे इस परिश्रम का फल अर्पित किया है। भगवान श्री राम लला के चरणों में इसको रखेंगे, जिसमें इस विश्व के अनन्य श्रेष्ठतम मंदिर के उत्तम व्यवस्थापन के लिए सीईओ की नियुक्ति करनी है, उसमें तीन महानुभावों का इन लोगों ने हमें सुझाव दिया है। इसमें से चयन जो होना है हमारे न्यास की बैठक में होगा।
0: सीईओ के चयन के लिए शुरू हुई प्रक्रिया में कुल 5,585 आवेदन, 3,577 आवेदकों ने स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। स्क्रीनिंग के बाद 470 या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले 108 उम्मीदवार अगले चरण के लिए चुने गए। इन उम्मीदवारों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्षात्कार हुआ। 4 दिन चली इस प्रक्रिया के बाद 17 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। अंतिम चरण के लिए सभी को अयोध्या बुलाया गया और आखिर में 3 नाम फाइनल किए गए।
2: कुल मिलाकर 3,500 से में से 108 लोग ऐसे थे जिनके अंक 470 के ऊपर आए। इसके बाद उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया, आखिरी चरण के लिए बुलाया गया। फिर बचे 17 लोग जिन्होंने लास्ट राउंड भी क्लियर किया। 17 में से एक व्यक्ति इंटरव्यू के दौरान नहीं पहुंचे और 16 लोगों ने कुल मिलाकर आखिरी चरण में अयोध्या प्रकरण में हिस्सा लिया, जिसके बाद कमिटी ने 3 नाम फाइनल किए और उन 3 नामों को लिफाफे में बंद कर ट्रस्ट को सौंप दिया है। अब ये बंद लिफाफा ट्रस्ट आज खोलने वाला है और सामने आने वाला है सीईओ का नाम, जिसकी कहनी और कथनी चलेगी अब अयोध्या राम मंदिर में, खासकर प्रशासनिक मामलों में। और देखना होगा कि सीईओ के आने के बाद कैसे व्यवस्था ट्रस्ट की बदलती है।
0: तो अब बड़ा सवाल ये है कि जिन 3 नामों को चयन समिति ने शॉर्टलिस्ट किया है उनमें कौन कौन है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक संभावित नामों में सबसे ऊपर पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे का नाम बताया जा रहा है। सीईओ के लिए सामने आ रहे नामों में बिहार के पूर्व डीजीपी डॉक्टर परेश सक्सेना का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। आईएएस दिनेश चंद्र का नाम भी चर्चा में है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इन 3 नामों में से एक वो लकी नाम किनका होगा जिन्हें राम मंदिर के सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आज शाम तक इस सस्पेंस से पर्दा हट जाएगा। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री सुलझाएगी सीबीआई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया आदेश। मुंबई में 14वें फ्लोर से गिरकर गई थी जान। आज सामने आ सकता है राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ का नाम। शॉर्टलिस्ट में 3 लोगों में से चुने जाएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर्च कमेटी ने न्यास को सौंप दी है फाइल रिपोर्ट। मोहन यादव सरकार बदलेगी। भोपाल की राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम मध्य भारत मालवा और महाकौशल के नाम से 3 भागों में बढ़ जाएगा विश्वविद्यालय। कांग्रेस बोली ओछी मानसिकता। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतरी दोनों पार्टियां। वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर उमर अब्दुल्ला सरकार से बढ़ा तकरार। ईरान के सामरिक ठिकानों पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले। एयर डिफेंस, रडार और समुद्री ठिकाने तबाह। तेहरान ने जॉर्डन पर दागी मिसाइलें। अमेरिकी बेस को बनाया निशाना।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। शुरुआत करें नॉन स्टॉप 100 के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नेपाल का आदमी मरने वालों का आंकड़ा 1100 के पार, अब तक 1126 बॉडी बरामद, लापता लोगों की संख्या 8400 के पार, 25 पुलिसकर्मी अब भी लापता। विश्वनीत्री हाइड्रो पावर से जिंदा लौटे श्रमिक ने सुनाई वहां की आपबीती, चीनी सुपरवाइजर पर लगाए गंभीर आरोप। श्रमिक के मुताबिक बाढ़ के समय नंबर 3 टनल में करीब 265 लोग काम कर रहे थे, उन्होंने दावा किया कि सुरंग के अंदर कई लोगों की मौत हो चुकी है। संकट में नेपाल के साथ खड़ा हुआ, 5.5 टन दवाओं के साथ मदद की 5वीं खेप भेजी गई, इसमें 11 सदस्य बचाव दल विशेष उपकरण शामिल। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, भारत से लाए कंबल और राशन, बोले अगले महीने तक जारी रहेगी मदद। दिल्ली बस गैंग ने मामले बड़ा खुलासा, फिंगरप्रिंट से आरोपियों की मौजूदगी हुई कंफर्म। जांच में खुलासा कि बस में लगा हुआ सीसीटीवी फंक्शनल नहीं था, सीटों और स्टेयरिंग से भी फोरेंसिक सैंपल लिए गए। डीएनए जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले में फोरेंसिक सबूतों की कड़ी और मजबूत होने की उम्मीद, पुलिस बहुत जल्द इस केस की चार्जशीट दायर करेगी। दिल्ली के संजय झील में 3 युवकों की डूबने से मौत, 22 से 25 साल के बीच थी तीनों की उम्र, परिवार मचा कोहराम। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच करेगी सीबीआई, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। जम्मू कश्मीर में सड़क पर सियासी संग्राम, बीजेपी एनसी का एक दूसरे के खिलाफ मार्च, हालात को काबू में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी एक दूसरे पर वादे खिलाफी का आरोप लगा चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदर्शन को देखते हुए श्रीनगर में बीजेपी ऑफिस और सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। डेरेक ओब्रायन पहुंचे कोलकाता पुलिस के सामने, ऑफिस विवाद में दर्ज कराया बयान। मोहन कैबिनेट का फैसला, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 3 हिस्सों में बांटने और नाम बदलने की मंजूरी। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में आउटसोर्स कर्मचारियों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 20 लाख कर्मियों को सेवा सुरक्षा और हितों के संरक्षण का दिया भरोसा। कार्यक्रम में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले सरकार और कर्मचारियों का रिश्ता केवल वेतन का नहीं बल्कि विश्वास का होता है। टेबल लीग पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर सवाल निशाना, कहा युवाओं के भविष्य के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो उसकी जगह सीधे जेल होगी, प्रॉपर्टी पूरी जब्त होगी। यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट भर्ती पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा आश्वासन, 3224 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का दिया भरोसा। यूपी पैट 2026 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 7 सितंबर तक कर सकेंगे पैट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन। आज तय होगा अयोध्या राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया सीईओ, हजारों में चुने गए केवल 3 नाम, बैठक में 12 बड़े फैसले। बैठक राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास ने के स्थान मड़े रामदास छावनी में होगी। राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक के लिए कई प्रमुख ट्रस्टी अयोध्या पहुंचे। मीटिंग में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद खाली हुई सीटों के साथ राज परिवार से जुड़ी रिक्त सीट पर भी नए नाम पर फैसला संभव। इस दौरान सीईओ की नियुक्ति के साथ साथ ट्रस्ट के डीड में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। प्रस्तावित संशोधन में सीईओ के नए अधिकार जिम्मेदारियां शामिल किए जाने की संभावना। ट्रस्ट दान की चोरी की एसआईटी जांच और सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। आज सहारनपुर दौरे पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, चौधरी इंद्र सेन समेत स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। अखिलेश यादव के सहारनपुर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तंज, बोले एसपी पूरी तरह दिग्भ्रमित, दिन में देख रहे हैं सपने। ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला, बोले एसपी सरकार में माफियाओं को संरक्षण मिला, आज अपराधियों में खौफ है, बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत से बनाएगी सरकार। त्योहारों से पहले यूपी में बिजली व्यवस्था होगी दुरुस्त, योगी सरकार 15 सितंबर चलाएगी अनुरक्षण माह, जर्जर तार और पेड़ की डालियों की होगी छटाई। यूपी टेट 2026 रिजल्ट पर आपत्तियों के निस्तारण के लिए 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित। पीएसी रेड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई। कोलकाता में शेक्सपियर सरणी पर ऊंची इमारत में ईडी का रेड, टोल रेवेन्यू की हेराफेरी के आरोप के कारण शुरू की गई है जांच। आंध्र प्रदेश के पल्लावरम में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, मलेरिया की दवा खाते 50 से ज्यादा बीमार, 7 साल की बच्ची प्रभावित। केंद्र सरकार ने चीनी के स्टॉक सीमा घटाकर 2000 क्विंटल की, 15 सितंबर से नई सीमा लागू होगी। भू घोटाले में एफआईआर की मांग, ईडी ने पंजाब डीजीपी को तीसरी बार लिखा पत्र, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ईडी ने दाखिल किया 200 पेज का जवाब, 150 ज्यादा पन्नों में व्हाट्सएप चैट। जॉर्डन से बहरीन तक गैला, मिडिल ईस्ट अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने किया पलटवार, ईरान ने जॉर्डन बहरीन और इराक में अपने ठिकानों पर हमला किया, साथ ही तेहरान ने चेतावनी दी कि वो खाड़ी से तेल के निर्यात को रोक देगा।
ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कड़ी चेतावनी, बदला लिया तो अमेरिका करेगा और बड़ा हमला। ईरान अमेरिका के बीच सेंध तनाव बढ़ने से कच्चे तेल में $4 प्रति बैरल से ज्यादा का उछाल, ब्रेंट $94 के पार। ईरानी मीडिया के अनुसार होर्मुज़ जलडमरू बंद के पास तटीय इलाके से एक विस्फोटी समारोह पर हमला, 5 की मौत 50 से ज्यादा घायल। आईआरजीसी का जॉर्डन के प्रिंस हसन एयर बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, RQ-4 और MQ-9 ड्रोन से हैंगर को बनाया निशाना। आईआरजीसी ने कई ड्रोन नष्ट किए, अमेरिकी कर्मियों की मौत और सैन्य ठिकाने के ढांचे में आग लगने का दावा किया। ईरान की अमेरिकी सेना को चेतावनी, सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। जॉर्डन में 13 में से 10 मिसाइलें रोकी गई, अमेरिकी सैनिकों की मौत का आईआरजीसी ने जो दावा किया है उसको अमेरिका ने किया खारिज। मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका ने फिर जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, ईरान ओमान शिपिंग फ्रेमवर्क बनाने में जुटे। नाम गंगा एक्सप्रेसवे की अप्रोच रोड पर जलभराव, वाहनों की आवाजाही प्रभावित। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, बाढ़ का खतरा बढ़ा। सोनभद्र में मूसलाधार बारिश के बीच रिहंद बांध के 3 फाटक खुले, सोन नदी का जलस्तर बढ़ने का खतरा। यूपी के बांदा में बारिश बनी आफत, गोखरही गांव में 4 कच्चे मकान गिरे, जलभराव से जनजीवन बेहाल। लखनऊ में मूसलाधार बारिश से जलभराव के बीच लगा जाम, IT चौराहे के पास सड़क पर गिरा विशाल पेड़। कोटद्वार में मां बेटी की नदी में बहने से मौत, पैठानी क्षेत्र में महिला की तलाश जारी। उत्तराखंड में लगातार हो रही है बारिश से तबाही, फायर और SDRF टीम ने आधा दर्जन परिवारों का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। बागेश्वर में तेज बारिश के बीच NH-109 के रवाई खाल के पास बड़े पैमाने पर भूस्खलन होने से सड़क पूरी तरह बंद, शव यात्रा 3 घंटे तक जाम में फंसी रही। हथनीकुंड बैराज पर स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के दौरान हादसा, यमुना में बहे जवान, 3 रेस्क्यू 2 लापता। आसनसोल उत्तर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में जल जमाव, लोगों के साथ साथ वाहन चालकों को परेशानी। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी, सोलन में नदी नाले उफान पर, कई जगहों पर सड़कें बनी सैलाब। भारी मलबे और बड़े पत्थरों से सड़कें बाधित, लोगों की बड़ी मुश्किल, 4 सितंबर तक बारिश से राहत के आसार नहीं। उत्तरकाशी में बारिश चलते गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन। मध्य प्रदेश के बाणसागर डैम में गेट खुलने से रोहतास में बढ़ा सोन नदी का जलस्तर, नदी किनारे रहने वालों को दूर जाने की सलाह। बिहार के नवगछिया में गंगा का कहर, राघोपुर में कटाव से हड़कंप, मंत्री विधायक ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हिमाचल प्रदेश के चंबा मलबे की चपेट में आए कार सवार, सेना जवानों को किया रेस्क्यू, जवानों द्वारा बिना समय गंवाए गए मदद से बड़ा हादसा टला। कटिहार मूसलाधार बारिश से आफत, जलभराव से सड़कें जलमग्न, लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में भरा पानी। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश और लैंडस्लाइड के कारण अब तक 7 की गई जान, सुरक्षा के मद्देनजर 172 सड़कें यातायात के लिए बंद। गौला नदी और खकरा नदी से जलस्तर बढ़ने के निचले इलाकों में पानी भरा, खटीमा के वनगांव में दर्जनों फंसे परिवार को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अल्मोड़ा में अलग अलग हादसों में मलबे दबने से 5 की मौत, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल। दिल्ली रोहिणी बुजुर्ग की हत्या मामले में 2.5 घंटे में खुलासा, लूट के इरादे से वारदात को दिया अंजाम, लड़की सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 63 की फुटवेयर फैक्ट्री में आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कोई जनहानि नहीं। तेलंगाना के हैदराबाद में मार्केट लगी भीषण आग, कोई जनहानि नहीं। झांसी में तेज रफ्तार कार ने पेड़ और गैस पाइपलाइन को मारी टक्कर, गैस रिसाव से मची अफरा तफरी, चालक पुलिस की हिरासत में। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी में तेज रफ्तार ट्रक चालक ने मचाई तबाही, नशे में धुत ड्राइवर ने गेट में घुसाया ट्रक, 4 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में धारदार हथियार से युवक पर हमला, 2 लोग को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। बिहार के हाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तबिश जारी। छपरा में 50 लाख रुपए के संदिग्ध साइबर लेन देन को नोटिस से परेशान होकर युवक टावर पर चढ़ा, पुलिस ने बचाया। बिहार के वैशाली में बदमाशों का आतंक, पशु व्यापारी पिता पुत्र को गोली मारी, मौके पर पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। बड़ोदरा में ट्रेलर और LPG टैंकर के बीच भीषण टक्कर, LPG टैंकर ने संतुलन खोकर सड़क पर ही पलटा, वन वे किया गया हाईवे। नागपुर में हत्या, लूट चोरी के 4 आरोपी बाल सुधार गृह से भागे, स्वचालित खिड़की के जरिए भागने में कामयाब। फरीदाबाद में स्कूल की छत से 11वीं छात्रा ने लगाई छलांग, छात्रा के परिजनों का स्कूल पर आरोप, 4 घंटे तक सजा के तौर पर क्लासरूम से बाहर खड़ा किया। जयपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद थाने के बाहर धरना, शव ले जाने से इनकार, गला घोटकर हत्या करने का आरोप।
भोपाल में फर्जी आईएएस तृप्ति सिंह राजपूत का नया वीडियो वायरल, सहेलियों संग बोली, हमारी हरकतों को देखकर कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हम तीनों आईएएस अफसर हैं। इंदौर में 20 सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन बड़ा भारी, कार रोककर कार रख के एक वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने चालान काटा। जालना में एसआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या की कोशिश। अयोध्या में लक्ष्मी स्वीट हाउस में भीषण आग, सिविल लाइन्स इलाके में मचा हड़कंप। चंद्रपुर में गृह दोष दूर करने के बाद तांत्रिक का घिनौना खेल, पति को संभाल लाने भेजा, पत्नी से किया दुष्कर्म। उन्नाव में 10 फीट गड्ढे के बाद फिर से हुआ गंगा एक्सप्रेस वे पर 7 फीट गहरा गड्ढा। कटिहार के अंचल कार्यालय में मारपीट, सीओ और प्रधान लिपिक के बीच हाथापाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पंजाब के फजिलका में बेटे ने मां को पीट पीट कर मार डाला, आरोपी ने अपनी मां के सिर पर प्रेशर कुकर से कई बार किया वार। जयपुर में थार एडवेंचर की रफ्तार ने मचाया कहर, 50 फीट दूर जा गिराई रिक्शा, कांग्रेस नेता की पत्नी के नाम है कार। कौशाम्बी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट, मौत का आंकड़ा 13, एसपी ने की मौत की पुष्टि, हादसे में परिवार के 4 लोगों ने गवाई जान। कौशाम्बी धमाके के आरोपी नौशाद आदिल के घर पर पीडीए की टीम ने चलाया बुलडोजर, इसी मकान में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ था विस्फोट। मिर्जापुर द मूवी के मेकर्स का बड़ा धमाका, रिलीज से 3 दिन पहले आउट हुआ नया गाना घूम घूम। मनोज वाजपेयी की फिल्म लास्ट मैन इन टावर का ट्रेलर लॉन्च, व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा के नॉवल पर आधारित है फिल्म। बॉक्स ऑफिस में फिल्म हनुमान अंश ने किया कमाल, मूवी ने 25 दिन में 47 करोड़ के आसपास की कमाई की। पर्दे पर आदमखोरों के शिकार बनेंगे अक्षय कुमार, मशहूर शिकारी पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट की बाइक में करेंगे काम। रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म मैसा का रिलीज डेट का ऐलान, 27 नवंबर को लॉन्च होगी फिल्म। ट्रंप ने हंगकाओ की नौसेना का सचिव नियुक्त किया, सीनेट के हंगकाओ के नाम से जल मोहर लगने की उम्मीद जताई। ट्रंप ने G20 वित्त मंत्रियों की बैठक को बहुत उपयोगी और सकारात्मक बताया, अमेरिका का शानदार प्रतिनिधित्व करने के लिए वित्त मंत्री स्कॉट बेसन को धन्यवाद किया। पुतिन ने रूसी हवाई क्षेत्र को बंद करने की जेलेंस्की की धमकी को बताया राज्य प्रायोजित आतंकवाद। इजरायली पीएम नेतन्याहू का 7 अक्टूबर हमले को राष्ट्र दो मानने से इनकार, वीडियो संदेश में हमास के विनाशकारी हमले को सिस्टम की बड़ी नाकामी बताया। सर्बियाई छात्र और आम लोगों को 9वीं स्टेशन हादसे के 22 महीने बाद बेलग्रेड से निकाला मार्च, लोगों के हादसे की जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग।

0: इस बीच बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर मुंबई हाईकोर्ट ने दिशा सालियान मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दे दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच के लिए सीबीआई के एक सीनियर अधिकारी को नियुक्त करने के कहा है और साथ ही याचिकाकर्ता का बयान दर्ज करने के लिए कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई से जांच कराने का निर्देश दिया। मुंबई क्षेत्र के प्रभारी सीबीआई के ज्वाइंट निदेशक इस मामले में जांच अधिकारी के तौर पर सीबीआई किसी अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करेंगे। ये अधिकारी याचिकाकर्ता का बयान दर्ज करेगा और एफआईआर दर्ज करेगा। जांच अधिकारी उन सभी पहलुओं की जांच करेगा जिनसे जुड़ी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता की बेटी की मौत हुई थी।
1: इस वक्त दिशा सान्याल के वकील जो है नीलेश ओझा जी हमारे साथ है। इस केस को जब कोर्ट में लाया गया तब एसआईटी के पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था, मालवनी पुलिस स्टेशन ने इसको एक्सीडेंटल रिपोर्ट बता दिया था। कई चैलेंजेस के खिलाफ ये पिटीशन फाइल की गई थी, किसी को लगा नहीं था सीबीआई इंक्वायरी इसमें होगी।
2: अरे आपने अगर देखा होगा कोर्ट ने इनका पूरा झूठ पकड़ लिया। पहली चीज इसमें उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट बनाए थे सब झूठे पाए गए। इन्होंने खुद जो सीसीटीवी प्रोड्यूस किया उसमें भी इनका सुसाइड थ्योरी झूठा साबित हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी, आपको याद होगा कोर्ट ने पहला सवाल पूछा
1: इंजरी को लेकर।
2: हाँ, कोर्ट ने कहा आप कह रहे हो 14वें माले से लड़की गिर रही है, मुंह पर गिर रही है, वो फोर्स क्या होता है 14वें माले का, और नाक ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, होठ भी ठीक है, अंदर का एक दांत टूटा हुआ दिखा रहे हो। तो इतना बोगस इन्वेस्टिगेशन, इनको लगता है गरीब है तो हम कुछ भी कवर कर लेंगे, ये ऐसा नहीं होता है।
1: क्या ग्राउंड आपको लगता है जो कोर्ट ने इसमें सीबीआई सीनियर सीबीआई ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने को कहा है?
2: क्योंकि सीनियर पुलिस अधिकारी आरोपी है, आदित्य ठाकरे आरोपी है, उद्धव ठाकरे आरोपी है, परमवीर सिंह आरोपी है, तो ऐसे इतनी बड़ी पूरी रिया चक्रवर्ती आरोपी है, तो इतने सब लोग आरोपी है, तो इसमें सीबीआई बेटर है और वो भी सीनियर ऑफिसर।
1: एफआईआर रजिस्टर करने को कहा गया सीबीआई की
2: तरफ? हाँ हाँ, कोर्ट ने क्लियर कहा है सतीश सालियान जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है और एफआईआर रजिस्टर करना है और बाद में इन्वेस्टिगेट करना है।
1: किसी को आरोपी ना समझा जाए जब तक उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिल पाते, तो क्या इतने साल बाद क्राइम होने के एविडेंसेस मिल पाएंगे?
2: सब एविडेंस है, चिंता मत कीजिए। आई विटनेस से लेके वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके सब विटनेस है। हम पहले दिन से कह रहे हैं एफिडेविट पे कंप्लेंट है, कंप्लेंट झूठी है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कंप्लेंट सही है तो इनको अरेस्ट कीजिए बस।
0: और इस फैसले के बाद दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने क्या कुछ कहा सुनिए।
1: कई उसमें मोड़ आए, आपको कब ये चीज में कन्विंस हुआ कि कहीं ना कहीं कोई दोषी है, कोई आरोपी है? पहले इसको सुसाइड केस बताया जा रहा है।
3: दोषी तो रहेगा, दोषी के बिना थोड़ी होएगा, मर्डर होएगा, ऐसा है।
1: लेकिन क्या ऐसे सरकमस्टेंसेस जो आपको लगता है जिसमें अभी तक जांच नहीं हो पाई और सीबीआई को उस चीज में फोकस करना चाहिए?
3: नहीं, अब मैं तो कुछ नहीं उसके बारे में बोल रहा हूँ। जो लोग दिल्ली सब बोलते हैं सही बोलते हैं, उनको दिमाग चाणक्य दिमाग है
1: उनका। अब तो आप लगता है आदित्य ठाकरे आरोपी है इसमें?
3: अभी जो मैं नहीं बोलूंगा, जो जांच कर रहे हैं वो लोग बोलेंगे।
1: लेकिन खुश है आप इस फैसले से?
3: हाँ जरूर जरूर, 100%।
1: धन्यवाद। सतीश सालियान जी थे दिशा सालियान जी के पिता, जो कह रहे हैं इस फैसले से संतुष्ट है, केस में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सिद्धेश के साथ मुस्तफा शेख आज तक।
0: उधर बीजेपी नेता राम कदम ने कोर्ट के इस फैसले की तारीफ की है।
4: दिशा सालियान के पिता स्वयं कह रहे हैं उनकी बेटी की मृत्यु नहीं हुई, उसे पीड़ित प्रताड़ित करते हुए अत्याचारित करते हुए उसका खून हुआ है, और उस वक्त की उद्धव ठाकरे सरकार ने इस मामले को रफा दफा करने का दुष्कर्म किया किसी बड़े नेता को बचाने के लिए। यह आरोप दिशा सालियान के पिता के है। एक बाप से जाकर के पूछो बेटी खोने का दुख क्या होता है। अब मुकदमा दर्ज करके यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए, इस प्रकार से न्यायपालिका ने दिशा के पिता को न्याय दिया है। सवाल यह उठता है कि उस दौरान की उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही थी? रातों रात इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया गया? इस बात का जवाब श्रीमान उद्धव ठाकरे समेत जिन जिन लोगों को बचाने का प्रयास किया गया उन सबको न्यायपालिका के सामने देना होगा। अब इस सारे प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी और मुकदमा दर्ज होगा।
0: और बात मध्यप्रदेश की, जहां राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को लेकर मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की तैयारी है। विश्वविद्यालय मध्य भारत, मालवा और महाकौशल के नाम से 3 भागों में बंट जाएगा। कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है।

0: और इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से बातचीत की है, सुनिए।
1: राजीव गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है?
2: देखिए, हम किसी भी महापुरुष का, किसी भी पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री का हम नाम नहीं हटा रहे हैं। ना हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि किसी एक ही एक के नाम से सारी योजनाएं लागू करें। हमने तो भौगोलिक दृष्टि की पहचान दी है और मैं समझता हूं भौगोलिक दृष्टि की पहचान भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे कोई महापुरुष है उन महापुरुषों के नाम हम स्थापित करते हैं, उसी प्रकार से ये भी स्थापित करने का अभियान है। राजीव गांधी जी का नाम हमारे विश्वविद्यालय के अन्य बहुत सारे संस्थान हैं उनमें हमने करने का निर्णय किया है। राजीव गांधी जी का नाम हम हटाना जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जरूर अपने केवल एक परिवार के लोगों का नाम हटाने पर विश्वास करती है, उनका नाम जोड़ने पर विश्वास करती है। हम तो और जो छूटे हैं वो से महापुरुष मिलते हैं, क्षेत्र के कोई महापुरुष मिलते हैं, उन सबको भी उनके योगदान को देखते हुए उनको भी समाज जीवन में स्थापित करना चाहते हैं। और इसलिए हमारी सरकार कभी किसी महापुरुष के नाम को हटाने पर विश्वास नहीं करती है।
1: तो जैसे राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी नाम बदलेगा तो फिर राजीव गांधी का नाम कहाँ रहेगा?
2: देखिए, हमारा बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, उस संस्थान में अच्छे अच्छे इनोवेशन सेंटर है और उनमें से हम जो वहाँ के कार्य परिषद चाहेगी उसका नामकरण हम राजीव गांधी जी का, ना तो वहाँ स्टेच्यू हटा रहे हैं ना कुछ हटा रहा। राजीव गांधी को हम सम्मान के साथ में हम सम्मानित करते हैं क्योंकि हम स्वतंत्रता के बाद के जितने भी प्रधानमंत्री हो किसी भी दल विशेष के हुए हम संकीर्ण मानसिकता से नहीं देखते हैं और साथ में ये भी नहीं देखते हैं कि केवल कोई हमारी आइडियोलॉजी का कोई महापुरुष हो उसी उसी के नाम से सारी योजनाएं चले। हम ऐसे समाज जीवन में जिनको कि कांग्रेस ने बहुत उपेक्षित किया है, यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर जी को उन्होंने उपेक्षित किया, ऐसे महापुरुष को के नाम से भी हम आज देश भर में संस्थान बना रहे हैं, उनके जीवन मूल्यों को हम आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम रविदास जी महाराज का नाम फिर से समाज जीवन में उनके योगदान को स्थापित कर रहे हैं और लोग उनके जो कार्य किया था उसके योगदान को समझे और उनके आचरण और व्यवहार से प्रेरणा लें।
0: इस बीच इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी नेता कमलनाथ ने कहा कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 300 में बांटकर इसके नाम में से राजीव गांधी का नाम हटाना बीजेपी सरकार की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मोहन यादव सरकार पर सवाल उठाए। कमलनाथ ने आरोप लगाए कि बीजेपी खुद कोई नया काम तो कर नहीं पाती, बस कांग्रेस के जमाने के कार्यों की नाम पट्टिकाएं बदलने में लगी रहती है।
3: इतना महान योगदान आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जिस व्यक्ति ने दिया है उसका नाम बदल देना जो पहले से रखा हुआ है बहुत दुर्भाग्यजनक है। और इनको देश के हर उस आदमी से आपत्ति है जिसने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया। इनको नेहरू जी के नाम पर आपत्ति है, इनको इंदिरा गांधी जी के नाम पर आपत्ति है, इनको महात्मा गांधी जी के नाम पर आपत्ति है, इनको राजीव गांधी जी के नाम पर आपत्ति है। तो ये नाथूराम गोडसे का नाम रख दे विश्वविद्यालय का।
0: वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में औपचारिक रूप से इस निगम के डिजिटल पोर्टल और वेबसाइट का लोकार्पण किया है। इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की उपस्थिति और वेतन का डिजिटल प्रबंधन होगा। हर महीने की 5 तारीख तक सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में सैलरी ट्रांसफर होगी। सीएम योगी ने कहा कि अब 20 लाख कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवर देने का काम सरकार कर रही है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने और भी कदम उठाए हैं।
4: पहले प्रदेश में 17 के पहले सेफई सिंडिकेट और रामपुर सिंडिकेट पूरी व्यवस्था का खून चूसता था। आज सिंडिकेट पूरी तरह समाप्त कर दिया है और तीसरा सिंडिकेट पे हमने प्रहार किया है। जो एजेंसियों के माध्यम से आपका शोषण होता था आज ये आउटसोर्स निगम उस पर प्रहार है। ये यही प्रहार इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने एक अच्छी सरकार चुनी है और उस अच्छी सरकार के माध्यम से ये सभी कार्य आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
0: वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाया है। 2017 से पहले बहुत सारी गड़बड़ियां होती थी लेकिन उन्होंने उसमें बदलाव किया। अब गड़बड़ी हुई तो दोषियों की संपत्ति सील की जाएगी और जेल भी भेज दिया जाएगा।
4: पहले क्या था, 17 के पहले भर्ती निकलती थी तो युवा को पेपर लीक होने की चिंता होने लगती थी। परीक्षा दी तो परिणाम की चिंता, परिणाम आया तो जो कार्य पद्धति थी पिछली सरकारों की वह अवश्य इस प्रकार की व्यवस्था कर देता था कि कोर्ट उसमें स्टे जरूर देगा, यह भी युवा की चिंता। चयन हुआ तो नियुक्ति की चिंता, और नौकरी में अगर आ ही गया तो अपनी सेवा की चिंता। हमने इस पूरी मानसिकता को बदला। आज आयोग और बोर्ड जितने भी यूपी गवर्नमेंट के हैं उन्हें सुनिश्चित किया गया है कि युवाओं के भविष्य के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसके लिए केवल और केवल जेल होगी और प्रॉपर्टी पूरी जब्त कर दी जाएगी।
0: इसी के साथ यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
14: जेके मैक्स पेंट्स।
13: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: EU सोच बदलो और बैंक भी।
2: ब्रज की भूमि से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पंचायत आज तक मथुरा, 3 सितंबर सिर्फ आज तक पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से,
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: एयू करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: इन एसोसिएशन विद
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
4: ये मार्केट को पता कैसे लग जाता है सर, कुछ बड़ा होने वाला है?
5: देखिए, तेजी में सबको सब चीज पे भरोसा होता है, मंदी में सब सवाल उठते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। तो बफेट साहब ने भी बोला ना, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। क्या होता है कि जब भी, जैसे अभी हम लोग वी आर लिविंग थ्रू दिस ना, कि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, वॉर चल रहा है, यू नो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होएगा, ये सब चिंता हो रही है लोगों को।
6: डोनाल्ड ट्रंप
5: साहब है, जियोपॉलिटिक्स है, वॉर है, ये चिंता हो रही है। तो पिछले 27 साल से मैं वो मार्केट में 6 बार हो चुका है। तो मैंने क्या देखा है कि जितना नंबर चेंज नहीं होता ना, उतना लोगों का मूड चेंज हो जाता है। तो आज के ज़माने में वैल्यू की डेफिनेशन ही ये है, मिसप्राइज्ड ग्रोथ।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री सुलझाएगी सीबीआई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश। मुंबई में 14वें फ्लोर से गिरकर गई थी जान। आज सामने आ सकता है राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ का नाम। शॉर्टलिस्ट हुए 3 में से, चुने जाएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर्च कमेटी ने न्यास को सौंप दी फाइल रिपोर्ट। मोहन यादव सरकार बदलेगी भोपाल की राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम। मध्य भारत

नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ बेनी हबात। हम बात करेंगे उस खतरे की जिसने लोगों को डरा कर रख दिया है। 26 अगस्त को नेपाल में जो तबाही आई उसे न सिर्फ नेपाल में तबाही मचाई बल्कि दुनिया भर के देशों में डर पैदा कर दिया है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर टूट रहे हैं उससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। पहाड़ों से आ रहे सैलाब के चलते भारत के कई पहाड़ी इलाके अछूते नहीं है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के कई इलाकों में सैलाबी आफत देखी जा रही है। वहीं यूएन की ताजा रिपोर्ट ने मुंबई और कोलकाता में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र का जलस्तर बढ़ने से कोलकाता और मुंबई में रह रहे लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। सबसे पहले बात नेपाल में आई त्रासदी की करेंगे। हिमालय में ग्लेशियर टूटने से नेपाल में सैलाब आया और ऐसी तबाही मचा गया जिससे अब तक कई इलाकों के नामो निशान तक मिट गए हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्यों नेपाल में इस तरीके की तबाही आई और क्यों हिमालय में ग्लेशियर टूट रहे हैं।

0: नेपाल में जो हुआ उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। 26 अगस्त को नेपाल में सैलाब के सामने जो आया वो बह गया। नेपाल त्रासदी के बाद अब जिस बात पर सबको मंथन करना चाहिए वो है हिमालय की चेतावनी, जो हर आपदा के बाद गंभीर होती जा रही है। नेपाल की तबाही अब चीख चीख कर बता रही है कि ये कोई आम बाढ़ नहीं थी, और सवाल उठ रहे हैं कि ये आपदा क्यों आई, तिब्बत में ग्लेशियर क्यों टूटा, क्यों हिमालय के ग्लेशियर सुलग रहे हैं और गर्म होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने इस साल की शुरुआत में बताया कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों की बर्फ 2000 के बाद से दोगुनी तेजी से पिघल रही है। जलवायु वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बर्फ पिघलने की रफ्तार पानी की कमी और जलवायु से जुड़े खतरों के बढ़ने का तत्काल जोखिम पैदा करती है। वहीं अगस्त को ग्लेशियर टूटने से अचानक आई बाढ़ से नेपाल के नुवाकोट में महातबाही का मंजर देखा गया। करीब 30,000 की आबादी वाले कस्बे में कभी बाजार था, लेकिन अब वहां सिर्फ पत्थर और मलबा है। सड़कें गायब है, घर मकान दुकान स्कूल हॉस्पिटल और बैंक सभी मलबे में दबे हैं। इसके अलावा नदी को पार करने के लिए जो पुल बनाए गए वो बह गए।
1: मैं त्रिशूली के उस इलाके में हूँ जहाँ पहले कभी एक पुल हुआ करता था। ठीक एक सप्ताह पहले जब ये पुल बह गया, गांव का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बिल्कुल कट गया। एक सप्ताह के बाद एक रोपवे ब्रिज बनाया गया है, और अब जो गांव में वहां लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर लाने के लिए, क्योंकि हेली ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो रहा है, अब इस तरह की एक चेन बनाई गई है, और उस चेन में देखिए जो गांव के लोग हैं अपना बचा खुचा सामान लेकर के इस रोपवे ब्रिज से एक एक करके धीरे धीरे उन्हें खींच करके लाया गया है। इन रस्सियों के सहारे दरअसल खींच करके अब देखिए जरूरत का सामान है वो एलिवेशन पर है, बिल्कुल त्रिशूली के धारा के ठीक ऊपर से। ये जोखिम भरा है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है।
0: नेपाल त्रासदी ने हिमाचल की गोद में रहने वाले 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को याद दिला दिया कि जलवायु परिवर्तन कितना खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है, जिसने नेपाल जैसी आपदा का जोखिम पहले से कई गुना ज्यादा कर दिया। ग्लेशियरों के टूटने और नदियों के उफान का असर है कि हिमालय अब साफ साफ बता रहा है कि प्रकृति की सुनो, वरना इससे बड़ी तबाही आएगी। अब सवाल ये कि क्या हिमालय की तरफ से ये भारत के लिए सबसे गंभीर चेतावनी है? क्या नेपाल की बाढ़ सिर्फ शुरुआत है? इससे भी बड़ी तबाही कहीं पनप रही है, और हिमालय की तरफ से बढ़ते इस जोखिम को कैसे रोका जा सकता है? हिमालय में बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन ने ग्लेशियर झीलों को टाइम

0: पंप बना दिया। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और झीलों में पानी की मात्रा बढ़ रही है। बादल फटने और लैंडस्लाइड से खतरा और ज्यादा बढ़ गया। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत में भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में करीब 189 ग्लेशियल झील फटने की स्थिति में है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय हिमालय के इलाके में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियर झीले हैं और इनमें से 189 रेड जोन में हैं। ये झीले सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झीले हैं। अब सवाल ये है, इससे बचने का तरीका क्या है? भारत ऐसी आपदा से बचने के लिए क्या कुछ कर सकता है?
1: साइंटिफिक तरीके होते हैं, उसके द्वारा लेक की पूरी स्टडी कर रहे हैं। अगर लेक आउटब्रस्ट होता है तो वो पानी कहां से निकलेगा, यानी कि आप जैसे टोमोग्राफी की तरह जैसे देखते हैं कि जैसे कि कहां से वल्नरेबल स्ट्रक्चर है, तो ये सब स्टडी किया जा रहा है। प्लस उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है थ्रू वेरियस चेक डैम और अदर स्ट्रेटजीज, उस पर काम किया जा रहा है।
0: तो साफ है कि हिमालय में लगातार ग्लेशियर और उससे बनने वाली झीलों की निगरानी पर नजर रखकर ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है। नेपाल से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: हिमालय में लगातार टूट रहे ग्लेशियर और जलवायु परिवर्तन को लेकर IIT मंडी की रिसर्च से एक बड़ा दावा किया गया है। दरअसल रिसर्च में पता चला है कि दर्जनों झीले और ग्लेशियर तबाही मचाने की कगार पर हैं और हिमाचल में जलवायु परिवर्तन हर साल एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है।
3: फ्लैट आ रहा है, फिर यहाँ ब्रेडेड चैनल से आ जा रहे हैं, तो जैसे ही ये चौड़ा होगा ठीक है एरिया पे, सो अगर यहाँ से मान लेते हैं अगर ये बस भी होगा तो उसको इतना चौड़ा एरिया मिलेगा कि आपकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, वो एनर्जी आगे तक नहीं जाएगी। और ये यहाँ पर बाताल ब्रिज इतना नीचे है ये, बट देन क्योंकि बाताल बहुत जो ब्रिज है बहुत दूर है, रिस्क इसका नहीं है ज्यादा। ये तो ये गेपांगत है, तो 15 पे इतना था, 25 में इतना हो गया, इतना बढ़ गया है। देखिए तो ग्लेशियर रिट्रीट होने लगा। सो इसे सुनाला रहा, ये तो आपका हाईवे आ ही रहा है, यहाँ पे ब्रिज है, देन दे आर सम वो नीचे ब्रिजेस। जी जी ये यहाँ से ये आकर के सुनाओ, ये ग्रीन में पहले इतना, तो देखिए करीब रफली डबल हो रहा है, हम देखेंगे ये सारा। ठीक है भले इसका एरिया छोटा है, वॉल्यूम कम है, बट येट परसेंटेज इंक्रीज काफी ज्यादा हो गया। वो
2: बात मुंबई और कोलकाता के लिए उस खतरे की जो कि UN की एक रिपोर्ट में सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण एशिया के निचले डेल्टा इलाके और भारत के कोलकाता और मुंबई और बांग्लादेश के ढाका जैसे शहरों में सबसे बड़ा असर लोगों के विस्थापन के रूप में दिख रहा है। लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा अधिक आबादी अपना घर हमेशा के लिए पानी के खतरे से खो सकती है।

0: क्या मुंबई कोलकाता पर मंडरा रहा है खतरा? क्या मुंबई कोलकाता के लाखों घर डूबेंगे? क्या नजदीक आ रहा है समंदर? पिघलते ग्लेशियर और समुद्र के बढ़ते जलस्तर का असर अब दुनिया के कई तटीय शहरों में दिखने वाला है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बाद दुनिया के कई देशों में डर की स्थिति बन गई है। यूएन की नई रिपोर्ट में भारत के मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों को लेकर भी चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया के निचले डेल्टा इलाकों और भारत के कोलकाता और मुंबई और बांग्लादेश के ढाका जैसे शहरों में सबसे बड़ा असर लोगों के विस्थापन के रूप में दिख रहा है, जहां 1.4 करोड़ से अधिक लोगों के घर हमेशा के लिए पानी में डूबने का खतरा है और यहां लाखों लोग तुरंत खतरे का सामना करेंगे। इसके अलावा यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र का बढ़ता जलस्तर अब कोई दूर का खतरा नहीं है, ये अभी हो रहा है और रिकॉर्ड किए गए इतिहास में किसी भी समय की तुलना में तेजी से हो रहा है। इसकी रफ्तार भी बढ़ रही है। 2014 और 2023 के बीच दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर हर साल 4.7 मिलीमीटर बढ़ा। अकेले 2024 में समुद्र का जलस्तर 5.9 मिलीमीटर बढ़ा, जो एक नया रिकॉर्ड है। इसकी मुख्य वजह महासागरों का बहुत ज्यादा गर्म होना और कुछ लोगों में तो ये गर्मी पिछले 4000 सालों में सबसे ज्यादा थी। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस खतरे से विकसित देश हों या विकासशील बच नहीं सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से समुद्र के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।
1: काफी सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि कोलकाता और मुंबई जैसे शहर जो समुद्र के किनारे बसे हैं, वो समुद्र का जल स्तर बढ़ने से डूब सकते हैं, लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने ये जो बात है इसको वास्तविक बताया है और कहा है कि ये जो खतरा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि समुद्र का जो जल स्तर है खासतौर पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कोलकाता और मुंबई जैसे जो समुद्र के किनारे बसे शहर हैं, भारतवर्ष के डेल्टा क्षेत्र में बसे शहर हैं, वो डूब सकते हैं। खासतौर पर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 1.40 करोड़ लोग बेघर हो सकते हैं और ये बहुत तेजी से हो रहा है और ये बड़ी खतरे वाली बात बताई गई है।
0: 2012 से 2025 के दौरान समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी की सालाना दर 4.75 मिलीमीटर थी। 2025 में दुनिया भर में समुद्र का औसत जलस्तर 2024 के रिकॉर्ड हाई लेवल के बराबर ही रहा, जबकि 2023-24 के दौरान अलनीनो की वजह से महासागरों के बहुत ज्यादा गर्म होने से इसमें लगभग 5 मिलीमीटर की तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। यूएन की चौंकाने वाली रिपोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या मुंबई और कोलकाता के लाखों घर डूब जाएंगे? आज तक ब्यूरो।
2: और बात पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सैलाबी सितम की। उत्तराखंड में जहां भारी बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो गए, सबसे ज्यादा कुमाऊं जिलों का बुरा हाल है, जहां लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कें टूट गई हैं या फिर रास्ता ही बंद हो गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में यह हाल देखने को मिल रहा है। यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों का रुख कर लिया है, जिसके बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। बिहार में मौसम की मार देखने को मिल रही है, नदियां उफान पर हैं, कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें नवगछिया, मुंगेर और बक्सर में हालात बिगड़ गए। और बात करेंगे मौसम को लेकर बड़ी खबर की। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 17 से ज्यादा ये राज्य हैं, इसमें कई केंद्र शासित प्रदेशों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। पहाड़ी और तटीय इलाकों में भी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताई गई। इसके अलावा नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। और बात उत्तराखंड की, जहां पर भारी बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। अलग अलग हादसों में 7 लोगों की जान चली गई है। उत्तरकाशी के धरासू के पास लैंडस्लाइड होने से मलबा गंगोजी नेशनल हाईवे पर आ गया, जिसके बाद हाईवे बंद करना पड़ा। नैनीताल, बागेश्वर और देहरादून में ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में कहीं कहीं बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों ने आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

0: पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद हालात ऐसे बने हैं कि डर लग रहा है। ये भीमताल ब्लॉक के अलचौना ग्राम सभा की तस्वीरें हैं, जहां पांडेय छोर में घरों के अंदर पानी का फव्वारा फूटा है। इतनी बारिश हुई कि घरों के अंदर पानी घुस गया। लोगों के घरों के अंदर से मलबा और पानी एक साथ आ रहा है। नैनीताल जिले में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नैनीताल का सड़क संपर्क देश से लगभग कट गया है।
1: हे भगवान, बीच में फंस गए हैं। हल्द्वानी जा सकते हैं ना वापस स्कूल पे।
0: मंगलवार को हुई भारी बारिश की वजह से भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से नैनीताल को हल्द्वानी और कालाढूंगी से जोड़ने वाले दोनों प्रमुख मार्ग बाधित हो गए हैं। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर दो अलग अलग स्थानों पर दो कारें लैंडस्लाइड की चपेट में आ गईं। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। पिथौरागढ़ से लेकर अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल तक 141 सड़कें बंद हैं। इनमें बॉर्डर रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से लेकर गांवों को जोड़ने वाली सड़कें तक शामिल हैं। जगह जगह पहाड़ों से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है।

0: लगातार बारिश के चलते नदी नाले और गढ़ेरे उफान पर हैं। हल्द्वानी से होकर बहने वाली गौला नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। कई नदियां खतरे के निशान के करीब या ऊपर बह रही हैं। नैनीताल में हो रही बारिश की वजह से कोसी नदी भी उफान पर है। नदी किनारों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अल्मोड़ा से होकर नैनीताल जिले के गर्म पानी खैरना बेताल घाट से होते हुए रामनगर के बीच बहने वाली कोसी नदी बहुत ज्यादा पानी है। कोसी के अलावा शिप्रा नदी भी उफान पर है। ये नैनीताल जिले का कैंची धाम है। यहाँ लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और शिप्रा का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। नदी के तेज बहाव को देखते हुए आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं बागेश्वर में भी हालात ठीक नहीं है। कपकोट और गरुड़ क्षेत्रों में तेज बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई। बागेश्वर में NH 109 सहित 16 अलग अलग मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। बंद हुई सड़कों की वजह से कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क कट गया है। बागेश्वर देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग NH 109 रवाईखाल के पास पहाड़ दरकने से मार्ग बाधित हो गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। बंद मार्ग के कारण एम्बुलेंस, टैक्सी और देहरादून से आ रही बस 4 घंटे से जाम में फंसी हुई है। यही हाल टेहरी में भी है। यहाँ भी सोमवार की देर रात से लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर है। कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। कई सड़कें बंद हैं। चंबा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 34 मलबा आने से बाधित है। घनसाली के हिंदाव पट्टी में जगदीगाड़ कठोड़ मार्ग के नौलागाड़ में भारी भूस्खलन हुआ। उधर लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। सोनप्रयाग में यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन ने सोनप्रयाग में बैरियर लगाकर यात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया है और सभी से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है। ये सारी गाड़ियां सोनप्रयाग में ही रुकी हुई हैं। फिलहाल केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को रोक दिया गया है। ये चमोली की तस्वीरें हैं, जहां कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। मंगलवार को थराली देवाल मोटर मार्ग पर नंद केसरी और कोठी के बीच अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। तस्वीरों में देख सकते हैं, पहाड़ से ऐसा मलबा आ रहा है कि जैसे कोई झरना बह रहा हो। यहाँ मलबा, मिट्टी, पत्थर सब कुछ टूटकर सड़क मार्ग और नदी में जा रहा है। पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हो गई। सिर्फ उत्तराखंड के ही पहाड़ों पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की स्थिति है। ये पहलगाम की तस्वीरें हैं, जहां अचानक से बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आ गया। सैलाब का पानी बाजार की कई दुकानों, होटलों और घरों में घुस गया। इस टूरिस्ट स्पॉट में आए फ्लैश फ्लड से पैनिक की स्थिति पैदा हो गई। आज तक ब्यूरो।
1: और सीधे आपको ले चलेंगे गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
2: क्राइम अगेंस्ट, तो सवाल ये पूछा जाएगा, भगवंत मान कहां मस्त थे तुम कि ये राशि 14,000 करोड़ पहुंच गई। आप सोचिए, जो ईमानदारी से सरकार की, जनता की सेवा करता है कर्मचारी, उस कर्मचारी की जो आय है, जो डीएनएस अलाउंस है, वो आप समय पे क्यों नहीं देते? और ये 14,000 करोड़ या एक बहुत बड़ी राशि कैसे पहुंच जाती है? और फिर आप सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और ये मामला जल्दी सुनवाई होगी, सर्वोच्च न्यायालय इस पे फैसला देगा। लेकिन जो सवाल आज हम यहां से उठा रहे हैं, जनता को आप प्रताड़ित करें, सरकारी कर्मचारी को उसका हक ना दे उसको प्रताड़ित करें। मैंने आपको बताया था किस तरह से शिक्षकों पे लाठीचार्ज, युवा बेरोजगार अगर वो रोजगार मांगे तो उन पे लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी जो कर्मचारी हैं उन पे लाठीचार्ज। तो ये कैसी दमनकारी सरकार है और जो भ्रष्टाचारी भी है। और इनको एक बात के लिए मैं सचेत कर दूं, भारतीय जनता पार्टी पंजाब की जनता के साथ खड़ी है और ऐसे भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, यही हमारा प्रण है। जो आपने कहा मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैंने इसीलिए ये बात उठाई थी कि यह बहुत चिंताजनक है कि ये जो गोपनीय फाइल है इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग की ड्राफ्ट लिस्ट, जो प्रदेश सरकार की नीतियां होंगी उनका ड्राफ्ट लागू होने से पहले ही, जिससे कि जो बिचौलिए दलाल हैं ये इसका लाभ उठा के अपनी स्थिति को परिवर्तित कर सके। और जो सबसे अहम बात है जो मैंने उठाई यहां से, जब केंद्र की सरकार और किसी भी प्रदेश की सरकार बहुत सी गोपनीय जानकारी साझा करती है, आदान प्रदान करती है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी हो सकता है। जब ये लिस्ट जो अति गोपनीय है ये लीक हो जाती है, क्या गारंटी है कि भगवंत मान जो अति संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी है उसको लीक नहीं कर रहे? क्या विश्वसनीयता है? निल शून्य बटा सन्नाटा, इसलिए चिंताजनक है।
1: रुके यहां इशू से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

15 चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार पर बरसी बीजेपी, कहा सीएम का दफ्तर बन चुका है करप्शन का अड्डा, फौरन इस्तीफा दे भगवंत मान, आप वाले कट्टर बेईमान। थोड़ी देर बाद सामने आ सकता है राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ का नाम। शॉर्टलिस्ट हुए तीन लोगों में से चुने जाएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर्च कमेटी ने न्यास को सौंप दी फाइनल रिपोर्ट। मोहन यादव सरकार बदलेगी भोपाल की। राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम, मध्य भारत, मालवा और महाकौशल के नाम से तीन भागों में बंट जाएगा विश्वविद्यालय। कांग्रेस बोली ओछी मानसिकता। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री सुलझाएगी सीबीआई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया आदेश, मुंबई के 14वें फ्लोर से गिरकर गई थी जान। मदद के लिए नेपाल पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। त्रासदी से मौत का आंकड़ा 1000 के पार, करीब 4000 लापता। पिघलते ग्लेशियर पर यूएन की गंभीर चेतावनी।

तक मैं हूँ आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज चुके हैं, न्यूज रूम लाइव का वक्त हो चला। जैसा कि हमेशा होता है, हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आज 2 बजे न्यूज रूम लाइव में हम कौन कौन सी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, मुंबई में दिशा सालियान केस की। अब जांच कौन करेगा? अब सीबीआई करेगा। 6 साल पहले मौत हुई थी लेकिन मिस्ट्री अभी तक है। अब सीबीआई क्या इस केस को सुलझा पाएगी और कैसे सुलझाएगी, कैसे कड़ियों को जोड़ेगी, ये हम बात करेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर होगी वो दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, अयोध्या से होगी। राम मंदिर के पूर्णकालिक सीईओ कौन होगा? लगभग हो सकता है कि आज कुछ ही देर में नाम सामने आ जाए। 4 बजे एक अहम बैठक होने जा रही है। कौन से 3 नाम है जिनके बारे में चर्चा की जा रही है, डिटेल में हम आपको बताएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर होगी वो तीसरी बड़ी खबर होगी मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक फैसला, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया। राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी 3 भागों में बट गई। कौन कौन से वो 3 नाम है, कहां कहां कैसे क्या किया गया है, फैसला लिया गया है, वो हम डिटेल में आपको बताएंगे। और उसके बाद आधे घंटे बाद यानी करीब करीब 2:30 बजे हम बात करेंगे दिल्ली की बसों के रियलिटी चेक की, निर्भया। और उसके बाद अभी फिर एक मामला सामने आया जहां चलती बस में एक छात्रा के साथ रेप किया गया। अब इस पूरे मामले में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया पहली खबर के बारे में बात करेंगे मुंबई, और वो बड़ी खबर ये है कि दिशा सालियान केस की जांच अब सीबीआई की तरफ से की जाएगी और कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है। कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है कि सीबीआई अब इस मामले में जांच करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, 6 साल पहले पुरानी मौत, मिस्ट्री अब फिर से खुलेगी। सीबीआई जांच के आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं। सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड की एक इमारत की 4वीं मंजिल से गिरने के बाद दिशा सालियान की मौत हुई थी। शुरुआत में पुलिस ने एडीआर दर्ज की थी यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। अब बाद में मौत को आत्महत्या बताया गया था। अब दिशा के पिता सतीश सालियान इस बात से खुश नहीं थे, इस बात से उनको संतोष नहीं था। परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए दोबारा जांच की मांग की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस को केस से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को अब सौंपने होंगे। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि 6 साल पहले दिशा सालियान की मौत हुई थी लेकिन उसके बाद से मामला उलझा हुआ था, क्योंकि उसके कुछ ही दिन बाद, 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। बहुत सारे सवाल उठे थे, बहुत सारे नाम आए थे, तब से ये मामला पेचीदा बना हुआ था। और अब सीबीआई इस केस की हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं डिटेल।

0: छह साल, एक मौत, कई सवाल और अब जांच की नई शुरुआत। दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की एंट्री हो गई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और दिशा की मौत से जुड़े हर पहलू की जांच करने का आदेश दिया है। ये वही तारीख थी जिस रात दिशा सालियान का शव उस 14 मंजिला के नीचे मिला जहां वो मौजूद थी। मुंबई पुलिस ने जांच के बाद इस मौत मिस्ट्री को आत्महत्या बताया। अब सीबीआई इसका सच खंगालेगी। दिशा सालियान सेलिब्रिटी मैनेजर थी। कुछ वक्त तक दिशा ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया था। 8 जून 2020 की रात मुंबई के मलाड़ इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी मौत हुई। शुरुआत में पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर दर्ज की। बाद की जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया और कहा कि उसे किसी आपराधिक साजिश या यौन हमले के सबूत नहीं मिले। लेकिन दिशा के पिता सतीश सालियान इस निष्कर्ष से संतुष्ट नहीं हुए। बेटे की मौत में साजिश का आरोप लगाते हुए नए सिरे से जांच की मांग की।
1: उसमें मोड़ आए, आपको कब ये चीज में कन्विंस हुआ कि कहीं ना कहीं कोई दोषी है, कोई आरोपी है? पहले इसको सुसाइड केस बताया जा रहा था।
2: दोषी तो रहेगा, दोषी के बिना थोड़ी होएगा, मर्डर होएगा, ऐसा है।
1: लेकिन क्या ऐसे सरकमस्टेंसेस जो आपको लगता है जिसमें अभी तक जांच नहीं हो पाई और सीबीआई को उस चीज में फोकस करना चाहिए?
2: नहीं, अब मैं तो कुछ नहीं उसके बारे में बोलता हूँ। जो लोग नीलेश साहब बोलते हैं सही बोलते हैं, उनको दिमाग चाणक्य दिमाग है।
1: उनका अब जो आप लगता है आदित्य ठाकरे आरोपी है इसमें?
2: अभी जो मैं नहीं बोलूंगा, जो जांच कर रहे हैं वो लोग बोलेंगे।
1: लेकिन खुश है आप इस फैसले से?
2: हाँ, जरूर जरूर, 100%।
0: सबसे बड़ा सवाल कि अगर परिवार ने मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताया था तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? हाईकोर्ट ने खुद पुलिस से इस पर सवाल किया। अदालत ने जांच के तरीके और कई दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठाए। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, पंचनामा और पोस्टमार्टम जैसे पहलुओं पर कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा। पोस्टमार्टम भी इस केस की बड़ी कड़ी है। कोर्ट के सामने पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा कि ऐसे मामले में राज्य की गाइडलाइन के मुताबिक दो डॉक्टरों की जरूरत बताई गई थी, जबकि दिशा का पोस्टमार्टम एक डॉक्टर ने किया था। रिपोर्ट में सिर, हाथ, पैर और छाती पर चोटों का जिक्र था और सिर की चोट को मौत का कारण बताया गया था। पुलिस की तरफ से कहा गया कि रिपोर्ट में रेप या यौन हमले के सबूत नहीं मिले, यानी एक तरफ परिवार के गंभीर आरोप, दूसरी तरफ पुलिस की जांच और मेडिकल रिकॉर्ड, और अब इन दोनों के बीच की सच्चाई तलाशने की जिम्मेदारी सीबीआई के पास होगी।
3: कोर्ट ने इनका पूरा झूठ पकड़ लिया। पहली चीज, इसमें उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट बनाए थे सब झूठे पाए गए। इन्होंने खुद जो सीसीटीवी प्रोड्यूस किया उसमें भी इनका सुसाइड थ्योरी झूठा साबित हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी, आपको याद होगा कोर्ट ने पहला सवाल पूछा
1: इंजरी को लेकर।
3: हाँ, कोर्ट ने कहा आप कह रहे हो 14वें माले से लड़की गिर रही है, मुंह पर गिर रही है, वो फोर्स क्या होता है 14वें माले का? और नाक ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, होठ भी ठीक है, अंदर का एक दांत टूटा हुआ दिखा रहे हो।
1: क्या ग्राउंड्स आपको लगता है जो कोर्ट ने इसमें सीबीआई सीनियर सीबीआई ऑफिसियल को है इन्वेस्टिगेट करने को कहा है?
3: क्योंकि सीनियर पुलिस अधिकारी आरोपी है, आदित्य ठाकरे आरोपी है, उद्धव ठाकरे आरोपी है, परमवीर सिंह आरोपी है, तो ऐसे इतनी बड़ी पूरी रिया चक्रवर्ती आरोपी है, तो इतने सब लोग आरोपी है, तो इसमें सीबीआई बेटर और वो भी सीनियर ऑफिसर।
1: एफआईआर रजिस्टर करने को कहा गया है सीबीआई की तरफ?
3: हाँ हाँ, कोर्ट ने क्लियर कहा है सतीश सालियान जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है और एफआईआर रजिस्टर करना है और बाद में इन्वेस्टिगेट करना है।
0: दिशा की मौत के ठीक 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत भी मृत पाए गए। 14 जून 2020 को सुशांत बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिले। दोनों मौतों के बीच सिर्फ 6 दिन का अंतर था और यही वजह रही कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस में दोनों मामलों को जोड़कर कई तरह के सवाल उठते रहे। अब दिशा की मौत की जांच सीबीआई करेगी।
1: दिशा सालियान के जो पिता है सतीश सालियान, वो इस केस में पेटिशनर है, उसको कोर्ट ने मद्देनजर लिया। दूसरा, जो उनके वकील है सतीश सालियान के, नीलेश ओझा, उन्होंने कई चीज़ें बॉम्बे हाईकोर्ट में पॉइंट आउट की है, जिसमें जो विक्टिम है यानी कि दिशा है, उसको जिस तरह की इंजरी लगी हुई है उसका बात किया गया। उसके बाद जो सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ था दिशा सालियान की सुसाइड के समय पर ही, उसमें से भी इसको जोड़कर देखा गया है। ये सभी मुद्दे जो एक तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखे गए थे, तो कोर्ट ने पिछली हियरिंग में ये कहा था कि परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए और उससे ये लग रहा था कि एफआईआर का आदेश दिया जाएगा और आज कोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन्हीं सभी जो आप कह सकते हैं ग्राउंड्स है उस पर सीबीआई को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कहा है, सतीश सालियान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा है और किसी को भी इस केस में आरोपी ना माना जाए जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाते हैं। इस तरीके की बात कोर्ट ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने की है।
4: देखिए 6 साल और लगभग आप ये मान के चलिए 2 सरकारें आई लेकिन यहाँ पर आत्महत्या के एंगल से आगे नहीं बढ़े। मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम बात कर लेते हैं। मुस्तफा ये बताइए 6 साल बाद अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, कड़ियों को जोड़ा जाएगा, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या क्या कुछ अपडेट रहे हैं, कैसे ये मामला अलग अलग लेवल पर आगे बढ़ा है क्योंकि ये मौत मिस्ट्री कही गई। शुरुआत में तो यही एडीआर कहा गया था लेकिन उसके बाद आप देखिए एडीआर से बात आगे बढ़ी तो आत्महत्या की बात सामने आ गई लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं था, दिशा सालियान के परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था और दिशा सालियान के परिवार लगातार ये मांग कर रहा था कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो क्या सीबीआई उस दिशा में बढ़ेगी जैसा आरोप सियासी हलकों में लगाया जा रहा है? मुस्तफा
1: जी हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई को इस पूरे मामले की पूरी जांच करनी पड़ेगी। हालांकि इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच हो चुकी है लेकिन क्योंकि जो नए आरोप हैं वो दिशा सालियान के फादर की तरफ से लगाए गए हैं इसीलिए कोर्ट ने इस बात को समझा है कि कई ऐसी चीज़ें जो सामने लाई जा रही है परिवार की तरफ से उन्हें इन्वेस्टिगेट फिर से करना चाहिए। अब 6 साल बीत चुके हैं इस पूरी वारदात को होकर के, किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन केस में टाइम इम्पॉर्टेंट होता है और इतना टाइम बीत जाने के बाद क्या उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो दिशा सालियान के फादर सतीश सालियान ने उनका स्टेटमेंट सीबीआई रिकॉर्ड करी कि एफआईआर दर्ज करेगी जिन लोगों के ऊपर आरोपी जिनके ऊपर शक जताया जाता है सतीश सालियान की तरफ से उनको भी स्टेटमेंट के लिए बुलाया जा सकता है, अगर उसमें कुछ एविडेंस मिलता है तो उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया जाएगा। तो ये पूरा मामला अब नए सिरे से शुरू होने जा रहा है जिस तरीके की बात दिशा सालियान के फादर की तरफ से या उनके वकील तरफ से कोर्ट में की गई है कि इस पूरे मामले को क्राइम को लेकर के आई विटनेसेस जो है वो उनके पास मौजूद है तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने आने के बाद किस तरह से आगे इनमें तपास होती है ये देखना दिलचस्प हो।
4: और बिल्कुल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए इस पूरे मामले में ये सियासी मामला भी था क्योंकि बहुत से सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे थे, बीजेपी विधायक राम कदम इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनाते हैं आपको।
5: दिशा सालियान के पिता स्वयं कह रहे हैं उनकी बेटी की मृत्यु नहीं हुई, उसे पीड़ित प्रताड़ित करते हुए अत्याचारित करते हुए उसका खून हुआ है और उस वक्त की उद्धव ठाकरे सरकार ने इस मामले को रफा दफा करने का दुष्कर्म किया किसी बड़े नेता को बचाने के लिए। यह आरोप दिशा सालियान के पिता के है। एक बाप से जाकर के पूछो बेटी खोने का दुख क्या होता है। अब मुकदमा दर्ज करके यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए, इस प्रकार से न्यायपालिका ने दिशा के पिता को न्याय दिया है। सवाल यह उठता है कि उस दौरान की उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही थी, रातों रात इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया गया। इस बात का जवाब श्रीमान उद्धव ठाकरे समेत जिन जिन लोगों को बचाने का प्रयास किया गया उन सबको न्यायपालिका के सामने देना होगा।
4: और देखिए अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं और ये बड़ी खबर जो है वो अयोध्या से है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की बात अगर की जाए तो वहां पर आज पूर्णकालिक सीईओ मिल सकता है क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है। सीईओ पर आज फैसला संभव है अयोध्या श्री राम मंदिर के सीईओ पर और ये बात कही जा रही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक शुरू हो चुकी है और इसी बैठक में सीईओ के नाम पर अंतिम मोहर लगने की पूरी संभावना है। सीईओ के चयन के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय सर्च कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी। हजारों आवेदन, उनकी स्क्रीनिंग हुई, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, अयोध्या में अंतिम दौर की बातचीत हुई और उसके बाद 3 नामों का पैनल तैयार किया गया। अब इन 3 नामों में से किसे राम मंदिर की व्यवस्था और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट करेगा और हो सकता है कुछ ही देर में जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक नाम सामने आ जाए। समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर्थ, बैठक शुरू हो चुकी है, लगभग कितना वक्त लग सकता है जब ये नाम सामने आएगा कि कौन होगा सीईओ?
6: हिमांशु देखिए बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अयोध्या में वो बैठक शुरू हो चुकी है। फिलहाल बैठक दो चरणों में होनी है, 2 से 3 और फिर एक बैठक है 4 से 6। पहले चरण की जो बैठक है उसमें जो रिक्त पद हैं ट्रस्ट में, यानी कि 3 जो रिक्त पद हैं उन पर चर्चा हो सकती है। तो जो आबाद की बैठक है उसमें कुल मिलाकर सीईओ को लेकर चर्चा हो सकती है, और जो एक प्रवक्ता की बात हो रही है ट्रस्ट की तरफ से वो उसका नाम भी सामने आ सकता है। बड़ी बात ये इस वक्त हम जो है मणिराम दास जी छावनी पर मौजूद है, और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। चार धाम यहाँ पर एंट्री गेट है और इस गेट के उस पार ही बैठक चल रही है, जहां पर गोविंद देव गिरी महाराज पहुंच चुके हैं, दीनेन्द्र दास पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा संशय जिस बात को लेकर बना हुआ था कुछ दिनों से कि आखिर सीईओ कौन, तो ये आज नाम फाइनल हो सकता है माना जा रहा है। बैठक खत्म होते होते यानी कि शाम 4 से 6 के बीच में ये ऐलान ट्रस्ट के द्वारा हो सकता है कि सीईओ कौन होगा। कमल नयन दास जो उत्तराधिकारी हैं नित्य गोपाल दास के, उन्होंने आज तक से कहा है कि संतों की ही मंदिर में चलेगी, ये बात उन्होंने यहाँ पर साफ की है। चंपत राय को लेकर भी वो मुखर नजर आए हैं, उन्होंने ये तक कहा कि चंपत राय की वापसी होनी चाहिए। अब देखना ये है कि आज की जो बैठक है उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा विषय होंगे, क्योंकि कुल मिलाकर ट्रस्ट भी चाहता है कि जो चीजें हों वो बेहतर हो, जो दाग लगे हैं वो धुले जा सके, और इसी प्रक्रिया का हिस्सा है सीईओ का बनना, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो सीईओ देखेगा। अब सीईओ को लेकर भी कई नाम चल रहे हैं, तमाम नाम चल रहे हैं, वो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि आखिर वो नाम एक कौन होगा उसकी आधिकारिक घोषणा शाम तक ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी, और उसके साथ साथ एक प्रवक्ता ट्रस्ट को मिलेगा, सिक्योरिटी बेहतर हो। और देखिए लगातार जो है आवागमन लोगों का लगा हुआ है, यहां से तमाम गाड़ियां जो है वो भी इस गेट के उस पार, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी कितनी टाइट कर दी गई है, ये सिक्योरिटी लगातार इतनी ही रहेगी जब तक ये बैठक पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो जाती है। नृत्य गोपाल दास जो कि अध्यक्ष है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, बताया जा रहा है वो भी बैठक में है, पिछली बैठक में भी हालांकि वो थे, और कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इस बैठक में जुड़े हैं। ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं वो जुड़े हैं, ट्रस्टी वो हैं, जो कुछ आरएसएस के फंक्शनरीज हैं वो भी इस बैठक में हैं। तो बड़ी बात यहाँ पर ये है सीईओ के लेकर नाम को लेकर चर्चा। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ट्रस्ट के जो 3 रिक्त पद हैं, एक चंपत राय और एक अनिल मिश्रा के जाने के बाद, और तीसरा विमलेंद्र मोहन के निधन के बाद जो रिक्त पद है उसको भरने की बात है। तो ये 3 रिक्त पद भरने हैं, एक प्रवक्ता जो कि मंदिर ट्रस्ट को लगता है कि
4: बिल्कुल अच्छा। आप हमारे साथ बने रहिए समर्थ, हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर आप समझिए कि बैठक बहुत ज्यादा अहम है, सबको सीईओ का इंतजार है। और इसी दौरान हम आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के जो उत्तराधिकारी हैं जिनका नाम है कमल नयन दास, उनसे आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं।
7: हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, मंदिर सुचारू रूप से चलता रहे, मंदिर के सारे उत्सव समय भोग राग सब अच्छे से चलते रहे, यही हमारा लक्ष्य है। और बैठक में क्या होगा इस सब विषय हमको जानकारी।
6: सीईओ को लेकर आज चर्चा है कि 3 एक लिस्ट सौंपी गई है, 3 नाम है उसमें कोषाध्यक्ष को, और आज उसका ऐलान हो सकता है।
7: मंदिर ट्रस्ट का है, हिंदू समाज का है, सरकार का नहीं है, ठीक है ना। और आजकल ये चोरी पोरी जो आवाज उठा रहे हैं वही लोग हैं जो मंदिर के विरोधी, मंदिर नहीं राष्ट्र के जो विरोधी लोग हैं। एक एक की बात क्या बताओ, जिन्हें मंदिर से कुछ लेना देना नहीं, कोर्ट में साक्ष्य देते थे राम जी का कोई वही नहीं है, राम जी तो काल्पनिक हैं, आज उन्हें चोरी की चिंता हो गई है। मुझे याद है वो समय की घटना जब कार सेवकों के ऊपर, निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, सरयू का जल लाल हो गया था, वो समय हमें याद है, हमने देखा है आंखों से। ये लोग क्या बंदे की चर्चा करेंगे।
6: जी इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से चंपत राय अनिल मिश्रा तमाम नाम आया, आपको लगता है उनकी वापसी ट्रस्ट में होनी चाहिए?
7: देखिए मैं केवल एक बात जानता हूँ, जन्म से चंपत राय जी को जानता हूँ, उनकी करनी धरनी सब सारी व्यवस्था को जानता हूँ, आज तक उन्हें क्या किया है समाज के लिए, इस राम जन्मभूमि के लिए भी चंपत जी ने क्या किया है ये हम जानते हैं। चंपत जी सब प्रकार से निर्दोष हैं, और ये सारी बात जो आई उनको विश्वास में रख कर, विश्वासघात उनके साथ किया गया, और आज तक चंपत राय में कोई दोष नहीं।
4: और देखिए राम मंदिर के सीईओ के सिलेक्शन को लेकर जो लगभग आज हो जाएगा, एक नाम तय हो जाएगा, उसको लेकर साधु संतों में गजब का उत्साह है। साधु संतों का ये मानना है कि पिछले वक्त से जो भी खबरें सामने आई, गड़बड़ियों की खबरें सामने आई, उस पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा।
8: श्री राम मंदिर में बीते दिनों वित्तीय अनियमितता को लेकर के धर्म विरोधियों के द्वारा तिल का ताड़ बनाया गया और पूरे देश दुनिया में सनातन को बदनाम करने के लिए साजिशें की गईं, जिसके मद्देनजर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हर तरह से जो है सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में सीईओ की नियुक्ति को लेकर के विचार किया गया था कि बहुत बेहद जरूरी है, जिसकी आज घोषणा होनी है।
9: पूजा की व्यवस्था संतों के पास होनी चाहिए, वैष्णव परंपरा से वहां पूजा होना चाहिए। कोई भी सीईओ बने उसका ध्यान दे कि वैष्णव परंपरा से और संतों की व्यवस्था होनी चाहिए। साधु जो पूजा करता है वो कोई नहीं कर सकता है, जो महात्मा विरक्त जो महात्मा जो सेवा कर सकता है ठाकुर जी का, वो कोई नहीं कर सकता है। आप देख लो किसी भी मंदिर में जाकर तुम वीडियो बना लेना, विजुअल बना लेना, पूछ लेना किस प्रकार से साधु महात्मा ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं।
10: ये सदस्य का मामला है, पूरा प्यार सब सदस्य आने का प्रयास करेंगे, रामलला जो इच्छा होगा काम सब पूरा हो जाएगा। इस मीटिंग में जो निर्णय होगा वो सब मानने के लिए तैयार रहेंगे, ये ट्रस्ट का मामला है।
4: साधु संतों को आपने सुना। अब अयोध्या से आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां एक फैसला लिया गया है मोहन यादव सरकार की तरफ से, और वो फैसला कांग्रेस कह रही है कि बहुत गलत है, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का। अब देखिए, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को लेकर मोहन यादव सरकार ने फैसला लिया, सरकार यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय मध्य भारत, मालवा और महाकौशल के नाम से तीन भागों में बढ़ जाएगा, और कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दिया, यानी ठप्पा लग गया है। मध्य भारत, मालवा, महाकौशल नाम देने का फैसला लिया है और तीन भागों में बांटा जाएगा इसे। और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार। ये मुद्दा अब विवादों में रहा, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए, तो उनसे हमने बातचीत की। अब उनका क्या कहना है, सरकार क्या क्या कहना है, वो आप सुनिए।
11: राजीव गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है?
12: देखिए, हम किसी भी महापुरुष का, किसी भी पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री का हम नाम नहीं हटा रहे हैं, ना हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि किसी एक ही एक के नाम से सारी योजनाएं लागू करें। हमने तो भौगोलिक दृष्टि की पहचान दी है, और मैं समझता हूँ भौगोलिक दृष्टि की पहचान भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे कोई महापुरुष है उन महापुरुषों के नाम हम स्थापित करते हैं, उसी प्रकार से ये भी स्थापित करने का अभियान है। राजीव गांधी जी का नाम हमारे विश्वविद्यालय के अन्य बहुत सारे संस्थान हैं उनमें हमने करने का निर्णय किया है। राजीव गांधी जी का नाम हम हटाना जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जरूर अपने केवल एक परिवार के लोगों का नाम हटाने पर विश्वास करती है, उनका नाम जोड़ने पर विश्वास करती है। हम तो और जो छूटे हैं वो से महापुरुष मिलते हैं, क्षेत्र के कोई महापुरुष मिलते हैं, उन सबको भी उनके योगदान को देखते हुए उनको भी समाज जीवन में स्थापित करना चाहते हैं, और इसलिए हमारी सरकार कभी किसी महापुरुष के नाम को हटाने पर विश्वास नहीं करती है।
4: जैसे आपको बताया, कांग्रेस बहुत नाराज है। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी को हर उस शख्स से आपत्ति है जिसने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना दायित्व निभाया है।
13: इतना महान योगदान आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जिस व्यक्ति ने दिया है उसका नाम बदल देना जो पहले से रखा हुआ है बहुत दुर्भाग्यजनक है, और इनको देश के हर उस आदमी से आपत्ति है जिसने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया। इनको नेहरू जी के नाम पर आपत्ति है, इनको इंदिरा गांधी जी के नाम पर आपत्ति है, इनको महात्मा गांधी जी के नाम पर आपत्ति है, इनको राजीव गांधी जी के नाम पर आपत्ति है। तो ये नाथूराम गोडसे का नाम रख दे विश्वविद्यालय का।
4: हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे हम उनसे बात करते हैं। कितना ये मुद्दा इस वक्त उठता हुआ दिखाई दे रहा है, और मैं ये जानना चाहूंगा रवीश कि कितना ये मुद्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस इस मुद्दे को कितना दूर तरह खींचने की तैयारी, और बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है।
14: देखिए, कांग्रेस ये मुद्दा इसलिए बड़े पैमाने पर उछाल रही है क्योंकि राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के पहले मध्य प्रदेश सरकार कई जिलों के, कई शहरों के नाम बदल चुकी है, कई संस्थाओं के नाम बदली है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति स्टेशन किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उस उद्घाटन में। अब राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की बात जब उठ रही है तो कांग्रेस इसलिए इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है कि पहले तो वो भारत रत्न है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है 1998 में कांग्रेस का जब शासन था मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस वक्त इसकी स्थापना की गई थी। अब राहुल गांधी इंदौर आने वाले हैं छात्रों की गूंज कार्यक्रम में, उससे ठीक पहले उनके पिता का नाम एक यूनिवर्सिटी से हटाने का जिक्र हो रहा है, तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है मैदान में आ गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री से लेकर के विधायक हो, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, तमाम लोगों ने इसे विद्वेष की भावना बताते हुए एक कदम बताया है सरकार का, और कहा है कि जिस शख्स ने शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया था, भारत रत्न रहा हो जो, और देश का पूर्व प्रधानमंत्री रहा हो, और जिसकी जान इस तरीके से उग्रवादियों ने ली हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस जो है वो बार बार यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो,
15: बदले हैं, नाम बदले हैं, और ये ऐसे ही चला आता है और वार पलटवार भी होता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।

0: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: In association with
4: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol.
5: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
6: Braj ki bhoomi se uthega siyasat ka sabse bada shor. Janta ke sabse bade sawal. Mukhyamantri Yogi Adityanath ke saath. Panchayat aaj tak Mathura, 3 September, sirf aaj tak par.
7: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार पर बरसी बीजेपी, कहा सीएम का दफ्तर बन चुका है करप्शन का अड्डा, फौरन इस्तीफा दे भगवंत मान, आप वाले कट्टर बेईमान। थोड़ी देर बाद सामने आ सकता है राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ का नाम। शॉर्टलिस्ट हुए 3 लोगों में से चुने जाएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर्च कमेटी ने न्यास को सौंप दी फाइनल रिपोर्ट।

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री सुलझाएगी सीबीआई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश, मुंबई में 14वें फ्लोर से गिरकर गई थी जान। और मदद के लिए नेपाल पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, त्रासदी से मौत का आंकड़ा 1100 के पार, लापता करीब 4000 पिघलते ग्लेशियरों पर, यूएन की गंभीर चेतावनी।

0: तो देखिए हर जगह हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और अब जिस तरह के हालात आ रहे हैं, देखिए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान की तरफ से पलटवार कर दिया गया और ये हालात लगातार बिगड़ते भी जा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आज की हम आपको बता दें और बड़ी खबर यहाँ पर ये है कि अमेरिका का ये दावा है कि ईरान में 100 ठिकानों को निशाना बनाने का ऐलान किया गया है अमेरिका की तरफ से। आज के हमले की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टैंकर के बदले टैंकर की रणनीति के तहत अमेरिका ने लंगर डालकर खड़े 2 ईरानी टैंकरों के इंजन रूम को उड़ा दिया। इससे पहले ईरान ने सऊदी अरब के सिद्र और लाइबेरिया में सेनेगल प्रॉस्पेरिटी को मिसाइल और रॉकेट हमलों से निशाना बनाया। अमेरिका ने टैंकर के बदले टैंकर की ट्रंप की नई रणनीति के तहत ये हमले किए हैं। ईरान ने लगभग 25 बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब दिया जिनमें से केवल आधी ही जॉर्डन के हवाई क्षेत्र तक पहुंच पाई और उनमें से भी ज्यादातर को रोक दिया गया। यानी मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक महायुद्ध के शोले एक बार फिर से भड़क उठे हैं। अमेरिका ने कल रात ईरान पर भीषण हमले किए, वहीं ईरान ने भी जॉर्डन बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से पलटवार किया है और चेतावनी दी जा रही है। अमेरिका कह रहा है कि अगर इसका जवाब दिया तो हालात और बिगड़ जाएंगे और IRGC की तरफ से तो कह दिया गया कि हम रुकेंगे नहीं, अब आप तैयार रहिए जवाब के लिए। तो ये स्पष्ट अब अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से ही चेता दिया गया है कि इसके अभी बहुत सारे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं और वो हालात अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब अमेरिका ने हमला किया, 5 लोग मारे गए, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और ऊपर से ईरान की तरफ से भी जॉर्डन और बहरीन में हमला हुआ। अब ये आगे कहां जाता हुआ दिख रहा है?
1: देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है हिमांशु। अगर आप देखें कि बीते 24 घंटों के दौरान, ये अगर हम थोड़ा सा और पहले भी देखें तो पिछले एक हफ्ते के दौरान अचानक से दुनिया में जो 2 बड़ी जंगें चल रही हैं, यानी रूस यूक्रेन की लड़ाई और पश्चिम एशिया का संकट, इन दोनों के अंदर आंच बढ़ी है। ये दोनों बैटल थिएटर गर्माए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर जबरदस्त बमबारी करना शुरू की है। कल लड़क आयरन पे की थी, आज जो ईरान का दक्षिणी छोर है उसका जो तटीय इलाका है सिरिक में किया है, कश्म के पास में इलाकों में किया है और उस पूरे कोस्ट लाइन के ऊपर कई इलाकों को निशाना बनाया है। क्यों हुआ ये? दोनों बैटल थिएटर की अपनी अपनी कहानी है। सबसे पहले आते हैं पश्चिम एशिया के मामले पे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक हफ्ते पहले अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो जी खुलवा दिया गया और बिल्कुल वहां पर अब कोई सी माइन नहीं है, यानी अब कोई खतरा नहीं है, जहाज निकल पाए। लेकिन असलियत यह है कि जहाज अगर आधी मात्रा में भी, यानी 27 फरवरी इस लड़ाई के शुरू होने से पहले करीब करीब प्रतिदिन 150 जहाज गुजरा करते थे, अगर मान लीजिए 75 जहाज भी गुजर जाते, 50% भी अगर अचीव हो जाता तो आप उसे कामयाबी मानते थे। लेकिन उसके बावजूद ये नहीं हुआ और ये खतरा बरकरार था। 2 टैंकर्स के ऊपर हमले हुए, उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये कार्रवाई की गई। यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, और अगर आप देखें 6 महीने के दौरान क्या हुआ है मांचू, कि सत्ता परिवर्तन, फिर उसके बाद ईरान की सैनिक क्षमता, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और अब सारी लड़ाई इर्द गिर्द आकर फंस गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो है कोई निदान, कोई समाधान न तो अभी समय बारूद से निकल पाया है, न बातचीत की मेज से निकल पाया है। ये हुई इसकी बात। अब आइए आप रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर,
0: रशिया यूक्रेन वाले पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं। एक बड़ी खबर यहाँ पर बता देते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो कह रहे हैं कि ये तो झांकी है और फिल्म अभी बाकी है, वो ये कह रहे हैं कि आगे तो हम और जोरदार हमले करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है और दावा करते हुए कहा गया है। और ये देखिए ईरान को कैसे धमकी दे रहे हैं, बाकायदा उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया है और इसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि स्ट्राइकिंग ईरानियन टारगेट्स नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये बहुत शक्तिशाली थे, विध्वंसक थे, और ये भी कहा कि आगे और भी जोरदार हमले किए जाएंगे अगर ईरान की तरफ से कुछ भी पलटवार करने की कोशिश की गई तो जोरदार हमले होंगे। यानी ट्रंप ने कह दिया रुकेंगे नहीं,
1: ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रंप तो ये कह ही रहे।
0: अच्छा एक और इसी को थोड़ा सा आगे और जोड़ दें। अब ईरान की तरफ से क्या कहा गया कि सिरिक में शादी समारोह पर हमला हुआ और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग घायल हुए हैं और ये अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और इसकी जगह जगह निंदा भी की गई। वो भी हमने देखा था, एक रिपोर्टर यहाँ पर दिखा रहा था मलबे की तस्वीरें कि यहाँ पर ये देखिए कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, बेहद निंदनीय है।

0: और सिरिक पर हमले का बदला लेंगे, ईरान ने कह दिया है, आईआरजीसी कह रहा है।
1: बिल्कुल, और आप देखिए कि इस बार जो लेगो का वीडियो जो है, जो ईरानी प्रचार का प्रतीक माना जाता है, वो लेगो का वीडियो शादी का वीडियो बिल्कुल ये वैसा ही है जैसा मीनाब स्कूल को लेकर किया गया था। यानी ईरान ने इस घटना के बाद इसको किस तरीके से राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाए उसकी तैयारी कर ली है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति चाहे जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ईरान की तरफ से पलटवार की कार्रवाई न केवल जारी है बल्कि उसका दायरा भी अगर आप देखें। हाँ, एक चीज बड़ी रोचक हो रही है मानशु इसके अंदर कि न तो अमेरिका तेहरान के ऊपर हमला कर रहा है और न ही ईरान की तरफ से जो कार्रवाई है वो सीधे यूएई के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। एमओयू के बाद से बहुत सारी चीजें बदली है, यानी 16 जून के बाद से इस लड़ाई का एक पैटर्न बदला है और उस पैटर्न के बदलाव के अंदर कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो हदें हैं वो बरकरार रखी जा रही हैं, लेकिन अभी भी मामला वहां पर फंसा हुआ है। राष्ट्रपति
0: जिसका आप जिक्र कर रहे थे तो वो बड़ी खबर के तौर पर हम बता भी देते हैं कि जब हमले की बात की जा रही है तो आईआरजीसी की तरफ से यानी ईरान की तरफ से भी हमला किया गया और पलटवार ईरान की तरफ से किया गया। और ये हमने शुरुआत से देखा है, ईरान के हौसले आप सभी पस्त नहीं हुए। ईरान की तरफ से हमेशा से ही कहा गया था कि अगर आप एक हमला करेंगे तो हम भी यहाँ पर तैयार हैं। तो जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया और ये पैटर्न आप बता रहे थे।
1: बिल्कुल, और अगर आप इस पैटर्न के अंदर देखें तो ईरान जो है वो अब लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि जॉर्डन काफी दूर है। अगर आप फारस की खाड़ी देखें तो ईरान के ठीक अक्रॉस यदि देखेंगे तो सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन है, कतर है, लेकिन जॉर्डन दूर है। अच्छा। लेकिन वो जॉर्डन तक वार कर रहा है क्योंकि जॉर्डन में सबसे ज्यादा इंटरसेप्टर बैटरीज जो है अमेरिका की वो मौजूद है। यानी इसराइल तक जब भी ईरान वार करता था तो वो जो मिसाइलें थी वो अक्सर जॉर्डन के आकाश के अंदर मार गिराई जाती थी। तो जॉर्डन के अंदर जो अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है जिसे वो सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है उस पर वार कर रहा है। यानी अमेरिका की जो सबसे मजबूत मौजूदगी है, जो सबसे मजबूत किला है, उसे तोड़ने की कोशिश और ये दिखाने की कोशिश कि हमारी ताकत अभी कम नहीं हुई है।
0: बिल्कुल, ये बात बता दी गई। अब देखिए, आपने जो दूसरी बात की थी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और दूसरी बात क्या है, अमेरिका ईरान तो आपने देख लिया लेकिन यहाँ पर रूस और यूक्रेन की भी बात की जाएगी। और एससीओ में रूस ईरान के बयानों से बड़ी खलबली मची हुई, ऐसा सामने आ रहा है कि जंग में रूस पर ईरान की मदद तैयार हो, रूसी जनता ईरान के साथ खड़ी है। ये पुतिन कह रहे हैं कि रूस की जनता ईरान के साथ खड़ी हुई और मिलकर यूएस तानाशाही का जवाब देंगे, पजेशकियान की तरफ से कहा गया। यानी अब आप देखिए कि ईरान और पुतिन यहां पर अभी एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर किस तरह के तनाव, किस तरह के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, इस पर एक डिटेल रिपोर्ट दिखा देते उसके बाद फिर बात करेंगे।

0: एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार हॉर्मुज सुलग उठा है। ईरानी शहरों में अमेरिका ने भारी बमबारी की है, कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के सिरिक शहर की ये तस्वीरें देखिए। अमेरिकी हमले के बाद यहाँ जबरदस्त तबाही हुई है। बताया जा रहा है कि सिरिक में हुए हमले में एक शादी कार्यक्रम में शामिल 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य जख्मी हैं। अमेरिका ने बीती रात ईरान पर हवाई हमलों का नया दौर शुरू किया। पिछले कुछ हफ्तों में तनाव का सबसे गंभीर स्तर है। हमले को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी, कहा कि IRGC के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ये हमले हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों और उस इलाके में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हाल ही में किए गए हमलों की कोशिश का जवाब है। समाचार एजेंसी एक्सियोस की माने तो अमेरिका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान के दक्षिणी पूर्वी चाबहार, कोनारक, बंदर अब्बास, केशम द्वीप, जास्क और सिरिक पर हमले किए। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA ने सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया है कि दक्षिण पूर्वी चाबहार और कोनारक के इलाकों में 4 प्रोजेक्टाइल गिरे हैं। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी, कहा कि अमेरिका को अपने इन हमलों पर पछतावा होगा। ईरान आरोप लगा रहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के दक्षिणी तट पर कई जगहों पर बमबारी की, जिसमें कई नागरिक ठिकाने भी शामिल थे। IRGC ने धमकी दी है कि करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। दावे के मुताबिक पहली जवाबी कार्रवाई में अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी हमलावर सेना के 50वें एडवांस्ड MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। आज तक ब्यूरो
1: तो आइए अब रूस यूक्रेन महायुद्ध की बात कर लेते हैं। कई सालों से चला आ रहा है और कीव पर जिस तरह के हमले इस वक्त किए जा रहे हैं रूस की तरफ से, अब उसको लेकर यूक्रेन ने रूस को बड़ी चेतावनी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस का आसमान सुरक्षित नहीं रह गया है। जेलेंस्की ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग समेत रूस के सभी हवाई अड्डों को यूक्रेन के भीषण ड्रोन हमलों से आगाह किया। नागरिक विमानों को चेतावनी दी है कि वो उड़ान ना भरें। यूक्रेन का इरादा रूस पर हर दिन 1,000 ड्रोन हमले का है। तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की के इस ऐलान के बाद यूक्रेन को आतंकी देश बता दिया और कहा है कि आतंकियों से कोई बातचीत नहीं होगी। कोई बातचीत नहीं होगी प्रणय, अब इस मोर्चे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहां पर भी मामला बढ़ गया, कम नहीं हो रहा है।
2: जाहिर तौर पर यहाँ भी, और ये लड़ाई तो कम से कम 4 साल पूरे कर चुकी है, तो 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, समाधान का रास्ता नजर नहीं आ रहा और दोनों की तरफ से एक दूसरे को न केवल धमकियां दी जा रही हैं बल्कि जबरदस्त ड्रोन और मिसाइल हमले भी हो रहे हैं। और इसका खामियाजा ये हुआ कि हाल ही में जो 2 दिन पहले का रूसी हमला था, उसमें यूक्रेन में कीव की एक इमारत के अंदर उसमें एक भारतीय की भी मौत हुई है। तो भारत तो कोलैटरल डैमेज दोनों ही बैटल थिएटर में, यानी दोनों ही मैदान जंग ऐसे हैं जहां पर भारतीयों की जान इस लड़ाई से दूर रहने के बावजूद जा रही है, और यही सबसे बड़ा खतरा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा। और उन्होंने कहा कि भाई ये एंडलेस वॉर में हम फंसते चले जा रहे हैं, इससे हमें एंडिंग ऑफ वॉर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वरना सब इसमें इस ब्लैक होल जैसी स्थिति हो रही है जिसमें आप रसातल में चले जाएंगे और निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो धमकी आई है वो धमकी काफी खतरनाक है हिमांशु, क्योंकि यूक्रेन
1: के यही थोड़ा डिटेल में ही समझना चाह रहा हूं कि ये 100 ड्रोन हर दिन हमला, और फिर वो कहते हैं कि आतंकी देश से हम बात नहीं करेंगे, पुतिन कहते हैं, ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, वाकई ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आगे?
2: नहीं, अगर जो जिस तरीके से एस्केलेशन बढ़ रहा है, यानी रूस की तरफ से यूक्रेन के कई शहरों पर किया गया हमला, जमीन पर अभी भी बहुत सारा इलाका जो यूक्रेन का है वो रूस की सेनाओं के पास में है, और यूक्रेन अंदर तक का वार करने की बात कर रहा है। जेलेंस्की का यह कहना कि रूस का आसमान सुरक्षित नहीं है, दुनिया के सारे देश, रूस में मौजूद उनके राजदूत और यूक्रेन में मौजूद जो विदेशी राजदूत हैं, वो इस चीज को नोटिस कर लें, अपनी अपनी सरकारों को बता दें कि अब रूस का आसमान सुरक्षित नहीं है, हम किसी नागरिक जहाज को मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन रूस के आसमान में यूक्रेन के ड्रोन होंगे। तो ये जो चेतावनी है,
1: ये चेतावनी तो बड़ी भयानक है, और क्योंकि जब बोलते हैं कि नागरिक विमानों को भी चेतावनी दे दी कि आप उड़ान ना भरे, तो समझिए कि बेहद गंभीर है। क्या कोई मध्यस्थता का आपको रास्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई अहम भूमिका यहाँ पर निभा सकता है, या फिर ये इसी तरह से जो आग है वो और बढ़ती चली जाएगी चिंगारी?
2: रोचक मुलाकात और रोचक घटना इस बीच में हुई कि जो अमेरिका के जो CIA के चीफ हैं जॉन रैटक्लिफ, वो अचानक अमेरिकी सैन्य विमान के अंदर मॉस्को पहुंचते हैं, वहां उनकी बातचीत होती है, और साथ ही जो राष्ट्रपति पुतिन के एक विशेष सलाहकार हैं वो एक G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक के अंदर भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचते हैं। तो कुछ ना कुछ बैक चैनल चल रहा है, लेकिन जब तक कामयाबी नहीं मिलती है, उसको कोई उसका कोई समाधान का फॉर्मूला नहीं निकलता हिमांशु, तब तक जब तक की लड़ाई पर ब्रेक नहीं लगता है तब तक तो वो लड़ाई जारी है और उसमें आंच कभी भी बढ़ सकती है।
1: और शुरुआत में तो ये कहा जा रहा था कि ये लड़ाई जो है वो कुछ ही दिनों की होगी, कुछ ही महीनों की होगी, लेकिन फिर उसके बाद
2: जो आप जानते हैं जिंदगी में किसी भी मैदान में लड़ाई शुरू करना आसान है, उसे खत्म करना मुश्किल होता
1: है। अच्छा, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर यहाँ पर बता देते हैं। अमेरिका से जंग में IRGC की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, और देखिए इससे पहले भी कहा गया, अब IRGC की तरफ से दावा किया गया है बारूदी सुरंगों को लेकर, कि बारूदी सुरंगों की चपेट में आए 2 तेल टैंकर, ये IRGC की तरफ से दावा किया गया, हॉर्मुज से गुजरते वक्त बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ है। क्योंकि ट्रंप भी कह रहे थे कि माइंस वहां पर नहीं है, ऐसा कुछ बयान सामने आया, तो और अब ये खबर, ये हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कमजोर नहीं है, ये IRGC ने कह दिया कि गलत फहमी में मत रहे।
2: बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यही जंग भड़कने की और बढ़ने की वजह है, क्योंकि ईरान का यह कहना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं है और वो जब तक उसे वो हासिल नहीं होता उसके हथियार के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर से अपना नियंत्रण नहीं खत्म करना चाहता, और अमेरिका की जिद भी है, अमेरिका पर दबाव भी है कि किसी न किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाइए, वरना दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो इसका खामियाजा भुगत रही है।
1: और ये हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि अमेरिका से जंग को लेकर जब भी अमेरिका एक वार करता है उसके बाद ईरान की तरफ से लगातार पलटवार किए जाते हैं, और लगातार ये चेतावनियां भी दी जाती हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हॉर्मुज पर आपका कब्जा हो जाएगा या बहुत आसान हो जाएगा आपका रास्ता, तो इसलिए ऐसा कभी नहीं होने वाला।
2: आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि अगर ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर टैंकर्स पर हमला हुआ है या टैंकर्स उसकी चपेट में आए हैं, तो ये मान के चलिए कि अगली अमेरिका की कार्रवाई भी होगी। अमेरिका ये कहते हुए कार्रवाई करेगा कि वहां जो नागरिक जहाज हैं, वहां जो कार्गो शिप्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं।
1: देखिए इस पर थोड़ी सी मुझे हंसी आई, नहीं आनी चाहिए, उसकी एक वजह है क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो देश में और हर एक देश में इसका असर देखने को मिलता है। क्रूड ऑयल आप देख लीजिए, आप पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए, हर जगह बढ़ती हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ये जो उथल पुथल खास तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच में मची हुई है, अब आने वाले वक्त में और क्या देखते हैं, और कितनी हालात खराब होंगे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बाकी सब चीजों के।
2: देखिए दुनिया में तो आर्थिक उथल पुथल चल ही रही है, $90 से पार जा चुका है जो कच्चा तेल है प्रति बैरल। इसके अलावा इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है, दुनिया का 20% तेल जिस जगह से आता है, जिस रास्ते से होकर गुजरता है, अगर वो बीते 6 महीने से बंद है तो एक तरीके से आप मानिए कि जो है धमनियों के अंदर एक जगह ब्लॉकेड है, तो जब तक बायपास नहीं होता या जब तक स्टेंट नहीं डाला जाता तब तक तो वो हार्ट अटैक का सबब बन ही सकता
1: और
2: है।
1: ट्रंप बांध नहीं रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, मेरे मन मुताबिक ही जो होगा सो होगा, और इसीलिए हालात सबके खराब है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब बात करेंगे पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की।
3: स्पेशल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सर इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: और देखिए आज का हमारा जो इनोवेशन है वो एक मल्टीपर्पज स्ट्रीट लाइट पोल यानी कि एटमॉस पोल, जिसके बारे में जिक्र किया है। और दावा यह है कि यह पोल ना सिर्फ दिल्ली की हवा को साफ करने में मदद करता है बल्कि सर्विलांस डिवाइस के तौर पर भी ये काम करता है। अब इसके अलावा साथ ही देश की राजधानी दिल्ली के आधुनिकीकरण में भी ये योगदान दे सकता है, और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, आप बेहतर तरीके से समझ पाए एटमॉस पोल को।
5: माई नेम इज़ संजय कोमेरा, मैं एक्सल वन अमेरिकन कंपनी का CEO हूँ, एंड एक्सल वन इज़ प्राइमरली ए क्लाइमेट इंजीनियरिंग कंपनी है फोकस्ड ऑन सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स लाइक वॉट वी आर सीइंग एट दिल्ली। नया टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन राजगढ़ में पहली बार हो रहा है, आई मीन दिल्ली में पहली बार, इंडिया में पहली बार, दुनिया में पहली बार, एंड ग्लैड टू ब्रिंग इट टू दिल्ली। सो अभी टेस्टिंग राजगढ़ में चालू है, इट्स ऑलमोस्ट लास्ट 4 वीक्स वी आर डिप्लॉयड अबाउट 23 poles। आई वुड कॉल इट एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइमेट एनवायरमेंटल नोड। बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दैट वॉज, यू नो, वी हैव ऑल दी स्ट्रीट लाइट्स दैट डोंट डू एनीथिंग राइट एक्सेप्ट गिविंग यू द लाइट। सो वॉट वी थॉट वॉज प्राइमरली सिटीज लाइक दिल्ली रिक्वायर्स पोल्यूशन कंट्रोल एट स्ट्रीट लेवल। So what we thought was, why don't we convert the traditional street lights into the urban street lights? So aap jo dekh rahe ho, isme it has got almost 4-in-1 function built into it. The primary biggest function is environmental cleaning. So it actually tells you kitna pollution levels hai, and also it tells you how much of pollution reduction the individual street light has done every day. हम लोग इसको डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी बोलते हैं. डायरेक्ट एयर लेमन टर्म्स में आपको जो हवा ऊपर से खींच के, इट गोज थ्रू द फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड द मल्टी लेवल फिल्ट्रेशन प्रोसेस जाके आपको साफ हवा बाहर से निकलता है नीचे. वी हैव सिक्योरिटी सर्विलियंस बिल्ट इन टू द पोल एंड वी हैव सोलार. दिस एंटायर पोल इज सोलार पावर्ड एंड इन फ्यूचर ऑल द पोल्स विल बी रिन्यूएबल पावर्ड. सो टेक्निकली ये नेट जीरो पोल हो जाएगा इन फ्यूचर. तो हमारा जो इनिशियल कैलकुलेशंस अभी है, लुकिंग एट जितने भी एयर फ्लो हो रहा है फैन के साथ, सो एवरी पोल कैन सपोर्ट क्लीन एयर टू 2000 पीपल पर डे. सो दैट्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड वी वुड बी हैप्पी टू शेयर दैट विथ यू गाइस ऑन हाउ वी हैव डन द कैलकुलेशन. सो दैट्स अज्यूम दैट एवरी पोल गिव्स क्लीन एयर टू 2000 पीपल पर डे.
1: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

मंदाकिनी का रौद्र रूप, बाढ़ के पानी में डूबे रिहायशी इलाके, चित्रकूट में छतों पर जिंदगी, मदद की आस। जिन सड़कों पर दौड़ती थी गाड़ियां, अब वहां नावें चल रही हैं। दुकान मकान और बाजार सब बाढ़ के पानी में समाये। यूपी में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। चित्रकूट में उफनती मंदाकिनी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। सड़कें नदी बन गई हैं, दुकानें और मकान पानी में डूबे हैं। यूपी एमपी को जोड़ने वाला रास्ता भी बाधित है। तस्वीरें चित्रकूट के तरोहार गांव की है। गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। लोग छतों पर बैठकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। घरों में पानी घुसने से सामान बर्बाद हो गया है। वहीं लखनऊ में भी तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। आईटी चौराहे के पास पेड़ गिरने से ट्रैफिक थम गया। बांदा में गांव से शहर तक पानी भर गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं और दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार है। नाव संचालन बंद होने से नाविकों की रोजी रोटी प्रभावित है। कई नाविक अब दूसरे काम कर रहे हैं। गंगा के बाद वरुणा भी बस्तियों के लिए आफत बनी है। कई इलाकों में सड़क और घर पानी की चपेट में है। यूपी के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बारिश और बढ़ते जलस्तर ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज तक ब्यूरो,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: और अब खबर मुंबई से, जहां दिशा सालियान मौत मामले की जांच अब सीबीआई के हवाले सौंप दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया और सीबीआई की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। 6 साल पहले दिशा सालियान की मौत हुई थी और 14वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी मौत हुई थी। शुरुआत में एडीआर कहा गया था, लेकिन उसके बाद आत्महत्या का मामला सामने आया। 2 सरकारें बदल गई, आत्महत्या की बात सामने आ रही थी, लेकिन दिशा सालियान के पिता संतुष्ट नहीं थे और उनकी तरफ से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। और अब इस मामले की जांच सीबीआई की तरफ से की जाएगी।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दफ्तर बन चुका है करप्शन गार्डर, फौरन इस्तीफा दे भगवंत मान, आप वाले कट्टर बेईमान। थोड़ी देर बाद सामने आ सकता है राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ का नाम। शॉर्टलिस्ट में 3 लोगों में से चुने जाएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर्च कमेटी ने न्यास को सौंप दी है फाइनल रिपोर्ट। मोहन यादव सरकार बदलेगी भोपाल की राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम। मध्य भारत, मालवा और महाकौशल के नाम से 3 भागों में बंट जाएगा विश्वविद्यालय। कांग्रेस बोली ये ओछी मानसिकता। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री सुलझाएगी सीबीआई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश, मुंबई में 14वें फ्लोर से गिरकर गई थी जान। मदद के लिए नेपाल पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद। त्रासदीप से मौत का आंकड़ा 1100 के पार, लापता लोग लगभग 4000। पिघलते ग्लेशियर पर यूएन की गंभीर चेतावनी।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। वक्त 100 शहर 100 खबर का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर 3 सदस्यों का नाम अभी तक शामिल किया गया है जो सीईओ की रेस में है। मदन मोहन पांडे, महेश भागचंद का और निर्मला यादव को ट्रस्ट में शामिल किया गया है। तो ये ट्रस्ट में शामिल किए गए 3 नाम, ये आपको बड़ी जानकारी देते कि ये नाम, तीनों जो नाम है ये ट्रस्ट में शामिल कर लिए गए, मदन मोहन पांडे, महेश भागचंद्र का और निर्मला यादव। सीईओ का जो चयन है वो भी होना बाकी है, उसके लिए भी 3 नाम गए, उनमें से किसी एक का चयन होना है। लेकिन इस बीच में ये बड़ी खबर है, राम मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्य अब शामिल किए गए। और अब शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबर के। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक मणिराम दास छावनी में जारी है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज, अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन, ट्रस्ट दिनेश दास समेत तमाम लोग मौजूद। दूसरे चरण की बैठक में ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों के नाम पर निर्णय लिया जाएगा। मीटिंग में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद खाली हुई सीटों के साथ ही राज परिवार से जुड़ी हुई रिक्त सीट पर भी नए नामों पर

फैसला सुनना। इस दौरान सीईओ की नियुक्ति के साथ साथ ट्रस्ट के डीड में बदलाव पर हो सकती है चर्चा। प्रस्तावित संशोधन में सीईओ के नए अधिकार जिम्मेदारियां शामिल किए जाने की संभावना। ट्रस्ट दान की चोरी पर एसआईटी की जांच और सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही की स्थिति की भी समीक्षा करेगा। नेपाल त्रासदी में मरने वालों की संख्या 1100 के पार, अब तक 1126 डेड बॉडीज बरामद। लापता लोगों की संख्या भी 4000 के पार है। 25 पुलिसकर्मी अभी लापता। त्रिशूली थ्री हाइड्रो पावर से जिंदा लौटे श्रमिक ने सुनाई आप बीती, बताया हालात भयानक है। चीनी सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप लगाए। श्रमिक के मुताबिक बाढ़ के समय नंबर 3 टनल में लगभग 265 लोग मौजूद थे और उन्होंने दावा किया कि सुरंग के अंदर कई लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में संकट बहुत बड़ा है और भारत ने 5.5 टन दवाइयों के साथ 5वीं खेप भी भेजी है। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण भी शामिल। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी पहुंचे नेपाल। भारत से ले जाए गए कंबल, राशन बांटा, बोले कि अगले कई महीनों तक वो मदद रखेंगे जारी। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेस वे की अप्रोच रोड पर जल भरा, वाहनों की आवाजाही प्रभावित। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, बाढ़ का भी खतरा बढ़ा। सोनभद्र में मूसलाधार बारिश के बीच में रिहन बांध के 3 फाटक खोले गए, सोन नदी का जलस्तर बढ़ने का खतरा है। यूपी के बांदा में बारिश बनी आफत और गोख रही गांव में 4 कच्चे मकान गिर गए, जलभराव से जनजीवन बेहाल। लखनऊ में मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव के बीच में लगा जाम, आईटी चौराहे के पास में सड़क पर बड़ा विशाल पेड़ गिर गया। कोटद्वार में मां बेटी की नदी में बहने से मौत, पैठाणी इलाके में महिला की तलाश अब जारी। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के बाद तबाही, फायर और एनडीआरएफ की टीमें लगातार परिवारों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। बागेश्वर में तेज बारिश के बीच में नेशनल हाईवे 109 के रवाई खाल के पास बड़े पैमाने पर भूस्खलन, सड़क बंद, शव यात्रा भी 3 घंटे तक जाम में फंसी रही। अथरीगुंड बैराज पर स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के दौरान हादसा, यमुना में बहे जवान, 3 लोग रेस्क्यू, 2 लापता। आसनसोल उत्तर में लगातार बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में जल जमाव और लोगों के साथ साथ वाहन चालकों को परेशानी। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर, सोलन में नदी नाले उफान पर है, कई जगहों पर सड़कें सैलाब में तब्दील। भारी मलबे और बड़े बड़े पत्थरों से सड़कें बाधित, लोगों की बड़ी मुश्किलें, 4 सितंबर तक बारिश से राहत के भी आसार नहीं। उत्तराखंड में बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन, पहाड़ी मलबे में फंसे यात्री बस को सुरक्षित निकाला गया। इस बीच मध्य प्रदेश के बाण सागर डैम के गेट खुलने से रोहतास में भी सोन नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी के किनारे रहने वाले को लोगों को दूर जाने की सलाह दी गई। बिहार के नवगछिया में गंगा का कहर, राघोपुर में कटाव से हड़कंप, मंत्री विधायक ने निरीक्षण के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मलबे की चपेट में आई कार सवार, सेना के जवानों ने किया रेस्क्यू, टला बड़ा हादसा। खटीमा में मूसलाधार बारिश आफत, सड़कों पर जल जमाव, लगातार हो रही बारिश के चलते निचले इलाके, मुख्य बाजारों और रिहायशी कॉलोनीज में जलभराव हुआ। उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते अब तक 7 लोगों की मौत, सुरक्षा के मद्देनजर 172 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए बंद। गौला नदी और खकरा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बड़ा पानी, खटीमा में दर्जनों फंसे हुए परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अल्मोड़ा में अलग अलग हादसों में मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत, जिनमें से एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में आउटसोर्स कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी की सौगात, 20 लाख कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा और हितों के संरक्षण का भरोसा मिला। कार्यक्रम में सीएम योगी बोले कि सरकार और कर्मचारियों का रिश्ता केवल वेतन का नहीं, विश्वास का होता है। पेपर लीक पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी ने अगर खिलवाड़ किया है तो उसको सीधे जेल होगी और प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। यूपी ट्रिपल एसी जूनियर असिस्टेंट भर्ती पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, आश्वासन दिया 3,284 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरा करेंगे। यूपी पीटी 2026 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आवेदन की तारीख बढ़ाई गई, अब 7 सितंबर तक किया जा सकेगा पीटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन। यूपी टीईटी 2026 रिजल्ट पर आपत्तियों के निस्तारण के लिए 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित, गहन जांच के बाद कमेटी जल्द ही पेश करेगी रिपोर्ट। आज सहारनपुर दौरे पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, चौधरी इंद्र सेन समेत स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात।
अखिलेश यादव के सहारनपुर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तंज, बोले कि एसपी पूरी तरह से दिग्भ्रमित दिन में देख रहे हैं सपने। ब्रजेश पाठक के समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला, बोले सपा सरकार में माफियाओं को संरक्षण मिला, आज अपराधियों में खौफ है, बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत से बनाएगी सरकार। त्योहारों से पहले यूपी में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, योगी सरकार 15 सितंबर से चलाएगी अनुरक्षण माह, जर्जर तार और पेड़ की डालियों की छंटाई की जाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल बुलाई पार्टी की बड़ी बैठक, बीएसपी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे, संगठन के कामकाज की रिपोर्ट भी लेंगे। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का बीजेपी पर हमला, बोले कि एसपी के साथ हमारा तालमेल गजब का है, यूपी में तो हम जीत रहे हैं चुनाव। सीट शेयरिंग पर राजेंद्र पाल गौतम बोले कांग्रेस को हल्के में ना ले, कोई देश की सबसे पुरानी पार्टी है। पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार पर बीजेपी बरसी, कहा कि सीएम का दफ्तर करप्शन का अड्डा बन चुका, फौरन इस्तीफा दें भगवंत मान, आप वाले कट्टर बेईमान। आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में ताहिर हुसैन को उम्र कैद के खिलाफ अपील पर सुनवाई को तैयार, दिल्ली हाईकोर्ट सभी संबंधित मामलों 2 दिसंबर को सुनवाई। जम्मू कश्मीर में सड़क पर सियासी संग्राम, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक दूसरे के खिलाफ उनका मार्च, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस बल की तैनाती। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी एक दूसरे पर वादे पूरे न करने का लगा रहे आरोप। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदर्शन को देखते हुए श्रीनगर में बीजेपी ऑफिस और सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। डेरेक ओब्रायन पहुंचे कोलकाता पुलिस के सामने, ऑफिस विवाद में अपना बयान करवाया दर्ज। मोहन कैबिनेट का फैसला, कैबिनेट ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 3 हिस्सों में बांटने की मंजूरी दे दी है। पीएससी रेड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई होगी। कोलकाता में शेक्सपियर सरणी की एक ऊंची इमारत में ईडी की रेड हुई और टोल रेवेन्यू की हेराफेरी के आरोपों के कारण ये जांच की गई। आंध्र प्रदेश के पल्लावरम में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मलेरिया की दवा खाते ही 50 से ज्यादा बीमार, 7 साल की बच्ची की मौत। केंद्र सरकार ने चीनी की स्टॉक सीमा घटाकर 2000 क्विंटल की, 15 सितंबर से नई सीमा होगी लागू। भू घोटाले में एफआईआर की मांग, ईडी ने पंजाब डीजीपी को तीसरी बार लिखा पत्र, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ईडी ने दाखिल किया 200 पेज का जवाब, 150 से ज्यादा पन्नों में व्हाट्सएप चैट है। जॉर्डन से बहरीन तक मिडिल ईस्ट दहला, अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान ने किया जबरदस्त पलटवार। ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और इराक पर अमेरिकी ठिकानों पर बोला हमला, साथ ही तेहरान ने चेतावनी दी कि खाड़ी के तेल निर्यात को पूरी तरह से रोक देगा ईरान। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कड़ी चेतावनी, अगर बदला लिया तो अमेरिका और बड़ा हमला करेगा। अमेरिका ईरान के बीच में सैन्य तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, $4 प्रति बैरल रेट उछला, ब्रेंट $94 के पार। ईरानी मीडिया के अनुसार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास तटीय इलाके सिरिक में शादी समारोह पर हमला हुआ, 5 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। आईआरजीसी का जॉर्डन में प्रिंस हसन एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा, RQ-4 और MQ-9 ड्रोन के हैंगर को निशाना बना। आईआरजीसी ने कई ड्रोन नष्ट किए, अमेरिकी कर्मचारियों की मौत का दावा, सैन्य ठिकानों के ढांचे में आग लगने का दावा किया। ईरान की अमेरिका को चेतावनी, सैन्य कार्रवाई जारी रही तो भुगतना पड़ेगा और ज्यादा नुकसान। जॉर्डन ने 13 में से 10 मिसाइलें रोकने का दावा किया, अमेरिकी सैनिकों की मौत पर आईआरजीसी के दावे को खारिज किया है। मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका ने फिर से जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, ईरान ओमान शिपिंग फ्रेमवर्क बनाने में जुटे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हंग काओ को नौसेना का सचिव नियुक्त किया और सीनेट से हंग काओ के नाम पर जल्द ही मोहर की उम्मीद जताई। ट्रंप ने G20 वित्त मंत्रियों की बैठक को बहुत उपयोगी और सकारात्मक बताया, अमेरिका का शानदार प्रतिनिधित्व करने के लिए वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन को धन्यवाद दिया। पुतिन ने रूसी हवाई क्षेत्र को बंद करने की ज़ेलेंस्की की धमकी को बताया राज्य प्रायोजित आतंकवाद, राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की तरफ से जवाबी कार्रवाई का किया ऐलान। इज़राइली पीएम नेतन्याहू का 7 अक्टूबर हमले को राष्ट्रद्रोह मानने से इनकार, वीडियो संदेश में हमास के विनाशकारी हमले को सिस्टम की बड़ी नाकामी का नतीजा बताया। सर्बियाई छात्र आम लोगों ने नोवी साद स्टेशन हादसे में 22 महीनों के बाद बेलग्रेड में मार्च निकाला और हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने की भी मांग की। दिल्ली बस गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा, फिंगरप्रिंट से आरोपियों की मौजूदगी कंफर्म हुई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि बस में लगा हुआ सीसीटीवी फंक्शनली नहीं था, काम नहीं कर रहा था, सीटों और स्टेयरिंग से भी फॉरेंसिक सैंपल लिए गए। डीएनए जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद से मामले में फॉरेंसिक सबूतों की कड़ी और मजबूत होने की उम्मीद है, पुलिस चार्जशीट भी फाइल करेगी जल्दी। दिल्ली के संजय झील में 3 युवक डूबे, 22 से 25 साल की इनकी उम्र थी और परिवार में कोहरा। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान केस मामले में सीबीआई करेगी अब जांच, बॉम्बे हाईकोर्ट का ही आदेश।
सूरत में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, केमिकल ड्रम में जोरदार धमाकों से दहला इलाका। मौके पर ही 9 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के रोहिणी में बुजुर्ग की हत्या कर 2.5 घंटे के बाद खुलासा, लूट के इरादे से वारदात को दिया गया अंजाम, लड़की समेत 4 गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 63 की फुटवेयर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के चलते आग की आशंका, कोई जनहानि नहीं। तेलंगाना के हैदराबाद में मार्केट में लगी भीषण आग, कोई जनहानि नहीं। झांसी में तेज रफ्तार कार ने पेड़ और गैस पाइपलाइन को मारी टक्कर, गैस रिसाव से मची अफरा तफरी, चालक पुलिस हिरासत में। महाराष्ट्र के सतारा में भगवान की मूर्ति बनाने वाले कारखाने में लगी भीषण आग, लाखों की मूर्तियां जलकर खाक। पुणे में जमीन विवाद में बेटों ने पिता को बीच सड़क पर पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर रील बनाने के लिए ट्रैफिक रोका गया, यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में 4 लोगों पर केस। ग्वालियर में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग, ताऊ के लाइसेंस से बंदूक से दागी गोलियां, वीडियो वायरल होने पर बर्थडे बॉय और ताऊ गिरफ्तार। कर्नाटक के चकबल्लापुर में कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक ने जमीन आवंटन की मांग को लेकर जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, समय आईसीयू में। गुजरात के जामनगर में बिना नंबर प्लेट के कई कारों ने राहगीर को मार दी टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। गुजरात में आरपीएफ जवान बना देवदूत, चलती ट्रेन में लटके यात्री को खींचकर बचाई उसकी जान, घटना सीसीटीवी में कैद। औरंगाबाद में कार सवार 3 बदमाशों ने नाबालिग से किया गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, तीसरे आरोपी की तलाश जारी। बांका में बीडीओ 75,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, निगरानी टीम ने निजी आवास पर की कार्रवाई। जयपुर के थाने में सेटिंग पड़ी भारी, एसीबी की टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल और दलाल को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी में तेज रफ्तार ट्रक चालक ने मचाई तबाही, नशे में धुत ड्राइवर ने गेट में घुसाया ट्रक, 4 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में धारदार हथियार से युवक पर हमला, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। बिहार के हाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे आरोपी के लिए दबिश जारी। बिहार के छपरा में 50,00,000 रुपए के संदिग्ध साइबर लेनदेन के नोटिस से परेशान होकर एक युवक टावर पर चढ़ गया, पुलिस ने समझाकर उतारा नीचे। बिहार के वैशाली में बदमाशों का आतंक, पशु व्यापारी पिता पुत्र को मार दी गोली, मौके पर ही पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर द मूवी के मेकर्स का बड़ा धमाका, रिलीज से 3 दिन पहले ही आउट हुआ नया गाना धूम धूम। मनोज वाजपेयी की फिल्म लास्ट मैन इन टावर का ट्रेलर हुआ रिलीज, व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा ने उनके नॉवेल पर आधारित है ये फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हनुमान अंश ने किया कमाल, मूवी ने 25 दिनों में 47 करोड़ के आसपास की कमाई की। पर्दे पर आदमखोरों के शिकारी बनेंगे अब अक्षय कुमार, मशहूर शिकारी और पर्यावरण प्रेमी रहे जिम कॉर्बेट की बायोपिक में करेंगे काम। रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म मैसा की रिलीज डेट का ऐलान, 27 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म।

आगे बढ़ते रहे, बात करेंगे उस खतरे के जिसने लोगों को डरा कर रख दिया। 26 अगस्त को नेपाल में जो तबाही आई उसने न सिर्फ नेपाल में तबाही मचाई बल्कि दुनिया भर के देशों को डरा कर रख दिया है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर टूट रहे हैं उससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। पहाड़ों से आ रहे सैलाब के चलते भारत के भी पहाड़ी इलाके अछूते नहीं है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के कई इलाकों में सैलाबी आफत देखी जा रही है। वहीं यूएन की ताजा रिपोर्ट में मुंबई और कोलकाता के शहरों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र का जलस्तर बढ़ने से कोलकाता और मुंबई में रह रहे लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। नेपाल में त्रास दिया और हिमालय में ग्लेशियर टूटने के बाद से आए सैलाब ने नेपाल में ऐसी तबाही मचाई है कि जिससे अब कई इलाकों का नामो निशान से मिट गया है। लेकिन सवाल अब उठ रहा है कि आखिर क्यों नेपाल में इस तरीके की तबाही आई और क्यों हिमालय में ये ग्लेशियर टूट रहे हैं, आपको दिखाते हैं।

0: नेपाल में जो हुआ उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। 26 अगस्त को नेपाल में सैलाब के सामने जो आया वो बह गया। नेपाल त्रासदी के बाद अब जिस बात पर सबको मंथन करना चाहिए वो है हिमालय की चेतावनी, जो हर आपदा के बाद गंभीर होती जा रही है। नेपाल की तबाही अब चीख चीख कर बता रही है कि ये कोई आम बाढ़ नहीं थी, और सवाल उठ रहे हैं कि ये आपदा क्यों आई, तिब्बत में ग्लेशियर क्यों टूटा, क्यों हिमालय के ग्लेशियर सुलग रहे हैं और गर्म होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने इस साल की शुरुआत में बताया कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों की बर्फ 2000 के बाद से दोगुनी तेजी से पिघल रही है। जलवायु वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बर्फ पिघलने की रफ्तार पानी की कमी और जलवायु से जुड़े खतरों के बढ़ने का तत्काल जोखिम पैदा करती है। वहीं अगस्त को ग्लेशियर टूटने से अचानक आई बाढ़ से नेपाल के नुवाकोट में महातबाही का मंजर देखा गया। करीब 30,000 की आबादी वाले कस्बे में कभी बाजार था, लेकिन अब वहां सिर्फ पत्थर और मलबा है। सड़कें गायब हैं, घर मकान दुकान स्कूल हॉस्पिटल और बैंक सभी मलबे में दबे हैं। इसके अलावा नदी को पार करने के लिए जो पुल बनाए गए वो बह गए।
1: मैं त्रिशूली के उस इलाके में हूँ जहाँ पहले कभी एक पुल हुआ करता था। ठीक एक सप्ताह पहले जब ये पुल बह गया, गांव का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बिल्कुल कट गया। एक सप्ताह के बाद एक रोपवे ब्रिज बनाया गया है, और अब जो गांव में वहां लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर लाने के लिए, क्योंकि हेली ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो रहा है, अब इस तरह की एक चेन बनाई गई है, और उस चेन में देखिए जो गांव के लोग हैं अपना बचा खुचा सामान लेकर के इस रोपवे ब्रिज से एक एक करके धीरे धीरे उन्हें खींच करके लाया गया है। इन रस्सियों के सहारे दरअसल खींच करके अब देखिए जरूरत का सामान है वो एलिवेशन पर है, बिल्कुल त्रिशूली के धारा के ठीक ऊपर से। ये जोखिम भरा है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है।
0: नेपाल त्रासदी ने हिमाचल की गोद में रहने वाले 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को याद दिला दिया कि जलवायु परिवर्तन कितना खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है, जिसने नेपाल जैसी आपदा का जोखिम पहले से कई गुना ज्यादा कर दिया। ग्लेशियरों के टूटने और नदियों के उफान का असर है कि हिमालय अब साफ साफ बता रहा है कि प्रकृति की सुनो, वरना इससे बड़ी तबाही आएगी। अब सवाल ये कि क्या हिमालय की तरफ से ये भारत के लिए सबसे गंभीर चेतावनी है? क्या नेपाल की बाढ़ सिर्फ शुरुआत है? इससे भी बड़ी तबाही कहीं पनप रही है, और हिमालय की तरफ से बढ़ते इस जोखिम को कैसे रोका जा सकता है? हिमालय में बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन ने ग्लेशियर झीलों को टाइम बम बना दिया। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और झीलों में पानी की मात्रा बढ़ रही है। बादल फटने और लैंडस्लाइड से खतरा और ज्यादा बढ़ गया। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत में भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में करीब 189 ग्लेशियल झील फटने की स्थिति में है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय हिमालय के इलाके में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियर झीलें हैं, और इनमें से 189 रेड जोन में हैं। ये झीलें सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झीलें हैं। अब सवाल ये है, इससे बचने का तरीका क्या है? भारत ऐसी आपदा से बचने के लिए क्या कुछ कर सकता है?
2: साइंटिफिक तरीके होते हैं, उसके द्वारा लेक की पूरी स्टडी कर रहे हैं। अगर लेक आउटब्रस्ट होता है तो वो पानी कहां से निकलेगा, यानी कि आप जैसे टोमोग्राफी की तरह जैसे देखते हैं कि जैसे कि कहां से वल्नरेबल स्ट्रक्चर है, तो ये सब स्टडी किया जा रहा है। प्लस उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है थ्रू वेरियस चेक डैम और अदर स्ट्रेटजीज, उस पर काम किया जा रहा है।
0: तो साफ है कि हिमालय में लगातार ग्लेशियर और उससे बनने वाली झीलों की निगरानी पर नजर रखकर ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है। नेपाल से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: अब आज मुंबई और कोलकाता के लिए उस खतरे की जो यूएन की रिपोर्ट के बाद सामने आया। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया के जो निचले डेल्टा इलाके हैं और भारत के कोलकाता और मुंबई जैसे शहर या बांग्लादेश का ढाका जैसे शहर हो, यहां पर बड़े पैमाने पर विस्थापन के रूप में इसका इंपैक्ट दिख सकता है। यहां पर लगभग करोड़ों की जो आबादी है, वहां लोगों के जो घर हैं वो हमेशा के लिए पानी में डूब सकते हैं, ऐसा खतरा है।

क्या मुंबई कोलकाता पर मंडरा रहा है खतरा? क्या मुंबई कोलकाता के लाखों घर डूबेंगे? क्या नजदीक आ रहा है समंदर? पिघलते ग्लेशियर और समुद्र के बढ़ते जलस्तर का असर अब दुनिया के कई तटीय शहरों में दिखने वाला है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बाद दुनिया के कई देशों में डर की स्थिति बन गई है। यूएन की नई रिपोर्ट में भारत के मुंबई और

0: कोलकाता जैसे शहरों को लेकर भी चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया के निचले डेल्टा इलाकों और भारत के कोलकाता और मुंबई और बांग्लादेश के ढाका जैसे शहरों में सबसे बड़ा असर लोगों के विस्थापन के रूप में दिख रहा है, जहां 1.4 करोड़ से अधिक लोगों के घर हमेशा के लिए पानी में डूबने का खतरा है और यहां लाखों लोग तुरंत खतरे का सामना करेंगे। इसके अलावा यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र का बढ़ता जलस्तर अब कोई दूर का खतरा नहीं है, ये अभी हो रहा है और रिकॉर्ड किए गए इतिहास में किसी भी समय की तुलना में तेजी से हो रहा है, इसकी रफ्तार भी बढ़ रही है।
1: और अब रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: खाना कहाँ से मंगवाया?
7: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
9: जीके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट प्राइमर
10: जीके मैक्स।
7: बेस्ट पेंट
10: जीके मैक्स।
7: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
7: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
3: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
2: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
3: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
4: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
2: मैं आशुतोष मिश्रा,
4: रोहित सिंह,
3: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: खाना कहाँ से मंगवाया?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
4: बेस्ट प्राइमर
7: जेके मैक्स।
4: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
4: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
5: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
4: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: इन एसोसिएशन विद
9: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
8: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार पर बरसी बीजेपी, का सीएम का दफ्तर बन चुका है करप्शन का अड्डा, फौरन इस्तीफा दें भगवंत मान, आप वाले कट्टर बेईमान। थोड़ी देर बाद सामने आ सकता है राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ का नाम। शॉर्टलिस्ट हुए 3 लोगों में से चुने जाएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर्च कमेटी ने न्यास को सौंप दी फाइनल रिपोर्ट। मोहन यादव सरकार बदलेगी भोपाल की राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम। मध्य भारत, मालवा और महाकौशल के नाम से 3 भागों में बढ़ जाएगा विश्वविद्यालय। कांग्रेस बोली ओछी मानसिकता। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री सुलझाएगी सीबीआई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश, मुंबई में 14वें फ्लोर से गिर कर गई थी जान। मदद के लिए नेपाल पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। त्रासदी से मौत का आंकड़ा 1100 के पार, लापता करीब 4000। पिघलते ग्लेशियर पर यूएन की गंभीर चेतावनी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले बात अयोध्या से राम मंदिर की, जहां मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के नाम का ऐलान आज हो सकता है। थोड़ी देर में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। इसी बैठक में सीईओ के नाम पर अंतिम मुहर लगने की पूरी संभावना है। सीईओ के चयन के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय सर्च कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी है। कमेटी ने हजारों आवेदनों की स्क्रीनिंग की, ऑनलाइन इंटरव्यू किया और अंतिम दौर की बातचीत के बाद 3 नामों का पैनल तैयार किया है। अब इन 3 नामों में से किसे राम मंदिर की व्यवस्था और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इस पर अंतिम फैसला कुछ ही देर में ट्रस्ट करेगा।

सीईओ के चयन के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय सर्च कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी है। एक लंबी प्रक्रिया चली, किस तरीके से उस व्यक्ति को चिन्हित किया जाए जो कि एक विवाद के बाद वापस लोगों का विश्वास बहाल करना उस व्यवस्था में कोशिश करेगा। 3 नामों में से कौन होगा नया सीईओ, कुछ देर में इस पर से पर्दा उठेगा।

0: CEO कौन? किनके हाथों में होगी मंदिर की कमान? तीन नामों से किस पर लगेगी मुहर? राम मंदिर पर सबसे बड़ा फैसला, राम मंदिर में चंदा चोरी के खुलासे ने जो खलबली पैदा की थी वो अभी तक थमी नहीं है। मॉनसून सत्र का हाल तो आप देख ही चुके हैं, जब तक सत्र चला संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन भी साथ साथ चला। राजनीति के इस सिलसिले के बीच राम मंदिर विवाद में एक बड़ा पड़ाव आने वाला है। आज राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ का ऐलान होना है।
1: इन तीनों ने भी अत्यंत परिश्रम पूर्वक 5,500 लोगों में से एक पद के लिए 5,500 आवेदन पत्र आए, उनमें से धीरे धीरे प्रोफेशनली चयन करते करते और हम लोगों को आज उनके सारे इस परिश्रम का फल अर्पित किया है। भगवान श्री राम लला के चरणों में इसको रखेंगे, जिसमें इस विश्व के अनन्य श्रेष्ठतम मंदिर के उत्तम व्यवस्थापन के लिए सीईओ की नियुक्ति करनी है, उसमें तीन महानुभावों का इन लोगों ने हमें सुझाव दिया है। इसमें से चयन जो होना है हमारे न्यास की बैठक में होगा।
0: सीईओ के चयन के लिए शुरू हुई प्रक्रिया में कुल 5,585 आवेदन, 3,577 आवेदकों ने स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। स्क्रीनिंग के बाद 470 या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले 108 उम्मीदवार अगले चरण के लिए चुने गए। इन उम्मीदवारों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्षात्कार हुआ। 4 दिन चली इस प्रक्रिया के बाद 17 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। अंतिम चरण के लिए सभी को अयोध्या बुलाया गया और आखिर में 3 नाम फाइनल किए गए।
2: कुल मिलाकर 3,500 से में से 108 लोग ऐसे थे जिनके अंक 470 के ऊपर आए। इसके बाद उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया, आखिरी चरण के लिए बुलाया गया। फिर बचे 17 लोग जिन्होंने लास्ट राउंड भी क्लियर किया। 17 में से एक व्यक्ति इंटरव्यू के दौरान नहीं पहुंचे और 16 लोगों ने कुल मिलाकर आखिरी चरण में अयोध्या प्रकरण में हिस्सा लिया, जिसके बाद कमिटी ने 3 नाम फाइनल किए और उन 3 नामों को लिफाफे में बंद कर ट्रस्ट को सौंप दिया है। अब ये बंद लिफाफा ट्रस्ट आज खोलने वाला है और सामने आने वाला है सीईओ का नाम, जिसकी कहनी और कथनी चलेगी अब अयोध्या राम मंदिर में, खासकर प्रशासनिक मामलों में। और देखना होगा कि सीईओ के आने के बाद कैसे व्यवस्था ट्रस्ट की बदलती है।
0: तो अब बड़ा सवाल ये है कि जिन 3 नामों को चयन समिति ने शॉर्टलिस्ट किया है उनमें कौन कौन है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक संभावित नामों में सबसे ऊपर पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे का नाम बताया जा रहा है। सीईओ के लिए सामने आ रहे नामों में बिहार के पूर्व डीजीपी डॉक्टर परेश सक्सेना का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। आईएएस दिनेश चंद्र का नाम भी चर्चा में है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इन 3 नामों में से एक वो लकी नाम किनका होगा जिन्हें राम मंदिर के सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आज शाम तक इस सस्पेंस से पर्दा हट जाएगा। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: सीधे समर्थ के पास आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर आज कुछ देर में संभावना है कि उस वो नाम सामने आ जाए। समर्थ, जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो आज तक की एक्सक्लूसिव ये खबर है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो प्रशासनिक अनुभव पर जोर दिया गया है। जाहिर है बहुत सारी चीजें कही गई थी कि आपकी आस्था पर भी ध्यान रखा जाएगा कि आप कितना जानते हैं और कितना सम्मान करते हैं, लेकिन प्रशासनिक अनुभव पर जोर देने की वजह क्या यही है कि जिस तरह से चंपत राय के बाद पूरी व्यवस्था एक तरीके से बदलने की बात हो रही थी, उसमें ये अनुभव ही काम आ सकता है कि बाकी भी उस लीडर को फॉलो करें?
2: अश्वेता, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपने

0: ने कही है, प्रशासनिक तरीके से जो सुदृढ़ होगा कहीं ना कहीं, जितनी जिसकी एबिलिटी होगी उसके अनुसार ये निर्णय लिया जाना है। जितने 3-4 नाम इस वक्त लगातार चल रहे हैं जिनको लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं, उन सभी का अनुभव अपने अपने क्षेत्र में बेहतर रहा है और उसी का आकलन जो है इस वक्त ट्रस्ट की बैठक में हो रहा है जहां से इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर तस्वीर अगर आपको हम दिखा दें तो यही जगह है मणिराम दास जी की छावनी, जहां पर एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। ये बड़ी बैठक निर्णायक इसलिए भी है क्योंकि एक नाम नहीं कई नाम सामने आए हैं। तीन जो ट्रस्ट की जगहें खाली थी उनमें तीन नाम, मदन मोहन पांडे, महेश भागचंदका, निर्मला यादव, इनके नामों की भी चर्चा है क्योंकि ये तीन जो नाम है वो खाली है विमलेंद्र मोहन की वजह से, चंपत राय और अनिल मिश्रा, ये तीन वेकेंट पोस्ट थी ट्रस्ट की, इनको भी भरा जाना है आज। इसके अलावा जो एक प्रवक्ता है वो कौन होगा, क्योंकि देखिए पूरे चंदा चोरी प्रकरण में तमाम अफवाहें भी सोशल मीडिया पर पहुंची, ट्रस्ट को लगता है एक व्यक्ति विशेष होना चाहिए जो कहीं ना कहीं इस तरह की बातों को सॉर्ट आउट करे। इस वजह से एक मुख्य प्रवक्ता कहें, एक पीआरओ कहें, उसके तौर पर भी एक यहां पर एक नाम का ऐलान आज होगा। सबसे महत्वपूर्ण है सीईओ, 3-4 नाम प्रशासनिक जो उनका अपना अपना अपने अपने क्षेत्र में एक्सपीरियंस रहा है वो एक निर्धारण होगा, वो एक निर्धारित करेगा उनकी कहीं ना कहीं जो ऐलान के तहत उनका नाम सामने आता है उसको लेकर। लेकिन किसका नाम आगे आएगा इसका फैसला अगले 1-2 घंटे में होना है। लगभग 1-1.5 घंटे बाद जो ट्रस्ट है वो मीडिया से बात करेगा और ऐलान करेगा। अब चर्चा इस बात की है कि सीईओ का नाम कौन होगा सीईओ, क्या होगा सीईओ का काम, क्योंकि जो कार्य क्षेत्र सीईओ का रहेगा उसमें यह भी देखना होगा कि उसका संतुलन कितना मंदिर पर रहता है। जिस तरह का प्रकरण हुआ, ट्रस्ट यह चाहता है कि सीईओ पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी ले लेकिन मंदिर में साधु संतों की चले। ये बात आज तक से बातचीत करते हुए कमल नयन दास ने साफ कही है और कहा है कि चलेगी राम मंदिर में साधु संतों की, प्रशासनिक जो है जो चीजें होंगी उसकी जिम्मेदारी सीईओ की रहेगी।
1: उन्होंने क्या कहा है वही हम सुना देते हैं अभी। समर्थ आपके पास हम लौटते रहेंगे क्योंकि बड़ी खबर वहां से निकल कर आएगी राम मंदिर के पहले सीईओ को लेकर। आज तक ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए।
2: हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, मंदिर सुचारू रूप से चलता रहे, मंदिर के सारे उत्सव समय भोग राग सब अच्छे से चलते रहे, यही हमारा लक्ष्य है। और बैठक में क्या होगा इस सब विषय हमको जानकार।
0: सीईओ को लेकर आज चर्चा है कि तीन एक लिस्ट सौंपी गई है, तीन नाम है उसमें कुछ अध्यक्ष को, और आज उसका ऐलान हो सकता है।
2: मंदिर ट्रस्ट का है, हिंदू समाज का है, सरकार का नहीं है, ठीक है ना। और आजकल ये चोरी पोरी जो आवाज उठा रहे हैं वही लोग हैं जो मंदिर के विरोधी, मंदिर नहीं राष्ट्र के जो विरोधी लोग हैं। एक एक की बात क्या बताओ, जिन्हें मंदिर से कुछ लेना देना नहीं, कोर्ट में साक्ष्य देते थे राम जी का कोई वही नहीं है, राम जी तो काल्पनिक हैं, आज उन्हें चोरी की चिंता हो गई है। मुझे याद है उस समय की घटना जब कार सेवकों के ऊपर निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, सरयू का जल लाल हो गया था, वो समय हमें याद है, हमने देखा है आंखों से। ये लोग क्या बंदे की चर्चा करेंगे
0: जी। इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से चंपत राय, अनिल मिश्रा तमाम नाम आए, आपको लगता है उनकी वापसी ट्रस्ट में होनी चाहिए?
2: देखिए मैं केवल एक बात जानता हूं, जन्म से चंपत राय जी को जानता हूं, उनकी करनी धरनी सब सारी व्यवस्था को जानता हूँ। आज तक उन्हें क्या किया है समाज के लिए, इस राम जन्मभूमि के लिए भी चंपत जी ने क्या किया है ये हम जानते हैं। चंपत जी सब प्रकार से निर्दोष हैं और ये सारी बात जो आई उनको विश्वास में रख कर विश्वासघात उनके साथ किया गया और आज तक चंपत राय में कोई दोष नहीं।
1: राम मंदिर के सीईओ के सिलेक्शन को लेकर अयोध्या के साधु संतों में उत्साह है, उन्हें लग रहा है कि राम मंदिर में जो गड़बड़ियां हुई उन पर रोक लगेगी।
3: श्री राम मंदिर में बीते दिनों वित्तीय अनियमितता को लेकर के धर्म विरोधियों के द्वारा तिल का ताड़ बनाया गया और पूरे देश दुनिया में सनातन को बदनाम करने के लिए साजिशें की गईं, जिसके मद्देनजर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हर तरह से जो है सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में सीईओ की नियुक्ति को लेकर के विचार किया गया था कि बहुत बेहद जरूरी है, जिसकी आज घोषणा होनी है।
4: पूजा की व्यवस्था संतों के पास होनी चाहिए, वैष्णव परंपरा से वहां पूजा होना चाहिए। कोई भी सीईओ बने उसका ध्यान दे कि वैष्णव परंपरा से और संतों की व्यवस्था होनी चाहिए। साधु जो पूजा करता है वो कोई नहीं कर सकता है, जो महात्मा विरक्त जो महात्मा जो सेवा कर सकता है ठाकुर जी का वो कोई नहीं कर सकता है। आप देख लो किसी भी मंदिर में जाकर तुम वीडियो बना लेना, विजुअल बना लेना, पूछ लेना किस प्रकार से साधु महात्मा ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं।
5: ये सदस्य का मामला है, पूरा सब सदस्य आने का प्रयास करेंगे, रामलला जो इच्छा हो काम सब पूरा हो जाएगा। इस मीटिंग में जो निर्णय है वो सम्मानने के लिए तैयार रहेंगे, ये ट्रस्ट का मामला है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में औपचारिक रूप से निगम के डिजिटल पोर्टल और वेबसाइट का लोकार्पण किया। इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की उपस्थिति और वेतन का डिजिटल प्रबंधन होगा। इससे हर महीने की 5 तारीख तक सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में सैलरी ट्रांसफर की जा सकेगी। सीएम योगी ने कहा है कि अब 20 लाख कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवर देने का काम सरकार करने जा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने और भी कदम उठाए।
6: पहले प्रदेश में 17 के पहले सेफाई सिंडिकेट और रामपुर सिंडिकेट पूरी व्यवस्था का खून चूसता था। आज सिंडिकेट पूरी तरह समाप्त कर दिया है और तीसरा सिंडिकेट पे हमने प्रहार किया है, जो एजेंसियों के माध्यम से आपका शोषण होता था, आज ये आउटसोर्स निगम उस पर प्रहार है। ये यही प्रहार इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने एक अच्छी सरकार चुनी है और अच्छी सरकार के माध्यम से ये सभी कार्य आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
1: सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। 2017 से पहले बहुत गड़बड़ियां होती थी लेकिन अब बदलाव हुआ। गड़बड़ी हुई तो दोषियों की संपत्ति सील होगी और जेल भेजा जाएगा।
6: पहले क्या था, 17 के पहले भर्ती निकलती थी तो युवा को पेपर लीक होने की चिंता होने लगती थी, परीक्षा दी तो परिणाम की चिंता, परिणाम आया तो जो कार्य पद्धति थी पिछली सरकारों की वह अवश्य इस प्रकार की व्यवस्था कर देता था कि कोर्ट उसमें स्टे जरूर देगा, ये भी युवा की चिंता। चयन हुआ तो नियुक्ति की चिंता, और नौकरी में अगर आ ही गया तो अपनी सेवा की चिंता। हमने इस पूरी मानसिकता को बदला। आज आयोग और बोर्ड जितने भी यूपी गवर्नमेंट के हैं उन्हें सुनिश्चित किया गया है कि युवाओं के भविष्य के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसके लिए केवल और केवल जेल होगी और प्रॉपर्टी पूरी जब्त कर दी जाएगी।
1: अब बात दिशा सालियान केस से जुड़ी। 6 साल पुरानी मौत की मिस्ट्री अब फिर खुलेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान की मौत के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। शुरुआत में पुलिस ने एडीआर दर्ज की थी, बाद की जांच में मौत को आत्महत्या बताया था। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बेटी की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए दोबारा जांच की मांग की थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस को केस से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने होंगे। सतीश सालियान का बयान भी दर्ज किया जाएगा। पर आखिर क्यों 6 साल बाद हाईकोर्ट को दिशा सालियान केस की जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी? मुंबई पुलिस ने दो दो सरकारों के तहत इस मामले की जांच की और आत्महत्या की थ्योरी से आगे नहीं बढ़ पाई। अब सवाल है कि क्या सीबीआई उस तरफ बढ़ेगी जैसा आरोप सियासी हलकों में लगाया जा रहा है।
7: छह साल, एक मौत, कई सवाल और अब जांच की नई शुरुआत। दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की एंट्री हो गई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और दिशा की मौत से जुड़े हर पहलू की जांच करने का आदेश दिया है। ये वही तारीख थी जिस रात दिशा सालियान का शव उस 14 मंजिला के नीचे मिला जहां वो मौजूद थी। मुंबई पुलिस ने जांच के बाद इस मौत मिस्ट्री को आत्महत्या बताया। अब सीबीआई इसका सच खंगालेगी। दिशा सालियान सेलिब्रिटी मैनेजर थी। कुछ वक्त तक दिशा ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया था। 8 जून 2020 की रात मुंबई के मलाड़ इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी मौत हुई। शुरुआत में पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर दर्ज की। बाद की जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया और कहा कि उसे किसी आपराधिक साजिश या यौन हमले के सबूत नहीं मिले। लेकिन दिशा के पिता सतीश सालियान इस निष्कर्ष से संतुष्ट नहीं हुए। बेटे की मौत में साजिश का आरोप लगाते हुए नए सिरे से जांच की मांग की।
8: उसमें मोड़ आए, आपको कब ये चीज में कन्विंस हुआ कि कहीं ना कहीं कोई दोषी है, कोई आरोपी है? पहले इसको सुसाइड केस बताया जा रहा।
9: दोषी तो रहेगा, दोषी के बिना थोड़ी होएगा, मर्डर होएगा, ऐसा है।
8: लेकिन क्या ऐसे सरकमस्टेंसेस जो आपको लगता है जिसमें अभी तक जांच नहीं हो पाई और सीबीआई को उस चीज में फोकस करना चाहिए?
9: नहीं, अबे मैं तो कुछ नहीं उसके बारे में बोलता हूँ। जो लोग दिल्ली सब बोलते हैं, सही बोलते हैं, उनको दिमाग चाणक्य दिमाग है
8: उनका। अब तो आप लगता है आदित्य ठाकरे आरोपी है इसमें?
9: अभी जो मैं नहीं बोलूंगा, जो जांच कर रहे हैं वो लोग बोलेंगे।
8: लेकिन खुश है आप इस फैसले से?
9: हाँ, जरूर जरूर, 100%।
7: सबसे बड़ा सवाल कि अगर परिवार ने मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताया था तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? हाईकोर्ट ने खुद पुलिस से इस पर सवाल किया। अदालत ने जांच के तरीके और कई दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठाए। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, पंचनामा और पोस्टमार्टम जैसे पहलुओं पर कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा। पोस्टमार्टम भी इस केस की बड़ी कड़ी है। कोर्ट के सामने पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा कि ऐसे मामले में राज्य की गाइडलाइन के मुताबिक दो डॉक्टरों की जरूरत बताई गई थी, जबकि दिशा का पोस्टमार्टम एक डॉक्टर ने किया था। रिपोर्ट में सिर, हाथ, पैर और छाती पर चोटों का जिक्र था और सिर की चोट को मौत का कारण बताया गया था। पुलिस की तरफ से कहा गया कि रिपोर्ट में रेप या यौन हमले के सबूत नहीं मिले, यानी एक तरफ परिवार के गंभीर आरोप, दूसरी तरफ पुलिस की जांच और मेडिकल रिकॉर्ड, और अब इन दोनों के बीच की सच्चाई तलाशने की जिम्मेदारी सीबीआई के पास होगी।
10: कोर्ट ने इनका पूरा झूठ पकड़ लिया। पहली चीज, इसमें उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट बनाए थे सब झूठे पाए गए। इन्होंने खुद जो सीसीटीवी प्रोड्यूस किया उसमें भी इनका सुसाइड थ्योरी झूठा साबित हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी, आपको याद होगा कोर्ट ने पहला सवाल पूछा
8: इंजरी को लेकर।
10: हाँ, कोर्ट ने कहा आप कह रहे हो 14वें माले से लड़की गिर रही है, मुंह पर गिर रही है, वो फोर्स क्या होता है 14वें माले का? और नाक ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, होठ भी ठीक है, अंदर का एक दांत टूटा हुआ दिखा रहे हो।
8: क्या ग्राउंड्स आपको लगता है जो कोर्ट ने इसमें सीबीआई सीनियर सीबीआई ऑफिशियल को है इन्वेस्टिगेट करने को कहा है?
10: क्योंकि सीनियर पुलिस अधिकारी आरोपी है, आदित्य ठाकरे आरोपी है, उद्धव ठाकरे आरोपी है, परमवीर सिंह आरोपी है, तो ऐसे इतनी बड़ी पूरी रिया चक्रवर्ती आरोपी है, तो इतने सब लोग आरोपी है, तो इसमें सीबीआई बेटर और वो भी सीनियर ऑफिसर।
8: एफआईआर रजिस्टर करने को कहा गया सीबीआई की तरफ?
10: हाँ हाँ, कोर्ट ने क्लियर कहा है सतीश सालियान जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है और एफआईआर रजिस्टर करना है और बाद में इन्वेस्टिगेट करना है।
7: दिशा की मौत के ठीक 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत भी मृत पाए गए। 14 जून 2020 को सुशांत बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिले। दोनों मौतों के बीच सिर्फ 6 दिन का अंतर था और यही वजह रही कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस में दोनों मामलों को जोड़कर कई तरह के सवाल उठते रहे। अब दिशा की मौत की जांच सीबीआई करेगी।
8: दिशा सालियान के जो पिता है सतीश सालियान, वो इस केस में पेटिशनर है, उसको कोर्ट ने मद्देनजर लिया। दूसरा, जो उनके वकील है सतीश सालियान के, नीलेश ओझा, उन्होंने कई चीज़ें बॉम्बे हाईकोर्ट में पॉइंट आउट की है, जिसमें जो विक्टिम है यानी कि दिशा है, उसको जिस तरह की इंजरी लगी हुई है उसका बात किया गया। उसके बाद जो सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ था दिशा सालियान की सुसाइड के समय पर ही, उसमें से भी इसको जोड़कर देखा गया है। ये सभी मुद्दे जो एक तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखे गए थे, तो कोर्ट ने पिछली हियरिंग में ये कहा था कि परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए, और उससे ये लग रहा था कि एफआईआर का आदेश दिया जाएगा। और आज कोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, इन्हीं सभी जो आप कह सकते हैं ग्राउंड्स है, उस पर सीबीआई को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कहा है, सतीश सालियान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा है, और किसी को भी इस केस में आरोपी ना माना जाए जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाते हैं। इस तरीके की बात कोर्ट ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने की है।
1: दिशा सालियान एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर हुआ करती थी। दोनों की मौत 6 दिन के अंतराल पर हुई। दोनों को जोड़कर देखा जाने लगा।
11: दिशा सालियान के पिता स्वयं कह रहे हैं, उनकी बेटी की मृत्यु नहीं हुई, उसे पीड़ित प्रताड़ित करते हुए अत्याचारित करते हुए उसका खून हुआ है, और उस वक्त की उद्धव ठाकरे सरकार ने इस मामले को रफा दफा करने का दुष्कर्म किया किसी बड़े नेता को बचाने के लिए। ये आरोप दिशा सालियन के पिता के है। एक बाप से जाकर के पूछो बेटी खोने का दुख क्या होता है। अब मुकदमा दर्ज करके यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए, इस प्रकार से न्यायपालिका ने दिशा के पिता को न्याय दिया है। सवाल यह उठता है कि उस दौरान की उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही थी, रातों रात इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया गया। इस बात का जवाब श्रीमान उद्धव ठाकरे समेत जिन जिन लोगों को बचाने का प्रयास किया गया उन सबको न्यायपालिका के सामने देना होगा।
1: अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

एग्जेक्टिव ऑफिसर, जारी है दूसरे दौर की बैठक। मोहन यादव सरकार बदलेगी भोपाल की। राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम मध्य भारत, मालवा और महाकौशल के नाम से तीन भागों में बांटा जाएगा विश्वविद्यालय। कांग्रेस बोली ओछी मानसिकता है ये। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री सुलझाएगी सीबीआई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश। मुंबई में 14वें फ्लोर से गिर कर कथित रूप से गई थी जान।

0: लापता करीब 4000 पिघलते ग्लेशियर पर यूएन की गंभीर चेतावनी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुर।
3: मध्य पूर्व से यूरोप तक महायुद्ध के भड़के शोले, ईरान के 100 ठिकाने दहल उठे, अमेरिकी अड्डे भी हिल गए। ज़ेलेंस्की की रूस को ड्रोन वार्निंग, पुतिन ने यूक्रेन को क्यों बताया आतंकी।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक महायुद्ध के शोले एक बार फिर भड़क उठे हैं। अमेरिका ने जहां बीती रात ईरान पर भीषण हमले किए, वहीं ईरान ने भी जॉर्डन और बहरीन में अमेरिका के ठिकानों पर अब बैलिस्टिक मिसाइलों से, पहले ड्रोन और अब बैलिस्टिक मिसाइलों से जबरदस्त पलटवार किया। लेकिन आज हमले की जो बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान में 100 ठिकानों को निशाना बनाया। बड़ा ऐलान किया है कि 100 ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। टैंकर के बदले टैंकर की रणनीति के तहत अमेरिका ने लंगर डालकर खड़े दो ईरानी टैंकरों के इंजन रूम को उड़ा दिया है। इससे पहले ईरान ने सऊदी अरब में सिद्र और लाइबेरिया के सेनेगल प्रॉस्पेरिटी को मिसाइल और रॉकेट हमलों से निशाना बनाया था। तो अमेरिका ने टैंकर के बदले टैंकर की डोनाल्ड ट्रंप की नई रणनीति के तहत बड़े हमले किए हैं। ईरान ने लगभग 25 बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई की, जिसमें से केवल आधी जॉर्डन की हवाई सीमा तक पहुंच पाई। उनमें से भी ज्यादातर को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। लेकिन युद्ध के बादल बेहद अब और गहराते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के 100 ठिकानों पर हमले का ऐलान किया है। इसमें ईरान की के समुद्र में जो ईरान के ऑयल टैंकर्स हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। IRGC के कई प्रमुख अड्डों को निशाना बनाया गया है और इसके साथ ही साथ जो मिसाइलों से और विमानों से बमबारी हुई है वो मिसाइल लॉन्च साइट्स और मिसाइल स्टोरेज साइट्स पर बड़े हमले हुए हैं। और अब बात करते हैं दूसरी रणभूमि, यानी रूस और यूक्रेन महायुद्ध। फरवरी 2022 से जो युद्ध चल रहा है, लगातार पिछले 6 दिनों तक कीव जो यूक्रेन की राजधानी है, रूस के हमले ताबड़तोड़ हो रहे हैं। यूक्रेन ने रूस को आज बड़ी चेतावनी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस का आसमान अब सुरक्षित नहीं रह जाएगा। ज़ेलेंस्की ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग समेत रूस के सभी हवाई अड्डों को यूक्रेन के भीषण ड्रोन हमलों से आगाह किया है। नागरिक विमानों को चेतावनी दी है कि अब वो उड़ान न भरे। यूक्रेन का इरादा रूस पर अब हर रोज 1000 ड्रोन से हमले का है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की के इस इरादे पर और इस ऐलान के बाद यूक्रेन को आतंकी देश बता दिया है और कहा है कि आतंकवादियों से कोई बातचीत रूस नहीं करेगा। इससे साफ है कि यह युद्ध अब बहुत ज्यादा खतरनाक आने वाले दिनों में हो जाएगा, जब यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि वो रोज मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को टारगेट करेगा, 1000 ड्रोन और एयरपोर्ट्स को भी नहीं बख्शेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ईरान से आ रही बड़ी और विवादित खबर दिखाते हैं। दरअसल कल रात ईरान पर हुए हमले को लेकर एक बहुत गंभीर विवाद शुरू हो गया है, बड़ा विवाद। अमेरिकी सेना के हमले में ईरान में एक शादी का जश्न जो चल रहा था वो मातम में बदल गया। ये दक्षिणी ईरान के सिरिक प्रांत में कुहेत्साक में एक शादी समारोह की तस्वीरें हैं। इस घर पर अमेरिका ने मिसाइल से हमला कर दिया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, कुछ बेहद गंभीर। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को एक क्रूर युद्ध अपराध, क्रूअल वॉर क्राइम करार दिया है। इसमें एक बच्चे की भी मौत हो गई है। हालांकि अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसके निशाने पर केवल ईरान के सैन्य ठिकाने थे और वो नागरिकों को निशाना नहीं बनाते हैं। लेकिन मीनाब स्कूल में 120 बच्चियों की मौत और लामेर्द में स्पोर्ट्स हॉल पर हमले में जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद अमेरिका पर अब आरोप लग रहा है कि एक शादी वाले घर को मातम का घर उसने बदल दिया और शादी वाले घर पर मिसाइल हमले का गुनाहगार अमेरिका को ईरान ठहरा रहा है। अमेरिका को घेरने के लिए ईरान की जो एक्सप्लोसिव मीडिया ने लोगों को वो वीडियो एक जारी किया है। लेगो खिलौना बनाने वाली कंपनी है ये, उसके खिलौने से ईरान की जेंजी कंटेंट क्रिएटर्स ने शादी के जश्न को मातम में बदलते दिखाया है। एआई से बनाए गए इस वीडियो में पहले शादी का जश्न दिखाया गया है, फिर अचानक हुए हमले से ये जश्न मातम में कैसे बदला वो दिखाया गया है। और अब ये सब तब हुआ जब जुलाई में आखिर में शांत हुआ मध्य पूर्व एक बार फिर सुलगने लगा है। अमेरिका और ईरान के हमलों ने इस समय दुनिया को दहला दिया है और खतरा अब यह है कि यह युद्ध एक भीषण खतरनाक मोड़ पर इस समय है।

0: ईरान पर हमले की पहली खबर अमेरिकी वेबसाइट एक्सिस ने दी। भारत में रात के 10 बजते ही अमेरिका ने हॉर्मुज और उसके आसपास ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी कर आक्रमण की पुष्टि कर दी। सेंट्रल कमांड के मुताबिक रात के 12 बजे उसने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के ठिकानों पर हमले किए। उसने हमलों की वजह बताई और कहा कि हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों और इस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई है। कुछ ही देर बाद दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास, केशव द्वीप, जास्क और सिरिक में एक के बाद एक कई धमाकों की गूंज सुनाई दी। ईरान की न्यूज एजेंसी झरना ने अलग अलग सूबों में तैनात अधिकारियों के हवाले से बताया कि दक्षिण चाबहार और कोनारक में 4 मिसाइलें गिरी हैं। इस समय तक ईरान को हमलों से मची तबाही का अंदाजा नहीं था, लेकिन IRGC ने अमेरिका को धमकी देना शुरू कर दिया था। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स ने बताया कि IRGC प्रवक्ता ने दो टूक कहा कि नए हमले करने के बाद अमेरिका पछताएगा। उसने दावा किया कि IRGC ने आक्रमणकारी को जवाब देना शुरू कर दिया और पहली ही कार्रवाई में हमारे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका की हमलावर सेना के 50वें अत्याधुनिक MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। दूसरी तरफ इन हमलों को खुद डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति और सुप्रीम कमांडर की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका हॉर्मुज के पास ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ये हमले बड़े और शक्तिशाली हैं और ये ईरान की उस नाकाम कोशिश का जवाब है जिसमें उसने हॉर्मुज में माइंस लगाने की कोशिश की थी। इस समय वहाँ कोई माइंस नहीं है, उन्हें या तो पूरी तरह हटा दिया गया या विस्फोट कर उड़ा दिया गया। ईरान ने जॉर्डन में हमारे मिलिट्री बेस पर 8 मिसाइलें दागी हैं जिन सभी को मार गिराया गया। अगर नाकाम राष्ट्र ईरान इन बेहद जायज हमलों पर पलटवार करता है तो उन पर फिर से ज्यादा कठोर और भीषण प्रहार होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा हमला नहीं होगा क्योंकि वो अभी होने वाला है और जब वो हमला खत्म होगा तब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम पर कुछ ज्यादा नहीं बचेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से किए गए हमले बीते कुछ हफ्तों में हुए सबसे गंभीर हमले हैं। इन हमलों के कारण न केवल दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े बल्कि अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता भी कम हुई। अमेरिका ने ये हमले बिना वजह नहीं किए। दरअसल जुलाई के बाद बीते सोमवार को हॉर्मुज से जा रहे 2 टैंकरों पर हमले हुए। ईरान ने दुनिया को 20% तेल भेजने वाले रास्ते को ऐसे ही हमलों से बंद कर रखा है। ईरान के हमलों के बाद दुनिया भर में तेल के दाम $4 प्रति बैरल बढ़ गए, जिसके बाद कच्चा तेल 5 हफ्तों में ज्यादा महंगा हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका के ताजा हमलों पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सिरिक में उस जगह पर मिसाइलों से तबाही मचाई जहां शादी का जश्न था। वीडियो में शादी के जश्न से जुड़ी सजावट और रोशनी दिख रही है और उससे कुछ ही दूर पर अमेरिकी मिसाइल हमले से उठे शोले भड़क रहे हैं। हमले की पुष्टि ईरान की राहत एजेंसी रेड क्रेसेंट और ईरानी मीडिया की रिपोर्ट ने भी कर दी। मध्य पूर्व के कई मीडिया संगठनों ने भी कंफर्म किया कि अमेरिकी स्ट्राइक में एक घर को निशाना बनाया गया है जहां शादी का समारोह चल रहा था। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 से ज्यादा घायल है। ईरान का एक रिपोर्टर उस जगह को देख रहा है जहां अमेरिका का हमला हुआ और शादी का जश्न मातम में बदल गया। उसने अमेरिकी मिसाइलों के टुकड़े दिखाए और ये दावा किया कि अमेरिका ने IRGC के ठिकानों को नहीं नागरिकों को निशाना बनाया। इस दर्दनाक खबर को ईरान के जेंजी एनिमेशन ग्रुप एक्सप्लोसिव मीडिया ने लेगो यानी खास तरह के खिलौने की मदद से दिखाया। एनिमेशन में दिखाया गया है कि शादी का जश्न चल रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं और फिर अचानक अंधेरा छा जाता है, जोरदार धमाका होता है और जश्न का माहौल नागरिकों की मौत के बाद मातम में बदल जाता है। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी और उनका वीडियो भी रिलीज कर दिया। वीडियो में आग उगलती मिसाइल जॉर्डन की ओर बढ़ती दिख रही है। हमलों के तुरंत बाद जॉर्डन के मफरक और अकाबा सूबे में अलार्म के सायरन गूंज उठे। अकाबा के आसमान में हो रहे विस्फोट को देखा जा सकता था। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान के हमलों से जॉर्डन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जॉर्डन पर जब मिसाइलें गिर रही थी तब उनकी चमक इसराइल के एलात से ही दिख रही थी। एलात से लिए गए वीडियो में ईरान की मिसाइल रात के अंधेरे को चीरती दिख रही हैं। IRGC ने कहा कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी मरीन बेस पर भारी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। वहीं जॉर्डन की सेना ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 13 बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला किया। 13 में से 10 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया गया जबकि 3 आबादी से दूर खुले इलाके में गिरी। जब ये हमले चल रहे थे तब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में अपने हमलों के समाप्त होने का ऐलान किया। उसने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने ईरान के एयर डिफेंस के ठिकानों, रडार सिस्टम, नाव और जहाजों, माइंस बिछाने की क्षमता और संचार ठिकानों को निशाना बनाया। उसकी ये कार्रवाई हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों और अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के हमले का जवाब थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मध्यपूर्व में तैनात हैं और कमांडर इन चीफ के आदेशों को लागू करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान का हमला जारी था। IRGC ने जॉर्डन के अलावा बहरीन में भी अमेरिकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का वीडियो जारी किया। यही नहीं, ईरान ने उन देशों को गंभीर नतीजों की चेतावनी दी जो अमेरिकी हमलों में मदद कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: अमेरिका इस समय जो वार कर रहा है ईरान पर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से वो तहस नहस कर देना चाहता है। हम आपको दिखाते हैं कि बीती रात जो हमले हुए कहां कहां हुए, अमेरिका ने कहां हमला किया और ईरान ने कहां कहां हमला किया एक दूसरे पर। दरअसल अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक और नौसैनिक ठिकानों पर एक के बाद एक हमले किए और कुछ हमले उसके एयर डिफेंस नेटवर्क पर हुए। अब हम आपको दिखाते हैं अमेरिका ने कहां कहां वार किया। ये जो लाल रंग में आप देख रहे हैं ये पूरा ईरान है और ईरान का जो बंदर अब्बास का द्वीप है, बंदर अब्बास उसका सबसे महत्वपूर्ण नेवल बेस या एक बंदरगाह बताया जाता है। नेवल बेस के अलावा यानी नौसेना के बेस के अलावा व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण। केशवम द्वीप, जास्क, सिरिक, हॉर्मोजगान, अहवाज और अघाजारी, ये ऐसे बेसिस हैं जिन पर अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। ईरान ने कहां कहां पलटवार किया। ईरान का जो पलटवार है वो अमेरिका के बेसिस पर है और ईरान ये साफ तौर पर कह चुका है वो खाड़ी के देशों को निशाना नहीं बना रहा है, लेकिन वो देश क्योंकि अमेरिका का बेस रखे हुए है तो वो भी लगातार हमलों की जद में आएंगे। उसमें जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, इरबिल, इराक में जो है इरबिल पर भी बार बार निशाना उसको बनाया जा रहा है, न केवल अमेरिका के बेसिस की वजह से बल्कि ईरान का यह मानना है कि ईरान पर नजर रखने के लिए इरबिल में अमेरिका के जासूस और CIA के काफी लोग वहां पर तैनात भी रहते हैं इस पूरे क्षेत्र में। तो ईरान भी सोची समझी नीति के तहत पलटवार इस समय कर रहा है। दोनों तरफ से यह युद्ध बढ़ता जा रहा है। इससे पहले ईरान ने, आपको याद होगा, उसने UAE संयुक्त अरब अमीरात में भी अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाया था और यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता है। अब अगर सऊदी अरब में अमेरिका के बेसिस को भी अगर ईरान निशाना बनाए तब फिर यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मध्य पूर्व में अमेरिकी अड्डों पर ईरान के सटीक हमलों पर हैरानी तो जताई जा रही है, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी और पेंटागन ने संदेह जताया है कि रूस इस जंग में ईरान की मदद कर रहा है और कई तरीकों से कर रहा है। कल SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के बीच मुलाकात हुई। इसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा। राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ ईरान के प्रति एकजुटता जताते हुए कहा कि रूस की जनता अपने हितों की लड़ाई में ईरान के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और सैन्य राजनीतिक तनाव के बावजूद रूस और ईरान के जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगे। इस पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने रूस के समर्थन का न केवल शुक्रिया अदा किया बल्कि साफ किया कि अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने या प्रतिबंध थोपने की कोई इजाजत नहीं है और रूस ईरान मिलकर अमेरिका की एकतरफा तानाशाही का मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। यह बयान सिर्फ कूटनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि युद्ध के मैदान में उतर चुके बहुत बड़े एक फैसले को दिखाता है। पेंटागन के खुलासे के मुताबिक रूस अपने मिलिट्री सैटेलाइट से अमेरिका के जहाजों और ठिकानों की सटीक लोकेशन ईरान को रियल टाइम दे रहा है। इतना ही नहीं, C-430L ये दरअसल एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, इसके तहत रूस ईरान को ध्वनि से कई गुना तेज यानी रामजेट सुपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और अमेरिकी हथियारों को जाम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण भी सौंप रहा है और इससे अमेरिका से लोहा लेने के लिए ईरान की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और अब रुख करते हैं इस युद्ध के दूसरे मोर्चे पर, यानी रूस और यूक्रेन के युद्ध पर। दूसरे मोर्चे पर हम बात कर रहे हैं जहां 4.5 वर्षों से जो जंग चल रही है उसकी ज्वाला एक बार फिर भड़क उठी है। रूस ने सर्दियों से पहले यूक्रेन को तोड़ देने के लिए, यानी उनकी युद्ध की मशीनरी की कमर तोड़ देने वाले हमले किए हैं और ये हमले लगातार पिछले 6 दिनों से जारी हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और अब यूक्रेन के रेलवे नेटवर्क को बड़े तरीके से निशाना बनाया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस को अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन चेतावनी दे दी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब कह दिया है कि रूस के आसमान में उड़ने वाला हर विमान, वो पैसेंजर प्लेन्स भी हो सकते हैं, हर विमान अब निशाना है, खतरे में है। अब से हर दिन 1,000 ड्रोन रूस के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाएंगे, चाहे वो मॉस्को हो या सेंट पीटर्सबर्ग या और बड़े शहर। ऐसे में नागरिक विमान रूस में अपनी उड़ानें बंद कर दे, ये कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति का। ज़ेलेंस्की की इस धमकी के बाद राष्ट्रपति पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को एक टेररिस्ट कंट्री यानी एक आतंकी देश बता दिया है। और देखिए, लाखों लोगों की जान ले चुका है यह युद्ध, रूस और यूक्रेन का महायुद्ध। अब ऐसा लग रहा है कि 4.5 साल बाद यह अपने सबसे खतरनाक दौर में इस समय प्रवेश कर चुका है।

0: जेलेंस्की ने दी सबसे खौफनाक वार्निंग। रूस में हर दिन 1000 ड्रोन के हमले। पुतिन ने यूक्रेन को बताया आतंकी। कीव और उसके आसपास के इलाकों पर बीते 6 दिनों से रूस लगातार भीषण हवाई हमले कर रहा है। मंगलवार को कीव पर हुए भीषण हवाई हमलों के तुरंत बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की सबसे बड़ी चेतावनी आई है। दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस युद्ध को लेकर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने यूक्रेन को आतंकी देश बता दिया है। सबसे पहले बात जेलेंस्की की, जिन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि रूस का हवाई क्षेत्र अब नागरिक उड़ानों के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों, बीमा कंपनियों और रूसी हवाई अड्डों के ऑपरेटरों को आगाह किया है कि रूसी आसमान में अब यूक्रेनी ड्रोन बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देंगे। जेलेंस्की ने अपनी सेना को रूस के भीतर लंबी दूरी के हमलों को 3 गुना बढ़ाने का आदेश दिया है। उनका लक्ष्य प्रतिदिन 1000 से अधिक ड्रोन दागना है, जिससे रूसी हवाई क्षेत्र एयरलाइनों के लिए पूरी तरह असुरक्षित हो जाए और रूस की अर्थव्यवस्था ठप हो जाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का इरादा नागरिक विमानों को टारगेट करने का नहीं है, लेकिन रूस ने जो युद्ध शुरू किया था उसके परिणाम अब खुद रूसी क्षेत्र और उसके हवाई क्षेत्र तक बढ़ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी एयर स्पेस बंद हो चुकी है और मॉस्को के अलावा सेंट पीटर्सबर्ग समेत दूसरे शहरों के लिए उड़ान भरने वाली एयरलाइंस इस जोखिम को गंभीरता से लें। जेलेंस्की यही नहीं रुके, उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों और कीव मॉस्को में बैठे राजदूतों से कहा कि वो इस चेतावनी से अपनी सरकारों को आगाह कर दें। आखिर में जेलेंस्की ने कहा कि जब आसमान में ड्रोन का खतरा हो तो नागरिक उड़ानों को बंद कर देना चाहिए। जेलेंस्की की ये चेतावनी तब आई है जब रूस ने कीव पर भीषण हमला किया। रूस के हमले में एक भारतीय की भी मौत हुई है। कीव के बाहरी इलाके बोरिसपिल में एक आवासीय इमारत पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जिनकी पहचान गुजरात के 40 साल के सुदर्शन भबीलाला के रूप में हुई है। इसी हमले के बाद जेलेंस्की ने रूस के आसमान को खतरनाक बता दिया और अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन को आतंकी देश बता दिया है।
1: Зеленский заявил, да, что да, нам да, небезопасно летать.
2: Да, не, ну, послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да, а второе в этой же части...
0: वो जंग जो अब अपने 5वें साल की ओर बढ़ रही है, उसके बंद होने के आसार नहीं दिखते। जेलेंस्की खौफनाक धमकी दे रहे हैं और पुतिन ने यूक्रेन को आतंकी देश बताकर बातचीत के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। पुतिन ने दावा किया कि रूस युद्ध के मैदान में लगातार जीत रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के भीतर वास्तविक नुकसान हुआ है और ड्रोन इस समय उनके लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध इस समय एक बेहद आक्रामक और गंभीर मोड़ ले चुका है, जिसमें दोनों एक दूसरे को थकाकर कमजोर करने की जंग लड़ रहे हैं। अब तक दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। पुतिन जहां सर्दियों से पहले यूक्रेन को पूरी तरह तोड़ना चाहते हैं, वहीं जेलेंस्की ड्रोन हमलों से रूस के भीतर तबाही मचाकर पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने की जिद पर अड़े हैं। आज तक ब्यूरो।
3: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि अब ये एंडलेस वॉर नहीं बल्कि एंड ऑफ वॉर की आवश्यकता है, लेकिन क्या रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति ये मशवरा मानेंगे? इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ब्रज की भूमि से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पंचायत आज तक मथुरा, 3 सितंबर सिर्फ आज तक पर।

0: ये जयकारे किसी चुनावी रैली के नहीं है, ना ही किसी जश्न के। ये उस पल की खुशी है जब मौत के मुंह से 9 साल की जिंदगी बाहर निकली। अंधेरा छा चुका था, मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़, हर नजर बोरवेल पर टिकी थी, रेस्क्यू टीम लगातार जुटी थी और सबकी एक ही दुआ थी कोई चमत्कार हो जाए। ये तस्वीरें राजस्थान के अलवर की है, जहां सोमवार शाम पतंग लूटने के दौरान 9 साल का भानु खुले बोरवेल में जा गिरा। करीब 400 फीट गहरे बोरवेल में भानु 40 से 50 फीट की गहराई पर जाकर अटक गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना शाम करीब 6:30 बजे मिली। खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। शाम करीब 6:30 बजे बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। SDRF और NDRF की टीमें रेस्क्यू में जुट गईं। JCB की मदद से खुदाई शुरू की गई, भानु तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई और उसे पानी भी दिया गया। करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हर गुजरते पल के साथ परिवार और ग्रामीणों की बेचैनी बढ़ती रही। आखिरकार रात करीब 11 बजे रेस्क्यू टीम को कामयाबी मिली। 9 साल का भानु सकुशल बाहर निकाल लिया गया। भानु के बाहर आते ही मौके पर खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। कई घंटों से तनाव में खड़े ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। भानु पूरी तरह स्वस्थ मिला और बातचीत भी कर रहा था। एहतियात के तौर पर उसे अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद उसकी हालत सामान्य मिली। करीब 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आखिरकार जिंदगी की जीत हुई। जिस बोरवेल ने पूरे गांव की सांसें रोक दी थी, उसी बोरवेल से 9 साल का भानु जिंदगी की जंग जीतकर बाहर निकला और अपने परिवार की खुशियां वापस लौटा। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

का चुनाव जारी है, दूसरे दौर की बैठक। चंदा चोरी विवाद पर अखिलेश यादव ने सरकार को फिर घेरा, कहा बड़े नामों पर एक्शन नहीं। कांग्रेस नेता अजय राय बोले राम मंदिर में शंकराचार्य नियुक्त करे धर्माचार्य।

फौरन इस्तीफा दे भगवंत मान, आप वाले कट्टर बेईमान। मोहन यादव सरकार बदलेगी भोपाल के। राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम मध्य भारत मालवा और महाकौशल के नाम से तीन भागों में बन जाएगा विश्वविद्यालय। कांग्रेस बोली ये ओछी मानसिकता है।

0: आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव साहब। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ शंघाई सहयोग संगठन में सिंधु जल समझौता बहाल करने का रोना रो रहे थे। कल ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और उससे सटा पाकिस्तान का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है यानी रावलपिंडी GHQ जहां पर है, बारिश के पानी को संभाल नहीं पा रहा था, डूब गया है। नतीजा ये कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सैलाब ने हाहाकार मचा दिया है। जबरदस्त बारिश से सारा का सारा बजट हजम करने वाली जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके ही शहर का आईना दिख गया, वो रावलपिंडी जहां पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों का गढ़ जिसे बताया जाता है यानी जनरल हेडक्वार्टर्स, 4 से 5 फीट पानी में डूबा हुआ था। कारें नाले से लेकर गलियों तक सैलाब में तैरती बहती नजर आ रही थी। नाले की सफाई न होने पर ऐसा उफान आया, लेकिन केवल नाले में सफाई नहीं हुई, ये हम नहीं पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि पाकिस्तान की फौज ने नाले और नदियों का जो उसके पास की भूमि है वो बेच दी, नाले तक खा गए कॉर्नर प्लॉट बनाने के चक्कर में, और सारा का सारा पानी है वो रावलपिंडी शहर में घुस आया है, लोगों के घर डूब गए हैं, अंदर रखा सामान बर्बाद हो रहा है पाकिस्तान में, बाहर गाड़ियां तबाह हो रही हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है। कल सैलाब से जो तबाही मची, स्कूल कॉलेज पाकिस्तान में रावलपिंडी इस्लामाबाद में बंद कर दिए गए। ये उस शहर का हाल है जहां पाकिस्तान का सर्वे सर्वा जनरल आसिम मुनीर वो बैठता है, और अब पाकिस्तान की आवाम तंज कस रही है। पाकिस्तान के इन्हीं आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफों से पूछ रही है, भाई तुम दुनिया के मसले सुलझा रहे हो, अपना घर तो झांक के देख लो क्या हो रहा है। ये जो बड़े बड़े विमान जेट खरीदे जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान की सेना के लिए तो कभी पंजाब की मुख्यमंत्री के लिए, उन जेट को पैसे बर्बाद करने के बजाय नदी नाले ही साफ करवा दिया जाए। देखिए रावलपिंडी के एक शहर ने किस तरह अंदर से खोखले हुए पाकिस्तान और रोते हुए पाकिस्तान, आप ये देखिए कि अंदर उस आदमी का दिल रो रहा है, बाहर से वो हंसने का बहाना बना रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए पाकिस्तान से और देखिए कैसे पानी पानी हुआ जा रहा है पाकिस्तान।
1: आज मैं आपके साथ दोबारा हाजिर हुआ हूँ और इंतहाई खुशी के साथ हाजिर हुआ हूँ, और ये मेरा दाहिना है ना, वैसे लोग कहते हैं जी आप रोते बहुत है, अब मैं ही हंस रहा हूँ। ये सारे 3-4 फुट पानी आया हुआ है ये, और मैं खाली इस चीज, मुझे खुशी इस चीज की है कि हमारे जो हुक्मरान है वो दुनिया के मसाइल हल कर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं आज रहूंगा नहीं। आज ये देखें, ये सारा हम मेरे घर का नुकसान आप देख रहे हैं, ठीक है ना, प्राइवेट में हमारी मुलाजमतें हैं, ठीक है, 100 चीजों का रोल है, रोटी पूरी नहीं हो रही, रोटी मांग के खानी पड़ रही है, और मैं खुश हूँ। ये सारा नुकसान मैं आपको, ये देखें ये सारा नुकसान हुआ है और मैं खुश हूँ, ये मेरे घर।
0: और बड़ी खबर इस समय आ रही है, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा हो सकते हैं राम मंदिर ट्रस्ट के CEO। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा का नाम इस समय सामने आ रहा है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ये डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑपरेशंस रह चुके हैं, खबर ये आ रही है वेस्टर्न एयर कमांड में रह चुके हैं, और डॉक्ट्रिन और टेक्नोलॉजी पर ये काम कर चुके हैं भारतीय वायुसेना की। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा का नाम आ रहा है, ये हो सकते हैं श्री राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है। पूर्व एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड, डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑपरेशंस रह चुके हैं, और इनका नाम सबसे पहले उस सूची में आ रहा है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या इस नाम की औपचारिक पुष्टि बस होना बाकी है, क्योंकि अब तक जो नाम चल रहे थे वो राजेश पांडे, योगेश्वर राम मिश्रा और परेश सक्सेना के नाम चल रहे थे, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के बारे में क्या बता सकते हैं आप हमें?
2: देखिए गौरव, निश्चित तौर पर

0: ये एक सरप्राइज नेम है जो कि आया है। अभी तक जितनी भी बातें निकल करके आ रही थी उसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के थे, चाहे वो राजेश पांडे हो, दिनेश चंद्र हो, बिहार से परेश सक्सेना का नाम चल रहा था, तमाम आईपीएस के नाम चल रहे थे, लेकिन जो नाम आया है जितेंद्र मिश्रा का, इनका अभी रिटायर्ड एयर मार्शल है और साथ साथ जो बताया जा रहा है कि सिंदूर, अभी जो हाल में सिंदूर हुआ है उसमें इनकी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन आखिर अगर इनका नाम जो फाइनली अनाउंस होगा अब से कुछ देर बाद जो ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो बतौर सीईओ अगर इनका नाम अनाउंस होगा तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा नाम होगा जो देखने में तो सरप्राइज लग रहा है कि अचानक से ये नाम सामने आया जिनकी चर्चा नहीं, लेकिन ये नाम बहुत लोगों को सुखद एहसास कराने वाला होगा क्योंकि जिस तरीके से पूरे इस ट्रस्ट पर उंगलियां उठी हैं, ऐसे में एक ऐसा शख्स जो कि अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है, एयर मार्शल रह चुका है, सिंदूर में जिसकी भूमिका रही है, उसे अगर सीईओ बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर इस ट्रस्ट पर जो उठ रही उंगली है कहीं ना कहीं उसको धोने का प्रयास होगा कि देखिए इतने बड़े शख्स को इसका सीईओ बनाया गया है, यानी कि ट्रस्ट अपनी तरफ से जो एक ईमानदार कोशिश दुनिया के सामने रखेगा उसमें ये नाम बेहद अहम है। बाकी जो जितने नामों की चर्चा हो रही है, अगर इनमें से कोई नाम सामने आते तो कई तरह की बातें और निकलती, लेकिन सेना से और खासकर एयरफोर्स से जुड़े हुए जितेंद्र मिश्रा, जिनका जिनका की बहुत लंबा करियर रहा है और सिंदूर तक लोगों ने उन्हें देखा है, अब उनका नाम आया तो नेचुरल है कि उनके बारे में सर्च भी हो रहा है, जानने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन ये ट्रस्ट के ऊपर जो इतना बड़ा धब्बा लगा था कहीं ना कहीं उसे हटाने की एक कोशिश के तौर पर दिखाई दे रहा है।
1: ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र, इनके बारे में मैं आपको जो वायुसेना से जो जानकारी इनके करियर के बारे में है, ये पूर्व एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड है, ऑपरेशन सिंदूर में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी क्योंकि पाकिस्तान को नाको चने चबवाने में, आप ये सोचिए बस 30 मिनट के अंदर अगर पाकिस्तान की लगभग 50-60% पाकिस्तान एयरफोर्स अगर घुटनों के बल आ गई थी, उनके 12 एयरबेसेस तबाह हुए थे, तो वेस्टर्न एयर कमांड की बहुत प्रमुख उसमें भूमिका रही थी। फाइटर पायलट है, 38 साल भारतीय वायुसेना में रह चुके हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, और इनका जो ऑपरेशनल करियर रहा है बहुत एक्सटेंसिव ऑपरेशनल एक्सपीरियंस एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को है। इनके नाम के बस अब औपचारिक ऐलान की प्रतीक्षा है, इस तरह की खबर इस समय आ रही है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक फॉरवर्ड एयरबेस पर थे, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि S-400 वैसे तो सर्फेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन लगभग 320 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा के अंदर अगर पाकिस्तान के एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम AEWNC विमान को अगर मार गिराया गया था तो ये एक वायुसेना का बहुत ही आक्रामक रूप था। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र उसी वायुसेना के सदस्य हैं, वेस्टर्न एयर कमांड के AOC इनसी रह चुके हैं, कुछ ही समय पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और अब इनका नाम सामने आ रहा है। अनुभव जबरदस्त, 38 साल का अनुभव एडमिनिस्ट्रेशन का, फाइटर पायलट का, टेस्ट पायलट रह चुके हैं भारतीय वायुसेना के। टेस्ट पायलट केवल वही लोग बनते हैं जिनको न केवल बेस्ट फाइटर पायलट्स बल्कि नए विमानों को टेस्ट करने में जिनका कौशल होता है उन्हीं को बनाया जाता है। यहां पर अगर इनकी भूमिका की बात की जाए अभिषेक, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कई जो महत्वपूर्ण काम, ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्राउड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनका किस तरह से तालमेल रहेगा, बड़ा काम होगा सीईओ का इस समय, खासतौर पर जिस तरह की खबरें अब से पहले सामने आई हैं अभिषेक।
0: बिल्कुल गौरव, देखिए इस वक्त अगर ट्रस्ट है और किसी एक चीज से जूझ रहा है तो वो ट्रस्ट की कमी। जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया और जिस तरीके से एक के बाद एक सवाल ट्रस्ट पर उठे, चंपत राय और अनिल मिश्रा को ट्रस्ट छोड़ करके जाना पड़ा, तो ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने जो एक्सरसाइज की है उसमें इस बात का ख्याल रखा है कि इस बार कोई ऐसा नाम इसका सीईओ का बनाया जाए जो नाम इतना बड़ा हो और इतना एफिशिएंट हो कि फिर पूरे देश का विश्वास उस पर जम सके। और जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका निभाई हो, जो अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित रहे हो, फॉर्मर एयर मार्शल रहे हो, इससे बड़ा नाम, क्योंकि एफिशिएंसी और कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी अगर ट्रस्ट को लेकर के आनी थी तो उसमें इस तरीके से इससे बड़ा नाम नहीं हो सकता था। रही बात दूसरे नामों की, तो आपको बताएं कि चूंकि 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन आए थे, 16 लोग इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए थे, और बताएं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ दें या कुछ पुलिस वालों को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा नाम इसमें सेना से और आर्म्ड फोर्सेस से जो बहुत रिटायर्ड और बहुत सीनियर पदों से रिटायर्ड लोग थे उनके नाम थे। तो निश्चित तौर पर ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि सरकार की तरफ ट्रस्ट की तरफ से अगर कुछ सरप्राइज आता है तो कहीं ना कहीं आर्म्ड फोर्सेस से या एयरफोर्स से कोई नाम सामने आएगा, और वही हुआ। तो इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह यही है गौरव, कि जिस डिस्ट्रस्ट से ये जूझ रहा था ये पूरा का पूरा राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट, उसको एक बहुत बड़ा नाम मिला है, और अब इसकी एफिशिएंसी, इसके सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें, किस तरीके से ये काम करेगा, इसमें इनकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है। तो जिस तरीके से नए नामों का आज ऐलान हुआ है, खासकर ट्रस्ट के भीतर 3 नामों का ऐलान हुआ है, और सीईओ का ऐलान अब औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं कि बाकी है, अगर इनका नाम सामने आता है, अगर यही बनाए जाते हैं, तो समझ लीजिए कि एक बहुत मैसिव एक्सरसाइज ट्रस्ट ने की है। यहां से लेकर केंद्र तक की इसमें भूमिका रही होगी कि किस तरीके से राम मंदिर से जो जुड़े हुए नाम है या राम मंदिर से जो बदनामी जुड़ी है उसको किसी तरीके से दूर किया जाए, तो ये एक बड़ा नाम निश्चित तौर पर उसमें साबित होगा। गौरव
1: अभिषेक रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, अगर क्रेडिबिलिटी की बात है और अगर विश्वास की बात है तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र, जो पूर्व एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड और वो भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रह चुके हैं, इनके पूरे 38 वर्ष के करियर को देखा जाए तो बहुत जबरदस्त इनका फाइटिंग आर्म करियर रहा है। फाइटिंग आर्म में फाइटर पायलट है, टेस्ट पायलट रह चुके हैं भारतीय वायुसेना के, और बहुत ही उम्दा अफसर, इनको अग्रेसिव अफसर के रूप में इनको देखा जाता है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठोका गया था ये उस मानसिकता को प्रदर्शित भी करते हैं। लेकिन अभिषेक रहिए मेरे साथ, मयंक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से। मयंक, और क्या जानकारी, औपचारिक ऐलान की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, और एयर मार्शल मिश्रा का चयन किस रूप में हुआ है, क्या क्या क्या सोच कर हुआ है, क्या बता सकते हैं हमें?
2: जी बिल्कुल बता सकूंगा कि आपको सर, कि जो राम मंदिर की व्यवस्था है वो उसको प्रशासनिक रूप दिया गया है, कि मतलब जो भी कोई यहाँ पे अधिकारी अगर बैठता है, सीईओ जो भी नियुक्त करते हैं ये, तो उसके हिसाब से यहाँ की प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसकी कमांड सही तरीके से हो सके, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सही तरीके से देखी जा सके, उसको लेकर खास चर्चा का विषय रहा है। क्योंकि राम मंदिर में जो भी मेन मुद्दा रहा है सुरक्षा, क्योंकि अभी जो भी दान चोरी का मामला आया सामने, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक भी बताई गई थी, तो उसको देखते हुए यहाँ सीईओ की नियुक्ति हुई है, और इस नियुक्ति इस आधार पे की गई है कि एक बड़ा अधिकारी यहाँ पे बैठे और वो जो सही तरीके से राम मंदिर की सुरक्षा और वहां के जो भी कर्मचारी हैं उनको सही तरीके से डायरेक्शन दे सके, क्योंकि ये आर्मी से भी है, रिटायर्ड भी है और बड़े अफसर है, इनका नाम सामने आया है, एयरफोर्स से है तो इनका नाम सामने आया, तो ये जो भी है यहाँ पे तो इनकी व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं, और उस हिसाब से जितने यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके, उसको लेकर काफी चीजों को ध्यान दिया गया है। तो कहने की राम मंदिर एक बड़ी चीज है और उसको लेकर जो भी चर्चाएं रही है उसको लेकर यहाँ पे एक सीईओ की नियुक्ति भी हो ही चुकी है, अभी बस इनका नाम सामने आना बाकी है, ट्रस्ट की तरफ से ये क्लियर किया जाएगा, तो उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं, 3 नए ट्रस्टियों के भी नाम यहाँ दे दिए गए हैं जो जगह रिक्त की गई थी, तो उन सारी व्यवस्थाओं को लेकर राम मंदिर में जो भी योजना है, अब ये चर्चा का विषय है कि अब सीईओ, ये जो नए सीईओ हैं ये कैसे इस राम मंदिर को चलाते हैं, कैसी यहाँ की व्यवस्था दिखते हैं, वो सारी बातें देखी जा सकती है
1: निश्चित तौर पर। क्योंकि अभिषेक, सबसे पहले जिस तरह से दान और जिस तरह से दान में धांधली की खबरें सामने आई थी, वहां पारदर्शिता लाना, बहुत सी श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, उनकी सुरक्षा, क्योंकि श्री राम मंदिर परिसर पर इससे पहले आतंकी हमला करने की नापाक साजिश कर भी चुके हैं, तो वहां की सुरक्षा, वहां की व्यवस्था, प्रशासन के साथ तालमेल और वहां की क्रेडिबिलिटी, ऐसे में एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है।
0: बिल्कुल गौरव, देखिए एक चीज जिससे पूरा ट्रस्ट और हाल के जब से ये विवाद उभरा उसके बाद से पूरा का पूरा राम मंदिर ट्रस्ट या यूं कहें कि राम मंदिर की का पूरा मैनेजमेंट, पूरा का पूरा इकोसिस्टम वो जूझ रहा था, वो था विश्वसनीयता की कमी। यानी कि कौन आए तो कुछ विश्वास जगे, क्योंकि लोगों का विश्वास लगभग टूट सा गया था, लोगों की आस्था पर ये एक तरीके की चोट थी। और चाहे आप किसी को भी ले आकर के सीईओ बना दें, चूंकि राम मंदिर देश और दुनिया में इस वक्त कौतूहल का विषय था, सभी की श्रद्धा का केंद्र था, ऐसे में एक ऐसे शख्स को लाना जो डिसिप्लिन्ड हो, जो आर्म्ड फोर्सेस से हो, जो हर चीज को जिसे कहते हैं कि एफिशिएंसी के साथ अंजाम दे सके, जहां जहां लूप होल से, आप देखें कि जो ट्रस्ट था, जो ट्रस्ट से जुड़े लोग थे जिनके रहते हुए इतना बड़ा चढ़ावा,
1: प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, और मंजीत नेगी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो मतलब वेस्टर्न एयर कमांड, त्रिशूल कमांड की कमान, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आप एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के बारे में हमें और क्या बता सकते हैं?
2: गौरव, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की एक बहुत तस्वीर जो चर्चा में रही, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे और सुदर्शन चक्र की उनके बैकग्राउंड में मौजूद थी, उनके साथ उस दौरान जो वेस्टर्न कमांड के प्रमुख थे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, वो लगातार उनके साथ तस्वीरों में दिख रहे थे। उस दौरान देश और दुनिया को पहली बार पता चला कि भारतीय वायुसेना की जो भूमिका रही है पाकिस्तान के एयर बेसिस को पर निशाना लगाने की, उसके अलावा पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे मुरीद की और दूसरे बड़े ठिकाने, उन पर पोस्ट ने जो सटीक निशाने लगाए थे उसके पीछे जिस व्यक्ति की बड़ी भूमिका थी वो वेस्टर्न कमांड के प्रमुख एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की थी, और उसके बाद ही वो एक तरह,
1: आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहद पार पाकिस्तान को ठोका था, अब उसी तरह से यह देखना है कि जो लोग कुदृष्टि रखते हैं उन पर भी वैसा ही प्रहार हो। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: महाराष्ट्र के ठाणे के इस आदिवासी स्कूल में एक दो नहीं बल्कि 22 छात्राओं ने एक स्कूल के कर्मचारी पर छेड़छाड़ और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है।
2: तेरा मैं बोली कि मामा हाथ नको लाओ मैं पोलीस केस करेन, तो बोला हाँ का तो वरती निघून गेला डस्टबिन ठेवायला आणि मुलींच्या कमरेला पण धरलं होतं।
1: छठी से दसवीं कक्षा तक की लगभग 22 छात्राओं ने गणपत गबली पर आरोप लगाया है कि जब वे दोपहर या रात का खाना खाने के बाद अपने बर्तन रसोई में रखने जाती थीं, तो वो नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था।
2: मैडम ने सांगितलं पण अधीक्षक मैडम ने आमचं दुर्लक्ष केलं, सर त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे।
1: 35 साल का गणपत गबली स्कूल के किचन में काम करता था। चौंकाने वाली बात यह है कि ये घिनौना खेल काफी वक्त से चल रहा था, जिसकी शिकायत करने पर स्कूल प्रशासन छात्राओं को ही धमका डराकर चुप करा देता था। फिर एक छात्रा ने आगे बढ़कर शिकायत की तो फिर धीरे धीरे गणपत गबली के खिलाफ 21 छात्राएं और आ गईं, जिन्होंने लिखित में शिकायत दर्ज करवाई।
3: शिकायत करता है लेडीज है जो 18 साल से कम उम्र की है, उन्होंने भी बताया कि उनके साथ भी विनय भंग का प्रकार हुआ है, जैसे हाथ फहराना या उनके मन में लज्जा उत्पन्न होने जैसी कृति हुई है।
1: चौंकाने वाली बात यह है कि गणपत गबली पर 2024 में एक दूसरे आदिवासी बोर्डिंग स्कूल में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था और तब पुलिस ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इसके बावजूद उसे बहाल कर दिया गया और महाराष्ट्र के एक दूसरे आदिवासी बोर्डिंग स्कूल में फिर से नौकरी पर रख लिया गया।
3: उसी आरोपी के ऊपर एक शाहपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 99/2024 सेम विनय भंग का ही प्रकार हुआ था, उसमें भी गुना दाखिल था, उसमें भी आरोपी को अरेस्ट किया गया था।
1: अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जब गणपत पहले से ही इस तरह के मामले में दोषी था तो उसकी बच्चियों के स्कूल में नियुक्ति क्यों की गई? क्या उसका पुराना रिकॉर्ड नहीं देखा गया? प्रशासन के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है।
4: कार्रवाई करके उसको अगले बहुत कड़क शिक्षा देने वाले हैं डिपार्टमेंट की तरफ से।
1: गबली के खिलाफ FIR दर्ज की गई और पुलिस ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा जिन्होंने गबली का बिना रिकॉर्ड देखे उसकी दोबारा स्कूल में नियुक्ति की थी। दिव्येश सिंह, ठाणे आज तक।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र का राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनना तय। ऑपरेशन सिंदूर में संभाली थी वेस्टर्न कमांड की कमान, यूपी के देवरिया से ताल्लुक। चंदा चोरी विवाद पर अखिलेश ने सरकार को फिर घेरा, कहा बड़े नामों पर एक्शन नहीं। कांग्रेस नेता अजय राय बोले राम मंदिर में शंकराचार्य नियुक्त करे धर्माचार्य।

0: कट्टर बन चुका है करप्शन का अड्डा। फौरन इस्तीफा दे भगवंत मान, आप वाले कट्टर बेईमान। मोहन यादव सरकार बदलेगी भोपाल की राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम। मध्य भारत, मालवा और मां कौशल के नाम से तीन भागों में बढ़ जाएगा विश्वविद्यालय। कांग्रेस बोली ऊंची मानसिकता। मुंबई की दिशा सालियन की मौत की मिस्ट्री सुलझाएगी अब सीबीआई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश, मुंबई में 14वें फ्लोर से गिरकर गई थी जान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश के विकास पर होगा, क्योंकि विकास की दर पर जिस तरीके से चर्चा चल रही है, क्योंकि दो दिन पहले देश में पहली तिमाही के आंकड़े आए हैं। पिछले तीन साल के मुकाबले इस बार पहली तिमाही सबसे शानदार रही है। 7.8% की विकास दर मिली है। पीएम मोदी खुश है, सारे मंत्री खुश है, पूरी बीजेपी खुश है कि मोदी सरकार के फैसलों के कारण यूक्रेन से लेकर ईरान युद्ध के संकट, सप्लाई चेन में रुकावट और तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास की गति 8% को छू रही है। लेकिन विपक्ष इस कामयाबी को सच मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि इस विकास में देश का गरीब, नौजवान, बेरोजगार और किसान शामिल ही नहीं है। विपक्ष आरोप लगाता है कि ये आंकड़े अगर सच है तो आम लोगों के कर्ज का अनुपात ऐतिहासिक ऊंचाई पर क्यों जा रहा है, बचत का अनुपात ऐतिहासिक गिरावट में क्यों दिखाई दे रहा है, और ये सब आरबीआई कह रही है। जहां सर्विस सेक्टर 12% पार है तो कृषि सेक्टर सिर्फ 3.4% पर क्यों है। सरकार के आंकड़ों को विपक्षी दल कागजों की बाजीगरी करार देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नंबर्स सरकार की कामयाबी की कहानी दे रहे हैं। आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर तेजी से बढ़ती इंडियन इकोनॉमी पर जब दुनिया की रेटिंग एजेंसियां, बड़े बाजार सभी को भरोसा है, तो विपक्ष को यह भरोसा क्यों नहीं दिख रहा है। और अगर देश का विकास इतनी ही तेजी से हो रहा है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन अभी भी क्यों देना पड़ रहा है और कब तक यह मिलता रहेगा। ऐसे कई सवाल है, उन पर हम चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं।
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया।

0: एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी धरती से ही देशवासियों को खुशियों वाली एक खबर सुनाई।
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है।
0: दरअसल भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 31 अगस्त को शाम 4 बजे पहली तिमाही के आंकड़े जारी किए थे। पता चला कि वास्तविक जीडीपी 7.8% से बढ़ रही है, जबकि नॉमिनल जीडीपी 10.3% रही है। बैंकिंग, रियल एस्टेट, आईटी जैसे सर्विस सेक्टर 12.1% की दर से बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेकेंडरी सेक्टर में 8.6% की वृद्धि दर है। बस खेतीबाड़ी सबसे पीछे 3.6% रह गई है, वरना सड़क पुल, फैक्ट्री मशीनरी में निवेश यानी GFCF 11.9% रहा। लोगों की खरीद शक्ति की दर यानी PFCE 7.1% रही।
1: भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए।
0: पीएम ने देशवासियों के संकल्प की तारीफ करते हुए विकास पथ पर और आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा तो विपक्ष ने इस आंकड़े पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। मनीष तिवारी कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये विकास दर किसके लिए, जीडीपी के मुकाबले बचत और उत्पादन अनुपात गिरे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 80% आबादी मुफ्त राशन पर फिर निर्भर क्यों है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इसे ग्रेटली डिस्टॉर्टेड पिक्चर बताया और कहा कि घरेलू बचत 5.1% पर और आम लोगों का कर्ज रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्यों है।
2: प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं 2.6% जीडीपी।
3: क्या दूध की कीमतें कम हो गई? क्या मुफ्त राशन देने की अब जरूरत नहीं रही? क्या रोजगार का 45 साल का रिकॉर्ड वापस दुरुस्त कर दिया आपने? क्या मैन्युफैक्चरिंग वापस से पटरी पर आ गई?
4: जीडीपी कैसा बढ़ेगा मोदी को दिखता है? मोदी का चश्मा क्या है वो देखना पड़ेगा। मोदी कौन से चश्मे से देखते हैं?
5: एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही।
6: ऐसे लोपापोती करके कि भाई हम बड़े आगे जा रहे हैं ये दिखाने की कोशिश है, लेकिन उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है।
0: विपक्षी नेताओं और दलों का काम सरकार की नीतियों आंकड़ों पर सवाल उठाना है, मगर विपक्षी दलों के साथ जानकारों ने भी आंकड़ों पर सवाल उठाना शुरू किया। सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि वास्तविक विकास दर 2.6 ही है। अर्थशास्त्री धनंजय सिन्हा ने कहा कि नॉमिनल जीडीपी 10.3 और रियल 7.8 यानी डिफ्लेटर सिर्फ 2.5 है, क्योंकि खुदरा महंगाई 3.9, थोक 9 से ऊपर है। 6% डिफ्लेटर नियम से ये 4 से 4.5% ही बैठेगी। कई जानकारों ने के शेप्ड इकोनॉमी यानी अमीरी गरीबी की बढ़ती खाई पर सवाल उठाए कि कॉरपोरेट शेयर बाजार, आईटी, टॉप अमीर जो 5% हैं, ये तेजी से बढ़ रहे। ग्रामीण भारत, छोटे उद्योग संकट में हैं। उपभोक्ताओं की मांग 3 से 4% ही है, लेकिन सरकार के अफसर इन सवालों को खारिज करते हैं।
7: तो जो कंजम्पशन है, प्राइवेट फंक्शन, जो लोगों की कंजम्पशन है वो कंटिन्यूड ग्रोथ पे है। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में फिशरीज, मरीन सेक्टर ने बहुत अच्छा किया है। इन जनरल अगर देखा जाए तो ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव।
0: दरअसल विपक्ष देश में अमीरों और गरीबों के विकास दर के फर्क को सामने रखना चाहता है, क्योंकि किसी देश के विकास का पैमाना आर्थिक मोर्चे पर सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और खरीद शक्ति समता से मापी जाती है। तो सामाजिक स्तर पर मानव विकास सूचकांक, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर जैसे मानकों और जीवन स्तर में गरीबी, स्वच्छता जैसे मानकों पर मापते हैं। भारत में पिछले 12 वर्षों से हो रहे विकास को अगर इन पैमानों पर मापा जाए तो विश्व बैंक, IMF, UNDP और भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2013 में GDP 1.86 लाख करोड़ डॉलर थी, जो 2026 में 3.95 लाख करोड़ डॉलर है। प्रति व्यक्ति आय $1,438 सालाना थी, जो अब $2,810 सालाना है। क्रय शक्ति समता 6.10 लाख करोड़ डॉलर की थी, जो अब 14.5 लाख करोड़ डॉलर की है। मानव विकास सूचकांक 0.586 यानी 135वें स्थान पर था, जो अब 0.685 यानी 130वें स्थान पर है। जीवन प्रत्याशा 67.7 साल की थी, जो अब 72 साल की है। साक्षरता दर 74.04% थी, जो अब 80.9% है। गरीबी 29.17% थी जो अब 11.28% है। डिजिटल कनेक्टिविटी 20 करोड़ लोगों तक थी जो अब 95 करोड़ लोगों तक है। लेकिन विपक्ष के सवाल कुछ और हैं। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक संसद के अंदर बाहर राजनीतिक मंचों पर ये सवाल उठाते आए हैं कि RBI के मुताबिक भारतीय परिवारों में शुद्ध वित्तीय बचत GDP का मात्र 5.1% है, जो इतिहास का सबसे निचला स्तर है, जबकि भारतीय परिवारों का कुल कर्ज उनकी आय का 40% तक हो चुका है, जो इतिहास में सबसे अधिक है। सरकारी कर्ज भी GDP के मुकाबले 84.4% तक पहुंच चुका है। देश के सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2 साल के अंदर 4% तक गिरावट आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMII के मुताबिक बेरोजगारी दर 8% तक है, जबकि 20 से 24 साल के 40% शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के मुताबिक देश की 1% आबादी के पास सकल आय का 22.6% हिस्सा है और कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। इस लिहाज से विपक्ष 7.8% की विकास दर को कागजी और बड़े लोगों की विकास दर करार देता है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड काल से लेकर युद्ध तक जैसे वैश्विक संकट और चुनौतियों के बावजूद भारत को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाले देशवासियों के सामने नया आह्वान किया है।
1: आइए खुशियां भी मनाइए, संकल्प कीजिए और संकल्प को सिद्ध करने के लिए मेरे साथ चल पड़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
0: आज तक ब्यूरो।
8: गर्क चाहिए पहले तो 7.8% से पहली तिमाही में जो GDP की ग्रोथ हुई है वो चमचमाती अर्थव्यवस्था का लक्षण है या उसके पीछे कोई आंकड़ों की बाजीगरी है, जिस तरीके से विपक्ष का आरोप लग रहा है और कह रहे हैं कि ये तो रियल GDP ग्रोथ है, लेकिन जो असलियत में GDP ग्रोथ दिखनी चाहिए सड़क पर देश में वो शायद नहीं दिख रही है, ये जो आरोप उनके तरफ से लगाए जा रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे। सिद्धार्थ जराबी मेरे सहयोगी ग्रुप एडिटर बिजनेस टुडे के, वो भी चर्चा में आएंगे। और उसके साथ साथ सुभाष चंद्र गर्ग पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी और उसके साथ साथ कॉमर्स सेक्रेटरी भी रहे, उनसे भी हम इन मुद्दों पर सवाल पूछेंगे। लेकिन शुरुआत प्रदीप भंडारी आप ही से करनी होगी, क्योंकि जो आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि खास करके सुभाष गर्ग बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पहले मैं जरा सवाल भी इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल हमारा यह है कि क्या GDP विकास दर को गलत बताने के पीछे विपक्ष ने जो आधार लिया है वो क्या सही है, क्योंकि विपक्ष के मुताबिक सिर्फ 2.6% से ही GDP की ग्रोथ हुई है और आंकड़ों में कुछ गड़बड़ झाला है। दूसरा सवाल, क्या गलत आधार वर्ष पर तुलना करके GDP पर सवाल उठाना ये सिर्फ सियासत है या कोई और कारण है उसके पीछे। और तीसरा सवाल, क्या वैश्विक चुनौतियों के बीच 7.8% विकास दर से भारत में दुनिया का निवेश क्या और बढ़ेगा, ये अहम सवाल है। शुरुआत करते हैं प्रदीप भंडारी, आरोप आपने सुने, विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल आंकड़े बदल दिए गए हैं, ठीक है, पिछले साल भी पहली तिमाही में 7.8% का GDP ग्रोथ रेट दिखाई दिया था, उसके बाद रिवाइज कर दिए गए आंकड़े, 6.9% हो गया, जो बेस है करंट प्राइसेस के हिसाब से वो बदल दिया गया और जिसके वजह से आज की स्थिति में हम तुलना करें तो महज 2.6% से भारतीय इकोनॉमी बढ़ रही आगे। पहले उस पर तो आपका जवाब चाहेंगे।
9: साहिल जी, ऐसा कंक्लूजन या तो कोई राजनीतिक व्यक्ति ले सकता है या दूसरा व्यक्ति ले सकता है जो अर्थशास्त्र राजनीतिक विवशताओं के कारण कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम्स ऑफ नेशनल अकाउंट 1993 ये कहता है कि हर कंट्री को एवरी 5 ईयर में अपना बेस ईयर को रिवाइज करना चाहिए। भारत 1960-61, 1970-71, 80-81, 93-94 और फिर 1999-2000, 2004-2005, 11-12 और अब 22-23 का बेस ईयर रिवाइज किया है। तो ये बेस ईयर को रिवाइज करना इकोनॉमी की वास्तविकता को दिखाना होता है और हर दुनिया का मुल्क करता है। अब बात करते हैं जो बात की गई 2.8 की, ये सरेआम झूठ है, क्योंकि 86 लाख करोड़ की जो GDP का कैलकुलेशन था वो 11-12 के बेस ईयर के हिसाब से था। जब बेस ईयर रिवाइज हुआ, ये नेचुरल है कि गूगल मैप 2026 में वो नहीं हो सकता तो गूगल मैप 2011 का है, इकोनॉमी में चीजें जुड़ती हैं, वे ऑफ कलेक्शन जुड़ता है, ज्यादा चीजें जुड़ती है, तो 86 लाख करोड़ जो था वो 2011-12 के बेस से था। अब अगर आप मुझे बताइए कि इसमें जुगलबंदी आंकड़ों की होती तो भाई 86 लाख करोड़ के बेस को 80 लाख करोड़ का बेस सरकार क्यों करती कि टोटल जीडीपी जो है वो कम है। 80 लाख करोड़ का जो बेस पिछले साल का है वो 25-26 के हिसाब से किया गया है और उसी हिसाब से आज आपका 89 लाख करोड़ का जीडीपी है। तो आप जीडीपी का बेस ईयर जो है सेम बेस ईयर पे ही जीडीपी का ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे। आप ऐसा नहीं हो सकता कि तरबूज और आम को कैलकुलेट करें, ये बिल्कुल बचकानी बेवकूफी हरकत है। तो ये सरेआम झूठ है। मेरी बात नहीं विश्वास रखते तो दो तीन मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े दिखाता हूं। आज ही जापान के जेएसआरए ने इंडिया के सोवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया है। आईएमएफ जिसको ये कोट करते थे कि सी ग्रेड इंडिया के डेटा को किया, वो भी मैं लेके आया हूं। उसमें ये था कि भाई हिंदुस्तान ने अपने बेस ईयर को रिवाइज नहीं किया, सिर्फ उसी क्वांटिटी को सी था। तो अब जब इंडिया अपने बेस ईयर को रिवाइज कर रहा है तो अब जाके इसको तो इनको स्वागत करना चाहिए। अब अगर ये नहीं विश्वास रखते तो सुनिए, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ओसेड कौन से ऐसा दुनिया का मापदंड क्राइटेरिया जो कह रहा है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं, सब कह रहे हैं। अब डिमांड के पैरामीटर्स देखिए, टू व्हीलर का जो सेल है भारत के इकोनॉमी के अंदर अगर डिमांड नहीं हो रही होती तो 28% से नहीं बढ़ता। थ्री व्हीलर की सेल 16% से नहीं बढ़ती, कमर्शियल व्हीकल की सेल्स 24% से नहीं बढ़ती। अब लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो एवरेज टैक्स कलेक्शन 20% से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं बढ़ सकता और ओवरऑल जीएसटी जो है वो डबल डिजिट में नहीं बढ़ सकता। प्राइवेट कंजम्पशन 15-18% से बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि जो भी एक आंकड़ा को कंक्लूड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है और राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण अपना इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही, पर बेस भी इंप्रूव हुआ है, जॉब्स भी क्रिएट हुए हैं और साथ में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है जो 54.3 के ऊपर है, विच स्पीक्स अबाउट एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो एक्सपेंशन, और 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। एक ग्राफ देखिए साहिल जी, क्योंकि मैं डेटा से बात हमेशा करता हूं, आप काउंटर कर सकते हैं। ये ग्राफ है हिंदुस्तान के अंदर कैसे बैंक्स का एनपीए कम होते गया है, दोनों नेट और ग्रॉस, जिसके कारण जो बैंक्स की लेंडिंग है वो ओवरऑल क्रेडिट की ग्रोथ जो है पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हुई है और वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इकोनॉमी के अंदर पैरामीटर, और इसमें ग्रोथ रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा हुई रादर अर्बन एरियाज के अंदर।
10: तो एक ग्रोथ का मॉडल जो सरकार के तरफ से रखा गया है, अतुल लोंडे पाटिल अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक ग्रोथ का मॉडल सरकार के तरफ से यहां पर रखा गया है अतुल लोंडे पाटिल, दूसरा ग्रोथ का मॉडल जो आपके तरफ से रखने की कोशिश हुई है और उसका आधार जो है वो सुभाष चंद्र गर्ग जो जिनका ये कहना है कि जो बेस ईयर बदला गया और उसके साथ साथ जो करंट प्राइजेस के हिसाब से जीडीपी का कैलकुलेशन किया गया उसके हिसाब से दरअसल ये मामला हुआ, यह उनका ये कहना है। लेकिन आपका एनालिसिस क्या है, आप किस आधार पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इकोनॉमी की ग्रोथ ये 2.6% यहां पर हुई है?
11: ऐसा है
10: टाइमिंग में अतुल लोंडे पाटिल आप हमेशा गड़बड़ी कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी को इस डिबेट में पहले से होना चाहिए था, सवाल आपने उठाए हुए हैं और प्रदीप भंडारी इस डिबेट को शुरू कर रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चलिए अतुल लोंडे आप जवाब दीजिए।
11: नहीं, ऐसा है कि मैंने मुझ पर आईएमएफ ने सवाल उठाए थे तो मैंने कह दिया कि सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों के फर्ज नंबर्स थे, फर्ज नंबर्स पे तो सारी दुनिया सवाल उठा रही है। रघुरामन राजन ये कह रहे हैं कि अगर हमारा इतना जीएफसीएफ इतना है, हमारे वक्त 38% था जीएफसीएफ का नेट एफडीआई में और प्राइवेट का, और इनका जो है वो 11.9% है जो इन्होंने अभी बताया है। अभी सबसे अहम बात तो इसमें ये खड़ी होती है कि अगर इतने ब्लूमबर्ग ने ये कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो रेमिटेंसेस या सर्विसेस के, और इन दोनों मालूम है फॉरेक्स क्या है, वो रेमिटेंसेस से है, और हमारा आयात निर्यात जो है वो आयात निर्यात में 68 बिलियन डॉलर जो है, 68 बिलियन डॉलर और हमारा निर्यात है और आयात हमारा 86.86 अरब डॉलर है, यानी यहां पर भी हमारा व्यापार घाटा जो है वो बड़े पैमाने पर बहुत बढ़ गया है, पहली बात। अब दूसरी बात, हम लोग आ जाते हैं हमारे घर के घरेलू इस पर। अगर हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है तो मैन्युफैक्चरिंग जो हमने मेक इन इंडिया में डिसाइड किया था कि 25% तक जाएगा 17 से, तो फिर वो 11.5% पर क्यों लटक गया है? दूसरी बात, जो रोजगार है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा आउटपुट मिलता है तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन जो है वो बेरोजगारी में दिखता है, लेकिन 17.7% जो है वो ग्रेजुएट जो बच्चे हुए हैं उसमें बेरोजगारी दर दिखता है। सबसे बड़ा बेरोजगारी दर जो है वो आज दिखता है। थोड़ा रुक जाइए ना, इतना आपने बोल लिया, अभी हमारा भी सुन लीजिए। प्राइवेट कंजम्पशन डाउन है, 50% से ज्यादा लोग जो है वो अपना गहना अपना सोना गिरवी रखकर जी रहे हैं, और ये कह रहे हैं ना इतना बड़ा लेंडिंग हुआ है तो मुद्रा लोन में कितना वापसी आया, एनपीए कितना हुआ ये बताओ। कितने बड़े पैमाने पर लोग पर्सनल लोन ले रहे वो बताओ, जिस तरह से बताते ना कि हमारा यूपीआई पेमेंट डिजिटल पेमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन 17 लाख करोड़ की कैश 10 साल में 44 लाख करोड़ तक कैश आ गई है मार्केट में, ये कभी जो है ये बात बताएंगे नहीं है। तो आंकड़े जो है फर्ज है। तो अभी सुभाष चंद्र गर्ग साहब ने क्या कहा कि लास्ट टाइम जो आपने 86 लाख करोड़ जो इसी तिमाही का गिनती किया था जीडीपी का, उसको आपने 80 लाख पे सेटल करके अभी 88.27 लाख जो है उसको, मैं सुभाष चंद्र गर्ग की बात कर रहा हूं जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे आपके ही गवर्नमेंट के, आपके ही गवर्नमेंट के विरल आचार्य से लेकर ये लोग गए हैं ना छोड़कर, रघुरामन राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, ये सब लोग जो छोड़कर गए हैं ना, ये आपके आपने जो काम किया है उसको छोड़कर गए, अरविंद पंगारिया, उर्जित पटेल तो आपके ब्लॉइड बॉय थे, क्यों चले गए, क्यों कंटिंजेंसी फंड निकाला 1971 के क्राइसिस में भी कभी कंटिंजेंसी फंड को हाथ लगा नहीं था, लेकिन इन्होंने वहां से भी जो है 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कैश जो है वो आरबीआई से लिया है डिविडेंड के रूप में। तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, प्राइवेट कंजम्पशन कम, लोग अपना कर्जा जो है कर्जा उठा के जी रहे हैं, पर्सनल लोन पे सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे एक बात बताइए, जब पेट्रोल 72 रुपए था, अरे हालांकि कच्चा तेल जो है वो $145 से $112 पे था जब हमने इनको दिया, गैस सिलेंडर जो है 410 रुपया था, तेल जो है खाने का वो 70 रुपए था, शक्कर जो है वो 34 रुपया थी, सारी चीजें सस्ती थी। 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि इतना बढ़ गया, लेकिन इन्फ्लेशन कम है, क्योंकि आप पेट्रोलियम पावर वगैरह जो है वो बाहर कर देते हो सीपीआई से, इंडेक्सेस में आप
10: कुल मिलाकर। प्रदीप भंडारी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से जब रियल जीडीपी आप दिखाते हैं तो उसमें महंगाई के दर को कम दिखाकर आप जीडीपी का ग्रोथ ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद रियल जीडीपी दिखाया जाता है। दर्शकों को मुझे इस बात को कहना है, तो ये कारण तो नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं महंगाई के आंकड़ों को फज करने की कोशिश हो रही है, जो आरोप उनके तरफ से लगाया जा रहा है।
11: प्रदीप जी एक मिनट बोलिए, अभी एक बात मुझे बताइए, अभी ये अनंत नागेश्वरन है, मेरी जानकारी के मुताबिक देश पे कर्जा है 2,27,000 करोड़, इनका कहना है 2,70,000 करोड़ का कर्जा देश पे हुआ है 55 लाख करोड़ से, रुपया जो है वो 96 के आसपास जो है काम कर रहा है, इसलिए हमारी जो आयात जो है इम्पोर्ट जो है वो महंगा हो रहा है। कौन से पैरामीटर पे ये बात मुझे बताइए कि ये सही है। फिस्कल डेफिसिट में क्या खेला करते हैं कि जो बजटरी डेवलपमेंट होता है उसका खर्चा ही नहीं करते हैं और कहते हैं कि हमने फिस्कल डेफिसिट मैनेज कर लिया। तो माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल के साथ
10: सुभाष चंद्र गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल लोंडे पाटिल, और दूसरी बात यह कि आप समय पे आते तो आपको भी मौका मिलता, आप समय पे आए नहीं। कांग्रेस पार्टी की यही तो समस्या है कि आप समय पे डिबेट में आते नहीं और उसके बाद आप शिकायत करते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ इस पूरे मामले पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इस डिबेट की शुरुआत ही आप ही ने कर दी है, इसीलिए मैं सबसे पहले तो मैं आप ही से समझना चाहूंगा, क्योंकि आपके इस डिबेट को शुरू करने के बाद सरकार के तरफ से भी कुछ क्लैरिफिकेशन आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि दरअसल जीडीपी की ग्रोथ महज 2.6% हुई है, ना कि 7.8% जो एक चमचमाती ग्रोथ की तरह देखा जा रहा है।
12: देखिए, मेरा समझना बड़ा सिंपल है, मेरा जो मैंने लिखित में भी आज अपने एक लेख में भी डाल दिया है, सरकार कैलकुलेट करती है जीडीपी को करंट प्राइसेस पे, पहले नॉमिनल प्राइसेस पे, जो रियल जीडीपी जिसको 7.8% आप बता रहे हैं, और सरकार ने भी कल 31 तारीख को बताया, वो डिराइव करते हैं हम करंट प्राइसेस से। तो पहले कैलकुलेट होती है करंट प्राइसेस की जीडीपी वो, और ग्रोथ जो है वो इस बात पे है कि पिछले साल कितनी जीडीपी थी और इस बार कितनी थी, जितनी बढ़ गई वो ग्रोथ है, ठीक है। तो पिछले साल जब 30 अगस्त को सरकार ने आंकड़े जारी किए थे तो ये कहा कि हमारी करंट प्राइसेस पे पहले क्वार्टर की जीडीपी जो है वो 86 लाख करोड़ है। अभी जो आंकड़े जारी किए हैं इस पहले क्वार्टर के लिए, उसमें ये कहा इस क्वार्टर की तो है 88 लाख करोड़ और पिछले साल के क्वार्टर की है 80 लाख करोड़, 86 से घटा के 80 लाख करोड़ कर दिया। अब करंट प्राइसेस पे किस तरह से एक क्वार्टर की जीडीपी 6 लाख करोड़ कम हो सकती है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी के पास। तो अगर आप 86 लाख करोड़ जो सरकार ने पिछले बार कहा उससे निकालेंगे तो आपकी ग्रोथ 2.6% रहती है नॉमिनल, और करीब 2.5% इन्फ्लेशन है उसको आप हटा देते हैं तो आपकी रियल ग्रोथ जो है वो करीब करीब 0% आ जाती है। ये बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, सारे के सारे सरकार के डेटा हैं, मैं अपनी तरफ से कोई अनुमान नहीं लगा रहा हूँ, कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, केवल उसी डेटा के आधार पर जो निकल के आ रहा है वो बता रहा।
10: एक सवाल इस बात को लेकर, सरकार का जो क्लैरिफिकेशन है इस पूरे मामले को लेकर, वो ये है कि आप जो बेस ईयर है उसमें कोई गड़बड़ी कर रहे हैं। दरअसल उनका ये कहना है कि आप 80 लाख करोड़ का जो कैलकुलेशन है उसके लिए जो 2022-23 का बेस ईयर पकड़ा गया, क्योंकि हर 10 साल में बेस ईयर चेंज किया जाता है करंट प्राइसेस को कैलकुलेट करने के लिए, तो जो नई सीरीज का बेस ईयर है वो 2022-23 का है। इस साल के भी जो आंकड़े पहली तिमाही के जो कैलकुलेट किए गए वो 2022-23 के बेस ईयर के आधार पर कैलकुलेट किए गए। लेकिन 80 लाख करोड़ तो आप पकड़ रहे हैं 2022-23 के बेस ईयर के आधार पे, इस साल के आंकड़े जो पकड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं जो 2011-12 का जो बेस ईयर पहले था उसके आधार पर, यानी कुल मिलाकर जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि एप्पल और ऑरेंज एक तरीके से आप तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। तो ये बेस ईयर की गड़बड़ी क्या है अगर ये बात सही है तो? और गोविंद वल्लभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सर पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो सरकार की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन है।
12: बेस ईयर का कंफ्यूजन कभी भी नहीं करना चाहिए। बेस ईयर का मतलब ज्यादा रियल जीडीपी के निकालने से होता है, क्योंकि आप उस साल के उस बेस ईयर से जो इन्फ्लेशन हो गया है उससे आप नॉमिनल जीडीपी को घटाते हैं। तो आप 2011-12 पे करते थे तो उस साल से लेके तब तक का इन्फ्लेशन हुआ उसके हिसाब से आप घटा देते हैं। आप 2022-23 से कर रहे हैं तो 2023 के बाद का इन्फ्लेशन जो है उसके हिसाब से घटा देते हैं। करंट प्राइसेस पे सामान्यतः कोई परिवर्तन फर्क नहीं आना चाहिए। करंट प्राइसेस ये कि उस समय जो प्रेवलेंट प्राइसेस थी उसका बेस ईयर से कोई लेना देना नहीं है। सो 25-26 की जो जीडीपी थी करंट प्राइसेस पे उसका बेस ईयर से कोई लेना देना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। सो ये बताना चाहिए कि करंट प्राइसेस पे पुराने सिस्टम में 86 लाख करोड़ कैलकुलेट किया और नए सिस्टम में आपने 80 लाख करोड़ कर दिया, तो कहाँ बदलाव आया, क्या चीज़ कम हो गई, कहाँ पे फर्क आया, क्या ये किसी पहले की त्रुटि के कारण से गड़बड़ हुई या किसी ने पहले जानबूझ के जीडीपी बढ़ा दी थी इसलिए आपने कम की, क्या कारण था? ये जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा कि 86 लाख करोड़ से 80 लाख करोड़ कैसे हो गया करंट प्राइसेस पे सेम प्राइसेस, तब तक आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे मेरी अपनी समझ के।
10: गौरव वल्लभ, अगर आप कन्विंस करा पाए तो, हमारे साथ गौरव वल्लभ भी जुड़ रहे हैं, आप तो इकोनॉमी समझते हैं, जो सवाल सुभाष चंद्र जी उठा रहे हैं यहां पर वही सवाल का जवाब अगर आपसे हम एक्सपेक्ट करें गौरव वल्लभ जी, हालांकि इस वक्त थोड़ी स्थिति अलग है, लेकिन गौरव वल्लभ जी अगर आपने सवाल सुना होगा उनका, जो एक्सप्लेनेशन उनके तरफ से रखा गया है, आप कुछ इस बारे में प्रकाश डाल पाए इस पर?
13: मैंने सुना सुभाष जी की बात को, बिल्कुल सरल शब्दों में बताता हूँ, जो सुभाष जी 86 लाख करोड़ रुपए का डाटा कोट कर रहे हैं वो 11-12 के बेस ईयर पे है। अब आप ये बताइए कि एक मैं न्यूमरेटर में तो ले लूं मेजरमेंट इंचेस में और डिनोमिनेटर में ले लूं फीट्स में, तो और फिर मैं कहूं कि ये वृद्धि ये हो गई है, तो आपको एक किसी भी चीज को आपको ग्रोथ या उसके में डिक्लाइन मापना है तो उसका बेस तो एक ही रखना पड़ेगा। अब आप कह रहे हो कि मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में तो जीडीपी ग्रोथ का नंबर ले लूंगा, वो ले लूंगा मैं करंट बेस ईयर पे 81 लाख करोड़, और डिनोमिनेटर में मैं लूंगा वो मैं लूंगा 11-12 के बेस ईयर का, तो ये तो एक एक एक फैक्चुअली रॉन्ग है। मैं सुभाष जी से मेरा बड़ा अच्छा परिचय है और मैं इनकी बड़ी इज्जत भी करता हूँ, पर ये इंटेलेक्चुअली भी रॉन्ग है और इकोनॉमिकली भी रॉन्ग है। फिर हम बेस ईयर, सुभाष जी आपके बात को आगे ले में, तो फिर हम बेस ईयर चेंज ही क्यों करें? आप कह रहे हो बेस ईयर से फर्क ही नहीं पड़ता, देन वाई वी आर चेंजिंग द बेस ईयर? बेस ईयर चेंज इसलिए करते हैं, एक मिनट सर, इसलिए करते हैं कि हमारी इकोनॉमी है वो उसकी रियलिटी आ पाए, इकोनॉमी क्या क्या फोकस कर रही है इकोनॉमी की जो बास्केट है वो करंट इकोनॉमिक सिनारियो के हिसाब से बने, जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है उसको लेटेस्ट नंबर्स पे लाया जाए, इसलिए हम चेंज करते हैं। तो अब आप एक नंबर तो ले लेते हो 22-23 के बेस ईयर पे, एक नंबर ले लेते हो 11-12 के बेस ईयर पे। अब प्रॉब्लम क्या है सुभाष जी कि 11-12 के बेस ईयर का इस क्वार्टर का नंबर नहीं है, अदरवाइज आपका आर्ग्यूमेंट वहीं फ्यूज हो जाता क्योंकि वो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया वो बेस ईयर। तो अभी हमारे पास 22-23 का बेस ईयर है जिसको हम 88.3 लाख करोड़ है और करंट जो हमारी सीरीज है उस पे 80 लाख करोड़ पिछले क्वार्टर की जीडीपी है, तो वो निकल के आती है लगभग 10.3% जो कि जीडीपी है। अब एक बात और मैं आपके दर्शकों को, सुभाष जी को तो पता होगा ये जीडीपी का जो कैलकुलेशन है ये लगातार होता है। अभी फर्स्ट रिवाइज्ड एडवांस एस्टिमेट आया, नवंबर में सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आएगा, फरवरी 2027 में पी आएगा, फरवरी 2028 में रिवाइज एस्टिमेट आएगा और फरवरी 2029 में इस क्वार्टर का फाइनल आरई निकल के आएगा। तो ये कहना कि भाई बेस ईयर से इंपैक्ट नहीं पड़ता, मेरी आर्थिक समझ नहीं है। और जितना मेरी समझ है कि बेस ईयर से अमाउंट की क्वांटिटी का फर्क पड़ता है और वो फर्क हमको यहाँ पर 10.3 और 2.6% जो सुभाष जी ने कैलकुलेट किया उसमें अंतर आ रहा है।
12: देखिए मैं बड़ा
10: सुभाष जी आप कुछ कहना चाह रहे
12: हैं? हाँ, सो वही गोविंद वल्लभ जी भी अनफॉर्चुनेटली वो कंफ्यूजन कर रहे हैं कि बेस ईयर का इफेक्ट रियल जीडीपी कैलकुलेशन में पड़ता है,
10: गौरव वल्लभ
12: करंट प्राइसेस में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। करंट प्राइसेस पे केवल फर्क पड़ता है अगर कंपोजिशन ऑफ बास्केट या कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स आपने बदल दिए हैं तो उसका फर्क पड़ता है। आप पहले मान लीजिए कंप्यूटर्स नहीं लेते थे, आप कंप्यूटर्स लेने लग गए हैं। नॉर्मली जीडीपी की सभी चीज़ों का होता है, पूरी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो कंपोजिशन चेंज करने से भी कोई फर्क सामान्यतः नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर फर्क थोड़ा बहुत भी पड़ जाए तो करंट प्राइसेस पे केवल उसी चीज पे फर्क पड़ता है। आप गोविंद वल्लभ जी तो इन चीज़ों को समझते हैं, आप गौरव वल्लभ जी तो इस चीज को काफी समझते हैं। आप IMF के करंट प्राइसेस पे डॉलर करंट डॉलर प्राइसेस पे डेटा उठा के देख लीजिए, 1945 से लेके आज तक का अनचेंज डेटा है, दैट डजंट चेंज। केवल रियल कैलकुलेशन करते समय चूंकि आपको इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेना पड़ता है तो अगर आपका 2011-12 का बेस है तो उस हिसाब से चेंज हो जाता है, अब 2021-22-23 ले लिया तो उसके हिसाब से चला जाता है। करंट प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होता। तो आप काइंडली सरकार से ये पूछिए कि 86 लाख करोड़ से 80 लाख करोड़ करंट प्राइसेस पे कैसे बदला।
13: मैं उसका उत्तर दे देता हूँ, हालांकि वो कंक्रीट जानकारी जब तक वो पूरी बास्केट नहीं आएगी वो कंक्रीट पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी नहीं दे, पर मैं इनको ब्रॉडली इनका उत्तर दे दूं कि जब भी हम बेस ईयर चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का जो नंबर्स हैं उनका वेटेज है वो भी चेंज होता है। अब सुभाष जी 11-12 में AI का कंपोजिशन नहीं था खर्चे में जीडीपी की कैलकुलेशन में, या हमारा डाटा कंजम्पशन का वेटेज नहीं था जो 22-23 में आया है, तो अब वो 22-23 में आया है उससे जीडीपी रिवाइज हुई है। तो इसमें मुझे लगता नहीं सुभाष जी कि ये इतनी छोटी सी चीज आपकी समझ के बाहर है। आपको जरूर इस चीज की समझ है कि 80 लाख करोड़ कैसे हुआ 86 लाख करोड़ का, क्योंकि जब बेस ईयर चेंज होता है तो जो गुड्स और सर्विसेज का वेटेज चेंज होता है उनका कंपोजिशन चेंज होता है, विच और वो इस तरह से करते हैं कि वो एक करंट इकोनॉमिक इश्यू को रिफ्लेक्ट करे, करंट इकोनॉमिक सिनेरियो को रिफ्लेक्ट करे।
10: गौरव वल्लभ जी और सुभाष चंद्रगर सर मैं, क्योंकि देखिए आप दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, गौरव वल्लभ तो फिलहाल प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य भी है, आप पूर्व वित्तीय सचिव रह चुके हैं, वित्त सचिव रह चुके हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं, वर्ल्ड बैंक में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इसलिए इकोनॉमिक डिबेट तो बढ़िया होगा। लेकिन जहां तक आम आदमी की भाषा में जो सुभाष चंद्र गर्ग कहने की कोशिश कर रहे हैं गौरव वल्लभ जी, जो मैं समझ रहा हूं वो ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, आंकड़े तो भले बहुत अच्छे लग रहे हैं, बेस ईयर चेंज हो गया है उसके हिसाब से आपने आंकड़े कैलकुलेट किए हुए हैं। फिलहाल तो सारी रेटिंग एजेंसियां उस आंकड़ों को मान रही है, भारत की वाहवाही भी कर रही है, लेकिन उसका जो रियल इंपैक्ट जमीन पर दिखना चाहिए वो उस तरीके से नहीं दिख रहा है। इसीलिए सुभाष चंद्र गर्ग उस भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे जाने पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहां तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मसलन मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, खास करके जीडीपी के ग्रोथ में यह दिखाया गया है कि निजी निवेश जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, क्योंकि पिछली वित्तीय वर्ष में भी और इस साल के पहली तिमाही में भी जो प्राइवेट कॉरपोरेट्स हैं उनके मुनाफे तो बढ़े हैं, लेकिन जिस तरीके से उसका असर जॉब ग्रोथ में या किसी की आमदनी की बढ़ने में होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है।
13: इसका उत्तर
10: ये सबसे बड़ी बात है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर इस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। ये मेरे ख्याल से सुभाष चंद्र गर्ग कहने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा उनके पास चलूंगा।
13: देखिए साहिल जी, अगर हम आंकड़े देखें तो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का, कि भाई इकोनॉमी में निवेश कितना हो। तो इकोनॉमी में निवेश 11.9% 11.9% हुआ। प्राइवेट कंजम्पशन है जो 7.1% से बढ़ा। रियल एक्सपोर्ट्स है देश में वो 12% से बढ़े। और रही बात रोजगार की, एक बात पे मैं सहमत हूँ कि रोजगार के नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट द नेक्स्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नंबर्स में तो जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है बेरोजगारी का, भले ही वो शिक्षित में ले लो, विमेन पार्टिसिपेशन में ले लो, रियल रियल वेजेस के रूप में ले लो, जो ट्रेंड है वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव ट्रेंड है। जैसे जो मैं आपको 2-3 डेटा में देना चाहूंगा कि हम ये माने कि जो विमेन्स पार्टिसिपेशन है वो 41.7% पर हुआ। 2015 और 2024 के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का KLEMS डाटा है, वो ये कहता है कि 17.2 करोड़ नए रोजगार का सृजन हुआ। सो क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज देयर, वो बढ़ रही है, पर अब नेक्स्ट लेवल पे वेज इंक्रीज और क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे काम करना है, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। पर ये कहना कि भाई जो और नंबर्स है वो इस 7.8% को सपोर्ट नहीं कर रहे, सारे रियल टाइम नंबर्स इस 7.8% को सपोर्ट कर रहे हैं, भले एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो, भले कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रोथ हो, प्राइवेट कंजम्पशन में ग्रोथ हो, ये सारे नंबर्स 7.8% को सपोर्ट कर रहे हैं।
10: ठीक है, गौरव वल्लभ जी एक पिक्चर दिखा रहे हैं यहां पर, लेकिन सुभाष चंद्र गर्ग जी आरबीआई का ही डेटा कुछ और भी कहता है। आरबीआई का ही डेटा यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहा है कि वित्तीय बचत भारतीय परिवारों में मात्र 5.1% रह गई है, जो सबसे लोएस्ट मानी जा रही है आज की स्थिति में। उसके साथ साथ भारतीय परिवारों पर कुल कर्ज की उनकी आय का 40% तक हो चुका है, जो इतिहास में सबसे अधिक है। यह भी एक मामला वहां पर बढ़ रहा है। सरकारी कर्ज भी जीडीपी के मुकाबले 84.4% तक पहुंच चुका है। देश के सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2 साल के अंदर 4% तक गिरावट आई, और उसके कई सारे कारण हम कई बार उसके गिनवा भी चुके हैं। सीएमआई के मुताबिक

0: कहने की कोशिश कर रहे हैं और जो आंकड़े मैंने रखे हैं, क्या आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या, और उसका असर क्या आप देखेंगे?
1: सिर्फ दो बातें, एक तो पहले उस थोड़ी सी चीज को भी और क्लियर कर लें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, कंजम्पशन बड़ा है, इसमें भी अगर आप पिछले साल सरकार ने जो आंकड़े दिए थे कंजम्पशन के करंट प्राइसेस पे, उसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कंजम्पशन में -5% की ग्रोथ है। सो ये सारे बड़े इम्प्लीकेशंस हैं इन इन चेंजेस के, 86 से 80 लाख के करोड़ के, इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए, उसका बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन है। अब जो आप इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, देखिए आपने बहुत सारे आंकड़े एक दिए, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जो इकोनॉमी की जनरल हालत है, रुपया इतना गिर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत से बाहर जा रहे हैं, कोई नया टेक्नोलॉजिकल स्पेस जहाँ पे ग्रोथ फ्यूचर में आने वाली है, चाहे आप सेमीकंडक्टर्स, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी में हम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से दुनिया बदल रही है उस स्पीड से हम कहाँ पे हैं, उसकी टेक्नोलॉजीज हमारे पास है या नहीं। और आपने अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े दिए, सरकार के खुद के CMIE के आंकड़े तो बिल्कुल अलग हैं ही, सरकार के खुद के आंकड़े 24-25 की जो लेटेस्ट आई है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा है, जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है उसकी हालत ख़राब हो रही है, 4 में से 1 आदमी नीट में है जो ना एम्प्लॉयमेंट में है, ना एजुकेशन में है, ना ट्रेनिंग में है, और हालत जो है जनरल वेजेस, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी छापा कि जो हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनकी जो जनरल वेजेस है वो नॉमिनल रूप में पिछले 2 साल में कम हो गई। सो ये सारी स्थिति बताती है कि दे इज ए क्राइसिस इन द कंट्री इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, ये जो सब बढ़िया है अच्छा है वो स्थिति नहीं है, देर आर सीरियस प्रॉब्लम। अगर आप इन सीरियस प्रॉब्लम्स को डिस्पैशनेटली एनालिसिस करके देख के और उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स लेंगे, अभी देखिए हमको कितनी मजबूरी में ये FCNRB की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के 6-6, 6.5-7% पे हमें दुनिया भर से लेना, 31 तारीख को ख़त्म हो गई है स्कीम, तो आपने देखा कि FCNRB की रेट घटा के 3% के वापस ले आए हैं, हमने डबल द रेट पे कर्जा लिया दुनिया से ताकि हमारे रिजर्व्स जो हैं वो थोड़े बढ़ पाएँ, उसका भी रुपी की रेट पे कोई ख़ास असर नहीं है। ये सब जो चीज़ें बताती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो, हमारी एक्सचेंज रेट हो, इसमें ये सब सिम्टम्स हैं कि क्राइसिस है। ये जो नीट का लेके जो एजिटेशन हुआ,
2: जी देखिए एक एक पॉइंट पे उत्तर देते हैं। सुभाष जी ने कहा फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं, तो सुभाष जी 2.5 लाख करोड़ गए तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 8.5 लाख करोड़ ऐड किया है, ये पोर्टफोलियो रोटेशन हो रहा है मार्केट में। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस क्यों पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, द रीजंस आर नोन टू यू, आपको पता है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। फिर आपने कहा वेजेस की बात करी,
0: ग्रोथ भी नहीं है ना,
2: ग्रोथ नहीं है
0: ये भी तो कारण दिया जा रहा है।
2: अरे साहिल जी, 2.5 लाख करोड़ अगर FIIs बाहर गए हैं पैसा लेके, तो 8.5 लाख करोड़ का 2025-26 में एडिशनल निवेश हुआ है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। इसको कहते हैं दिस इज पोर्टफोलियो रोटेशन नॉट इवापोरेशन, पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इवापोरेट हो रहा है। दूसरी बात, आपने रियल वेजेस की बात करी, रियल वेजेस की बात पॉइंट बाय पॉइंट करते हैं। रियल वेजेस में आपने लास्ट 2 साल का डाटा आपने कोट किया, आपने पिछले 10 साल में क्या बढ़ोतरी हुई रियल वेजेस में, सितंबर 2017 में रूरल कैजुअल अर्निंग थी ₹294, आज जब हम ये शो कर रहे हैं जब हमारी रूरल कैजुअल अर्निंग है ₹433, लगभग 50% का जंप। सितंबर 2017 में रेगुलर मंथली सैलरी थी वो ऑन एन एवरेज ₹16,538 थी, आज जब हम ये बात कर रहे हैं वो लगभग ₹21,500। तो ये कहना कि कुछ नहीं हो रहा, ये FDIs बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट नंबर, मैं ये कह रहा हूं कि ट्रेंड इज फेवरेबल, बट वी हैव टू अचीव द नेक्स्ट लेवल. हमने नंबर्स को बढ़ाया एम्प्लॉयमेंट का, पर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, दैट इज द समथिंग विच वी हैव टू वर्क ऑन. आपने एजुकेटेड लोगों
0: के नीति आयोग की रिपोर्ट पे भी तो कहा गया था गौरव वल्लभ जी, जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट

0: आप बात कर रहे हैं वो तो उसका जिक्र तो नीति आयोग की रिपोर्ट पे भी कहा गया था,
1: वो भी बात
0: उनका भी ये कहना है कि जिस तरीके से क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, ये भी तो उनके तरफ से कहा गया था।
1: वो मैं भी यही बोल रहा हूँ साहिल जी। और फिर एक आंकड़ा आपने 9 करोड़ नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग का दिया, तो उसमें से 90% तो महिलाएं हैं जो हाउस होल्ड काम कर रही है, जो फैमिली को सपोर्ट कर रही है। तो ये कहना कि साहब 9 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी एक गलत व्यू है। उस 9 करोड़ में से 90% महिलाएं हैं जो कि हाउस होल्ड हैंडहोल्ड काम कर रही है। अब आप पूछे कि क्या करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ जॉब आई एग्री, विमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी आई एग्री, और ग्रोथ के इंजन और सपोर्ट करने आई एग्री, पर ये कहना कि 7.8 नहीं साहब हम तो 0% पे है, दिस इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी सुभाष जी।
2: सॉरी आई थिंक
0: सुभाष जी
2: मैं पर्सनल कोई कमेंट आप पे नहीं करता, आप क्यों कोई बात कह रहे हैं तो आप भी
1: नहीं, मैं आपसे
2: आप भी प्लीज पर्सनली
1: नहीं, नो पर्सनल पर आप यू हैव टू गिव द रीजन।
2: इट्स नॉट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, इट्स एक्चुअली द ऑनेस्टी ऑफ द इंटेलेक्चुअलिज्म। समबडी नीड टू रेज दीज इश्यूज, we need people in this country
1: now
2: to raise
1: these issues. I only respect you, I don't want to say anything more to you, I respect you,
2: thank you.
0: So let's नहीं, लेकिन वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं गौरव वल्लभ जी कि किसी ना नहीं नहीं किसी ना किसी को तो किसी ना किसी को तो ये मुद्दे उठाने चाहिए, सिर्फ सिर्फ सब कुछ चंगा सी कह के तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये बात भी ठीक है कि नंबर्स जो दिख रहे हैं वो इंटरनेशनल एजेंसीज उसको मानने को तैयार है, लेकिन आज की स्थिति में जिस इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने दिखाए थे कि आज की स्थिति में भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है इस देश में, यानी कहीं ना कहीं तो इस देश की ट्रैजेक्टरी ठीक जगह पर है, लेकिन अभी भी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो देश का नंबर 120 के पीछे चला जाता है। ये भी तो सच्चाई आज की स्थिति में है जो क्वालिटी की बात की जा रही है।
1: मैं साहिल जी एक बात आपको कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ कि 7.8% इज ए रीजन ऑफ आवर कॉन्फिडेंस नॉट कॉम्प्लेसेंसी। मैं ये कह ही नहीं रहा कि भैया कुछ नहीं करना है, पर ये कहना कि हम 0% पे ग्रो कर रहे हैं, I don't take this argument। ये कहना कि साहब हम एक डाटा लेंगे एक सीरीज का, एक डाटा लेंगे दूसरी सीरीज का, I don't agree on this। ये कहना कि all sectors of economy मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, negative trend है, I don't agree on this। हमें we have to move ahead with confidence, not with complacency। And this 7.8% is a data of our confidence। मैं ये नहीं कह रहा, आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना कि सब चंगासी, मैं ये कह रहा हूं ट्रेंड चंगासी।
2: मुझे तो सिर्फ इतना बात कहना है कि
0: ट्रेंड चंगासी मैं उसी से जोड़कर सुभाष चंद्रगर जी मैं सवाल उसमें ऐड कर देता हूं, आप उसका जवाब दीजिए, मैं सिर्फ सवाल ऐड कर देता हूं। आमतौर पर जो 7.8% का ग्रोथ रेट जो दिखाई दे रहा है उसके चार प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। एक तो पहली बार मतलब कई सालों तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लड़खड़ाता रहा, लेकिन इस बार 9.2% से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, यह आंकड़ों में दिखाने की कोशिश हुई है। मजबूत घरेलू उपभोक्ता यानी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो पूरी तरीके से मजबूती पर है, ये एक कारण उसके लिए बताया गया है। सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है वो उसका स्तर उन्होंने अभी तक कायम रखा हुआ है, ये कारण उसमें उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो आईटी सेवा और वित्तीय सेवा यानी फाइनेंशियल सर्विसेज है और आईटी सेक्टर है उसने भी अपने ग्रोथ का इंजन बना के रखा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि कम से कम कुछ चीजें ठीक हो रही है, हमारी ट्रैजेक्टरी ठीक तरीके से जा रही है? हम 2014 में 10 नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज 6 नंबर तक पहुंच गए, 5वें नंबर पर जा रहे हैं, तो ट्रैजेक्टरी के हिसाब से सब कुछ ठीक है, लेकिन फाइन ट्यूनिंग जो है उसकी आपको अपेक्षा है कुल मिलाकर यह मानकर चले?
2: ये देखिए, आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का कहा वो सही है, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार बनाए रख रही है, उसको खर्च ज्यादा कर रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी पे मैं नहीं जाता कि आप BSNL में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका क्या इकोनॉमी में फर्क पड़ता है नहीं, बट इन नंबर्स ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बना हुआ है, उसी के कारण से कैपेक्स की जो इंक्रीज है जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की उसमें वृद्धि आती है। फाइनेंशियल सर्विसेज में फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट लोन्स बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट्स बढ़ रही हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में काफ़ी सॉर्ट ऑफ डायनामिज्म है, इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए, इट्स अ फैक्ट। लेकिन जो बाकी दो चीज़ों पे आपने कहा कि कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। मैं ये गौरव वल्लभ जी को कहता हूँ कि इस पे आप ज़रूर देखें, इसको पूछिए क्यों हो रहा है ये। वही अगर आप करंट प्राइसेस में, एक बात, आपके व्यू डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन करंट प्राइसेस में चाहे पुरानी सीरीज हो चाहे नई सीरीज हो, उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। 6 लाख करोड़ का फर्क बहुत ज्यादा है, और उसमें दो मुद्दों पे जो अभी आपने उठा है, सबसे ज्यादा फर्क मैन्युफैक्चरिंग में और कंजम्पशन में है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में आप पुराने 86 लाख करोड़ के का डिविजन लेते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ इस साल -5% हो जाती है। इसी तरह से 5 से भी ज़्यादा परसेंट, 7 या 8% माइनस हो जाती है, और कंजम्पशन की ग्रोथ जो है वो आपके -5%। तो कंजम्पशन पे कोई ग्रोथ नहीं है। क्या चीज़ थी कि 2026-25 में हम ये कह रहे थे कि देश में इतना कंजम्पशन है, और आज हम कह रहे हैं कि उससे कम कंजम्पशन करंट प्राइसेस पे हो गया। सो दीज आर वेरी सीरियस सिचुएशन। सो पार देखिए, पिक्चर कभी भी एक कलर की नहीं हो सकती है। ये देश की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसमें हजारों सेक्टर्स, हजारों और करोड़ों लोग बिजनेसेस काम करते हैं, ये करते हैं, और सभी जगह खराब स्थिति होगी ऐसा कभी नहीं हो सकता, या सभी जगह अच्छी स्थिति होगी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एम्प्लॉयमेंट की बात बीच में आई, अगर आप ये देखें कि देश में ग्रोथ जो सरकारी आंकड़े के हिसाब से, हमारे PLFS के हिसाब से जो ग्रोथ हो रही है, वो कहाँ हो रही है। एक कैटेगरी आपको मालूम होगा, एक कैटेगरी है अनपेड लेबर इन फैमिली एंटरप्राइज, मतलब वो मजदूर देश के जिनको कोई वेजेस नहीं मिलती है, वो जो कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है। दूसरी वृद्धि हो रही है कृषि कृषि में, जहाँ पे आपको मजदूरों की ज़रूरत नहीं है। 45% देश का, अगर मजदूर आज भी बढ़े हुए एम्प्लॉयमेंट का खेती में लगा हुआ है, तो ये देश के लिए उचित बात नहीं है। देश में खेती में 5-7% से ज्यादा
0: गौरव
2: लोग
0: वल्लभ
2: नहीं लगे।
1: जी, साहिल जी, दो मुद्दे आपने उठाए और सुभाष जी ने भी उसका उत्तर दिया। एक तो मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि अब हम कह रहे हैं कि भाई अर्लियर हमारी सर्विस इंडस्ट्री ग्रोथ थी, अब सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों 9.2 और 10% से ग्रो कर रहे हैं। उसका कारण बताता हूँ सुभाष जी। मेन पहला कारण है इलेक्ट्रॉनिक्स। मैन्युफैक्चरिंग में 1.9 लाख करोड़, लगभग 2 लाख करोड़ का 2015 में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन था, जो आज बढ़ के 13.5 लाख करोड़ रुपया है। उसका दूसरा कारण है मोबाइल फोन। 2015 में हमारा जो मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग थी वो 18,000 करोड़ थी, जो आज बढ़ के 6.5 लाख करोड़ रुपया है। और एक्सपोर्ट भी उस प्रपोर्शन में हमारे बढ़े हैं। तो हमारे जो हाई एंड प्रिसाइज इंजीनियरिंग बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ रहे। फिर आपने दूसरा आंकड़ा उठाया, वो था जॉब्स का आंकड़ा आपने रखा, और मैं जॉब्स के आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं कि जो PLFS का आंकड़ा है उसमें यूथ एम्प्लॉयमेंट हो या एजुकेटेड लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो, दोनों में ट्रेंड है जो पॉजिटिव जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा स्थिति इज मतलब देर इज नो प्रॉब्लम, मैं ये कह रहा हूं कि चीजें सुधार की तरफ
0: तो
1: है।
0: हम ट्रेंड देखे या नंबर देखे, गौरव
1: ट्रेंड भी
0: वल्लभ जी,
1: देखना
0: ट्रेंड
1: है
0: देखे या नंबर देखे?
1: साहिल जी, ट्रेंड भी देखना है, नंबर भी देखना है, और पेसिमिज्म से बाहर भी निकलना है। ये कहना कि मैन्युफैक्चरिंग -5, आई डोंट एग्री। ये
0: ठीक
1: कहना
0: है,
1: रियल जीडीपी जीरो,
0: ठीक
1: आई
0: है,
1: डोंट एग्री। ये कहना दो में, अब साहिल जी एक
0: ये
1: बिल्कुल सिंपल सा लास्ट सेंटेंस कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि आप एक डिनोमिनेटर में आप किसी चीज का ग्रोथ निकाल रहे हो तो कुछ डिनोमिनेटर में आएगा, कुछ न्यूमरेटर में आएगा। न्यूमरेटर में यूनिट अलग और डिनोमिनेटर में यूनिट अलग, और फिर आप ग्रोथ पे कमेंट करो। आई
0: ठीक है
1: स्टैटिस्टिकली रॉन्ग, मैथमेटिकली रॉन्ग,
2: गौरव,
1: इकोनॉमिकली रॉन्ग?
2: ये आर्गुमेंट तो
0: ठीक है,
2: बिल्कुल ही
0: चलिए
2: गलत है।
0: देखिए
2: करंट
0: नंबर्स
2: प्राइसेस
0: पे
2: में
0: तो ये
2: सेम
0: चर्चा,
2: डिनोमिनेटर है और सेम न्यूमरेटर है, करंट
1: अरे
2: प्राइसेस में कोई चेंज
0: नंबर्स
2: नहीं
0: पे
2: है।
0: चर्चा के
1: नहीं,
0: बजाय
1: मैंने आपको कहा
0: कोशिश
1: कि
0: मेरी ये
1: नॉमिनल
0: थी
1: ग्रोथ
0: कि
1: है।
0: किसी ना किसी तरीके से ये जीडीपी ग्रोथ को ट्रांसलेट किया जाए असली नंबर्स में। लोगों को क्या फील होता है, लोगों को क्या ये महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं गौरव वल्लभ यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेंड उस तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। ये ट्रेंड कहां तक जाएगा इस पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, काफी दिनों बाद एक इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर एक मीनिंगफुल बहस यहां पर हो पाई, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: ब्रज की भूमि से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पंचायत आज तक मथुरा, 3 सितंबर सिर्फ आज तक पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मंच एसईओ का था, सामने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन मौजूद थे और ठीक बगल में बैठे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कूटनीतिक प्रहार किया जिसने इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का हथियार बनाते हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं, उन्हें सख्त संदेश मिलना चाहिए। आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं हो सकता। ये बयान किसी देश का नाम लिए बिना दिया गया, लेकिन इशारा साफ था कि निशाने पर पाकिस्तान ही है। ये पाकिस्तान के लिए किसी बड़े कूटनीतिक सदमे से कम नहीं है। पाकिस्तान अगले साल यानी 2027 में एसईओ समिट की मेजबानी करने वाला है। एसईओ समिट हर साल एक नए सदस्य देश में होता है और वही इसकी अध्यक्षता करता है। अगली मीटिंग पाकिस्तान में होगी और वो इसकी अध्यक्षता संभालने का जश्न मनाने की तैयारी में था, लेकिन कमान हाथ में आने से ठीक पहले भारत ने दुनिया के सामने साफ कर दिया कि जो देश खुद आतंकवाद का गढ़ है, उसकी बातों पर अब कोई दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, सिर्फ एक्शन रिएक्शन वाली सोच तक सीमित रहने के बजाय आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करें, जिसमें फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित ठिकाने शामिल हैं। ये प्रहार सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं था, बल्कि उसके सबसे बड़े पैरोकार चीन पर भी था। चीन अक्सर यूएन में पाकिस्तानी आतंकियों का बचाव करता आया है। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग की मौजूदगी में ये बता दिया कि आतंकियों को ढाल देने वाले देश भी उतने ही गुनहगार हैं जितना कि उन्हें पालने वाला पाकिस्तान। बिश्केक की धरती से भारत ने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि एक्शन रिएक्शन का दौर खत्म हो चुका है। अब निशाना सिर्फ आतंकियों पर नहीं बल्कि आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम पर होगा। शहबाज शरीफ देखते रह गए और भारत ने एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की दुखती रग दबा दी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। ऑपरेशन सिंदूर में संभाली थी वेस्टर्न कमांड की कमान। तीन ट्रस्टी के नामों का भी ऐलान। चंदा चोरी विवाद पर अखिलेश यादव ने सरकार को फिर घेरा, कहा बड़े नामों पर एक्शन नहीं। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले राम मंदिर में शंकराचार्य नियुक्त करें धर्माचार्य। इंदौर में 12 के बदले अब 19 सितंबर को होगा राहुल गांधी का कार्यक्रम। छात्रों की गूंज, कांग्रेस का आरोप, प्रशासन ने नहीं दी स्टेडियम की इजाजत, प्रदर्शन की चेतावनी। दिल्ली एसआईआर के ड्राफ्ट में 47 लाख नाम कटने पर बीजेपी का मंथन। प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और सभी 7 सांसदों की बैठक, ग्राउंड पर लोगों की मदद का निर्देश। पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार पर बरसी बीजेपी, कहा सीएम का दफ्तर बन चुका है करप्शन का अड्डा, फौरन इस्तीफा दें भगवंत मान, आप वाले कट्टर बेईमान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई, आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया, अगर आपने बड़े लोगों को क्लीन चिट दिया है तो उनको क्यों जेल भेजा, उन्हें भी बाहर करो।
1: वृंदावन बिहारी लाल के वृंदा

0: बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि आज विषय बड़ा दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में 27वें चुनाव है और अभी से ही पृष्ठभूमि रची जा रही है क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों तक मथुरा वृंदावन में होंगे। अब इस दौरान वो न सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे बल्कि 1051 करोड़ की 229 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। अब देखिए, इससे पहले वाले चुनाव में आपने देखा होगा हमेशा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचते थे। अनेकों बार, 50 से ज्यादा बार वो अयोध्या गए और इस बार ऐसा लगता है जब वो वृंदावन मथुरा कृष्ण बिहारी की बात कर रहे हैं, हर जगह अपने रैलियों में भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो लगता है कि एक बिसात बिछ रही है। 2027 के चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ का ये मथुरा वृंदावन दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यूपी में 27 में सत्ता की राह मथुरा से निकलने वाली है। उधर अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बहाने बीजेपी के अयोध्या मॉडल पर पहले से ही हमलावर है। वैसे आज राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ का भी ऐलान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में भाग ले चुके रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर जितेंद्र मिश्र अब वो राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ होंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि जहां जहां पर ऐसा देखा जाता है कि एक भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा होती है, सेना और सेना से जुड़े हुए लोगों का वहां पर पहुंचना अपने आप में एक भरोसा जगाता है, लेकिन उस भरोसे को कायम रखने का बड़ा चैलेंज होगा। और वो चैलेंज जिन कंधों पर अब पड़ा है वो है ऑपरेशन सिंदूर में भाग ले चुके रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर जितेंद्र मिश्र, जो कि मंदिर ट्रस्ट के अब पहले सीईओ होंगे। इधर अयोध्या और मथुरा पर सबकी निगाहें हैं, तो इस बीच आज योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को कथित सैफई और रामपुर सिंडिकेट पर भी घेरा है, क्योंकि इधर से चढ़ावा चोरी अयोध्या पर घेरा जा रहा है, तो उधर से सैफई और रामपुर के सिंडिकेट पर। रामपुर यानी समझ लीजिए कि वो सीधे सीधे आजम खान पर चोट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सैफई और सैफई महोत्सव के बहाने समाजवादी पार्टी पर वो सीधा एक तरह से यादव परिवार पर ही, मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव सब पर हमला कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सवाल है कि 2027 के चुनाव में अयोध्या मथुरा से लेकर क्या सैफई रामपुर पर संग्राम होगा? सैफई सिंडिकेट बनाम रामधन की लूट, क्या ये चुनावी अयोध्या मथुरा के नाम पर होगा? हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। मौका तो था उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के शुभारंभ का, लेकिन सुशासन पर 2017 बनाम अब की सियासी लड़ाई में योगी आदित्यनाथ सैफई और रामपुर का जिक्र कर बैठे। योगी आदित्यनाथ ने सैफई और रामपुर का नाम लेकर अखिलेश यादव पर करारा हमला किया है।
1: पहले प्रदेश में 17 के पहले सैफई सिंडिकेट और रामपुर सिंडिकेट पूरी व्यवस्था का खून चूसता था। आज सिंडिकेट पूरी तरह समाप्त कर दिया है और तीसरा सिंडिकेट पे हमने प्रहार किया है, जो एजेंसियों के माध्यम से आपका शोषण होता था, आज ये आउटसोर्स निगम उस पर प्रहार है। ये यही प्रहार इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने एक अच्छी सरकार चुनी है और अच्छी सरकार के माध्यम से ये सभी कार्य आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
0: अखिलेश यादव की सरकार के दौरान सैफई महोत्सव जैसे आयोजनों और रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के विवाद जैसी वजहों से पहले भी सियासी हंगामे होते रहे हैं।
1: सैफई सिंडिकेट और रामपुर सिंडिकेट,
0: लेकिन कथित सैफई सिंडिकेट और रामपुर सिंडिकेट पर योगी के इस बयान ने फिर सैफई और रामपुर की सियासत गरमा दी है। वैसे योगी का बयान आने से कुछ ही घंटे पहले अखिलेश यादव ने सैफई के चंदगीराम स्टेडियम की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट करके लिखा था, गांवों को गोद लेकर सपा काल में उन्हें विकसित करने का अनुकरणीय उदाहरण। सैफई और रामपुर का दोबारा चर्चा के केंद्र में आने का संकेत साफ है कि चुनाव के पहले एक दूसरे के गवर्नेंस मॉडल पर सवाल अभी और उठेंगे। इस बीच अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के साथ साथ अयोध्या पर योगी के विकास मॉडल को भी कटघरे में खड़ा किया है।
2: जो अयोध्या सिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए था, जितना पैसा खर्च हुआ है, आपको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहिए था। दुनिया देखती कि हाँ एक शहर बसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मन में इतना लालच था, इतना स्वार्थ है उनका पैसे के प्रति, कि जमीनों का घोटाला करना, जो गरीब प्रभु श्रीराम की जनता थी उसको मुआवजा न देना, उसका परिणाम

0: ये हुआ कि अयोध्या से वो चुनाव हारी, तो कम से कम अयोध्या का जो निर्माण हो वो वर्ल्ड क्लास हो।
1: अखिलेश अयोध्या के बहाने योगी को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व की पिच पर योगी भी मजबूती से डटे हैं।
2: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: वैसे तो योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में जयकारों पर कोई अचरज की बात नहीं, लेकिन हाल के दौरों में आजमगढ़, इटावा और फतेहपुर जैसे समाजवादी पार्टी के मजबूत इलाकों में सियावर रामचंद्र की जय के साथ साथ वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलने से योगी नहीं चूके।
2: वृंदावन बिहारी लाल के।
1: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर योगी आदित्यनाथ 3 और 4 सितंबर को मथुरा और वृंदावन में रहेंगे। जन्माष्टमी के दिन उनका श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। योगी की ओर से मथुरा और वृंदावन के लिए करीब 1,051 करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं की सौगात भी प्रस्तावित है। 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले मथुरा वृंदावन पर योगी के इस फोकस के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं।
3: जो वामी है, जो कांगी है, जो सपाई है, जो कांग्रेसी है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है, हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकत्रित करना है और उसके सहारे चुनावी वैतरणी पार करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जान चुकी है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
1: मथुरा वृंदावन के बहाने हिंदुत्व की लड़ाई दिलचस्प है। 2 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ही हिंदुओं के लिए कहा था कि बटोगे तो कटोगे
4: और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे।
1: आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवम त्यागी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मलुक नागर महासचिव आरएलडी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। सत्ता की राह मथुरा से निकलेगी क्या? 2027 की वृंदावन बिहारी लाल की जय अब बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो पहले बात बात पर अयोध्या पहुंचे थे, अब वो मथुरा पहुंच रहे हैं।
5: मैं मानता हूं कि सिर्फ सत्ता की नहीं अंजना जी, हिंदुस्तान और दुनिया में कहीं भी रहने वाले हर एक हिंदू की राह कृष्ण जन्मभूमि और भगवान श्री कृष्ण के नगर से होकर निकलनी ही चाहिए और ये सबके लिए गौरव की बात है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि यूनानिमसली हर एक हिंदू के मन में ये ख्याल तो कहीं ना कहीं होगा, जो हिंदू होगा, कि चाहे कोर्ट के माध्यम से ही सही, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए और जो सब विवाद वहां पर है वो खत्म होना चाहिए। और जहां तक चुनाव का विषय है तो मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए कृष्ण जन्मभूमि गए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार वहां जाते रहते हैं। आस्था का विषय है और उस विषय पर मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं एकजुटता हर किसी को दिखाई देती है, दिखाई देनी चाहिए, किसी के लिए भी गौरव की बात है, हर एक हिंदू के लिए भी बात है। और जहां तक बात अयोध्या की है, मैं मानता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर वहां पर भव्य निर्माण हुआ और उसके बाद जिस तरीके से चीजें बेहतर हुई ये पूरे देश ने देखा। अखिलेश यादव जी ने कई सारे चीजों पर जो है सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि भाई अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया होता। जो लोग लखनऊ से गोरखपुर कम से कम अपने मुख्यमंत्री होते हुए 500 बार से ज्यादा गए होंगे, जिन लोगों को अपनी गर्दन उधर करते हुए भी डर लग रहा है, वो दूसरों को जब इस तरह के भाषण देते हैं तो मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि उनको विकास दिखता क्यों नहीं? अगर एयरपोर्ट पर 1,450 करोड़ लोगों रुपए लगाकर जो है 10 लाख की क्षमता वाला एयरपोर्ट बनाया, जो फर्स्ट फेज में बना और जो बेहतर हुआ, उसका नवीनीकरण किया, उसका उद्धार किया, तो कहीं ना कहीं वो उनको दिखाई नहीं देता। अगर अयोध्या धाम स्टेशन जो है बनाया वर्ल्ड क्लास, उसको बेहतर किया, तो वो उनको दिखाई नहीं देता। इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो चाहे वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय परियोजना हो, चाहे इसके अलावा ग्रीनफील्ड टाउनशिप का विषय रहा हो, चाहे वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हो, इसके अलावा सारे घाटों का नवीनीकरण और बेहतरीकरण जो हुआ वो इसी सरकार ने हुआ।
1: त्यागी जी, मुझे याद आ गया कि अयोध्या में भी आप लोग ऐसे ही गिनाते थे। त्यागी जी आप लोग ऐसे ही अयोध्या भी गिनाते थे
5: जी जी,
1: और लोकसभा में तो अयोध्या हाथ से निकल ही गया।
5: अंजना जी, मुझे लगता है कि चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कोई भी, अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो कृपा है वो सिर्फ अयोध्या या फिर फैजाबाद सीट से देखता है।

0: तो उनकी जो दृष्टि है वो बड़ी छोटी है। अरे ये श्री राजा राम की ही कृपा है कि हम केंद्र में तीसरी बार सरकार में आए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही आशीर्वाद है कि 2 से 302 पहुंचने वाली पार्टी जो है तीसरी बार सत्ता में आई। ये भगवान श्री राम का ही आशीर्वाद है कि लगातार सरकार में आने वाली एक ऐसी सरकार है जो गैर कांग्रेसी, जो कभी ऐसा कभी हुआ नहीं, 20 राज्यों से ज्यादा सरकारें हैं, वो किसके आशीर्वाद से है? भगवान श्री राम के आशीर्वाद से। और मैं तो कहना चाहता हूं ये आशीर्वाद हम पर लगातार बना रहे। एक सीट को अगर वो अपनी जीत मानते हैं तो मेरा भगवान श्री राम से ऐसा विनम्र निवेदन और पूजा रहेगी कि उनको एक सीट लगातार मिले और हम ऐसे ही सरकारें बनाते रहे। तो मुझे लगता है कि इतनी छोटी दृष्टि भगवान श्री राम को लेकर नहीं होनी चाहिए।
1: ठीक है आलोक शर्मा जी,
0: आशीर्वाद है जो भारतीय जनता पार्टी यहां पर है।
1: त्यागी जी ने एकदम नया नवेला एंगल दिया है,
0: 100% बहुमत के साथ आएगी।
1: ठीक है, त्यागी जी ने एकदम नया नवेला एंगल दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई भगवान राम की ही तो कृपा है कि हम तीसरी बार केंद्र में बैठे हैं, और वो भी तब जब 33 सीटें इनकी आई और 37 समाजवादी पार्टी की यूपी में सिर्फ।
2: देखिए आज उत्तर प्रदेश का विषय है, अंजना जी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। 2014 में 73 सीटें भाजपा ने जीती थी, भाजपा के गठबंधन ने, और वो 2024 में 10 साल के शासन के बाद घटकर 37 पर आ गए। गठबंधन एनडीए की बात कर रहा हूं मैं, 37 पर आ गए 73 से घटकर। 2017 में तो योगी जी चेहरा भी नहीं थे, तब 325 के करीब इनकी सीटें आई थी। जिस समय पर योगी जी चेहरा नहीं थे और जब चेहरा बने 22 में, तो लगभग 52-53 सीटें इनकी घट गई। तो ना तो चेहरा चलेगा और ना जिस तरह के ये तो आज लोग जो हैं स्लोगन देते चले जा रहे हैं।
1: आलोक जी एक बार अपनी सीटें भी बता दीजिए, या खाली बीजेपी का ही याद किया है? आलोक जी थोड़ा अपनी सीटें भी बता दीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे बोल रहे थे तो ग्राफिक्स में आपके भी नंबर्स आ रहे थे, दिखा दीजिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2014 में हमारा एक सांसद, हम एक सीट पर आ गए थे और हम 2024 में 1 से 6 पर पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि सपा की भी बात कर लीजिए आप, 5 से लेकर वो 5 सीटों पर थी और 5 से लेकर वो 37 पर पहुंची है। तो 10 साल का जो हिंदुत्व का राज, जो ये तथा कथित राज कहते हैं, या विधानसभा में भी जो है सिचुएशन हमारी गड़बड़ रही, क्योंकि उसमें हम अलग अलग लड़े और इंडिया गठबंधन जो था वो अलग अलग लड़ा। अगर इकट्ठे होकर लड़ते तो सिचुएशन दूसरी होती। लेकिन मैं केवल 2 फैक्टर जो इन्होंने बताए, योगी फैक्टर, जब योगी सीएम नहीं थे चेहरा तब सीटें ज्यादा आई, जब योगी चेहरा थे तो सीटें कम हुई। 10 साल के शासन के बाद इनकी लोकसभा की सीटें 73 से घटकर 37 डिजिट उल्टे हो गए। बनारस 5 लाख वोट के करीब से मोदी जी जीते थे 2014 में, 2024 में घपला करके 1.5 लाख वोटों से जीते। सुना है हार गए थे कई उसके बाद, लेकिन अब बनारस शहर क्योटो बन गया होगा तो बनारस जीत जाएंगे। प्रभु राम की उंगली पकड़कर मोदी जी लेकर आए थे, उन्होंने सबक सिखा दिया उनको। अब तो हनुमान जी को नचा रहे हैं ये लोग, हनुमान जी को अपने रथ के आगे नचा रहे हैं गदा लेकर, हनुमान जी की पतंग बना के उड़ा रहे हैं। तो इनका जो अहंकार है वो प्रभु राम ही तोड़ेंगे। अब बात आती है कि यूपी में क्या हुआ। यूपी आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। हाईवे बनने से पहले मतलब हजारों करोड़ के, 36,000 करोड़, 13,000 करोड़, सारे के सारे हाईवे की क्या हालत है वो सबने देखी है। राम मंदिर मूवमेंट के बाद राम मंदिर के अंदर डकैती, इसका जवाब भाजपा ही कैसे देंगे, बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन ये अपनी लाठी लेकर अपनी सब कुछ हांकते चले जा रहे हैं, सारे कानून इन्हीं के हैं। शंकराचार्य जी के ऊपर जो हुआ क्या इनको याद नहीं है? क्या पॉक्सो लगाना याद नहीं है? शंकराचार्य जी की पालकी फेंक दी उठाकर, क्या वो याद नहीं है? क्या यूजीसी बिल याद नहीं है? आज आप केवल और केवल दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं, और पूरे स्क्रिप्ट में देखिए आज तक के क्या हुआ है। हिंदू मुस्लिम बटोगे तो कटोगे, ये अपनी पुरानी राह पर आ गए। अरे भाई 10 साल आपकी शासन हो गया, 10 साल आपकी सरकार है, क्या क्या किया उस पर बताओ ना। एनसीआरबी के आंकड़ों पर बात करो ना कि महिला अत्याचार कितना बड़ा है, 27,000 स्कूल कैसे बंद हो गए, इसकी बात करो ना। बटोगे तो कटोगे करके आप लोग केवल देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। यूजीसी और पेपर लीक, इन पर बात करो ना। मूड ऑफ द नेशन अभी आज तक नहीं दिखाया था सी वोटर सर्वे का, जबकि मैं उसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानता हूं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद के लिए होता है, लेकिन वो भी बीजेपी की मदद नहीं कर पाया उत्तर प्रदेश के अंदर। उसने भी 41 सीटें दिखाई लोकसभा की अगर आज चुनाव होते हैं तो। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ना कानून को मानती है, ना संसद को, ना संविधान को। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर उसको मानते हैं ये लोग, संसद से पास हुए

0: को, तो आज जिस तरह की तमाम चीजें उठा रहे हैं वो केवल राजनीतिक है और देश की जनता समझती है। प्रभु राम का जब मंदिर का विषय सुप्रीम कोर्ट में था तो एफिडेविट केंद्र की सरकार ने दिया था, भाजपा सरकार ने, कि हम आगे अब कोई मुद्दा उस तरह का नहीं उठाएंगे जो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट होगा। लेकिन मीडिया है, चैनलों पर आकर कुछ भी बोल के चले जाएंगे, योगी जी आकर कुछ भी बोल देंगे। मुझे लगता है कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है और योगी जी और इनका जो आपस का रिफ्ट है, आपस की जो लड़ाई है, जिस तरह से पूरी दिल्ली इनको हटाना चाहती है योगी जी के, अभी सामने थोड़े दिन रुक जाइए, फूट फूट कर इनकी लड़ाइयां बाहर आनी शुरू हो जाएंगी।
1: किसकी लड़ाई
2: अंजना जी?
1: किसकी लड़ाई?
0: आपस की, बीजेपी की।
1: अच्छा,
0: अमित शाह वर्सेस योगी।
1: चलिए जवाब दीजिए इसका, सीधे जवाब दीजिए त्यागी जी।
0: आप देखिए
2: अंजना जी,
1: त्यागी जी ने चाय पर चर्चा को सीरियसली ले लिया है, चाय उठा लिया।
2: अंजना जी, बहुत
1: वर्मा जी फौरन आ रही,
2: बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत सारी चीजें और बहुत सारे सवाल उठाए। वो विष्णु विराट की एक शायरी है ना कि जुगनुओं ने अब शराब पी ली है और वो सूरज को गालियां देंगे। जैसे ही अंजना जी ने पूछा कि अपनी भी तो सीटें बता दीजिए एक बार, तो जबान हिल गई इधर। वो एक थी, फिर पांच हो गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, 10 साल में 5 हो गई, फिर अगले 10 साल में 10 हो जाएंगी, फिर अगले 10 साल में 20 हो जाएंगी। ऐसे करते करते करीब करीब 100-150 साल में आप उत्तर प्रदेश में आने की सोचिएगा, मेरी शुभकामनाएं। दूसरी बात, किसने कहा क्राइम अगेंस्ट वुमेन उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो गया? कहां से पढ़ रहे हो भाई? कुछ भी बोलकर चले जाओगे, यहां नहीं बोलकर जा पाओगे कुछ भी। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में महिलाओं के खिलाफ, जो कि एक भी गलत है, बलात्कार के केसेस में 26% की गिरावट है। और आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, जिस अरविंद केजरीवाल जी जिस दिल्ली को छोड़कर गए थे उसका पिछले साल का डेटा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सबसे ज्यादा वो थे, उसकी फ्रेश रिपोर्ट अभी आई नहीं है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना है, तैयारी क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में पर लैक क्राइम अगेंस्ट वुमेन 58 है और तेलंगाना में 128। झूठ बोलना बंद करिए। मैं मानता हूं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं, बरसात और तमाम चीजों में जगह जगह सड़कें टूटी और कुछ दिक्कतें आई, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश बनने के बाद से पहली बार कोई सरकार, जब हम सरकार में आए, हाईवे 7,500 किलोमीटर के थे जो अब 12,000 किलोमीटर के हैं। और अगर खासतौर पर मैं प्रमुख कुछ स्टेट एक्सप्रेसवे की ही बात करूं तो चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, और तमाम ऐसे एक्सप्रेसवे हमने बनाए हैं। आप खुद, मैं हर दिन देखता हूं अंजना जी के शो में आते हैं आप, मुझे पूरी उम्मीद है उन्हीं हाईवे से चलकर आते होंगे। हां, और बेहतर करने की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश को, और इसी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई और पार्टी आ गई जो कि नहीं आएगी तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा।
1: अब आते हैं
2: इन फाइटिंग लड़ाई, और जो उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर नुकसान हुआ है, 10 सेकंड और दे दीजिए। इस हिसाब से देखूं मैं, अगर चेहरा ही देखूं तो राहुल गांधी से ज्यादा तो किसी के चेहरे से नुकसान हुआ ही नहीं है दुनिया में किसी पार्टी को। 135 साल पुरानी बूढ़ी पार्टी को बर्बाद कर देने वाला, 99 चुनाव हराने वाला व्यक्ति, उस पार्टी का प्रवक्ता बैठकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो योगी जी के चेहरे से तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। 10 साल सरकार में है, जब से उत्तर प्रदेश बना है कोई 2 टर्म पूरी नहीं कर पाया है, तीसरे की तैयारी है। आप आज भी गिना रहे, उन्होंने हमारी 5 आई थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है अपने विकास के मॉडल पर, सुरक्षा के मॉडल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल पर, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से आएंगे सरकार में।
1: वर्मा जी, चूंकि राहुल जी पर उन्होंने बोला, एक उनसे रिबटल ले रही हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आलोक जी,
0: सीएम रहे हैं ना, पीएम रहे हैं ना, कभी केंद्र में मंत्री रहे हैं ना किसी राज्य में मंत्री रहे हैं, तो उनकी गवर्नेंस जिस समय पर वो पीएम बनेंगे 2029 में, 5 साल के बाद जनता जरूर आंकेगी। लेकिन आज जो लोग डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की बात करते हैं, आज उनकी परफॉर्मेंस को नापा जाएगा। अखिलेश यादव जी ने अभी बता दिया कि किस तरह से जो गांव गोद लिए थे, मोदी जी ने भी जो गांव गोद लिया था, उसकी क्या हालत हुई पड़ी है। दुर्भाग्य यह है कि देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अगर आपका वास्तव में इतना गवर्नेंस मॉडल है, आपके तो जीडीपी के आंकड़े अभी पड़ रहा था, एनसीआरबी के आंकड़े सारे के सारे मेरे पास हैं, शिवम भाई को कहेंगे तो मैं शिवम भाई को भेज दूंगा। महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, आप उसको तोड़ मरोड़ के कहीं और ले जाइए, महिलाओं पर अत्याचार में
2: खेलना है अभी अंजना जी के शो में,
0: मुस्लिम करने वालों में मैक्सिमम है। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे केसों को भी हटाने का काम किया, अपने ऊपर लगे हुए केसों को भी हटवाने के लिए प्रयास किया। मैं फिर कहूंगा, आपने 10 साल में अच्छा काम किया जनता को अच्छा बताइए, आपने खराब किया जनता अपने आप तय करेगी। और राहुल गांधी जिस दिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने होते तो तुलना करना ठीक था, लेकिन मेरा एक भी आंकड़ा गलत नहीं।
1: अब
0: जब योगी जी का चेहरा हुआ तो 50 सीटें घटी और इस बार
2: 10 सेकंड दे देंगे प्लीज।

0: अरे दस सेकंड तो आपका बोलिए बोलिए बोलिए
1: दस सेकंड मात्र 10 सेकंड बाद आए। आलोक जी आपसे निवेदन है, गूगल भी करो तो थोड़ा सा मेहनत से करो। एक परिवार 10 लोगों का है जिसमें 3 FIR होती है, एक परिवार 50 लोगों का है जिसमें 5 FIR होती है। बावजूद उसके क्राइम किस में ज्यादा है जिसमें 10 लोगों में 3 FIR हो रही है। तेलंगाना 4 करोड़ का राज्य है, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का राज्य है। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना या किसी भी राज्य में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो पर लाख क्राइम अगेंस्ट वुमेन या पर लाख देखा जाता है। कोई भी
0: काउंटर कीजिएगा, आप इसका काउंटर कीजिएगा,
1: कृपया करके डेटा तो सही पढ़ो भाई।
0: हो गया त्यागी जी, हो गया। चलिए वर्मा जी, नए CEO भी बनाए गए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने हिस्सा लिया, ऐसे अधिकारी को वहां पर डाला जा रहा है फोर्स की तरफ से, वो CEO बनेंगे। इससे आपको नहीं लगता है कि एक भरोसा जगता है लोगों में? और दूसरी तरफ बड़ा सवाल है, मथुरा में 2 दिन वहां पर वो रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, और हर जगह वो वृंदावन बिहारी लाल की जय इस वक्त बोल रहे हैं, बुलंदशहर से लेकर पूरे इलाके में, तो टोन तो एक सेट कर रहे हैं वो अपनी तरफ से।
2: धन्यवाद अंजना जी। नहीं देखिए, जो पहले आपने CEO की बात करी तो उनको बधाइयां और कोशिश करेंगे कि जो असली चोर हैं वो पकड़े जाएं। छोटी मछलियों को पकड़ा के बगले बड़े मगरमच्छ भाग गए हैं, ऐसा राम मंदिर में तो नहीं होना चाहिए। और जब राम मंदिर की बात करते हैं तो अयोध्या की बात आती है, और जब अयोध्या की बात करते हैं तो मुझे लल्लू सिंह के ऊपर तरस आया कि बेचारे ठीक ठाक 2 बार के MP थे, योगी जी ने 5 सालों में वहां पर कम से कम 50 चक्कर दौड़े और अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी। और अब मुझे तरस आ रहा है हेमा मालिनी जी के ऊपर कि 75 क्रॉस करने के बाद भी उनको टिकट दिया गया है और योगी जी चक्कर लगाने लगे हैं। खैर देखिए, जिस बात की बात हम लोग करते हैं और जो बात हम लोग तथ्यात्मक करते हैं वो कोई हवा हवाई नहीं है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में और मैंडेट लेके आई थी, 325 का विराट आंकड़ा लेके आई थी। लेकिन उसके बाद योगी जी का पावन पांव पड़ा उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी धड़ाम से गिर के 255 पे आ गई, मतलब लगभग 100 सीटों के आसपास गिर के नीचे आ गई। तो योगी जी का चमत्कार था उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी वही 47 अपने सबसे खराब स्कोर से उसने प्रोग्रेशन करके 125 सीटों को अपने दम पे लेके आए। लेकिन कोई बात नहीं, योगी जी का जलवा चल रहा था जैसा कि प्रवक्ता बता रहे हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी 63 सीट लेके आई थी। हम 14 की बात इसलिए नहीं करेंगे कि 14 में थे नहीं योगी जी। और जैसे ही अगला चुनाव हुआ 24 का, भारतीय जनता पार्टी धड़ाम से नीचे फिसलते हुए, जैसे 99 का फेर नहीं होता है, गिर के 33 पे आ गई और समाजवादी पार्टी 5 से 37 सीट पे पहुंच गई। तो ये जनता का विश्वास है योगी जी के अंदर कि आप कदम रखिए, हम आपके कदम को सराहेंगे। तो राजनीतिक क्या होता है वो तो आपको खैर पता ही है। बाकी जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती दौर से 1980 से लेके 2024 तक अगर किसी एक नाम पे वो भारतीय राजनीति में वो टिकी है वो तो राम मंदिर के नाम पे है। चाहे केरला की बात कर लीजिए, चाहे तमिलनाडु की बात कर लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर की, चाहे उत्तर प्रदेश की, चाहे नॉर्दर्न इंडिया के किसी हिस्से में, बिना राम मंदिर की बात करके वो अपना पेट नहीं पचती थी। क्या हुआ, जहां 5,000 करोड़ रुपए का मंदिर बनाया गया वहां चोरी तो करी ही, वहां की जनता ने खदेड़ के बाहर कर दिया है। तो क्या आपको लगता है कि मथुरा की जनता कहीं बाहर से आई है? क्या वो जानती नहीं है आपके अंदर क्या है? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हर तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस आगरा एक्सप्रेसवे से लखनऊ से मथुरा गए हैं वो उसी अखिलेश यादव का बनाया हुआ है। और जब वहां पर चल रहे होंगे ना तो याद आ रहा होगा कि आज सुबह ही एक और एक्सप्रेसवे में गड्ढा हो गया जिसके ऊपर तिरपाल बिछा के रखा है कि गड्ढा इतना बड़ा हो गया कि वहां पे मारुति कार और वैगन कार अंदर घुसी जा रही है। जितने भी एक्सप्रेसवे हैं अंजना जी, आइएगा कभी लखनऊ में और लखनऊ से उत्तर प्रदेश में जाइएगा, कोई ऐसा एक्सप्रेसवे, कोई ऐसी रोड नहीं है जिसमें आप बैठेंगे और 4 बार इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाएंगे। तो क्या है, ये जनता अपने हिसाब से मैंडेट देती है। जब आप जीतते हैं तो कहते हैं जनता का जनादेश ही हमारा आशीर्वाद है, जब आप हारते हैं तो कहते नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं। तो ये कहानियां ये अपने पास डिबेट में लेके रखिए, वास्तविकता धरातल पे क्या है वो जनता आपको देती जा रही है और देती रहिए। हंसते रहिए, हंसने के लिए एक अच्छा होता है, बढ़िया रहेगा आपके लिए।
0: लेकिन आशुतोष जी, ये भी दिलचस्प है कि राम मंदिर को उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला, राम मंदिर ने कभी उनको जीत नहीं दी, रथ यात्रा भी निकली, बीजेपी सत्ता में नहीं आई, मंदिर बना फिर वहां सीट हार गई। लेकिन मैं दूसरे विषय पर आ रही हूं, आपने हेमा मालिनी जी की उम्र कोट करके कहा कि उनको फिर से टिकट दे रहे हैं, उम्र और टिकट का क्या लेना देना है?
2: नहीं नहीं
0: और क्या वो सिर्फ हेमा मालिनी पर लागू होता है? मुझे आजम खान की उम्र बताइए।
2: नहीं, देखिए ऐसा है कि ये एक नेचुरल इन लोगों के अंदर कंसेंसस था कि 75 के ऊपर हम नहीं देंगे। उसके बावजूद वे 24 में, 2024 में हेमा मालिनी जी को टिकट मिला, लेकिन तब तक योगी जी के पांव वहां नहीं पड़ रहे थे इतने ज्यादा जितने अब पड़ना शुरू हो गए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर
0: आजम
2: आगे भी
0: खान की भी
2: टिकट,
0: उम्र बता दीजिए ना, जो आप
2: हमारे
0: लोग
2: वहां तो
0: उनको
2: कोई
0: टिकट
2: प्रॉब्लम
0: देते
2: नहीं,
0: हैं। अच्छा,
2: नहीं
0: आपके
2: हम
0: यहाँ कोई
2: टिकट,
0: प्रॉब्लम नहीं है?
2: हमारे वहां इस सबकी प्रॉब्लम ही नहीं है। हम उम्र
0: अच्छा,
2: से किसी का बौद्धिक क्षमता नहीं करके तय करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी लोग मार्गदर्शक मंडल बनाते हैं। हमारे वहां मार्गदर्शक मंडल नहीं होता है, हमारे मार्गदर्शक होते हैं, है ना। तो
0: त्यागी
2: दूसरों के लिए 75 का उम्र बनाओ, अपने लिए भूल जाओ, ये तो
0: जी, इस
2: भाजपा
0: पर
2: में ही हो
0: सीधा
2: सकता है।
0: जवाब, त्यागी जी, इस पर सीधा जवाब।
1: थैंक यू। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये कि वो हेमा मालिनी जी की उम्र पर नहीं, एक वो महिला है इसलिए उन पर टिप्पणी हुई, और किसी पर तो टिप्पणी नहीं हुई। और इस देश में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 80+ हैं और शायद वो उठ भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते, लेकिन वो पुरुष हैं, वो राज्यसभा भी जाएंगे और वो तमाम ऐसी पोस्ट होल्ड करेंगे। दूसरी बात, अपने लिए तो इन्होंने वो स्टैंडर्ड ही खत्म कर दिया, कहते हमारे यहां ऐसा कुछ होता ही नहीं। हाँ, हमारे यहाँ क्या होता पता है भाई हमें, एक ही परिवार में 35 लाल बत्तियां, 35 जो है मंत्री पद के लोगों को एक ही खानदान में रख के, अगर यादव बनेंगे तो पांच बनेंगे, तो पांचों के पांचों एक ही घर से बनेंगे। आपके यहां तो कुछ होता ही नहीं, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात और कही आपने कि इनका राम के नाम के बिना तो काम चलता ही नहीं। भाई हमारा तो नहीं चलता, मैं सहस्त्र स्वीकार करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम के बिना काम नहीं चलता। आपका और आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के जो सदर हैं उनका किसी और भगवान के या अल्लाह के नाम के बिना नहीं चलता होगा, तो आप उसके साथ चलिए, अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। अब आगे आता हूं, जहां तक बात जिस तरह की स्थितियां इन्होंने खासतौर पर कही कि 75 और मार्गदर्शक मंडल, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, पार्टी के नियम हमारे हैं, सभी को सम्मान के साथ कलेक्टिवली आगे लेकर चला जाता है और सभी को सम्मान दिया जाता है। ना ही तो मंचों पर उनके साथ अपमानित भाषा का इस्तेमाल होता है, ना कुर्सियों के लिए खींचातानी होती है, ना मंचों पर खड़े होकर एक पिता कहते हैं कि मैं पहला ऐसा आदमी हूं जिसने अपने बेटे को अपने जीते जी मुख्यमंत्री बनाया और किसी ने नहीं बनाया, और कभी ये गलती करना भी मत। हम ऐसा सब नहीं करते, जो भी है पार्टी के अंदर है और शालीनता और सम्मान के साथ चल रहा है। भैया अपना घर देखिए ना प्लीज।
0: त्यागी जी, एक प्रश्न है आपसे, एक सेकंड आ रही हूँ। त्यागी जी, रामपुर सिंडिकेट कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो कह रहे हैं कि भाई सैफई सिंडिकेट है। आपसे पूछती हूँ, सैफई सिंडिकेट, रामपुर सिंडिकेट, वहां ज्यादा पाप हुआ या चढ़ावा चोरी सिंडिकेट ने अयोध्या में बड़ा पाप किया?
1: अंजना जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और आजम खां और स्टाइल ऑफ वर्किंग उनका जो है, मेरे आसपास के काफी सारे जो लोग थे उन्होंने वो देखा है। आजम खान लोगों के सामने बैठ के इतना बड़ा सिंहासन लगा के कहते थे कि जब इनकी सरकार होती थी, कि ऊपर अल्लाह है और नीचे आजम खान, इसके बीच में कोई आपको बचा नहीं सकता, ये ऑरा हुआ करता था उस आदमी का, ये माहौल बनाते थे इस तरीके का। वो व्यक्ति है जिसने खड़े होकर बाबा साहेब को ये कह दिया था कि ये जो उंगली करके ये व्यक्ति खड़ा है, ये कह रहा है कि ये प्लॉट तो मेरा है ही, सामने वाला दूसरा भी मेरा है। उस आदमी ने ये कह दिया था अधिकारियों को कि ये तनखैये हैं, इनसे मत डरना, सरकार आ गई तो जूते साफ कराऊंगा इनसे, एक जिलाधिकारी को रेफरेंस करते हुए उस आदमी ने बोला था। आप समझ सकते हैं क्या हाल रहा होगा इनका, किस तरीके की स्थिति है। 84 केसेस है उस आदमी पे भाई, दो दो पैन कार्ड रखने की वजह से वो 7 साल की जेल काट रहा है अपने बेटे के साथ। तो उसका हाल तो ये है, जहां तक चढ़ावा चोरी का विषय है, हां जो चढ़ावा चोरी हुई ये वाकई एक निंदनीय और हिंदुओं को आघात करने वाला विषय है। कानून ने उस पर अपना शिकंजा कसा, सबको जो है जेल डाला गया, जिन लोगों ने जो है जिम्मेदारी ली, नैतिक जिम्मेदारी ली, वो आज कहां है ये देश देख रहा है और देश समझ रहा है। लेकिन इस विषय को एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल जो आजम खान है उससे कंपैरिजन करना अपने आप में गुनाह है। एक आदमी जो ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, जिस पर सजा हो चुकी है, जो 7 साल की जेल काट रहा है, जिसपे 84 मुकदमे हैं और क्या क्या नहीं है, जो ये कहता था कि ऊपर अल्लाह है और नीचे आजम खान, मुझे लगता है उससे किसी की बराबरी उत्तर प्रदेश में नहीं।
0: चलिए ठीक है, मिस्टर नागर, मिस्टर नागर, ठीक है वर्मा जी, एक छोटा सा कमेंट मिस्टर नागर के पास जाएंगे।
2: नहीं, इन्होंने बस इनको बोला था कि मंचों की बात करी, तो मंचों से जैसे याद आया मुझे दिवंगत शरद त्रिपाठी और राकेश बघेल जी की बात याद आ गई कि एमपी और एमएलए जूते से संवैधानिक समितियों की बैठकों पे एक दूसरे को हमारे वहां नहीं मारा करते हैं। आपको याद होगा ना 2019 6 मार्च याद कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में है। और अभी 2025 में जिस प्रकार से नीलकंठ तिवारी और राजीव रविंद्र जायसवाल ने योगी जी के सामने तू तू मैं शुरू कर दी कि मैं अंगवस्त्र पहनाऊंगा, तू कौन है, ये हमारे वहां कभी नहीं होता है। और दूसरी बात आजम खान साहब की, हमारी सरकार आएगी हम सारे सारे केस वापस ले लेंगे, परेशान मत होइए। ऐसा मुख्यमंत्री ने पार्टी शुरू की है, ये सबके ऊपर लागू होगी, जो कर रहे हैं वो भरेंगे।
0: अगले राउंड में आऊंगी तो मैं आजम खान पर भी एक दो सवाल आपसे करूंगी, लेकिन उससे रुक जाइए आप आगे जी। मिस्टर नागर, क्या मथुरा के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश है?
3: नहीं, मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो अंजना जी पूरी तरह अखिलेश जी ने खुद ही हमारे लिए साध के और सजा के पूरा थाली में और फूल साथ में लगा के दे दिया है। उन्होंने जो चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा, चौधरी चरण सिंह जी का डीएनए, चौधरी चरण सिंह जी के खून की जो बेइज्जती करी है, और इनके जो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष ने बेइज्जती करी है कि ऐसी ये कहां कहां से आ जाते हैं, ऐसी जाति के लोग हैं जिन्हें हमने चवन्नी बनाया, अठन्नी बनाया, रूपा बनाया, उनकी जाति में जागरूकता नहीं थी, इन्होंने समाज को गाली दी है। समाजवादी पार्टी समाज से है, समाजवादी पार्टी से कोई समाज नहीं है। इन्होंने अंजना जी सहारनपुर में रैली रखी थी 9 तारीख की, हमने 3 तारीख की रख दी, छोड़ के मैदान भाग गए, कैंसिल कर दिया। 2 तारीख को चाय पी के अखिलेश जी आ गए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो इन्होंने अपने आप सजा के दे दिया है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो इनका लेना देना क्या है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो पूरा जाटलैंड कहते हैं, जाट भी हैं, गुजर भी हैं, यादव भी हैं, पाल भी, सैनी, कश्यप, सोनाल, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जातियां हैं, और दलित भी हैं, अखिलेत भी हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आपके इनकी हैसियत अपने आप ही पता लग जाएगी। मथुरा से ऑलरेडी पूरा का पूरा एक बेल्ट है जहां पर पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हैं। ये तो कुछ इनका तो जो कहते हैं ना, बुरा समय आता है तो गांव की तरफ को भागते हैं जाकर के खुद अपने सोसाइटल स्टेज में, तो इन्होंने तो अपने आप ही ऐसी चीजें कुछ कह दी हैं को पूरा कल पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में जहां से उत्तराखंड से शुरू होता है पश्चिम उत्तर प्रदेश, पहली जहां सीट है वहां रैली है, कल पता लग जाएगा कि पिछड़े ये पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़े किसके साथ हैं, कहीं जयंत जी जाके वहां अलग जलाएंगे सहारनपुर में, तो इन्हें अपनी हैसियत पता लग जाएगी।
0: आरएलडी को कितनी सीटें चाहिए?
3: एक बात पक्की है अंजना जी, हमें तो जितनी सीटें मिलेंगी आपस में कर लेंगे, पर हमारी फिक्र इन्हें हो रही है, इन्होंने पिछली बार 36 दी, अब के 73 कहने 73 मिलेंगे, और वैसे कहते हैं 54-58 रुपया, तो अपने आप ये डबल हमारी हैसियत आंक रहे हैं, तो जरूरत हमें इनकी थी या इन्हें हमारी थी, तो हम तो कितने ही में सहमति हो जाएंगे। अभी कह रहे हैं हम अलग अलग लड़े थे कांग्रेस के प्रवक्ता, अरे अलग अलग लड़े थे ये कहो पूरे देश में कौन सा प्रदेश है जहां इकट्ठे मिलकर लड़ते हो? आप तो हर जगह आपस में लड़ते हो, टूटते हो, बिखरते हो, हारते हो, और फिर हार का ठीकरा मशीन पे और कुछ ऐसे कर दिया, ऐसे हरा दिया, ऐसे हरा दिए, ठीकरा दूसरे पे फोड़ते हो, हमारी हैसियत है कहां जो मिलके लड़ सको? एनडीए में कोई प्रदेश बता दो, देश बता दो पूरा जहां लड़ते हो, या कोई भी प्रदेश बता दो पूरे देश में जहां हम आपस में लड़ते हो। हम तो जैसे हर जगह लड़े 2024 में, हां ये एमपी का उत्तर प्रदेश में बढ़िया परफॉर्मेंस दी, फिर कहते हरियाणा भी जीतेंगे, हरियाणा हारे, फिर कहते थे हम महाराष्ट्र भी जीतेंगे, महाराष्ट्र हारे, फिर कहते थे बिहार में 100% जीतेंगे, उसमें भी हारे, हालांकि राजस्थान मध्य प्रदेश में भी हारे जहां अखिलेश जी की कांग्रेस ने बेइज्जती करती, हटाओ अखिलेश पखिलेश को, बिहार 100% जीतेंगे वहां भी हारे, और पश्चिम बंगाल में तो इन्होंने नृत्य करे हम जीतेंगे और वहां भी बुरी तरह हारे, तो हम तो 24 के बाद भी हर जगह जीतते जीतते जीतते जा रहे, यूपी फिर जीतेंगे, ये कैसे जीतेंगे जरा एक भी बात बता दो आंकड़ों के आधार पे, या 24 की जीत को जहां पे हम बराबरी में लड़े, 24 की जीत को जहां हम बराबर में लड़े उसी पूरे देश में फिर हर जगह हारते हुए हैं, 24 में कैसे जीतोगे भाई?
0: और अभी आपके सांसद इमरान मसूद और आशु मलिक रुके रुके समाजवादी पार्टी के विधायक के बीच ही नोकझोंक हो गई आलोक जी, तो अभी तो सब तरफ यही चल रहा है।
4: देखिए नोकझोंक डेवलपमेंट के इशू पर हो तो अच्छा लगता है, और सहारनपुर में अगर कहीं पर डेवलपमेंट के इशू को लेकर डेवलपमेंट की बोर्ड की बैठक हो, उसमें अगर नोकझोंक हो कि जनता के लिए काम करने हैं, तो मैं समझता हूं उसमें कहीं पर कोई गलत नहीं। वहां पर कोई सीट बंटवारा नहीं हो रहा था कि ओपी राजभर कुछ कह रहे हों और डिप्टी सीएम जो है स्टूल ना मिल रहा हो उनको बैठने के लिए, डिप्टी सीएम ये कह रहे हो कि मैं भी सीएम बनूंगा, और चवन्नी वाले कह रहे हो कि साहब हमें ज्यादा सीटें चाहिए, बीजेपी जातिवाद की राजनीति कर रही है और वो चवन्नी वाले कह रहे हैं कि साहब हम जातिवाद की राजनीति के खिलाफ हैं। तो एनडीए पूरी तरह से जो अलायंस है वो दरक रहा है। जिस तरह से देखिए, जिस तरह से अभी बीजेपी का भी एक आंतरिक सर्वे आया है जिसमें लगभग 80 सीटें इनकी कम होती हुई नजर आ रही हैं, 170 से लेकर 185 के बीच में बीजेपी का ही आंतरिक सर्वे है, और हमारे सोर्स जो है वो पूरी तरह से पुख्ता है। अभी तो एसआईआर का भी रिजल्ट ग्रामीण क्षेत्रों में कितना आता है, शहरों में कितना आता है, और महाराष्ट्र की अभी नागर जी ने बात की कि महाराष्ट्र हारे, बिल्कुल हारे महाराष्ट्र, इलेक्शन कमीशन ने धोखे से हराया। इलेक्शन कमीशन ने 6 महीने में 56 लाख वोटें बढ़ा

और उसके बाद जब SIR होता है तो लगभग 2.25 करोड़ वोट कट गई महाराष्ट्र के अंदर। ये आंकड़े जग जाहिर हैं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बिहार में 10-10 हजार रूपये बीजेपी के लोगों से डलवाए अकाउंट में वहां की सरकार से, और सरकार पूरी तरह से वहां पर बनवाई गई, इलेक्शन के दौरान डलवाए गए, और ये कहा गया कि 2-2 लाख आएंगे। अंजना जी ने मेरे से सवाल पूछा था कि अगर महिला अगर सशक्त होती है 2-2 लाख

0: क्योंकि बीजेपी के पास वहां कोई दूसरा चेहरा ऐसा नहीं था। इस बार वो पूरी तरह से उनको बोल दिया गया, इसीलिए वो बहुत ज्यादा वहां पर जा भी नहीं रही हैं। मुझे नहीं पता आज भी गई हैं कि नहीं गई हैं, या वो योगी जी के साथ भी बैठ पाएंगी कि नहीं बैठ पाएंगी, मुझे नहीं लगता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आउटसोर्स कंपनीज को ये मुख्यमंत्री महोदय साहब आज कह रहे हैं कि वो हमारे लिए एसेट हैं। सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे कि ठेकेदारी प्रथा कैसे बढ़ाई जाए, उसका फुल प्रूफ काम आज योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है। आउटसोर्स का जो काम है ठेकेदारी का, यही गुजरात मॉडल है। सब जगह ठेकेदारी प्रथा बना दो और सारी कंपनियां बीजेपी के जानकार लोगों की लगा दो, उन्हीं को काम दे दो। बनारस में देख लो, सारे के एक ही राज्य के व्यापारी बैठे हुए हैं। अयोध्या में देख लीजिए, अयोध्या में हालत यह है कि अयोध्या के सड़कों के किनारे जामुन और आम के पेड़ लगा करते थे, आप चले जाइए खजूर लगा दिए और सारे खजूर भी गुजरात से लाए ये लोग। हालत यह है कि सारी कंपनियां जिसने भ्रष्टाचार किया, वो जो बग्घी चलती थी ना अंजना जी छोटी सी रामपथ पे, वो भी गुजरातियों की। अरे भाई आपको क्या उत्तर प्रदेश के ठेकेदार यहां पर काम करने वाले नहीं मिलते? सारे के सारे होटल बनारस में जितने बन रहे हैं, कहीं ना कहीं लिंकेज उनका गुजरात के लोगों से।
1: जवाब दीजिए।
0: उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से आज लोग नाराज हैं और इनको सबक सिखाएंगे।
1: शिवम त्यागी, एको कर रही उनकी आवाज। शर्मा जी हो गया, अपने आप को कितना सुनिएगा। ओ लगता है त्यागी जी सुन रहे हैं आपको, ऑडियो कट गया त्यागी जी का, ऑडियो कट गया। वर्मा जी सोचे चले इसी बहाने हम बीच में एक बार आ जाएंगे। जल्दी से वर्मा जी आपके पास आ रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है, देखिए आपके लिए इतना आसान भी नहीं है। अगर और दो तीन रिकॉर्ड तो बना ही लिया आशुतोष जी योगी आदित्यनाथ ने, एक तो वाकई वो एक टर्म कंप्लीट करके फिर दूसरी टर्म आने वाले बीजेपी के पहले सीएम बन गए हैं, सबसे लंबा उनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश में हो गया है बतौर सीएम, और एक एक चैलेंज तो वो है ही बड़े के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए खासतौर पर, तब जब वो अब लगभग मतलब दो टर्म पूरा करने के बाद चुनावी मैदान में आएंगे। फिर भी ऐसा आसान नहीं लग रहा है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी ऐसी होगी कि हम तो पूरा ही पलट देंगे।
2: नहीं अंजना जी, देखिए राजनीतिक सवाल है बिल्कुल, और मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि हमारे लिए ये बहुत केक एंड वॉक है, हम ऐसे ही जीत जाएंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार चलाई है 325 से 255 गिरते हुए, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि हम मेहनत कर रही है। समाजवादी पार्टी कतई आत्मविश्वास में नहीं है कि हम अभी एक ही झटके में जाएंगे और एंटी इनकमेंसी से जीत जाएंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम दो बार, तीन बार, चार बार, 2047 और पता नहीं कौन कौन सी गिनतियां रोज दिन भर गिनते रहते हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ किसी के भरोसे नहीं बैठी हुई है कि ये कुछ गलती करेंगे तो हम जीतेंगे। हम जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बूथ स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक अभी सहारनपुर की बात कर रहे थे, आज ही अखिलेश जी इस समय भी सहारनपुर में है। आप देखिए आरएलडी के प्रवक्ता आज परेशान जरूर है। हम तो कहते हैं कि जब हमारे पास आप थे तो आपको क्या सम्मान था, आपको कहां जगह मिली थी, और आज क्या
1: मंत्री
2: सम्मान
1: बने हुए हैं, कहां है वर्मा जी? मंत्री है केंद्र सरकार में, आप कौन सा मंत्री पद दीजिएगा?
2: अरे तो हमारी सरकार होती तो हम बहुत बड़ा मंत्री बनाते।
1: ना ना, जे के सत्ता, जे बनाए मंत्री, ओ के साथ आरएलडी, मामला सीधा है।
2: ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर है, ये मानता हूं, ये
1: मामला एकदम क्लियर है लोक जनशक्ति पार्टी की तरह। जल्दी से शिवम त्यागी जी, आपका बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, जवाब दीजिए आलोक जी और इनकी बातों का।
3: थैंक यू अंजना जी। सबसे पहले मैं एक एक करके बहुत सारे सवाल इकट्ठे हुए, मैं आशुतोष जी से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे सबसे पहले आजम खां जी के सारे केसेस वापस लेंगे, आजम खां के सारे केसेस वापस लेंगे। आपका ट्रैक रिकॉर्ड है भाई, आपको सिर्फ मुसलमान दिखना चाहिए, आप तो आतंकवादियों तक के केस लेने कोर्ट में पहुंच जाते हो, कोर्ट को फटकार लगानी पड़ती है, तो ये तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है आपका। मुजफ्फरनगर के दंगे में जो मौलाना नजीर मदरसा चलाता था, जो अभियुक्त था, जिस पर पूरे दंगे का ऑर्केस्ट्रेशन का आरोप था, जहां उसको जेल होना चाहिए था, उसको बुला के अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री के बराबर वाली कुर्सी लगा के बिठाकर उसको जो है उसका आदर सत्कार किया था। तो ये तो आपकी पुरानी आदत है केसेस वापस लेने की, और बिल्कुल ठीक बात है। यही उत्तर प्रदेश के लोगों का डर है कि गलती से, जो कि आप नहीं आएंगे, अगर आए तो यही करेंगे, गुंडे गैंगस्टर मवाली सड़कों पर घूमेंगे, छोड़ दीजिए बाकी सब जगह, तो नोएडा कोई सेफ नहीं रहेगा। इसके अलावा एक और चीज कही गई, आपने कहा कि इनके विधायक सांसदों की लड़ाई हो रही थी। एक तरफ कहते हो कि अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाना है, दूसरा उनका कंपैरिजन करते हो विधायक सांसदों की लड़ाई से। कुछ तो स्टैंडर्ड, कुछ तो मर्यादा बराबर की रखनी चाहिए आपके द्वारा, मेरे लिए तो सब सम्मानित है। तीसरा एक और

0: चीज कही गई कि एक आंतरिक सर्वे आया। आलोक जी, आपको अपनी पार्टी में तो कुछ पता नहीं होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, भाजपा के आंतरिक सर्वे सारे पता है आपको। इतना टाइम अगर अपनी तरफ लगाओगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव उत्तर प्रदेश में कर ले जाओगे, 100 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक गुजराती की बात आई, गुजरात से इतनी नफरत क्यों है भाई? गांधी जी से लेकर, सरदार पटेल से लेकर, कौन नहीं है वहां से इतना मोरारजी देसाई, और आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, गुजरात भारत का ही है हिस्सा भाई, इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। और अयोध्या से इतने कैसे प्रेम हो गया आपको कि वहां पर जामुन के पेड़ थे, वहां उसके पेड़ थे, अब वहां खजूर के पेड़ हो गए? अपने नेता को कहो अगर इतना ही अयोध्या से प्रेम है दोनों पार्टियों के लिए है, तो आदरणीय राहुल जी और आदरणीय अखिलेश जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन भी कराएं। बातों में तो बिल्कुल आपका शहद वाला बड़ा फिक्र लग रही है, लेकिन उधर जाते हुए आपका डर लगता है कि वोट छटक जाने का डर है? हिंदू हो ना, बात भी करते हो श्री राम की, परेशान भी हो, चिंतित भी हो, व्यथित भी हो, वहां पर जिस तरीके से चंदे में दिक्कत हुई है, तो जाकर एक बार दर्शन कराओ भाई, क्या हो जाएगा? हो तो हिंदू ही ना। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये मगरमच्छ के आंसू दिखाने के हैं, एजेंडा सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो सनातन हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो, इनसे संबंधित जितने भी सनातन से संबंधित भगवान या फिर तीर्थ स्थल है उनको अपमानित किया जाए, उनको बुरा भला बोला जाए, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जाए। और एजेंडा भी यही है कि अंत में आतंकवादियों से लेकर गैंगस्टरों तक के मुसलमानों के केस वापस लिए जाए।
1: शर्मा जी और वर्मा जी दोनों इसका जवाब दे दीजिए। शर्मा जी से शुरू करते हैं। शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि इतनी चिंता हो रही है अयोध्या की और जामुन के पेड़ों की, तो वहां चले जाइए।
2: देखिए, मैं तो कम से कम 10 से 15 बार तो पिछले 2 साल में गया हूंगा। मैं तो गुप्तार घाट के अभी फोटो दिखा सकता हूं कि वहां पर बैठकर मैं भजन और कीर्तन कर रहा हूं। आप लोगों में से कोई भी दशरथ जी की समाधि पे नहीं गया होगा, मैं वहां भी गया हूँ।
1: राहुल जी के लिए बोल रहे हैं,
2: कौशल्या माँ का मंदिर है अयोध्या में, मैं वहां भी गया हूँ। देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना वो होता है, अपनी आस्था होती है, उसको कहाँ जाना है, कौन से मंदिर में जाना है, कब जाना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राम मंदिर के डकैत पूछ रहे हैं कि मंदिर में कौन जाएगा, मतलब ये चाह रहे हैं कि और चढ़ावा चढ़ा दो ताकि हम डकैती डाल लें। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब बात आती है हिंदुत्व की और उसकी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मोदी जी के ही क्षेत्र में आती है। वो जो रेप वाला केस था, बच्चियों को छेड़ने वाला, वो तो याद होगा आप लोगों को, उसमें अभी तक सजा नहीं हुई है। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही हुआ था। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जब से यूनिवर्सिटी बनी है कभी भी गैर सनातनी नहीं बना, पहली बार एक जैन समुदाय के व्यक्ति को बनाया, और उसको भी गांधीनगर गुजरात से लाए। सच है कि नहीं है बता देना। बनारस का एक व्यक्ति पीएमओ में हो तो बता देना। बनारस के एक पंडित को राम मंदिर के अंदर वहां पर जिस समय पर मुहूर्त और पूजा हुई, बनारस से नहीं लेके गए। और तो और हालत यह है इन लोगों की कि जो सांसद प्रतिनिधि मोदी के रहे, मोदी जी के, वो भी गुजरात से ही आए थे। हमें गुजरात से आपत्ति नहीं है, लेकिन सारे आईएएस आईपीएस सारे अधिकारी सब कुछ क्या गुजरात में ही श्रेष्ठ मिलते हैं? क्या सारे व्यापारी गुजरात में ही श्रेष्ठ हैं? क्या उत्तर प्रदेश की कंपनियां और उत्तर प्रदेश के कारीगर जो हैं काम नहीं कर सकते हैं? क्या जितने मंदिर तोड़े थे बनारस में उनकी मूर्तियों का भी हिसाब है? हिंदू हिंदू के बैठ के चिल्लाते हो। शिवलिंग और शिवजी की मूर्तियां बनारस में थानों में रखी हुई हैं, थानों के अंदर रखी हुई हैं, लोग वहीं पर जाकर शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाते हैं। आप लोग झूठा प्रचार करते हो, फलाने ने मछली खा ली, उसने ये कर लिया, अजय राय जी को बदनाम करने का काम करते हो। एसआईआर का भी प्रभाव आएगा, और जिन चवन्नी वाले लोगों ने पीडीए को पीड़ा कहा है उनको भी जवाब मिलेगा। वैसे तो मैं नागर साहब की किसी बात का बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये अभी तलाश रहे हैं, हो सकता है हमारी तरफ आ जाएं। इसलिए बड़े भाई को मेरी छोटे भाई के नाते सलाह है कि बराबर बराबर बीच का रास्ता निकाल के चलिए। नागर जी, हो सकता है इधर से चुनाव लड़ना पड़े आप लोगों को, थोड़ा संभल के चलिए।
1: एकदम छोटा सा जवाब, एकदम छोटा सा जवाब, और सीधा वो कह रहे हैं कि दूसरों को बदनाम करते हैं मछली का, और ये सब अजय राय के बारे में बोला था मुख्यमंत्री जी ने।
0: अच्छा, एक चीज बताइए, अंजना जी के डिबेट को अप्रोक्सीमेटली 43 मिनट्स गुजर गए, बीत गए, कभी तो एक जगह पर एक टॉपिक पर टिक जाया कीजिए। मुझे आपके सनातनी होने या ना होने पर शक करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही इतने जनरेशनल एक्सपोज्ड हैं कि किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो आदमी 500 साल बाद बनने वाले मंदिर में दर्शन के लिए जा नहीं सकता, वो सनातन के किसी भी विषय पर भाषण दे, इस देश और दुनिया के कोई भी हिंदू।
1: चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि जनता किस तरफ जाती है, अपनी अपनी राह पार्टियों ने तो पकड़ ली है। आज रात 9 बजे रहिएगा मेरे साथ ब्लैक एंड व्हाइट में, आपको बताएंगे क्या योगी आदित्यनाथ जय कन्हैया लाल की बोलकर मथुरा से यूपी विजय की पटकथा लिखेंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे क्या हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नेपाल जैसी आपदा का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है, और आखिर में आपको बताएंगे कि ट्रंप ने ईरान पर अचानक से हमले क्यों बढ़ा दिए। देखते रहिए आज।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: in association with
1: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol.
2: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
3: Tak Digital First Channels, 11 billion views, 85 million unique viewers, one stop solution for your brand, regional or hyper local reach. Har shahar, har kasbe tak advertise karne ke liye email karein.
4: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
5: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
4: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी हैं।
5: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
6: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
4: मैं आशुतोष मिश्रा,
6: रोहित सिंह,
5: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या मुंबई कोलकाता पर मंडरा रहा है खतरा? क्या मुंबई कोलकाता के लाखों घर डूबेंगे? क्या नजदीक आ रहा है समंदर? पिघलते ग्लेशियर और समुद्र के बढ़ते जलस्तर का असर अब दुनिया के कई तटीय शहरों में दिखने वाला है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बाद दुनिया के कई देशों में डर की स्थिति बन गई है। यूएन की नई रिपोर्ट में भारत के मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों को लेकर भी चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया के निचले डेल्टा इलाकों और भारत के कोलकाता और मुंबई और बांग्लादेश के ढाका जैसे शहरों में सबसे बड़ा असर लोगों के विस्थापन के रूप में दिख रहा है, जहां 1.4 करोड़ से अधिक लोगों के घर हमेशा के लिए पानी में डूबने का खतरा है और यहां लाखों लोग तुरंत खतरे का सामना करेंगे। इसके अलावा यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र का बढ़ता जलस्तर अब कोई दूर का खतरा नहीं है, ये अभी हो रहा है और रिकॉर्ड किए गए इतिहास में किसी भी समय की तुलना में तेजी से हो रहा है। इसकी रफ्तार भी बढ़ रही है। 2014 और 2023 के बीच दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर हर साल 4.7 मिलीमीटर बढ़ा। अकेले 2024 में समुद्र का जलस्तर 5.9 मिलीमीटर बढ़ा, जो एक नया रिकॉर्ड है। इसकी मुख्य वजह महासागरों का बहुत ज्यादा गर्म होना और कुछ लोगों में तो ये गर्मी पिछले 4000 सालों में सबसे ज्यादा थी। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस खतरे से विकसित देश हों या विकासशील बच नहीं सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से समुद्र के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 2012 से 2025 के दौरान समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी की सालाना दर 4.75 मिलीमीटर थी। 2025 में दुनिया भर में समुद्र का औसत जलस्तर 2024 के रिकॉर्ड हाई लेवल के बराबर ही रहा, जबकि 2023-24 के दौरान अल्निनो की वजह से महासागरों के बहुत ज्यादा गर्म होने से इसमें लगभग 5 मिलीमीटर की तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। यूएन की चौंकाने वाली रिपोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या मुंबई और कोलकाता के लाखों घर डूब जाएंगे? आज तक ब्यूरो।

0: 12 बजे वाली ट्रेन 3 बजे चलेगी। तो हम आप यही है संगीत, बाकी लोग एडजस्ट करें।
1: मेरा संगीत माय वे।
2: गन्ना बड़े सियासत में फंसा हुआ इस समय, नहीं
3: गन्ने की वैल्यू बढ़ गई है, सड़क से उठा के स्टार बना दिया।
4: यही है था, कभी हमने अन्ना को बनाया, कभी गन्ने को बनाया।
1: गन्ने को अलग ही मिले थे, गन्ना ज्यादा बताओ, सबको जूस निकाल दिया भाई।
2: पलक ने बोला कि तुम आर्मी वगैरह ज्वाइन करो, उसकी माँ ने कल बोला कि ऑफिसर वगैरह बन जाओ, तो उसने कहा क्यों बन जाए, उसने कहा अच्छा लगेगा हमको, मेरा शौक है, अरमान है। उसने मेरा भी अरमान था कि मेरे माता पिता मतलब पिताजी और मम्मी जो है वो ऑफिसर होते हैं, बने कि आप लोग, हम कह रहे हैं तेरे पैदा होने से पहले अपन पैदा हुए थे। तो मैंने कहा तू आर्मी कमांडो वगैरह बन, मैंने ब्लैक कैट कमांडो सब बनते हैं, तो ब्लैक डॉग कमांडो बन जा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सत्ताईस का चुनाव अयोध्या मथुरा के नाम, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए सात तक नेहा के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हर शाम के साथ बजने वाले हैं मैं नेहा बाथम। अगले आधे घंटे में आपको दुनिया और देश की हर बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। ऑपरेशन सिंदूर में संभाली थी वेस्टर्न कमान की कमान। 3 ट्रस्टी के नामों का ऐलान। चंदा चोरी विवाद पर अखिलेश सरकार को फिर घेरा, कहा बड़े नामों पर एक्शन नहीं। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले राम मंदिर में शंकराचार्य नियुक्त करें धर्माचार्य। इंदौर में 12 के बदले अब 19 सितंबर को होगा राहुल का कार्यक्रम। छात्रों की गूंज, कांग्रेस का आरोप प्रशासन ने नहीं दी स्टेडियम की इजाजत, प्रदर्शन की चेतावनी। दिल्ली एसआर के ड्राफ्ट में 47 लाख नाम कटने पर बीजेपी का मंथन। प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सभी 7 सांसदों की बैठक, ग्राउंड पर लोगों की मदद का निर्देश। नेपाल में तबाही के बाद चीन में भी जारी किया गया मृतकों का आंकड़ा। तिब्बत में अब तक 21 की मौत, 541 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ बन गए हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को नया महासचिव बनाया गया है और बैठक में ट्रस्टी बनाए गए महेश भागचंदका को कोषाध्यक्ष का चार्ज दिया गया है। नए सीईओ और कोषाध्यक्ष महासचिव गोविंद देवगिरी को ही रिपोर्ट करेंगे और ट्रस्ट में दिल्ली के महेश भागचंदका समेत 3 नए सदस्य बनाए गए हैं। इनमें अयोध्या के एडवोकेट मदन मोहन पांडे और आरएसएस समर्थक शिकोहाबाद की निर्मला यादव शामिल है। निर्मला यादव ट्रस्ट की पहली महिला ट्रस्टी होंगी।
1: भारत के एक बहुत ही शीर्ष सफल सैनिक हैं और विशिष्ट एक उनका स्थान है, क्योंकि सर्वोत्तम सेवा मेडल बहुत कम लोगों को मिला है, उससे सुसज्जित है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता उनके चेहरे पर बनी हुई है और एक बहुत ही सुलझे हुए युवा और अभी भी ऊर्जावान अधिकारी हैं।
2: तो राम मंदिर के प्रबंधन को नया रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिला, गोविंद देव गिरी जी को नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है।
1: बिल्कुल, वो तो प्रबंधन में परिवर्तन तो होता ही है, वो तो एक समय की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से हुआ है।
2: सर कैसे देख रहे हैं नए सीईओ को, क्या कुछ कहेंगे आप लोग लगातार बैठकों में रहे हैं ट्रस्ट में?
3: नए सीईओ अपना सब काम करेगा जी। अब नाम चुना गया है जी। अब उनको बुलाएंगे, उनको सब उनको भी समझेंगे और उनके काम को उनको काम को समझाएंगे। सर
2: गोविंद देव गिरी को नई जिम्मेदारी मिली है, उस पर आप क्या कहेंगे?
3: अरे भाई पहले से ही कोषाध्यक्ष थे और पूरी तरह से अनुभवी और योग्य और समाज में सम्मानित और तमाम प्रकार की क्षमताएं रखने वाले, इसलिए उनको महामंत्री के नाते से बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे, पूरा विश्वास है।
0: मेरे 3 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। कुमार,
4: इस चयन समिति का बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने इतने सब कैंडिडेट्स में से मेरा चयन किया है। इसे मैं श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊंगा। जी जो समय जो चयन समिति का प्रोसीजर था वो मेरे ख्याल से इंटरनेट पे मीडिया में उन्होंने प्रसारित किया था और उनका प्रोसीजर टाइमलाइंस ये बार बार टीवी में आता रहा है, तो इस विषय में मेरे ख्याल से चयन समिति ही बताएंगे कि फिर क्या प्रोसीजर था और क्या ठीक था।
5: सर इसके साथ ही आप ऑपरेशन सिंदूर में आपका बहुत अहम रोल था जी, उसके बाद आप ये बहुत अहम इस रोल को किस तरीके से देखते हैं?
4: जैसा मैंने कहा कि सर्वप्रथम मैं चयन समिति, श्री राम मंदिर ट्रस्ट और ऑफ कोर्स भगवान श्री राम का आभारी हूं कि मुझे इस दायित्व के लिए मेरा चयन किया गया है और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे सामर्थ्य दें कि मैं इस कार्य को अच्छी तरह से भलीभांति रूप से कर पाऊं।
5: सर इसके साथ ही बीते कुछ समय में कुछ कई विवाद जो है बीच में जुड़े हुए थे को लेकर
4: जी,
5: उसके बाद एक आर्मी के
4: मैं अभी बीते समय की नहीं, आगे आने वाले समय की बात ज्यादा करना चाहूंगा। आप बीते समय को भूल जाएं और आगे समय में प्रभु राम की कृपा से हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कार्य को कर पाएंगे।
5: आगे का क्या प्लान?
4: देखिए, अभी कुछ समय पहले ही मेरा प्रथम सीईओ के रूप में चयन हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इस समय में यह सवाल प्रासंगिक है। मैं जब एक बार सीईओ के रूप में टेक ओवर कर लूँगा तो ट्रस्ट के विश्वास से और अपनी टीम की मदद से जो भी उत्तम से उत्तम कार्य होगा राम मंदिर के लिए वो मैं करने का पूरा प्रयत्न करूँगा और श्री राम से ये प्रार्थना करूँगा कि मुझे इसके लिए भरपूर सामर्थ्य प्रदान करें। धन्यवाद।
0: तो नव निर्वाचित सीईओ को आप सुन रहे थे। तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुमार अभिषेक हैं और सुमित न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार अभिषेक, आपका रुख करते हुए, क्या पूर्णता वजह बनी, पांच प्रमुख वजह मुझे गिना दीजिए जितेंद्र मिश्र के चयन के लिए?
6: देखिए नेहा, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी जो वजह थी वो ट्रस्ट के प्रति लोगों का अविश्वास, यानी कि इतना अविश्वास हो चुका था। दूसरी बात अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लोगों के आस्था पर चोट थी और बहुत भरोसे के लिए, भरोसे के किसी शख्स की जरूरत थी। देखिए, चुनाव तो किसी का भी हो सकता था, कोई भी उस सीईओ का ट्रस्टी अध्यक्ष हो सकता था, सीईओ बन सकता था इस ट्रस्ट का। लेकिन चूंकि बहुत ही गहरे अविश्वास से इस वक्त ये राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट गुजर रहा है, ऐसे में एक ऐसे नाम की जरूरत थी ताकि लोगों का भरोसा इस पर वापस आ सके। और जितेंद्र मिश्र से बेहतर नाम कोई हो नहीं सकता। अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और साथ साथ भारतीय वायुसेना को 43 साल जिन्होंने दिया, ऑपरेशन सिंदूर में जिनकी भूमिका सबसे अहम रही, तो ये विश्वास लौटाने की एक बहुत बड़ी पहल के तौर पर इसे देखा जा सकता है। दूसरी बात, जिस तरह के डिसिप्लिन, जिस तरह के कोऑर्डिनेशन और जिस तरह की एफिशिएंसी की जरूरत होगी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को किया गया, कहीं ना कहीं उनके उस कार्यशैली से प्रभावित होकर के ही उनका चयन किया गया, क्योंकि दुनिया भर के जो हिंदू हैं उनका विश्वास इस ट्रस्ट में फिर से जागे, राम मंदिर के प्रति आस्था फिर से जागे। और जिस तरीके से कई लोगों पर सवाल उठे तो अब कोई भी ऐसे वैसे को ला करके चलते,
0: ये आप पहला मुख्य कारण बता रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच इस पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से किया गया, कौन है राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
7: सीमाओं पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के बाद अब रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को राम मंदिर ट्रस्ट में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या राम मंदिर का पहला सीईओ बनाया है। ट्रस्ट की बैठक में उनके नाम का ऐलान किया गया। जितेंद्र मिश्र यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। जितेंद्र मिश्र ने ऑपरेशन से दूर में पश्चिमी वायु कमान को लीड किया था। 1986 में वायुसेना अकादमी से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू स्टीम में कमीशन प्राप्त हुआ। 38 सालों से अधिक के अपने करियर में उनके पास 3000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उन्होंने 18 से अधिक तरह के लड़ाकू और परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों को उड़ाया है। ये उस टीम का हिस्सा थे जिसने करगिल युद्ध की शुरुआत में मिराज 2000 विमानों पर लेजर गाइडेड बमों को पहुंचाया था, जिनका इस्तेमाल बाद में ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान टाइगर हिल और मुंधो ढालों पर हुए हमलों में किया गया था। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में भी उनका अहम योगदान था। जितेंद्र मिश्र को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी भूमिका के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितेंद्र मिश्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो पीएम के साथ नजर आ रहे हैं।
4: I had just asked him, can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said, yes, of course, why not? So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till now.
7: जितेंद्र मिश्र का देश के विकास और सेवा को लेकर अपना एक विजन है जिसका जिक्र वो अक्सर करते रहते हैं।
8: ये जरूरी नहीं कि हमें अपने देश के लिए सिर्फ अपनी जान का, अपनी जिंदगी का बलिदान देकर ही अपने देश की रक्षा करते हैं। हम सब लोग, हमारे देश के सभी नागरिक अपने देश के लिए ऐसे समाज की रचना करें जिसमें हम अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और देश को अमृत काल की तरफ आगे ले जाएं।
7: राम मंदिर के पहले सीईओ के रूप में जितेंद्र मिश्र की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब न केवल दान चोरी घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम बनाना है बल्कि भारी भक्तों की व्यवस्था और इंतजामों को भी पूरी तरह से दुरुस्त करना है। जिम्मेदारी भले ही पिछले काम से अलग हो लेकिन सेना का अनुशासन और सेवा का भाव यहाँ बहुत काम आने वाला है। आज तक ब्यूरो।
0: और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इस वक्त जितेंद्र मिश्रा के घर पर जश्न मनाया जा रहा है। जाहिर तौर पर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इन्हें मिली है लेकिन एक डेकोरेटेड ऑफिसर है वो। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, देखिए जश्न तो मन रहा है लेकिन ये एक ऐसा पद है जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और साथ ही एक ऐसे व्यक्ति को देने की कोशिश है जो ईमानदार हो, जो देश की गरिमा से जुड़ा हो, जो डेकोरेटेड ऑफिसर रहा है, जिसकी कारगिल युद्ध में, माफ कीजिएगा, जिसकी ऑपरेशन सिंदूर में एक अहम भूमिका रही। उस भूमिका के बारे में हमने इस रिपोर्ट के जरिए जाना और ये समझा कि कैसे उन्हें कई विशिष्ट सम्मानों से नवाजा जा चुका है। पीएम के साथ भी वो कई बार कई तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रपति के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक के बाद एक तमगा उनसे जुड़ता गया।
9: बिल्कुल आपने नेहा, बिल्कुल आपने, क्योंकि आस्था और विश्वास की बात करें, जितनी आस्था और विश्वास हमारा राम मंदिर को लेकर है, भगवान राम को लेकर, उतनी आस्था और विश्वास हमारी फोर्सेस के ऊपर भी हमारा रहता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि इस समय वो एक ऐसा कह सकते हैं कि ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की आपने बात की, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑपरेशन सफेद सागर में भी उनका इन्वॉल्वमेंट था। 3000 घंटों से ज्यादा उनको फ्लाइंग का उनको एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मिराज 2000 के अंदर उन्होंने फ्लाई किया और जब टाइगर हिल पर हमले किए जा रहे थे तो उस टीम का वो पार्ट रहे। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ऑपरेशन सफेद सागर के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, खासतौर पर क्योंकि वेस्टर्न कमांड जो पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ लगती हुई एयर कमांड है वो उसको लुक आफ्टर करती है, उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। और ये भी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कैसे उन्होंने उन स्ट्रैटेजीज को बखूबी निभाया और हमारे आप कह सकते हैं कि जो एयर डिफेंस के साथ साथ हमारे जो अटैकिंग वो थे, हमारे जो टारगेट्स को अचीव करना था उसको भी बखूबी निभाया गया। तो ये निश्चित तौर पर 40 साल के यानी 4 दशकों के उनका लंबा एक्सपीरियंस रहा है एयरफोर्स के अंदर और शायद इसी आप कह सकते हैं आस्था और विश्वास की बदौलत अब उनको आप कह सकते हैं राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। लेकिन उनके आप 40 साल के इस करियर को अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि हर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस की अगर आप बात कर लीजिए, हमारे बड़े डेवलपमेंट की बात, उनका योगदान या फिर उनका इन्वॉल्वमेंट हर इन आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण डिसीजन में हमेशा रहा है। नेहा,
0: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच परिवार में जश्न का माहौल है, क्या कुछ कह रहे हैं परिवार वाले, सुनिए।
10: सीईओ पूर्व एयर चीफ मार्शल जितेंद्र कुमार मिश्रा बनाए गए हैं। इस समय मौजूद हैं हम उनके गांव देवरिया में, भोपतपुरा गांव है जहां पर खुशी का माहौल है। हमारे साथ हैं उनके चाचा राम प्यार मिश्रा जी, उनसे ही बात करते हैं किस तरह का अनुभूति हो रही है क्योंकि ये बहुत बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, क्या कहना है आप?
11: काफी खुशी है और भरोसा है, काफी ईमानदारी के साथ अपने काम का निर्वहन करेंगे और यहाँ का बहुत ईमानदार और बहुत एक्टिव शुरू से है।
10: किस तरह का रहा है उनका जो
11: बहुत व्यवहार रहा? बहुत व्यवहारिक है, सामान हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए ही आप देखेंगे उसको, कभी टेंशन में रहा नहीं।
10: काफी दिनों से ये मतलब चयन प्रक्रिया चल रही थी क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पद उनको मिला है यह, तो काफी लोगों ने इसमें आवेदन किया था उसमें इनका मतलब उनको चयन किया गया है, किस नजर से देखते हैं इसको?
11: बहुत ईमानदारी के वजह से ही उसका सिलेक्शन हुआ है इस पद, बहुत ईमानदार और बहुत सक्रिय रहने वाला।
10: क्या क्या लग रहा है आपको आज?
11: हमको तो बड़ी खुशी हो रही है।
10: क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पे?
11: भगवान और तरक्की करे उसको।
10: और भी हमारे साथ हैं गांव के लोग, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आप क्या लगेंगे उनके?
12: उनके चाचा लगे।
10: क्या कहना है आपको, कैसा लग रहा है?
12: बहुत अच्छा लग रहा है।
10: अच्छा,
12: एक भतीजा बड़े पद पर चला गया, सबसे बढ़िया है, बहुत खुशी की बात है।
10: आप बताइए, आप कौन है?
13: विपिन मिश्रा, उनके कजन है।
10: अच्छा अच्छा।
13: और सर, इससे पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम योगदान दिया, तो वेस्टर्न एयर कमांड के सीईओ थे जितने जो पाकिस्तान के साथ जो अभी एयर स्ट्राइक हुआ उसमें इनका अहम योगदान था, जिसके लिए उनको सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। अभी कुछ समय पहले ही। उसके बाद 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद ये अहम पद इनको मिला है। ये बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति हैं और अपने कार्य मिलनसार हैं और गांव परिवार में भी या सबसे उनको कोई देख के नहीं कहा इतने बड़े पद पे हैं या अभी मिला है जो सर, वो बहुत ही सज्जन और मिलनसार व्यक्ति हैं, ईमानदार भी हैं। जी
14: तो ये थे, हम गांव पे पहुंचे हैं, गांव के उनके परिवार हैं, उनके भाई हैं, उनके भतीजे हैं और सारे लोग इस समय खुशी का माहौल है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं। राम प्रताप सिंह, देवरिया, आज तक।
0: वही राम मंदिर चुराहा चोरी यूपी चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बन चुका है, ऐसे में नए सीईओ पर विपक्ष क्या कुछ कह रहा है सुनिए।
15: इस पे मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ये फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो, एसआईटी ने जो जांच के बाद रिपोर्टें दी हैं, एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज के बाद जेल गए हैं, क्लीन चिट मिल गई है, तो क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी ने, तो जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है।
16: देखिए सरकार यही चाहता है कि लोगों की दृष्ट बदल दे, दृष्ट आकर्षित से बदलने का कोशिश कर रही है, जो लोग लूटा है किन के बल पे लूटा है, उनके पीछे कौन है, उनको ताकत देने वाला कौन है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, कौन है, जो आदमी जो ट्रस्ट मेंबर्स थे वो जो पैसे लूटे हैं भगवान के नाम पे पैसे कलेक्ट करके लूटे हैं, इससे बढ़कर जुर्म कोई हो ही नहीं सकता, उसका जांच नहीं हो रही है, जो लूटा उनको जेल नहीं भेजा है और नया सीईओ खुला के बस ये चर्चा लेके आए कि नया सीईओ आ गए।
0: समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, देखिए उनके परिवार वालों से बातचीत में एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, वो था ईमानदारी का, लेकिन क्या जितेंद्र मिश्रा की ये ईमानदारी चढ़ावा चोरी का कलंक मिटा पाएगी, क्योंकि दाग बहुत गहरे हैं।
2: नहीं नया, देखिए एक बात तो है, जो प्रकरण हुआ है उसकी वजह से तमाम तरह के बयानबाजी भी हुई है, तमाम तरह की चीजें भी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिटायर्ड एयर मार्शल को सामने लाना और बड़ी बात है, जो जिनका एक बहुत अहम रोल सफेद सागर ऑपरेशन में रहा हो और बहुत बड़ा रोल ऑपरेशन सिंदूर में रहा हो, एक बात तो साफ है, देखिए जब भी कोई आर्मी नेवी या एयरफोर्स को देखता है तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सेंस ऑफ बिलीफ की बात होती है। तो ये जो चुनाव हुआ है, कई नाम सोचिए, 5,500 से ज्यादा आवेदन हो गए, उसके बाद कितने तो इंटरव्यूज हो गए, कितने लोग रिजेक्ट हो गए, कई बड़े बड़े नाम चल रहे थे, उसमें से निर्णय लेना ट्रस्ट के लिए बहुत कठिन था, जैसा कि ट्रस्ट ने कहा है, तो ट्रस्ट ने सोच समझ के ये निर्णय लिया कि हम ऐसे शख्स को आगे लाते हैं जिस पर जो लोग हैं, चाहे वो राम भक्त हो, चाहे वो आम पब्लिक हो, वो भरोसा कर पाए। तो ये इनका जो कहीं ना कहीं अगर इतिहास देख लें, इनका जो पास्ट है वो देख लें, जिस तरह के कीर्तिमान स्थापित इन्होंने अपने करियर में एक एयरफोर्स के मेंबर के तौर पर किए हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड होकर वो रिटायर हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान अपने आप में है। और ऑपरेशन सिंदूर का जब जिक्र भी होता है तो हर एक भारतीय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भारतीय सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने जो पराक्रम उस वक्त दिखाया था। तो कुल मिलाकर ये ट्रस्ट को लगता है कि ऐसे शख्स को आगे लाना जिससे कि जो भी नुकसान पिछले कुछ दिनों में चंदा चोरी प्रकरण के जरिए हुआ या जो भी आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए, कहीं ना कहीं उसके उसको अब आगे बढ़ा जाए।
0: और भी डेकोरेटेड ऑफिसर्स होंगे, पूर्व आईपीएस, आईएएस, जजेस, बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया था, लेकिन ये रेस में आगे कैसे निकले?
2: मैं वही बात है, कुल मिलाकर जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनका जो रोल ऑपरेशन सिंदूर में रहा और तमाम चीजों में रहा, तो ट्रस्ट को ये लग सकता है कि जो एक यूनिफॉर्म की बात है, कुल मिलाकर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको लेकर जो बिलीफ हर एक भारतीय में है, चाहे वो राम भक्त हो, चाहे वो आम पब्लिक हो, जो कहीं ना कहीं इस प्रकरण को देखकर शायद बहुत शॉक्ड हो कि हाँ जिस मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं वहां चोरी भी हो गई, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक सेल्फ बिलीफ वाली बात है, उनको लगेगा कि हाँ एक ऐसा शख्स सामने आया है जिसने पूरा जीवन अपना ईमानदारी से बिताया है, जिसने भारतीयों की सेवा की है और कहीं ना कहीं
17: अपनी जान पर खेलकर बड़े बड़े ऑपरेशन, चाहे सफेद सागर की बात हो जो कारगिल के दौरान हुआ, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, तो ये एक जो बिलीफ वाली बात है, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा ट्रस्ट के लिए जो जो उनको चुना गया है, क्योंकि नाम तो बहुत सारे थे और कई बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े नामों का जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है। चुनाव बहुत कठिन था और जैसा कि रिटायर्ड एयर मार्शल ने जब आज तक से बातचीत की, उन्होंने उनसे मैंने जब ये सवाल किया तो उन्होंने भी उसका जवाब यही दिया कि बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से पूरा चुनाव हुआ, यानी कि इसमें चयन होना आसान नहीं था। उन्होंने आज तक को ये कहा कि मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं कि मुझे श्री रामचंद्र की सेवा का अवसर मिला है, ये उन्होंने आज तक से बातचीत करते हुए साफ कहा है। उन्होंने कहा अभी तक मैंने देश की सेवा की और अब वो अवसर मेरे सामने है जब मैं श्री रामचंद्र की सेवा करूंगा। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कभी आपके दिमाग में इस तरह का ख्याल भी आया था? उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसा ख्याल नहीं था, सब ऊपर वाले की महिमा है। उन्होंने ये कहा पुराने जो भी प्रकरण हुए हैं, जो भी चीजें हुई हैं, उन्हें भुलाना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा।
0: ठीक है। और वहीं अयोध्या में साधु संत समाज भी नए सीईओ की नियुक्ति से काफी खुश दिखाई दे रहा है।
18: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला को लेकर के विपक्ष लगातार एक विरोध करता नजर आ रहा था और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से विपक्ष अयोध्या को बदनाम करने में, राम मंदिर का अपमान करने में लगा हुआ था, अब वह नहीं कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सीईओ का नाम जो आया है जितेंद्र मिश्रा जी, तो मुझे अयोध्या के साधु संतों, हमको लोगों को सबको उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में राम मंदिर का देखभाल अच्छे तरीके से होगा और हमको लोगों को विश्वास है कि अब दोबारा राम मंदिर में कभी भी चोरी और घोटाला नहीं होगा। और राम मंदिर में जिस तरीके से कुछ लोग कालनेमी बस करके वो चोरी किए, तो अब वह दोबारा इस तरीके से घटना नहीं होगा।
19: वरिष्ठ जो ऑफिसर के पद पर रह चुके हैं, उनका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्म भूमि अयोध्या धाम में राम मंदिर में सीईओ के पद पर नियुक्त होना, यह बहुत ही अच्छा है और इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। हम लोग ये चाहते भी थे कि भारतीय सेना में से कोई न कोई इसमें हो।
0: 27 के चुनाव में क्या कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी गरमाएगा, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में श्री राम के साथ साथ श्री कृष्ण के भी जयकारे लगा रहे।
20: वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के।
7: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन जयकारों में यूपी की सियासत के बीच छिपे हैं। ये जयकारे बता रहे हैं कि 27 के चुनाव में अयोध्या काशी के बाद मथुरा मुद्दा बनने जा रहा है।
21: भारत प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण का देश है। भारत की संस्कृति और सभ्यता में प्रभु राम और कृष्ण रचे बसे हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म में उनकी आस्था है, इसलिए अपने संबोधन के पूर्व प्रभु राम और प्रभु कृष्ण का नाम लेते हैं।
7: मतलब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांस्कृतिक नैरेटिव में अब मथुरा की चर्चा तेज है, तो क्या माना जाए कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी का अब अगला फोकस मथुरा पर है? बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 और 4 सितंबर को मथुरा वृंदावन दौरा प्रस्तावित है। खास बात यह है कि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। मथुरा वृंदावन के लिए करीब 446 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी प्रस्तावित है। मतलब
0: वक्त एक ब्रेक का हो चला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
23: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
4: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
3: असली शहद, असली स्वाद।
5: एक तो एक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: खाना कहाँ से मंगवाया?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जीके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट प्राइमर
6: जीके मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जीके मैक्स।
3: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
4: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
3: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: पापा।
8: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ
4: ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: डिस्चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
12: सोच बदलो और बैंक भी।

0: no matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
2: आगे आगे,
3: अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट,
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: ब्रज की भूमि से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पंचायत आज तक मथुरा, 3 सितंबर सिर्फ आज तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, कहा श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टी के नामों का भी ऐलान। चंदा चोरी विवाद पर अखिलेश ने सरकार को फिर घेरा, कहा बड़े नामों पर एक्शन नहीं। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले राम मंदिर में शंकराचार्य नियुक्त करें धर्माचार्य। इंदौर में 12 के बदले अब 19 सितंबर को होगा राहुल का कार्यक्रम, छात्रों की गूंज, कांग्रेस का आरोप, प्रशासन ने नहीं दी स्टेडियम की इजाजत, प्रदर्शन की चेतावनी।

0: सांसदों की बैठक, ग्राउंड पर लोगों की मदद का निर्देश। नेपाल में तबाही के बाद चीन ने भी जारी किया मृतकों का आंकड़ा। तिब्बत में अब तक 21 की मौत, 541 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नेपाल की तबाही के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जलवायु परिवर्तन हिमालय के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। नेपाल में ग्लेशियर के पिघलने के बाद बाढ़ आई, ग्लेशियर के ऊपर हिमालय पर पिघले और जब वो नीचे बहे तो अपने साथ भारी मात्रा में मलबा लेकर आते गए, फोर्स बनता गया और तबाही मचती गई। अब आईआईटी मंडी एक नई रिसर्च ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। उधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, उससे और ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं।

0: क्या नेपाल की तबाही भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है? नेपाल में हुई तबाही से भारत को क्या सीखने की जरूरत है? गलते हिमालय के ग्लेशियर कौन सा खतरा बता रहे हैं? ठीक एक हफ्ते पहले नेपाल में हुई ये तबाही हिंदुस्तान के लिए बहुत से संकेत लेकर आई है, खास तौर पर भारत के वो हिमालयी राज्य जिन पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि यहां भी ग्लेशियर पिघलने से तबाही आ सकती है। ऐसा हुआ तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी तबाही मच सकती है। वैसे भी हर साल इन राज्यों में बरसात का सीजन बर्बादी लेकर आता है। कई जगह बादल फटते हैं, बहुत से फ्लैश फ्लड आते हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं। लेकिन क्या कोई बड़ी तबाही आगे इंतजार कर रही है? इस खतरे की बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि उत्तराखंड में सितंबर की शुरुआत में भारी बारिश कैसे बर्बादी का सबब बन रही है। ये उत्तरकाशी, बारिश की वजह से जगह जगह भारी भूस्खलन हुआ है। पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह मलबा गिरा पड़ा है। पूरे हाईवे पर मलबा आया, जिसकी वजह से हाईवे बंद करना पड़ा। मंगलवार को गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पापड़गाड़ उफान पर आ गई थी, जिससे मलबा और पत्थर बह रहे थे। उधर यमुनोत्री हाईवे पर राणा चट्टी के पास मलबे में एक यात्री बस फंस गई थी। पहाड़ों में भारी बारिश से हादसे भी बहुत हो रहे हैं। ये कोटद्वार की तस्वीरें हैं। कोटद्वार में कोहरू नदी एक 1.5 साल की बच्ची और उसकी माँ के लिए काल बन गई। नदी पार करते वक्त 1.5 साल की छोटी बच्ची उसकी माँ की गोद से छूट गई और पानी में बह गई। बच्ची को बचाने के लिए माँ भी नदी में कूदी और बह गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। काफी दूर तक तलाश के बाद SDRF और पुलिस ने नदी से माँ बेटी के शव बरामद किए।
1: घटनास्थल पर पहुंचने पर हमने सर्चिंग की तो हमें पता चला कि जो नदी का दूसरा साइड है, उधर वाला जंगल वाला, वहाँ वो दो व्यक्ति की डेड बॉडी मिल चुकी है, जिसमें से एक बच्चा था 1 साल का और एक महिला थी उसी की मम्मी। तो उनको मिलने के पश्चात वो उन्हें गांव नदी के दूसरे साइड ले गए थे, लेकिन उनको इस साइड लाना था, जिसके बाद हमारी टीम काफ़ी मशक्कत के बाद नदी पार की और उसके बाद डेड बॉडी को इस नदी के दूसरे साइड ला के जिले पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
0: पहाड़ों पर छोटी छोटी नदियां भी बहुत तेज बहाव में हैं। पौड़ी जिले में मंगलवार को पैठानी क्षेत्र में

0: उधर उधम सिंह नगर में लगातार बारिश के बाद हालात चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि यहां गौला नदी से पानी छोड़ने के बाद आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन बाकायदा मुनादी करके लोगों को सतर्क कर रहा है।
1: गौला नदी में अत्यधिक पानी छोड़ा गया है, जिस कारण गौला नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आप सभी लोगों से प्रशासन द्वारा अपील की जाती है, कृपया अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, नदी किनारे ना आए।
0: किच्छा, पुलभट्टा, शांतिपुरी और सूर्यनगर समेत गौला नदी से सटे इलाकों में लोगों को नदी के आसपास न जाने की हिदायत दी गई है। हल्द्वानी से 27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
2: लगातार जो बरसात हो रही है उसके पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार बरसात हो रही है, इस कारण गौला नदी में जलस्तर ऊपर है और वर्तमान में यह सूचना प्राप्त हुई है कि 27,000 क्यूसेक पानी काठगोदाम बैराज से छोड़ा गया है। मेरा सबसे अनुरोध है कि नदी क्षेत्रों से, तटीय क्षेत्रों से दूर रहें और गौला बैराज के अगल बगल रहने वाले गौला नदी के अगल बगल रहने वाले लोग नदी से दूर रहें, नदी के पास न जाएं, सावधानी बरतें, सुरक्षा बरतें। वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में है, ऐसी कोई पैनिक करने की स्थिति नहीं है, लेकिन नदी तटों से दूर रहें।
0: उधर उधम सिंह नगर के नकाहा गांव में 4 फीट तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से यहां 7 परिवार बाढ़ में फंस गए थे। ये गांव बैगुल डैम के पास है, इसीलिए इसके कई इलाके जलमग्न हो गए, जिसमें गांव के कई परिवार फंस गए थे, जिसके बाद SDRF की टीम ने पहुंचकर इन परिवारों को यहां से सुरक्षित निकाला। उधर नैनीताल में सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते नैनी झील लबालब, जबकि नदी नाले और गधेरे उफान पर। मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल में अगले 24 घंटे के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश का असर नैनीताल जिले के रामनगर में भी दिखाई दे रहा है। यहां कोसी नदी उफान पर है। रामनगर स्थित प्रसिद्ध गर्जिया माता मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया है। अगले 24 घंटे कुमाऊं मंडल के 6 जिलों के लिए बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं।
3: और लगभग मंडे की शाम से लगातार बारिश हो रही है और कल जनहानि के 5 मामले अल्मोड़ा जनपद में हुए हैं और 1 नैनीताल जनपद में हुआ है। साथ ही आज सुबह 10 बजे जो मैंने अपडेट लिया सभी डिस्ट्रिक्ट से, तो 88 हमारे मार्ग हैं जो बंद हैं। यद्यपि इसमें अधिकांश मार्ग जो हैं वो विलेज रोड्स हैं, लेकिन 2 बॉर्डर रोड्स भी हैं और कुछ स्टेट हाईवेज भी हैं। और अभी जो मैंने फोरकास्ट पता किया था, इसमें अगले 24 घंटे में भी काफ़ी जगहों का ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें चंपावत के कुछ इलाके भी हैं, नैनीताल के भी कुछ इलाके हैं, बागेश्वर के भी कुछ इलाके हैं, तो एहतियात बरतने की आवश्यकता है।
0: पहाड़ों पर तो और ज्यादा बारिश हो रही है। ये बागेश्वर की तस्वीरें हैं, जहां लगातार भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी है। बागेश्वर में पिछले 2 दिनों से भीषण बारिश जारी है, कई जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। बागेश्वर में NH 109 सहित 16 अलग अलग मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट गया है। बागेश्वर देहरादून NH 109 रमाईखाल के पास पहाड़ दरकने से बाधित हो गया। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी बारिश का कहर जारी है। नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर सड़कें पानी से लबालब हो गई। सड़कों पर भारी तादाद में मलबा और बड़े बड़े पत्थर आ गए, जिससे सड़कों का नामोनिशान गायब हो गया है। बीते 3 दिनों से परवाणू में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते हालात काफी खराब हो गए। हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और बिलासपुर में भारी बारिश हुई है। मंगलवार शाम तक 60 सड़कें, 11 बिजली ट्रांसफार्मर और 39 पेयजल योजनाएं प्रभावित रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 4 सितंबर तक बारिश से राहत के आसार नहीं है। 3 सितंबर को कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हिमाचल में कितनी बड़ी तबाही का अलर्ट है, ये IIT मंडी की एक रिसर्च बता रही है। IIT मंडी ने हिमाचल प्रदेश की 2000 ग्लेशियर झीलों पर एक रिसर्च की है और इनमें से 9 से 12 झीलों को बहुत संवेदनशील बताया है, क्योंकि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 साल में ये झीलें 30 से 60% तक बढ़ गई है। इस स्टडी को करने वाले IIT मंडी के प्रोफेसर का दावा है कि पहाड़ी इलाकों में लगातार होते निर्माण और ऑल वेदर रोड बनाने से भी नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से इन इलाकों में 12 महीने टूरिस्ट आते हैं, जिसका प्रभाव हिमालय

0: ग्लेशियर पर पड़ रहा है।
1: वन ऑफ द केस हैज बीन सेड कि भाई वहां परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग भी हुई है वहां, तो देन पूरे हिमालय में ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोग टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, सो देन काफी ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट तो है, प्लस वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। इट शुड बी मोर कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए था, ठीक है। इट इज गुड कि आपने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, बट उसके चलते मैं खुद देख रहा हूं कि जैसे टनल खुल गई है तो अब हमें राउंड द ईयर कनेक्टिविटी मिल रही है। उस राउंड द ईयर कनेक्टिविटी में क्या हुआ कि हर वक्त टूरिस्ट जा रहा है जो पहले नहीं जाता था, सो उससे आपका पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपसे वहां डस्ट वगैरह काफी जा रहे हैं और वो जाकर के ग्लेशियर के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, वो हमने खुद देखा हुआ है जाकर के, यू गेट अ ब्लैक लेयर ऑफ डिपॉजिट्स, स्नो पे दिखता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम ब्लैक कलर है, वो काला कलर हमेशा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। गर्मियों में बोला जाता है कि गर्मियों में आपको लाइट कलर कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, ब्लैक पहनेंगे हमें एनर्जी ज्यादा लगती है। तो सेम हमारे पास एक डस्ट की क्लियर आ गई, सन रेस पड़ेंगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, उसको मेल्टिंग ज्यादा कर देगी वो, सो वो हो रहा है। ये दिस इज फॉर श्योर इट इज हैपनिंग इन दीज एरियाज, अपने एरिया में शिंकला वगैरह बहुत ज्यादा दिख रहा है वो।
0: कुल मिलाकर भारत के हिमालयी राज्यों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर इस खतरे पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर नेपाल जैसी तबाही यहां कभी भी हो सकती है। आज तक ब्यूरो।
2: वहीं सितंबर के महीने में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। पूर्वी यूपी में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है, कई जिलों में डैम से पानी छोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए।
0: ये बिहार का बगहा है जहां गंडक नदी कहर बरपा रही है। नेपाल में जो बाढ़ आई उसकी वजह से गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और यहां वो भारी नुकसान पहुंचा रही है। नेपाल के तराई इलाकों में हुई ताजा बारिश का असर अब गंडक नदी के जलस्तर में भी दिख रहा है। बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिससे नदी किनारे बसे इलाकों में एक बार फिर से चिंता बढ़ने लगी है। वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज से 1,61,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। नदी में पानी का दबाव बढ़ने के साथ ही निचले इलाकों और नदी के आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। बिहार के रोहतास कैमूर पहाड़ी के इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ से गिरने वाला झरना भी उफान पर आ गया है। एहतियातन जिला प्रशासन ने पर्यटकों से यहां न जाने को कहा है। उधर बिहार के पड़ोसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। ये सोनभद्र जिले की तस्वीरें हैं जहां मूसलाधार बारिश के बीच रिहंद बांध के 3 फाटक खोल दिए गए हैं। बांध का जलस्तर 872 फीट के खतरे के निशान को पार कर गया है जिसके बाद इन फाटकों को खोला गया। फाटक खुलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है और सोन नदी का जलस्तर और बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। पहले से ही ओबरा डैम और मध्य प्रदेश के बाणसागर बांध से छोड़े गए पानी के कारण सोन नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में रिहंद बांध के फाटक खुलने के बाद नदी का जलस्तर और तेजी से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इधर यूपी के बलिया जिले में गंगा और घाघरा नदियों के उफान से बाढ़ की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 1.6 मीटर ऊपर पहुंच गया है जिससे कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बलिया के महावीर घाट और निहोरा नगर जैसे इलाकों में बाढ़ के पानी ने जनजीवन पूरी तरह से ठप कर दिया है। लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। पीने के पानी के नल जलमग्न हो चुके हैं जिससे स्थानीय लोग दूषित या बारिश का पानी पीने को मजबूर हैं। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप है और जहरीले कीड़े मकोड़ों का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है।
3: यहाँ के लोग कैसे रहते
4: हैं? यहाँ के लोग नाई से बस आते हैं जाते हैं और ऊपर रहते हैं छत पे।
5: उधर का
4: लाइन कट गया है,
3: परेशानी बहुत ज्यादा
4: है। बहुत ज्यादा है, कीड़ा मकोड़ा से बहुत डर लगता है, जानवरों में रहते
3: हैं। प्रशासन से क्या चाहते हैं?
4: प्रशासन अब आएगा देखेगा तब ना, मदद चाहते हैं कि कोई मदद करे, कोई आता भी नहीं है।
6: 3 दिन से चल रहा है, आज जो है बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया है।
3: इतनी परेशानियां,
6: बहुत परेशानियां हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लाने ले जाने में रिक्स है कि कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। लाइट कट गया है, पानी का भी बहुत दिक्कत हो गया है, वही प्रदूषण वाला पानी हम लोग पी रहे हैं, बारिश का पानी रुक के पी रहे हैं। पानी का बहुत दिक्कत है।
0: एक और जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है। वहीं बलिया के जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। गंगा और घाघरा नदी के तटीय इलाकों के गांवों पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जाएगा।
7: उम्मीद यही है कि लगभग अभी 10 से 15 सेंटीमीटर और बढ़ सकता है। हम लोग सावधान हैं, सतर्क हैं। साथ ही साथ जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के लगभग बराबर है। वहाँ भी ऐसी कोई खास परेशानी नहीं है, बढ़ने की संभावना नहीं है। कटान पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। गंगा के किनारे के जो गांव हैं वो ज़्यादातर हमारे यहाँ सदर तहसील में और भरिया तहसील में पड़ते हैं। सदर तहसील में 39 गांव हैं और भरिया के 17 गांव हैं। उन सभी गांवों में लगातार हमारी टीमें चक्रमण कर रही हैं। हम लोग भी लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से लोगों के संपर्क में हैं।
0: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार बरसात ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जगह पानी भरा हुआ है जिनमें गाड़ियां फंस रही हैं। यहां एक रेलवे अंडरपास पर पानी में एक रोडवेज की बस फंस गई। यहां से ये बस गुजर रही थी तभी पानी बढ़ गया। घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैक्टर से खींचकर इस बस को बाहर निकाला गया। इधर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। सिंगरौली जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 खाखन नदी में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से सिंगरौली आने वाले वाहनों के पहिए थम गए हैं। पुलिस इन वाहनों को नहीं जाने दे रही ताकि कोई हादसा न हो। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त जो इस ब्रेक का उछला, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: Papa,
3: sorry यार ये गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
4: हाँ ओ ला भाई मेरा बैट,
3: वो अभी तो ठीक हुआ, तो
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: और वही कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: खाना कहाँ से मंगवाया?
12: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
14: जीके वॉल मैक्स।
12: बेस्ट प्राइमर
14: जीके मैक्स।
12: बेस्ट पेंट
14: जीके मैक्स।
12: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
15: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
12: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा 1204 तक पहुंच चुका है, 1000 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। अब मरने वालों की संख्या धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। नेपाल में 4900 लोग अब भी लापता हैं, 4900 लापता का आंकड़ा है और 1204 मरने वालों का आंकड़ा। ये आधिकारिक आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं जो नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: मंच एसईओ का था। सामने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन मौजूद थे और ठीक बगल में बैठे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कूटनीतिक प्रहार किया जिसने इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का हथियार बनाते हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं, उन्हें सख्त संदेश मिलना चाहिए। आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं हो सकता। ये बयान किसी देश का नाम लिए बिना दिया गया, लेकिन इशारा साफ था कि निशाने पर पाकिस्तान ही है। ये पाकिस्तान के लिए किसी बड़े कूटनीतिक सदमे से कम नहीं है। पाकिस्तान अगले साल यानी 2027 में एसईओ समिट की मेजबानी करने वाला है। एसईओ समिट हर साल एक नए सदस्य देश में होता है और वही इसकी अध्यक्षता करता है। अगली मीटिंग पाकिस्तान में होगी और वो इसकी अध्यक्षता संभालने का जश्न मनाने की तैयारी में था, लेकिन कमान हाथ में आने से ठीक पहले भारत ने दुनिया के सामने साफ कर दिया कि जो देश खुद आतंकवाद का गढ़ है, उसकी बातों पर अब कोई दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, सिर्फ एक्शन रिएक्शन वाली सोच तक सीमित रहने के बजाय आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करें, जिसमें फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित ठिकाने शामिल हैं। ये प्रहार सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं था, बल्कि उसके सबसे बड़े पैरोकार चीन पर भी था। चीन अक्सर यूएन में पाकिस्तानी आतंकियों का बचाव करता आया है। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग की मौजूदगी में ये बता दिया कि आतंकियों को ढाल देने वाले देश भी उतने ही गुनहगार हैं जितना कि उन्हें पालने वाला पाकिस्तान। बिश्केक की धरती से भारत ने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि एक्शन रिएक्शन का दौर खत्म हो चुका है। अब निशाना सिर्फ आतंकियों पर नहीं बल्कि आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम पर होगा। शहबाज शरीफ देखते रह गए और भारत ने एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की दुखती रग दबा दी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही. आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। कहा, श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टी के नामों का भी ऐलान। समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे चुनाव, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। इंदौर में 12 के बदले अब 19 सितंबर को होगा राहुल गांधी का कार्यक्रम। छात्रों की गूंज, कांग्रेस का आरोप, प्रशासन ने नहीं दी स्टेडियम की इजाजत, प्रदर्शन की चेतावनी। दिल्ली एसआईआर के ड्राफ्ट में 47 लाख नाम कटने पर बीजेपी का मंथन। प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और सभी 7 सांसदों की बैठक, ग्राउंड पर लोगों की मदद के निर्देश। नेपाल आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंचा, 4200 से ज्यादा अभी भी लापता। तबाही से चीन में भी 21 ने गंवाई जान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। विकास दर की रफ्तार पर सियासी हिस की स्पीड आज से और तेज हुई है, लेकिन आज ही करीब 2 महीने से जारी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर होती राजनीतिक बहस पर नए ट्रस्ट के साथ जवाब देने की शुरुआत हुई है। इसीलिए आज की बड़ी खबर से सबसे पहले हम आपको खबरदार कर रहे हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर के हीरो और वायुसेना के दिग्गज पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ बनाया गया है। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, जिनका चयन 3 सदस्यों की कमेटी की तरफ से हुआ है। इस बड़े फैसले के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में और भी बदलाव हुए हैं, जहां पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ होंगे। स्वामी गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के नए महासचिव होंगे, जो अब तक कोषाध्यक्ष का पद संभालते रहे। स्वामी गोविंद देवगिरी ने चंपत राय वाली जगह ली है, जिन्हें चढ़ावा विवाद के बाद पद छोड़ना पड़ा था। वहीं महेश भागचंदका को नए सदस्य के तौर पर ट्रस्ट में लाने के बाद अब कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। यानी ये 3 बड़े चेहरे अब राम मंदिर ट्रस्ट को बाकी सदस्यों के साथ संभालने वाले हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा का ही है। वहीं आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के 3 नए सदस्यों का ऐलान हुआ। इसमें अयोध्या के मदन मोहन पांडे हैं, जो रामलला के लिए कानूनी पैरवी करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। निर्मला यादव शिकोहाबाद की रहने वाली हैं। हिंदी और संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर यादव को विश्वविद्यालय में करीब 15 सालों तक काम करने का अनुभव है। तीसरे सदस्य दिल्ली के महेश भागचंदका हैं, जिन्हें कोषाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जब अयोध्या के चढ़ावा विवाद को लेकर ही विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेरता रहा है, तब ट्रस्ट के पहले सीईओ के तौर पर उन रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है, जो ऑपरेशन सिंदूर के हीरो रहे हैं।
1: पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जिनके नेतृत्व में वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाया।
2: We have gone 100 kilometers inside the international border, which is Bahawalpur, 75 to 80 kilometers Murid ke, without unnecessary ruffling international feathers.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमान को लीड करने वाले, महिला पायलटों को आतंक पर वार करने के लिए चुनने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: As the commander in chief, squadron leader Singh or squadron leader Sharma or air marshal Mishra, I don't look at the gender. Right. Like I said, when you select the pilots, it is the training that they have gone through, their experience, and most importantly, their performance in earlier gunnery exercises.
1: S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम करने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: They were desperate to find where these S-400, like you asked me, where did you fire it from? The Pakistanis were desperate to find out where they are. They employed all the tricks in the book. I'm very sure they were getting satellite help from other nations. I don't want to use the name of the country. They were using air intelligence. They were using these EW systems to find out, because that was the biggest threat as far as they were concerned. Every time they got airmen, they got shot by an S-400. They had deployed spies within our country, activated their sleeper cell within our country to find out where the S-400 is.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत तत्कालीन वेस्टर्न एयर कमांड का नेतृत्व करते एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा करते हैं।
2: I had just asked him के can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said yes, of course, why not? So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till now.
1: ऑपरेशन सिंदूर में वेस्टर्न एयर कमांड को लीड करने वाले एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा इसी साल 30 अप्रैल को रिटायर हुए और 3 महीने के अंदर ही उन्हें राम मंदिर के पहले सीईओ की जिम्मेदारी दी गई। सवाल है कि सेना के एक पूर्व अफसर को इसके लिए क्यों चुना गया, जबकि उनका नाम उन 3 नामों में शामिल नहीं बताया गया जिसमें से एक को इस जिम्मेदारी मिलने की बात 24 घंटे पहले तक की जा रही थी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को संचालित करने वाला पहला सीईओ कौन होगा, इसे लेकर जिन नामों पर कयास लगाए जा रहे थे उनमें पूर्व आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा, पूर्व आईपीएस राजेश पांडे और बिहार कैडर के आईपीएस डॉक्टर परेश सक्सेना के अलावा आईएएस दिनेश सिंह का नाम शामिल था, लेकिन जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाया गया है।
3: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। और आपको जानकर के सबसे खुशी होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
1: जितेंद्र मिश्रा की छवि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है, इसके लिए उन्हें सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल भी मिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से उनका रिश्ता है, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति में भी उनका यूपी कनेक्शन है। जितेंद्र मिश्रा करीब 40 वर्षों तक वायुसेना में रहे और कई महत्वपूर्ण कमांड संभाली। ऐसे में मंदिर के बढ़ते प्रशासन, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बड़े स्तर के ऑपरेशनल कामकाज के लिए उनका सैन्य प्रशासनिक अनुभव अहम माना जा रहा है।
3: बहुत अच्छा, हमारे इस जो मंदिर के संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो शायद पूरा कर सकेंगे, उनमें सफल नहीं है। नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता सकता है। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ते रहने समय समय के अनुसार कुछ परिवर्तन होता है, आगे बढ़ता रहता है।
1: मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्य भी बनाए गए हैं। ये बदलाव मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के 3 महीने बाद हुआ है। इस मामले में 8 आरोपी जेल में है। इसके बाद जुलाई महीने में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना पद छोड़ा। आगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से एक ऐसे सैन्य अफसर को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनकी चर्चा 3 सबसे आगे बताए जा रहे नामों में थी ही नहीं।
2: As far as this dispensation is concerned, there was not a single restriction. It was left to the military to decide. It was left to the military to decide the ways that you fight them.
1: राम मंदिर के पहले सीईओ पद की जिम्मेदारी देश के कैसे बड़े सैन्य अफसर को दी गई है, जिनका करियर बेदाग है, जिनकी इमेज ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है। इस तरह जितेंद्र मिश्रा को ये जिम्मेदारी देकर ये भरोसा देने की कोशिश की गई है कि संदेश ये पहुंचे कि सेना की तरह मंदिर ट्रस्ट में भी अनुशासन भक्तों के भरोसे को बरकरार रखेगा।
0: विपक्ष क्या कह रहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ट्रस्ट का सीईओ बनने के बाद क्या कुछ मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने कहा है वो आपको हम सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने चयन को श्रीराम का आशीर्वाद मानते हैं। मार्शल मिश्रा का कहना है कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद उन्हें श्रीराम ने एक और अवसर दिया है, जहां पर वो श्रीराम मंदिर और भक्तों की सेवा करेंगे। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा है कि इतिहास से सीखना चाहिए, लेकिन नजर भविष्य पर होनी चाहिए।
4: चयन समिति का बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने इतने सब कैंडिडेट्स में से मेरा चयन किया है। इसे मैं श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है, जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊंगा। जो चयन समिति का प्रोसीजर था वो मेरे ख्याल से इंटरनेट पे मीडिया में उन्होंने प्रसारित किया था, और उनका प्रोसीजर, टाइमलाइंस, ये बार बार टीवी में आता रहा है। तो इस विषय में मेरे ख्याल से चयन समिति ही बताएंगे कि फिर क्या प्रोसीजर था और क्या ठीक था। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे सामर्थ्य दें कि मैं इस कार्य को अच्छी तरह से भली भांति रूप से कर पाऊँ। मैं अभी बीते समय की नहीं, आगे आने वाले समय की बात ज्यादा करना चाहूंगा। आप बीते समय को भूल जाएं और आगे समय में प्रभु राम की कृपा से हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कार्य को कर पाएंगे।
5: सर, आगे का क्या प्लान है?
4: देखिए, अभी कुछ समय पहले ही मेरा प्रथम सीईओ के रूप में चयन हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इस समय में यह सवाल प्रासंगिक है। मैं जब एक बार सीईओ के रूप में टेक ओवर कर लूंगा तो ट्रस्ट के विश्वास से और अपनी टीम की मदद से जो भी उत्तम से उत्तम कार्य होगा राम मंदिर के लिए, वो मैं करने का पूरा प्रयत्न करूंगा और श्री राम से ये प्रार्थना करूंगा कि मुझे इसके लिए भरपूर सामर्थ्य प्रदान करें।
6: सर मेरा पहला सवाल था क्योंकि आप फोर्सेस में रहे हैं चार दशकों तक आपने भारत को सर्विस की है आप लगातार एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपने संभाली और अब आपके ऊपर एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिससे पूरे देश की आस्था आप कह सकते हैं और उनका विश्वास जुड़ा रहता है क्या कुछ आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी खासतौर पर एक सीईओ के तौर पर अभी
7: जी जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो अभी चयन हुआ है और अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट हुई है अभी कुछ घंटे पहले ही हुई है और जहां तक सीईओ की रिस्पांसिबिलिटी का सवाल है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की साइट पर सीईओ की रिस्पांसिबिलिटी अवेलेबल है और उन्हीं रिस्पांसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सर्च कमेटी ने ये सिलेक्शन प्रोसेस किया है तो मेरी प्रायोरिटीज उन रिस्पांसिबिलिटीज का निर्वहन करना रहेगा जितना मेरा सामर्थ्य है उस पर
6: जी सर आप लंबे चार दशकों तक आपने इंडियन एयरफोर्स में सर्व किया है एक फाइटर पायलट के तौर पर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आपने देखे हैं हमने आपके बारे में कई बातें भी सुनी है खासतौर पर ऑपरेशन सफेद सागर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर में भी क्या कुछ अनुभव रहा है आपका उन चार दशकों के अंदर और अभी जो नई जिम्मेदारी मिली है उसको लेकर खासतौर पर
7: सबसे पहले तो मैं प्रभु श्री राम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि 42 सालों तक 17 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक मुझे राष्ट्र सेवा का भारतीय वायुसेना में अवसर प्रदान हुआ और अप्रैल में रिटायर होने के कुछ महीनों बाद ही मुझे ये भी अवसर प्राप्त हो रहा है तो आई वुड से दैट आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड आई कंसीडर माई सेल्फ अ वेरी फॉर्चुनेट पर्सन टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी
6: सर परिवार का क्या रिएक्शन रहा क्योंकि देखिए भगवान श्री राम तो मतलब सबके दिलों में बसते हैं आस्था का हम लोग बहुत आप कह सकते हैं कि बड़ा जुड़ाव रहता है परिवार का क्या रिएक्शन हो क्योंकि मैंने सुना है कि आपके घर में खासतौर पर देवरिया में भी और आसपास भी बहुत ज्यादा लोग बहुत उत्साहित हैं बहुत खुश है इस पूरे खबर आने के बाद सर
7: जी हाँ मेरे परिवार में मेरी माता जी मेरे बच्चे मेरी धर्मपत्नी मेरे भाई बहन सब बहुत ही प्रसन्न है और सब आभारी है चयन समिति ट्रस्ट और खास करके प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के लिए
6: तो और सर अभी जब ये खबर आई तब आप दिल्ली में हैं क्या आप अयोध्या जाएंगे जल्दी या फिर आपका क्या अभी नया कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है खासतौर

0: जैसा ट्रस्ट, जैसी ट्रस्ट की आज्ञा रहेगी, मैं अपना अगला कदम उसी हिसाब से उठाऊंगा।
1: सर एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपके ऑपरेशन सिंदूर में आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी रहे थे, खासतौर पे जब पूरा ऑपरेशन इतना सक्सेसफुली आपने लीड किया था, ऑपरेशन सफेद सागर में भी आप रहे, तो उस समय का आपका अगर आप कुछ शेयर कर सके, खासतौर पे जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपकी मुलाकात हुई थी ब्रीफिंग के दौरान, क्या कुछ रहा था उस समय भी सर?
0: अभी मेरा पूर्ण रूप से ध्यान मेरी आने वाली सीईओ अपॉइंटमेंट पर है, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इतिहास से हमें सीखना चाहिए, परंतु उसको ज्यादा ध्यान में ना देते हुए आगे की राह के विषय में ज्यादा मैं इस समय सोच रहा हूँ।
2: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी दोबारा न हो, इसके लिए चढ़ावे की नकद राशि की गणना में इंसानी दखल कम करने की कोशिशों पर आज बैठक में चर्चा हुई है। इस मामले में दो बैंकों और आईआईटी से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, प्रस्तावों का मूल्यांकन करके जल्दी ही तकनीक की सहायता से नकद चढ़ावे की काउंटिंग वाली प्रक्रिया को बेहतर किया जाएगा, ऐसा ट्रस्ट की तरफ से बताया गया है, ये जानकारी दी गई। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा मामले के इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार सवाल करते आए हैं। 5 से 6 महीने में यूपी में चुनाव होने हैं, उससे पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों इस मामले पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। अखिलेश ने ट्रस्ट के नए सीईओ बनाए जाने पर पूछा कि क्या नई चीज होने से पुरानी भूल जाएंगे।
3: श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी रहे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में करीब 40 साल सेवा दी, 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव उन्हें। करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 पर लेजर गाइडेड बमों को ऑपरेशनल बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हो रहा विवाद भी क्या थम जाएगा? अखिलेश यादव के सियासी सवाल को देखकर ये बात सामने आती है।
4: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है।
5: और
4: कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
3: राम मंदिर से दूरी रखने वाले अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मामले पर पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबकी आस्था से जुड़ा ये मुद्दा उन्हें 2027 में फायदा पहुंचा सकता है, बीजेपी की उस वोट बैंक में सेंध लगा सकता है जो अब तक उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बीच की सबसे बड़ी दीवार।
6: नई चीज होने से हम और आप पुरानी चीज भूल जाएंगे क्या? हमें कोई शिकायत किसी से नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से, लेकिन जो राम धन के साथ हुआ, चंदा जिस तरीके से वहां से गायब हुआ, या चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई, आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया, अगर आपने बड़े लोगों को क्लीन चिट दिया है तो उनको क्यों जेल भेजा, उन्हें भी बाहर करो।
3: जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, तब अखिलेश का हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को चुनौती देना बीजेपी को रास नहीं आ रहा, और इसीलिए वो इसकी काट के तौर पर जनता को समाजवादी सरकारों में हिंदुओं से कथित भेदभाव की याद दिलाती है।
7: आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी की कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।
3: चुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव सेट करने में जुटी, तो मुख्यमंत्री एक बार फिर अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा लगाने में जुट गए।
7: अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई राम द्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी।
3: बीजेपी की पूरी सियासी यात्रा में राम

0: जैसे भावनात्मक मुद्दे का अहम रोल रहा है। इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर की चढ़ा चोरी की घटना को समाजवादी पार्टी ने लपका तो योगी आदित्यनाथ ने पहले कब्रिस्तान की चार दीवारी वाला मुद्दा उठाने से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे वाला 23 साल पुराना प्रकरण तक याद दिलाया।
1: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
0: इस तरह योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहते। SIT जांच करवाने का ऐलान करते हुए उन्होंने दोषियों को सजा दिए जाने की बात कही तो वही विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि राम मंदिर के खिलाफ रहे लोग अब आस्था की बात करने लगे।
1: हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
0: भगवा वेश में रहने वाले और गोरक्षपीठ की बहन के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व का चेहरा है। इसके अलावा उनके बुलडोजर मॉडल की उत्तर प्रदेश के बाहर भी चर्चा होती। इस तरह योगी अपने विनिंग फॉर्मूले से पीछे हटने के मूड में नहीं।
2: ट्रस्ट की बैठक में सिर्फ CEO और बाकी अहम पदों और सदस्यों का ही नाम तय नहीं किया गया, बल्कि वित्त वर्ष 2025-26 का सालाना हिसाब भी पेश किया गया। इस सब का मकसद उस भरोसे को मजबूत करना है जिस पर चढ़ावा मामले से बड़ी चोट हुई। ट्रस्ट ने बताया कि 2025-26 के दौरान न्यास की कुल आय 237 करोड़ रुपए रही, कुल व्यय 91 करोड़ रहा। निर्माण आदि कार्यों पर 425 करोड़ का पूंजीगत व्यय हुआ। 31 मार्च 2026 को न्यास के पास कुल उपलब्ध राशि 1882 करोड़ थी। न्यासी मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक लेखों को अनुमोदित कर दिया। अयोध्या के बाद अब खबर मथुरा की, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 और 4 सितंबर को मथुरा और वृंदावन में रहेंगे। जन्माष्टमी के दिन उनका श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। CM की ओर से मथुरा और वृंदावन के लिए करीब 1051 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी प्रस्तावित है और इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बढ़त समाजवादी पार्टी पर BJP हासिल करती है, क्या उसी के लिए कृष्ण जन्मभूमि वाला दांव मुख्यमंत्री चलते हैं? क्या इसीलिए वो अब लगातार भाषणों में कृष्ण बिहारी लाल की जय का उद्घोष करने लगे हैं?
0: बुलडोजर एनकाउंटर सैफई से रामपुर तक, यानी अखिलेश यादव से आजम खान तक पर वार और वृंदावन बिहारी लाल का नाम लगातार लेते हुए क्या 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का सियासी चतुर्भुज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है?
1: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
3: हर दिन राधे राधे कहते हैं,
4: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे।
5: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा। वृंदावन

0: अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव सवाल चंदा चोरी पर करते हैं। सनातन के अपमान के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव घेरे जाते हैं तो फिर इटावा के केदारेश्वर मंदिर निर्माण की याद दिलाते हैं। और तब क्या समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट पर घेरने के लिए अब योगी आदित्यनाथ लगातार वृंदावन बिहारी लाल का नाम भाषणों में ले रहे हैं।
1: वृंदावन बिहारी लाल के
0: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांस्कृतिक नैरेटिव में मथुरा की चर्चा तेज है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद क्या बीजेपी का अगला बड़ा फोकस मथुरा है? सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के हाल के भाषणों पर गौर करने पर श्री राम के साथ श्री कृष्ण का नाम लेकर वो जय कराते हैं।
1: सियावर रामचंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान के वृंदावन बिहारी लाल के।
0: सिद्धार्थ नगर हो या आजमगढ़, इटावा हो या आगरा हो, हर सभा में वृंदावन बिहारी लाल की जय मुख्यमंत्री करा रहे हैं।
1: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
0: अयोध्या से बीजेपी को घेरते अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घिरेंगे? ये सवाल पहले से उठता आ रहा है।
2: अब तो बारी इसी ब्रज भूमि की है, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव गोवर्धन बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं।
0: 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ परिवार का नारा रहा अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और तब अब की बारी बांके बिहारी कहते मुख्यमंत्री ये चैलेंज सीधे अखिलेश यादव को देते आए कि राम जन्मभूमि पर आस्था के अपमान की बात करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष क्या कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलेंगे?
2: अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपकी झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है।
0: इसके जवाब में अब तक अखिलेश यादव ने यूं तो सिर्फ राधे राधे कहा है।
3: हमारे घर के पास वो बहुत है, वो और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
0: राधे राधे की बात तो अखिलेश यादव 4 साल पहले भी कहते दिखे जब चुनाव 2022 का आया।
3: भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं।
0: अखिलेश यादव ये तक कहते आए कि भगवान उनको सपने में आकर पहले ही सरकार बन जाने की बात कह चुके हैं।
4: आप हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा।
0: लेकिन अखिलेश के सपने की वो बात तो सच हुई नहीं, तो क्या 2027 में भी कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है?
5: अयोध्या धाम अब ये तीनों का हो गया है तो यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाएं तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़ें। मैं बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदुवंशी कहेंगे लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है।
0: योगी आदित्यनाथ तब लगातार कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सवाल करते आ रहे हैं जब अयोध्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव सवाल करते हैं।
6: श्रद्धा और आस्था उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है। कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
0: अयोध्या पर बोलते अखिलेश, कृष्ण जन्म भूमि पर योगी आदित्यनाथ का चैलेंज मंजूर नहीं करते, और क्या इसीलिए योगी आदित्यनाथ के भाषण से लेकर चुनावी रणनीति तक में श्री कृष्ण का नाम बढ़

0: के पवन सुत हनुमान के वृंदावन बिहारी लाल के।
1: योगी आदित्यनाथ जी भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म में उनकी आस्था है, इसलिए अपने संबोधन के पूर्व प्रभु राम और प्रभु कृष्ण का नाम लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो वामी हैं, जो कांगी हैं, जो सपाई हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है।
2: जब मुख्यमंत्री जी मथुरा का नाम लेते हैं तो वो शिक्षा का नाम नहीं लेना चाहते, शिक्षा व्यवस्था का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री जी किसी कम्युनल पोलराइज इशू की बात करना चाहते हैं तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करना चाहते हैं। वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है।
3: अब सवाल है कि आखिर पश्चिमी यूपी के सियासी गणित पर क्या और कितना असर पड़ेगा, इसीलिए सीटों का गणित हमने आपके लिए निकाला है। पश्चिम यूपी में कुल 27 लोकसभा सीट है, 135 विधानसभा सीट, जहां 2014 और 2019 में तो बीजेपी ने 24 और फिर 19 सीट जीती, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 27 में से 13 सीट ही बीजेपी जीत पाई, और तब समाजवादी पार्टी 3 लोकसभा चुनाव में पहली बार दहाई तक पहुंच गई। कांग्रेस का भी खाता खुला, वहीं 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त समाजवादी पार्टी के ऊपर हासिल है। ऐसे में सवाल है कि मथुरा का मुद्दा क्या एक तरफ अयोध्या पर आक्रामक होते अखिलेश की काट बनेगा और पश्चिम तक हिंदू वोट का को बंटने से रोकेगा? क्योंकि अगर केवल ब्रज क्षेत्र की भी बात करें तो 2022 में ब्रज इलाके में बीजेपी को 53 तो अखिलेश को केवल 12 सीट मिल पाई थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा, बीजेपी 53 सीटों से घटकर 42 विधानसभा इलाकों में ही बढ़त पा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा सीटों से आगे बढ़कर 23 विधानसभा इलाकों तक पहुंच गई। अब 2027 में यह बढ़त किसके पास रहेगी, सवाल इसका है। केवल धर्म की सियासी लड़ाई ही नहीं है, राजनीतिक रस्साकशी युवा वोटर को लेकर भी है, जहां जेंजी वोटर को लेकर पहले से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में खींचतान होती रही, आज मुख्यमंत्री योगी ने 2 सिंडिकेट का सियासी वार किया।
4: रामपुर की जिस जवाहर यूनिवर्सिटी को खुद आजम खान ने 2003 में जौहर ट्रस्ट बनाकर खुद को आजीवन इसका चांसलर बनाकर खड़ा किया,

0: सी जौहर यूनिवर्सिटी पर जुलाई के महीने में बुलडोजर चलाने की नोटिस दी गई तो सियासत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हुई। बुलडोजर तो फिर चलने से पहले रुक गया, लेकिन जब शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष सरकार से सवाल करता है तो मुख्यमंत्री ने बुधवार को सवालों की उस सियासत को यूं धराशाही किया जब आउटसोर्स निगम की शुरुआत की।
1: तब हर मंडल में एक विश्वविद्यालय हो गया है। अब ऐसा नहीं कि रामपुर सिंडिकेट के लिए विश्वविद्यालय निर्माण के लिए 10 एकड़ का प्रावधान और अन्य जगहों पर विश्वविद्यालय बनाने हैं तो 100 एकड़। नहीं, हमने एक पॉलिसी बनाई और पॉलिसी के दायरे में सभी 75 जनपद में एक समान व्यवस्था बना दी गई। अब कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। पहले प्रदेश में 17 के पहले सेफई सिंडिकेट और रामपुर सिंडिकेट पूरी व्यवस्था का खून चूसता था। तीसरा सिंडिकेट पे हमने प्रहार किया है, जो एजेंसियों के माध्यम से आपका शोषण होता था, आज ये आउटसोर्स निगम उस पर प्रहार है।
0: आउटसोर्स निगम यानी प्रदेश के उन लाखों कर्मचारियों के लिए मददगार हाथ हो सकता है जिन्हें नौकरी तो किसी कंपनी के जरिए ठेके पर मिल जाती है, लेकिन कभी हक की पूरी सैलरी ना मिलने तो कभी बीच में नौकरी से हटा दे की गुंडागर्दी चलती है और युवा परेशान होते हैं। लेकिन अब योगी सरकार कहती है कि ना आउटसोर्सिंग वाले फंसेंगे ना पक्की नौकरी वाले।
1: पहले क्या था, 17 के पहले भर्ती निकलती थी तो युवा को पेपर लीक होने की चिंता होने लगती थी, परीक्षा दी तो परिणाम की चिंता, परिणाम आया तो जो कार्य पद्धति थी पिछली सरकारों की वह अवश्य इस प्रकार की व्यवस्था कर देता था कि कोर्ट उसमें स्टे जरूर देगा, ये भी युवा की चिंता। चयन हुआ तो नियुक्ति की चिंता,

0: और नौकरी में अगर आ ही गया तो अपनी सेवा की चिंता। आज आयोग और बोर्ड जितने भी यूपी गवर्नमेंट के हैं उन्हें सुनिश्चित किया गया है कि युवाओं के भविष्य के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसके लिए केवल और केवल जेल होगी और प्रॉपर्टी पूरी जब्त कर दी जाएगी।
1: असल में सारी लड़ाई है युवा वोटर, खासकर अब तो जेन जी वोटर। यूपी में कुल वोटर करीब 13 करोड़, इनमें जेन जी की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा, लगभग 15%। यूपी में जिन सीट पर जेन जी वोटर्स का असर माना गया है वो 403 में 80 से 120 सीटें बताई जाती है। और तब सबकी नजर उत्तर प्रदेश में ही है, जहां योगी सरकार और संगठन दोनों मजबूती से जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक पर फोकस कर रहे हैं।
2: उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि यूपी में सबसे बड़ी ताकत युवा है तो अखिलेश यादव भी युवा पर ही नजरें लगाए बैठे हैं।
3: इस सरकार ने अगर ध्यान दिया होता तो शायद इन बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिल गई होती, ये भविष्य के बारे में चिंता कर रहे होते, इन्हें सड़कों पर नहीं बैठना पड़ता। मैं इन तमाम बच्चों से कहना चाहता हूँ, कुछ दिनों बाद इसमें बहुत सारे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, इस सरकार को हटाने के लिए वोट करें।
1: एक तरफ सरकार और संगठन उत्तर प्रदेश में जेन जी से संवाद में जुड़े हुए हैं ताकि युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है ये बात पहुंचाई जा सके, तो दूसरी तरफ सरकार भी इस बात को मजबूती से युवाओं में रख रही है कि नौकरी के वादे पर कहीं कोई कमी नहीं रहेगी।
0: पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी, और जो परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं इन सभी परीक्षाओं के परिणाम आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं। अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नए नौजवानों को हम सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं।
4: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश में सड़कों पर गड्ढों की समस्या एक बार फिर मुंह चढ़ाने लगी है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक कई फीट गहरे गड्ढे बन गए। लखनऊ में तो पूर्व डिप्टी सीएम के घर के बाहर अचानक 10 से 12 फीट का गड्ढा होने से 2 बाइक सवार भाई घायल हो गए।

0: ये जो गड्ढा है यहाँ पर 10 से 12 फीट का है और इसमें क्रेन को बुलाया गया है, क्योंकि क्रेन की मदद से ही इस मोटरसाइकिल को निकाला जा रहा है।
1: उत्तर प्रदेश की राजधानी की सड़कों की हालत ये हो गई कि कब सड़क पाताल में धस जाए, कौन उसमें गिर जाए, कोई कुछ नहीं जानता। गड्ढे भी इतने गहरे बन जाते हैं कि बाइक तक को निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ती है। और जिस शहर के बारे में कहा गया कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, अदब के उसी शहर में जनता का दिल सड़क पर अचानक बनने वाले इतने बड़े गड्ढे को देखकर बैठ जाता है और लोग वीवीआईपी इलाके की सड़कों में खुद को सुरक्षित नहीं पाते।
2: यहाँ पर क्योंकि कुछ दूरी पर यहाँ पर दिनेश शर्मा जो वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, राज्यसभा मेंबर हैं, वो इनका घर है, उनके ठीक घर के पास में ही ये गड्ढा है सामने।
3: यहाँ पे गड्ढा हम लोग को दिखा नहीं, अचानक से गाड़ी इसमें घुस गई और हम लोग गिर गए। बैरिकेडिंग हटी थी पानी की वजह से, हमको दिखाई नहीं गड्ढा।
2: कितना नुकसान हुआ तुम लोग को, मतलब अभी क्या स्थिति है?
3: बाइक खराब हो गई, चोट हम लोग के लग गई है।
1: तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास वाइस चांसलर के बंगले के सामने और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जहां रहते उसके सामने की सड़क पर सोलर पैनल का काम करने वाले दो भाई घर से निकले तो काम पर थे लेकिन अस्पताल

0: लेकिन अस्पताल पहुंच गए।
1: मतलब आ रहे थे, यहाँ इतना पानी भरा हुआ था कि कुछ कहे कि नहीं। उसके अंदर गाड़ी मतलब जैसे उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने सोचा एकदम रोड क्लियर है, एकदम सही है, लेकिन रोड यहाँ की सही नहीं थी। रोड एकदम मतलब गड्ढे के अंदर थी, और जैसे मेरे भाई ने आगे बढ़ाया उसके मतलब वो अंदर ही चली गई गाड़ी, अंदर चली गई, तो कम से कम 1.5 घंटे तक बेहोश रहे हैं।
0: लखनऊ की तरह कानपुर में भी सड़क पर बने गड्ढे कमजोर निर्माण से खबरदार कर रहे हैं। बारिश के बाद कानपुर की ब्रह्म नगर इलाके डॉट नाले के नीचे से मिट्टी खिसकने से सड़क का बड़ा हिस्सा धस गया, जिसमें 25 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। हालत ये कि सड़क का केवल करीब 2 फीट का हिस्सा ही सुरक्षित बचा है।
2: इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के ब्रह्मनगर इलाके में, जहां पर भारी बारिश के चलते सड़क का एक बड़ा हिस्सा धस गया है। पीछे विजुअल्स में आप मेरे देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि नीचे से डॉट नाला जा रहा था जो धस गया है, जिसके चलते इस पूरी सड़क में 25 से 30 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है। विजुअल्स में आप देखेंगे तो ये नई सड़क जो है जो बनाई गई थी, फिलहाल सड़क पे दरार भी आ चुकी है और उसकी सतह जो है वो पूरी तरीके से धस चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रशासन द्वारा फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसी तरीके का कोई हादसा ना हो, कोई यहां से आने और जाने ना पाए। हालत ऐसी है कि ये पूरी जो सड़क है उसे बंद कर दिया गया है, चलने और आने जाने के लिए भी जो कोई हिस्सा है वो नहीं बचा है। लोग फुटपाथ का सहारा लेकर यहां से आ जा रहे हैं।
0: 27 अगस्त को सबसे पहले सड़क पर सड़क धंसने की घटना सामने आई। इसके बाद जलकल विभाग की टीम ने मरम्मत का काम शुरू किया, लेकिन लगातार बारिश के चलते मिट्टी गीली होने और मौके पर काम करने में आ रही दिक्कत के कारण मरम्मत पूरी नहीं हो सकी। इस बीच मंगलवार रात हुई भारी बारिश ने समस्या को और बढ़ा दिया। नाले के नीचे की जमीन में पानी जाने से मिट्टी दोबारा धसक गई और पहले से धंसा हिस्सा और फैल गया। रात भर में गड्ढे का आकार बढ़ने से सड़क पर आवाजाही का खतरा बढ़ गया।
3: चैलेंजिंग तो है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगल बगल जो है आप देखते हैं पूरी पॉपुलेशन यहाँ पे आ चुकी है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी खुल चुके हैं और हाई राइज बिल्डिंग भी आ चुकी हैं, और ये पुराना होने के साथ साथ ये अपनी जो आयु पूर्ण कर चुका है। तो एक चैलेंजिंग है कि जहाँ भी ये धंसता है वहाँ पे आसपास आबादी क्षेत्र होने के कारण एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने रहता है। बट ये है कि हम लोग यहाँ पे पूरे सुरक्षा और मानकों के हिसाब से यहाँ पे पहले इसको सुरक्षित कर लेते हैं और फिर हम लोग काम कर रहे हैं।
0: ब्रह्मनगर से ईदगाह के रास्ते पर हुए इस धसान के बाद अब आसपास के घरों को लेकर चिंता जताई जा रही। कुछ घरों को खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए, वहीं मरम्मत में बाधा बन रहे एक जर्जर घर को हटाया गया है। आसपास रहने वाले लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि उनके घर के पास की सड़क इतनी धस सकती है। सड़कों की घटिया निर्माण को लेकर लोग डरे हुए हैं। वहीं प्रशासन का पूरा ध्यान गड्ढे को और फैलने से रोकने और डॉट नाले की सुरक्षित तरीके से मरम्मत करने पर है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।
4: जनता के पैसे से सड़क बनती है, सड़क टूट जाती है, पैसा कहां जाता है? ऐसा ही सवाल सूरत में उठा, जहां जनता के पैसे से 14,75,00,000 रुपए खर्च करके गार्डन बना, 1 साल चला, 3 साल से बंद।
0: सूरत का डिंडोली इलाका, आसमान से दिखता एक शानदार गार्डन, वो गार्डन जो जनता के टैक्स के पैसे से 14,75,00,000 रुपए खर्च करके बना तो, लेकिन 3 साल से वीरान पड़ा है। इसीलिए आज तक आज खबरदार कर रहा है इस सवाल के साथ, क्या 14,75,00,000 रुपए लगाकर जो गार्डन बना वो आखिर इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, जिसे 2022 में बनाया गया, 1 साल तक जनता के लिए खोला गया और फिर 3 साल से ये बंद है।
5: आप तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लावर गार्डन लिखा हुआ है और नीचे सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिखा हुआ है, यानी कि सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा डिंडोली इलाके में एक फ्लावर गार्डन तैयार किया गया था। और ये फ्लावर गार्डन इसलिए तैयार किया गया था लोग यहाँ पर आए, देख सकें, घूम सकें और इसका लुत्फ़ उठा सकें, आनंद ले सकें। लेकिन यह गार्डन पिछले 3 सालों से बिल्कुल जनता के लिए बंद कर दिया गया है। करीबन 14,74,00,000 रुपए की लागत से यह गार्डन बनाया गया था। 2022 में इसे तैयार किया गया था, लोकार्पण किया गया था और इस बात का प्रमाण यहाँ पर सूरत महानगर पालिका द्वारा लोकार्पण विधि के समय लगाई ये तख्ती है और इस तख्ती पे आप देख सकते हैं जो तारीख लिखी गई है वो 5/2/2022 दिन शनिवार और नीचे तिथि के अनुसार बसंत पंचमी।

0: लिखा गया, यानी कि 2022 में बसंत पंचमी के दिन इस फ्लावर गार्डन की लोकार्पण विधि हुई थी, जनता के लिए खोला गया था। उसके बाद यह गार्डन सिर्फ एक साल तक ठीक तरीके से चला था, लोग आते थे, घूमते थे, देखते थे, फोटो वगैरह खिंचाते थे, तो लोगों के लिए एक ये घूमने वाली जगह बन चुकी थी। लेकिन 2023 से यह गार्डन पूरी तरह से बंद है।
1: सोचिए, जिस गार्डन में 1.5 लाख से ज्यादा फूल और पौधे लगाए गए, वो ज्यादातर अब सूख चुके हैं। और सवाल है कि 4.5 एकड़ में 15 करोड़ रुपए लगाकर गार्डन बना, तो उस पैसे की बेकार जाने की वजह क्या है?
2: 2024 के बाद तक ये पूरा गार्डन बंद कंडीशन में था। गार्डन डिपार्टमेंट पूरा डिसेंट्रलाइज किया गया। गार्डन डिपार्टमेंट के द्वारा जब डिसेंट्रलाइज किया गया तो ये पूरा जिम्मेदारी जोन के ऊपर आ गई। जोन के पास क्योंकि उस टाइम पे इतना स्टाफ ना होने की वजह से इमीडिएटली उसको रीओपन करने का कोई स्कोप नहीं दिख रहा था।
1: अधिकारी कहते हैं कि दिवाली तक वापस इसे खोला जा सकता है। क्या ये वापस संभव होगा या फिर जनता का पैसा बर्बाद करना सरकारी अधिकारियों का शौक बन गया है? और अगर हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।
3: अब बात नेपाल त्रासदी और उसके असर की। नेपाल में आई तबाही के बाद डर केवल ये नहीं रहा कि बाढ़ का पानी बिहार तक असर दिखा सकता है, बल्कि चिंता गंडक नदी में बहकर आती मछलियों तक को लेकर है। बिहार में नेपाल से सटे कई इलाकों में मत्स्य विभाग की तरफ से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी के किनारे नेपाल बाढ़ के बाद असामान्य तौर पर ऐसी मछलियां मिलने लगी हैं जिन्हें पकड़ने, मारने, बेचने या खाने से रोका जा रहा है।
4: ऐसा है, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम हर जगह चला रहे हैं और पब्लिक को अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो भी बाढ़ से नेपाल के तरफ से जो भी मछलियां आ रही है उसके कारण, क्योंकि बहुत इन्फेक्शियस हो है, वो बहुत सारे डिजीज को कैरी ऑन कर रहा है, तो इन्फेक्शियस डिजीज उसको खाने से होने की संभावना है, जिसके कारण उस पर प्रतिबंध कराया जा रहा है कि उसको पब्लिक ना खाएं, उस मछली का उपयोग नहीं करें, नहीं तो उसे डिजीज लगने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जैसे उल्टी, डिसेंट्री और बहुत पेट में दर्द, ये सब तरह का डिजीज उसमें कॉमन है। और इसके लिए हम लोग बेचने वालों को भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो लोग उस तरह की मछलियां को ना बेचें और आम पब्लिक उसको नहीं कंज्यूम करें, उसको नहीं खाएं, नहीं खरीदें।
3: अब आपको जीडीपी के नंबरों पर हो रहे सियासी घमासान से खबरदार करते हैं। पहली तिमाही में जीडीपी के नंबरों से सरकार जहां गदगद है, तो कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है।
5: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया।
1: एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी धरती से ही देशवासियों को खुशियों वाली एक खबर सुनाई।
5: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है।
1: दरअसल भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 31 अगस्त को शाम 4 बजे पहली तिमाही के आंकड़े जारी किए थे। पता चला कि वास्तविक जीडीपी 7.8% से बढ़ रही है, जबकि नॉमिनल जीडीपी 10.3% रही है। बैंकिंग, रियल एस्टेट, आईटी जैसे सर्विस सेक्टर 12.1% की दर से बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेकेंडरी सेक्टर में 8.6% की वृद्धि दर है। बस खेतीबाड़ी सबसे पीछे 3.6% रह गई है, वरना सड़क, पुल, फैक्ट्री, मशीनरी में निवेश यानी GFCF 11.9% रहा। लोगों की खरीद शक्ति की दर यानी PFCE 7.1% रही।
5: भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए।
1: पीएम ने देशवासियों के संकल्प की तारीफ करते हुए विकास पथ पर और आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा, तो विपक्ष ने इस आंकड़े पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। मनीष तिवारी कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये विकास दर किसके लिए, जीडीपी के मुकाबले बचत और उत्पादन अनुपात गिरे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 80% आबादी मुफ्त राशन पर फिर निर्भर क्यों है, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इसे ग्रेटली डिस्टॉर्टेड पिक्चर बताया और कहा कि घरेलू बचत 5.1% पर और आम लोगों का कर्ज रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्यों है।
6: प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं 2.6% GDP।
7: क्या दूध की कीमतें कम हो गई? क्या मुफ्त राशन देने की अब जरूरत नहीं रही? क्या रोजगार का 45 साल का रिकॉर्ड वापस दुरुस्त कर दिया आपने?
8: मोदी कौन से चश्मे से देखते हैं?
1: विपक्षी नेताओं और दलों का काम सरकार की नीतियों आंकड़ों पर सवाल उठाना है, मगर विपक्षी दलों के साथ जानकारों ने भी आंकड़ों पर सवाल उठाना शुरू किया। सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि वास्तविक विकास दर 2.6 ही है। अर्थशास्त्री धनंजय सिन्हा ने कहा कि नॉमिनल GDP 10.3 और रियल 7.8 यानी डिफ्लेटर सिर्फ 2.5 है, क्योंकि खुदरा महंगाई 3.9, थोक 9 से ऊपर है। 6% डिफ्लेटर नियम से ये 4 से 4.5% ही बैठेगी। कई जानकारों ने के शेप्ड इकोनॉमी यानी अमीरी गरीबी की बढ़ती खाई पर सवाल उठाए कि कॉरपोरेट शेयर बाजार IT टॉप अमीर जो 5% है ये तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीण भारत छोटे उद्योग संकट में है। उपभोक्ताओं की मांग 3 से 4% ही है, लेकिन सरकार के अफसर इन सवालों को खारिज करते हैं।
3: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: आगे आगे
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया
4: है।
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: बोलो ना बेटा, क्या चाहिए?
1: जूस या सोडा डाले या आटा, बोले ना बेटा क्या लेगा बिफोर यू फ्राई माय भेजा।
2: मजा नहीं आया,
0: इसे कैसे दिलाऊं मजा भगवान?
3: ये लो बस।
4: अनमोल मजा, असली मजा तो यही है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आगे आगे उधर उधर करेक्ट करेक्ट
1: मिल गया।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर गया
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
8: चलो
9: मैं।
8: अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं।
10: चलो सखी उड़ ले।
11: अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट।
8: बड़ी जल्दी सीख गई।
9: कल से प्लेन चलाना सीखूंगी।
11: स्वाद सपनों का।
12: In association with
13: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol.
14: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट को अपना पहला सीईओ मिल गया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले रिटायर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र अब रामलला के दरबार की व्यवस्था संभालेंगे। देवरिया के रहने वाले हैं जितेंद्र मिश्र। उन्होंने 5,500 से ज्यादा दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए राम मंदिर के पहले सीईओ का पद हासिल किया। हाल ही में चढ़ावे को लेकर उठे विवादों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक ऐसे कमांडर की जरूरत थी जो व्यवस्था को पारदर्शी बना सके। अब इनके जिम्मे राम मंदिर के खजाने, सुरक्षा, प्रशासन को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। अयोध्या के बाद बात मथुरा की, जो अब यूपी के 2027 के चुनाव की धुरी बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस अब मथुरा वृंदावन पर है। उनके जयकारों में बांके बिहारी लाल की जय जयकार है, तो मथुरा के विकास का भी वो दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी का विजय रथ मथुरा की इसी सांस्कृतिक और धार्मिक भूमि से अपनी सियासी रफ्तार पकड़ेगा। नेपाल में आई तबाही ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और अब सवाल यह है कि क्या वैसे ही प्रलय भारत के उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में आ सकती है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे कमजोर होते पहाड़ और लगातार बढ़ती ग्लेशियर झीलें देश के इन पहाड़ी राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद आपको बताएंगे कि एक हफ्ते पहले जिस रास्ते पर मौत का मलबा बिछा था, आज वहां चीन के बुलडोजर दौड़ रहे हैं। नेपाल में मातम है, शवों की तलाश और गिनती हो रही है, लेकिन चाइना के तिब्बत में सब खामोश है। क्या चाइना ने तबाही के इस मंजर पर पर्दा डाल दिया है? इसके बाद आपको बताएंगे कि नेपाल ने भारत, चाइना और अमेरिका जैसे देशों से मुआवजा क्यों मांगा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह का कहना है कि अमीर देशों के फैलाए प्रदूषण की सजा नेपाल भुगत रहा है, इसीलिए ये देश नेपाल को दी जाने वाली मदद को दान नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी समझकर हर्जाना दे। इसके बाद आपको बताएंगे कि टैंकर के बदले टैंकर की नई रणनीति के तहत अमेरिका ने ईरान पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। इन हमलों में न सिर्फ ईरानी टैंकर्स को निशाना बनाया गया है बल्कि 100 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर भी बमबारी की गई है। जबकि ईरान इन हमलों में आम नागरिकों, एक शादी समारोह का भी उसने एक लेगो वाला वीडियो बनाया है, उसको शादी समारोह को निशाना बनाए जाने का दावा किया है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे एक पिता को उसके ही बेटे लाठी डंडे से मार रहे हैं और आखिर में आपको दिखाएंगे कि कैसे आज स्वास्थ्य को लेकर हमें चिंता करनी चाहिए क्योंकि पुराने सामान को रीपैकेज करके नए पैकेज के साथ पेश किया जा रहा है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या नेपाल जैसी प्रलय के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन तमाम राज्यों में भी आ सकती है। हिमालय की जिन पहाड़ियों से 26 अगस्त को नेपाल में आपदा आई, उसी हिमालय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा भारत में आता है। हिमालय क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 14% से ज्यादा है। नेपाल की 4.27% है, भूटान की 1.1% है और चाइना की यही हिस्सेदारी करीब 45% है। यानी चाइना के बाद हिमालय क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो भारत में ही आता है। अब इनमें भी जिन राज्यों में हिमालय के ये पहाड़ सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रहे हैं उनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। जो तस्वीरें आ रही हैं उसने हमें इतना सतर्क कराने पर मजबूर किया कि हमने सोचा कि आज इस खबर से शुरुआत करते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो संकेत मिल रहे हैं, आप सबसे पहले इन राज्यों से आई इन तस्वीरों को देखिए। पहाड़ों के टूटने, बादल फटने, भूस्खलन की घटनाएं बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं और स्थिति यह है कि अब भी इन राज्यों में लैंडस्लाइड के कारण 400 से ज्यादा सड़कें पूरी तरह बंद है। देखिए,

अब पहाड़ों का इस कदर टूटकर बिखरना कोई सामान्य घटना नहीं है। इस वक्त जम्मू कश्मीर का 28% क्षेत्रफल ऐसा है जहां भूस्खलन और पहाड़ खिसकने का जोखिम सबसे ज्यादा है। 24.4% पहाड़ी इलाकों को हाई रिस्क की श्रेणी में रखा गया है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट बताती है कि जब जम्मू कश्मीर में दर्ज हुई 669 भूस्खलन की घटनाओं का अध्ययन हुआ तो उनमें 87% घटनाएं अकेले इसी हाई रिस्क जोन में रिकॉर्ड हुई। और यहां बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 2015 से 2024 के बीच पूरे राज्य में जानते हैं बाढ़ की 12,758 घटनाएं दर्ज हुई हैं। पहाड़ खिसकने की 4,000, बादल फटने की 67 घटनाएं। बहुत खतरनाक बात है ये। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड में इस वक्त हर दिन कहीं ना कहीं पहाड़ टूटने, भूस्खलन की कम से कम एक घटना तो जरूर हो रही है रोजाना। और यही हाल हिमाचल प्रदेश का है जहां हैंगिंग ग्लेशियर्स का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। हैंगिंग ग्लेशियर्स का मतलब यह है कि जहां पहाड़ों की खड़ी जो ढलान है वहां भी बर्फ और ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा अटका हुआ है जो कभी भी तबाही ला सकता है। वो टूटकर जब गिरता है तो अपने साथ पूरा मलबा लेते हुए पिघलते हुए आगे जबरदस्त बर्बादी का सबब बनता है। और इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में ही कहा कि क्या जैसी तबाही नेपाल में हुई है वैसी तबाही का खतरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है। अगर सिर्फ आज की तस्वीरें देखें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बाढ़, लैंडस्लाइड, नदियों का जलस्तर बढ़ने से 10 लोगों की जान जा चुकी है, 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा में भारी से भारी बारिश दर्ज की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश के सोलन के ऊपरी इलाकों में कुल्लू जिले में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई है। इन घटनाओं के कारण हिमाचल प्रदेश में कुल 259 सड़कें ठप, उत्तराखंड में 170 से ज्यादा सड़कें ठप, हाईवेज बाढ़ के कारण बंद। बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इन घटनाओं को न्यू नॉर्मल मान लिया गया है कि भाई ये बाढ़ तो आएगी ही आएगी, ये भूस्खलन तो होगा ही होगा। ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड की घटनाएं सामान्य होती हैं और कुछ के वक्त बाद सब सही हो जाता है, लेकिन हकीकत में यह सोच पूरी तरह से गलत है। सच्चाई यह है कि जैसे कोई दीवार धीरे धीरे जर्जर कमजोर होकर टूटने लगती है ठीक उसी तरह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व के राज्यों में हिमालय के कई पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। अगर हमारी सरकारों ने जल्द कोई नया एक्शन प्लान लागू नहीं किया तो भारत के हिमालय क्षेत्र में भी नेपाल जैसी आपदा पैदा हो सकती है। आप देखिए इन तस्वीरों को।

0: सवाल यही है कि क्या इन संकेतों को कोई देख रहा है? आज अगर भारी तबाही के ये साफ साफ तस्वीरें दिख रही हैं, जो किसी भी बड़ी त्रासदी में किसी भी दिन तब्दील हो सकती हैं, तो क्या कोई जागने को तैयार है? अब भारत के हिमालय क्षेत्र में नेपाल जैसी तबाही का खतरा क्यों मंडरा रहा है? उसके लिए आप IIT मंडी की इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें हिमाचल प्रदेश की 2000 से ज्यादा ग्लेशियर लेक्स यानी ग्लेशियर झीलों का अध्ययन किया गया, जिसमें यह पता चला कि इनमें 9 से 12 झीलें ऐसी हैं जो काफी गंभीर है, संवेदनशील है। यानी ये वो झीलें हैं जिनका आकार बदल रहा है, तेजी से बड़ा हो रहा है, जो बड़ी आपदा में फट भी सकती है। इनमें भी 4 झील ऐसी हैं जिनकी निगरानी के लिए IIT मंडी ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता बताई है। इनमें एक है घेपल झील, दूसरी है बासुकी झील, तीसरी है काशांग झील और चौथी है बसपा झील। ये वो झीलें हैं जिनका आकार पिछले 10 सालों में 30-60% बढ़ा है। और अभी जिस तरह हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, चट्टाने टूट रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, उसके कारण इन झीलों का प्राकृतिक बांध है, जैसे लेक बना ना झील, उसके जो प्राकृतिक बांध है वो कभी भी टूट सकते हैं और फिर जो विनाशकारी तबाही कालम होगा अगर ऐसा होता है, एक बार में लाखों करोड़ों लीटर पानी हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में आएगा और वो भी जबरदस्त मलबे के साथ, जो वो अपने रास्ते में ढोता हुआ साथ लाएगा। मतलब भयानक तबाही हो सकती है। और यही कारण है कि अभी पूरी दुनिया नेपाल की आपदा को भारत के लिए भी एक चेतावनी मान रही है। देखिए,
1: फ्लैट आ रहा है, फिर यहां ब्रेडेड चैनल से आ जा रहे हैं, तो जैसे ही ये चौड़ा होगा, ठीक है, एरिया पे, सो अगर यहाँ से मान लेते हैं अगर ये बस भी होगा, सो उसको इतना चौड़ा एरिया मिलेगा कि आपकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, वो एनर्जी आगे तक नहीं जाएगी। और ये यहाँ पर बाताल ब्रिज इतना नीचे है ये, बट देन क्योंकि बाताल बहुत, जो ब्रिज है बहुत दूर है, रिस्क इसका नहीं है ज्यादा। हाँ, और इस पे ही अगर ये, अच्छा गेपांग कह रहे हैं ना, तो सिस्सू पे आएगा, सॉरी ये तो ये गेपांगत है, 15 पे इतना था, 25 में इतना हो गया, इतना बढ़ गया है, देखिए तो ग्लेशियर रिट्रीट होने लगा। तो इसे सुनाला आ रहा है, ये तो आपका हाईवे आ ही रहा है, यहाँ पे ब्रिज है, देन दे आर सम वो नीचे ब्रिजेस है। जी जी, ये यहाँ से ये आकर के सुनाओ, ये ग्रीन में पहले इतना, तो देखिए करीब रफली डबल हो रहा है, हम देखेंगे ये सारा। ठीक, भले इसका एरिया छोटा है, वॉल्यूम कम है, बट येट परसेंटेज इंक्रीज काफी ज्यादा हो गया वो। और ये ऐसे आकर के यहाँ पे यही NS-26, ये आपका उस तरफ जा रहा है उदयपुर के आगे, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा ब्रिज है ये।
0: आप ये देखिए कि हिमालय क्षेत्र इतना संवेदनशील क्यों है। हिमालय को दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। यानी ऐसे पहाड़ जो अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुए हैं और जो अब भी जीवित हैं, नाजुक हैं। आपको इस बात पर शायद यकीन नहीं होगा कि आज जिस उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर आप घूमने जाते हैं, वहां आज से करोड़ों साल पहले एक समुद्र हुआ करता था। इस चैथिस सागर कहते थे इसे, जो एशिया और अफ्रीका के बीच फैला हुआ था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इस समुद्र की जगह पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं बन गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी पृथ्वी की सतह टेक्टोनिक प्लेट्स में पटी हुई है। आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, इसलिए हिमालय में पहाड़ों के बनने का सिलसिला रुका नहीं है। उदाहरण के लिए आज भी हर साल हिमालय क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट लगभग 0.2 से 0.5 मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है, जिसकी वजह से इन पहाड़ों को जीवित पहाड़ भी कहा जाता है। ये बातें हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप ये समझ पाएं कि हिमालय के पहाड़ आज भी ठोस नहीं है, जब इन पहाड़ों को विकास या पर्यटन के लिए अंधाधुंध तरीके से खोदा जाता है, ये पहाड़ सरेंडर करने लगते हैं। फिर वो होता है जो नेपाल में हुआ या जिसका खतरा भारत के हिमालय क्षेत्र में जताया जा रहा है। सोचिए, ऑफिशियली लगभग 1000 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 4-5 हजार लोग नेपाल में गायब हैं, अभी भी लापता है। लोग मान रहे हैं कि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है।

0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या चाइना तिब्बत में मची तबाही की असली हकीकत बाहर नहीं आने दे रहा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नेपाल में मौतों का आंकड़ा और लापता हुए लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन चाइना के तिब्बत में ऐसी कोई हलचल नहीं है। चाइना अब भी यही कह रहा है कि इस आपदा में सिर्फ 16 लोगों की मौत हुई है, 546 लोग लापता हुए हैं जिनमें 261 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अजीब बात यह है कि जब नेपाल में रेस्क्यू टीम्स के लिए प्रभावित इलाकों में पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है, तब चाइना ने एक हफ्ते से भी कम वक्त में बाढ़ से प्रभावित हुए पूरे इलाके को फिर से खोल दिया है। यानी इस प्रलय में चाइना का जो नेशनल हाईवे G216 मलबे के नीचे दब गया था, उस हाईवे को चाइना ने फिर से चालू कर दिया है। और आप यहां देख सकते हैं कि इस हाईवे पर चाइना के कई बुलडोजर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। यही नहीं, इस हाईवे के चालू होने के बाद कई बुलडोजर्स और दूसरी मशीनें जिरोंग पोर्ट तक पहुंच गई हैं, जहां नेपाल की सीमा के साथ एक इमिग्रेशन ऑफिस हुआ करता था और 26 अगस्त की तबाही में यह बिल्डिंग पूरी तरह नष्ट हो गई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि चाइना ने यहां अपना एक झंडा लगा दिया है और जो बिजली सप्लाई, रोड नेटवर्क, कम्युनिकेशन बेस स्टेशन प्रभावित हो गए थे उन्हें फिर से चालू किया जा रहा है और यह बात कई लोगों को हैरान कर रही है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट में इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत नाम के एक संगठन ने यह आरोप लगाया है कि चाइना इस बाढ़ में प्रभावित हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से सही कर रहा है, लेकिन वो इस आपदा में मारे गए लोगों को ढूंढने पर ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा। द गार्डियन ने इस संगठन के हवाले से शब्दशः लिखा है कि नेपाल में जो तबाही दिख रही है वही तबाही तिब्बत में छिपा ली गई है, जबकि तिब्बत के चार गांव सेल, सेरचोंग, लाबी और रिजी में 300 घर तबाह हो गए हैं, कई लोग अब भी लापता हैं। चाइना में कई लोग खुद ये बात कर रहे हैं कि तिब्बत में हुई मौतों को सरकार ने छिपा लिया है, जबकि चाइना की जो कम्युनिस्ट सरकार है वो ये कह रही है कि इस तरह की सभी बातें, सभी सूचनाएं गलत है, भ्रामक है, बेबुनियाद है। अब चाइना के साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो का ये कहना है कि उसने ऐसे 10 लोगों पर कार्रवाई की है जो तिब्बत में आई बाढ़ को लेकर झूठ फैला रहे हैं। हालांकि तिब्बत से जुड़ी कई निर्वासित संस्थाएं हैं और पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि चाइना ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके तिब्बत की हकीकत बाहर नहीं आने देना चाहता और उसका लक्ष्य अब भी यही है कि वो जिरोंग पोर्ट में बाढ़ से प्रभावित हुए सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तेजी से बना रहा है। और जब आप भी इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि जहां पिछले हफ्ते इतनी भयानक प्रलय आई थी, वहां आप कैसे चाइना के सैकड़ों बुलडोजर्स दिन रात काम कर रहे हैं। देखिए,
1: अभी मैं नेशनल हाईवे 216 की मरम्मत वाली जगह पर हूँ। ये मुख्य रास्ता जिरोंग पोर्ट तक जाता है जो मड स्लाइड में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। मेरे ठीक पीछे आप इंजीनियरिंग रेस्क्यू टीम को देख सकते हैं जो पोर्ट तक जाने वाली सड़क को ठीक करने के लिए दिन रात काम कर रही है। बड़े पत्थरों से लदे ट्रक हर कुछ मिनट में काम वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। मड स्लाइड से आए मलबे ने नदी की तलहटी को काफी ऊपर उठा दिया है, जिसे ये पता लगाना मुश्किल हो गया है कि कीचड़ और नीचे का तल कितना गहरा है। इसलिए उस जगह को भरने और सड़क को फिर से मजबूत बनाने के लिए इन बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ मलबे और पिंजरों के ढेर भी लगे हैं। हर पिंजरा 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है और उसका वजन 170 किलो है। इन पिंजरों को बड़े पत्थरों से भरा जाएगा और सड़क के आधार को मजबूत करने के लिए तेजी से बहती नदी में डाला जाएगा। उम्मीद है कि आसपास के कस्बों के रेस्क्यू वर्कर और वेल्डिंग की दुकानें ऐसे 1000 से ज्यादा पिंजरे बनाएंगे। खोज और बचाव अभियान में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। इनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पुलिस फोर्स और अन्य समूह शामिल हैं।
0: तो ऐसा साफ दिख रहा है कि चाइना का सारा फोकस अपने रोड्स को वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है, ताकि फिर से वहां पर बैक टू नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाए और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर उसका ध्यान कम है। ऐसा आरोप वहां पर मौजूद लोग और कुछ वेस्टर्न मीडिया लगा रहा है। चाइना और नेपाल के रेस्क्यू ऑपरेशन में

जमीन आसमान का ये अंतर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नेपाल की तुलना में चाइना एक बड़ा देश है और उसके पास बचाव अभियान के लिए टेक्नोलॉजी है, हेलीकॉप्टर्स है, ड्रोन्स है, पैसों की कोई कमी तो है ही नहीं। जिन इलाकों में चाइना की रेस्क्यू टीम्स पहुंच नहीं सकती थी उन इलाकों में चाइना ने हैवी ड्यूटी कार्गो और पैसेंजर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जो इंसानों का वजन उठा सकते हैं। यानी जिन सकरी पहाड़ियों या फिर मलबे के ढेरों पर हेलीकॉप्टर्स लैंड नहीं कर पा रहे थे वहां इन ड्रोन्स के जरिए फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया गया और बेस कैंप तक लाया गया। और सड़कों को खोलने के लिए, मलबा हटाने के लिए ऐसे कई उपकरणों का इस्तेमाल हुआ जिनमें जान का जोखिम ज्यादा नहीं। यही कारण है कि चाइना ने तो नेपाल तक जाने वाले अपने नेशनल हाईवे को खोल लिया है लेकिन नेपाल में हालात अब भी मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप इन ग्राफिक्स को देखेंगे तो चाइना ने तिब्बत में आई बाढ़ के लिए 7372 करोड़ रुपए जारी किए जबकि नेपाल की सरकार दूसरे देशों से मदद लेकर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अब तक 492 करोड़ रुपए ही इकट्ठा कर पाई है। इस वक्त नेपाल में बाढ़ और मलबे से प्रभावित कम से कम 11 से 12 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों को खोलने, वहां तक पहुंचने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इनमें भी अपर त्रिशूली टनल में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अहम है जहां त्रिशूली अल्फा, त्रिशूली ब्रावो नाम के तीन मुख्य सुरंगों में सेनाएं मलबे को साफ कर रही हैं। नेपाल की सरकार के मुताबिक इस बाढ़ के बाद से हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के 900 से ज्यादा कर्मचारी और मजदूर लापता थे जिनमें से 279 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और अनुमान है कि अधिकतम 600 लोग अभी इन मलबे में भरी सुरंगों के अलग अलग जो हिस्से हैं उनमें हो सकता है कहीं फंसे हों, कहीं लापता हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत सरकार और भारतीय सेना की टेक्निकल टीम्स नेपाली सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबसे कठिन मोर्चे पर काम कर रही है। भारतीय सेना की रेस्क्यू टीम्स चिलिमे और लांगटांग हाइड्रोपावर साइट्स पर तैनात है और इनमें भी चिलिमे में भारतीय टीम ने खराब मौसम के बीच टनल में पैर जमाने की जगह बनाई और सुरक्षा रस्सियां बांधकर नेपाल का सबसे जो हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको शुरू किया है। देखिए

0: तक इट्स नॉट पॉसिबल
1: हमने ब्लू प्रिंट दिया है
2: कहते हैं कि कुदरत का नियम है जो दोगे वही बढ़कर वापस आएगा लेकिन क्या आप जानते हैं नेपाल के साथ इसका उलट हो रहा है नेपाल का कहना है कि जिस जलवायु संकट का वो बार बार शिकार हो रहा है उस जलवायु संकट के लिए वो जिम्मेदार नहीं है वैश्विक स्तर पर कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में नेपाल की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 0.04% है जबकि चाइना की हिस्सेदारी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 33.1% अमेरिका की हिस्सेदारी 11.7% यानी जो अमीर देश हैं उन्होंने जलवायु संकट पैदा किया आज भी वो इस जलवायु संकट को बढ़ा रहे हैं लेकिन इसकी कीमत नेपाल जैसे देशों को चुकानी पड़ रही है जिनकी इसमें कोई भूमिका नहीं इसी मुद्दे को उठाते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने कहा है कि इन बड़े देशों को प्रदूषण की सजा नेपाल भुगत रहा है और इससे इन देशों को नेपाल को दी जाने वाली मदद को भीख या दान ना समझे बल्कि इसे अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी मानकर नेपाल को हर्जाना दे यही नहीं काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बालन शाह इस मांग को वैश्विक मंच पर उठाने के लिए बहुत गंभीर है और इसके लिए वो सितंबर 2026 में होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से भाग लेने न्यूयॉर्क जा सकते हैं ताकि दुनिया के सामने वो जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस का मुद्दा उठा पाए इसके अलावा बालन शाह ने आज नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारत को धन्यवाद यानी थैंक यू इंडिया भी कहा है सुनिए
3: मित्र राष्ट्र चीन र भारतबाट उहाँहरूले टेक्निसियनहरू पठाउनु भएकै थियो उहाँहरूले सुरुकै दिनदेखि पहिलो दिन दोस्रो दिन पनि रेकी गरिराख्नु भएको थियो हवाई मार्फत त्यो एरियामा अहिले कस्तो क्षति भएको छ त्यहाँ पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले रेकी गरिसकेर अनुगमन गरेर अहिले तत्काल ओर्लिने अवस्था छैन तुरुन्तै ओर्लिन सक्दैनौँ जुन बेला ओर्लिन सकिनेछ त्यति बेला नै भारतको अथवा चिनको टेक्निसियनहरू नेपाली टेक्निसियन आर्मी उहाँहरू चाहिँ पुग्ने अवस्था भएपछि मात्रै पुग्नु भएको हो
2: साल 2013 में एक फिल्म आई थी स्पेशल 26 और उस फिल्म के बाद से 26 अंक के साथ कई बार स्पेशल यानी विशेष शब्द जुड़ता रहा लेकिन अब नेपाल में आई इस भयावह प्रलय के बाद 26 तारीख को कुछ लोग एक अलग ही नजर से देखने लगे हैं कारण यही है कि 26 तारीख ने इतिहास में कई बार ऐसी घटनाओं को जन्म दिया है जिन्हें दुनिया आज भी भूल नहीं पाई है जैसे नेपाल में ये तबाही 26 अगस्त को आई थी साल 2023 में जब इराक के एक शादी समारोह में आतिशबाजी के दौरान आग लगी और इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे तब वो तारीख भी 26 सितंबर की थी अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ वो भी 26 अगस्त 2021 को हुआ था 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया तब भी उसकी तारीख 26 अक्टूबर थी 2008 में जब मुंबई में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ तारीख थी 26 नवंबर लिस्ट लंबी है 2006 में इंडोनेशिया का विनाशकारी भूकंप 26 मई को आया 2005 में मुंबई की बाढ़ 26 जुलाई को आई 2004 में हिंद महासागर में सुनामी 26 दिसंबर को आई 2001 में गुजरात का भूकंप 26 जनवरी को आया 1991 में इंडोनेशिया की सुनामी 26 नवंबर को आई 1986 में चेर्नोबिल की परमाणु तबाही 26 अप्रैल को हुई 1963 में 1000 लोगों की जान लेने वाला युगोस्लाविया का भूकंप 26 जुलाई को आया लिस्ट लंबी और यही कारण है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि 26 तारीख अशुभ है खैर आगे बढ़ते आपको ये बताते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एससीओ समिट में सिंधु जल समझौते को बहाल करने के लिए रोना धोना कर रहे थे तब उसी वक्त इस्लामाबाद बारिश में तालाब बना हुआ था और पाकिस्तान के लोग इसके लिए वहां की सेना को कोस रहे थे एक दिन पहले इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक कई रिहायशी इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया और पाकिस्तान के लोग ये कहने लगे कि जब सारा पैसा सेना हजम कर जाएगी तो नाले साफ कराने के लिए पैसा कहां से आएगा पाकिस्तान के मीडिया का कहना है कि इस बाढ़ के कारण इस्लामाबाद रावलपिंडी में 3 लोगों की मौत हो गई है हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई स्कूल कॉलेजेस बंद हैं इस बाढ़ से बेहाल हुए पाकिस्तान के कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो बलोच और सिंधी ये सोचते हैं कि पंजाब प्रांत के लोग विकास का स्वाद ले रहे हैं वो भी उनके डूबते हुए घरों को देख सकते हैं सुनिए

0: ये मेरा धैर्य है ना। वैसे लोग कहते हैं जी आप रोते बहुत है, अब मैं ही हंस रहा हूं। ये सारे तीन तीन चार चार फुट पानी आया हुआ है ये, और मैं खाली इस चीज, मुझे खुशी इस चीज की है कि हमारे जो हुक्मरान है वो दुनिया के मसाइल हल कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं आज रहूंगा नहीं ऐसी हुकूमत से, इतना खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा इतना ज्यादा नुकसान हो गया। और ये देखे, ये हर चीज नुकसान है, लेकिन मैं आज जो हूं ना बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं आप कहते पता नहीं, स्विट्जरलैंड का स्विमिंग पूल नहीं है, ये एक नापाक पानी है जिसके अंदर मैं खड़ा होके और अपनी फरियाद दर्जी कर।
1: खैर आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की कमान संभालने वाले रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अयोध्या में राम मंदिर के पहले सीईओ यानी पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैसे बने और इसके मायने क्या है। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसका उद्देश्य राम मंदिर के पूरे प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे का कायाकल्प यानी उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करना था। और इसी बैठक में मौजूदा सदस्यों की नई जिम्मेदारी तय होनी थी, नए सीईओ का चयन होना था। इसके लिए दो महीने पहले 6 जुलाई को एक सर्च कमेटी बनाई गई थी, जिसे नए सीईओ की योग्यता और चयन प्रक्रिया तक तय करनी थी। जब यह प्रक्रिया तय हो गई तब इसके लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए गए, और आपको यकीन नहीं होगा कि पूरे देश से 585 लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर का सीईओ बनने के लिए आवेदन दिया। इसके बाद इनमें से कुल 16 आवेदन शॉर्टलिस्ट हुए, जिन्हें 11 और 12 अगस्त को इंटरव्यू देने के लिए अयोध्या बुलाया गया। इस पूरी प्रक्रिया के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सामने अंतिम 3 नाम आए, जिनमें पहला नाम रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा का था, दूसरा नाम रिटायर्ड मेजर जनरल संजय प्रताप सिंह विश्वा राव का था, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोर और सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में काम किया, और तीसरा नाम श्रुति भारद्वाज का था, जिनके पास केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में काम करने का प्रशासनिक अनुभव है। अब मंदिर ट्रस्ट को आपसी सहमति से इनमें से एक नाम चुनना था, और वो नाम था रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा का। और यहाँ पे ये भी देखिए कि जब जितेंद्र मिश्रा के नाम का ऐलान हुआ, तब उसके बाद जितेंद्र मिश्रा को गूगल पर भारत के लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे थे। भारतीय वायुसेना में जितेंद्र मिश्रा की पहचान एक जाबाज अधिकारी की रही है, जिनका गृह जिला उत्तर प्रदेश का देवरिया है। वो 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे, और इसके बाद वो 38 सालों से ज्यादा तक सैन्य सेवा का हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने फाइटर कॉम्बैट लीडर की भूमिका निभाई और अपने पूरे करियर में 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान का शानदार अनुभव हासिल किया। इसके अलावा वो बेंगलुरु के एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल, अमेरिका के एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से भी जुड़े रहे। उन्होंने फाइटर स्क्वाड्रन की कमान संभाली, एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट के चीफ टेस्ट पायलट रहे। उन्हें 2 महत्वपूर्ण एयरबेस का एयर ऑफिसर कमांडिंग भी बनाया गया। इसके बाद वो जनवरी 2025 में वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख बने, और ये वही कमांड है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर सबसे अहम भूमिका निभाई थी, और जितेंद्र मिश्रा ने इसकी पूरी कमान संभाली थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी मई 2025 में पंजाब गए थे, पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, तब जितेंद्र मिश्रा उनके साथ मौजूद थे। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में जितेंद्र मिश्रा ने बताया था कि जब प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पर आए थे, तब उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या वो उनकी गाड़ी में उनके साथ बैठ सकते हैं, और तब प्रधानमंत्री मोदी ने बिना वक्त लिए उन्हें हाँ कहा था। और उस वक्त लगभग 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी और रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने सफर किया था, और अब वो राम मंदिर के सीईओ बनाए गए। देखिए,
2: आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर दैट एट दिस स्टेज आई हैड जस्ट आस्क्ड हिम के कैन आई ट्रैवल विद यू इन योर व्हीकल, ही जस्ट डिड नॉट टेक अ माइक्रो सेकंड, यस ही सेड यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till now, Prime Minister Sri Narendra Modi. And I'm really very fortunate, and I had an experience of a lifetime listening to him, talking to him for 1.5 hours.
1: इसी इंटरव्यू में रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने हिंदू धर्म को भी परिभाषित किया था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा था कि ये लड़ाई धर्म युद्ध की है, जिसमें एक तरफ महाभारत की तरह असुरी विचारधारा के लोग थे और दूसरी तरफ सही विचारधारा के लोग थे। सुनिए,
2: महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है. और धर्मयुद्ध का अर्थ रिलीजन नहीं है, धर्मयुद्ध का अर्थ विचारधारा है. ये संघर्ष विचारधारा का है, दैवी विचारधारा और आसुरी विचारधारा. जैसा आपने कहा पहलगाम में एक एक आदमी को सेग्रीगेट आइडेंटिफाई किया गया और उनको कोल्ड ब्लड में मारा गया. जहां तक हमारा सिंदूर का फर्स्ट डे स्ट्राइक था, द गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्शंस वर वेरी क्लियर. द टेररिस्ट्स, देयर हैंडलर्स एंड देयर सपोर्टर्स आर टू बी पनिश्ड, नॉट द कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान.
1: जितेंद्र मिश्रा को भारतीय वायुसेना में अपनी बहादुरी और सूझबूझ के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया और अब वो अयोध्या में राम मंदिर के प्रबंधन को भी संभालेंगे. राम मंदिर के सीईओ का यह पद सिर्फ औपचारिक नहीं होगा, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट अपनी डीड में संशोधन करके सीईओ की शक्तियों और जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप से तय करेगा. जैसे कानूनी मामले, प्रशासनिक कामकाज, वित्तीय प्रबंधन, चंदे की जानकारी, नए नियम, नई प्रक्रिया, ये सब बनाना या मंदिर के विशाल प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित करना, ये सारे जो काम है वो जितेंद्र मिश्रा के अधिकार क्षेत्र में आएंगे और राम मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े सभी फैसले सीईओ जितेंद्र मिश्रा द्वारा ही लिए जाएंगे. यहाँ एक और अहम बात यह है कि राम मंदिर के सीईओ के काम में सरकार का कोई दखल नहीं होगा और सीईओ के ऊपर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव होंगे और ये इसलिए बड़ा है क्योंकि मंदिर की सारी शक्तियां भी सीईओ के पास नहीं रहेंगी. यहाँ ये भी समझिए कि जिस तरह एक कंपनी को चलाने के लिए सीईओ की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह इस मामले में राम मंदिर को चलाने के लिए सीईओ की जरूरत क्यों पड़ी. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है चंदा चोरी और आप सब जानते हैं कि कैसे मंदिर प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों ने भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किए गए चंदे को चुरा लिया और इससे महंगी गाड़ी खरीद ली, जमीनें खरीद ली, फोन खरीद लिए, कहीं से कैश बरामद हुआ. इसके अलावा राम मंदिर में जितना चढ़ावा आ रहा है उसकी पारदर्शिता के लिए भी सीईओ का पद बनाया गया. 25-26 में राम मंदिर की कुल आय 237

0: करोड़ रुपए रही, जबकि कुल खर्च 11 करोड़ रुपए रहा। और इसी दौरान मंदिर के निर्माण कार्यों पर इस एक साल में 425 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि कुल खर्च 1882 करोड़ रुपए रहा। अब ये लेन देन किसी बड़ी कंपनी के जैसा ही है, और क्योंकि अभी भारत के कई मंदिरों में प्रशासनिक कामों व्यवस्थाओं के लिए सीईओ नियुक्त किया जाता है, इसलिए राम मंदिर में भी पारदर्शिता के लिए यह व्यवस्था बनाई गई। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट की इसी बैठक में प्रशासनिक ढांचे को भी बदला गया है, जिसमें 3 नए सदस्य शामिल हुए हैं। इनमें पहले हैं महेश भागचंदका, दूसरे हैं मदन मोहन पांडे, तीसरे हैं डॉक्टर निर्मला यादव। इनमें भी महेश भागचंदका को नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि स्वामी गोविंद देव गिरी अब कोषाध्यक्ष से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए महासचिव बन गए। ये वही पद है जो पहले चंपत राय के पास था। इसके अलावा निपेन मिश्रा श्री राम जन्मभूमि मंदिर की कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी देवरिया जिले से हैं, और नए सीईओ जितेंद्र मिश्रा भी देवरिया जिले से आते हैं। सुनो।
1: अच्छा, हमारे इस जो मंदिर के संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो शायद पूरा कर सकेंगे, उनमें सफल नहीं है। ठीक हो जाएंगे? नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता सकता है। किसी भी चीज को आगे बढ़ते रहने समय समय के अनुसार मुझे परिवर्तन होता है, आगे बढ़ता रहता है।
0: टैंकर के बदले टैंकर, ईरान वॉर में अब अमेरिका इसी नई रणनीति के साथ मैदान में उतर गया है। यानी ईरान अगर कमर्शियल टैंकर्स पर हमला करेगा तो बदले में अमेरिका उसके सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके जो टैंकर्स हैं उनको भी बॉम्ब से उड़ा देगा। पिछले 3 दिनों में अमेरिकी सेनाएं टैंकर के बदले टैंकर रणनीति के तहत ईरान पर बड़े बड़े हमले कर रही हैं। अभी तक अमेरिकी सेनाएं ईरान की नाकेबंदी वाली रणनीति के तहत उन जहाजों को रोकती थी जो ईरान जा रहे थे। अमेरिकी सेनाएं उन्हें वापस जाने के लिए कहती थी और सैन्य ताकत के जरिए उन्हें लौटा देती थी, लेकिन अब ईरान द्वारा कमर्शियल टैंकर्स पर किए गए हमलों के जवाब में अमेरिकी सेनाएं ईरानी टैंकर्स को भी निशाना बना रही हैं। फिर चाहे ईरानी टैंकर लंगर डालकर किसी बंदरगाह पर ही खड़े क्यों ना। अमेरिकी सेना के ताजा हमले ईरान द्वारा सऊदी अरब और लाइबेरिया के टैंकर्स पर किए गए हमलों का बदला था। ईरान ने हॉर्मुज के पास सऊदी अरब के सिद्र और लाइबेरिया के सेनेगल प्रॉस्पेरिटी को मिसाइल और रॉकेट हमलों से निशाना बनाया था। अब इन हमलों के जवाब में अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के 2 टैंकर्स उड़ा दिए, और कल रात तो अमेरिका ने ईरान पर कहर ही बरपा दिया। करीब 1 महीने की शांति के बाद अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया उसमें उसने केवल ईरानी टैंकर्स पर ही हमले नहीं किए, बल्कि ईरान के 100 सैन्य ठिकानों पर घातक हमले किए हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी का दावा है कि इस बार के अमेरिकी हमलों में 5 नागरिक मारे गए, 68 लोग घायल हुए। अमेरिकी हमले के बाद की तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि अब ईरान उन तस्वीरों को दिखाकर अमेरिका के जुल्मों की कहानियां सुना रहा है। अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के बंदर अब्बास, केशम, जास्क, सिरिक, हॉर्मोजगान, अहवाज, चाबहार, कोनराक और आघाजारी पर हवाई हमले किए और इनको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सिरिक पर अमेरिका ने जो हमले किए हैं उसकी तस्वीरों ने तो ईरान को दहला दिया। ईरान का ये दावा है कि अमेरिकी सेना ने सिरिक में हो रहे एक शादी समारोह को मिसाइल से निशाना बनाया जिसमें आम नागरिक मारे गए। ईरान का कहना है कि जश्न के माहौल को अमेरिका ने मातम में बदल दिया। हालांकि हमेशा की तरह अमेरिका और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने हमले को जुड़ी जो जानकारी है उसमें यही बताया है कि उनके निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने ही थे और वो नागरिक ठिकानों पर हमले नहीं करते। लेकिन सिरिक के शादी समारोह की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी डरावनी हैं। ईरान ने सिरिक के शादी समारोह में हुए हमलों की तुलना मार्च में मिनाब स्कूल पर हुए हमलों से कर दी है। मिनाब स्कूल में हुए हमलों में 120 बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ईरान ने इन हमलों को अमेरिका का जुल्म बताकर प्रचारित किया था। ठीक वैसे ही इस बार शादी समारोह पर हुए हमलों को वो अमेरिका के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।

अगर अमेरिका इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो उन्हें अब तक मिले नतीजों से बेहतर कोई नतीजा नहीं मिलेगा। हम इस बात पर जोर देते हैं कि दुश्मन की गतिविधियों पर पूरी सतर्कता और मजबूती से नजर रखनी चाहिए, और जैसा कि हाल की घटनाओं से साबित हुआ है, हमारी सशस्त्र सेनाएं किसी भी आक्रमण

0: आक्रामक कार्रवाई का जवाब दिए बिना नहीं रहेंगे।
1: ईरान के लेगो एनिमेशन टीम एक्सप्लोसिव मीडिया ने इस हमले की तस्वीरों के आधार पर लेगो वीडियो भी बनाया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके जरिए वो दुनिया को अमेरिका और अमेरिका की सेना के हमले के बारे में बता रहा है। इसमें दिखाया गया है कि जश्न का माहौल इस अमेरिकी हमले के बाद मातम में कैसे बदल गया। वीडियो के अंत में अमेरिका को ये चेतावनी दी गई है, जिसमें लिखा है, तुमने एक शादी को मातम में बदला, अब हम बदला लेंगे। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने एक दावा यह भी किया है कि सिरिकी नहीं खुजेस्तान के अहवाज और आगाजारी जो शहर है उनके पास जो अमेरिकी हमले हुए उनमें 7 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग घायल हुए हैं। एजेंसी का यह दावा है कि अमेरिकी सेनाओं ने 3 जगहों को निशाना बनाया और नागरिकों को टारगेट किया। ईरान जिन अमेरिकी हमलों को जुल्म के तौर पर पेश कर रहा है, वो हमले सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी में हो रहे थे और वो सोशल मीडिया पर एक तरह की लाइव कमेंट्री कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेनाओं की कामयाबी पर पोस्ट किया है, ट्रूथ सोशल पर लिखा कि जिस वक्त वो लोग पोस्ट कर रहे हैं उस वक्त अमेरिका हॉर्मूज के पास ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है और ये हमले बड़े हैं और शक्तिशाली हैं। इसी पोस्ट में उन्होंने जॉर्डन पर ईरान के नाकाम हमलों की भी जानकारी दी और दावा किया कि ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर 8 मिसाइलें दागी और इन सभी को मार गिराया गया। ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी है कि अगर उन्होंने पलटवार करने की कोशिश की तो इस बार हुए हमलों से ज्यादा भयानक हमले किए जाएंगे और यह ऐसा हमला होगा जिसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जैसी कोई चीज ही नहीं बचेगी। हाल फिलहाल में ईरान के टारगेट पर जॉर्डन है और इसीलिए अमेरिकी सेनाएं हमला करती हैं, तो इसके जवाब में वो जॉर्डन के अमेरिकी ठिकानों पर हमले करता है, लेकिन ये हमले ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और इराक के इरबिल में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हमलों को नाकाम बताया है, लेकिन ईरान ने अटैक का वीडियो जारी करके बड़ा नुकसान करने का दावा किया। अमेरिकी अधिकारियों का यह कहना है कि बदला लेने के लिए ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी ठिकानों पर 25 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, लेकिन इनमें आधी मिसाइलें ही जॉर्डन की वायु सीमा तक पहुंच पाई, बाकी सारी रास्ते में ही नाकाम हो गई। अधिकारियों के मुताबिक करीब 13 बैलिस्टिक मिसाइल ही जॉर्डन के एयर स्पेस तक पहुंच पाई। इनमें से 10 मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया, जबकि अन्य मिसाइलें लक्ष्य से बहुत दूर गिरी, जिससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ। इसके अलावा ईरान ने बहरीन पर 24 ड्रोन्स, कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और इराक के इरबिल पर 2 ड्रोन अटैक किए, लेकिन इन हमलों में भी कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। अब जो अमेरिकी सेना है उसके अधिकारियों का यह कहना है कि उनके हमलों की वजह से जो ईरान है वो उससे ईरान की सैन्य क्षमता पहले के मुकाबले कमजोर हो गई है, इसीलिए ईरान की मिसाइलें लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। अब आपको रक्त के रिश्तों की ऐसी शर्मनाक तस्वीर दिखाएंगे जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप सोच सकते हैं कि बेटे अपने बुजुर्ग पिता पर डंडे बरसा सकते हैं? लेकिन ऐसा हुआ, पुणे के इंद्रापुर में हुआ, जहां पिता के शरीर पर डंडे बरसाने से पहले बेटों के हाथ एक पल के लिए भी नहीं कांपे। माता पिता का ख्याल रखना तो दूर, ये कलयुगी बेटे उनसे मिलने तक नहीं आते थे। जब बीमार लाचार इस बुजुर्ग माता पिता ने अपनी जमीन बेच दी तो उन्होंने पिता को डंडों से पीटा। यह तस्वीर 30 अगस्त की है। 65 साल के तुकाराम अपनी बीमार पत्नी के साथ सड़क पर जा रहे थे। बुढ़ापे में कमजोर शरीर के साथ एक दूसरे का सहारा बनकर सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, तभी वहां एक कार आकर रुकी। उसमें से इस बुजुर्ग माता पिता के 2 बेटे उतरे। उनके मन में और चेहरे पर इस लाचार बेबस माता पिता के लिए कोई हमदर्दी या कोई अपनापन नहीं थी, थी तो सिर्फ जमीन पाने की जिद और एक पागलपन वाला गुस्सा। फिर क्या, बिना कोई लिहाज उन्होंने अपने ही बूढ़े बाप से सवाल दागा कि उन्होंने जमीन कैसे बेच दी। और इससे पहले कि ये बुजुर्ग संभल पाते, बेटों ने डंडों से अपने पिता को पीटना शुरू कर दिया। बूढ़े तुकाराम के हाथ पैर

पैर पीठ कंधे सब पर डंडे बरसा रहे थे अपने बेटे, और लाचार माँ शर्मनाक हरकत को देखकर बस चीख पुकार रही थी। लेकिन कलयुगी बेटों को बिल्कुल भी लिहाज नहीं आया। अब पुलिस में दी गई एफआईआर के मुताबिक वो जाते जाते धमकी देके गए कि बेची हुई जमीन वापस लो वरना जान से मार देंगे।

0: और अब अंजना 2.0 आपको बताएंगी कि आखिर पोल्यूशन का सोल्यूशन, वो कार्यक्रम जो हमने अंजना 2.0 शुरू किया है जिसमें हम बस ये चाहते हैं कि पोल्यूशन का सोल्यूशन निकले, तो बहुत दिलचस्प है। आप ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि आप कैसी कैसी राय, क्योंकि हवा हमारी, मेहनत हमारी, तो हम ही इस हवा को बदलेंगे। बिल्कुल अंजना, पोल्यूशन के सोल्यूशन में आज का इनोवेशन है एक मल्टीपर्पज स्ट्रीट लाइट पोल यानी एटमस पोल। दावा है कि ये पोल ना सिर्फ दिल्ली की हवा को साफ करने में मदद करेगा बल्कि सर्विलांस डिवाइस के तौर पर भी ये काम करता है। इसके अलावा ये देश की राजधानी दिल्ली के आधुनिकीकरण में भी योगदान दे सकता है। आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं।
1: माय नेम इज संजय कोमेरा, मैं एक्सल वन अमेरिकन कंपनी का सीईओ हूं एंड एक्सल वन इज प्राइमरीली ए क्लाइमेट इंजीनियरिंग कंपनी है focused on solving pollution problems like what we are seeing at Delhi. ये नया टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन राजघाट में पहली बार हो रहा है, आई मीन दिल्ली में पहली बार, इंडिया में पहली बार, दुनिया में पहली बार, एंड ग्लैड टू ब्रिंग इट टू दिल्ली। सो अभी टेस्टिंग राजघाट में चालू है। इट्स ऑलमोस्ट लास्ट 4 weeks वी आर डिप्लॉयड अबाउट 23 पोल्स। आई वुड कॉल इट एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट climate environmental node. Basically the idea behind that was, you know, we have all these street lights that don't do anything, right, except giving you the light. So what we thought was, primarily cities like Delhi requires pollution control at street level. So what we thought was, why don't we convert the traditional street lights into the urban street lights. So aap jo dekh rahe ho isme, it has got almost 4-in-1 function in built into it. The primary biggest function is environmental cleaning. So it actually tells you kitna pollution levels hai, and also it tells you how much of pollution reduction the individual street light has done every day. So every pole can support clean air to 2000 people per day.
0: इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज।

0: मैं करता हूँ ना,
1: मैं करूँगा।
2: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
0: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
2: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
0: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
2: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।
2: एक तो एक
3: इश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो एक
3: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

क्या मुंबई कोलकाता पर मंडरा रहा है खतरा? क्या मुंबई कोलकाता के लाखों घर डूबेंगे? क्या नजदीक आ रहा है समंदर? पिघलते ग्लेशियर और समुद्र के बढ़ते जलस्तर का असर अब दुनिया के कई तटीय शहरों में दिखने वाला है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बाद दुनिया के कई देशों में डर की स्थिति बन गई है। यूएन की नई रिपोर्ट में भारत के मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों को लेकर भी चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया के निचले डेल्टा इलाकों और भारत के कोलकाता और मुंबई और बांग्लादेश के ढाका जैसे शहरों में सबसे बड़ा असर लोगों के विस्थापन के रूप में दिख रहा है, जहां 1.4 करोड़ से अधिक लोगों के घर हमेशा के लिए पानी में डूबने का खतरा है और यहां लाखों लोग तुरंत खतरे का सामना करेंगे। इसके अलावा यूएन के रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र का बढ़ता जलस्तर अब कोई दूर का खतरा नहीं है, ये अभी हो रहा है और रिकॉर्ड किए गए इतिहास में किसी भी समय की तुलना में तेजी से हो रहा है। इसकी रफ्तार भी बढ़ रही है। 2014 और 2023 के बीच दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर हर साल 4.7 मिलीमीटर बढ़ा। अकेले 2024 में समुद्र का जलस्तर 5.9 मिलीमीटर बढ़ा, जो एक नया रिकॉर्ड है। इसकी मुख्य वजह महासागरों का बहुत ज्यादा गर्म होना और कुछ लोगों में तो ये गर्मी पिछले 4000 सालों में सबसे ज्यादा थी। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस खतरे से विकसित देश हों या विकासशील बच नहीं सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से समुद्र के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 2012 से 2025 के दौरान समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी की सालाना दर 4.75 मिलीमीटर थी। 2025 में दुनिया भर में समुद्र का औसत जलस्तर 2024 के रिकॉर्ड हाई लेवल के बराबर ही रहा, जबकि 2023-24 के दौरान अलनीनो की वजह से महासागरों के बहुत ज्यादा गर्म होने से इसमें लगभग 5 मिलीमीटर की तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। यूएन की चौंकाने वाली रिपोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या मुंबई और कोलकाता के लाखों घर डूब जाएंगे? आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और इंसान के शब्दों पर नहीं उसके इरादों पर गौर कीजिए, क्योंकि मीठा खंजर जख्म देता है और खरी डांट भला करती है। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। बोले, श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया में गांव में जश्न, 3 ट्रस्टी के नामों का भी ऐलान।

0: यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा 27 में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। देश भर के जल संसाधन मंत्रियों की बैठक में पीएम का जल मंत्र, बोले टीम इंडिया की भावना से करें काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर पीएम ने दिया जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल की सीख, कहा पार्टी की विचारधारा के साथ न करें कोई भी समझौता, 10 दिन तक चला ट्रेनिंग प्रोग्राम। और नेपाल आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंचा, 4200 से अधिक अभी भी लापता, तबाही से चीन में 21 की मौत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक कि कैसे नेपाल में विनाश लीला के बाद हमारे देश भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ आ रही है, भारी बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि आखिर मौसम में अचानक से आए इस बदलाव का मतलब क्या है? जब नेपाल त्रासदी की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, तो ऐसे में चर्चाओं का दौर हमारे देश में भी शुरू हो गया। जी हाँ, नेपाल की त्रासदी, नेपाल की विनाश लीला हिमालयी राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो क्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अचानक से बाढ़ का आना, फ्लैश फ्लड का कनेक्शन नेपाल की तबाही से है? आइए दिखाते हैं आपको।

नेपाल में विनाश लीला, भारत में पहाड़ों पर कहर टूटा, हिमालयी राज्यों में मौसम का रौद्र रूप खतरा बड़ा है। पिघलते ग्लेशियर भारत के पहाड़ी इलाकों में बढ़ती दहशत। हिमाचल में हो रही हलचल, विशेषज्ञों की चौंकाने वाली रिसर्च। ग्लेशियर झीलों पर बड़ा खुलासा, तबाही का अलार्म क्यों बजा? नेपाल में आई विनाश लीला को अभी एक हफ्ता ही बीता है। नेपाल के तीन जिले मलबे में गड़े हुए नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चैलेंज बना हुआ है। विदेशों से एक्सपर्ट टीमें बुलाई जा रही हैं। मलबे में अपनों की तलाश जारी है और इस बीच भारत के हिमालयी राज्यों में भी खतरा मंडराना शुरू हो गया है। वैज्ञानिकों की रिसर्च चौंका रही है। हिमालय में बनती ग्लेशियल झीलें कैसे तबाही को पाल रही हैं? ये अपने आप में डरावना है। पहले तो आपको बता दें कि भारत में कुल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम के पहाड़ी हिस्से और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और पहाड़ी क्षेत्र इसमें आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। जब नेपाल में विनाश

0: लीला के बाद बड़े बड़े विशेषज्ञों ने रिसर्च शुरू की तो खतरा सामने नजर आने लगा है और ऐसे में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अचानक से शुरू हुई मूसलाधार बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से अलर्ट होना लाजमी है। उत्तरकाशी में बारिश और भूस्खलन का जोर, ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं। बारिश की वजह से जगह जगह भारी भूस्खलन हुआ है। पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन हुआ है। पूरे हाईवे पर कई जगह मलबा आया जिसकी वजह से हाईवे बंद भी हुआ। पहाड़ों पर बारिश काल बन रही है। कोटद्वार में कोल्हू नदी 1.5 साल की बच्ची और उसकी मां के लिए काल बन गई। नदी पार करते वक्त 1.5 साल की छोटी बच्ची उसकी मां की गोद से छूट गई और पानी में बह गई। बच्ची को बचाने के लिए मां भी नदी में कूदी और बह गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। काफी दूर तक तलाश करने के बाद SDRF और पुलिस ने नदी से मां बेटी के शव बरामद कर लिए। पहाड़ों पर छोटी छोटी नदियों में भी बहुत तेज बहाव है। पौड़ी जिले के पैठाणी क्षेत्र में एक महिला पश्चिमी न्यार नदी में बह गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चला लेकिन महिला का पता नहीं चला। उधर उधम सिंह नगर में लगातार बारिश के बाद हालात चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि यहां गौला नदी से पानी छोड़ने के बाद आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन बाकायदा मुनादी करके लोगों को सतर्क कर रहा है।
1: गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप सभी लोगों से प्रशासन द्वारा अपील की जाती है, कृपया अपने घरों में रहें।
0: उधर नैनीताल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दो दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते नैनी झील लबालब है, जबकि नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल में अगले 24 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश का असर नैनीताल जिले के रामनगर में भी दिखाई दे रहा है। यहां कोसी नदी उफान पर है। रामनगर स्थित प्रसिद्ध गर्जिया माता मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया है। अगले 24 घंटे कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी बारिश का कहर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। सड़कों पर भारी तादाद में मलबा और बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं, जिससे सड़कों का नामो निशान तक गायब हो गया है। बीते 3 दिनों से परवाणु में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते हालात काफी खराब हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर में भारी बारिश हुई है। 7 सड़कें, 11 बिजली ट्रांसफार्मर और 39 पेयजल योजनाएं प्रभावित रहीं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 4 सितंबर तक बारिश से राहत के आसार नहीं है। 3 सितंबर को कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हिमाचल में कितनी बड़ी तबाही का अलर्ट है, ये IIT मंडी की एक रिसर्च बता रही है। IIT मंडी ने हिमाचल प्रदेश की 2000 ग्लेशियल झीलों पर एक रिसर्च की है और इनमें से 9 से 12 झीलों को बहुत संवेदनशील बताया है, क्योंकि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 साल में ये झीलें 30-60% तक बढ़ गई हैं। इस स्टडी को करने वाले IIT मंडी के प्रोफेसर का दावा है कि पहाड़ी इलाकों में लगातार होते निर्माण और ऑल वेदर रोड बनाने से भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से इन इलाकों में 12 महीने टूरिस्ट आते हैं, जिसका प्रभाव हिमालयी ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है।
2: वन ऑफ द केस हैज बीन सेड कि भाई वहां परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग भी हुई है वहां, तो देन पूरे हिमालय में ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोग टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, सो देन काफी ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट तो है, प्लस वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। इट शुड बी मोर कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए था, ठीक है। इट इज गुड कि आपने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, बट उसके चलते मैं खुद देख रहा हूँ कि जैसे टनल खुल गई है तो अब हमें राउंड द ईयर कनेक्टिविटी मिल रही है। उस राउंड द ईयर कनेक्टिविटी में क्या हुआ है कि हर वक्त टूरिस्ट जा रहा है, जो पहले नहीं जाता था. सो उससे आपका पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपसे वहां डस्ट वगैरह काफी जा रहे हैं और वो जाकर के ग्लेशियर के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं. वो हमने खुद देखा हुआ है जाकर के, यू गेट अ ब्लैक लेयर ऑफ डिपॉजिट्स स्नो पे दिखता है. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ब्लैक कलर है, वो काला कलर हमेशा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. गर्मियों में बोला जाता है कि गर्मियों में आपको लाइट कलर कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता. ब्लैक पहनेंगे हमें एनर्जी ज्यादा लगती है. तो सेम हमारे पास एक डस्ट की क्लियर आ गई, सन रेस पड़ेंगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, उसको मेल्टिंग ज्यादा कर देगी वो. सो वो हो रहा है, ये दिस इज फॉर श्योर, इट इज हैपनिंग इन दीज एरियाज. अपने एरिया में शिंकला वगैरह बहुत ज्यादा दिख रहा है वो.
0: यानी भारत के हिमालयी राज्यों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. जी हाँ, हिमालय से आ रही चेतावनी को नजरअंदाज करना नेपाल जैसी विनाश लीला को बुलावा दे सकता है. आज तक ब्यूरो.
3: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हरियाणा के यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज में एक बड़ा हादसा हो गया. यह हादसा उस समय हुआ जब स्पेशल फोर्स के जवानों की बाढ़ से राहत बचाव करने की ट्रेनिंग चल रही थी. अचानक स्थिति बिगड़ गई. ट्रेनिंग के दौरान जवान हेलीकॉप्टर से यमुना में खड़ी मोटर बोट में उतर रहे थे, लेकिन जवानों के बोट में पहुंचते ही मोटर बोट अचानक से स्टार्ट नहीं हो सकी. तेज बहाव के बीच बोट बहने लगी और उसमें सवार जवान यमुना में गिर गए. ये ट्रेनिंग 30 अगस्त से चल रही थी और मंगलवार को इसका अंतिम दिन था. हादसे के समय यमुना का बहाव काफी तेज था. इससे एक दिन पहले हथिनीकुंड बैराज पर करीब 26,000 क्यूसेक पानी भी दर्ज किया गया था. तीन जवानों को तो बचा लिया गया लेकिन दो जवान अभी भी लापता हैं. कर्नल योगेंद्र के नेतृत्व में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमारे दो जवानों का कुछ पता नहीं चल पाया है. और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे नेपाल तबाही काल से गुजर रहा है. एक तरफ नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, भारत से लगातार मदद की खेप पहुंचाई जा रही है, तो अमेरिका की रेस्क्यू टीम भी नेपाल पहुंच चुकी है. ये टीम अपने विशेष उपकरणों के कारण से विनाशकारी बाढ़ के बाद सुरंगों में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में विशेष मदद करेगी. तो अब नेपाल में ग्लेशियर टूटने से आई विनाश लीला को लेकर नई नई थ्योरीज भी सामने आ रही हैं. तो खतरा यह भी है कि नेपाल में बर्फ की चट्टाने खिसकने से दोबारा बाढ़ आ सकती है. नेपाल में नदियों का जल स्तर फिर से बढ़ने लगा है. तो आइए हम आपको दिखाएं नेपाल में तबाही काल.

0: नेपाल की आपदा में तो लोग एक सप्ताह से ज्यादा अपने घरों से दूर हैं।
1: नेपाल में तबाही काल की ये तस्वीरें न सिर्फ दुनिया को चौंका रही हैं, बल्कि ये भी बता रही हैं कि कैसे पिघलते ग्लेशियर कितनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं। नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा 348 शव चितवन इलाके में मिले हैं और 4800 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के कर्मचारी भी गायब हैं। आशंका है कि कुछ लोग अब भी सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका से भी रेस्क्यू टीम अब नेपाल पहुंची है। अमेरिका की क्राइसिस रिस्पांस इंटरनेशनल यानी CRI की 13 सदस्यीय टीम नेपाल पहुंच गई है। ये टीम रतुआ जिले के चिलमे क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में लापता लोगों की खोज में मदद करेगी। टीम खास उपकरणों की मदद से सुरंगों के अंदर फंसे लोगों की आवाज या किसी भी तरह की हलचल का पता लगाने की कोशिश करेगी।
2: I come from the United States of America and I work with Crisis Response International. We do search and rescue, trauma care for people and we make sure that the needs in a community are met immediately after disaster.
1: आपको बता दें कि नेपाल के चितवन में नारायणी यानी गंडक और त्रिशूली नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। विनाशकारी बाढ़ के चलते जिन गांवों का संपर्क कट गया है, अब वहां रोपवे के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। आज तक के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा नेपाल से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं।
0: मैं त्रिशूली के उस इलाके में हूं जहां पहले कभी एक पुल हुआ करता था। ठीक एक सप्ताह पहले जब ये पुल बह गया, गांव का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बिल्कुल कट गया। एक सप्ताह के बाद एक रोपवे ब्रिज बनाया गया है और अब जो गांव में वहां लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर लाने के लिए, क्योंकि हेली ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो रहा है, अब इस तरह की एक चेन बनाई गई है और उस चेन में देखिए जो गांव के लोग हैं अपना बचा खुचा सामान लेकर के इस रोपवे ब्रिज से एक एक करके धीरे धीरे उन्हें खींच करके लाया गया है। इन रस्सियों के सहारे दरअसल खींच करके अब देखिए जरूरत का सामान है वो एलिवेशन पर है, बिल्कुल त्रिशूली के धारा के ठीक ऊपर से। ये जोखिम भरा है लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि गांव के वो लोग एक सप्ताह से बिल्कुल अलग थलग पड़े हैं। वहां मदद पहुंचाना, खाना पहुंचाना और जैसे और लोगों की जरूरत पड़ती है। देखिए इस तरह वहां एक बुजुर्ग नागरिक हैं, उन्हें बाकायदा लाइफ वेस्ट पहना करके उनके घर में बचा खुचा जरूरत का सामान लेकर के उन्हें इवैक्यूएट किया गया है। अब ये लोग अपना सामान लेकर के इस इलाके पर पहुंच रहे, एक बहुत बड़ी त्रासदी है और ऐसे में जो कोशिशें हैं वो भी अविश्वसनीय कोशिशें।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद सैकड़ों अज्ञात शवों को जलाने के बजाय दफनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि शवों के अवशेष सुरक्षित रहें और DNA जांच से पहचान कर परिजनों को सौंपे जा सके। यही वजह है कि अज्ञात शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा है। इस बीच भारत की तरफ से नेपाल में मदद की 5वीं खेप पहुँच चुकी है। 11 सदस्यीय विशेष बचाव दल और अतिरिक्त तकनीकी सहायता नेपाल भेजी गयी है। भारत ने शवों की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग विशेषज्ञों की टीम भी तैनात की है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद भी नेपाल में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए पहुंचे हैं।
0: नेपाल में आई आपदा में लोगों को बचाव के लिए कई सारे लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद जो हर मुश्किल में लोगों के साथ खड़े आए हैं और सोनू सूद भी नेपाल पहुंचे हैं और इस समय रसुआ के पास, जब रसुआ के रास्ते में नुआकोट के सबसे आखिरी गाँव में सोनू सूद अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। मदद के लिए उन इलाकों का जायजा ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राहत बचाव कार्य के लिए सोनू सूद अपने फाउंडेशन के साथ इस इलाके का जायजा ले रहे थे कि पूरा का पूरा शहर जो है मलबे में तब्दील हो चुका है और अब वो उन इलाकों में जा रहे हैं। सोनू सूद, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुश्किलें हैं इस समय, जितनी मदद के लिए हाथ आए उतने कम है।
3: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जब आप पूरा मंजर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस लेवल का इम्पैक्ट आया होगा, किस तरह लोगों को, जब घर नहीं बचे तो आप सोचिए कि लोगों के क्या हाल हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को आगे आना चाहिए, दुनिया भर से जो भी लोग जहां पर भी हैं आगे आइए और प्लीज मदद के लिए, इन लोगों के लिए खड़ा होना बड़ा जरूरी है ताकि हम नेपाल को वापस उसके कदमों पे खड़ा कर पाए।
0: यहाँ देख करके आपको ये भी लग रहा होगा कि उस समय जो, ये आज पता है ठीक एक सप्ताह हो गया और यही समय था जब तिब्बत से जो है मुश्किलें शुरू हुई थी।
3: बिल्कुल, आप अभी भी देख सकते हैं कि पानी का क्या भाव है और उस समय तो पानी यहाँ तक था, पीछे तक था, ये पूरा का पूरा डूब गया होगा, वहां तक ऊपर मलबा तक लोग पहुंच चुके हैं। सो बहुत सैड है।
1: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ को लेकर तमाम तरह की रिसर्च चल रही है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में IIT बंडी की रिसर्च ने नेपाल की तबाही पर एक और बड़ा खुलासा किया है। एक थ्योरी के मुताबिक नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ ग्लेशियर के टूटने और भूस्खलन की वजह से आई। बताया गया कि ग्लेशियर का एक हिस्सा लेदे कोला नदी में गिरा, इससे एक कृत्रिम झील बन गई। इस झील के टूटने से पूरा प्रवाह आगे छोटे कोशी नदी में गया। भोटे कोशी लेदा खोला की सहायक नदी है और चीन से नेपाल की ओर बहती है। भोटे कोशी नदी में आए सैलाब ने नेपाल में तबाही मचा दी।
4: 2015 में गोरखा अर्थक्वेक आया था वो, ठीक है। ये गोरखा अर्थक्वेक के चलते बहुत से लैंडस्लाइड्स क्रिएट हुए थे, ठीक है, एंड उस पे लॉट ऑफ लिटरेचर इज आल्सो देयर। एक हुआ था लांगतांग, लांगतांग में उस अर्थक्वेक के चलते एक आइसफॉल हुआ था वो, ठीक है। सो आई डोंट, अगर आपको मैं समझा तो ऐसे करके अगर मैं पहाड़ मांगता हूँ तो ये मेरा लांगतांग का ये पीक है, इधर लांगतांग विलेज था। तो 2015 में यहाँ पे पूरा एक पूरा पूरा गांव दबा हो गया था, पूरा वो डेबरी में आइसफॉल और डेबरी वगैरह से यहाँ पे आपकी लांगतांग रिवर जाती है। इस पीक के इस तरफ अभी यहाँ हुआ है वो। सो नाउ अगर देखेंगे तो ये मेरी पीक आ गई, यहाँ पे ऐसे होकर फिर यूं ऐसे ट्रेवल होकर के गया है। सो व्हाट आई बिलीव कि उस अर्थक्वेक में जिसने यहाँ पे ट्रिगर किया था उसने यहाँ वाले स्ट्रेटा को उसने वीक कर दिया, और इस बार क्या हुआ कि वहीं से वो पूरा का पूरा मलबा टूट करके गया, क्योंकि वो दोनों सेम ही वैली पे आ रहे हैं अगर हम देखते हैं एकदम ऐसे क्रॉस।
1: नेपाल की तबाही अब चीख चीख कर बता रही है कि ये विनाश लीला क्यों मची, और सवाल उठ रहे हैं कि ये आपदा क्यों आई, तिब्बत में ग्लेशियर क्यों टूटा, क्यों हिमालय के ग्लेशियर सुलग रहे हैं और गर्म होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने इस साल की शुरुआत में बताया कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों की बर्फ 2000 के बाद से दोगुनी तेजी से पिघल रही है। जलवायु वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बर्फ पिघलने की यह रफ्तार पानी की कमी और जलवायु से जुड़े खतरों के बढ़ने का तत्काल जोखिम पैदा करती है। नेपाल की विनाश लीला सिर्फ एक त्रासदी नहीं है बल्कि एक अलाम है। हिमालय की गोद में बसी करीब 5 करोड़ से ज्यादा की आबादी के लिए जलवायु परिवर्तन कितने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, और नेपाल जैसी तबाही का जोखिम पहले से 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। नुवाकोट से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में तबाही काल कैसे इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक बाढ़ से हाहाकार मचा है। इलाके के इलाके डूब रहे हैं, कारें बह रही हैं, सड़कें समुद्र बन गई हैं। बाढ़ से पीड़ित लोग शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भर भर कर गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं। तो आइए दिखाएं आपको बाढ़ में डूबे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की त्रासदी।
1: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और उससे सटा पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर वाला शहर रावलपिंडी इस वक्त बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं, गाड़ियां ट्रक सब डूबे हुए खड़े हैं। बस्तियों में कॉलोनियों में पानी ही पानी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डूबे हुए हैं, सड़कों पर सैलाब का कब्जा है, घरों में पानी घुस बैठ कर चुका है।
6: रोटी भी सुबह की जाना नहीं है।
1: अब इस शख्स को देखिए कैसे सरकार को कोस रहा है, और बलूचिस्तान वालों को भी बता रहा है कि पाकिस्तान के सड़े हुए सिस्टम की मार वो ही नहीं बल्कि रावलपिंडी भी झेल रहा है।
7: ये घर के ना बाहर का है, ये जो हमारे भाई है ना कि जो कहते हैं कि जनाबे वाला, ये लोग बहुत ज्यादा ही कोई पता नहीं VIP इलाकों में रहते हैं, पंजाबी बहुत ज्यादा खुश है। आज मैं अपने हुक्मरानों से मैंने कुछ भी नहीं कहना, इनको मैं क्या कह के थक गया हूँ। हमारे जो इधर MN बरिस्टर दनियाल साहब जो है, अल्लाह ताला उनको जो है ना तौफीक दे तो वो इधर आ जाए। मैं ये अपने सिंधी भाइयों से और बलोची भाइयों से, जो बलोचिस्तान के लोग जो है ना पंजाबियों के पीछे जनाबे वाला वो कभी क्या मसला कभी क्या मतलब, ये हम ये हमारे हुक्मरान हमें जिंदा रखे हुए और अहमियत दे दे के मारे हैं। ये मैं अपने उन बलोची भाइयों को कह रहा हूँ कि बलोचिस्तान के लोगों को, ये आप पंजाबियों के, मैं खालिस पंजाबी हूँ, मैं पंजाब के अंदर खड़ा हूँ दारुल खिलाफे के साथ पिंडी शहर के अंदर। ये जो लोग कहते हैं ना बलोची के, ये लोग खुश है, सिंधी वजीरिस्तान के जो लोग हैं यार, ये हमारे साथ जो है ना ये हम पाकिस्तान में ये सलूक हमारे साथ हो रहा है। मैं आप कहते हैं पता नहीं स्विट्जरलैंड का स्विमिंग पूल नहीं है, ये एक नापाक पानी है जिसके अंदर मैं खड़ा होके और अपनी फरियाद दर्जी कर रहा हूँ। मैं फरियाद कर रहा हूँ अपने हुक्मरानों के सामने कि इधर आओ और इस मसले को हल, कौन मसला है, इन मसाइल को कौन हल करेगा।
1: इस्लामाबाद को रावलपिंडी से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि ये वो रावलपिंडी है जहां से पूरा पाकिस्तान चलाया जाता है। जी हां, यही पाकिस्तानी सेना का जनरल हेडक्वार्टर है और यही रहते हैं पाकिस्तान के असली हुक्मरान यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। जो सेना पूरे मुल्क पर राज करने का दावा करती है उसी के नाक के नीचे पूरा शहर डूबा हुआ है। आलम यह है कि बेनजीर भुट्टो अस्पताल से लेकर होली फैमिली अस्पताल तक सब पानी पानी हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुसा तो बाढ़ के मारों ने सीधे सरकार को कोसना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान वैसे ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रुकवाने के लिए मध्यस्थता का दावा करता फिरता है लेकिन अपना ही घर देखा नहीं जाता।
7: लोग कहते हैं जी आप रोते बहुत हैं, अब मैं ही ही ही ही आस रहा हूं। ये सारे तीन तीन चार चार फुट पानी आया हुआ है ये, और मैं खाली इस चीज मुझे खुशी इस चीज की है कि हमारे जो हुक्मरान है वो दुनिया के मसाइल हल कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं आज रहूंगा नहीं। आ जाए ये देखें, ये सारा हम मेरे घर का नुकसान आप देख रहे हैं, ठीक है ना। प्राइवेट में हमारी मुलाजमतें हैं, ठीक है, 100 चीजों का रोल है, रोटी पूरी नहीं हो रही, रोटी मांग के खानी पड़ रही है और मैं खुश हूँ। ये सारा नुकसान मैं आपको ये देखें, ये सारा नुकसान हुआ है और मैं खुश, ये मेरे घर का ये नुकसान है, लाख रुपए का, यकीन माने जब ये मामला होता है ये नुकसान हो जाता है। और बिल्कुल आज मैं रहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे वो बंदे कहते थे ये है वो है, कई जो है बहुत ज्यादा जो मुखलस है वो भी कहते हैं कि जी आपका जनाब वाला मामला होता नहीं। मैं आपको घर के अंदर की कंडीशन आज तकरीबन 4 फुट है पानी है, मैं इस हुकूमत से इतना खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं खुश हूं। ये देखे मेरे घर का नुकसान हो गया, ये मोटर तकरीबन जो है ना 12,000 रुपए की मोटर है, पानी का मसला खराब हो गया, ये रोटी का यकीन माने रोटी भी सुबह की जहना नहीं है। आज मैं आपको ये मेरे घर के ये कमरा देखें, ये बेड है, ये मैं मोहल्ले में से मांग के लाया हूँ, ये चरपाई मैंने सामने बंदे से मांगी है कि यार मुझे चरपाई दे दो, खाली बैठने की जगह दे दो, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा इतना ज्यादा नुकसान हो गया। और ये देखें, ये हर चीज नुकसान है, लेकिन मैं आज जो हूं ना बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मैं ये आपको घर के अंदर की मैं तो आपको सारी जाना कराता हूँ, मेरा मोटरसाइकिल जो है वो भी ये देखे ये डूब गया, ये सिर्फ और सिर्फ इस नाली की वजह से कि नालों की सफाई नहीं हो रही और मसाइल दुनिया के हाल हो रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आज मैं खुश हूँ।
1: बड़ी बड़ी डीगे हाँकने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान आज कुदरत के एक थप्पड़ से बेबस नजर आ रहे हैं। एटमी ताकत का ढिंडोरा पीटने वाला मुल्क अपनी सड़कों से पानी निकालने में नाकाम है। रावल बांध के स्लिप वे खोलने पड़े हैं और फौज को अब अपने ही शहर में लोगों को निकालने के लिए नाव चलानी पड़ेगी। आज तक ब्यूरो।
5: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे अमेरिका और ईरान, रूस और यूक्रेन के बीच अब भड़के महायुद्ध के शोले। अब देखते रहिए दस्तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
10: छक्का
11: सब कैशलेस हो गए।
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: एक तो एक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू सोच बदलो और बैंक भी।

0: और वही कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: खाना कहाँ से मंगवाया?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जीके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट प्राइमर
4: जीके मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जीके मैक्स।
1: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
2: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
1: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
3: In association with
4: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol.
5: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
6: ब्रज की भूमि से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पंचायत आज तक मथुरा, 3 सितंबर, सिर्फ आज तक पर।

कहीं लैंडस्लाइड, कहीं नदियां उफान पर। कोसी शिप्रा के रौद्र रूप से बढ़ी आफत, उत्तराखंड में बारिश बनी मुसीबत। देखिए इन तस्वीरों को, सैलाब किसे कहते हैं, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। ये चमोली के थराली दीवाल रोड की तस्वीरें हैं, जहां पहाड़ भर भरा कर सड़क पर आ गिरा, मलबा सीधे सड़क से नदी तक जा पहुंचा। गनीमत रही कोई वाहन या राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया। वही नैनीताल में भी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर लैंडस्लाइड से दो कारें मलबे में फंस गईं। कुमाऊं में 141 सड़कें बंद हैं। जगह जगह पहाड़ से मलबा गिर रहा है। भारी बारिश के बीच कोसी नदी भी उफान पर है। तेज बहाव के साथ कोसी का रौद्र रूप डराने वाला है। नदी किनारे रहने वालों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बात करें कैंची धाम के करीब बहने वाली शिप्रा नदी की, तो वो भी उफान पर है। लगातार बारिश से जलस्तर तेजी से बढ़ा है। तेज बहाव के साथ शिप्रा का रौद्र रूप साफ दिखाई दे रहा है। बागेश्वर में भी बारिश और लैंडस्लाइड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। NH 109 समेत 16 मोटर मार्ग बंद है। रवाईखाल के पास मलबा आने से लंबा जाम लगा है। एम्बुलेंस और बसें तक घंटों फंसी रही। टिहरी में भी भारी बारिश के बीच कई जगह भूस्खलन हुआ है। सड़कें बंद है और घनसाली में कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन और आपदा टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं। उधर रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। सोनप्रयाग में बैरियर लगाकर यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में बारिश ने पहाड़ से मैदान तक आफत बढ़ा दी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं सड़कें बंद हैं और कहीं नदियां रौद्र रूप में हैं। कुदरत के इस कहर के बीच प्रशासन अलर्ट पर है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब खबर ईरान और अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच भड़के महायुद्ध की। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दो मोर्चों पर फिर से युद्ध काफी तेज हो गया है। पहले बात ईरान और अमेरिका की करेंगे। जिस तरह से अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर भीषण हमले किए, ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिकी हमलों में ईरान के 19 लोगों की मौत हुई है, 70 के करीब लोग घायल हुए हैं। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के 100 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। टैंकर के बदले टैंकर की रणनीति के तहत अमेरिका ने लंगर डालकर खड़े दो ईरानी टैंकर्स के इंजन रूम को उड़ा दिया। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने एक शादी समारोह पर बम मारे जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, एक 4 वर्ष का बच्चा भी इसमें शामिल है। जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में हमले शुरू कर दिए। देखिए,
3: अमेरिका ने ईरान पर फिर से शुरू किए हमले। ईरान के 100 ठिकानों पर हमले, अब भड़केगा महायुद्ध। उन्नीस की मौत, 68 घायल, ईरान में शादी समारोह पर गिरा बम। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दी ईरान को मिटा देने की धमकी। ईरान का पलटवार, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर बमबारी। अमेरिकी हमलों से एक बार फिर ईरान दहल उठा है। अमेरिकी सेना ने बीती रात ईरान के सिरिक, खुजस्तान, केशम द्वीप और बंदर अब्बास में मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों में ईरान के 100 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन अमेरिका के इन हमलों से ईरान में एक शादी समारोह का जश्न मातम में बदल गया। जी हां, ईरान का दावा है कि दक्षिण ईरान के सिरिक प्रांत के कुहेस्तात में एक शादी समारोह वाले घर पर अमेरिका ने मिसाइल से हमला कर दिया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को एक क्रूर युद्ध अपराध करार दिया है जिसमें एक बच्चे की भी मौत हुई है। ईरान का एक रिपोर्टर उस जगह को दिखा रहा है जहां अमेरिका का हमला हुआ और शादी का जश्न मातम में तब्दील हो गया। उसने अमेरिकी मिसाइलों के टुकड़े दिखाए और ये दावा किया कि अमेरिका ने IRGC के ठिकानों को नहीं, नागरिकों को निशाना बनाया है। इस दर्दनाक खबर को ईरान के जेन जी एनिमेशन ग्रुप एक्सप्लोजिव मीडिया ने लेगो यानी खास तरह के खिलौनों की मदद से दिखाया है। एनिमेशन में दिखाया गया है कि शादी का जश्न चल रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं और फिर अचानक अंधेरा छा जाता है, जोरदार धमाका होता है और जश्न का माहौल नागरिकों की मौत के बाद मातम में बदल जाता है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उनके निशाने पर केवल ईरान के सैन्य ठिकाने थे और वो नागरिकों को निशाना नहीं बनाते। लेकिन बीनाब स्कूल में 120 बच्चों की मौत और लामेद के स्पोर्ट्स हॉल पर हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमेरिका अब शादी वाले घर को मातम में बदलने का गुनहगार भी ठहराया जा रहा है। ईरान पर हमले की पहली खबर अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने दी। भारत में रात के 10 बजते ही अमेरिका ने होर्मुज और उसके आसपास ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी कर आक्रमण की पुष्टि कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक रात के 12 बजे उसने ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। उसने हमलों की वजह बताई और कहा कि ये होर्मुज में कमर्शियल जहाजों और इस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई है। कुछ ही देर बाद दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, जास और सिरिक में एक के बाद एक कई धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने अलग अलग सूबों में तैनात अधिकारियों के हवाले से बताया कि दक्षिण चाबहार और कोनार्क में 4 मिसाइलें गिरी हैं। इस समय तक ईरान को हमलों से बची तबाही का अंदाजा नहीं था, लेकिन आईआरजीसी ने अमेरिका को धमकी देना शुरू कर दिया था। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स ने बताया कि आईआरजीसी प्रवक्ता ने दो टूक कहा है कि नए हमले करने के बाद अमेरिका पछताएगा। उसने दावा किया कि आईआरजीसी ने आक्रमणकारी को जवाब देना शुरू कर दिया है और पहली ही कार्रवाई में हमारे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका की हमलावर सेना के 50वें अत्याधुनिक MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। दूसरी तरफ इन हमलों को खुद डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति और सुप्रीम कमांडर की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब अमेरिका हॉर्मुज के पास ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ये हमले बड़े और शक्तिशाली हैं और ये ईरान की उस नाकाम कोशिश का जवाब है जिसमें उसने हॉर्मुज में 22 लगाने की कोशिश की थी। इस समय वहाँ कोई 22 नहीं है, उन्हें या तो पूरी तरह हटा दिया गया है या विस्फोट कर उड़ा दिया गया है। ईरान ने जॉर्डन में हमारे मिलिट्री बेस पर 8 मिसाइलें दागी हैं, जिन सभी को मार गिराया गया है। अगर नाकाम राष्ट्र ईरान इन बेहद जायज हमलों पर पलटवार करता है तो उन पर फिर से ज्यादा कठोर और भीषण प्रहार होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा हमला नहीं होगा क्योंकि वो अभी होने वाला है और जब वो हमला खत्म होगा तब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं बचेगा।

0: बिना वजह नहीं किए हैं। दरअसल जुलाई के बाद बीते सोमवार को हुर्मुज से जा रहे दो टैंकरों पर हमले हुए। ईरान ने दुनिया को 20% तेल भेजने वाले रास्ते को ऐसे ही हमलों से बंद कर रखा है। ईरान के हमलों के बाद दुनिया भर में तेल के दाम $4 प्रति बैरल बढ़ गए, जिसके बाद कच्चा तेल 5 हफ्तों में सबसे ज्यादा महंगा हो गया। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी और उनका वीडियो भी रिलीज कर दिया। वीडियो में आग उगलती मिसाइल जॉर्डन की ओर बढ़ती दिख रही हैं। हमलों के तुरंत बाद जॉर्डन के मफरक और अकाबा सूबों में अलार्म के सायरन गूंज उठे। अकाबा के आसमान में हो रहे विस्फोट को देखा जा सकता था। दो अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान के हमलों से जॉर्डन में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जॉर्डन पर जब मिसाइलें गिर रही थीं, तब उनकी चमक इसराइल के एलात से ही दिख रही थी। एलात से लिए गए वीडियो में ईरान की मिसाइल रात के अंधेरे को चीरती दिख रही है। आईआरजीसी ने कहा कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी मरीन बेस पर भारी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। वहीं जॉर्डन की सेना ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 13 बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला किया। 13 में से 10 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि 3 आबादी से दूर खुले इलाके में गिरी। जब ये हमले चल रहे थे, तब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में अपने हमलों के समाप्त होने का ऐलान किया। उसने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने ईरान के एयर डिफेंस के ठिकानों, रडार सिस्टम, नावों और जहाजों, माइन बिछाने की क्षमता और संचार ठिकानों को निशाना बनाया। उसकी ये कार्रवाई हुर्मुज से गुजर रहे जहाजों और अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के हमले का जवाब थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व में तैनात हैं और कमांडर इन चीफ के आदेशों को लागू करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान का हमला जारी था। आईआरजीसी ने जॉर्डन के अलावा बहरीन में भी अमेरिकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का वीडियो जारी किया। यही नहीं, ईरान ने उन देशों को गंभीर नतीजों की चेतावनी दी है जो अमेरिकी हमलों में मदद कर रहे हैं। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाकर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागे हैं, जिनमें से केवल आधे ही जॉर्डन के हवाई क्षेत्र तक पहुंच पाए और उनमें से भी ज्यादातर को रोक दिया गया। लेकिन ईरान का कहना है कि आर पार की लड़ाई होकर ही रहेगी। आज तक ब्यूरो।
1: हमारे साथी संवाददाता सुमित इस समय हमारे साथ हैं। सुमित, ये बताइए कि एक महीने तक शांति थी, एक महीने के बाद आखिर सुमित अचानक ईरान पर हमले अमेरिका ने क्यों शुरू कर दिए?
2: सईद, माना यह जा रहा है कि करीबन एक महीने के बाद लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान के अलग अलग इलाकों में अटैक शुरू कर दिए। इससे पहले भी हमने आपको देख बताया था कि 24 घंटे पहले ही ईरान के ऊपर अटैक किए गए थे, लेकिन अब जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर ज्यादा अटैक किए गए। दरअसल इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। एक, पहला ये कि एक प्रेशर डाला जाए ईरान के ऊपर, दोबारा से बातचीत की टेबल पर लाया जाए, क्योंकि अभी भी जब पाकिस्तान के एयर मार्शल आसिफ मुनीर वहां गए थे तो आपको याद होगा कि उनसे बातचीत के दौरान भी ईरान ने साफ कर दिया था कि वो बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते जब तक उनकी तमाम शर्तें पूरी नहीं हो जाती। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि अमेरिका को ये इनपुट मिल रहे हैं कि ईरान ने अपने कोस्टल एरियाज में माइंस बिछाने का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया है, और इसी वजह से अब अमेरिका ने ये बड़े कदम उठाए। और अगर आप देखें कोस्टल एरियाज में, खासतौर पर हॉर्मुज के आसपास के इलाकों में ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं, और ऐसे जगहों पर भी अटैक किए जा रहे हैं जो रिहायशी इलाके हैं। शादी पर अटैक किया गया और ये माना जा रहा था कि अमेरिका की तरफ से ये अटैक एक तरीके का प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है ईरान पर कि देखिए अब के जो अटैक होंगे वो ज्यादा विध्वंसक होंगे, ज्यादा घातक होंगे और आपके जो नॉर्मल सिविलियन स्ट्रक्चर्स हैं उनको बर्बाद करने के लिए होंगे।
1: और आइए अब हम आपको दिखाएं कि रूस और यूक्रेन के बीच भी कैसे महायुद्ध के शोले भड़क उठे हैं। 4.5 वर्षों से चला आ रहा युद्ध एक बार फिर से घातक हो गया है। लगातार 6 दिनों से रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाया। पुतिन के अनुसार अब वो इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए हैं और अंजाम है पूरे डोनबास पर रूस का कब्जा, क्योंकि पुतिन का कहना है कि अगर उन्होंने डोनबास पर कब्जा नहीं किया तो उनकी सत्ता को खतरा है। लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को सबसे बड़ी चेतावनी दी है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के आसमान में उड़ने वाला हर विमान खतरे में है। अब से हर दिन 1,000 ड्रोन्स रूस के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ऐसे में नागरिक विमान रूस में अपनी उड़ानें बंद कर दें। जेलेंस्की की इस धमकी के बाद

0: रूस और यूक्रेन में अब आर पार की जंग। पुतिन की कसम, पूरे डोनबास पर कब्जा करेगा रूस। जेलेंस्की ने दी चेतावनी, रूस के हर विमान को टारगेट करेंगे। जेलेंस्की ने रूस को आतंकी देश बताया, महायुद्ध कंफर्म। पुतिन ने क्यों कहा वो मुझे फांसी पर लटका देंगे। इधर एससीओ सम्मेलन खत्म हुआ, उधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने और धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। आपको बता दें कि कीव और उसके आसपास के इलाकों पर बीते 6 दिनों से रूस लगातार भीषण हवाई हमले कर रहा है। मंगलवार को कीव पर हुए भीषण हवाई हमलों के तुरंत बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी चेतावनी आई है। दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस युद्ध को लेकर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने यूक्रेन को आतंकी देश बता दिया है। सबसे पहले बात ज़ेलेंस्की की, जिन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि रूस का हवाई क्षेत्र अब नागरिक उड़ानों के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों, बीमा कंपनियों और रूसी हवाई अड्डों के ऑपरेटरों को आगाह किया है कि रूसी आसमान में अब यूक्रेनी ड्रोन बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देंगे। ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को रूस के भीतर लंबी दूरी के हमलों को 3 गुना बढ़ाने का आदेश दिया है। उनका लक्ष्य प्रतिदिन 1,000 से अधिक ड्रोन दागना है, जिससे रूसी हवाई क्षेत्र एयरलाइनों के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो जाए और रूस की अर्थव्यवस्था ठप हो जाए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का इरादा नागरिक विमानों को टारगेट करने का नहीं है, लेकिन रूस ने जो युद्ध शुरू किया था उसके परिणाम अब खुद रूसी क्षेत्र और उसके हवाई क्षेत्र तक बढ़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी एयर स्पेस बंद हो चुका है और मॉस्को के अलावा सेंट पीटर्सबर्ग समेत दूसरे शहरों के लिए उड़ान भरने वाली एयरलाइंस इस जोखिम को गंभीरता से लें। ज़ेलेंस्की यही नहीं रुके, उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों और कीव मॉस्को में बैठे राजदूतों से कहा कि वो इस चेतावनी से अपनी सरकारों को आगाह करा दें। आखिर में ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब आसमान में ड्रोन का खतरा हो तो नागरिक उड़ानों को बंद कर देना चाहिए। ज़ेलेंस्की की ये चेतावनी तब आई है जब रूस ने कीव पर भीषण हमला किया। रूस के हमले में एक भारतीय की भी मौत हुई है। कीव के बाहरी इलाके बोरिसपिल में एक आवासीय इमारत पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जिनकी पहचान गुजरात के 40 साल के सुदर्शन भबीलाला के तौर पर हुई। इसी हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने रूस के आसमान को खतरनाक बता दिया और अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन को आतंकी देश बता दिया है।
1: Зеленский, заявим, да, что да, нам да, небезопасно летать.
2: Да, ну, послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да, а второе в этой же части...
0: तो वो जंग जो अपने 5वें साल की ओर बढ़ रही है उसके बंद होने के आसार नहीं दिखते। ज़ेलेंस्की खौफनाक धमकी दे रहे हैं और पुतिन ने यूक्रेन को आतंकी देश बताकर बातचीत के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। पुतिन ने दावा किया कि रूस युद्ध के मैदान में लगातार जीत रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के भीतर वास्तविक नुकसान हुआ है और ड्रोन इस समय उनके लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध इस समय एक बेहद आक्रामक और गंभीर मोड़ ले चुका है, जिसमें दोनों एक दूसरे को थकाकर कमजोर करने की जंग लड़ रहे हैं। अब तक दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। पुतिन जहां सर्दियों से पहले यूक्रेन को पूरी तरह तोड़ना चाहते हैं, वहीं ज़ेलेंस्की ड्रोन हमलों से रूस के भीतर तबाही मचाकर पुतिन को बातचीत की बेस पर लाने की जिद पर अड़े हैं। ऐसे में दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को डर है कि अगर उन्होंने पूरा डोनबास अपने कब्जे में लिए बिना यूक्रेन युद्ध खत्म कर दिया तो रूस के ताकतवर लोगों में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ सकती है, इससे उनकी सत्ता पर भी खतरा मंडरा सकता है। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन को लगता है कि अपनी बड़ी मांगे पूरी किए बिना यूक्रेन युद्ध खत्म करना रूस में उनकी कमजोरी मानी जाएगी। क्रेमलिन के एक करीबी सूत्र ने बताया कि युद्ध खत्म करने के नतीजों पर बात करते हुए पुतिन ने एक बार कहा था, वो मुझे फांसी पर लटका देंगे। पुतिन का मानना है कि अगर रूस का नेता कमजोर दिखता है तो उसके लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि वो युद्ध खत्म करने के लिए बड़े समझौते करने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहान क्षेत्रों को मिलाकर डोनबास कहा जाता है। रूस का डोनबास के करीब 90% हिस्से पर कंट्रोल है। अब पुतिन का मिशन डोनबास है।
3: अब बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का
6: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
8: चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: और वही कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: खाना कहाँ से मंगवाया?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट प्राइमर
4: जेके मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट।
2: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूँ?
1: जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: In association with
3: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
4: E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।

उत्तर प्रदेश की सियासी जंग अब आर्टिफिशियल अवतार में दिखने लगी है, क्योंकि इसे बाकायदा अब अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति के तहत वार पलटवार का हिस्सा बता दिया है।

सरकार के लोग मिलकर के उनको और बना रहे हैं। तो किसी ने हमें एक बहुत अच्छा वीडियो एआई का बना करके भेजा है। पहले हम अपना दिखाते हैं जो हमारे लिए बनाया उन्होंने, जिससे उनका जब वो देखें खुद का तो वो बुरा ना लगे उन्हें।

0: भरोसा नहीं है।
1: भगवाधारी गोरखनाथ पीठ के महंत और प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिलम पीते हुए दिखाया है, डांस करते हुए दिखाया है, यह घोर निंदनीय है।
2: श्री अखिलेश यादव जी जो इंडिया गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है, उनके खिलाफ भद्दा अभद्र नीच निर्लज्ज वीडियो डालते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी को उसका करारा जवाब समाजवादी पार्टी के आईटी सेल से चिल्लाता मिलता है तो फिर वो कांव कांव करके चिल्लाने लगते
3: हैं। अखिलेश यादव ने रिपीट कर के ये वीडियो अपने दफ्तर में 3 बार चलाया और बीजेपी को चेतावनी भी दी।
4: अब तो तब हो गई कि जब डिंपल के लिए भी बना रहे हैं और नाम उनका भी ले जा रहे हैं।
5: घोटाला जमकर था तुमने करा।
3: अखिलेश ने बीजेपी के समर्थकों की ओर से बनाए जा रहे एआई वीडियो की सीरीज का जिक्र किया जो लगातार उन पर चुनावी हमले कर रहे हैं।
6: तो जिस तरीके से एआई का प्रयोग समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के लिए कर रही है, 2027 के चुनाव में जरूर ये बताना चाहती है जनता को आखिर वोट वो किसे दें। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
3: सो सॉरी।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, कहा श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टी के नामों का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। देश भर के जल संसाधन मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री का जल मंत्र, कहा टीम इंडिया की भावना से करें काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख, कहा पार्टी की विचारधारा के साथ न करें समझौता, 10 दिन तक चला ट्रेनिंग कार्यक्रम। और नेपाल आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंचा, 4200 से ज्यादा अभी भी लापता, तबाही से चीन में भी 21 ने गवाई जान।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सुशांत सिंह राजपूत की कुछ वक्त के लिए मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत की फाइल 6.25 साल बाद फिर से खुलने जा रही है। दिशा के पिता की याचिका पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का हुक्म दिया है। दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत 6 दिन के अंदर हुई थी और तब इन दोनों ही मौत को एक ही साजिश का हिस्सा बताया गया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के 4.5 साल बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, साथ ही ये भी कहा कि सुशांत सिंह की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं थी।
2: साल 2020 जब पूरा देश ठीक से कोरोना बोलना सीख रहा था, कोरोना के खतरे का बस अंदाजा लगा रहा था, ठीक उसी वक्त दो ऐसी रहस्यमयी मौत होती है जो कोरोना के वायरस से भी कहीं ज्यादा तेजी से मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए 2 गज की दूरी को काटते हुए घर घर पहुंच जाती है। इनमें से एक रहस्यमयी मौत थी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की और दूसरी उन्हीं सुशांत सिंह राजपूत की कुछ वक्त के लिए मैनेजर रही दिशा सालियान की। सिर्फ 6 दिन के अंदर ये दो मौत हुई थी। पहली मौत 8 जून 2020 को दिशा सालियान की और दूसरी मौत 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की। दूसरी मौत की जांच पहले मुकम्मल हुई। करीब 4.5 साल की जांच के बाद 22 मार्च 2025 को सीबीआई ने मुंबई की सीबीआई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि सुशांत सिंह की मौत कत्ल नहीं, खुदकुशी थी, इस मौत के पीछे कोई साजिश नहीं थी। जबकि पहली मौत यानी दिशा सालियान की मौत की जांच मुंबई पुलिस ने पहले 3 महीने में बंद कर दी, ये कहते हुए कि दिशा की मौत एक एक्सीडेंट यानी हादसा थी, दिशा ने खुदकुशी की थी। यहां तक कि मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत के मामले में जो कागजात तैयार किए वो भी एक्सीडेंटल डेथ के ही थे। दरअसल तब खुद दिशा के माँ बाप ने ही ये कहा था कि उन्हें उनकी बेटी की मौत के पीछे कोई साजिश नजर नहीं आती, यहाँ तक कि उन्होंने दिशा के साथ रेप होने की बात से भी इनकार किया था। इतना ही नहीं, तब पुलिस की जांच पर भी उन्होंने भरोसा जताया था। दिशा के पिता सतीश शालियान से तब आज तक ने बाकायदा कैमरे पर बात की थी।

0: में एप्लीकेशन पुलिस को दिया है, उन पुलिस ने पूरा मेरे को एक्सप्लेन करके बताया, सर हर एक चीज बताया उन्होंने।
1: अच्छा।
0: वो किधर गई थी, क्या करी थी, सब डिटेल उनके पास है, और जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो सब एक्सप्लेन करके बताया था। प्रेगनेंसी नील है, रेप ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ऑर्गन्स अच्छा है, मीन्स प्रेगनेंसी का एकदम क्लीन है, वो कुछ है ही नहीं,
1: सब रूमर्स
0: है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी बेटी के लिए ऐसा रूमर्स फैला के आप उसका फायदा मत उठाइए प्लीज, उतना पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ऑल सोशल मीडियाज एंड ऑल पॉलिटिशियंस ऑल्सो।
2: लेकिन दिशा सालियान की मौत के सवा छह साल बाद एक बार फिर बुधवार को ये केस जिंदा हो उठा, जिस केस को मुंबई पुलिस ने पहले 3 महीने सुसाइड करार देकर बंद कर दिया, जिस केस की जांच के लिए 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिस एसआईटी की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। उसके बाद अब 2 सितंबर 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। फैसला ये कि दिशा सालियान की मौत की जांच सीबीआई की मुंबई शाखा के एक आला अफसर करेंगे। इस केस में नए सिरे से एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन जब तक जांच के नतीजे सामने नहीं आ जाते तब तक किसी को भी आरोपी नहीं माना जाए, और अगर सीबीआई की जांच में कुछ भी नहीं मिलता तब भी इसी कोर्ट में वो रिपोर्ट दाखिल की जाए।
3: पार्टली अलाउड कर दी है, सीबीआई को डायरेक्शन दिया है वो सतीश सालियान जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके एफआईआर रजिस्टर करे और सीनियर ऑफिसर अपॉइंट करके इन्वेस्टिगेट करे, और मालवनी पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया है सारे रिकॉर्ड हैंड ओवर करे सीबीआई को। और दूसरा, इसमें जिस किसी के भी खिलाफ सबूत मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई, जिस किसी के खिलाफ सबूत नहीं रहेगा उसको आरोपी नहीं बनाया जाएगा। और इसमें अगर कुछ सीबीआई का निगेटिव रिपोर्ट आया तो हमारे को उसको ऑब्जेक्शन लेने का, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का अधिकार है, ये भी ऑर्डर में कोर्ट ने कह दिया है।
2: अब सवाल यह है कि सवा छह साल बाद दिशा सालियान की मौत की नए सिरे से जांच हाई कोर्ट ने सीबीआई को क्यों सौंपी? तो जवाब यह है कि दिशा सालियान के जो पिता शुरुआत में अपनी बेटी की मौत के पीछे किसी साजिश की बात से इनकार कर रहे थे, उन्हीं सतीश सालियान ने 19 मार्च 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दिशा की मौत की दोबारा जांच कराने और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। इसी मांग पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। उसी सुनवाई के बाद बुधवार को हाई कोर्ट ने दिशा सालियान के पिता की याचिका मंजूर कर ली और केस की जांच सीबीआई को सौंपने का हुक्म दिया।
4: मुझे 6 साल से इंतजार था इसका, 6 साल से इंतजार था, और खुश की बात तो है नहीं। मैं अपनी बेटी को खो चुका हूँ।
5: सर क्या कहेंगे, 2025 में आप कोर्ट, आपको लग रहा है कि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो सही से नहीं हुई थी और अब आगे होगी?
4: जरूर होगी।
6: सत्य की जीत हुई है आप कहना चाहेंगे? आप क्योंकि शुरुआत से कह रहे थे पुलिस स्टेशन जा रहे थे, आप परेशान हुए, पुलिस ने नहीं सुना, अदालत गए, अदालत में लंबी सुनवाई हुई, आज फैसला हुआ, क्या कहेंगे? आज सत्य की जीत हुई, क्या इमोशन रह गया?
4: मैं खाली नीलेश ओझा को आभार मानता हूँ और आशुतोष पाठक को आभार मानता हूँ, उनके वजह से इतना आगे आ सका हूँ।
6: आज अदालत में आपने जज से भी कुछ कहा जब फैसला आया,
5: आपने क्या कहा? जज बैठे थे
4: हम जुड़ गए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
2: पर सवा छह साल बाद क्या इस केस में सीबीआई के हाथ कोई नए सबूत लग पाएंगे? पहले लोकल पुलिस और फिर एसआईटी जिस केस में कुछ नहीं ढूंढ पाई, क्या ऐसा कुछ सीबीआई के हाथ लग पाएगा? कम से कम सतीश सालियान के वकील को भरोसा है कि इस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनके पास गवाह और सबूत दोनों है।
7: केस को जब कोर्ट में लाया गया तब एसआईटी के पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था, मालवनी पुलिस स्टेशन ने इसको एक्सीडेंटल रिपोर्ट बता दिया था, कई चैलेंजेस के खिलाफ ये पिटीशन फाइल की गई थी, किसी को लगा नहीं था सीबीआई इंक्वायरी इसमें होगी।
3: अरे आपने अगर देखा होगा कोर्ट ने इनका पूरा झूठ पकड़ लिया। पहली चीज, इसमें उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट बनाए थे सब झूठे पाए गए। इन्होंने खुद जो सीसीटीवी प्रोड्यूस किया उसमें भी इनका सुसाइड थ्योरी झूठा साबित हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी, आपको याद होगा कोर्ट ने पहला सवाल पूछा
8: इंजरी को लेकर।
3: हाँ, कोर्ट ने कहा आप कह रहे हो 14वें माले से लड़की गिर रही है, मुंह पर गिर रही है, वो फोर्स क्या होता है 14वें माले का? और नाक ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, होठ भी ठीक है, अंदर का एक दांत टूटा हुआ दिखा रहे हो। तो इतना बोगस इन्वेस्टिगेशन, इनको लगता है गरीब है तो हम कुछ भी कवर कर लेंगे, ये ऐसा नहीं होता है।
7: क्या ग्राउंड्स आपको लगता है जो कोर्ट ने इसमें सीबीआई सीनियर सीबीआई ऑफिशियल को इन्वेस्टिगेट करने को कहा है?
3: क्योंकि सीनियर पुलिस अधिकारी आरोपी है, आदित्य ठाकरे आरोपी है, उद्धव ठाकरे आरोपी है, परमवीर सिंह आरोपी है, तो ऐसे इतनी बड़ी पूरी रिया चक्रवर्ती आरोपी है, तो इतने सब लोग आरोपी है, तो इसमें सीबीआई बेटर है और वो भी सीनियर ऑफिसर।
7: एफआईआर रजिस्टर करने को कहा गया है सीबीआई की
3: तरफ? हाँ हाँ, कोर्ट ने क्लियर कहा है सतीश आलियान जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है और एफआईआर रजिस्टर करना है और बाद में इन्वेस्टिगेट करना है।
7: किसी को आरोपी ना समझा जाए जब तक उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिल पाते, तो क्या इतने साल बाद क्राइम होने के एविडेंसेस मिल पाएंगे?
3: सब एविडेंस है, चिंता मत कीजिए। आई विटनेस से लेके वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके सब विटनेस है। हम पहले दिन से कह रहे हैं एफिडेविट पे कंप्लेंट है, कंप्लेंट झूठी है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कंप्लेंट सही है तो इनको अरेस्ट कीजिए।
7: बस अरेस्ट किसको करना चाहिए?
3: अरेस्ट तो आदित्य ठाकरे से शुरुआत है, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, तुम्हारा सूरज पांचोली, आदित्य के बॉडीगार्ड रोहन रॉय, रिया चक्रवर्ती, और इसके पहले का एसआईटी का मेंबर हो चिमाजी आड़ाव, ये शैलेंद्र नगरकर, सब लिस्ट है इनकी।
7: हाँ, कत्ल को आपको लगता है सुसाइड बताया गया, क्या वजह?
3: गैंग रेप किया, मर्डर किया सुशांत से, क्या दिशा ने इनके वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग ड्रग्स के बिजनेस वाले पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया था, उसके बाद सबूत थे, उसने ट्रांसफर किया सुशांत सिंह राजपूत को, सुशांत सिंह ने बताया रिया चक्रवर्ती को, रिया अभी रिया और आदित्य पार्टनर इन क्राइम है, ये बात सुशांत को पता नहीं थी, तो रिया ने क्या किया, रिया ने मैसेज दिया और फिर आदित्य और उन्होंने पूरा सचिन वाजे को लेके जाके ये सब गलत काम कर दिया। बाद में आकर दोनों लोगों ने स्टेटमेंट दिया, आदित्य ने कहा कि मैं रिया चक्रवर्ती को नहीं जानता हूं, रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती हूं, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब फोन उसका ये किया, उसने जो चार्ट डिलीट किए थे फोरेंसिक में रिकवर हुए, उसमें पता चला कई सालों से दोस्ती है, पार्टनर इन क्राइम है ये लोग। तो ये ऐसे कई, मैं तो आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, कल का सीसीटीवी देखा आपने? सीसीटीवी में साबित हो गया पूरा सुसाइड का स्टोरी झूठा है। वो जो कह रहे थे इनका स्टोरी क्या था? इनका स्टोरी था कि दिशा 4 जून को पिताजी के घर से पहुंची, कहां पर? फ्लैट पे। 4 जून के बाद वो फ्लैट से कभी बाहर ही नहीं आई। बाद में 8 जून को हम 7:30 से दारू पीते बैठे थे और वो सब देख रहे थे प्रोग्राम नाच गए थे। बाद में 12:06 से 1:21 तक वो बात कर रही थी उसकी फ्रेंड है अंकिता सत्तूर से लंदन में, तो उसका डेथ हुआ 1:21 के बाद में। सीसीटीवी में आया है कि जो टाइम पे वो बात करती हुई दिखाए उसके पहले से दिशा जा रही है फ्लैट नंबर 1101 में, बाहर आने का एविडेंस कुछ दिख नहीं रहा है, और पुलिस ये कह रहे कि पुलिस आई थी 3 के बाद।
7: टाइमिंग गलत भी तो हो सकता है सीसीटीवी का।
3: हाँ, एफिडेविट हो चुका है ना,
7: जब तक जेल में आरोपी नहीं जाते आप चुप नहीं बैठे।
3: हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक वो सेकंड पार्ट सुन लीजिए। सीसीटीवी में यह भी दिख रहा है कि पुलिस वहां पहुंच गई थी 12:00, उनको मतलब मालूम है अभी वो वहां से सुसाइड करने वाली है। और यहाँ स्टेशन डायरी में एंट्री लिख रहे हैं कि पुलिस पहुंची दूसरे दिन 9:40।
2: कहते हैं कि अगर दिशा सालियान की मौत को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ न जोड़ा जाता तो ये इतना बड़ा केस कभी बनता ही नहीं। पर क्या सचमुच दिशा और सुशांत की मौत में आपस में कोई कनेक्शन है, सिवाय इसके कि दोनों की मौत 6 के अंदर हुई और मौत से पहले दिशा कुछ वक्त के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही। ये सवाल इसलिए भी है कि अगर सचमुच दिशा और सुशांत की मौत एक दूसरे से जुड़े थे तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच करने वाली सीबीआई की टीम ने इस केस से कभी दिशा की मौत के केस को क्यों नहीं जोड़ा? अगर वाकई दोनों मौत एक साजिश थी और एक दूसरे से जुड़ी हुई तो तब उस सीबीआई टीम ने सुशांत की मौत का सच जानने के लिए दिशा की मौत की पड़ताल क्यों नहीं की? हालांकि उस वक्त भी सीबीआई की उस टीम से ये सवाल पूछा गया था, तब जांच टीम से जुड़े सीबीआई के एक अफसर ने कहा था कि दोनों केस अलग अलग है।
9: सूत्रों के मुताबिक जैसे ही सीबीआई इस पूरे मामले की जांच शुरू करती है उनका पहला पहलू होगा कि आखिरकार 8 जून 2020

0: इसको हुआ क्या था जिस दिन दिशा की मौत हुई, और उस दिन दिशा सालियान अपने फियांसी के साथ थी और ये मालवनी की एक हाई राइज बिल्डिंग में थी, और उस पर जो सवाल उठे हैं जो दिशा सालियान के पिताजी हैं सतीश सालियान उनके लॉयर नीलेश ओझा ने उस दिन जो हुआ और उसके बाद दिशा के ऊपर जिस तरह की इंजरीज थी, कितनी दूर बिल्डिंग से वो गिरी, इन सभी पहलुओं पर सवाल उठाया है। उनका ये भी कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उस बिल्डिंग का, जिसमें पुलिस जो है अगर टाइम देखा जाए तो सुसाइड से पहले ही वहां पर उस बिल्डिंग में पहुंची हुई थी, उनका कहना है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है, स्टेज है, और दिशा सालियान का मर्डर हुआ था, उन्होंने खुदकुशी नहीं की थी। तो सबसे पहले जो जांच है वो उस दिन से ही शुरू होगी 8 जून 2020, और सीबीआई ये पता लगाना चाहेगी कि आखिरकार वहां ऐसे कोई सुराग छूट गए हैं इस केस की तफ्तीश में जिसको आगे खंगाला जा सके।
1: आठ और नौ जून की रात रीजेंट गैलेक्सी सोसाइटी की 14वीं मंजिल पर दिशा के मंगेतर रोहन रॉय के घर पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में दिशा के अलावा रोहन रॉय और दोनों के चार और दोस्त दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्य, हिमांशु शिक्रे और रेशा पद्मन यानी कुल छह लोग मौजूद थे। इसी पार्टी के दौरान देर रात दिशा एक बेडरूम की खिड़की से नीचे गिरी और उसकी मौत हो गई। दिशा ने खिड़की से छलांग लगाई थी या फिर वो गलती से नीचे गिरी, यह आज तक पता नहीं चल पाया।
2: रीजेंट गैलेक्सी बिल्डिंग में जहां उनके फियांसी रहते हैं रोहन रॉय, वहां उनके घर में कोई छोटा फंक्शन, छोटी पार्टी चल रही थी 8 तारीख की रात को। उस पार्टी में टोटल 6 लोग हाजिर थे। उस समय ये रात में दुर्घटना हुई थी जब उनको नीचे बिल्डिंग के नीचे गिरा पाया गया था। वहां से उन्हें शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया गया था। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, बयान नोट किए गए हैं।
1: मुंबई पुलिस के मुताबिक घर में मौजूद दिशा के मंगेतर, चारों दोस्तों और दिशा के माँ बाप ने पूछताछ में दिशा की मौत को लेकर किसी पर शक नहीं जताया, पर फिर भी पुलिस अपनी तरफ से मामले की जांच करनी शुरू कर देती है।
2: बयान नोट किए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज देखा गया है, तो यही 6 लोग उनके घर पे उस दिन हाजिर थे, इससे अतिरिक्त कोई व्यक्ति वहां पे नहीं था। उनके माता पिता का बयान भी नोट किया गया है और उन्होंने भी इस बारे में कुछ शक नहीं बताया है।
1: पुलिस के मुताबिक दिशा कुछ वक्त से कई प्रोजेक्ट को लेकर परेशान थी। बहुत मुमकिन है कि अगर दिशा ने खुदकुशी की है तो उसकी वजह ये परेशानी भी हो सकती है।
2: लेवल पे शायद उनके दो अकाउंट्स कुछ खराब हो गए थे और उनको पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम थी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम थी, जिसके शायद वो डिस्ट्रेस थी, ये एक कारण उनकी सुसाइड का हो सकता है।
1: दिशा जिस कॉर्नर स्टोर मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रही थी उस कंपनी ने उसे सुशांत का मैनेजर बनाकर भेजा था। हालांकि मुंबई पुलिस की माने तो दिशा से सुशांत की मुलाकात सिर्फ एक बार मार्च 2020 में ही हुई थी।
2: उन्होंने सिर्फ मार्च महीने में एक बार उनकी सुशांत सिंह जी से मुलाकात हुई थी। वो एक कॉर्नर स्टोर नाम की कुछ मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती थी। उसके अलावा उनकी मुलाकात जितनी हमारा इन्वेस्टिगेशन है श्री सुशांत सिंह राजपूत से कभी नहीं हुई थी।
1: हालांकि मुंबई पुलिस ये भी मानती है कि दिशा की मौत की खबर सुनने के बाद सुशांत परेशान हो उठे थे, पर साथ ही पुलिस ये भी कह रही थी कि सुशांत दिशा को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, न ही उन्हें दिशा का नाम याद था। यहाँ तक कि जब दिशा की मौत की खबर आई तो सुशांत ने अपने वकील से पूछा था कि ये दिशा कौन है।
2: इस बात से बहुत डिस्ट्रेस में थे कि उनका नाम दिशा सालियान से कनेक्ट किया जा रहा था। इनफैक्ट उनका एक मैसेज इस प्रकार का प्राप्त हुआ है कि उन्होंने अपने एडवोकेट थी कि उनकी पहचान की, उससे पूछा है हु इज दिशा सालियान, तो उनकी कुछ पहचान भी नहीं थी, सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ इस प्रकार का पॉइजनस वो चलाया गया था कि उनको लिंक करने के लिए, और जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रेस।
1: तो अब सवाल यह है कि दिशा की मौत को सुशांत की मौत से क्यों जोड़ा गया, तो इसकी भी एक कहानी है और इस कहानी की शुरुआत सोशल मीडिया पर होती है। दिशा की खुदकुशी पर शक जताते हुए ये कहा जाता है कि दिशा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि पहले उसका रेप हुआ और फिर कत्ल। सोशल मीडिया की कहानी के मुताबिक 8 और 9 जून की रात एक पार्टी हुई। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारे और महाराष्ट्र के एक मंत्री भी शामिल हुए थे। इस पार्टी में दिशा के साथ रेप करने के बाद उसकी लाश को नीचे फेंक दिया गया। सोशल मीडिया की इस कहानी में आगे कहा गया था कि कत्ल से पहले दिशा ने सुशांत को फोन कर सारी बात बता दी, सुशांत ने ये बात रिया को बताई, रिया ने ये बात महेश भट्ट को बताई और इसी के बाद सुशांत को खामोश करने के लिए 13 जून की रात को ही सुशांत का कत्ल कर दिया गया। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए दलील दी गई कि इसी वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत का वक्त नहीं लिखा गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक पार्टी वाली रात की सारी सीसीटीवी तस्वीरें पुलिस के पास मौजूद हैं। इनमें भी ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे दिशा की मौत पर शक जाता हो। यह दिशा सालियान है, 25 साल की एक ऐसी लड़की जो मुंबई में एड फिल्मों में अपना नाम कमाना चाहती थी, अपना खुद का दफ्तर खोलना चाहती थी, अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती थी, पर ये सारे ख्वाब अधूरे रह गए। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में पूरी तरह जिंदा दिल नजर आ रही दिशा इस वीडियो के शूट किए जाने के सिर्फ 1.5 घंटे बाद 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। हालांकि दिशा कूदकर खुदकुशी करती है, अनजाने में नीचे गिर पड़ती है या फिर कत्ल के बाद उसे धक्का दिया जाता है, यह आज तक साफ नहीं हो पाया। 25 मार्च को देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन हो जाता है, दिशा भी उस कंपनी से बाहर हो जाती है और इस तरह वो सुशांत के मैनेजर की जिम्मेदारी से भी हट जाती है। फिर इसी बीच 9 जून की रात दिशा की मौत की खबर आती है। 14वीं मंजिल पर मौजूद दिशा के मंगेतर के फ्लैट से दिशा नीचे गिर जाती है। जब यह हादसा हुआ तब दिशा के मंगेतर के घर में एक छोटी सी पार्टी चल रही थी जिसमें दिशा, उसका मंगेतर और उनके 4 और दोस्त शामिल थे।
2: गैलेक्सी बिल्डिंग में जहां उनके फियांसी रहते हैं रोहन रॉय, वहां उनके घर में कोई छोटा फंक्शन, छोटी पार्टी चल रही थी 8 तारीख की रात को। उस पार्टी में टोटल 6 लोग हाजिर थे, सीसीटीवी फुटेज देखा गया है तो यही 6 लोग उनके घर पे उस दिन हाजिर थे, इससे अतिरिक्त कोई व्यक्ति वहां पे नहीं था। उनके माता पिता का बयान भी नोट किया गया है।
1: मुंबई पुलिस के मुताबिक पार्टी वाली रात की सारी सीसीटीवी तस्वीरें पुलिस के पास मौजूद थी, उन्हें देखने के बाद उन्हें कहीं से भी कोई शक नहीं हुआ। इनमें अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे दिशा की मौत पर शक किया जाए, लेकिन फिर भी पुलिस की तफ्तीश जारी रही। खुद दिशा की मां अपनी बेटी की मौत के पीछे किसी साजिश या सोशल मीडिया में चल रही कहानियों को तब गलत बता रही थी।
3: पूरा जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब मीडिया में चल रहा है, यूट्यूब में, कुछ भी सोशल मीडिया में चल रहा है, सब कुछ झूठ है।
1: विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। दिशा सान्याल की मौत के 5 साल बाद तक दिशा के पिता खामोश रहे। फिर 2025 में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और मांग की कि उनकी बेटी की मौत की जांच फिर से की जाए क्योंकि उन्हें शक है कि उसका कत्ल हुआ है। इससे पहले 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने भी दिशा की मौत की जाँच के लिए SIT बनाई थी, हालांकि उस SIT की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। ये दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। दिशा की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ये वो हिस्सा है जो कॉज ऑफ डेथ यानी मौत की वजह बताती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिशा की मौत की वजह सिर पर चोट और पूरे शरीर पर मल्टीपल इंजरी है। सिर पर लगी चोट की वजह से खून भी काफी बह गया था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि दिशा के प्राइवेट पार्ट में जख्म के कोई निशान जो इस बात की गवाही दे कि मौत से पहले दिशा के साथ रेप हुआ है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक जांच में ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई जिससे ये पता चलता कि दिशा के साथ रेप हुआ है। तब BJP के सांसद नारायण राणे ने यह दावा किया था कि दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके प्राइवेट अंगों में जख्म के निशान मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि दिशा के साथ रेप हुआ था, लेकिन मुंबई पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो गया था कि रेप नहीं हुआ है। दरअसल महिलाओं की खुदकुशी एक्सीडेंटल डेथ के मामले में अमूमन वेजाइनल स्वैब के नमूने लिए जाते हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा जाता है ताकि ये पता चल सके कि कहीं मौत से पहले उस महिला के साथ रेप जैसा कोई जुर्म तो नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक जगह इसी वेजाइनल स्वैब के नमूने लिए जाने की बात लिखी है।
4: दिशा सालियान की मौत एक खुदकुशी का केस था या फिर एक कत्ल की साजिश, 6 साल बाद ये सवाल फिर उठ खड़े हुए हैं। एक बाप की गुहार को सुनते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के दिशा निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन सीबीआई जांच में क्या ये पता चल पाता है कि सच में दिशा सालियान की मौत एक खुदकुशी थी या फिर एक कत्ल की साजिश। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
1: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
6: ब्रज की भूमि से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पंचायत आज तक मथुरा, 3 सितंबर सिर्फ आज तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। कहा, श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टी के नामों का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन। अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। देश भर के जल संसाधन मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री का जल मंत्र। कहा, टीम इंडिया की भावना से करें काम। पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य। एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख। कहा, पार्टी की विचारधारा के साथ न करें समझौता। 10 दिन तक चला ट्रेनिंग कार्यक्रम। और नेपाल आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंचा। 4200 से ज्यादा अभी भी लापता। तबाही से चीन में भी 21 ने गवाई जान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: मराठा आरक्षण की मांग पर मनोज रांगे पाटिल का अनशन, पांचवें दिन भी जारी। तबियत बिगड़ने से बढ़ी चिंता। मराठा आरक्षण आंदोलन के पांचवें दिन मनोज रांगे का सरकार पर गंभीर आरोप। बोले, मुंबई में घुसाने का प्लान 100% दंगा कराना चाहती है सरकार। मांगों के तत्काल जीआर पर अड़े हुए हैं जरांगे। 12 सितंबर को मुंबई कूच का ऐलान। बोले, लाठी का जवाब लाठी से ही देंगे। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड जरांगे किससे बातचीत के लिए, अंतरवाली सराटी रवाना। 15 मांगों पर चर्चा से समाधान की कोशिश। जालना में मराठा आंदोलनकारियों को का धुले सोलापुर हाईवे पर रास्ता रोको आंदोलन। करीब 1.25 घंटे तक यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। अन्ना हजारे की तबीयत में आया सुधार, सभी रिपोर्ट आई है नॉर्मल। नासिक में राहुल गांधी ने कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को दिया संगठन मजबूत करने का संदेश। कराटे का भी प्रदर्शन। नासिक में राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर हमला। बोले, हाथ पैर टूट जाए फिर भी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। सृजन शिविर में 68 जिलाध्यक्षों को किया गया संबोधित। किसान एसआईआर कुंभ की तैयारियों पर चर्चा, आदिवासियों से भी मिले राहुल गांधी। जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल। दही हांडी फोड़ने के लिए कर रहे हैं जबरदस्त तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी की गैर जरूरी सोना न खरीदने की अपील से देश भर के ज्वेलर्स में मची हलचल। सीटीआई ने कारोबार में 60-70% गिरावट की आशंका जताई। रोजगार को भी नुकसान की आशंका। आईटी सर्विसेज में सितंबर में हायरिंग डिमांड 18 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। कंपनियों का फोकस एआई, क्लाउड और डिजिटल स्किल्स में माहिर प्रोफेशनल्स को नौकरी देने पर बढ़ा। सितंबर में कंपनियां 20 से 25 हजार करोड़ रुपए तक के आईपीओ लाने की तैयारियों में हैं। 25 कंपनियों की लिस्टिंग की तैयारी से निवेशकों के लिए कमाई नए मौके खोलने की संभावना। त्योहारों से पहले कीमतें काबू में रखने के लिए सरकार ने चीनी डीलर्स के लिए स्टॉक लिमिट घटाया है। 15 सितंबर से डीलर्स केवल 2000 क्विंटल तक ही चीनी का स्टॉक रख पाएंगे। देश में गोल्ड लोन मार्केट 2026 तक बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। 2028 तक इसके 30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। मिर्जापुर द मूवीज के मेकर्स का बड़ा धमाका। रिलीज के 3 दिन पहले आउट हुआ नया गाना। मनोज वाजपेयी की फिल्म लास्ट मैन इन टार का ट्रेलर रिलीज हुआ है। व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडेगा के नोवेल पर आधारित है ये फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हनुमान अंश ने किया है कमाल। मूवी ने 25 दिनों में 47 करोड़ के आसपास की कमाई की। पर्दे पर आदमखोरों के शिकारी बनेंगे अक्षय कुमार। मशहूर शिकारियों पर्यावरण प्रेमी रहे जिम कॉर्बेट की बायोपिक में करेंगे काम। रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म मैसा की रिलीज डेट का ऐलान किया गया। 27 नवंबर को रिलीज होगी ये फिल्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में पार्टी और चुनाव निशान पर अधिकार को लेकर सुनवाई हुई है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों ही पक्षों से अपनी अपनी दलीलें दे दी गई थी और अब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है 15 सितंबर को। इस सुनवाई पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर ये चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा, शिंदे गुट के पास या ठाकरे गुट के पास। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई थी और इसीलिए दोनों ही पक्षों की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं, सुनवाई पर टिकी रही। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दे दी गई हैं और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है।
2: शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद चुनाव चिन्ह हो या फिर बागी सांसदों और विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा, कोर्ट्स में ये मामला वर्षों से लंबित रहा है लेकिन अब इंच दर इंच, कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है और उम्मीद

0: है कि अगले महीने तक इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी और जजमेंट रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद इंतजार शुरू हो जाएगा इस सबसे चर्चित मामले के फैसले का। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
1: पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज नासिक के दौरे पर रहे। राहुल गांधी कांग्रेस के सृजन शिविर के आखिरी सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नासिक में 10 दिन तक चले सृजन शिविर में राहुल गांधी ने वरिष्ठ और युवा नेताओं से मुलाकात की, उनके साथ बैठक की। राहुल गांधी ने किसानों की बदहाली, SIR और नासिक कुंभ मेले की तैयारियों पर भी बात की। राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान के तहत महाराष्ट्र के 68 जिलाध्यक्षों को संबोधित किया और कहा कि पार्टी की विचारधारा के साथ किसी भी हालत में समझौता न करें। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे हाथ पैर टूट भी जाएं, फिर भी RSS की विचारधारा को स्वीकार नहीं करूंगा। इस कार्यक्रम के अलावा राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के आदिवासी छात्रों के एक डेलीगेशन से भी मुलाकात की है, जो नासिक में आपको याद होगा लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इससे पहले नासिक पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहने थे और राहुल गांधी का विरोध किया था। बीजेपी कार्यकर्ता मनुस्मृति पर दिए गए बयान के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे, राहुल गांधी का विरोध करने के लिए।
2: महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का 10 दिन का शिविर, हमारे जो नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष है उन 70-80 लोगों का शिविर 10 दिन से चल रहा है। इसमें कई हमारे कांग्रेस के आला नेताओं ने उसको संबोधित किया है। आज शिविर का आखिरी दिन है और उसका समारोह करने के लिए राहुल जी खास दिल्ली से नासिक आए हैं। उसके पहले राहुल जी कांग्रेस के कुछ ज्येष्ठ नेताओं से जो नासिक में उपस्थित थे उनसे उन्होंने मीटिंग की। अभी आधा घंटा पहले मीटिंग हुई और हमने महाराष्ट्र के कई सारे मुद्दे उठाए हैं, उसमें नासिक का कुंभ मेले की बात उठाई, उसके बाद हमने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याओं की बात हटाई, जो रोज 10.5 से ऊपर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, SIR की प्रक्रिया की बात की।
1: आपको याद होगा मुंबई के 6 साल पुराने दिशा सालियान केस में जबरदस्त मिस्ट्री की बात कही जा रही थी और अब जांच दे दी गई है CBI को। नए सिरे से जांच होनी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान की मौत के मामले में CBI जांच का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने CBI को FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। दिशा की मौत हुई थी 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद। पुलिस ने मौत को आत्महत्या बताया था, लेकिन दिशा के पिता सतीश सालियान ने बेटी की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए दोबारा से जांच की मांग की थी। दिशा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। दोनों की मौत 6 दिन के अंतराल पर हुई थी।

0: छह साल, एक मौत, कई सवाल और अब जांच की नई शुरुआत। दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की एंट्री हो गई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और दिशा की मौत से जुड़े हर पहलू की जांच करने का आदेश दिया है। ये वही तारीख थी जिस रात दिशा सालियान का शव उस 14 मंजिला के नीचे मिला जहां वो मौजूद थी। मुंबई पुलिस ने जांच के बाद इस मौत मिस्ट्री को आत्महत्या बताया। अब सीबीआई इसका सच खंगालेगी। दिशा सालियान सेलिब्रिटी मैनेजर थी। कुछ वक्त तक दिशा ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया था। 8 जून 2020 की रात मुंबई के मलाड इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी मौत हुई। शुरुआत में पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर दर्ज की। बाद की जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया और कहा कि उसे किसी आपराधिक साजिश या यौन हमले के सबूत नहीं मिले। लेकिन दिशा के पिता सतीश सालियान इस निष्कर्ष से संतुष्ट नहीं हुए। बेटे की मौत में साजिश का आरोप लगाते हुए नए सिरे से जांच की मांग की।
1: उसमें मोड़ आए, आपको कब ये चीज में कन्विंस हुआ कि कहीं ना कहीं कोई दोषी है, कोई आरोपी है? पहले इसको सुसाइड केस बताया जा रहा।
2: दोषी तो रहेगा, दोषी के बिना थोड़ी होएगा, मर्डर होएगा, ऐसा है।
1: लेकिन क्या ऐसे सरकमस्टेंस जो आपको लगता है जिसमें अभी तक जांच नहीं हो पाई और सीबीआई को उस चीज में फोकस करना है?
2: नहीं, अबे मैं तो कुछ नहीं उसके बारे में बोलता है। जो लोग दिल्ली सब बोलते हैं, सही बोलते हैं, उनको दिमाग चाणक्य दिमाग है उनका।
1: आप लगता है आदित्य ठाकरे आरोपी है?

0: में?
1: अभी जो मैं नहीं बोलूंगा, जो जांच कर रहे हैं वो लोग बोलेंगे।
0: लेकिन खुश है आप इस फैसले से?
1: हाँ जरूर जरूर, 100%।
2: सबसे बड़ा सवाल कि अगर परिवार ने मौत

0: सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, पंचनामा और पोस्टमार्टम जैसे पहलुओं पर कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा। पोस्टमार्टम भी इस केस की बड़ी कड़ी है। कोर्ट के सामने पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा कि ऐसे मामले में राज्य की गाइडलाइन के मुताबिक दो डॉक्टरों की जरूरत बताई गई थी, जबकि दिशा का पोस्टमार्टम एक डॉक्टर ने किया था। रिपोर्ट में सिर, हाथ, पैर और छाती पर चोटों का जिक्र था और सिर की चोट को मौत का कारण बताया गया था। पुलिस की तरफ से कहा गया कि रिपोर्ट में रेप या यौन हमले के सबूत नहीं मिले, यानी एक तरफ परिवार के गंभीर आरोप, दूसरी तरफ पुलिस की जांच और मेडिकल रिकॉर्ड, और अब इन दोनों के बीच की सच्चाई तलाशने की जिम्मेदारी सीबीआई के पास होगी।
1: कोर्ट ने इनका पूरा झूठ पकड़ लिया। पहली चीज, इसमें उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट बनाए थे सब झूठे पाए गए। इन्होंने खुद जो सीसीटीवी प्रोड्यूस किया उसमें भी इनका सुसाइड थ्योरी झूठा साबित हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी, आपको याद होगा कोर्ट ने पहला सवाल पूछा
2: इंजरी को लेकर।
1: हाँ, कोर्ट ने कहा आप कह रहे हो 14वें माले से लड़की गिर रही है, मुंह पर गिर रही है, वो फोर्स क्या होता है 14वें माले का, और नाक ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, होंठ भी ठीक है, अंदर का एक दांत टूटा हुआ दिखा रहे हो।
2: क्या ग्राउंड्स आपको लगता है जो कोर्ट ने इसमें सीबीआई सीनियर सीबीआई ऑफिसियल को इन्वेस्टिगेट करने को कहा है?
1: क्योंकि सीनियर पुलिस अधिकारी आरोपी है, आदित्य ठाकरे आरोपी है, उद्धव ठाकरे आरोपी है, परमवीर सिंह आरोपी है, तो ऐसे इतनी बड़ी पूरी रिया चक्रवर्ती आरोपी है, तो इतने सब लोग आरोपी है, तो इसमें सीबीआई बेटर, और वो भी सीनियर ऑफिसर।
2: एफआईआर रजिस्टर करने को कहा गया है सीबीआई की तरफ?
1: हाँ हाँ, कोर्ट ने क्लियर कहा है सतीश आलियान जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है और एफआईआर रजिस्टर करना है और बाद में इन्वेस्टिगेट करना है।
0: दिशा की मौत के ठीक 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत भी मृत पाए गए। 14 जून 2020 को सुशांत बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिले। दोनों मौतों के बीच सिर्फ 6 दिन का अंतर था और यही वजह रही कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस में दोनों मामलों को जोड़कर कई तरह के सवाल उठते रहे। अब दिशा की मौत की जांच सीबीआई करेगी।
3: दिशा सालियान की मौत एक खुदकुशी का केस था या फिर एक कत्ल की साजिश? 6 साल बाद ये सवाल फिर उठ खड़े हुए हैं। एक बाप की गुहार को सुनते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के दिशा निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन सीबीआई जांच में क्या ये पता चल पाता है कि सच में दिशा सालियान की मौत एक खुदकुशी थी या फिर एक कत्ल की साजिश? कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
4: दिशा सालियान केस में बीजेपी ने ठाकरे परिवार और तत्कालीन उद्धव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
5: दिशा सालियन के पिता स्वयं कह रहे हैं उनकी बेटी की मृत्यु नहीं हुई, उसे पीड़ित प्रताड़ित करते हुए अत्याचारित करते हुए उसका खून हुआ है, और उस वक्त की उद्धव ठाकरे सरकार ने इस मामले को रफा दफा करने का दुष्कर्म किया किसी बड़े नेता को बचाने के लिए। यह आरोप दिशा सालियन के पिता के है। एक बाप से जाकर के पूछो बेटी खोने का दुख क्या होता है। अब मुकदमा दर्ज करके यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए, इस प्रकार से न्यायपालिका ने दिशा के पिता को न्याय दिया है। सवाल यह उठता है कि उस दौरान की उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही थी? रातों रात इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया गया? इस बात का जवाब श्रीमान उद्धव ठाकरे समेत जिन जिन लोगों को बचाने का प्रयास किया गया उन सबको न्यायपालिका के सामने देना होगा।
4: अब बात करेंगे जबरदस्त हंगामे के बारे में, स्वरा भास्कर को लेकर, जो उनके बयान को लेकर मचा हुआ है, क्योंकि एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने साल 2018 की फिल्म पद्मावत के जौहर सीन पर एक बयान दिया था, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गई। बयान के बाद सोशल मीडिया पर दावा यह किया गया कि स्वरा ने रानी पद्मावती और जौहर करने वाली महिलाओं को कायर कहा है। ट्रोलिंग के बाद स्वरा ने आज सफाई देते हुए एक वीडियो और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है।

0: स्वरा भास्कर ने सामूहिक जौहर वाले सीन पर सवाल उठाए थे, जब रानी पद्मावती के किरदार में दीपिका पादुकोण सैकड़ों महिलाओं के साथ जौहर कर लेती। इतिहास के मुताबिक पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना के नापाक इरादों से बचने के लिए बलिदान देना चुना था। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि स्वरा ने रानी पद्मावती और जौहर करने वाली बाकी महिलाओं को कायर कहा था। पहले सुनिए स्वरा का वो बयान।
1: Is this what we want to tell our survivors, that you didn't deserve to live? That if you actually had been honorable and brave women, you would have killed yourself? Are we saying that rape is the end of a woman's life? Or that a woman's, the many things, it's just so problematic. And then there was that one shot, it made me so mad, like I was like, chee, in like the audience loudly. And it is a close-up of a pregnant woman's belly. And she is good. So you're saying that a fetus that might be female doesn't deserve to be born because she might be raped by a Muslim ruler? I don't know. It's just so, I was so mad. And then I came out and I was like, this is terrible. And normally people think that I do these things like in a rage. But I waited for 5 days. And I was like, let me check if I still feel like this. And then at the end of 5 days, I wrote this letter.
0: इस बयान के बाद स्वरा भास्कर पर ऐतिहासिक बलिदान का अपमान करने का आरोप लग रहा है।
2: देखिए, साफ जाहिर है स्वरा भास्कर को जहाँ तक बात है ज्ञान की, समझ की, कॉन्टेक्स्ट की, संदर्भ की, पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब आपने पढ़ लिया है फेमिनिस्ट थ्योरी में रेप सर्वाइवर्स, उनको शेम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट को देखिए, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, मिडिवल हिस्ट्री के, जहाँ पे संभावित कैद, रेप, दास्ता, गुलामी से बचने के लिए एक औरतों ने बजाय ये कि वो बंदी बना दी जाएं, उन्होंने जौहर प्रैक्टिस किया, डेथ बिफोर डिसऑनर, बेइज्जती से पहले, रेप से पहले, गुलामी से पहले। और अगर आप देखें, और अगर स्वरा भास्कर को आइडिया होता कि आइसिस कैलिफेट में किस तरह से सेक्स स्लेव्स बनाया गया यजीदी औरतों को, तो शायद वो बचती हैं कहने से, क्योंकि उनको समझ में आती है बात कि क्या कुछ हुआ है। तो वॉर के दौरान पराजय और जय के बीच में किस तरह से औरतें निशाना बनती थी, उसको उन्होंने कंफ्यूज किया है आज के रेप सर्वाइवर के कॉन्टेक्स्ट को।
0: सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग के बाद स्वरा को सफाई देने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा, बल्कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है।
1: ट्विटर और सोशल मीडिया पे एक मेरा क्लिप वायरल हो रहा है, जो कल एक इवेंट में मैंने कहा था, मुझसे पूछा गया था कि संजय भंसाली सर को जो ओपन लेटर मैंने पद्मावत के ऊपर लिखा था, वो मैंने क्यों लिखा था। तो वो जवाब देने में, जब मैं समझा रही थी कि मेरी दिक्कत क्या थी, मैंने कुछ कहा था जो अब सरासर गलत तरीके से अनुवादित हो रहा है, और जो एक झूठ बनाकर फैलाया जा रहा है कि मैंने ये कहा कि पद्मावती, रानी पद्मावती और जो बाकी महिलाओं ने जौहर किया था वो कायर हैं। मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ, मैंने कतई ऐसा नहीं कहा कि रानी पद्मावती कायर थीं या वो बाकी महिलाएं, महल की रानियां और औरतें जिन्होंने जौहर किया था वो कायर थीं। मैंने क्या कहा, इंग्लिश में कहा था, मैं उसका अनुवाद खुद करके बता देती हूँ, क्योंकि जब भाषा समझ नहीं आती है पूछ लेना चाहिए या चेक कर लेना चाहिए। मनगढ़ंत झूठ बना के फैलाना नहीं चाहिए और लोगों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए। और जो लोग मुझे गालियां देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन सही चीज पे दीजिए। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था वाइल वॉचिंग द क्लाइमैक्स, जब मैं क्लाइमैक्स देख रही थी, आई फेल्ट, मुझे लगा दैट गॉड फॉरबिड इफ आई हैड बीन अ रेप विक्टिम, भगवान न करे मैं एक रेप पीड़िता होती, बलात्कार पीड़िता होती, आई वुड हैव फेल्ट लाइक अ कावर्ड, मैं कायर महसूस करती, दैट आई डिड नॉट किल माई सेल्फ, कि मैंने अपनी जान नहीं ले ली, यानी कि मैं ऐसा महसूस करती कि मैं बलात्कार के बाद जिंदा बच गई तो मैं कायर थी। तो कभी भी महिलाओं की जो जीने की इच्छा है और जीने की जो लालसा है, उसे कम मत समझिएगा।
0: स्वरा के बयान पर दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी घमासान मच गया है।
3: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ऑनलाइन बहुत ट्रोल हो रही हैं, क्योंकि दिल्ली के एक कार्यक्रम में जिसमें उन्होंने शिरकत की थी, उसमें उन्होंने पद्मावत फिल्म के जौहर सीन पर लेकर कुछ सवाल उठाए थे, जिसके बाद से लोग उन पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता राम कदम जी इस पर बात करने के लिए। सर, आप कैसे देखते हैं उनके स्टेटमेंट को, क्या कहेंगे?
4: देखिए, फिल्म जगत के किसी कलाकार के टिप्पणी पर, उसके बयान पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। पर इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि किसी महिला को पीड़ित प्रताड़ित किया गया, उस पर जबरन अत्याचार किया गया, तो वह महिला भी समाज का हिस्सा है, समाज की बहन है, बेटी है, और समाज पहले से उसे स्वीकारता है, उसके उत्थान की बात करता है। जबरन कोई उसके साथ कुछ गलत करे तो उसे जीवन जीने का पूरा अधिकार है, समाज ने उसे उसके उत्थान के लिए अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए और करता है।
0: स्वरा भास्कर अपने बयान पर कायम है। वो कह रही कि उनके कहने का मतलब था कि क्या महिला की पवित्रता उसकी जान से ज्यादा कीमती है। सफाई देने के बावजूद स्वरा के जौहर वाले बयान पर उनकी ट्रोलिंग जारी है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।
5: एनसीपी शरद गुट के कार्यकर्ताओं ने आज मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।
6: आप देख रहे हैं कि क्या महंगाई है। आप घर में जाइए, बीवी बहन माँ से पूछिए, इतनी महंगाई हुई है और ये कम करनी पड़ेगी और हम लोग आंदोलन और तीव्र करेंगे अगर ये महंगाई कम नहीं हुई तो। अरे लेकिन यही बड़ा कंफ्यूजिंग सिग्नल भारत सरकार देख रहा है। एक तरफ भारत सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो अगर अच्छा काम चल रहा है तो सोना क्यों नहीं खरीदे? हर औरत का मंगलसूत्र उसके लिए बहुत प्यारा होता है और हर महिला के लिए, किसके लिए हम महिला जब दो पैसे बचाती है वो सोना क्यों लेती है? वो एक इन्वेस्टमेंट है, एक सेफ्टी है कि घर में अगर कोई अड़चन आ जाए तो वो सोना बेच के कभी कभी घर में बच्चों की शिक्षा हो, किसी का आरोग्य, उसके लिए पैसा बचाने की एक एक्टिविटी है। आप उसको सिर्फ गहना मत सोचिए, हम महिलाओं वो सेफ्टी हमारी पूंजी है फैमिली के लिए, और उस पे ही आप बोल रहे हैं कि अगर इतनी अच्छी इकोनॉमी चल रही है तो सोना लेने में खरीदने में क्या दिक्कत है?
7: क्या गाड़ी का मेरे ये महंगा, ये पुलिस भी तानाशाही कर रही है, हम लोग बोल रहे हैं हमने क्या चोरी की है, क्या इतनी महंगाई है, इनको दिक्कत नहीं है क्या, किसके पे चलते हैं लोग? महिला लेडीज को खाने का नहीं है, इतनी महंगाई करे सबका महंगाई करके रख दिए, अभी त्योहार आने वाला है और पुलिस फना नहीं कर रही है, हम लोग क्या चोरी किए?
3: एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं का महंगाई के खिलाफ जो है वो यहाँ आंदोलन शुरू था, जिसके बाद सीएसएमटी स्टेशन के बाहर से पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया है और अब इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। प्याज की मालाएं हो या लहसुन की मालाएं हो, ये पहनकर इन लोगों ने यहाँ पर विरोध किया था और बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। भीड़ का इलाका है ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर पिछले दिनों शक्कर के प्याज दाम बढ़े थे, प्याज के दाम बढ़े थे और कल सीएनजी और दूध के दाम बढ़े, इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है ये एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसके बाद बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद था, इन्होंने इन्हें डिटेन कर लिया है और अब ये जो आंदोलनकारी है इन्हें लेकर पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। कैमरामैन मंदार चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
5: मुंबई में एक बिल्डर को धमकाने और रंगदारी के मामले में छोटा राजन गैंग का सामने आया है नाम। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले में ये लोग बांद्रा में 11 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। आरोपी है कि छोटा रंजन गैंग के नाम पर ये आरोपी मुंबई के एक डेवलपर को जान से मारने और रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे। FIR में 8 लोगों के नाम है और छोटा रंजन गैंग से जुड़े राजविंदर सिंह और राजलक्ष्मी के नाम भी इसमें शामिल है। 5 आरोपियों को मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 5 सितंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया गया है।
8: क्या हुआ कि एक दिन शाम के टाइम जब हमारे कैटेकर्स प्लॉट पे थे तो उस दिन 2-3 गाड़ियों से कुछ लोग उतरे, गैंगस्टर टाइप लोग थे, तो उन्होंने क्लेम किया कि हम छोटा राजन गैंग के है और इनको ये टोनी एथेल और इनको पैसे दे दिए जाए वरना हम आपको कुछ काम नहीं करने देंगे और तुम्हारे जान को भी धोखा है। और ये करते करते किसी ने एक ने हमको एक गन दिखाया था हमारे स्टाफ को, उससे हमारा स्टाफ भी घबरा गया था और हम भी बहुत घबरा गए। तो उस समय हमें लगा कि हमें एंटी एक्सटॉर्शन सेल को अप्रोच करना चाहिए बिकॉज ये रूटीन मैटर नहीं है. सो हमने उस समय ये कॉल लिया कि हम पुलिस अथॉरिटीज को अप्रोच करें.
9: आपसे कितने पैसे मांगे थे?
8: तो इन्होंने कई जगह पे कई मतलब अलग अलग डिमांड्स की है. तो एक समय पे उन्होंने 32 करोड़ मांगा, फिर कभी 15 करोड़ मांगे, फिर 30 करोड़ मांगे. तो अलग अलग टाइम पे इनकी अलग डिमांड्स आती रही हैं.
3: क्या मुंबई में फिर छा रहा है अंडरवर्ल्ड का साया? छोटा राजन गैंग के नाम पर धमकी देकर, झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर, जान से मारने की धमकी देकर करोड़ों के बैंड्रा के एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जबरन वसूली का मामला सामने आया है. आपको बता दें कि इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है. इथल स्टीवन, डैनियल स्टीवन, नसीर शेख, अब्दुल्ला खान और रेमी फर्नांडिस नाम के आरोपियों को एक ट्रैप लगाकर एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने पकड़ा है बांद्रा के उस डेवलपर के ऑफिस में, जिससे जबरन वसूली करने की कोशिश चल रही थी. करीब 11 करोड़ रुपए मांगे गए थे. पहले 32 करोड़ की फिरौती मांगी गई और फिर 11 करोड़ की सेटलमेंट हुई थी और कल 25 लाख का पहला इंस्टॉलमेंट लेने के नाम पर आरोपी डेवलपर के दफ्तर में पहुंचे थे, जहां पर एंटी एक्सटॉर्शन सेल मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसरों ने इन आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. जो चिल्ड्रंस नोट्स जिस कहा जाता है, या जो चिल्ड्रंस करेंसी नोट जो खेलने के इस्तेमाल में आते हैं, उन करेंसी नोट्स के बंडल बनाकर और उन पर कुछ 500 रुपए के असली नोट 5000 रुपए के लगाकर 25 लाख के बंडल बनाए गए और ये देने के नाम पर आरोपियों को बुलाया गया और वहां पर एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने इन आरोपियों को अरेस्ट किया है. दिलजय डेवलपर नाम के डेवलपर से ये जबरन वसूली मांगी जा रही थी, ये फिरौती मांगी जा रही थी और छोटा राजन गैंग का नाम इस्तेमाल किया जा रहा था, बार बार धमकाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि जान से मार दिया जाएगा, फेक रेप केस में फंसाया जाएगा और उनके प्रोजेक्ट पर, उनके प्रोजेक्ट साइट पर भी बार बार धमकी दी जा रही थी.
5: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक.
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

अक्सर सुर्खियों में रहने वाली फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर जौहर पर दिए बयान को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर है। ये विवाद 31 अगस्त को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित वुमन लाइफ फ्रीडम टॉक के दौरान शुरू हुआ था, जब स्वरा ने साल 2018 में आई संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म पद्मावत के क्लाइमेक्स पर कमेंट किया था।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: पुणे के इंदापुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई, क्योंकि यहां जमीन के विवाद में दो बेटों ने अपने 65 वर्षीय बुजुर्ग पिता के बीच सड़क पर ही लाठी डंडों से पिटाई कर डाली। हैरान रह जाएंगे ये दोनों ही जो लड़के बुरी तरह से अपने पिता को पीट रहे हैं, ये इसके बेटे हैं। और आपको ये भी बता दें कि सलीम लॉन्स इलाके की घटना बताई जा रही है। पिता तुकाराम किसान राउत की शिकायत पर पुलिस ने उनके दोनों ही बेटों को, संजय तुकाराम को और राजेंद्र तुकाराम राउत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के बेटों ने अपनी मां अंजना राउत के नाम की जमीन बेचने को लेकर पिता से जवाब मांगा और मारपीट कर डाली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। कहा श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टियों के नामों का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। देशभर के जल संसाधन मंत्रियों से बैठक में प्रधानमंत्री का जल मंत्र। कहा टीम इंडिया की भावना से करें काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख। कहा पार्टी की विचारधारा से न करें समझौता, बोले मेरे हाथ पैर टूट जाएं तो भी आरएसएस का सिद्धांत नहीं करूंगा स्वीकार। ब्रिज की भूमि से उठेगा सबसे बड़ा शोर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े दिग्गजों से सबसे बड़े सवाल। आज दिन भर देखिए पंचायत आज तक मथुरा।

0: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ. करगिल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका. स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज बनाए गए हैं राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव. इससे पहले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की निभा रही थी जिम्मेदारी. अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे बनाए गए हैं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य. मंदिर मामले की सुनवाई में निभाई थी अहम भूमिका. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल नए 3 सदस्यों में महेश भागचंद का भी नाम है. 2020 में मंदिर की भूमि पूजन में बनाए गए थे मुख्य यजमान. शिक्षाविद डॉक्टर निर्मला यादव भी बनाई गई राम मंदिर ट्रस्ट की सदस्य. ट्रस्ट की पहली महिला सदस्य बनी. राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद पर नियुक्ति को जितेंद्र मिश्र ने बताया सौभाग्य. बोले प्रभु श्री राम का जैसा आदेश होगा वैसा काम करूंगा. ऑपरेशन सिंदूर से राम मंदिर ट्रस्ट तक के सफर पर भावुक हुए जितेंद्र मिश्र. बोले मंदिर के हित में हर संभव प्रयास करूंगा.
1: श्री राम का आशीर्वाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा के बाद भारतीय वायुसेना में मुझे श्री राम ने एक और अवसर प्रदान किया है जहां पर मैं श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा कर पाऊंगा.
0: चंदा चोरी विवाद पर अखिलेश यादव ने सरकार को फिर से घेरा कहा बड़े नामों पर एक्शन नहीं. यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले राम मंदिर में शंकराचार्य नियुक्त करें धर्माचार्य. इंदौर में 12 के बदले अब 19 सितंबर को होगा राहुल गांधी का कार्यक्रम. छात्रों की गूंज का कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन ने नहीं स्टेडियम को इजाजत. प्रदर्शन की चेतावनी. दिल्ली के कनॉट प्लेस में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन. बीजेपी आरएसएस की मनुवादी सोच के खिलाफ लगाए गए नारे. यूथ कांग्रेस ने बांटे मनुवादी सोच कहां मिलेगी. बीजेपी के दफ्तर में लिखे पर्चे. जातिवाद के खिलाफ संघर्ष का ऐलान भी किया गया. नासिक में राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर हमला. बोले हाथ पैर टूट जाएं फिर भी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे. महाराष्ट्र के अहम मुद्दों पर राहुल गांधी से चर्चा. एसआईआर से 2.0 लगभग 2.25 करोड़ मतदाताओं के नाम हटने. किसान आत्महत्या और कुंभ बजट का मुद्दा भी उठा. मराठा आरक्षण की मांग पर मनोज अरांगे पाटिल का अनशन 5वें दिन भी जारी है. तबियत बिगड़ने से बढ़ी है चिंता. मराठा आरक्षण आंदोलन के 5वें दिन मनोज अरांगे पाटिल का सरकार पर गंभीर आरोप. बोले मुंबई में घुसाने का प्लान. 100% दंगा कराना चाहती है सरकार. मांगों के तत्काल जीआर पर अड़े हुए अरांगे. 12 सितंबर को मुंबई कूच का ऐलान. बोले लाठी का जवाब लाठी से ही देंगे. बीजेपी विधायक प्रसाद लाल जरांगे से बातचीत के लिए अंतरवाली सराठी रवाना. 15 मांगों पर चर्चा से समाधान की कोशिश. जालना में मराठा आंदोलनकारियों का धुले. सोलापुर हाईवे पर रास्ता रोक. करीब 1.25 घंटे तक यातायात प्रभावित. मनोज अरांगे पाटिल के समर्थन में जोरदार नारेबाजी. मांगे जल्द पूरी करने की मांग. हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतारें. दिल्ली एसआईआर के ड्राफ्ट में 47 लाख नाम कटने पर बीजेपी का मंथन. प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और सभी 7 सांसदों की बैठक हुई. ग्राउंड पर लोगों की मदद का निर्देश. दिल्ली एम्स में 14 साल से दिल की सर्जरी के लिए इंतजार करते करते लड़की की मौत हुई. 2012 में हृदय की जन्मजात बीमारी से पीड़ित बेटी की सर्जरी के लिए एम्स के चक्कर काट रहे थे माता पिता. हथनीकुंड आर्मी बोट हादसा. 24 घंटे बाद भी यमुना में लापता 2 जवानों की तलाश जारी. तेज भाव में बावजूद 1.5 घंटे बंद रखे गए नहर के गेट. लाइफ जैकेट डाइविंग गियर मिले लेकिन कमांडो का सुराग नहीं. श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रिज को सीएम योगी देंगे 977 करोड़ की सौगात. 57 परियोजनाओं का लोकार्पण और 167 योजनाओं का शिलान्यास. नेपाल में तबाही का आंकड़ा बढ़ गया. मृतकों की संख्या बढ़ी 4216. लोग अभी भी लापता. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. अब तक करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित बचाया गया. सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं. पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद और घायलों का मुफ्त इलाज. प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने जलवायु परिवर्तन से जोड़ा हादसा. भारी बारिश से रेस्क्यू अभियान प्रभावित हुआ. 400 मेगावाट बिजली उत्पादन भी बाधित. नेपाल में भोटेकोशी बाढ़ से तबाही. प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा दृढ़ संकल्प और साहस के साथ संकट से लड़ना होगा. नेपाल में भारी बारिश का असर. नदियों का जलस्तर बढ़ने से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा. चमोली गोपेश्वर में चोकता सड़क मार्ग बैरागना के पास भारी बारिश के चलते मलबा आने से मार्ग बंद हुआ. नैनीताल में मूसलाधार बारिश के बाद नैनी झील लबालब है. कोसी नदी पर उफान. गर्जिया मंदिर के चारों ही तरफ पानी. कुमाऊं में ऑरेंज अलर्ट. जामताड़ा में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है. अजय बराकर नदियां उफान पर हैं. रेलवे ट्रैक पर भरा पानी. जामताड़ा में बारिश से छत गिरने से महिला की मौत हुई. दक्षिण बहाल डायवर्जन का अप्रोच पथ भी बहा. आवागमन पर संकट. बिहार में गंगा सोन उफान पर है। मनेर के दियारा इलाके में बाढ़ का कहर, कई गांवों में पानी घुसा। कैमूर में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है, शहर पर मंडराया है खतरा। प्रयागराज में बाढ़ में डूबे घर और दुकानें, छोटा बघाड़ा। दारागंज के इलाके में बाढ़ से प्रभावित हुए कई घर, घरों में घुसा पानी। सिंगरौली में लगातार हो रही है बारिश, नदी नाले उफान पर हैं, कई रास्ते पूरी तरह से बंद। झारखंड के गढ़वा में 48 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए, सरस्वती नदी में बुजुर्ग महिला के बहने की सूचना। फतेहपुर में बारिश से हाहाकार, हुसैनगंज में जल निकासी नहीं होने से घरों में घुसा पानी, जल निकासी के लिए नगर पालिका ने लगाए 4 टैंकर। लखीसराय में बदहाल सड़क का दर्दनाक मंजर, मरीज को चारपाई पर दीवार से ऊपर ले जाने को मजबूर हुए परिजन। ग्रेटर नोएडा में अनियंत्रित ट्रक ने सोसाइटी के गेट पर मारी जोरदार टक्कर, रोंगटे खड़े कर देने वाले सीसीटीवी फुटेज सामने आए। राजनंदगांव में बाइक और कार की जोरदार टक्कर हुई, हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर। मुजफ्फरनगर में 2 बसों की आमने सामने से भीषण टक्कर हुई, एक चालक की मौत हुई, 24 यात्री घायल। जयपुर में थाने की सेटिंग पड़ गई भारी, एसीबी की टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल और दलाल को गिरफ्तार किया। गुजरात के जामनगर में बिना नंबर प्लेट की नई कार ने राहगीर को टक्कर मारी थी, सीसीटीवी फुटेज वायरल। गुजरात में आरपीएफ जवान देवदूत बना, चलती ट्रेन से लटके यात्री को खींचकर बचाई जान, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। औरंगाबाद में कार सवार 3 बदमाशों ने नाबालिग से किया था गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं तीसरे आरोपी की तलाश जारी। बांका में वीडियो 75,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, निगरानी टीम ने निजी आवास पर जाकर कार्रवाई की। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में करगिल युद्ध के पूर्व सैनिक ने जमीन आवंटन की मांग को लेकर जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, आईसीयू में भर्ती। महाराष्ट्र के सतारा में भगवान की मूर्ति बनाने वाले कारखाने में लगी थी भीषण आग, लाखों की मूर्तियां जलकर खाक हुई। पुणे में जमीन विवाद में बेटों ने पिता को बीच सड़क पर पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर रील बनाने के लिए ट्रैफिक को रोका गया, यातायात नियमों के उल्लंघन पर आरोप में 4 लोगों पर केस दर्ज। ग्वालियर में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग, ताऊ की लाइसेंसी बंदूक से दागी गई गोलियां, वीडियो वायरल होने के बाद बर्थडे बॉय ताऊ गिरफ्तार। सूरत में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी, केमिकल ड्रम में जोरदार धमाकों से दहला था इलाका, मौके पर 9 दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी हुई बाइक को टक्कर मारी, खौफनाक सड़क हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। झारखंड के गिरिडीह में राधा स्वामी संगठन की आड़ में 8-10 करोड़ की ठगी का खुलासा, राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सहित 4 की गिरफ्तारी। चतरा में जमीन पर दाखिल कब्जा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ, महिला ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। सोनीपत में पति पत्नी ने आत्महत्या की, लव मैरिज के हुए थे 2 साल, जांच जारी। नोएडा में कैफे बंद होने के बाद प्रेमी जोड़ा बना चोर, दिन में चोरी और रात में बार और रेस्टोरेंट्स में पार्टी, नोएडा पुलिस ने 3 को पकड़ा। देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप, 4 सितंबर को बद्रीनाथ धाम में धूमधाम से मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा के साथ लगाया जाएगा विशेष भोग, रात में जन्मोत्सव के समय विशेष आरती के बाद श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा प्रसाद। देशभर के बाजारों में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर रौनक है, झांसी में नई डिजाइन की पोशाकें, श्रृंगार के सामग्री के भारी डिमांड। जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गोविंदाओं की मंडली का धमाल, दही हांडी फोड़ने के लिए कर रहे हैं जबरदस्त तैयारियां। अहमदाबाद के इस्कॉन टेंपल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज हुई, मंदिर में इस बार लोटस थीम पर मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव। नोएडा में इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां जारी है, वृंदावन में से मंगाए गए फूलों से की जा रही है मंदिर की सजावट। श्री कृष्ण को कई तरह के व्यंजनों के साथ भोजनों को अर्पित करने की तैयारी है, 500 से ज्यादा तरह के प्रसाद का किया जा रहा है इंतजाम, 100 किलो का बनाया जा रहा है केक। पीएनबीआई समिट में बैंकिंग के भविष्य पर मंथन, एआई, जेन एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा। पीएनबी ने एआई आधारित बैंकों और साइबर सुरक्षा को दिया बढ़ावा, क्वांटम प्रूफ सिस्टम हैकाथॉन के विजेताओं को सम्मानित भी किया। जसपुर में पत्थल गांव वन क्षेत्र में 12 हाथियों का दल धान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू 48 स्कूली शिक्षकों, 21 उच्च शिक्षा के शिक्षकों और एमओएसडी के 13 शिक्षकों को मिलेगा अवार्ड। यूपी के मथुरा इलाके में 1051 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 229 विकास परियोजनाओं की सौगात, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। इसी महीने शुरू हो सकती है बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन, कलेना अग्रहारा से तवरेरे कर चलेंगी ये ट्रेनें, यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। डेंगू चिकनगुनिया में राहत के लिए आईआईटी कानपुर में मच्छरों पर रिसर्च, मच्छरों के दिमाग और उनके सूंघने की क्षमता पर शोध हुआ। 100 से ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स ने अहमदाबाद में रेलवे ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन को देखने का मिला मौका। प्रधानमंत्री मोदी की गैर जरूरी सोना न खरीदने की अपील से देश भर में ज्वेलर्स में मची हलचल। सीटीआई ने कारोबार में 60 से 70 फीसदी गिरावट की आशंका जताई, रोजगार को भी नुकसान की आशंका। आईटी सर्विसेज में सितंबर में हायरिंग डिमांड 18 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। कंपनियों का फोकस एआई, क्लाउड और डिजिटल स्किल्स में माहिर प्रोफेशनल्स को नौकरी देने में पड़ा। सितंबर में कंपनियां 20 से 25,000 करोड़ रुपए तक आईपीओ लाने की तैयारी में। 25 कंपनियों को लिस्टिंग की तैयारी से निवेशकों के लिए कमाई के नए मौके खुलने की संभावना। त्योहारों से पहले कीमतें काबू में रखने के लिए सरकार ने चीनी डीलर्स के लिए स्टॉक लिमिट पर घटा दी है। 15 सितंबर से डीलर्स केवल 2,000 क्विंटल तक ही चीनी का स्टॉक रख पाएंगे। देश में गोल्ड लोन मार्केट मार्च 2026 तक बढ़कर 18.6 लाख करोड़ पर पहुंचा। 2028 तक इसके 30 लाख करोड़ रुपए तक आंकड़ा पार करने का अनुमान। जुलाई में क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स की संख्या 24 फीसदी बढ़ने के बावजूद हर ट्रांजेक्शन पर औसत खर्च घटा। अगस्त में गाड़ियों की थोक बिक्री 36 फीसदी बढ़कर करीब 4.5 लाख यूनिट तक पहुंच गई है। टेक कंपनी ओरेकल भारत समेत दुनिया भर में 10,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। कंपनी ने क्लाउड और एआई इंफ्रा पर बढ़ते खर्च को संतुलित करने का फैसला लिया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कंपनियां राजदूतों के जरिए विदेशी बाजारों में अपने प्रोडक्ट्स की पहचान बढ़ाने में लगी हुई है। ऑटोवोल्ट मोबिलिटी के अगस्त में अब तक की उच्चतम बिक्री करके टॉप 10 ईवी मेकर्स ने जगह बना ली है। कमर्शियल टू व्हीलर्स सेगमेंट में कंपनी की पकड़ मजबूत हुई। मिर्जापुर द मूवी के मेकर्स का बड़ा धमाका, रिलीज के 3 दिन के पहले आउट हुआ नया गाना धूम धूम। मनोज वाजपेयी की फिल्म लास्ट मैन इन टावर का ट्रेलर रिलीज किया गया। व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा के नोवेल पर आधारित यह फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हनुमान अंश ने किया है कमाल। मूवी ने 25 दिनों में 47 करोड़ के आसपास की कमाई की। पर्दे पर आदमखोरों के शिकारी बनेंगे अक्षय कुमार। मशहूर शिकारी और पर्यावरण प्रेमी रहे जिम कॉर्बेट की बायोपिक में काम करेंगे। रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म मैसा का रिलीज डेट का ऐलान किया गया। 27 नवंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म में एक दमदार एक्शन अवतार में नजर आएंगी रश्मिका। ईरानी सेना ने सिरिक में एक शादी समारोह में हुए हमले की कड़ी निंदा की है। कहा इस हमले में आम नागरिक मारे गए। ईरान ने दी चेतावनी, कहा अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो देंगे कड़ा जवाब। जर्मनी के ऑक्सबर्ग में रेलवे स्टेशन के पास धमाका हुआ। हमले में 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए, कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने जर्मन एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश की निंदा की। यू विदेश नीति के प्रमुख ने कहा एयरपोर्ट पर ड्रोन साजिश प्रायोजित आतंकवाद है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जर्मनी के ड्रोन साजिश के सभी आरोपों को नकारा है। जर्मन नेतृत्व पर पलटवार किया, कहा मर्ज देशों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे और अपनी नाकामी छुपा रहे। यूक्रेन के ओडिशा में रूसी सेना का भीषण हमला, एक बच्चे समेत 8 लोगों के घायल होने की खबर। 2 की हालत गंभीर है, रिहायशी इलाके को बनाया गया था निशाना। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्ला के कई ठिकानों को बनाया गया निशाना, कई घरों को नुकसान पहुंचा। इसराइल की सेना ने कहा हिजबुल्ला के पूरी तरह से हथियार डालने तक ऐसे हमले जारी रहेंगे। इस्तांबुल के पास मरमारा सागर में आपस में टकराए तुर्की के 2 जहाज, एक जहाज के डूबने की आशंका, 10 क्रू मेंबर्स लापता। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी तट के पास अचानक से हादसे का शिकार हुआ टगबोट। हादसे में चालक दल के 1 सदस्य की मौत हुई, 6 लोग इसमें लापता हैं। थाईलैंड पहुंचा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन। एयरक्राफ्ट पर पिछले 9 महीनों से 5,000 सैनिक तैनात हैं। 5 दिन छुट्टियां मनाने सैनिकों को बसों से करीब 96 किलोमीटर दूर पटाया ले जाया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का राजधानी कायरा में भव्य स्वागत दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर, दोनों ही देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा।

नमस्कार, मैं हूं अंजना हूं कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट को अपना पहला सीईओ मिल गया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र अब रामलला के दरबार की व्यवस्था संभालेंगे। देवरिया के रहने वाले हैं जितेंद्र मिश्र। उन्होंने 5,500 से ज्यादा दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए राम मंदिर के पहले सीईओ का पद हासिल किया। हाल ही में चढ़ावे को लेकर उठे विवादों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक ऐसे कमांडर की जरूरत थी जो व्यवस्था को पारदर्शी बना सके। अब इनके जिम्मे राम मंदिर के खजाने, सुरक्षा, प्रशासन को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। अयोध्या के बाद बात मथुरा की, जो अब यूपी के 2027 के चुनावों की धुरी बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस अब मथुरा वृंदावन पर है। उनके जयकारों में बांके बिहारी लाल की जय जयकार है, तो मथुरा के विकास का भी वो दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी का विजय रथ मथुरा की इसी सांस्कृतिक और धार्मिक भूमि से अपनी सियासी रफ्तार पकड़ेगा। नेपाल में आई तबाही ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, और अब सवाल यह है कि क्या वैसे ही प्रलय भारत के उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में आ सकती है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे कमजोर होते पहाड़ और लगातार बढ़ती ग्लेशियर झीलें देश के इन पहाड़ी राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद आपको बताएंगे कि एक हफ्ते पहले जिस रास्ते पर मौत का मलबा बिछा था, आज वहां चीन के बुलडोजर दौड़ रहे हैं। नेपाल में मातम है, शवों की तलाश और गिनती हो रही है, लेकिन चाइना के तिब्बत में सब खामोश है। क्या चाइना ने तबाही के इस मंजर पर पर्दा डाल दिया है? इसके बाद आपको बताएंगे कि नेपाल ने भारत, चाइना और अमेरिका जैसे देशों से मुआवजा क्यों मांगा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह का कहना है कि अमीर देशों के फैलाए प्रदूषण की सजा नेपाल भुगत रहा है, इसीलिए ये देश नेपाल को दी जाने वाली मदद को दान नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी समझकर हर्जाना दे। इसके बाद आपको बताएंगे कि टैंकर के बदले टैंकर की नई रणनीति के तहत अमेरिका ने ईरान पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। इन हमलों में न सिर्फ ईरानी टैंकर्स को निशाना बनाया गया है बल्कि 100 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर भी बमबारी की गई है। जबकि ईरान इन हमलों में आम नागरिकों, एक शादी समारोह का भी उसने एक लेगो वाला वीडियो बनाया है, उसको शादी समारोह को निशाना बनाए जाने का दावा किया है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे एक पिता को उसके ही बेटे लाठी डंडे से मार रहे हैं, और आखिर में आपको दिखाएंगे कि कैसे आज स्वास्थ्य को लेकर हमें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि पुराने सामान को रीपैकेज करके नए पैकेज के साथ पेश किया जा रहा है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या नेपाल जैसी प्रलय के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन तमाम राज्यों में भी आ सकती है। हिमालय की जिन पहाड़ियों से 26 अगस्त को नेपाल में आपदा आई, उसी हिमालय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा भारत में आता है। हिमालय क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 14% से ज्यादा है। नेपाल की 4.27% है, भूटान की 1.1% है, और चाइना की यही हिस्सेदारी करीब 45% है। यानी चाइना के बाद हिमालय क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो भारत में ही आता है। अब इनमें भी जिन राज्यों में हिमालय के ये पहाड़ सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रहे हैं, उनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। जो तस्वीरें आ रही हैं उसने हमें इतना सतर्क कराने पर मजबूर किया कि हमने सोचा कि आज इस खबर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो संकेत मिल रहे हैं, आप सबसे पहले इन राज्यों से आई इन तस्वीरों को देखिए। पहाड़ों के टूटने, बादल फटने, भूस्खलन की घटनाएं बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं, और स्थिति यह है कि अब भी इन राज्यों में लैंडस्लाइड के कारण 400 से ज्यादा सड़कें पूरी तरह बंद है। देखिए

अब पहाड़ों का इस कदर टूट कर बिखरना कोई सामान्य घटना नहीं है। इस वक्त जम्मू कश्मीर का 28% क्षेत्रफल ऐसा है जहां भूस्खलन और पहाड़ खिसकने का जोखिम सबसे ज्यादा है। 24.4% पहाड़ी इलाकों को हाई रिस्क की श्रेणी में रखा गया है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट बताती है कि जब जम्मू कश्मीर में दर्ज हुई 669 भूस्खलन की घटनाओं का अध्ययन हुआ तो उनमें 87% घटनाएं अकेले इसी हाई रिस्क जोन में रिकॉर्ड हुई। और यहां बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 2015 से 2024 के बीच पूरे राज्य में जानते हैं बाढ़ की 12,758 घटनाएं दर्ज हुई हैं। पहाड़ खिसकने की 4,000, बादल फटने की 67 घटनाएं। बहुत खतरनाक बात है ये। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड में इस वक्त हर दिन कहीं ना कहीं पहाड़ टूटने, भूस्खलन की कम से कम एक घटना तो जरूर हो रही है रोजाना। और यही हाल हिमाचल प्रदेश का है जहां हैंगिंग ग्लेशियर्स का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। हैंगिंग ग्लेशियर्स का मतलब यह है कि जहां पहाड़ों की खड़ी जो ढलान है वहां भी बर्फ और ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा अटका हुआ है जो कभी भी तबाही ला सकता है। वो टूटकर जब गिरता है तो अपने साथ पूरा मलबा लेते हुए पिघलते हुए आगे जबरदस्त बर्बादी का सबब बनता है। और इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में ही कहा कि क्या जैसी तबाही नेपाल में हुई है वैसी तबाही का खतरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है। अगर सिर्फ आज की तस्वीरें देखें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बाढ़, लैंडस्लाइड, नदियों का जलस्तर बढ़ने से 10 लोगों की जान जा चुकी है, 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा में भारी से भारी बारिश दर्ज की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश के सोलन के ऊपरी इलाकों में, कुल्लू जिले में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई है। इन घटनाओं के कारण हिमाचल प्रदेश में कुल 259 सड़कें ठप, उत्तराखंड में 170 से ज्यादा सड़कें ठप, हाईवेज बाढ़ के कारण बंद। बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इन घटनाओं को न्यू नॉर्मल मान लिया गया है कि भाई ये बाढ़ तो आएगी ही आएगी, ये भूस्खलन तो होगा ही होगा। ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड की घटनाएं सामान्य होती हैं और कुछ के वक्त बाद सब सही हो जाता है, लेकिन हकीकत में यह सोच पूरी तरह से गलत है। सच्चाई यह है कि जैसे कोई दीवार धीरे धीरे जर्जर कमजोर होकर टूटने लगती है, ठीक उसी तरह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व के राज्यों में हिमालय के कई पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। अगर हमारी सरकारों ने जल्द कोई नया एक्शन प्लान लागू नहीं किया तो भारत के हिमालय क्षेत्र में भी नेपाल जैसी आपदा पैदा हो सकती है। आप देखिए इन तस्वीरों को,

0: सवाल यही है कि क्या इन संकेतों को कोई देख रहा है? आज अगर भारी तबाही के ये साफ साफ तस्वीरें दिख रही हैं, जो किसी भी बड़ी त्रासदी में किसी भी दिन तब्दील हो सकती हैं, तो क्या कोई जागने को तैयार है? अब भारत के हिमालय क्षेत्र में नेपाल जैसी तबाही का खतरा क्यों मंडरा रहा है, उसके लिए आप आईआईटी मंडी की इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें हिमाचल प्रदेश की 2000 से ज्यादा ग्लेशियर लेक्स यानी ग्लेशियर झीलों का अध्ययन किया गया, जिसमें यह पता चला कि इनमें 9 से 12 झीलें ऐसी हैं जो काफी गंभीर हैं, संवेदनशील हैं। यानी ये वो झीलें हैं जिनका आकार बदल रहा है, तेजी से बड़ा हो रहा है, जो बड़ी आपदा में फट भी सकती है। इनमें भी 4 झील ऐसी हैं जिनकी निगरानी के लिए आईआईटी मंडी ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता बताई है। इनमें एक है घेपल झील, दूसरी है बासुकी झील, तीसरी है काशांग झील और चौथी है बसपा झील। ये वो झीलें हैं जिनका आकार पिछले 10 सालों में 30-60% बढ़ा है। और अभी जिस तरह हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, चट्टाने टूट रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, उसके कारण इन झीलों का प्राकृतिक बांध है, जैसे लेक बनाना झील, उसके जो प्राकृतिक बांध है वो कभी भी टूट सकते हैं और फिर जो विनाशकारी तबाही का आलम होगा। अगर ऐसा होता है, एक बार में लाखों करोड़ों लीटर पानी हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में आएगा और वो भी जबरदस्त मलबे के साथ, जो वो अपने रास्ते में ढोता हुआ साथ लाएगा, मतलब भयानक तबाही हो सकती है। और यही कारण है कि अभी पूरी दुनिया नेपाल की आपदा को भारत के लिए भी एक चेतावनी मान रही है। देखिए,
1: फ्लैट आ रहा है, फिर यहाँ ब्रेडेड चैनल से आ जा रहे हैं, तो जैसे ही ये चौड़ा होगा ठीक है एरिया पे, सो अगर यहाँ से मान लेते हैं अगर ये बस भी होगा, सो उसको इतना चौड़ा एरिया मिलेगा कि आपकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, वो एनर्जी आगे तक नहीं जाएगी। और ये यहाँ पर बाताल ब्रिज इतना नीचे है ये, बट देन क्योंकि बाताल बहुत जो ब्रिज है बहुत दूर है, रिस्क इसका नहीं है ज्यादा। हाँ, और इस पे ही अगर ये, अच्छा गेपांग कह रहे हैं ना, तो सिस्सू पे आएगा, सॉरी ये तो ये गेपांगत है, 15 पे इतना था, 25 में इतना हो गया, इतना बढ़ गया है, देखिए तो ग्लेशियर रिट्रीट होने लगा। तो इसे सुनाला रहा, ये तो आपका हाईवे आ ही रहा है, यहाँ पे ब्रिज है, देन दे आर सम वो नीचे ब्रिज से, जी जी ये यहाँ से ये आकर के सुनाओ, ये ग्रीन में पहले इतना, तो देखिए करीब रफली डबल हो रहा है, हम देखेंगे सारा, ठीक भले इसका एरिया छोटा है, वॉल्यूम कम है, बट येट परसेंटेज इंक्रीज काफी ज्यादा हो गया वो। और ये ऐसे आकर के यहाँ पे यही NH-26 ये आपका उस तरफ जा रहा है उदयपुर के आगे, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा ब्रिज है ये।
0: आप ये देखिए कि हिमालय क्षेत्र इतना संवेदनशील क्यों है। हिमालय को दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, यानी ऐसे पहाड़ जो अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुए हैं और जो अब भी जीवित है, नाजुक है। आपको इस बात पर शायद यकीन नहीं होगा कि आज जिस उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर आप घूमने जाते हैं, वहां आज से करोड़ों साल पहले एक समुद्र हुआ करता था। इस चैथिस सागर कहते थे इसे, जो एशिया और अफ्रीका के बीच फैला हुआ था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इस समुद्र की जगह पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं बन गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी पृथ्वी की सतह टेक्टोनिक प्लेट्स में पटी हुई है। आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, इसलिए हिमालय में पहाड़ों के बनने का सिलसिला रुका नहीं है। उदाहरण के लिए आज भी हर साल हिमालय क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट लगभग 0.2 से 0.5 मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है, जिसकी वजह से इन पहाड़ों को जीवित पहाड़ भी कहा जाता है। ये बातें हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप ये समझ पाएं कि हिमालय के पहाड़ आज भी ठोस नहीं है, जब इन पहाड़ों को विकास या पर्यटन के लिए अंधाधुंध तरीके से खोदा जाता है, ये पहाड़ सरेंडर करने लगते हैं। फिर वो होता है जो नेपाल में हुआ या जिसका खतरा भारत के हिमालय क्षेत्र में जताया जा रहा है। सोचिए, ऑफिशियली लगभग 1000 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 4-5 हजार लोग नेपाल में गायब हैं, अभी भी लापता है। लोग मान रहे हैं कि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है।

0: खैर आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि क्या चाइना तिब्बत में मची तबाही की असली हकीकत बाहर नहीं आने दे रहा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नेपाल में मौतों का आंकड़ा और लापता हुए लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन चाइना के तिब्बत में ऐसी कोई हलचल नहीं है। चाइना अब भी यही कह रहा है कि इस आपदा में सिर्फ 16 लोगों की मौत हुई है, 546 लोग लापता हुए हैं जिनमें 261 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अजीब बात यह है कि जब नेपाल में रेस्क्यू टीम्स के लिए प्रभावित इलाकों में पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है, तब चाइना ने एक हफ्ते से भी कम वक्त में बाढ़ से प्रभावित हुए पूरे इलाके को फिर से खोल दिया है। यानी इस प्रलय में चाइना का जो नेशनल हाईवे G216 मलबे के नीचे दब गया था, उस हाईवे को चाइना ने फिर से चालू कर दिया है। और आप यहां देख सकते हैं कि इस हाईवे पर चाइना के कई बुलडोजर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। यही नहीं, इस हाईवे के चालू होने के बाद कई बुलडोजर्स और दूसरी मशीनें जिरोंग पोर्ट तक पहुंच गई हैं, जहां नेपाल की सीमा के साथ एक इमिग्रेशन ऑफिस हुआ करता था और 26 अगस्त की तबाही में यह बिल्डिंग पूरी तरह नष्ट हो गई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि चाइना ने यहां अपना एक झंडा लगा दिया है और जो बिजली सप्लाई, रोड नेटवर्क, कम्युनिकेशन बेस स्टेशन प्रभावित हो गए थे उन्हें फिर से चालू किया जा रहा है और यह बात कई लोगों को हैरान कर रही है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट में इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत नाम के एक संगठन ने यह आरोप लगाया है कि चाइना इस बाढ़ में प्रभावित हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से सही कर रहा है, लेकिन वो इस आपदा में मारे गए लोगों को ढूंढने पर ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा। द गार्डियन ने इस संगठन के हवाले से शब्दशः लिखा है कि नेपाल में जो तबाही दिख रही है वही तबाही तिब्बत में छिपा ली गई है, जबकि तिब्बत के चार गांव सेल, सेरचोंग, लाबी और रिजी में 300 घर तबाह हो गए हैं, कई लोग अब भी लापता हैं। चाइना में कई लोग खुद ये बात कर रहे हैं कि तिब्बत में हुई मौतों को सरकार ने छिपा लिया है, जबकि चाइना की जो कम्युनिस्ट सरकार है वो ये कह रही है कि इस तरह की सभी बातें, सभी सूचनाएं गलत है, भ्रामक है, बेबुनियाद है। अब चाइना के साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो का ये कहना है कि उसने ऐसे 10 लोगों पर कार्रवाई की है जो तिब्बत में आई बाढ़ को लेकर झूठ फैला रहे हैं। हालांकि तिब्बत से जुड़ी कई निर्वासित संस्थाएं हैं और पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि चाइना ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके तिब्बत की हकीकत बाहर नहीं आने देना चाहता और उसका लक्ष्य अभी भी यही है कि वो जिरोंग पोर्ट में बाढ़ से प्रभावित हुए सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तेजी से बना रहा है। और जब आप भी इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि जहां पिछले हफ्ते इतनी भयानक प्रलय आई थी, वहां आप कैसे चाइना के सैकड़ों बुलडोजर्स दिन रात काम कर रहे हैं। देखिए,
1: अभी मैं नेशनल हाईवे 216 की मरम्मत वाली जगह पर हूँ। ये मुख्य रास्ता जिरोंग पोर्ट तक जाता है जो मडस्लाइड में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। मेरे ठीक पीछे आप इंजीनियरिंग रेस्क्यू टीम को देख सकते हैं जो पोर्ट तक जाने वाली सड़क को ठीक करने के लिए दिन रात काम कर रही है। बड़े पत्थरों से लदे ट्रक हर कुछ मिनट में काम वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। मडस्लाइड से आए मलबे ने नदी की तलहटी को काफी ऊपर उठा दिया है, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो गया है कि कीचड़ और नीचे का तल कितना गहरा है। इसलिए उस जगह को भरने और सड़क को फिर से मजबूत बनाने के लिए इन बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ मलबे और पिंजरों के ढेर भी लगे हैं। हर पिंजरा 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है और उसका वजन 170 किलो है। इन पिंजरों को बड़े पत्थरों से भरा जाएगा और सड़क के आधार को मजबूत करने के लिए तेजी से बहती नदी में डाला जाएगा। उम्मीद है कि आसपास के कस्बों के रेस्क्यू वर्कर और वेल्डिंग की दुकानें ऐसे 1000 से ज्यादा पिंजरे बनाएंगे। खोज और बचाव अभियान में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। इनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पुलिस फोर्स और अन्य समूह शामिल हैं।
0: तो ऐसा साफ दिख रहा है कि चाइना का सारा फोकस अपने रोड्स को वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है, ताकि फिर से वहां पर बैक टू नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाए और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर उसका ध्यान कम है। ऐसा आरोप वहां पर मौजूद लोग और कुछ वेस्टर्न मीडिया लगा रहा है। चाइना और नेपाल के रेस्क्यू ऑपरेशन में जमीन आसमान का ये अंतर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नेपाल की तुलना में चाइना एक बड़ा देश है और उसके पास बचाव अभियान के लिए टेक्नोलॉजी है, हेलीकॉप्टर्स है, ड्रोन्स है, पैसों की कोई कमी तो है ही नहीं। जिन इलाकों में चाइना की रेस्क्यू टीम्स पहुंच नहीं सकती थी, उन इलाकों में चाइना ने हैवी ड्यूटी कार्गो और पैसेंजर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जो इंसानों का वजन उठा सकते हैं। यानी जिन सकरी पहाड़ियों या फिर मलबे के ढेरों पर हेलीकॉप्टर्स लैंड नहीं कर पा रहे थे, वहां इन ड्रोन्स के जरिए फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया गया और बेस कैंप तक लाया गया। और सड़कों को खोलने के लिए, मलबा हटाने के लिए ऐसे कई उपकरणों का इस्तेमाल हुआ जिनमें जान का जोखिम ज्यादा नहीं। यही कारण है कि चाइना ने तो नेपाल तक जाने वाले अपने नेशनल हाईवे को खोल लिया है, लेकिन नेपाल में हालात अब भी मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप इन ग्राफिक्स को देखेंगे तो चाइना ने तिब्बत में आई बाढ़ के लिए 7372 करोड़ रुपए जारी किए, जबकि नेपाल की सरकार दूसरे देशों से मदद लेकर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अब तक 492 करोड़ रुपए ही इकट्ठा कर पाई है। इस वक्त नेपाल में बाढ़ और मलबे से प्रभावित कम से कम 11 से 12 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों को खोलने, वहां तक पहुंचने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इनमें भी अपर त्रिशूली टनल में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अहम है, जहां त्रिशूली अल्फा, त्रिशूली ब्रावो नाम के 3 मुख्य सुरंगों में सेनाएं मलबे को साफ कर रही हैं। नेपाल की सरकार के मुताबिक इस बाढ़ के बाद से हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के 900 से ज्यादा कर्मचारी और मजदूर लापता थे, जिनमें से 279 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और

सरकार और भारतीय सेना की टेक्निकल टीम्स नेपाली सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबसे कठिन मोर्चे पर काम कर रही है। भारतीय सेना की रेस्क्यू टीम्स चिलिमे और लांगटांग हाइड्रोपावर साइट्स पर तैनात हैं और इनमें भी चिलिमे में भारतीय टीम ने खराब मौसम के बीच टनल में पैर जमाने की जगह बनाई और सुरक्षा रस्सियां बांधकर नेपाल का सबसे जो हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको शुरू किया है। देखिए

0: तक इट्स नॉट पॉसिबल
1: नॉट पॉसिबल हमने अभी हमने ब्लू प्रिंट देखा कौन सा से
2: कहते हैं कि कुदरत का नियम है जो दोगे वही बढ़कर वापस आएगा लेकिन क्या आप जानते हैं नेपाल के साथ इसका उलट हो रहा है। नेपाल का कहना है कि जिस जलवायु संकट का वो बार बार शिकार हो रहा है उस जलवायु संकट के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। वैश्विक स्तर पर कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में नेपाल की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 0.04% है जबकि चाइना की हिस्सेदारी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 33.1%, अमेरिका की हिस्सेदारी 11.7%। यानी जो अमीर देश हैं उन्होंने जलवायु संकट पैदा किया, आज भी वो इस जलवायु संकट को बढ़ा रहे हैं लेकिन इसकी कीमत नेपाल जैसे देशों को चुकानी पड़ रही है जिनकी इसमें कोई भूमिका नहीं। इसी मुद्दे को उठाते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने कहा है कि इन बड़े देशों को प्रदूषण की सजा नेपाल भुगत रहा है और इसके इन देशों को नेपाल को दी जाने वाली मदद को भीख या दान ना समझे बल्कि इसे अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी मानकर नेपाल को हर्जाना दे। यही नहीं, काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बालन शाह इस मांग को वैश्विक मंच पर उठाने के लिए बहुत गंभीर हैं और इसके लिए वो सितंबर 2026 में होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से भाग लेने न्यूयॉर्क जा सकते हैं ताकि दुनिया के सामने वो जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस का मुद्दा उठा पाए। इसके अलावा बालन शाह ने आज नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारत को धन्यवाद यानी थैंक यू इंडिया भी कहा है। सुनिए,
3: मित्र राष्ट्र चीन र भारतबाट उहाँहरूले टेक्निसियनहरू पठाउनु भएकै थियो। उहाँहरूले सुरुकै दिनदेखि पहिलो दिन दोस्रो दिन पनि रेकी गरिराख्नु भएको थियो हवाई मार्फत त्यो एरियामा अहिले कस्तो क्षति भएको छ त्यहाँ पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले रेकी गरिसकेर अनुगमन गरेर अहिले तत्काल ओर्लिने अवस्था छैन, तुरुन्तै ओर्लिन सक्दैनौँ। जुन बेला ओर्लिन सकिनेछ त्यति बेला नै भारतको अथवा चिनको टेक्निसियनहरू नेपाली टेक्निसियन आर्मी उहाँहरू चाहिँ पुग्ने अवस्था भएपछि मात्रै पुग्नु भएको हो।
2: साल 2013 में एक फिल्म आई थी स्पेशल 26 और उस फिल्म के बाद से 26 अंक के साथ कई बार स्पेशल यानी विशेष शब्द जोड़ता रहा लेकिन अब नेपाल में आई इस भयावह प्रलय के बाद 26 तारीख को कुछ लोग एक अलग ही नजर से देखने लगे हैं। कारण यही है कि 26 तारीख ने इतिहास में कई बार ऐसी घटनाओं को जन्म दिया है जिन्हें दुनिया आज भी भूल नहीं पाई है। जैसे नेपाल में ये तबाही 26 अगस्त को आई थी साल 2023 में जब इराक के एक शादी समारोह में आतिशबाजी के दौरान आग लगी और इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, तब वो तारीख भी 26 सितंबर की थी। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ वो भी 26 अगस्त 2021 को हुआ था। 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया तब भी उसकी तारीख 26 अक्टूबर थी। 2008 में जब मुंबई में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ तारीख थी 26 नवंबर। लिस्ट लंबी है। 2006 में इंडोनेशिया का विनाशकारी भूकंप 26 मई को आया, 2005 में मुंबई की बाढ़ 26 जुलाई को आई, 2004 में हिंद महासागर में सुनामी 26 दिसंबर को आई, 2001 में गुजरात का भूकंप 26 जनवरी को आया, 1991 में इंडोनेशिया की सुनामी 26 नवंबर को आई, 1986 में चेर्नोबिल की परमाणु तबाही 26 अप्रैल को हुई, 1963 में 1000 लोगों की जान लेने वाला युगोस्लाविया का भूकंप 26 जुलाई को आया। लिस्ट लंबी है और यही कारण है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि 26 तारीख अशुभ है। खैर आगे बढ़ते आपको ये बताते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एससीओ समिट में सिंधु जल समझौते को बहाल करने के लिए रोना धोना कर रहे थे तब उसी वक्त इस्लामाबाद बारिश

में तालाब बना हुआ था और पाकिस्तान के लोग इसके लिए वहां की सेना को कोस रहे थे। एक दिन पहले इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक कई रिहायशी इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया और पाकिस्तान के लोग ये कहने लगे कि जब सारा पैसा सेना हजम कर जाएगी तो नाले साफ कराने के लिए पैसा कहां से आएगा। पाकिस्तान के मीडिया का कहना है कि इस बाढ़ के कारण इस्लामाबाद रावलपिंडी में 3 लोगों की मौत हो गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं। इस बाढ़ से बेहाल हुए पाकिस्तान के कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो बलोच और सिंधी ये सोचते हैं कि पंजाब प्रांत के लोग विकास का स्वाद ले रहे हैं, वो भी उनके डूबते हुए घरों को देख सकते हैं। सुनिए,

0: ये मेरा दान जाना। वैसे लोग कहते हैं जी आप रोते बहुत है, अब मैं ही आस रहा हूं। ये सारे तीन तीन चार चार फुट पानी आया हुआ है ये, और मैं खाली इस चीज मुझे खुशी इस चीज की है कि हमारे जो हुक्मरान है वो दुनिया के मसाइल हल कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं आज रहूंगा नहीं ऐसी हुकूमत से, इतना खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा इतना ज्यादा नुकसान हो गया। और ये देखे ये हर चीज नुकसान है, लेकिन मैं आज जो हूँ ना बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं आप कहते पता नहीं स्विट्जरलैंड का स्विमिंग पूल नहीं है, ये नापाक पानी है जिसके अंदर मैं खड़ा होके और अपनी फरियाद दर्जी कर।
1: खैर आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की कमान संभालने वाले रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अयोध्या में राम मंदिर के पहले सीईओ यानी पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैसे बने और इसके मायने क्या है। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसका उद्देश्य राम मंदिर के पूरे प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे का कायाकल्प यानी उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करना था। और इसी बैठक में मौजूदा सदस्यों की नई जिम्मेदारी तय होनी थी, नए सीईओ का चयन होना था। इसके लिए दो महीने पहले 6 जुलाई को एक सर्च कमेटी बनाई गई थी जिसे नए सीईओ की योग्यता और चयन प्रक्रिया तक तय करनी थी। जब यह प्रक्रिया तय हो गई तब इसके लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए गए और आपको यकीन नहीं होगा कि पूरे देश से 585 लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर का सीईओ बनने के लिए आवेदन दिया। इसके बाद इनमें से कुल 16 आवेदन शॉर्टलिस्ट हुए जिन्हें 11 और 12 अगस्त को इंटरव्यू देने के लिए अयोध्या बुलाया गया। इस पूरी प्रक्रिया के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सामने अंतिम 3 नाम आए जिनमें पहला नाम रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा का था, दूसरा नाम रिटायर्ड मेजर जनरल संजय प्रताप सिंह विश्वाराव का था और जिन्होंने जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोर और सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में काम किया, और तीसरा नाम श्रुति भारद्वाज का था जिनके पास केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में काम करने का प्रशासनिक अनुभव है। अब मंदिर ट्रस्ट को आपसी सहमति से इनमें से एक नाम चुनना था और वो नाम था रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा का। और यहाँ ये भी देखिए कि जब जितेंद्र मिश्रा के नाम का ऐलान हुआ तब उसके बाद जितेंद्र मिश्रा को गूगल पर भारत के लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे थे। भारतीय वायुसेना में जितेंद्र मिश्रा की पहचान एक जाबाज अधिकारी की रही है जिनका गृह जिला उत्तर प्रदेश का देवरिया है। वो 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे और इसके बाद वो 38 सालों से ज्यादा तक सैन्य सेवा का हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने फाइटर कॉम्बैट लीडर की भूमिका निभाई और अपने पूरे करियर में 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान का शानदार अनुभव हासिल किया। इसके अलावा वो बेंगलुरु के एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल, अमेरिका के एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से भी जुड़े रहे। उन्होंने फाइटर स्क्वाड्रन की कमान संभाली, एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट के चीफ टेस्ट पायलट रहे। उन्हें 2 महत्वपूर्ण एयरबेस का एयर ऑफिसर कमांडिंग भी बनाया गया। इसके बाद वो जनवरी 2025 में वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख बने और ये वही कमांड है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर सबसे अहम भूमिका निभाई थी और जितेंद्र मिश्रा ने इसकी पूरी कमान संभाली थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी मई 2025 में पंजाब गए थे, पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, तब जितेंद्र मिश्रा उनके साथ मौजूद थे। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में जितेंद्र मिश्रा ने बताया था कि जब प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पर आए थे तब उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या वो उनकी गाड़ी में उनके साथ बैठ सकते हैं और तब प्रधानमंत्री मोदी ने बिना वक्त लिए उन्हें हाँ कहा था और उस वक्त लगभग 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी और रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने सफर किया था और अब वो राम मंदिर के सीईओ बनाए गए। देखिए
2: आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर दैट एट दिस स्टेज आई हैड जस्ट आस्क्ड हिम के कैन आई ट्रैवल विद यू इन योर व्हीकल, ही जस्ट डिड नॉट टेक अ माइक्रो सेकंड, यस ही सेड यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till now, Prime Minister Shri Narendra Modi. And I'm really very fortunate and I had an experience of a lifetime listening to him, talking to him for 1.5 hours.
1: इसी इंटरव्यू में रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने हिंदू धर्म को भी परिभाषित किया था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा था कि ये लड़ाई धर्म युद्ध की है जिसमें एक तरफ महाभारत की तरह असुरी विचारधारा के लोग थे और दूसरी तरफ सही विचारधारा के लोग थे। सुनिए
2: महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है. और धर्मयुद्ध का अर्थ रिलीजन नहीं है, धर्मयुद्ध का अर्थ विचारधारा है. ये संघर्ष विचारधारा का है, दैवी विचारधारा और आसुरी विचारधारा. जैसा आपने कहा पहलगाम में एक एक आदमी को सेग्रीगेट आइडेंटिफाई किया गया और उनको कोल्ड ब्लड में मारा गया. जहां तक हमारा सिंदूर का फर्स्ट डे स्ट्राइक था, द गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्शंस वर वेरी क्लियर, द टेररिस्ट्स, देयर हैंडलर्स एंड देयर सपोर्टर्स आर टू बी पनिश्ड, नॉट द कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान.
1: जितेंद्र मिश्रा को भारतीय वायुसेना में अपनी बहादुरी और सूझबूझ के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया और अब वो अयोध्या में राम मंदिर के प्रबंधन को भी संभालेंगे. राम मंदिर के सीईओ का यह पद सिर्फ औपचारिक नहीं होगा, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट अपनी डीड में संशोधन करके सीईओ की शक्तियों और जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप से तय करेगा, जैसे कानूनी मामले, प्रशासनिक कामकाज, वित्तीय प्रबंधन, चंदे की जानकारी, नए नियम, नई प्रक्रिया, ये सब बनाना या मंदिर के विशाल प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित करना, ये सारे जो काम है वो जितेंद्र मिश्रा के अधिकार क्षेत्र में आएंगे और राम मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े सभी फैसले सीईओ जितेंद्र मिश्रा द्वारा ही लिए जाएंगे. यहाँ एक और अहम बात यह है कि राम मंदिर के सीईओ के काम में सरकार का कोई दखल नहीं होगा और सीईओ के ऊपर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव होंगे और ये इसलिए बड़ा है क्योंकि मंदिर की सारी शक्तियां भी सीईओ के पास नहीं रहेंगी. यहाँ ये भी समझिए कि जिस तरह एक कंपनी को चलाने के लिए सीईओ की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह इस मामले में राम मंदिर को चलाने के लिए सीईओ की जरूरत क्यों पड़ी. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है चंदा चोरी और आप सब जानते हैं कि कैसे मंदिर प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों ने भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किए गए चंदे को चुरा लिया और इससे महंगी गाड़ी खरीद ली, जमीनें खरीद ली, फोन खरीद लिए, कहीं से कैश बरामद हुआ. इसके अलावा राम मंदिर में कितना चढ़ावा, जितना चढ़ावा आ रहा है उसकी पारदर्शिता के लिए भी सीईओ का पद बनाया गया. 25-26 में राम मंदिर की कुल आय 237 करोड़ रुपए रही जबकि कुल खर्च 11 करोड़ रुपए रहा और इसी दौरान मंदिर के निर्माण कार्यों पर इस एक साल में 425 करोड़ रुपए खर्च हुए जबकि कुल खर्च 1882 करोड़ रुपए रहा. अब ये लेन देन किसी बड़ी कंपनी के जैसा ही है और क्योंकि अभी भारत के कई मंदिरों में प्रशासनिक कामों व्यवस्थाओं के लिए सीईओ नियुक्त किया जाता है, इसलिए राम मंदिर में भी पारदर्शिता के लिए यह व्यवस्था बनाई गई. इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट की इसी बैठक में प्रशासनिक ढांचे को भी बदला गया है जिसमें 3 नए सदस्य शामिल हुए हैं. इनमें पहले हैं महेश भागचंदका, दूसरे हैं मदन मोहन पांडे, तीसरे हैं डॉक्टर निर्मला यादव. इनमें भी महेश भागचंदका को नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है जबकि स्वामी गोविंद देव गिरी अब कोषाध्यक्ष से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए महासचिव बन गए हैं. ये वही पद है जो पहले चंपत राय के पास था. इसके अलावा निपेन मिश्रा श्री राम जन्मभूमि मंदिर की कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी देवरिया जिले से हैं और नए सीईओ जितेंद्र मिश्रा भी देवरिया जिले से आते हैं. सुनो.
3: अच्छा, हमारे इस जो मंदिर के संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो शायद पूरा कर सकेंगे, उसमें सफल नहीं है. ठीक हो जाएंगे? नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता सकता है. किसी भी चीज को आगे बढ़ते रहने समय समय के अनुसार कुछ परिवर्तन होता है, आगे बढ़ता रहता है.
1: टैंकर के बदले टैंकर, ईरान वॉर में अब अमेरिका इसी नई रणनीति के साथ मैदान में उतर गया है. यानी ईरान अगर कमर्शियल टैंकर्स पर हमला करेगा तो बदले में अमेरिका उसके सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके जो टैंकर्स हैं उनको भी बॉम्ब से उड़ा देगा. पिछले 3 दिनों में अमेरिकी सेनाएं टैंकर के बदले टैंकर रणनीति के तहत ईरान पर बड़े बड़े हमले कर रही हैं. अभी तक अमेरिकी सेनाएं ईरान की नाकेबंदी वाली रणनीति के तहत उन जहाजों को रोकती थी जो ईरान जा रहे थे. अमेरिकी सेनाएं उन्हें वापस जाने के लिए कहती थी और सैन्य ताकत के जरिए उन्हें लौटा देती थी. लेकिन अब ईरान द्वारा कमर्शियल टैंकर्स पर किए गए हमलों के जवाब में अमेरिकी सेनाएं ईरानी टैंकर्स को भी निशाना बना रही हैं. फिर चाहे ईरानी टैंकर लंगर डालकर किसी बंदरगाह पर ही खड़े क्यों ना हो. अमेरिकी सेना के ताजा हमले ईरान द्वारा सऊदी अरब और लाइबेरिया के टैंकर्स पर किए गए हमलों का बदला था. ईरान ने हॉर्मुज के पास सऊदी अरब के सिद्र और लाइबेरिया के सेनेगल प्रॉस्पेरिटी को मिसाइल और रॉकेट हमलों से निशाना बनाया था. अब इन हमलों के जवाब में अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के 2 टैंकर्स उड़ा दिए और कल रात तो अमेरिका ने ईरान पर कहर ही बरपा दिया. करीब 1 महीने की शांति के बाद अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया उसमें उसने केवल ईरानी टैंकर्स पर ही हमले नहीं किए बल्कि ईरान के 100 सैन्य ठिकानों पर घातक हमले किए हैं. ईरान की न्यूज एजेंसी का दावा है कि इस बार के अमेरिकी हमलों में 5 नागरिक मारे गए, 68 लोग घायल हुए। अमेरिकी हमले के बाद की तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि अब ईरान उन तस्वीरों को दिखाकर अमेरिका के जुल्मों की कहानियां सुना रहा है। अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के बंदर अब्बास, केशम, जास्क, सिरिक, हॉर्मोजगान, अहवाज, चाबहार, कोनराक और आघाजारी पर हवाई हमले किए और इनको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सिरिक पर अमेरिका ने जो हमले किए हैं उसकी तस्वीरों ने तो ईरान को दहला दिया। ईरान का यह दावा है कि अमेरिकी सेना ने सिरिक में हो रहे एक शादी समारोह को मिसाइल से निशाना बनाया जिसमें आम नागरिक मारे गए। ईरान का कहना है कि जश्न के माहौल को अमेरिका ने मातम में बदल दिया। हालांकि हमेशा की तरह अमेरिका और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने हमले को जुड़ी जो जानकारी है उसमें यही बताया है कि उनके निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने ही थे और वो नागरिक ठिकानों पर हमले नहीं करते। लेकिन सिरिक के शादी समारोह की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी डरावनी हैं। ईरान ने सिरिक के शादी समारोह में हुए हमलों की तुलना मार्च में मिनाब स्कूल पर हुए हमलों से कर दी है। मिनाब स्कूल में हुए हमलों में 120 बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी जिसके बाद ईरान ने इन हमलों को अमेरिका का जुल्म बताकर प्रचारित किया था। ठीक वैसे ही इस बार शादी समारोह पर हुए हमलों को वो अमेरिका के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।

0: अगर अमेरिका इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो उन्हें अब तक मिले नतीजों से बेहतर कोई नतीजा नहीं मिलेगा। हम इस बात पर जोर देते हैं कि दुश्मन की गतिविधियों पर पूरी सतर्कता और मजबूती से नजर रखनी चाहिए, और जैसा कि हाल की घटनाओं से साबित हुआ है, हमारी सशस्त्र सेनाएं किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब दिए बिना नहीं रहेंगी।
1: ईरान के लेगो एनिमेशन टीम एक्सप्लोसिव मीडिया ने इस हमले की तस्वीरों के आधार पर लेगो वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके जरिए वो दुनिया को अमेरिका और अमेरिका की सेना के हमले के बारे में बता रहा है। इसमें दिखाया गया है कि जश्न का माहौल इस अमेरिकी हमले के बाद मातम में कैसे बदल गया। वीडियो के अंत में अमेरिका को ये चेतावनी दी गई है, इसमें लिखा है, तुमने एक शादी को मातम में बदला, अब हम बदला लेंगे। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने एक दावा यह भी किया है कि सिरिकी नहीं खुजेस्तान के अहवाज और आगा जारी जो शहर है उनके पास जो अमेरिकी हमले हुए उनमें 7 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग घायल हुए हैं। एजेंसी का यह दावा है कि अमेरिकी सेनाओं ने 3 जगहों को निशाना बनाया और नागरिकों को टारगेट किया। ईरान जिन अमेरिकी हमलों को जुल्म के तौर पर पेश कर रहा है वो हमले सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी में हो रहे थे और वो सोशल मीडिया पर एक तरह की लाइव कमेंट्री कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेनाओं की कामयाबी पर पोस्ट किया है, ट्रूथ सोशल पर लिखा कि जिस वक्त वो लोग पोस्ट कर रहे हैं उस वक्त अमेरिका हॉर्मूज के पास ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है और ये हमले बड़े हैं और शक्तिशाली हैं। इसी पोस्ट में उन्होंने जॉर्डन पर ईरान के नाकाम हमलों की भी जानकारी दी और दावा किया कि ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर 8 मिसाइलें दागी और इन सभी को मार गिराया गया। ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी है कि अगर उन्होंने पलटवार करने की कोशिश की तो इस बार हुए हमलों से ज्यादा भयानक हमले किए जाएंगे और यह ऐसा हमला होगा जिसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जैसी कोई चीज ही नहीं बचेगी। हाल फिलहाल में ईरान के टारगेट पर जॉर्डन है और इसीलिए अमेरिकी सेनाएं हमला करती हैं तो इसके जवाब में वो जॉर्डन के अमेरिकी ठिकानों पर हमले करता है, लेकिन ये हमले ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और इराक के इरबिल में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हमलों को नाकाम बताया है, लेकिन ईरान ने अटैक का वीडियो जारी करके बड़ा नुकसान करने का दावा किया। अमेरिकी अधिकारियों का यह कहना है कि बदला लेने के लिए ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी ठिकानों पर 25 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, लेकिन इनमें आधी मिसाइलें ही जॉर्डन की वायु सीमा तक पहुंच पाई, बाकी सारी रास्ते में ही नाकाम हो गई। अधिकारियों के मुताबिक करीब 13 बैलिस्टिक मिसाइल ही जॉर्डन के एयर स्पेस तक पहुंच पाई। इनमें से 10 मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया, जबकि अन्य मिसाइलें लक्ष्य से बहुत दूर गिरी, जिससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ। इसके अलावा ईरान ने बहरीन पर 24 ड्रोन्स, कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और इराक के इरबिल पर 2 ड्रोन अटैक किए, लेकिन इन हमलों में भी कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। अब जो अमेरिकी सेना है उसके अधिकारियों का यह कहना है कि उनके हमलों की वजह से जो ईरान है वो उससे ईरान की सैन्य क्षमता पहले के मुकाबले कमजोर हो गई है, इसीलिए ईरान की मिसाइलें लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। अब आपको रक्त के रिश्तों की ऐसी शर्मनाक तस्वीर दिखाएंगे जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप सोच सकते हैं कि बेटे अपने बुजुर्ग पिता पर डंडे बरसा सकते हैं? लेकिन ऐसा हुआ, पुणे के इंदापुर में हुआ, जहां पिता के शरीर पर डंडे बरसाने से पहले बेटों के हाथ एक पल के लिए भी नहीं कांपे। माता पिता का ख्याल रखना तो दूर, ये कलयुगी बेटे उनसे मिलने तक नहीं आते थे। जब बीमार लाचार इस बुजुर्ग माता पिता ने अपनी जमीन बेच दी तो उन्होंने पिता को डंडों से पीटा। ये तस्वीर 30 अगस्त की है। 65 साल के तुकाराम अपनी बीमार पत्नी के साथ सड़क पर जा रहे थे। बुढ़ापे में कमजोर शरीर के साथ एक दूसरे का सहारा बनकर सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, तभी वहां एक कार आकर रुकी। उसमें से इस बुजुर्ग माता पिता के 2 बेटे उतरे। उनके मन में और चेहरे पर इस लाचार बेबस माता पिता के लिए कोई हमदर्दी या कोई अपनापन नहीं थी तो सिर्फ जमीन पाने की जिद और एक पागलपन वाला गुस्सा, फिर क्या, बिना कोई लिहाज उन्होंने अपने ही बूढ़े बाप से सवाल दागा कि उन्होंने जमीन कैसे बेच दी। और इससे पहले कि ये बुजुर्ग संभल पाते, बेटों ने डंडों से अपने पिता को पीटना शुरू कर दिया। बूढ़े तो काराम के हाथ पैर पीठ कंधे सब पर डंडे बरसा रहे थे अपने बेटे, और लाचार माँ शर्मनाक हरकत को देखकर बस चीख पुकार रही थी। लेकिन कलयुगी बेटों को बिल्कुल भी लिहाज नहीं आया। अब पुलिस में दी गई FIR के मुताबिक वो जाते जाते धमकी दे के गए कि बेची हुई जमीन वापस लो वरना जान से मार देंगे।

0: और आप अंजना 2.0 आपको बताएंगी कि आखिर पोल्यूशन का सोल्यूशन, वो कार्यक्रम जो हमने अंजना 2.0 शुरू किया है जिसमें हम बस ये चाहते हैं कि पोल्यूशन का सोल्यूशन निकले, तो बहुत दिलचस्प है। आप ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि आप कैसी कैसी राय, क्योंकि हवा हमारी, मेहनत हमारी, तो हम ही इस हवा को बदलेंगे। बिल्कुल अंजना, पोल्यूशन के सोल्यूशन में आज का इनोवेशन है एक मल्टीपर्पज स्ट्रीट लाइट पोल यानी एटमस पोल। दावा है कि ये पोल ना सिर्फ दिल्ली की हवा को साफ करने में मदद करेगा बल्कि सर्विलांस डिवाइस के तौर पर भी ये काम करता है। इसके अलावा ये देश की राजधानी दिल्ली के आधुनिकीकरण में भी योगदान दे सकता है। आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं।
1: माय नेम इज संजय कोमेरा, मैं एक्सल वन अमेरिकन कंपनी का सीईओ हूं एंड एक्सल वन इज प्राइमरीली एक क्लाइमेट इंजीनियरिंग कंपनी है focused on solving pollution problems like what we are seeing at Delhi. नया टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन राजघाट में पहली बार हो रहा है, आई मीन दिल्ली में पहली बार, इंडिया में पहली बार, दुनिया में पहली बार, एंड ग्लैड टू ब्रिंग इट टू दिल्ली। सो अभी टेस्टिंग राजघाट में चालू है। इट्स ऑलमोस्ट लास्ट 4 weeks वी आर डिप्लॉयड अबाउट 23 पोल्स। आई वुड कॉल इट एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट climate environmental node. Basically the idea behind that was, you know, we have all these street lights that don't do anything, right, except giving you the light. So what we thought was, primarily cities like Delhi requires pollution control at street level. So what we thought was, why don't we convert the traditional street lights into the urban street lights. So aap jo dekh rahe ho isme, it has got almost 4-in-1 function in built into it. The primary biggest function is environmental cleaning. So it actually tells you kitna pollution levels hai, and also it tells you how much of pollution reduction the individual street light has done every day. So every pole can support clean air to 2000 people per day.
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इंसान के शब्दों पर नहीं उसके इरादों पर गौर कीजिए, क्योंकि मीठा खंजर जख्म देता है और खरी डांट भला करती है। नमस्कार।

0: ऑपरेशन सिंदूर के हीरो और वायुसेना के दिग्गज पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ बनाया गया है। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, जिनका चयन 3 सदस्यों की कमेटी की तरफ से हुआ है। इस बड़े फैसले के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में और भी बदलाव हुए हैं।
1: पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जिनके नेतृत्व में वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाया।
2: We have gone 100 kilometers inside the international border, which is Bahawalpur, 75 to 80 kilometers Murid ke, without unnecessary ruffling international feathers.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमान को लीड करने वाले, महिला पायलटों को आतंक पर वार करने के लिए चुनने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: As the commander in chief, squadron leader Singh, or squadron leader Sharma, or air marshal Mishra, I don't look at the gender.
3: Right.
2: Like I said, when you select the pilots, it is the training that they have gone through, their experience, and most importantly, their performance in earlier gunnery exercises.
1: S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम करने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: They were desperate to find where this S-400, like you asked me, where did you fire it from? The Pakistanis were desperate to find out where they are. They employed all the tricks in the book. I'm very sure they were getting satellite help from other nations. I don't want to use the name of the country. They were using air intelligence. They were using these EW systems to find out, because that was the biggest threat as far as they were concerned. Every time they got airmen, they got shot by an S-400. They had deployed spies within our country, activated their sleeper cell within our country to find out where the S-400 was.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत तत्कालीन वेस्टर्न एयर कमान का नेतृत्व करते एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा करते हैं।
2: I had just asked him, can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said yes, of course, why not? So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till.
1: Operation Sindoor mein Western Air Command ko lead karne wale Air Marshal Jitendra Mishra isi saal 30 April ko retire hue aur 3 mahine ke andar hi unhe Ram Mandir ke pehle CEO ki zimmedari di gayi. सवाल है कि सेना के एक पूर्व अफसर को इसके लिए क्यों चुना गया, जबकि उनका नाम उन 3 नामों में शामिल नहीं बताया गया जिसमें से एक को इस जिम्मेदारी मिलने की बात 24 घंटे पहले तक की जा रही थी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को संचालित करने वाला पहला सीईओ कौन होगा, इसे लेकर जिन नामों पर कयास लगाए जा रहे थे उनमें पूर्व आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा, पूर्व आईपीएस राजेश पांडे और बिहार कैडर के आईपीएस डॉक्टर परेश सक्सेना के अलावा आईएएस दिनेश सिंह का नाम शामिल था, लेकिन जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाया गया है।
4: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। और आपको जानकर के सबसे खुशी होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
1: जितेंद्र मिश्रा की छवि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है, इसके लिए उन्हें सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल भी मिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से उनका रिश्ता है, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति में भी उनका यूपी कनेक्शन है। जितेंद्र मिश्रा करीब 40 वर्षों तक वायुसेना में रहे और कई महत्वपूर्ण कमांड संभाली है। ऐसे में मंदिर के बढ़ते प्रशासन, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बड़े स्तर के ऑपरेशनल कामकाज के लिए उनका सैन्य प्रशासनिक अनुभव अहम माना जा रहा है।
4: बहुत अच्छा, हमारे इस जो मंदिर के संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो शायद पूरा कर सकेंगे, उनमें सफल नहीं है। नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता सकता है। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ते रहने समय समय के अनुसार मुझे परिवर्तन होता, आगे बढ़ता रहता है।
1: मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्य भी बनाए गए हैं। ये बदलाव मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के 3 महीने बाद हुआ है। इस मामले में 8 आरोपी जेल में है। इसके बाद जुलाई महीने में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना पद छोड़ा। आगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से एक ऐसे सैन्य अफसर को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनकी चर्चा तीन सबसे आगे बताए जा रहे नामों में थी ही नहीं।
2: As far as this dispensation is concerned, there was not a single restriction. It was left to the military to decide. It was left to the military to decide the ways that you fight them.
1: राम मंदिर के पहले सीईओ पद की जिम्मेदारी देश के कैसे बड़े सैन्य अफसर को दी गई है, जिनका करियर बेदाग है, जिनकी इमेज ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है। इस तरह जितेंद्र मिश्रा को ये जिम्मेदारी देकर ये भरोसा देने की कोशिश की गई है कि संदेश ये पहुंचे कि सेना की तरह मंदिर ट्रस्ट में भी अनुशासन भक्तों के भरोसे को बरकरार रखेगा।
0: अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले के बाद इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार सवाल करते आए हैं। 5 से 6 महीने में यूपी में चुनाव होने हैं और उससे पहले योगी और अखिलेश दोनों ही इस मामले पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्रस्ट के नए सीईओ बनाए जाने पर पूछा है कि क्या नई चीज होने से पुरानी भूल जाएंगे।
1: श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी रहे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में करीब 40 साल सेवा दी। 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव उन्हें करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 पर लेजर गाइडेड बमों को ऑपरेशनल बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हो रहा विवाद भी क्या थम जाएगा? अखिलेश यादव के सियासी सवाल को देख कर ये बात सामने आती है।
3: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है।
5: और
3: कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
1: राम मंदिर से दूरी रखने वाले अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मामले पर पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबकी आस्था से जुड़ा ये मुद्दा उन्हें 2027 में फायदा पहुंचा सकता है, बीजेपी की उस वोट बैंक में सेंध लगा सकता है जो अब तक उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बीच की सबसे बड़ी दीवार।
6: नई चीज होने से हम और आप पुरानी चीज भूल जाएंगे क्या? हमें कोई शिकायत किसी से नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से, लेकिन जो राम धन के साथ हुआ, चंदा जिस तरीके से वहां से गायब हुआ, या चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई, आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया, अगर आपने बड़े लोगों को क्लीन चिट दिया है तो उनको क्यों जेल भेजा, उन्हें भी बाहर करो।
1: जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, तब अखिलेश का हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को चुनौती देना बीजेपी को रास नहीं आ रहा, और इसीलिए वो इसकी काट के तौर पर जनता को समाजवादी सरकारों में हिंदुओं से कथित भेदभाव की याद दिलाती।
7: आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।
1: चुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव सेट करने में जुटी, तो मुख्यमंत्री एक बार फिर अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा लगाने में जुट गए।
7: अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई राम द्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। समाजवादी पार्टी घोषित राम द्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी।
1: बीजेपी की पूरी सियासी यात्रा में राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दे का अहम रोल रहा है, इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की घटना को समाजवादी पार्टी ने लपका, तो योगी आदित्यनाथ पहले कब्रिस्तान की चार दीवारी वाला मुद्दा उठाने से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे वाला 23 साल पुराना प्रकरण तक याद दिलाया।
7: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: इस तरह योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहते। SIT जांच करवाने का ऐलान करते हुए उन्होंने दोषियों को सजा दिए जाने की बात कही, तो वही विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि राम मंदिर के खिलाफ रहे लोग अब आस्था की बात करने लगे।
7: हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: भगवा वेश में रहने वाले और गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व का चेहरा है। इसके अलावा उनके बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश के बाहर भी चर्चा होती। इस तरह योगी अपने विनिंग फॉर्मूले से पीछे हटने के मूड में नहीं।
0: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज और कल मथुरा और वृंदावन में रहेंगे। जन्माष्टमी के दिन उनका श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। CM की ओर से मथुरा वृंदावन के लिए करीब 1051 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रस्तावित है और इन सबके बीच चर्चा इस बात की भी है कि क्या पश्चिमी यूपी में जो बढ़त समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हासिल करती है, क्या उसी के लिए कृष्ण जन्मभूमि वाला दांव मुख्यमंत्री चलते हैं।
1: बुलडोजर एनकाउंटर, सैफई से रामपुर तक यानी अखिलेश यादव से आजम खान तक पर वार और वृंदावन बिहारी लाल का नाम लगातार लेते हुए क्या 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का सियासी चतुर्भुज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है।
7: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
5: हर दिन राधे राधे कहते
7: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे।
8: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा।

0: अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव सवाल चंदा चोरी पर करते हैं। सनातन के अपमान के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव घेरे जाते हैं तो फिर इटावा के केदारेश्वर मंदिर निर्माण की याद दिलाते हैं। और तब क्या समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट पर घेरने के लिए अब योगी आदित्यनाथ लगातार वृंदावन बिहारी लाल का नाम भाषणों में ले रहे हैं।
1: वृंदावन बिहारी लाल के
0: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांस्कृतिक नैरेटिव में मथुरा की चर्चा तेज है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद क्या बीजेपी का अगला बड़ा फोकस मथुरा है? सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के हाल के भाषणों पर गौर करने पर श्री राम के साथ श्री कृष्ण का नाम लेकर वो जय कराते हैं।
1: सियावर रामचंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान के वृंदावन बिहारी लाल के
0: सिद्धार्थ नगर हो या आजमगढ़, इटावा हो या आगरा हो, हर सभा में वृंदावन बिहारी लाल की जय मुख्यमंत्री करा रहे हैं।
1: सियावर रामचंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान के वृंदावन बिहारी लाल के।
0: अयोध्या से बीजेपी को घेरते अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घिरेंगे? ये सवाल पहले से उठता आ रहा है।
2: तो बारी इसी ब्रज भूमि की है, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव गोवर्धन बलदेव ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं।
0: 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ परिवार का नारा रहा अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और तब अब की बारी बांके बिहारी कहते मुख्यमंत्री ये चैलेंज सीधे अखिलेश यादव को देते आए कि राम जन्मभूमि पर आस्था के अपमान की बात करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष क्या कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलेंगे।
2: अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है।
0: इसके जवाब में अब तक अखिलेश यादव ने यूं तो सिर्फ राधे राधे कहा है।
3: हमारे घर के पास वो बहुत है वो, और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
0: राधे राधे की बात तो अखिलेश यादव 4 साल पहले भी कहते दिखे जब चुनाव 2022 का आया।
3: भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं।
0: अखिलेश यादव ये तक कहते आए कि भगवान उनको सपने में आकर पहले ही सरकार बन जाने की बात कह चुके हैं।
4: हमारे सपने में आए थे भगवान, कृष्ण कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा।
0: लेकिन अखिलेश के सपने की वो बात तो सच हुई नहीं, तो क्या 2027 में भी कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है?
5: अयोध्या धाम अब ये तीनों का हो गया है तो यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाए तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़े। मैं बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदुवंशी कहेंगे लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है।
0: योगी आदित्यनाथ तब लगातार कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सवाल करते आ रहे हैं जब अयोध्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव सवाल करते हैं।
6: श्रद्धा और आस्था उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है।
7: और
6: कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे गरीब, भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
0: अयोध्या पर बोलते अखिलेश, कृष्ण जन्म भूमि पर योगी आदित्यनाथ का चैलेंज मंजूर नहीं करते, और क्या इसीलिए योगी आदित्यनाथ के भाषण से लेकर चुनावी रणनीति तक में श्री कृष्ण का नाम बढ़ रहा है।
1: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
8: योगी आदित्यनाथ जी भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म में उनकी आस्था है, इसलिए अपने संबोधन के पूर्व प्रभु राम और प्रभु कृष्ण का नाम लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो वामी हैं, जो कांगी हैं, जो सपाई हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है।
9: जब मुख्यमंत्री जी मथुरा का नाम लेते हैं तो वो शिक्षा का नाम नहीं लेना चाहते, शिक्षा व्यवस्था का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री जी किसी कम्युनल पोलराइज इशू की बात करना चाहते हैं तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करना चाहते हैं। वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है।
10: मध्य प्रदेश के राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को लेकर मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की तैयारियों में है। विश्वविद्यालय मध्य भारत, मालवा और महाकौशल के नाम से तीन भागों में बंट जाएगा। कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है।
11: ये मध्य प्रदेश की एकमात्र प्रमुख टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, नाम है राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। 1998 में बनी इस यूनिवर्सिटी में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी को तीन भागों में बांट दिया जाएगा। अभी तक ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल में थी, लेकिन अब इसे तीन हिस्सों में डेवलप किया जाएगा। पहला हिस्सा भोपाल में होगा, दूसरा हिस्सा उज्जैन में होगा, तीसरा हिस्सा जबलपुर में होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूर दराज से आने वाले छात्रों को राहत मिल सके। इसके साथ ही एक निर्णय और हुआ है कि राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जगह अब इसे मध्य भारत, मालवा और महाकौशल नाम से अपग्रेड किया जाएगा। मतलब यूनिवर्सिटी के नाम से राजीव गांधी का नाम हट जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि ये निर्णय विश्वविद्यालय को भौगोलिक पहचान दिलाने के लिए किया गया है।
12: हम किसी भी महापुरुष का, किसी भी पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री का हम नाम नहीं हटा रहे हैं, ना हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि किसी एक ही एक के नाम से सारी योजनाएं लागू करें। हमने तो भौगोलिक दृष्टि की पहचान दी है, और मैं समझता हूं भौगोलिक दृष्टि की पहचान भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे कोई महापुरुष है उन महापुरुषों के नाम हम स्थापित करते हैं, उसी प्रकार से ये भी स्थापित करने का अभियान है।
11: इतना ही नहीं, टेक्निकल के साथ कौशल शब्द भी जोड़ा जाएगा। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की सरकार राष्ट्रहित में काम करने वाले नेताओं का अपमान कर रही है।
13: इतना महान योगदान आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जिस व्यक्ति ने दिया है उसका नाम बदल देना, जो पहले से रखा हुआ है, बहुत दुर्भाग्यजनक है। और इनको देश के हर उस आदमी से आपत्ति है जिसने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया। इनको नेहरू जी के नाम पर आपत्ति है, इनको इंदिरा गांधी जी के नाम पर आपत्ति है, इनको महात्मा गांधी जी के नाम पर आपत्ति है, इनको राजीव गांधी जी के नाम पर आपत्ति है।
11: अब यूनिवर्सिटी के नाम पर कोहराम मचा हुआ है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
10: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, कहा श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टियों के नामों का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। देश भर के जल संसाधन मंत्रियों से बैठक में प्रधानमंत्री का जल मंत्र, कहा टीम इंडिया की भावना से करें काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख, कहा पार्टी की विचारधारा से न करें समझौता, बोले मेरे हाथ पैर टूट जाएं तो भी आरएसएस का सिद्धांत नहीं करूंगा स्वीकार। और ब्रिज की भूमि से उठेगा सबसे बड़ा शोर, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े दिग्गजों से सबसे बड़े सवाल, आज दिन भर देखिए पंचायत आज तक मथुरा। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो और वायुसेना के दिग्गज पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ बनाया गया है। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, जिनका चयन 3 सदस्यों की कमेटी की तरफ से हुआ है। इस बड़े फैसले के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में और भी बदलाव हुए हैं।
1: पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जिनके नेतृत्व में वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाया।
2: We have gone 100 kilometers inside the international border, which is Bahawalpur, 75 to 80 kilometers Murid ke, without unnecessary ruffling international feathers.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमान को लीड करने वाले, महिला पायलटों को आतंक परवार करने के लिए चुनने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: As the commander in chief, squadron leader Singh, or squadron leader Sharma, or air marshal Mishra, I don't look at the gender. Right. Like I said, when you select the pilots, it is the training that they have gone through, their experience, and most importantly, their performance in earlier gunnery exercises.
1: S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम करने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: They were desperate to find where this S-400, like you asked me, where did you fire it from? The Pakistanis were desperate to find out where they are. They employed all the tricks in the book. I'm very sure they were getting satellite help from other nations. I don't want to use the name of the country. They were using air intelligence. They were using these EW systems to find out, because that was the biggest threat as far as they were concerned. Every time they got airmen, they got shot by an S-400. They had deployed spies within our country, activated their sleeper cell within our country to find out where the S-400 is.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत तत्कालीन वेस्टर्न एयर कमांड का नेतृत्व करते एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा करते हैं।
2: I had just asked him के can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said yes, of course, why not? So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till.
1: Operation Sindoor mein Western Air Command ko lead karne wale Air Marshal Jitendra Mishra isi saal 30 April ko retire hue aur 3 mahine ke andar hi unhe Ram Mandir ke pehle CEO ki zimmedari di gayi. सवाल है कि सेना के एक पूर्व अफसर को इसके लिए क्यों चुना गया, जबकि उनका नाम उन 3 नामों में शामिल नहीं बताया गया जिसमें से एक को जिम्मेदारी मिलने की बात 24 घंटे पहले तक की जा रही थी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को संचालित करने वाला पहला सीईओ कौन होगा, इसे लेकर जिन नामों पर कयास लगाए जा रहे थे उनमें पूर्व आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा, पूर्व आईपीएस राजेश पांडे और बिहार कैडर के आईपीएस डॉक्टर परेश सक्सेना के अलावा आईएएस दिनेश सिंह का नाम शामिल था, लेकिन जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाया गया है।
3: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, और आपको जानकर के सबसे खुशी होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
1: जितेंद्र मिश्रा की छवि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है, इसके लिए उन्हें सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल भी मिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से उनका रिश्ता है, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति में भी उनका यूपी कनेक्शन है। जितेंद्र मिश्रा करीब 40 वर्षों तक वायुसेना में रहे और कई महत्वपूर्ण कमांड संभाली। ऐसे में मंदिर के बढ़ते प्रशासन, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बड़े स्तर के ऑपरेशनल कामकाज के लिए उनका सैन्य प्रशासनिक अनुभव अहम माना जा रहा है।
3: बहुत अच्छा, हमारे इस जो मंदिर के संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो शायद पूरा कर सकेंगे, उनमें सफल नहीं है। नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता सकता है। किसी भी चीज को आगे बढ़ते रहने समय समय के अनुसार मुझे परिवर्तन होता है, आगे बढ़ता रहता है।
1: मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्य भी बनाए गए हैं। ये बदलाव मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के 3 महीने बाद हुआ है। इस मामले में 8 आरोपी जेल में है। इसके बाद जुलाई महीने में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना पद छोड़ा। आगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से एक ऐसे सैन्य अफसर को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनकी चर्चा 3 सबसे आगे बताए जा रहे नामों में थी ही नहीं।
2: As far as this dispensation is concerned, there was not a single restriction. It was left to the military to decide. It was left to the military to decide the ways that you fight them.
1: राम मंदिर के पहले सीईओ पद की जिम्मेदारी देश के कैसे बड़े सैन्य अफसर को दी गई है, जिनका करियर बेदाग है, जिनकी इमेज ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है। इस तरह जितेंद्र मिश्रा को ये जिम्मेदारी देकर ये भरोसा देने की कोशिश की गई है कि संदेश ये पहुंचे कि सेना की तरह मंदिर ट्रस्ट में भी अनुशासन भक्तों के भरोसे को बरकरार रखेगा।
0: अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले के बाद इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार सवाल करते आए हैं। 5 से 6 महीने में यूपी में चुनाव होने हैं और उससे पहले योगी और अखिलेश दोनों ही इस मामले पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्रस्ट के नए सीईओ बनाए जाने पर पूछा है कि क्या नई चीज होने से पुरानी भूल जाएंगे।
1: श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी रहे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में करीब 40 साल सेवा दी। 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव उन्हें। करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 पर लेजर गाइडेड बमों को ऑपरेशनल बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हो रहा विवाद भी क्या थम जाएगा? अखिलेश यादव के सियासी सवाल को देखकर ये बात सामने आती है।
4: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है। कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर में।
1: राम मंदिर से दूरी रखने वाले अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मामले पर पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबकी आस्था से जुड़ा ये मुद्दा उन्हें 2027 में फायदा पहुंचा सकता है, बीजेपी की उस वोट बैंक में सेंध लगा सकता है जो अब तक उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बीच की सबसे बड़ी दीवार।
5: नई चीज होने से हम और आप पुरानी चीज भूल जाएंगे क्या? हमें कोई शिकायत किसी से नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से, लेकिन जो राम धन के साथ हुआ, चंदा जिस तरीके से वहां से गायब हुआ, या चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई, आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया, अगर आपने बड़े लोगों को क्लीन चिट दिया है तो उनको क्यों जेल भेजा, उन्हें भी बाहर करो।
1: जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, तब अखिलेश का हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को चुनौती देना बीजेपी को रास नहीं आ रहा, और इसीलिए वो इसकी काट के तौर पर जनता को समाजवादी सरकारों में हिंदुओं से कथित भेदभाव की याद दिलाती।
6: आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी की कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।
1: चुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव सेट करने में जुटी, तो मुख्यमंत्री एक बार फिर अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा लगाने में जुट गए।
6: अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। समाजवादी पार्टी घोषित राम

0: इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर की चढ़ा चोरी की घटना को समाजवादी पार्टी ने लपका तो योगी आदित्यनाथ ने पहले कब्रिस्तान की चार दीवारी वाला मुद्दा उठाने से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे वाला 23 साल पुराना प्रकरण तक याद दिलाया।
1: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे।
0: इस तरह योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहते। SIT जांच करवाने का ऐलान करते हुए उन्होंने दोषियों को सजा दिए जाने की बात कही तो वही विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि राम मंदिर के खिलाफ रहे लोग अब आस्था की बात करने लगे।
1: हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
0: भगवा वेश में रहने वाले और गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व का चेहरा है। इसके अलावा उनके बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश के बाहर भी चर्चा होती। इस तरह योगी अपने विनिंग फॉर्मूले से पीछे हटने के मूड में नहीं।
2: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज और कल मथुरा और वृंदावन में रहेंगे। जन्माष्टमी के दिन उनका श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। CM की ओर से मथुरा वृंदावन के लिए करीब 1051 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रस्तावित है और इन सबके बीच चर्चा इस बात की भी है कि क्या पश्चिमी यूपी में जो बढ़त समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हासिल करती है क्या उसी के लिए कृष्ण जन्मभूमि वाला दांव मुख्यमंत्री चलते हैं।
0: बुलडोजर एनकाउंटर सैफई से रामपुर तक यानी अखिलेश यादव से आजम खान तक पर वार और वृंदावन बिहारी लाल का नाम लगातार लेते हुए क्या 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का सियासी चतुर्भुज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है।
1: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
3: हर दिन राधे राधे कहते
4: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे।
5: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा।

0: अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव सवाल चंदा चोरी पर करते हैं। सनातन के अपमान के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव घेरे जाते हैं तो फिर इटावा के केदारेश्वर मंदिर निर्माण की याद दिलाते हैं। और तब क्या समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट पर घेरने के लिए अब योगी आदित्यनाथ लगातार वृंदावन बिहारी लाल का नाम भाषणों में ले रहे हैं।
1: वृंदावन बिहारी लाल के
0: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांस्कृतिक नैरेटिव में मथुरा की चर्चा तेज है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद क्या बीजेपी का अगला बड़ा फोकस मथुरा है? सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के हाल के भाषणों पर गौर करने पर श्री राम के साथ श्री कृष्ण का नाम लेकर वो जय कराते हैं।
1: सियावर रामचंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान के वृंदावन बिहारी लाल के।
0: सिद्धार्थ नगर हो या आजमगढ़, इटावा हो या आगरा हो, हर सभा में वृंदावन बिहारी लाल की जय मुख्यमंत्री करा रहे हैं।
1: सियावर रामचंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान के वृंदावन बिहारी लाल के।
0: अयोध्या से बीजेपी को घेरते अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घिरेंगे? ये सवाल पहले से उठता आ रहा है।
2: अब तो बारी इसी ब्रज भूमि की है, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव गोवर्धन बलदेव ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। 90

0: दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ परिवार का नारा रहा, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और तब अब की बारी बांके बिहारी कहते मुख्यमंत्री ये चैलेंज सीधे अखिलेश यादव को देते आए कि राम जन्मभूमि पर आस्था के अपमान की बात करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष क्या कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलेंगे।
1: अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपकी झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है।
0: इसके जवाब में अब तक अखिलेश यादव ने यूं तो सिर्फ राधे राधे कहा है।
2: हमारे घर के पास वो बहुत है वो, और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
0: राधे राधे की बात तो अखिलेश यादव 4 साल पहले भी कहते दिखे, जब चुनाव 2022 का आया।
2: भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं।
0: अखिलेश यादव ये तक कहते आए कि भगवान उनको सपने में आकर पहले ही सरकार बन जाने की बात कह चुके हैं।
3: आप हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है।
0: लेकिन अखिलेश के सपने की वो बात तो सच हुई नहीं, तो क्या 2027 में भी कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है?
4: अयोध्या धाम अभी तीनों का हो गया है, तो यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाए तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़े। मैं बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदुवंशी कहेंगे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है।
0: योगी आदित्यनाथ तब लगातार कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सवाल करते आ रहे हैं जब अयोध्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव सवाल करते हैं।
2: श्रद्धा और आस्था उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है। कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
0: अयोध्या पर बोलते अखिलेश, कृष्ण जन्मभूमि पर योगी आदित्यनाथ का चैलेंज मंजूर नहीं करते, और क्या इसीलिए योगी आदित्यनाथ के भाषण से लेकर चुनावी रणनीति तक में श्री कृष्ण का नाम बढ़ रहा है?
5: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
6: योगी आदित्यनाथ जी भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म में उनकी आस्था है, इसलिए अपने संबोधन के पूर्व प्रभु राम और प्रभु कृष्ण का नाम लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो वामी हैं, जो कांगी हैं, जो सपाई हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है।
7: जब मुख्यमंत्री जी मथुरा का नाम लेते हैं तो वो शिक्षा का नाम नहीं लेना चाहते, शिक्षा व्यवस्था का नाम नहीं लेना चाहते, वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री जी किसी कम्युनल पोलराइज इशू की बात करना चाहते हैं तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करना चाहते हैं। वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है।
8: जिस तरह से अमेरिका ने फिर से ईरान पर भीषण हमले किए, ईरान भी अब चुप बैठने वालों में नहीं है, क्योंकि अमेरिकी हमलों में ईरान के 19 लोगों की मौत हो गई है जबकि 70 के करीब लोग घायल हो गए हैं। अमेरिका ने दावा यह किया है कि उसने ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने एक शादी समारोह पर बमबारी की जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है।
9: अमेरिका ने ईरान पर फिर से शुरू किए हमले। ईरान के 100 ठिकानों पर हमले, अब भड़केगा महायुद्ध। 19 की मौत, 68 घायल, ईरान में शादी समारोह पर गिरा बम। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दी ईरान को मिटा देने की धमकी। ईरान का पलटवार, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर बमबारी। अमेरिकी हमलों से एक बार फिर ईरान तहल उठा है। अमेरिकी सेना ने बीती रात ईरान के सिरिक, खुजस्तान, केशम द्वीप और बंदर अब्बास में मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों में ईरान के 100 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन अमेरिका के इन हमलों से ईरान में एक शादी समारोह का जश्न मातम में बदल गया। जी हां, ईरान का दावा है कि दक्षिण ईरान के सिरिक प्रांत के कुहेस्तात में एक शादी समारोह वाले घर पर अमेरिका ने मिसाइल से हमला कर दिया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को एक क्रूर युद्ध अपराध करार दिया है जिसमें एक बच्चे की भी मौत हुई है। ईरान का एक रिपोर्टर उस जगह को दिखा रहा है जहां अमेरिका का हमला हुआ और शादी का जश्न मातम में तब्दील हो गया। उसने अमेरिकी मिसाइलों के टुकड़े दिखाए और ये दावा किया कि अमेरिका ने IRGC के ठिकानों को नहीं, नागरिकों को निशाना बनाया है। इस दर्दनाक खबर को ईरान के जेन जी एनिमेशन ग्रुप एक्सप्लोजिव मीडिया ने लेगो यानी खास तरह के खिलौनों की मदद से दिखाया है। एनिमेशन में दिखाया गया है कि शादी का जश्न चल रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं और फिर अचानक अंधेरा छा जाता है, जोरदार धमाका होता है और जश्न का माहौल नागरिकों की मौत के बाद मातम में बदल जाता है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उनके निशाने पर केवल ईरान के सैन्य ठिकाने थे और वो नागरिकों को निशाना नहीं बनाते। लेकिन बीनाब स्कूल में 120 बच्चों की मौत और लामेट के स्पोर्ट्स हॉल पर हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमेरिका अब शादी वाले घर को मातम में बदलने का गुनहगार भी ठहराया जा रहा है। ईरान पर हमले की पहली खबर अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने दी। भारत में रात के 10 बजते ही अमेरिका ने होर्मुज और उसके आसपास ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी कर आक्रमण की पुष्टि कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक रात के 12 बजे उसने ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। उसने हमलों की वजह बताई और कहा कि ये होर्मुज में कमर्शियल जहाजों और इस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई है। कुछ ही देर बाद दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, जास और सिरिक में एक के बाद एक कई धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने अलग अलग सूबों में तैनात अधिकारियों के हवाले से बताया कि दक्षिण चाबहार और कोनार्क में 4 मिसाइलें गिरी हैं। इस समय तक ईरान को हमलों से बची तबाही का अंदाजा नहीं था, लेकिन IRGC ने अमेरिका को धमकी देना शुरू कर दिया था। ईरान की न्यूज एजेंसी फास ने बताया कि IRGC प्रवक्ता ने दो टूक कहा है कि नए हमले करने के बाद अमेरिका पछताएगा। उसने दावा किया कि IRGC ने आक्रमणकारी को जवाब देना शुरू कर दिया है और पहली ही कार्रवाई में हमारे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका की हमलावर सेना के 50वें अत्याधुनिक MQ-9 ड्रोन को बार गिराया है। दूसरी तरफ इन हमलों को खुद डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति और सुप्रीम कमांडर की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब अमेरिका हॉर्मुज के पास ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ये हमले बड़े और शक्तिशाली हैं और ये ईरान की उस नाकाम कोशिश का जवाब है जिसमें उसने हॉर्मुज में 22 लगाने की कोशिश की थी। इस समय वहाँ कोई 22 नहीं है, उन्हें या तो पूरी तरह हटा दिया गया है या विस्फोट कर उड़ा दिया गया है। ईरान ने जॉर्डन में हमारे मिलिट्री बेस पर 8 मिसाइलें दागी हैं, जिन सभी को मार गिराया गया है। अगर नाकाम राष्ट्र ईरान इन बेहद जायज हमलों पर पलटवार करता है तो उन पर फिर से ज्यादा कठोर और भीषण प्रहार होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा हमला नहीं होगा क्योंकि वो अभी होने वाला है और जब वो हमला खत्म होगा तब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से किए गए ये हमले बीते कुछ हफ्तों में हुए सबसे गंभीर हमले हैं। इन हमलों के कारण न केवल दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े हैं बल्कि अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता भी कम हुई है। अमेरिका ने ये हमले बिना वजह नहीं किए हैं। दरअसल जुलाई के बाद बीते सोमवार को हॉर्मुज से जा रहे 2 टैंकरों पर हमले हुए। ईरान ने दुनिया को 20% तेल भेजने वाले रास्ते को ऐसे ही हमलों से बंद कर रखा है। ईरान के हमलों के बाद दुनिया भर में तेल के दाम $4 प्रति बैरल बढ़ गए, जिसके बाद कच्चा तेल 5 हफ्तों में सबसे ज्यादा महंगा हो गया। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी और उनका वीडियो भी रिलीज कर दिया। वीडियो में आग उगलती मिसाइल जॉर्डन की ओर बढ़ती दिख रही हैं। हमलों के तुरंत बाद जॉर्डन के मफरक और अकाबा सूबों में अलार्म के सायरन गूंज उठे। अकाबा के आसमान में हो रहे विस्फोट को देखा जा सकता था। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान के हमलों से जॉर्डन में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जॉर्डन पर जब मिसाइलें गिर रही थी तब उनकी चमक इसराइल के एलात से ही दिख रही थी। एलात से लिए गए वीडियो में ईरान की मिसाइल रात के अंधेरे को चीरती दिख रही है। आईआरजीसी ने कहा कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी मरीन बेस पर भारी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। वहीं जॉर्डन की सेना ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 13 बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला किया। 13 में से 10 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि 3 आबादी से दूर खुले इलाके में गिरी। जब ये हमले चल रहे थे तब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में अपने हमलों के समाप्त होने का ऐलान किया। उसने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने ईरान के एयर डिफेंस के ठिकानों, रडार सिस्टम, नावों और जहाजों, माइन बिछाने की क्षमता और संचार ठिकानों को निशाना बनाया। उसकी ये कार्रवाई हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों और अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के हमले का जवाब थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व में तैनात हैं और कमांडर इन चीफ के आदेशों को लागू करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान का हमला जारी था। आईआरजीसी ने जॉर्डन के अलावा बहरीन में भी अमेरिकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का वीडियो जारी किया। यही नहीं, ईरान ने उन देशों को गंभीर नतीजों की चेतावनी दी है जो अमेरिकी हमलों में मदद कर रहे हैं। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाकर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागे हैं, जिनमें से केवल आधे ही जॉर्डन के हवाई क्षेत्र तक पहुंच पाए और उनमें से भी ज्यादातर को रोक दिया गया। लेकिन ईरान का कहना है कि आर पार की लड़ाई होकर ही रहेगी। आज तक ब्यूरो।
8: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। कहा, श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टियों के नामों का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। देश भर के जल संसाधन मंत्रियों से बैठक में प्रधानमंत्री का जल मंत्र। कहा, टीम इंडिया की भावना से करें काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख। कहा, पार्टी की विचारधारा से न करें समझौता, बोले मेरे हाथ पैर टूट जाएं तो भी आरएसएस का सिद्धांत नहीं करूंगा स्वीकार। और ब्रिज की भूमि से उठेगा सबसे बड़ा शोर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े दिग्गजों से सबसे बड़े सवाल। आज दिन भर देखिए पंचायत आज तक मथुरा। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो और वायुसेना के दिग्गज पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ बनाया गया है। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, जिनका चयन 3 सदस्यों की कमेटी की तरफ से हुआ है। इस बड़े फैसले के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में और भी बदलाव हुए हैं।
1: पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जिनके नेतृत्व में वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाया।
2: We have gone 100 kilometers inside the international border, which is Bahawalpur, 75 to 80 kilometers Murid ke, without unnecessary ruffling international feathers.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमांड को लीड करने वाले, महिला पायलटों को आतंक पर वार करने के लिए चुनने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: कमांडर इन चीफ स्क्वाडन लीडर सिंह और स्क्वाडन लीडर शर्मा और एयर मार्शल मिश्रा, आई डोंट लुक एट द जेंडर। लाइक आई सेड, व्हेन यू सेलेक्ट द पायलट्स, इट इज द ट्रेनिंग दैट दे हैव गॉन थ्रू, देयर एक्सपीरियंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर परफॉर्मेंस इन अर्लियर गनरी एक्सरसाइजेस।
1: S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम करने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: They were desperate to find where this S-400, like you asked me, where did you fire it from? The Pakistanis were desperate to find out where they are. They employed all the tricks in the book. I'm very sure they were getting satellite help from other nations. I don't want to use the name of the country. They were using air intelligence. They were using these EW systems to find out, because that was the biggest threat as far as they were concerned. Every time they got airmen, they got shot by an S-400. They had deployed spies within our country, activated their sleeper cell within our country to find out where the S-400 is.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत तत्कालीन वेस्टर्न एयर कमांड का नेतृत्व करते एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा करते हैं।
2: I had just asked him, can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said yes, of course, why not? So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till.
1: Operation Sindoor mein Western Air Command ko lead karne wale Air Marshal Jitendra Mishra isi saal 30 April ko retire hue aur 3 mahine ke andar hi unhe Ram Mandir ke pehle CEO ki zimmedari di gayi. सवाल है कि सेना के एक पूर्व अफसर को इसके लिए क्यों चुना गया, जबकि उनका नाम उन 3 नामों में शामिल नहीं बताया गया जिसमें से एक को जिम्मेदारी मिलने की बात 24 घंटे पहले तक की जा रही थी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को संचालित करने वाला पहला सीईओ कौन होगा, इसे लेकर जिन नामों पर कयास लगाए जा रहे थे उनमें पूर्व आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा, पूर्व आईपीएस राजेश पांडे और बिहार कैडर के आईपीएस डॉक्टर परेश सक्सेना के अलावा आईएएस दिनेश सिंह का नाम शामिल था, लेकिन जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाया गया है।
3: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, और आपको जानकर के सबसे खुशी होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
1: जितेंद्र मिश्रा की छवि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है, इसके लिए उन्हें सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल भी मिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से उनका रिश्ता है, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति में भी उनका यूपी कनेक्शन है। जितेंद्र मिश्रा करीब 40 वर्षों तक वायुसेना में रहे और कई महत्वपूर्ण कमांड संभाली। ऐसे में मंदिर के बढ़ते प्रशासन, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बड़े स्तर के ऑपरेशनल कामकाज के लिए उनका सैन्य प्रशासनिक अनुभव अहम माना जा रहा है।
3: बहुत अच्छा, हमारे इस जो मंदिर के संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो शायद पूरा कर सकेंगे, उनमें सफल नहीं है। नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता सकता है। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ते रहने समय समय के अनुसार कुछ परिवर्तन होता है, आगे बढ़ता रहता है।
1: मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्य भी बनाए गए हैं। ये बदलाव मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के 3 महीने बाद हुआ है। इस मामले में 8 आरोपी जेल में। इसके बाद जुलाई महीने में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना पद छोड़ा। आगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से एक ऐसे सैन्य अफसर को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनकी चर्चा 3 सबसे आगे बताए जा रहे नामों में थी ही नहीं।
2: As far as this dispensation is concerned, there was not a single restriction. It was left to the military to decide. It was left to the military to decide the ways that you fight them.
1: राम मंदिर के पहले सीईओ पद की जिम्मेदारी देश के कैसे बड़े सैन्य अफसर को दी गई है, जिनका करियर बेदाग है, जिनकी इमेज ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है। इस तरह जितेंद्र मिश्रा को ये जिम्मेदारी देकर ये भरोसा देने की कोशिश की गई है कि संदेश ये पहुंचे कि सेना की तरह मंदिर ट्रस्ट में भी अनुशासन भक्तों के भरोसे को बरकरार रखेगा।
0: अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले के बाद इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार सवाल करते आए हैं। 5 से 6 महीने में यूपी में चुनाव होने हैं और उससे पहले योगी और अखिलेश दोनों ही इस मामले पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्रस्ट के नए सीईओ बनाए जाने पर पूछा है कि क्या नई चीज होने से पुरानी भूल जाएंगे।
1: श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी रहे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में करीब 40 साल सेवा दी। 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव उन्हें। करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 पर लेजर गाइडेड बमों को ऑपरेशनल बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हो रहा विवाद भी क्या थम जाएगा? अखिलेश यादव के सियासी सवाल को देख कर ये बात सामने आती।
4: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है। कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
1: राम मंदिर से दूरी रखने वाले अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मामले पर पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबकी आस्था से जुड़ा ये मुद्दा उन्हें 2027 में फायदा पहुंचा सकता है, बीजेपी की उस वोट बैंक में सेंध लगा सकता है जो अब तक उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बीच की सबसे बड़ी दीवार।
5: नई चीज होने से हम और आप पुरानी चीज भूल जाएंगे क्या? हमें कोई शिकायत किसी से नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से, लेकिन जो राम धन के साथ हुआ, चंदा जिस तरीके से वहां से गायब हुआ, या चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई, आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया, अगर आपने बड़े लोगों को क्लीन चिट दिया है तो उनको क्यों जेल भेजा, उन्हें भी बाहर करो।
1: जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, तब अखिलेश का हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को चुनौती देना बीजेपी को रास नहीं आ रहा, और इसीलिए वो इसकी काट के तौर पर जनता को समाजवादी सरकारों में हिंदुओं से कथित भेदभाव की याद दिलाती।
6: आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी की कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।
1: चुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव सेट करने में जुटी, तो मुख्यमंत्री एक बार फिर अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा लगाने में जुट गए।
6: अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी।
1: बीजेपी की पूरी सियासी यात्रा में राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दे का अहम रोल रहा है, इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की घटना को समाजवादी पार्टी ने लपका, तो योगी आदित्यनाथ पहले कब्रिस्तान की चार दीवारी वाला मुद्दा उठाने से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे वाला 23 साल पुराना प्रकरण तक याद दिलाया।
6: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: इस तरह योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहते। SIT जांच करवाने का ऐलान करते हुए उन्होंने दोषियों को सजा दिए जाने की बात कही, तो वही विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि राम मंदिर के खिलाफ रहे लोग अब आस्था की बात करने लगे।
6: हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: भगवा वेश में रहने वाले और गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व का चेहरा है। इसके अलावा उनके बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश के बाहर भी चर्चा होती। इस तरह योगी अपने विनिंग फॉर्मूले से पीछे हटने के मूड में नहीं।
0: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज और कल मथुरा और वृंदावन में रहेंगे। जन्माष्टमी के दिन उनका श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। CM की ओर से मथुरा वृंदावन के लिए करीब 1051 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रस्तावित है और इन सबके बीच चर्चा इस बात की भी है कि क्या पश्चिमी यूपी में जो बढ़त समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हासिल करती है, क्या उसी के लिए कृष्ण जन्मभूमि वाला दाव मुख्यमंत्री चलते हैं।
1: बुलडोजर एनकाउंटर, सैफई से रामपुर तक यानी अखिलेश यादव से आजम खान तक पर वार और वृंदावन बिहारी लाल का नाम लगातार लेते हुए क्या 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का सियासी चतुर्भुज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है।
6: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
7: हर दिन राधे राधे कहते
6: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे।
8: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा।

0: मदन बिहारी लाल के।
1: अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव सवाल चंदा चोरी पर करते हैं। सनातन के अपमान के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव घेरे जाते हैं तो फिर इटावा के केदारेश्वर मंदिर निर्माण की याद दिलाते हैं। और तब क्या समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट पर घेरने के लिए अब योगी आदित्यनाथ लगातार वृंदावन बिहारी लाल का नाम भाषणों में ले रहे हैं।
0: वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांस्कृतिक नैरेटिव में मथुरा की चर्चा तेज है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद क्या बीजेपी का अगला बड़ा फोकस मथुरा है? सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के हाल के भाषणों पर गौर करने पर श्री राम के साथ श्री कृष्ण का नाम लेकर वो जय कराते हैं।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के, सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: सिद्धार्थ नगर हो या आजमगढ़, इटावा हो या आगरा हो, हर सभा में वृंदावन बिहारी लाल की जय मुख्यमंत्री करा रहे हैं।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: अयोध्या से बीजेपी को घेरते अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घिरेंगे? ये सवाल पहले से उठता आ रहा है।
2: तो बारी इसी ब्रजभूमि की है, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव गोवर्धन बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं।
1: 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ परिवार का नारा रहा अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और तब अब की बारी बांके बिहारी कहते मुख्यमंत्री ये चैलेंज सीधे अखिलेश यादव को देते आए कि राम जन्मभूमि पर आस्था के अपमान की बात करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष क्या कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलेंगे?
3: अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपकी झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है।
1: इसके जवाब में अब तक अखिलेश यादव ने यूं तो सिर्फ राधे राधे कहा है।
4: हमारे घर के पास वो बहुत है वो, और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
1: राधे राधे की बात तो अखिलेश यादव 4 साल पहले भी कहते दिखे जब चुनाव 2022 का आया।
4: भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं।
1: अखिलेश यादव ये तक कहते आए कि भगवान उनको सपने में आकर पहले ही सरकार बन जाने की बात कह चुके हैं।
5: आप हमारे सपने में आए थे भगवान, कृष्ण कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा।
1: लेकिन अखिलेश के सपने की वो बात तो सच हुई नहीं, तो क्या 2027 में भी कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है?
6: अयोध्या धाम अब तीनों का हो गया है तो यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाए तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़े। मैं बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदुवंशी कहेंगे लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है।
1: योगी आदित्यनाथ तब लगातार कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सवाल करते आ रहे हैं जब अयोध्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव सवाल करते हैं।
5: श्रद्धा और आस्था उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब यह कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है।
7: और
5: कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
1: अयोध्या पर बोलते अखिलेश, कृष्ण जन्म भूमि पर योगी आदित्यनाथ का चैलेंज मंजूर नहीं करते, और क्या इसीलिए योगी आदित्यनाथ के भाषण से लेकर चुनावी रणनीति तक में श्री कृष्ण का नाम बढ़ रहा है।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
8: योगी आदित्यनाथ जी भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म में उनकी आस्था है, इसलिए अपने संबोधन के पूर्व प्रभु राम और प्रभु कृष्ण का नाम लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो वामी हैं, जो कांगी हैं, जो सपाई हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है।
9: जब मुख्यमंत्री जी मथुरा का नाम लेते हैं तो वो शिक्षा का नाम नहीं लेना चाहते, शिक्षा व्यवस्था का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री जी किसी कम्युनल पोलराइज इशू की बात करना चाहते हैं तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करना चाहते हैं। वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है।
10: जिस तरह से अमेरिका ने फिर से ईरान पर भीषण हमले किए, ईरान भी अब चुप बैठने वालों में नहीं है, क्योंकि अमेरिकी हमलों में ईरान के 19 लोगों की मौत हो गई है जबकि 70 के करीब लोग घायल हो गए हैं। अमेरिका ने दावा यह किया है कि उसने ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने एक शादी समारोह पर बमबारी की जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है।
11: अमेरिका ने ईरान पर फिर से शुरू किए हमले। ईरान के 100 ठिकानों पर हमले, अब भड़केगा महायुद्ध। 19 की मौत, 68 घायल, ईरान में शादी समारोह पर गिरा बम। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दी ईरान को मिटा देने की धमकी। ईरान का पलटवार, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर बमबारी। अमेरिकी हमलों से एक बार फिर ईरान तहल उठा है। अमेरिकी सेना ने बीती रात ईरान के सिरिक, खुजस्तान, केशम द्वीप और बंदर अब्बास में मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों में ईरान के 100 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन अमेरिका के इन हमलों से ईरान में एक शादी समारोह का जश्न मातम में बदल गया। जी हां, ईरान का दावा है कि दक्षिण ईरान के सिरिक प्रांत के कुहेस्तात में एक शादी समारोह वाले घर पर अमेरिका ने मिसाइल से हमला कर दिया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को एक क्रूर युद्ध अपराध करार दिया है जिसमें एक बच्चे की भी मौत हुई है। ईरान का एक रिपोर्टर उस जगह को दिखा रहा है जहां अमेरिका का हमला हुआ और शादी का जश्न मातम में तब्दील हो गया। उसने अमेरिकी मिसाइलों के टुकड़े दिखाए और ये दावा किया कि अमेरिका ने IRGC के ठिकानों को नहीं, नागरिकों को निशाना बनाया है। इस दर्दनाक खबर को ईरान के जेन जी एनिमेशन ग्रुप एक्सप्लोजिव मीडिया ने लेगो यानी खास तरह के खिलौनों की मदद से दिखाया है। एनिमेशन में दिखाया गया है कि शादी का जश्न चल रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं और फिर अचानक अंधेरा छा जाता है, जोरदार धमाका होता है और जश्न का माहौल नागरिकों की मौत के बाद मातम में बदल जाता है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उनके निशाने पर केवल ईरान के सैन्य ठिकाने थे और वो नागरिकों को निशाना नहीं बनाते। लेकिन बीनाब स्कूल में 120 बच्चों की मौत और लामेद के स्पोर्ट्स हॉल पर हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमेरिका अब शादी वाले घर को मातम में बदलने का गुनहगार भी ठहराया जा रहा है। ईरान पर हमले की पहली खबर अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने दी। भारत में रात के 10 बजते ही अमेरिका ने होर्मुज और उसके आसपास ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी कर आक्रमण की पुष्टि कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक रात के 12 बजे उसने ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। उसने हमलों की वजह बताई और कहा कि ये होर्मुज में कमर्शियल जहाजों और इस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई है। कुछ ही देर बाद दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, जास और सिरिक में एक के बाद एक कई धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने अलग अलग सूबों में तैनात अधिकारियों के हवाले से बताया कि दक्षिण चाबहार और कोनार्क में 4 मिसाइलें गिरी हैं। इस समय तक ईरान को हमलों से बची तबाही का अंदाजा नहीं था, लेकिन IRGC ने अमेरिका को धमकी देना शुरू कर दिया था। ईरान की न्यूज एजेंसी फास ने बताया कि IRGC प्रवक्ता ने दो टूक कहा है कि नए हमले करने के बाद अमेरिका पछताएगा। उसने दावा किया कि IRGC ने आक्रमणकारी को जवाब देना शुरू कर दिया है और पहली ही कार्रवाई में हमारे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका की हमलावर सेना के 50वें अत्याधुनिक MQ-9 ड्रोन को बार गिराया है। दूसरी तरफ इन हमलों को खुद डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति और सुप्रीम कमांडर की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब अमेरिका होर्मुज के पास ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ये हमले बड़े और शक्तिशाली हैं और ये ईरान की उस नाकाम कोशिश का जवाब है जिसमें उसने होर्मुज में 22 लगाने की कोशिश की थी। इस समय वहाँ कोई 22 नहीं है, उन्हें या तो पूरी तरह हटा दिया गया है या विस्फोट कर उड़ा दिया गया है। ईरान ने जॉर्डन में हमारे मिलिट्री बेस पर 8 मिसाइलें दागी हैं, जिन सभी को बार गिराया गया है। अगर नाकाम राष्ट्र ईरान इन बेहद जायज हमलों पर पलटवार करता है तो उन पर फिर से ज्यादा कठोर और भीषण प्रहार होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा हमला नहीं होगा क्योंकि वो अभी होने वाला है और जब वो हमला खत्म होगा तब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से किए गए ये हमले बीते कुछ हफ्तों में हुए सबसे गंभीर हमले हैं। इन हमलों के कारण न केवल दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े हैं बल्कि अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता भी कम हुई है। अमेरिका ने ये हमले बिना वजह नहीं किए हैं। दरअसल जुलाई के बाद बीते सोमवार को होर्मुज से जा रहे 2 टैंकरों पर हमले हुए। ईरान ने दुनिया को 20% तेल भेजने वाले रास्ते को ऐसे ही हमलों से बंद कर रखा है। ईरान के हमलों के बाद दुनिया भर में तेल के दाम $4 प्रति बैरल बढ़ गए, जिसके बाद कच्चा तेल 5 हफ्तों में सबसे ज्यादा महंगा हो गया। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी और उनका वीडियो भी रिलीज कर दिया। वीडियो में आग उगलती मिसाइल जॉर्डन की ओर बढ़ती दिख रही है। हमलों के तुरंत बाद जॉर्डन के मफरक और अकाबा सूबों में अलार्म के सायरन गूंज उठे। अकाबा के आसमान में हो रहे विस्फोट को देखा जा सकता था। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान के हमलों से जॉर्डन में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जॉर्डन पर जब मिसाइलें गिर रही थी तब उनकी चमक इसराइल के एलात से ही दिख रही थी। एलात से लिए गए वीडियो में ईरान की मिसाइल रात के अंधेरे को चीरती दिख रही है। IRGC ने कहा कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी मरीन बेस पर भारी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। वहीं जॉर्डन की सेना ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 13 बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला किया। 13 में से 10 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि 3 आबादी से दूर खुले इलाके में गिरी। जब ये हमले चल रहे थे तब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में अपने हमलों के समाप्त होने का ऐलान किया। उसने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने ईरान के एयर डिफेंस के ठिकानों, रडार सिस्टम, नावों और जहाजों, माइन बिछाने की क्षमता और संचार ठिकानों को निशाना बनाया। उसकी ये कार्रवाई हुर्मुज से गुजर रहे जहाजों और अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के हमले का जवाब थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व में तैनात हैं और कमांडर इन चीफ के आदेशों को लागू करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान का हमला जारी था। आईआरजीसी ने जॉर्डन के अलावा बहरीन में भी अमेरिकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का वीडियो जारी किया। यही नहीं, ईरान ने उन देशों को गंभीर नतीजों की चेतावनी दी है जो अमेरिकी हमलों में मदद कर रहे हैं। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाकर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागे हैं, जिनमें से केवल आधे ही जॉर्डन के हवाई क्षेत्र तक पहुंच पाए और उनमें से भी ज्यादातर को रोक दिया गया। लेकिन ईरान का कहना है कि आर पार की लड़ाई होकर ही रहेगी। आज तक ब्यूरो।
10: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। कहा श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टियों के नामों का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। देशभर के जल संसाधन मंत्रियों से बैठक में प्रधानमंत्री का जल मंत्र। कहा टीम इंडिया की भावना से करें काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख। कहा पार्टी की विचारधारा से न करें समझौता, बोले मेरे हाथ पैर टूट जाएं तो भी आरएसएस का सिद्धांत नहीं करूंगा स्वीकार। और ब्रिज की भूमि से उठेगा सबसे बड़ा शोर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े दिग्गजों से सबसे बड़े सवाल। आज दिन भर देखिए पंचायत आज तक मथुरा। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो और वायुसेना के दिग्गज पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ बनाया गया है। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, जिनका चयन 3 सदस्यों की कमेटी की तरफ से हुआ है। इस बड़े फैसले के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में और भी बदलाव हुए हैं।
1: पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जिनके नेतृत्व में वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाया।
2: We have gone 100 kilometers inside the international border, which is Bahawalpur, 75 to 80 kilometers Murid ke, without unnecessary ruffling international feathers.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमान को लीड करने वाले, महिला पायलटों को आतंक पर वार करने के लिए चुनने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: As the commander in chief, squadron leader Singh or squadron leader Sharma or air marshal Mishra, I don't look at the gender.
3: Right.
2: Like I said, when you select the pilots, it is the training that they have gone through, their experience, and most importantly, their performance in earlier gunnery exercises.
1: S-400 ko nishana banane ki Pakistani chaal ko nakam karne wale purv air marshal Jitendra Mishra.
2: They were desperate to find where this S-400, like you asked me, where did you fire it from? The Pakistanis were desperate to find out where they are. They employed all the tricks in the book. I'm very sure they were getting satellite help from other nations. I don't want to use the name of the country. They were using air intelligence. They were using these EW systems to find out, because that was the biggest threat as far as they were concerned. Every time they got airmen, they got shot by an S-400. They had deployed spies within our country, activated their sleeper cell within our country to find out where the S-400 is.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत तत्कालीन वेस्टर्न एयर कमांड का नेतृत्व करते एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा करते हैं।
2: I had just asked him, can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said yes, of course, why not? So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till now.
1: ऑपरेशन सिंदूर में वेस्टर्न एयर कमांड को लीड करने वाले एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा इसी साल 30 अप्रैल को रिटायर हुए और 3 महीने के अंदर ही उन्हें राम मंदिर के पहले सीईओ की जिम्मेदारी दी गई। सवाल है कि सेना के एक पूर्व अफसर को इसके लिए क्यों चुना गया, जबकि उनका नाम उन 3 नामों में शामिल नहीं बताया गया जिसमें से एक को जिम्मेदारी मिलने की बात 24 घंटे पहले तक की जा रही थी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को संचालित करने वाला पहला सीईओ कौन होगा, इसे लेकर जिन नामों पर कयास लगाए जा रहे थे उनमें पूर्व आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा, पूर्व आईपीएस राजेश पांडे और बिहार कैडर के आईपीएस डॉक्टर परेश सक्सेना के अलावा आईएएस दिनेश सिंह का नाम शामिल था, लेकिन जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाया गया है।
4: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, और आपको जानकर के सबसे खुशी होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
1: जितेंद्र मिश्रा की छवि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है, इसके लिए उन्हें सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल भी मिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से उनका रिश्ता है, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति में भी उनका यूपी कनेक्शन है। जितेंद्र मिश्रा करीब 40 वर्षों तक वायुसेना में रहे और कई महत्वपूर्ण कमांड संभाली। ऐसे में मंदिर के बढ़ते प्रशासन, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बड़े स्तर के ऑपरेशनल कामकाज के लिए उनका सैन्य प्रशासनिक अनुभव अहम माना जा रहा है।
4: बहुत अच्छा, हमारे इस जो मंदिर के संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो शायद पूरा कर सकेंगे, उनमें सफल नहीं है। नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता सकता है। किसी भी चीज को आगे बढ़ते रहने के समय समय के अनुसार मुझे परिवर्तन होता है, आगे बढ़ता रहता है।
1: मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्य भी बनाए गए हैं। ये बदलाव मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के 3 महीने बाद हुआ है। इस मामले में 8 आरोपी जेल में है। इसके बाद जुलाई महीने में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना पद छोड़ा। आगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से एक ऐसे सैन्य अफसर को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनकी चर्चा 3 सबसे आगे बताए जा रहे नामों में थी ही नहीं।
2: As far as this dispensation is concerned, there was not a single restriction. It was left to the military to decide. It was left to the military to decide the ways that you fight them.
1: राम मंदिर के पहले सीईओ पद की जिम्मेदारी देश के कैसे बड़े सैन्य अफसर को दी गई है, जिनका करियर बेदाग है, जिनकी इमेज ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है। इस तरह जितेंद्र मिश्रा को ये जिम्मेदारी देकर ये भरोसा देने की कोशिश की गई है कि संदेश ये पहुंचे कि सेना की तरह मंदिर ट्रस्ट में भी अनुशासन भक्तों के भरोसे को बरकरार रखेगा।
0: अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले के बाद इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार सवाल करते आए हैं। 5 से 6 महीने में यूपी में चुनाव होने हैं और उससे पहले योगी और अखिलेश दोनों ही इस मामले पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्रस्ट के नए सीईओ बनाए जाने पर पूछा है कि क्या नई चीज होने से पुरानी भूल जाएंगे।
1: श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी रहे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में करीब 40 साल सेवा दी। 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव उन्हें। करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 पर लेजर गाइडेड बमों को ऑपरेशनल बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हो रहा विवाद भी क्या थम जाएगा? अखिलेश यादव के सियासी सवाल को देखकर ये बात सामने आती है।
3: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है।
5: और
3: कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर में।
1: राम मंदिर से दूरी रखने वाले अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मामले पर पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबकी आस्था से जुड़ा ये मुद्दा उन्हें 2027 में फायदा पहुंचा सकता है, बीजेपी की उस वोट बैंक में सेंध लगा सकता है जो अब तक उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बीच की सबसे बड़ी दीवार।
6: नई चीज होने से हम और आप पुरानी चीज भूल जाएंगे क्या? हमें कोई शिकायत किसी से नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से, लेकिन जो राम धन के साथ हुआ, चंदा जिस तरीके से वहां से गायब हुआ, या चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई, आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया, अगर आपने बड़े लोगों को क्लीन चिट दिया है तो उनको क्यों जेल भेजा, उन्हें भी बाहर करो।
1: जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, तब अखिलेश का हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को चुनौती देना बीजेपी को रास नहीं आ रहा, और इसीलिए वो इसकी काट के तौर पर जनता को समाजवादी सरकारों में हिंदुओं से कथित भेदभाव की याद दिलाती है।
7: आपका एक वोट, आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी की कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।
1: चुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव सेट करने में जुटी, तो मुख्यमंत्री एक बार फिर अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा लगाने में जुट गए हैं।

0: समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी।
1: बीजेपी की पूरी सियासी यात्रा में राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दे का अहम रोल रहा है, इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की घटना को समाजवादी पार्टी ने लपका तो योगी आदित्यनाथ पहले कब्रिस्तान की चार दीवारी वाला मुद्दा उठाने से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे वाला 23 साल पुराना प्रकरण तक याद दिलाया।
0: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: इस तरह योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहते। SIT जांच करवाने का ऐलान करते हुए उन्होंने दोषियों को सजा दिए जाने की बात कही, तो वही विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि राम मंदिर के खिलाफ रहे लोग अब आस्था की बात करने लगे।
0: हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: भगवा वेश में रहने वाले और गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व का चेहरा है। इसके अलावा उनके बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश के बाहर भी चर्चा होती है। इस तरह योगी अपने विनिंग फॉर्मूले से पीछे हटने के मूड में नहीं।
2: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज और कल मथुरा और वृंदावन में रहेंगे। जन्माष्टमी के दिन उनका श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। CM की ओर से मथुरा वृंदावन के लिए करीब 1051 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रस्तावित है और इन सबके बीच चर्चा इस बात की भी है कि क्या पश्चिमी यूपी में जो बढ़त समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हासिल करती है, क्या उसी के लिए कृष्ण जन्मभूमि वाला दांव मुख्यमंत्री चलते हैं।
1: बुलडोजर एनकाउंटर सैफई से रामपुर तक, यानी अखिलेश यादव से आजम खान तक पर वार और वृंदावन बिहारी लाल का नाम लगातार लेते हुए क्या 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का सियासी चतुर्भुज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है।
0: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
3: हर दिन राधे राधे कहते हैं,
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे।
4: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा।

0: अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव सवाल चंदा चोरी पर करते हैं। सनातन के अपमान के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव घेरे जाते हैं तो फिर इटावा के केदारेश्वर मंदिर निर्माण की याद दिलाते हैं। और तब क्या समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट पर घेरने के लिए अब योगी आदित्यनाथ लगातार वृंदावन बिहारी लाल का नाम भाषणों में ले रहे हैं।
1: वृंदावन बिहारी लाल के
0: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांस्कृतिक नैरेटिव में मथुरा की चर्चा तेज है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद क्या बीजेपी का अगला बड़ा फोकस मथुरा है? सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के हाल के भाषणों पर गौर करने पर श्री राम के साथ श्री कृष्ण का नाम लेकर वो जय कराते हैं।
1: सियावर रामचंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान के वृंदावन बिहारी लाल के।
0: सिद्धार्थ नगर हो या आजमगढ़, इटावा हो या आगरा हो, हर सभा में वृंदावन बिहारी लाल की जय मुख्यमंत्री करा रहे हैं।
1: सियावर रामचंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान के वृंदावन बिहारी लाल के।
0: अयोध्या से बीजेपी को घेरते अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घिरेंगे? ये सवाल पहले से उठता आ रहा है।
2: तो बारी इसी ब्रज भूमि की है, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव।

0: गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं।
1: 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ परिवार का नारा रहा, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और तब अब की बारी बांके बिहारी कहते मुख्यमंत्री ये चैलेंज सीधे अखिलेश यादव को देते आए कि राम जन्मभूमि पर आस्था के अपमान की बात करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष क्या कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलेंगे।
2: अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है।
1: इसके जवाब में अब तक अखिलेश यादव ने यूं तो सिर्फ राधे राधे कहा है।
3: हमारे घर के पास वो बहुत है वो, और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
1: राधे राधे की बात तो अखिलेश यादव 4 साल पहले भी कहते दिखे जब चुनाव 2022 का आया।
3: भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं।
1: अखिलेश यादव ये तक कहते आए कि भगवान उनको सपने में आकर पहले ही सरकार बन जाने की बात कह चुके हैं।
4: हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा।
1: लेकिन अखिलेश के सपने की वो बात तो सच हुई नहीं, तो क्या 2027 में भी कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है?
5: अयोध्या धाम अब तीनों का हो गया है तो यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाए तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़े। मैं बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदुवंशी कहेंगे लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है।
1: योगी आदित्यनाथ तब लगातार कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सवाल करते आ रहे हैं जब अयोध्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव सवाल करते हैं।
3: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है।
6: और
3: कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे गरीब, भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
1: अयोध्या पर बोलते अखिलेश, कृष्ण जन्मभूमि पर योगी आदित्यनाथ का चैलेंज मंजूर नहीं करते, और क्या इसीलिए योगी आदित्यनाथ के भाषण से लेकर चुनावी रणनीति तक में श्री कृष्ण का नाम बढ़ रहा है?
7: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
8: योगी आदित्यनाथ जी भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म में उनकी आस्था है, इसलिए अपने संबोधन के पूर्व प्रभु राम और प्रभु कृष्ण का नाम लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो वामी हैं, जो कांगी हैं, जो सपाई हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है।
9: जब मुख्यमंत्री जी मथुरा का नाम लेते हैं तो वो शिक्षा का नाम नहीं लेना चाहते, शिक्षा व्यवस्था का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं लेना चाहते हैं, जब मुख्यमंत्री जी किसी कम्युनल पोलराइज इशू की बात करना चाहते हैं तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करना चाहते हैं। वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो उसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है।
6: जिस तरह से अमेरिका ने फिर से ईरान पर भीषण हमले किए, ईरान भी अब चुप बैठने वालों में नहीं है, क्योंकि अमेरिकी हमलों में ईरान के 19 लोगों की मौत हो गई है जबकि 70 के करीब लोग घायल हो गए हैं। अमेरिका ने दावा यह किया है कि उसने ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने एक शादी समारोह पर बमबारी की जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है।
10: अमेरिका ने ईरान पर फिर से शुरू किए हमले। ईरान के 100 ठिकानों पर हमले, अब भड़केगा महायुद्ध। उन्नीस की मौत, 68 घायल, ईरान में शादी समारोह पर गिरा बम। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दी ईरान को मिटा देने की धमकी। ईरान का पलटवार, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर बमबारी। अमेरिकी हमलों से एक बार फिर ईरान दहल उठा है। अमेरिकी सेना ने बीती रात ईरान के सिरिक, खुजस्तान, केशम द्वीप और बंदर अब्बास में मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों में ईरान के 100 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन अमेरिका के इन हमलों से ईरान में एक शादी समारोह का जश्न मातम में बदल गया। जी हां, ईरान का दावा है कि दक्षिण ईरान के सिरिक प्रांत के कुहेस्तात में एक शादी समारोह वाले घर पर अमेरिका ने मिसाइल से हमला कर दिया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को एक क्रूर युद्ध अपराध करार दिया है जिसमें एक बच्चे की भी मौत हुई है। ईरान का एक रिपोर्टर उस जगह को दिखा रहा है जहां अमेरिका का हमला हुआ और शादी का जश्न मातम में तब्दील हो गया। उसने अमेरिकी मिसाइलों के टुकड़े दिखाए और ये दावा किया कि अमेरिका ने IRGC के ठिकानों को नहीं, नागरिकों को निशाना बनाया है। इस दर्दनाक खबर को ईरान के जेन जी एनिमेशन ग्रुप एक्सप्लोजिव मीडिया ने लेगो यानी खास तरह के खिलौनों की मदद से दिखाया है। एनिमेशन में दिखाया गया है कि शादी का जश्न चल रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं और फिर अचानक अंधेरा छा जाता है, जोरदार धमाका होता है और जश्न का माहौल नागरिकों की मौत के बाद मातम में बदल जाता है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उनके निशाने पर केवल ईरान के सैन्य ठिकाने थे और वो नागरिकों को निशाना नहीं बनाते। लेकिन बीनाब स्कूल में 120 बच्चों की मौत और लामेद के स्पोर्ट्स हॉल पर हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमेरिका अब शादी वाले घर को मातम में बदलने का गुनहगार भी ठहराया जा रहा है। ईरान पर हमले की पहली खबर अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने दी। भारत में रात के 10 बजते ही अमेरिका ने होर्मुज और उसके आसपास ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी कर आक्रमण की पुष्टि कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक रात के 12 बजे उसने ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। उसने हमलों की वजह बताई और कहा कि ये होर्मुज में कमर्शियल जहाजों और इस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई है। कुछ ही देर बाद दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, जास और सिरिक में एक के बाद एक कई धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने अलग अलग सूबों में तैनात अधिकारियों के हवाले से बताया कि दक्षिण चाबहार और कोनाक में 4 मिसाइलें गिरी हैं। इस समय तक ईरान को हमलों से बची तबाही का अंदाजा नहीं था, लेकिन IRGC ने अमेरिका को धमकी देना शुरू कर दिया था। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स ने बताया कि IRGC प्रवक्ता ने दो टूक कहा है कि नए हमले करने के बाद अमेरिका पछताएगा। उसने दावा किया कि आईआरजीसी ने आक्रमणकारी को जवाब देना शुरू कर दिया है और पहली ही कार्रवाई में हमारे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका की हमलावर सेना के 50वें अत्याधुनिक MQ-9 ड्रोन को बाद गिराया है। दूसरी तरफ इन हमलों को खुद डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति और सुप्रीम कमांडर की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब अमेरिका हॉर्मुज के पास ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ये हमले बड़े और शक्तिशाली हैं और ये ईरान की उस नाकाम कोशिश का जवाब है जिसमें उसने हॉर्मुज में बाइस लगाने की कोशिश की थी। इस समय वहाँ कोई बाइस नहीं है, उन्हें या तो पूरी तरह हटा दिया गया है या विस्फोट कर उड़ा दिया गया है। ईरान ने जॉर्डन में हमारे मिलिट्री बेस पर 8 मिसाइलें दागी हैं, जिन सभी को बार गिराया गया है। अगर नाकाम राष्ट्र ईरान इन बेहद जायज हमलों पर पलटवार करता है तो उन पर फिर से ज्यादा कठोर और भीषण प्रहार होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा हमला नहीं होगा क्योंकि वो अभी होने वाला है और जब वो हमला खत्म होगा तब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से किए गए ये हमले बीते कुछ हफ्तों में हुए सबसे गंभीर हमले हैं। इन हमलों के कारण न केवल दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े हैं बल्कि अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता भी कम हुई है। अमेरिका ने ये हमले बिना वजह नहीं किए हैं। दरअसल जुलाई के बाद बीते सोमवार को हॉर्मुज से जा रहे 2 टैंकरों पर हमले हुए। ईरान ने दुनिया को 20% तेल भेजने वाले रास्ते को ऐसे ही हमलों से बंद कर रखा है। ईरान के हमलों के बाद दुनिया भर में तेल के दाम $4 प्रति बैरल बढ़ गए, जिसके बाद कच्चा तेल 5 हफ्तों में सबसे ज्यादा महंगा हो गया। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी और उनका वीडियो भी रिलीज कर दिया। वीडियो में आग उगलती मिसाइल जॉर्डन की ओर बढ़ती दिख रही है। हमलों के तुरंत बाद जॉर्डन के मफरक और अकाबा सूबों में अलार्म के सायरन गूंज उठे। अकाबा के आसमान में हो रहे विस्फोट को देखा जा सकता था। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान के हमलों से जॉर्डन में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जॉर्डन पर जब मिसाइलें गिर रही थी तब उनकी चमक इसराइल के एलात से ही दिख रही थी। एलात से लिए गए वीडियो में ईरान की मिसाइल रात के अंधेरे को चीरती दिख रही है। आईआरजीसी ने कहा कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी मरीन बेस पर भारी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। वहीं जॉर्डन की सेना ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 13 बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला किया। 13 में से 10 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि 3 आबादी से दूर खुले इलाके में गिरी। जब ये हमले चल रहे थे तब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में अपने हमलों के समाप्त होने का ऐलान किया। उसने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने ईरान के एयर डिफेंस के ठिकानों, रडार सिस्टम, नावों और जहाजों, माइन बिछाने की क्षमता और संचार ठिकानों को निशाना बनाया। उसकी ये कार्रवाई हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों और अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के हमले का जवाब थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व में तैनात हैं और कमांडर इन चीफ के आदेशों को लागू करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान का हमला जारी था। आईआरजीसी ने जॉर्डन के अलावा बहरीन में भी अमेरिकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का वीडियो जारी किया। यही नहीं, ईरान ने उन देशों को गंभीर नतीजों की चेतावनी दी है जो अमेरिकी हमलों में मदद कर रहे हैं। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाकर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागे हैं, जिनमें से केवल आधे ही जॉर्डन के हवाई क्षेत्र तक पहुंच पाए और उनमें से भी ज्यादातर को रोक दिया गया। लेकिन ईरान का कहना है कि आर पार की लड़ाई होकर ही रहेगी। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। कहा श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टियों के नामों का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। देश भर के जल संसाधन मंत्रियों से बैठक में प्रधानमंत्री का जल मंत्र। कहा टीम इंडिया की भावना से करें काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख। कहा पार्टी की विचारधारा से न करें समझौता, बोले मेरे हाथ पैर टूट जाएं तो भी आरएसएस का सिद्धांत नहीं करूंगा स्वीकार। और ब्रिज की भूमि से उठेगा सबसे बड़ा शोर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े दिग्गजों से सबसे बड़े सवाल। आज दिन भर देखिए पंचायत आज तक मथुरा। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो और वायुसेना के दिग्गज पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ बनाया गया है। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, जिनका चयन 3 सदस्यों की कमेटी की तरफ से हुआ है। इस बड़े फैसले के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में और भी बदलाव हुए हैं।
1: पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जिनके नेतृत्व में वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाया।
2: We have gone 100 kilometers inside the international border, which is Bahawalpur, 75 to 80 kilometers Muridke, without unnecessary ruffling international feathers.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमांड को लीड करने वाले, महिला पायलटों को आतंक पर वार करने के लिए चुनने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: कमांडर इन चीफ स्क्वाडन लीडर सिंह और स्क्वाडन लीडर शर्मा और एयर मार्शल मिश्रा, आई डोंट लुक एट द जेंडर। लाइक आई सेड, व्हेन यू सेलेक्ट द पायलट्स, इट इज द ट्रेनिंग दैट दे हैव गॉन थ्रू, देयर एक्सपीरियंस एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली देयर परफॉर्मेंस इन अर्लियर गनरी एक्सरसाइजेस।
1: S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल को नाकाम करने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: They were desperate to find where this S-400, like you asked me, where did you fire it from? The Pakistanis were desperate to find out where they are. They employed all the tricks in the book. I'm very sure they were getting satellite help from other nations. I don't want to use the name of the country. They were using air intelligence. They were using these EW systems to find out, because that was the biggest threat as far as they were concerned. Every time they got airmen, they got shot by an S-400. They had deployed spies within our country, activated their sleeper cell within our country to find out where the S-400 is.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत तत्कालीन वेस्टर्न एयर कमांड का नेतृत्व करते एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा करते हैं।
2: I had just asked him के can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said yes, of course, why not? So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till.
1: Operation Sindoor mein Western Air Command ko lead karne wale Air Marshal Jitendra Mishra isi saal 30 April ko retire hue aur 3 mahine ke andar hi unhe Ram Mandir ke pehle CEO ki zimmedari di gayi. सवाल है कि सेना के एक पूर्व अफसर को इसके लिए क्यों चुना गया, जबकि उनका नाम उन 3 नामों में शामिल नहीं बताया गया जिसमें से एक को ये जिम्मेदारी मिलने की बात 24 घंटे पहले तक की जा रही थी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को संचालित करने वाला पहला सीईओ कौन होगा, इसे लेकर जिन नामों पर कयास लगाए जा रहे थे उनमें पूर्व IAS योगेश्वर राम मिश्रा, पूर्व IPS राजेश पांडे और बिहार कैडर के IPS डॉक्टर परेश सक्सेना के अलावा IAS दिनेश सिंह का नाम शामिल था, लेकिन जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाया गया है।
3: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, और आपको जानकर के सबसे खुशी होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
1: जितेंद्र मिश्रा की छवि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है, इसके लिए उन्हें सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल भी मिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से उनका रिश्ता है, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति में भी उनका यूपी कनेक्शन है। जितेंद्र मिश्रा करीब 40 वर्षों तक वायुसेना में रहे और कई महत्वपूर्ण कमांड संभाली। ऐसे में मंदिर के बढ़ते प्रशासन, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बड़े स्तर के ऑपरेशनल कामकाज के लिए उनका सैन्य प्रशासनिक अनुभव अहम माना जा रहा है।
3: बहुत अच्छा, हमारे इस जो मंदिर के संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो शायद पूरा कर सकेंगे, उनमें सफल होंगे। नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता सकता है। किसी भी चीज को आगे बढ़ते रहने समय समय के अनुसार मुझे परिवर्तन होता है, आगे बढ़ता रहता है।
1: मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्य भी बनाए गए हैं। ये बदलाव मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के 3 महीने बाद हुआ है। इस मामले में 8 आरोपी जेल में है। इसके बाद जुलाई महीने में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना पद छोड़ा। आगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से एक ऐसे सैन्य अफसर को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनकी चर्चा 3 सबसे आगे बताए जा रहे नामों में थी ही नहीं।
2: As far as this dispensation is concerned, there was not a single restriction. It was left to the military to decide. It was left to the military to decide the ways that you fight them.
1: राम मंदिर के पहले सीईओ पद की जिम्मेदारी देश के कैसे बड़े सैन्य अफसर को दी गई है, जिनका करियर बेदाग है, जिनकी इमेज ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है। इस तरह जितेंद्र मिश्रा को ये जिम्मेदारी देकर ये भरोसा देने की कोशिश की गई है कि संदेश ये पहुंचे कि सेना की तरह मंदिर ट्रस्ट में भी अनुशासन भक्तों के भरोसे को बरकरार रखेगा।
0: अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले के बाद इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार सवाल करते आए हैं। 5 से 6 महीने में यूपी में चुनाव होने हैं और उससे पहले योगी और अखिलेश दोनों ही इस मामले पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्रस्ट के नए सीईओ बनाए जाने पर पूछा है कि क्या नई चीज होने से पुरानी भूल जाएंगे।
1: श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी रहे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में करीब 40 साल सेवा दी, 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव उन्हें। करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 पर लेजर गाइडेड बमों को ऑपरेशनल बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हो रहा विवाद भी क्या थम जाएगा? अखिलेश यादव के सियासी सवाल को देखकर ये बात सामने आती है।
4: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ किया बीजेपी ने और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है। कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
1: राम मंदिर से दूरी रखने वाले अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मामले पर पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबकी आस्था से जुड़ा ये मुद्दा उन्हें 2027 में फायदा पहुंचा सकता है, बीजेपी की उस वोट बैंक में सेंध लगा सकता है जो अब तक उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बीच की सबसे बड़ी दीवार।
5: नई चीज होने से हम और आप पुरानी चीज भूल जाएंगे क्या? हमें कोई शिकायत किसी से नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से, लेकिन जो राम धन के साथ हुआ, चंदा जिस तरीके से वहां से गायब हुआ, या चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई, आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया, अगर आपने बड़े लोगों को क्लीन चिट दिया है तो उनको क्यों जेल भेजा, उन्हें भी बाहर करो।
1: जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, तब अखिलेश का हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को चुनौती देना बीजेपी को रास नहीं आ रहा, और इसीलिए वो इसकी काट के तौर पर जनता को समाजवादी सरकारों में हिंदुओं से कथित भेदभाव की याद दिलाती है।
6: आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।
1: चुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव सेट करने में जुटी, तो मुख्यमंत्री एक बार फिर अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा लगाने में जुट गए।
6: अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी।
1: बीजेपी की पूरी सियासी यात्रा में राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दे का अहम रोल रहा है, इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की घटना को समाजवादी पार्टी ने लपका, तो योगी आदित्यनाथ पहले कब्रिस्तान की चार दीवारी वाला मुद्दा उठाने से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे वाला 23 साल पुराना प्रकरण तक याद दिलाया।
6: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: इस तरह योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहते। SIT जांच करवाने का ऐलान करते हुए उन्होंने दोषियों को सजा दिए जाने की बात कही, तो वही विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि राम मंदिर के खिलाफ रहे लोग अब आस्था की बात करने लगे।
6: हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: भगवा वेश में रहने वाले और गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व का चेहरा है। इसके अलावा उनके बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश के बाहर भी चर्चा होती। इस तरह योगी अपने विनिंग फॉर्मूले से पीछे हटने के मूड में नहीं।
0: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज और कल मथुरा और वृंदावन में रहेंगे। जन्माष्टमी के दिन उनका श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। CM की ओर से मथुरा वृंदावन के लिए करीब 1051 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रस्तावित है और इन सबके बीच चर्चा इस बात की भी है कि क्या पश्चिमी यूपी में जो बढ़त समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हासिल करती है, क्या उसी के लिए कृष्ण जन्मभूमि वाला दाव मुख्यमंत्री चलते हैं।
1: बुलडोजर एनकाउंटर, सैफई से रामपुर तक यानी अखिलेश यादव से आजम खान तक पर वार और वृंदावन बिहारी लाल का नाम लगातार लेते हुए क्या 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का सियासी चतुर्भुज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है।
6: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
7: हर दिन राधे राधे कहते हैं।
6: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे।
8: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा। वृंदावन

0: जीवन बिहारी लाल के।
1: अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव सवाल चंदा चोरी पर करते हैं। सनातन के अपमान के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव घेरे जाते हैं तो फिर इटावा के केदारेश्वर मंदिर निर्माण की याद दिलाते हैं। और तब क्या समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट पर घेरने के लिए अब योगी आदित्यनाथ लगातार वृंदावन बिहारी लाल का नाम भाषणों में ले रहे हैं।
0: वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांस्कृतिक नैरेटिव में मथुरा की चर्चा तेज है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद क्या बीजेपी का अगला बड़ा फोकस मथुरा है? सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के हाल के भाषणों पर गौर करने पर श्री राम के साथ श्री कृष्ण का नाम लेकर वो जय कराते हैं।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के, सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: सिद्धार्थ नगर हो या आजमगढ़, इटावा हो या आगरा हो, हर सभा में वृंदावन बिहारी लाल की जय मुख्यमंत्री करा रहे हैं।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: अयोध्या से बीजेपी को घेरते अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घिरेंगे? ये सवाल पहले से उठता आ रहा है।
2: अब तो बारी इसी ब्रज भूमि की है, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव गोवर्धन बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं।
1: 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ परिवार का नारा रहा अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और तब अब की बारी बांके बिहारी कहते मुख्यमंत्री ये चैलेंज सीधे अखिलेश यादव को देते आए कि राम जन्मभूमि पर आस्था के अपमान की बात करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष क्या कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलेंगे?
3: अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपकी झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है।
1: इसके जवाब में अब तक अखिलेश यादव ने यूं तो सिर्फ राधे राधे कहा है।
4: हमारे घर के पास वो बहुत है वो, और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
1: राधे राधे की बात तो अखिलेश यादव 4 साल पहले भी कहते दिखे जब चुनाव 2022 का आया।
4: भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं।
1: अखिलेश यादव ये तक कहते आए कि भगवान उनको सपने में आकर पहले ही सरकार बन जाने की बात कह चुके हैं।
5: आप हमारे सपने में आए थे भगवान, कृष्ण कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा।
1: लेकिन अखिलेश के सपने की वो बात तो सच हुई नहीं, तो क्या 2027 में भी कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है?
6: अयोध्या धाम अभी तीनों का हो गया है तो यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाए तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़े। मैं बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदुवंशी कहेंगे लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है।
1: योगी आदित्यनाथ तब लगातार कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सवाल करते आ रहे हैं जब अयोध्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव सवाल करते हैं।
5: श्रद्धा और आस्था उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब यह कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है। कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे गरीब, भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
1: अयोध्या पर बोलते अखिलेश, कृष्ण जन्म भूमि पर योगी आदित्यनाथ का चैलेंज मंजूर नहीं करते, और क्या इसीलिए योगी आदित्यनाथ के भाषण से लेकर चुनावी रणनीति तक में श्री कृष्ण का नाम बढ़ रहा है।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
7: योगी आदित्यनाथ जी भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म में उनकी आस्था है, इसलिए अपने संबोधन के पूर्व प्रभु राम और प्रभु कृष्ण का नाम लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो वामी हैं, जो कांगी हैं, जो सपाई हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है।
8: जब मुख्यमंत्री जी मथुरा का नाम लेते हैं तो वो शिक्षा का नाम नहीं लेना चाहते, शिक्षा व्यवस्था का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री जी किसी कम्युनल पोलराइज इशू की बात करना चाहते हैं तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करना चाहते हैं। वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है।
9: जिस तरह से अमेरिका ने फिर से ईरान पर भीषण हमले किए, ईरान भी अब चुप बैठने वालों में नहीं है, क्योंकि अमेरिकी हमलों में ईरान के 19 लोगों की मौत हो गई है जबकि 70 के करीब लोग घायल हो गए हैं। अमेरिका ने दावा यह किया है कि उसने ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने एक शादी समारोह पर बमबारी की जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है।
10: अमेरिका ने ईरान पर फिर से शुरू किए हमले। ईरान के 100 ठिकानों पर हमले, अब भड़केगा महायुद्ध। उन्नीस की मौत, 68 घायल, ईरान में शादी समारोह पर गिरा बम। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दी ईरान को मिटा देने की धमकी। ईरान का पलटवार, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर बमबारी। अमेरिकी हमलों से एक बार फिर ईरान दहल उठा है। अमेरिकी सेना ने बीती रात ईरान के सिरिक, खुजस्तान, केशम द्वीप और बंदर अब्बास में मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों में ईरान के 100 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन अमेरिका के इन हमलों से ईरान में एक शादी समारोह का जश्न मातम में बदल गया। जी हां, ईरान का दावा है कि दक्षिण ईरान के सिरिक प्रांत के कुहेस्तात में एक शादी समारोह वाले घर पर अमेरिका ने मिसाइल से हमला कर दिया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को एक क्रूर युद्ध अपराध करार दिया है जिसमें एक बच्चे की भी मौत हुई है। ईरान का एक रिपोर्टर उस जगह को दिखा रहा है जहां अमेरिका का हमला हुआ और शादी का जश्न मातम में तब्दील हो गया। उसने अमेरिकी मिसाइलों के टुकड़े दिखाए और ये दावा किया कि अमेरिका ने IRGC के ठिकानों को नहीं, नागरिकों को निशाना बनाया है। इस दर्दनाक खबर को ईरान के जेन जी एनिमेशन ग्रुप एक्सप्लोजिव मीडिया ने लेगो यानी खास तरह के खिलौनों की मदद से दिखाया है। एनिमेशन में दिखाया गया है कि शादी का जश्न चल रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं और फिर अचानक अंधेरा छा जाता है, जोरदार धमाका होता है और जश्न का माहौल नागरिकों की मौत के बाद मातम में बदल जाता है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उनके निशाने पर केवल ईरान के सैन्य ठिकाने थे और वो नागरिकों को निशाना नहीं बनाते। लेकिन बीनाब स्कूल में 120 बच्चों की मौत और लामेट के स्पोर्ट्स हॉल पर हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमेरिका अब शादी वाले घर को मातम में बदलने का गुनहगार भी ठहराया जा रहा है। ईरान पर हमले की पहली खबर अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने दी। भारत में रात के 10 बजते ही अमेरिका ने होर्मुज और उसके आसपास ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी कर आक्रमण की पुष्टि कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक रात के 12 बजे उसने ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। उसने हमलों की वजह बताई और कहा कि ये होर्मुज में कमर्शियल जहाजों और इस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई है। कुछ ही देर बाद दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, जास और सिरिक में एक के बाद एक कई धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने अलग अलग सूबों में तैनात अधिकारियों के हवाले से बताया कि दक्षिण चाबहार और कोनार्क में 4 मिसाइलें गिरी हैं। इस समय तक ईरान को हमलों से बची तबाही का अंदाजा नहीं था, लेकिन IRGC ने अमेरिका को धमकी देना शुरू कर दिया था। ईरान की न्यूज एजेंसी फास ने बताया कि IRGC प्रवक्ता ने दो टूक कहा है कि नए हमले करने के बाद अमेरिका पछताएगा। उसने दावा किया कि IRGC ने आक्रमणकारी को जवाब देना शुरू कर दिया है और पहली ही कार्रवाई में हमारे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका की हमलावर सेना के 50वें अत्याधुनिक MQ-9 ड्रोन को बार गिराया है। दूसरी तरफ इन हमलों को खुद डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति और सुप्रीम कमांडर की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब अमेरिका होर्मुज के पास ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ये हमले बड़े और शक्तिशाली हैं और ये ईरान की उस नाकाम कोशिश का जवाब है जिसमें उसने होर्मुज में 22 लगाने की कोशिश की थी। इस समय वहाँ कोई 22 नहीं है, उन्हें या तो पूरी तरह हटा दिया गया है या विस्फोट कर उड़ा दिया गया है। ईरान ने जॉर्डन में हमारे मिलिट्री बेस पर 8 मिसाइलें दागी हैं, जिन सभी को बार गिराया गया है। अगर नाकाम राष्ट्र ईरान इन बेहद जायज हमलों पर पलटवार करता है तो उन पर फिर से ज्यादा कठोर और भीषण प्रहार होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा हमला नहीं होगा क्योंकि वो अभी होने वाला है और जब वो हमला खत्म होगा तब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से किए गए ये हमले बीते कुछ हफ्तों में हुए सबसे गंभीर हमले हैं। इन हमलों के कारण न केवल दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े हैं बल्कि अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता भी कम हुई है। अमेरिका ने ये हमले बिना वजह नहीं किए हैं। दरअसल जुलाई के बाद बीते सोमवार को होर्मुज से जा रहे 2 टैंकरों पर हमले हुए। ईरान ने दुनिया को 20% तेल भेजने वाले रास्ते को ऐसे ही हमलों से बंद कर रखा है। ईरान के हमलों के बाद दुनिया भर में तेल के दाम $4 प्रति बैरल बढ़ गए, जिसके बाद कच्चा तेल 5 हफ्तों में सबसे ज्यादा महंगा हो गया। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी और उनका वीडियो भी रिलीज कर दिया। वीडियो में आग उगलती मिसाइल जॉर्डन की ओर बढ़ती दिख रही है। हमलों के तुरंत बाद जॉर्डन के मफरक और अकाबा सूबों में अलार्म के सायरन गूंज उठे। अकाबा के आसमान में हो रहे विस्फोट को देखा जा सकता था। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान के हमलों से जॉर्डन में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जॉर्डन पर जब मिसाइलें गिर रही थी तब उनकी चमक इसराइल के एलात से ही दिख रही थी। एलात से लिए गए वीडियो में ईरान की मिसाइल इसराइल के एलात से ही दिख रही थी। एलात से लिए गए वीडियो में ईरान की मिसाइल रात के अंधेरे को चीरती दिख रही है। IRGC ने कहा कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी मरीन बेस पर भारी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। वहीं जॉर्डन नष्ट कर दिया गया जबकि 3 आबादी से दूर खुले इलाके में गिरी। जब ये हमले चल रहे थे तब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में अपने हमलों के समाप्त होने का ऐलान किया। उसने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने ईरान के एयर डिफेंस के ठिकानों, रडार सिस्टम, नावों और जहाजों, माइन बिछाने की क्षमता और संचार ठिकानों को निशाना बनाया। उसकी ये कार्रवाई हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों और अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के हमले का जवाब थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व में तैनात हैं और कमांडर इन चीफ के आदेशों को लागू करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान का हमला जारी था। आईआरजीसी ने जॉर्डन के अलावा बहरीन में भी अमेरिकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का वीडियो जारी किया। यही नहीं, ईरान ने उन देशों को गंभीर नतीजों की चेतावनी दी है जो अमेरिकी हमलों में मदद कर रहे हैं। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाकर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागे हैं, जिनमें से केवल आधे ही जॉर्डन के हवाई क्षेत्र तक पहुंच पाए और उनमें से भी ज्यादातर को रोक दिया गया। लेकिन ईरान का कहना है कि आर पार की लड़ाई होकर ही रहेगी। आज तक ब्यूरो।
9: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। कहा श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टियों के नामों का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। देशभर के जल संसाधन मंत्रियों से बैठक में प्रधानमंत्री का जल मंत्र। कहा टीम इंडिया की भावना से करें काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख। कहा पार्टी की विचारधारा से न करें समझौता, बोले मेरे हाथ पैर टूट जाएं तो भी आरएसएस का सिद्धांत नहीं करूंगा स्वीकार। ब्रिज की भूमि से उठेगा सबसे बड़ा शोर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े दिग्गजों से सबसे बड़े सवाल। आज दिन भर देखिए पंचायत आज तक मथुरा। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो और वायुसेना के दिग्गज पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ बनाया गया है। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, जिनका चयन 3 सदस्यों की कमेटी की तरफ से हुआ है। इस बड़े फैसले के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में और भी बदलाव हुए हैं।
1: पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जिनके नेतृत्व में वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाया।
2: We have gone 100 kilometers inside the international border, which is Bahawalpur, 75 to 80 kilometers Murid ke, without unnecessary ruffling international feathers.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमान को लीड करने वाले, महिला पायलटों को आतंक पर वार करने के लिए चुनने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: As the commander in chief, squadron leader Singh or squadron leader Sharma or air marshal Mishra, I don't look at the gender.
3: Right.
2: Like I said, when you select the pilots, it is the training that they have gone through, their experience, and most importantly, their performance in earlier gunnery exercises.
1: S-400 ko nishana banane ki Pakistani chaal ko nakam karne wale purv air marshal Jitendra Mishra.
2: They were desperate to find where this S-400, like you asked me, where did you fire it from? The Pakistanis were desperate to find out where they are. They employed all the tricks in the book. I'm very sure they were getting satellite help from other nations. I don't want to use the name of the country. They were using air intelligence. They were using these EW systems to find out, because that was the biggest threat as far as they were concerned. Every time they got airmen, they got shot by an S-400. They had deployed spies within our country, activated their sleeper cell within our country to find out where the S-400 is.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत तत्कालीन वेस्टर्न एयर कमांड का नेतृत्व करते एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा करते हैं।
2: I had just asked him, can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said yes, of course, why not? So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till.
1: ऑपरेशन सिंदूर में वेस्टर्न एयर कमांड को लीड करने वाले एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा इसी साल 30 अप्रैल को रिटायर हुए और 3 महीने के अंदर ही उन्हें राम मंदिर के पहले सीईओ की जिम्मेदारी दी गई। सवाल है कि सेना के एक पूर्व अफसर को इसके लिए क्यों चुना गया, जबकि उनका नाम उन 3 नामों में शामिल नहीं बताया गया जिसमें से एक को जिम्मेदारी मिलने की बात 24 घंटे पहले तक की जा रही थी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को संचालित करने वाला पहला सीईओ कौन होगा, इसे लेकर जिन नामों पर कयास लगाए जा रहे थे उनमें पूर्व आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा, पूर्व आईपीएस राजेश पांडे और बिहार कैडर के आईपीएस डॉक्टर परेश सक्सेना के अलावा आईएएस दिनेश सिंह का नाम शामिल था, लेकिन जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाया गया है।
4: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, और आपको जानकर के सबसे खुशी होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
1: जितेंद्र मिश्रा की छवि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है, इसके लिए उन्हें सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल भी मिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से उनका रिश्ता है, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति में भी उनका यूपी कनेक्शन है। जितेंद्र मिश्रा करीब 40 वर्षों तक वायुसेना में रहे और कई महत्वपूर्ण कमांड संभाली। ऐसे में मंदिर के बढ़ते प्रशासन, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बड़े स्तर के ऑपरेशनल कामकाज के लिए उनका सैन्य प्रशासनिक अनुभव अहम माना जा रहा है।
4: बहुत अच्छा, हमारे इस जो मंदिर के संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो शायद पूरा कर सकेंगे, उनमें सफल नहीं है। नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता सकता है। किसी भी चीज को आगे बढ़ते रहने के समय समय के अनुसार मुझे परिवर्तन होता है, आगे बढ़ता रहता है।
1: मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्य भी बनाए गए हैं। ये बदलाव मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के 3 महीने बाद हुआ है। इस मामले में 8 आरोपी जेल में है। इसके बाद जुलाई महीने में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना पद छोड़ा। आगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से एक ऐसे सैन्य अफसर को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनकी चर्चा 3 सबसे आगे बताए जा रहे नामों में थी ही नहीं।
2: As far as this dispensation is concerned, there was not a single restriction. It was left to the military to decide. It was left to the military to decide the ways that you fight them.
1: राम मंदिर के पहले सीईओ पद की जिम्मेदारी देश के कैसे बड़े सैन्य अफसर को दी गई है, जिनका करियर बेदाग है, जिनकी इमेज ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है। इस तरह जितेंद्र मिश्रा को ये जिम्मेदारी देकर ये भरोसा देने की कोशिश की गई है कि संदेश ये पहुंचे कि सेना की तरह मंदिर ट्रस्ट में भी अनुशासन भक्तों के भरोसे को बरकरार रखेगा।
0: अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले के बाद इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार सवाल करते आए हैं। 5 से 6 महीने में यूपी में चुनाव होने हैं और उससे पहले योगी और अखिलेश दोनों ही इस मामले पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्रस्ट के नए सीईओ बनाए जाने पर पूछा है कि क्या नई चीज होने से पुरानी भूल जाएंगे।
1: श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी रहे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में करीब 40 साल सेवा दी। 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव उन्हें। करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 पर लेजर गाइडेड बमों को ऑपरेशनल बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हो रहा विवाद भी क्या थम जाएगा? अखिलेश यादव के सियासी सवाल को देखकर ये बात सामने आती है।
3: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ किया बीजेपी ने और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है।
5: और
3: कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर में।
1: राम मंदिर से दूरी रखने वाले अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मामले पर पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबकी आस्था से जुड़ा ये मुद्दा उन्हें 2027 में फायदा पहुंचा सकता है, बीजेपी की उस वोट बैंक में सेंध लगा सकता है जो अब तक उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बीच की सबसे बड़ी दीवार।
6: नई चीज होने से हम और आप पुरानी चीज भूल जाएंगे क्या? हमें कोई शिकायत किसी से नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से, लेकिन जो राम धन के साथ हुआ, चंदा जिस तरीके से वहां से गायब हुआ, या चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई, आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया, अगर आपने बड़े लोगों को क्लीन चिट दिया है तो उनको क्यों जेल भेजा, उन्हें भी बाहर करो।
1: जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, तब अखिलेश का हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को चुनौती देना बीजेपी को रास नहीं आ रहा, और इसीलिए वो इसकी काट के तौर पर जनता को समाजवादी सरकारों में हिंदुओं से कथित भेदभाव की याद दिलाती है।
7: आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।

0: का ठप्पा लगाने में जुट गए।
1: अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी।
0: बीजेपी की पूरी सियासी यात्रा में राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दे का अहम रोल रहा है, इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की घटना को समाजवादी पार्टी ने लपका, तो योगी आदित्यनाथ पहले कब्रिस्तान की चार दीवारी वाला मुद्दा उठाने से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे वाला 23 साल पुराना प्रकरण तक याद दिलाया।
1: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
0: इस तरह योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहते। SIT जांच करवाने का ऐलान करते हुए उन्होंने दोषियों को सजा दिए जाने की बात कही, तो वहीं विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि राम मंदिर के खिलाफ रहे लोग अब आस्था की बात करने लगे।
1: हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
0: भगवा वेश में रहने वाले और गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व का चेहरा है। इसके अलावा उनके बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश के बाहर भी चर्चा होती है। इस तरह योगी अपने विनिंग फॉर्मूले से पीछे हटने के मूड में नहीं।
2: मध्य प्रदेश के राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को लेकर मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की तैयारियों में है। विश्वविद्यालय मध्य भारत, मालवा और महाकौशल के नाम से 3 भागों में बंट जाएगा। कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है।
3: ये मध्य प्रदेश की एकमात्र प्रमुख टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। नाम है राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। 1998 में बनी इस यूनिवर्सिटी में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी को 3 भागों में बांट दिया जाएगा। अभी तक ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल में थी, लेकिन अब इसे 3 हिस्सों में डेवलप किया जाएगा। पहला हिस्सा भोपाल में होगा, दूसरा हिस्सा उज्जैन में होगा, तीसरा हिस्सा जबलपुर में होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूर दराज से आने वाले छात्रों को राहत मिल सके। इसके साथ ही एक निर्णय और हुआ है कि राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जगह अब इसे मध्य भारत, मालवा और महाकौशल नाम से अपग्रेड किया जाएगा। मतलब यूनिवर्सिटी के नाम से राजीव गांधी का नाम हट जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि ये निर्णय विश्वविद्यालय को भौगोलिक पहचान दिलाने के लिए किया गया है।
4: हम किसी भी महापुरुष का, किसी भी पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री का हम नाम नहीं हटा रहे हैं, ना हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि किसी एक ही एक के नाम से सारी योजनाएं लागू करें। हमने तो भौगोलिक दृष्टि की पहचान दी है और मैं समझता हूं भौगोलिक दृष्टि की पहचान भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे कोई महापुरुष है उन महापुरुषों के नाम हम स्थापित करते हैं, उसी प्रकार से ये भी स्थापित करने का अभियान है।
3: इतना ही नहीं, टेक्निकल के साथ कौशल शब्द भी जोड़ा जाएगा। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की सरकार राष्ट्रहित में काम करने वाले नेताओं का अपमान कर रही है।
5: इतना महान योगदान आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जिस व्यक्ति ने दिया है उसका नाम बदल देना जो पहले से रखा हुआ है बहुत दुर्भाग्यजनक है। और इनको देश के हर उस आदमी से आपत्ति है जिसने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया। इनको नेहरू जी के नाम पर आपत्ति है, इनको इंदिरा गांधी जी के नाम पर आपत्ति है, इनको महात्मा गांधी जी के नाम पर आपत्ति है, इनको राजीव गांधी जी के नाम पर आपत्ति है।
3: अब यूनिवर्सिटी के नाम पर कोहराम मचा हुआ है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
2: पाकिस्तान में जबरदस्त बाढ़ का मंजर है। सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं, आवाम रो रहा है। रावलपिंडी में तो भयानक सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
6: तस्वीरें इस्लामाबाद से सटे रावलपिंडी की हैं। वही रावलपिंडी जिसे पाकिस्तान का वेनिस कहने में अब किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। गलियां जलमार्ग बन चुकी हैं, घर पानी में समा चुके हैं।

0: और लाखों करोड़ों की गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है, नाले उफान पर हैं। कटारियन ब्रिज पर नालाए दई का पानी 29.5 फीट के पार पहुंच गया है और लोग अपनी आंखों के सामने अपनी तबाही का मंजर देख रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रावलपिंडी में सड़कों पर कहीं कारें कागज की नावों की तरह तैर रही हैं, तो कहीं पानी इतना गहरा है कि गाड़ियां पूरी तरह डूब चुकी हैं। सिर्फ गाड़ियों की छतें नजर आ रही हैं। रावलपिंडी का मंजर इतना खौफनाक है कि नाला और शहर की गलियां मिलकर एक हो चुकी हैं। पता ही नहीं चल रहा कि कहां नाला बह रहा है और कहां लोगों की रिहायशी गलियां थी। इस्लामाबाद को रावलपिंडी से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। गाड़ियों के पहिए थम गए हैं और राजधानी का संपर्क अपने सबसे महत्वपूर्ण सैन्य शहर से कट गया है।
1: हम पाकिस्तान में ये सलूक में हमारे साथ हो रहा है।
0: बिलखते, रोते और मदद की गुहार लगाते ये पाकिस्तानी पंजाबी आवाम चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है कि आखिर उनका कसूर क्या है। महीनों में नालों की सफाई नहीं हुई और जब बारिश आई तो पूरा शहर जलमग्न हो गया।
1: मैं खुश हूँ। ये देखिए, मेरे घर का नुकसान हो गया। ये मोटर तकरीबन 12,000 रुपए की मोटर है।
0: गनीमत देखिए, ये वो रावलपिंडी है जहाँ से पूरा पाकिस्तान चलाया जाता है। यही पाकिस्तानी सेना का जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ है और यही रहते हैं पाकिस्तान के असली हुक्मरान यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। जो सेना पूरे मुल्क पर राज करने का दावा करती है, जो फौज के बजट का एक बड़ा हिस्सा हड़प जाती है, आज उसी की नाक के नीचे पूरा शहर दरिया बना हुआ है। आलम यह है कि बेनजीर भुट्टो अस्पताल से लेकर होली फैमिली हॉस्पिटल तक सब पानी पानी हो चुके हैं। शमसाबाद में 201 मिलीमीटर, चकलाला में 191 मिलीमीटर बारिश ने पूरे रावलपिंडी के ड्रेनेज सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। G14 में छत गिरने से 20 साल के फैजान की जान चली गई तो 17 साल का यशवा नाले में बह गया। 50 साल के सोहेल असगर अपने पालतू कुत्ते को बचाते हुए करंट की चपेट में आ गए। बड़ी बड़ी डींगे हांकने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान आज कुदरत के एक थप्पड़ से बेबस नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: नेपाल में ग्लेशियर के पिघलने के बाद बाढ़ आई। ग्लेशियर ऊपर हिमालय पर पिघलने और जब वो नीचे आया तो अपने साथ भारी मात्रा में मलबा लेते आया, फोर्स बनता चला गया, तबाही मचती चली गई। और अब IIT मंडी की एक नई रिसर्च ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। उधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से हालात खराब हो रहे हैं।

0: क्या नेपाल की तबाही भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है? नेपाल में हुई तबाही से भारत को क्या सीखने की जरूरत है? गलते हिमालय के ग्लेशियर कौन सा खतरा बता रहे हैं? ठीक एक हफ्ते पहले नेपाल में हुई ये तबाही हिंदुस्तान के लिए बहुत से संकेत लेकर आई है, खासतौर पर भारत के वो हिमालयी राज्य जिन पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि यहां भी ग्लेशियर पिघलने से तबाही आ सकती है। ऐसा हुआ तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी तबाही मच सकती है। वैसे भी हर साल इन राज्यों में बरसात का सीजन बर्बादी लेकर आता है। कई जगह बादल फटते हैं, बहुत से फ्लैश फ्लड आते हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं। लेकिन क्या कोई बड़ी तबाही आगे इंतजार कर रही है? इस खतरे की बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि उत्तराखंड में सितंबर की शुरुआत में भारी बारिश कैसे बर्बादी का सबब बन रही है। ये उत्तरकाशी है। बारिश की वजह से जगह जगह भारी भूस्खलन हुआ है। पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह मलबा गिरा पड़ा है। पूरे हाईवे पर मलबा आया, जिसकी वजह से हाईवे बंद करना पड़ा। मंगलवार को गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पापड़गाड़ उफान पर आ गई थी, जिससे मलबा और पत्थर बह रहे थे। उधर यमुनोत्री हाईवे पर राणा चट्टी के पास मलबे में एक यात्री बस फंस गई थी। पहाड़ों में भारी बारिश से हादसे भी बहुत हो रहे हैं। ये कोटद्वार की तस्वीरें हैं। कोटद्वार में कोहरू नदी एक 1.5 साल की बच्ची और उसकी माँ के लिए काल बन गई। नदी पार करते वक्त 1.5 साल की छोटी बच्ची उसकी माँ की गोद से छूट गई और पानी में बह गई। बच्ची को बचाने के लिए माँ भी नदी में कूदी और बह गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। काफी दूर तक तलाश के बाद SDRF और पुलिस ने नदी से माँ बेटी के शव बरामद किए।
1: घटनास्थल पर पहुंचने पर हमने सर्चिंग की तो हमें पता चला कि जो नदी का दूसरा साइड है, उधर वाला जंगल वाला, वहाँ वो दो व्यक्ति की डेड बॉडी मिल चुकी है, जिसमें से एक बच्चा था 1 साल का और एक महिला थी उसी की मम्मी। तो उनको मिलने के पश्चात वो उन्हें गांव नदी के दूसरे साइड ले गए थे, लेकिन उनको इस साइड लाना था, जिसके बाद हमारी टीम काफ़ी मशक्कत के बाद नदी पार की और उसके बाद डेड बॉडी को इस नदी के दूसरे साइड ला के जिले पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
0: पहाड़ों पर छोटी छोटी नदियां भी बहुत तेज बहाव में हैं। पौड़ी जिले में मंगलवार को पैठानी क्षेत्र में एक महिला पश्चिमी नयार नदी में बह गई। यहां रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 33 साल की आशा देवी के बहने की सूचना पर रात भर ये ऑपरेशन चला, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उधर उधम सिंह नगर में लगातार बारिश के बाद हालात चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ गौला नदी से पानी छोड़ने के बाद आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन बाकायदा मुनादी करके लोगों को सतर्क कर रहा है।
2: गोला नदी में अत्यधिक पानी छोड़ा गया है, जिस कारण गोला नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आप सभी लोगों से प्रशासन द्वारा अपील की जाती है, कृपया अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, नदी किनारे ना आएं।
0: किच्छा, पुलभट्टा, शांतिपुरी और सूर्यनगर समेत गौला नदी से सटे इलाकों में लोगों को नदी के आसपास न जाने की हिदायत दी गई है। हल्द्वानी से 27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
3: लगातार जो बरसात हो रही है, उसके पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार बरसात हो रही है। इस कारण गौला नदी में जलस्तर ऊपर है और वर्तमान में यह सूचना प्राप्त हुई है कि 27,000 क्यूसेक पानी काठगोदाम बैराज से छोड़ा गया है। मेरा सबसे अनुरोध है कि नदी क्षेत्रों से, तटीय क्षेत्रों से दूर रहें और गौला बैराज के अगल बगल रहने वाले गौला नदी के अगल बगल रहने वाले लोग नदी से दूर रहें, नदी के पास न जाएं, सावधानी बरतें, सुरक्षा बरतें। वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में है, ऐसी कोई पैनिक करने की स्थिति नहीं है, लेकिन नदी तटों से दूर रहें।
0: उधर उधम सिंह नगर के नकाहा गांव में 4 फीट तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से यहां 7 परिवार बाढ़ में फंस गए थे। ये गांव बैगुल डैम के पास है, इसीलिए इसके कई इलाके जलमग्न हो गए, जिसमें गांव के कई परिवार फंस गए थे, जिसके बाद SDRF की टीम ने पहुंचकर इन परिवारों को यहां से सुरक्षित निकाला। उधर नैनीताल में सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार दो दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते नैनी झील लबालब, जबकि नदी नाले और गधेरे उफान पर हैं। मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल में अगले 24 घंटे के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश का असर नैनीताल जिले के रामनगर में भी दिखाई दे रहा है। यहां कोसी नदी उफान पर है। रामनगर स्थित प्रसिद्ध गर्जिया माता मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया है। अगले 24 घंटे कुमाऊं मंडल के 6 जिलों के लिए बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं।
4: लगभग मंडे की शाम से लगातार बारिश हो रही है और कल जनहानि के 5 मामले अल्मोड़ा जनपद में हुए हैं और 1 नैनीताल जनपद में हुआ है। साथ ही आज सुबह 10 बजे जो मैंने अपडेट लिया सभी डिस्ट्रिक्ट से, तो 88 हमारे मार्ग हैं जो बंद हैं। यद्यपि इसमें अधिकांश मार्ग जो हैं वो विलेज रोड्स हैं, लेकिन 2 बॉर्डर रोड्स भी हैं और कुछ स्टेट हाईवेज भी हैं। और अभी जो मैंने फोरकास्ट पता किया था, इसमें अगले 24 घंटे में भी काफ़ी जगहों का ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें चंपावत के कुछ इलाके भी हैं, नैनीताल के भी कुछ इलाके हैं, बागेश्वर के भी कुछ इलाके हैं, तो एहतियात बरतने की आवश्यकता है।
0: पहाड़ों पर तो और ज्यादा बारिश हो रही है। ये बागेश्वर की तस्वीरें हैं, जहां लगातार भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी है। बागेश्वर में पिछले 2 दिनों से भीषण बारिश जारी है, कई जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। बागेश्वर में NH 109 सहित 16 अलग अलग मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट गया है। बागेश्वर देहरादून NH 109 रमाईखाल के पास पहाड़ दरकने से बाधित हो गया। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी बारिश का कहर जारी है। नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर सड़कें पानी से लबालब हो गई। सड़कों पर भारी तादाद में मलबा और बड़े बड़े पत्थर आ गए, जिससे सड़कों का नामोनिशान गायब हो गया है। बीते 3 दिनों से परवाणू में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते हालात काफी खराब हो गए। हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और बिलासपुर में भारी बारिश हुई है। मंगलवार शाम तक 60 सड़कें, 11 बिजली ट्रांसफार्मर और 39 पेयजल योजनाएं प्रभावित रहीं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 4 सितंबर तक बारिश से राहत के आसार नहीं है। 3 सितंबर को कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हिमाचल में कितनी बड़ी तबाही का अलर्ट है, ये IIT मंडी की एक रिसर्च बता रही है। IIT मंडी ने हिमाचल प्रदेश की 2000 ग्लेशियर झीलों पर एक रिसर्च की है और इनमें से 9 से 12 झीलों को बहुत संवेदनशील बताया है, क्योंकि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 साल में ये झीलें 30 से 60% तक बढ़ गई हैं। इस स्टडी को करने वाले IIT मंडी के प्रोफेसर का दावा है कि पहाड़ी इलाकों में लगातार होते निर्माण और ऑल वेदर रोड बनाने से भी नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से इन इलाकों में 12 महीने टूरिस्ट आते हैं, जिसका प्रभाव हिमालयी ग्लेशियर पर पड़ रहा है।
5: One of the case has been said कि भाई वहाँ परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग भी हुई है वहाँ, तो देन पूरे हिमालय में ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोग टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, सो देन काफी ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट तो है, प्लस वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। इट शुड बी मोर कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए था, ठीक है। इट इज गुड कि आपने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, बट उसके चलते मैं खुद देख रहा हूँ कि जैसे टनल खुल गई है तो अब हमें राउंड द ईयर कनेक्टिविटी मिल रही है। उस राउंड द ईयर कनेक्टिविटी में क्या हुआ है कि हर वक्त टूरिस्ट जा रहा है जो पहले नहीं जाता था, सो उससे आपका पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपसे वहाँ डस्ट वगैरह काफी जा रहे हैं और वो जाकर के ग्लेशियर को डिपॉजिट हो रहे हैं, वो हमने खुद देखा हुआ है जाकर के। यू गेट अ ब्लैक लेयर ऑफ डिपॉजिट्स, स्नो पे दिखता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम ब्लैक कलर है, वो काला कलर हमेशा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। गर्मियों में बोला जाता है कि गर्मियों में आपको लाइट कलर कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता। ब्लैक पहनेंगे हमें एनर्जी ज्यादा लगती है, तो सेम हमारे पास एक डस्ट की एक लेयर आ गई, सन रेस पड़ेंगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, उसको मेल्टिंग ज्यादा कर देगी वो। सो वो हो रहा है, ये दिस इज फॉर श्योर, इट इज हैपनिंग इन दीज एरियाज। अपने एरिया में शिंकला वगैरह बहुत ज्यादा दिख रहा है वो।
0: कुल मिलाकर भारत के हिमालयी राज्यों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर इस खतरे पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर नेपाल जैसी तबाही यहां कभी भी हो सकती है। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। कहा, श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टियों के नामों का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। देश भर के जल संसाधन मंत्रियों से बैठक में प्रधानमंत्री का जल मंत्र। कहा, टीम इंडिया की भावना से करें काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख। कहा, पार्टी की विचारधारा से न करें समझौता, बोले मेरे हाथ पैर टूट जाएं तो भी आरएसएस का सिद्धांत नहीं करूंगा स्वीकार। ब्रिज की भूमि से उठेगा सबसे बड़ा शोर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े दिग्गजों से सबसे बड़े सवाल। आज दिन भर देखिए पंचायत आज तक मथुरा। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो और वायुसेना के दिग्गज पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ बनाया गया है। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, जिनका चयन 3 सदस्यों की कमेटी की तरफ से हुआ है। इस बड़े फैसले के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में और भी बदलाव हुए हैं।
1: पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जिनके नेतृत्व में वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाया।
2: We have gone 100 kilometers inside the international border, which is Bahawalpur, 75 to 80 kilometers Muridke, without unnecessary ruffling international feathers.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमान को लीड करने वाले, महिला पायलटों को आतंक पर वार करने के लिए चुनने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: The Commander-in-Chief, Squadron Leader Singh, or Squadron Leader Sharma, or Air Marshal Mishra, I don't look at the gender. Right. Like I said, when you select the pilots, it is the training that they have gone through, their experience, and most importantly, their performance in earlier gunnery exercises.
1: S-400 ko nishana banane ki Pakistani chal ko nakam karne wale purv Air Marshal Jitendra Mishra.
2: They were desperate to find where this S-400, like you asked me, where did you fire it from? The Pakistanis were desperate to find out where they are. They employed all the tricks in the book. I'm very sure they were getting satellite help from other nations. I don't want to use the name of the country. They were using air intelligence. They were using these EW systems to find out, because that was the biggest threat as far as they were concerned. Every time they got airmen, they got shot by an S-400. They had deployed spies within our country, activated their sleeper cell within our country to find out where the S-400 was.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत तत्कालीन वेस्टर्न एयर कमांड का नेतृत्व करते एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा करते हैं।
2: I had just asked him, can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said yes, of course, why not? So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till.
1: Operation Sindoor mein Western Air Command ko lead karne wale Air Marshal Jitendra Mishra isi saal 30 April ko retire hue aur 3 mahine ke andar hi unhe Ram Mandir ke pehle CEO ki zimmedari di gayi. सवाल है कि सेना के एक पूर्व अफसर को इसके लिए क्यों चुना गया, जबकि उनका नाम उन 3 नामों में शामिल नहीं बताया गया जिसमें से एक को इस जिम्मेदारी मिलने की बात 24 घंटे पहले तक की जा रही थी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को संचालित करने वाला पहला सीईओ कौन होगा, इसे लेकर जिन नामों पर कयास लगाए जा रहे थे उनमें पूर्व आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा, पूर्व आईपीएस राजेश पांडे और बिहार कैडर के आईपीएस डॉक्टर परेश सक्सेना के अलावा आईएएस दिनेश सिंह का नाम शामिल था, लेकिन जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाया गया है।
3: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। और आपको जानकर के सबसे खुशी होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
1: जितेंद्र मिश्रा की छवि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है, इसके लिए उन्हें सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल भी मिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से उनका रिश्ता है, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति में भी उनका यूपी कनेक्शन है। जितेंद्र मिश्रा करीब 40 वर्षों तक वायुसेना में रहे और कई महत्वपूर्ण कमांड संभाली। ऐसे में मंदिर के बढ़ते प्रशासन, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बड़े स्तर के ऑपरेशनल कामकाज के लिए उनका सैन्य प्रशासनिक अनुभव अहम माना जा रहा है।
3: बहुत अच्छा, हमारे इस जो मंदिर के संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो शायद पूरा कर सकेंगे, उनमें सफल नहीं है। ठीक हो जाएंगे? नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता सकता है। किसी भी चीज को आगे बढ़ते रहने समय समय के अनुसार कुछ परिवर्तन होता है, आगे बढ़ता रहता है।
1: मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्य भी बनाए गए हैं। ये बदलाव मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के 3 महीने बाद हुआ है। इस मामले में 8 आरोपी जेल में है। इसके बाद जुलाई महीने में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना पद छोड़ा। आगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से एक ऐसे सैन्य अफसर को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनकी चर्चा 3 सबसे आगे बताए जा रहे नामों में थी ही नहीं।
2: As far as this dispensation is concerned, there was not a single restriction. It was left to the military to decide. It was left to the military to decide the ways that you fight them.
1: राम मंदिर के पहले सीईओ पद की जिम्मेदारी देश के कैसे बड़े सैन्य अफसर को दी गई है, जिनका करियर बेदाग है, जिनकी इमेज ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है। इस तरह जितेंद्र मिश्रा को ये जिम्मेदारी देकर ये भरोसा देने की कोशिश की गई है कि संदेश ये पहुंचे कि सेना की तरह मंदिर ट्रस्ट में भी अनुशासन भक्तों के भरोसे को बरकरार रखेगा।
0: अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले के बाद इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार सवाल करते आए हैं। 5 से 6 महीने में यूपी में चुनाव होने हैं और उससे पहले योगी और अखिलेश दोनों ही इस मामले पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्रस्ट के नए सीईओ बनाए जाने पर पूछा है कि क्या नई चीज होने से पुरानी भूल जाएंगे।
1: श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी रहे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में करीब 40 साल सेवा दी। 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव उन्हें। करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 पर लेजर गाइडेड बमों को ऑपरेशनल बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हो रहा विवाद भी क्या थम जाएगा? अखिलेश यादव के सियासी सवाल को देख कर ये बात सामने आती है।
4: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है। कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
1: राम मंदिर से दूरी रखने वाले अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मामले पर पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबकी आस्था से जुड़ा ये मुद्दा उन्हें 2027 में फायदा पहुंचा सकता है, बीजेपी की उस वोट बैंक में सेंध लगा सकता है जो अब तक उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बीच की सबसे बड़ी दीवार।
5: नई चीज होने से हम और आप पुरानी चीज भूल जाएंगे क्या? हमें कोई शिकायत किसी से नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से, लेकिन जो राम धन के साथ हुआ, चंदा जिस तरीके से वहां से गायब हुआ, या चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई, आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया, अगर आपने बड़े लोगों को क्लीन चिट दिया है तो उनको क्यों जेल भेजा, उन्हें भी बाहर करो।
1: जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, तब अखिलेश का हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को चुनौती देना बीजेपी को रास नहीं आ रहा, और इसीलिए वो इसकी काट के तौर पर जनता को समाजवादी सरकारों में हिंदुओं से कथित भेदभाव की याद दिलाती।
6: आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।
1: चुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव सेट करने में जुटी, तो मुख्यमंत्री एक बार फिर अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा लगाने में जुट गए।
6: अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी।
1: बीजेपी की पूरी सियासी यात्रा में राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दे का अहम रोल रहा है, इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की घटना को समाजवादी पार्टी ने लपका, तो योगी आदित्यनाथ पहले कब्रिस्तान की चार दीवारी वाला मुद्दा उठाने से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे वाला 23 साल पुराना प्रकरण तक याद दिलाया।
6: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: इस तरह योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहते। SIT जांच करवाने का ऐलान करते हुए उन्होंने दोषियों को सजा दिए जाने की बात कही, तो वही विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि राम मंदिर के खिलाफ रहे लोग अब आस्था की बात करने लगे।
6: हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: भगवा वेश में रहने वाले और गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व का चेहरा है। इसके अलावा उनके बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश के बाहर भी चर्चा होती। इस तरह योगी अपने विनिंग फॉर्मूले से पीछे हटने के मूड में नहीं।
0: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज और कल मथुरा और वृंदावन में रहेंगे। जन्माष्टमी के दिन उनका श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। CM की ओर से मथुरा वृंदावन के लिए करीब 1051 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रस्तावित है और इन सबके बीच चर्चा इस बात की भी है कि क्या पश्चिमी यूपी में जो बढ़त समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हासिल करती है, क्या उसी के लिए कृष्ण जन्मभूमि वाला दाव मुख्यमंत्री चलते हैं।
1: बुलडोजर एनकाउंटर, सैफई से रामपुर तक यानी अखिलेश यादव से आजम खान तक पर वार और वृंदावन बिहारी लाल का नाम लगातार लेते हुए क्या 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का सियासी चतुर्भुज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है।
6: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
7: हर दिन राधे राधे कहते
6: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे।
8: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा। वृंदावन

0: मन बिहारी लाल के।
1: अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव सवाल चंदा चोरी पर करते हैं। सनातन के अपमान के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव घेरे जाते हैं तो फिर इटावा के केदारेश्वर मंदिर निर्माण की याद दिलाते हैं। और तब क्या समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट पर घेरने के लिए अब योगी आदित्यनाथ लगातार वृंदावन बिहारी लाल का नाम भाषणों में ले रहे हैं।
0: वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांस्कृतिक नैरेटिव में मथुरा की चर्चा तेज है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद क्या बीजेपी का अगला बड़ा फोकस मथुरा है? सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के हाल के भाषणों पर गौर करने पर श्री राम के साथ श्री कृष्ण का नाम लेकर वो जय कराते हैं।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के, सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: सिद्धार्थ नगर हो या आजमगढ़, इटावा हो या आगरा हो, हर सभा में वृंदावन बिहारी लाल की जय मुख्यमंत्री करा रहे हैं।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: अयोध्या से बीजेपी को घेरते अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घिरेंगे? ये सवाल पहले से उठता आ रहा है।
2: अब तो बारी इसी ब्रज भूमि की है, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव गोवर्धन बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं।
1: 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ परिवार का नारा रहा अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और तब अब की बारी बांके बिहारी कहते मुख्यमंत्री ये चैलेंज सीधे अखिलेश यादव को देते आए कि राम जन्मभूमि पर आस्था के अपमान की बात करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष क्या कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलेंगे?
3: अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है।
1: इसके जवाब में अब तक अखिलेश यादव ने यूं तो सिर्फ राधे राधे कहा है।
4: हमारे घर के पास वो बहुत है वो, और हर दिन राधे राधे कहते हैं।
1: राधे राधे की बात तो अखिलेश यादव 4 साल पहले भी कहते दिखे जब चुनाव 2022 का आया।
4: भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं।
1: अखिलेश यादव ये तक कहते आए कि भगवान उनको सपने में आकर पहले ही सरकार बन जाने की बात कह चुके हैं।
5: हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है।
1: लेकिन अखिलेश के सपने की वो बात तो सच हुई नहीं, तो क्या 2027 में भी कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है?
6: अयोध्या धाम अभी तीनों का हो गया है तो यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाए तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़े। मैं बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदुवंशी कहेंगे लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है।
1: योगी आदित्यनाथ तब लगातार कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सवाल करते आ रहे हैं जब अयोध्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव सवाल करते हैं।
7: श्रद्धा और आस्था उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है। कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे गरीब, भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर में।
1: अयोध्या पर बोलते अखिलेश, कृष्ण जन्म भूमि पर योगी आदित्यनाथ का चैलेंज मंजूर नहीं करते, और क्या इसीलिए योगी आदित्यनाथ के भाषण से लेकर चुनावी रणनीति तक में श्री कृष्ण का नाम बढ़ रहा है।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
8: योगी आदित्यनाथ जी भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म में उनकी आस्था है, इसलिए अपने संबोधन के पूर्व प्रभु राम और प्रभु कृष्ण का नाम लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो वामी हैं, जो कांगी हैं, जो सपाई हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है।
9: जब मुख्यमंत्री जी मथुरा का नाम लेते हैं तो वो शिक्षा का नाम नहीं लेना चाहते, शिक्षा व्यवस्था का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री जी किसी कम्युनल पोलराइज इशू की बात करना चाहते हैं तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करना चाहते हैं। वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है।
10: जिस तरह से अमेरिका ने फिर से ईरान पर भीषण हमले किए, ईरान भी अब चुप बैठने वालों में नहीं है, क्योंकि अमेरिकी हमलों में ईरान के 19 लोगों की मौत हो गई है जबकि 70 के करीब लोग घायल हो गए हैं। अमेरिका ने दावा यह किया है कि उसने ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने एक शादी समारोह पर बमबारी की जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है।
11: अमेरिका ने ईरान पर फिर से शुरू किए हमले। ईरान के 100 ठिकानों पर हमले, अब भड़केगा महायुद्ध। 19 की मौत, 68 घायल, ईरान में शादी समारोह पर गिरा बम। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दी ईरान को मिटा देने की धमकी। ईरान का पलटवार, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर बमबारी। अमेरिकी हमलों से एक बार फिर ईरान दहल उठा है। अमेरिकी सेना ने बीती रात ईरान के सिरिक, खुजस्तान, केशम द्वीप और बंदर अब्बास में मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों में ईरान के 100 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन अमेरिका के इन हमलों से ईरान में एक शादी समारोह का जश्न मातम में बदल गया। जी हां, ईरान का दावा है कि दक्षिण ईरान के सिरिक प्रांत के कुहेस्ताक में एक शादी समारोह वाले घर पर अमेरिका ने मिसाइल से हमला कर दिया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को एक क्रूर युद्ध अपराध करार दिया है जिसमें एक बच्चे की भी मौत हुई है। ईरान का एक रिपोर्टर उस जगह को दिखा रहा है जहां अमेरिका का हमला हुआ और शादी का जश्न मातम में तब्दील हो गया। उसने अमेरिकी मिसाइलों के टुकड़े दिखाए और ये दावा किया कि अमेरिका ने IRGC के ठिकानों को नहीं, नागरिकों को निशाना बनाया है। इस दर्दनाक खबर को ईरान के जेन जी एनिमेशन ग्रुप एक्सप्लोजिव मीडिया ने लेगो यानी खास तरह के खिलौनों की मदद से दिखाया है। एनिमेशन में दिखाया गया है कि शादी का जश्न चल रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं और फिर अचानक अंधेरा छा जाता है, जोरदार धमाका होता है और जश्न का माहौल नागरिकों की मौत के बाद मातम में बदल जाता है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उनके निशाने पर केवल ईरान के सैन्य ठिकाने थे और वो नागरिकों को निशाना नहीं बनाते। लेकिन दीनाब स्कूल में 120 बच्चों की मौत और लामेट के स्पोर्ट्स हॉल पर हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमेरिका अब शादी वाले घर को मौसम में बदलने का गुनहगार भी ठहराया जा रहा है। ईरान पर हमले की पहली खबर अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने दी। भारत में रात के 10 बजते ही अमेरिका ने होर्मुज और उसके आसपास ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी कर आक्रमण की पुष्टि कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक रात के 12 बजे उसने ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। उसने हमलों की वजह बताई और कहा कि ये होर्मुज में कमर्शियल जहाजों और इस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई है। कुछ ही देर बाद दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, जास और सिरिक में एक के बाद एक कई धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने अलग अलग सूबों में तैनात अधिकारियों के हवाले से बताया कि दक्षिण चाबहार और कोनार्क में 4 मिसाइलें गिरी हैं। इस समय तक ईरान को हमलों से बची तबाही का अंदाजा नहीं था, लेकिन IRGC ने अमेरिका को धमकी देना शुरू कर दिया था। ईरान की न्यूज एजेंसी फास ने बताया कि IRGC प्रवक्ता ने दो टूक कहा है कि नए हमले करने के बाद अमेरिका पछताएगा। उसने दावा किया कि IRGC ने आक्रमणकारी को जवाब देना शुरू कर दिया है और पहली ही कार्रवाई में हमारे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका की हमलावर सेना के 50वें अत्याधुनिक MQ-9 ड्रोन को बार गिराया है। दूसरी तरफ इन हमलों को खुद डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति और सुप्रीम कमांडर की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब अमेरिका होर्मुज के पास ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ये हमले बड़े और शक्तिशाली हैं और ये ईरान की उस नाकाम कोशिश का जवाब है जिसमें उसने होर्मुज में 22 लगाने की कोशिश की थी। इस समय वहाँ कोई 22 नहीं है, उन्हें या तो पूरी तरह हटा दिया गया है या विस्फोट कर उड़ा दिया गया है। ईरान ने जॉर्डन में हमारे मिलिट्री बेस पर 8 मिसाइलें दागी हैं, जिन सभी को बार गिराया गया है। अगर नाकाम राष्ट्र ईरान इन बेहद जायज हमलों पर पलटवार करता है तो उन पर फिर से ज्यादा कठोर और भीषण प्रहार होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा हमला नहीं होगा क्योंकि वो अभी होने वाला है और जब वो हमला खत्म होगा तब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से किए गए ये हमले बीते कुछ हफ्तों में हुए सबसे गंभीर हमले हैं। इन हमलों के कारण न केवल दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े हैं बल्कि अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता भी कम हुई है। अमेरिका ने ये हमले बिना वजह नहीं किए हैं। दरअसल जुलाई के बाद बीते सोमवार को होर्मुज से जा रहे 2 टैंकरों पर हमले हुए। ईरान ने दुनिया को 20% तेल भेजने वाले रास्ते को ऐसे ही हमलों से बंद कर रखा है। ईरान के हमलों के बाद दुनिया भर में तेल के दाम $4 प्रति बैरल बढ़ गए, जिसके बाद कच्चा तेल 5 हफ्तों में सबसे ज्यादा महंगा हो गया। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी और उनका वीडियो भी रिलीज कर दिया। वीडियो में आग उगलती मिसाइल जॉर्डन की ओर बढ़ती दिख रही है। हमलों के तुरंत बाद जॉर्डन के मफरक और अकाबा सूबों में अलार्म के सायरन गूंज उठे। अकाबा के आसमान में हो रहे विस्फोट को देखा जा सकता था। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान के हमलों से जॉर्डन में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जॉर्डन पर जब मिसाइलें गिर रही थी तब उनकी चमक इसराइल के एलात से ही दिख रही थी। एलात से लिए गए वीडियो में ईरान की मिसाइल रात के अंधेरे को चीरती दिख रही है। IRGC ने कहा कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी मरीन बेस पर भारी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। वहीं जॉर्डन की सेना ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 13 बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला किया। 13 में से 10 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि 3 आबादी से दूर खुले इलाके में गिरी। जब ये हमले चल रहे थे तब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में अपने हमलों के समाप्त होने का ऐलान किया। उसने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने ईरान के एयर डिफेंस के ठिकानों, रडार सिस्टम, नावों और जहाजों, माइन बिछाने की क्षमता और संचार ठिकानों को निशाना बनाया। उसकी ये कार्रवाई हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों और अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के हमले का जवाब थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व में तैनात हैं और कमांडर इन चीफ के आदेशों को लागू करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान का हमला जारी था। आईआरजीसी ने जॉर्डन के अलावा बहरीन में भी अमेरिकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का वीडियो जारी किया। यही नहीं, ईरान ने उन देशों को गंभीर नतीजों की चेतावनी दी है जो अमेरिकी हमलों में मदद कर रहे हैं। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाकर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागे हैं, जिनमें से केवल आधे ही जॉर्डन के हवाई क्षेत्र तक पहुंच पाए और उनमें से भी ज्यादातर को रोक दिया गया। लेकिन ईरान का कहना है कि आर पार की लड़ाई होकर ही रहेगी। आज तक ब्यूरो।
10: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, कहा श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टियों के नामों का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। देशभर के जल संसाधन मंत्रियों से बैठक में प्रधानमंत्री का जल मंत्र, कहा टीम इंडिया की भावना से करें काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख, कहा पार्टी की विचारधारा से न करें समझौता, बोले मेरे हाथ पैर टूट जाएं तो भी आरएसएस का सिद्धांत नहीं करूंगा स्वीकार। और ब्रिज की भूमि से उठेगा सबसे बड़ा शोर, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े दिग्गजों से सबसे बड़े सवाल, आज दिन भर देखिए पंचायत आज तक मथुरा। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो और वायुसेना के दिग्गज पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ बनाया गया है। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, जिनका चयन 3 सदस्यों की कमेटी की तरफ से हुआ है। इस बड़े फैसले के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में और भी बदलाव हुए हैं।
1: पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जिनके नेतृत्व में वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाया।
2: We have gone 100 kilometers inside the international border, which is Bahawalpur, 75 to 80 kilometers Murid ke, without unnecessary ruffling international feathers.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमांड को लीड करने वाले, महिला पायलटों को आतंक परवार करने के लिए चुनने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: As the commander in chief, squadron leader Singh or squadron leader Sharma or air marshal Mishra, I don't look at the gender.
3: Right.
2: Like I said, when you select the pilots, it is the training that they have gone through, their experience, and most importantly, their performance in earlier gunnery exercises.
1: S-400 ko nishana banane ki Pakistani chaal ko nakam karne wale purv air marshal Jitendra Mishra.
2: They were desperate to find where this S-400, like you asked me, where did you fire it from? The Pakistanis were desperate to find out where they are. They employed all the tricks in the book. I'm very sure they were getting satellite help from other nations. I don't want to use the name of the country. They were using air intelligence. They were using these EW systems to find out, because that was the biggest threat as far as they were concerned. Every time they got airmen, they got shot by an S-400. They had deployed spies within our country, activated their sleeper cell within our country to find out where the S-400 is.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत तत्कालीन वेस्टर्न एयर कमांड का नेतृत्व करते एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा करते हैं।
2: I had just asked him के can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said yes, of course, why not? So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till.
1: ऑपरेशन सिंदूर में वेस्टर्न एयर कमांड को लीड करने वाले एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा इसी साल 30 अप्रैल को रिटायर हुए और 3 महीने के अंदर ही उन्हें राम मंदिर के पहले सीईओ की जिम्मेदारी दी गई। सवाल है कि सेना के एक पूर्व अफसर को इसके लिए क्यों चुना गया, जबकि उनका नाम उन 3 नामों में शामिल नहीं बताया गया जिसमें से एक को जिम्मेदारी मिलने की बात 24 घंटे पहले तक की जा रही थी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को संचालित करने वाला पहला सीईओ कौन होगा, इसे लेकर जिन नामों पर कयास लगाए जा रहे थे उनमें पूर्व आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा, पूर्व आईपीएस राजेश पांडे और बिहार कैडर के आईपीएस डॉक्टर परेश सक्सेना के अलावा आईएएस दिनेश सिंह का नाम शामिल था, लेकिन जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाया गया है।
4: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, और आपको जान करके सबसे खुशी होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
1: जितेंद्र मिश्रा की छवि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है, इसके लिए उन्हें सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल भी मिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से उनका रिश्ता है, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति में भी उनका यूपी कनेक्शन है। जितेंद्र मिश्रा करीब 40 वर्षों तक वायुसेना में रहे और कई महत्वपूर्ण कमांड संभाली। ऐसे में मंदिर के बढ़ते प्रशासन, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बड़े स्तर के ऑपरेशनल कामकाज के लिए उनका सैन्य प्रशासनिक अनुभव अहम माना जा रहा है।
4: बहुत अच्छा, हमारे इस जो मंदिर के संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो शायद पूरा कर सकेंगे, उनमें सफल नहीं है। नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता सकता है। किसी भी चीज को आगे बढ़ते रहने समय समय के अनुसार मुझे परिवर्तन होता है, आगे बढ़ता रहता है।
1: मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्य भी बनाए गए हैं। ये बदलाव मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के 3 महीने बाद हुआ है। इस मामले में 8 आरोपी जेल में है। इसके बाद जुलाई महीने में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना पद छोड़ा। आगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से एक ऐसे सैन्य अफसर को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनकी चर्चा 3 सबसे आगे बताए जा रहे नामों में थी ही नहीं।
2: As far as this dispensation is concerned, there was not a single restriction. It was left to the military to decide. It was left to the military to decide the ways that you fight them.
1: राम मंदिर के पहले सीईओ पद की जिम्मेदारी देश के कैसे बड़े सैन्य अफसर को दी गई है, जिनका करियर बेदाग है, जिनकी इमेज ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है। इस तरह जितेंद्र मिश्रा को ये जिम्मेदारी देकर ये भरोसा देने की कोशिश की गई है कि संदेश ये पहुंचे कि सेना की तरह मंदिर ट्रस्ट में भी अनुशासन भक्तों के भरोसे को बरकरार रखेगा।
0: अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले के बाद इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार सवाल करते आए हैं। 5 से 6 महीने में यूपी में चुनाव होने हैं और उससे पहले योगी और अखिलेश दोनों ही इस मामले पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्रस्ट के नए सीईओ बनाए जाने पर पूछा है कि क्या नई चीज होने से पुरानी भूल जाएंगे।
1: श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी रहे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में करीब 40 साल सेवा दी। 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव उन्हें। करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 पर लेजर गाइडेड बमों को ऑपरेशनल बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हो रहा विवाद भी क्या थम जाएगा? अखिलेश यादव के सियासी सवाल को देखकर ये बात सामने आती है।
3: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है। कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
1: राम मंदिर से दूरी रखने वाले अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मामले पर पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबकी आस्था से जुड़ा ये मुद्दा उन्हें 2027 में फायदा पहुंचा सकता है, बीजेपी की उस वोट बैंक में सेंध लगा सकता है जो अब तक उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बीच की सबसे बड़ी दीवार।
5: नई चीज होने से हम और आप पुरानी चीज भूल जाएंगे क्या? हमें कोई शिकायत किसी से नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से, लेकिन जो राम धन के साथ हुआ, चंदा जिस तरीके से वहां से गायब हुआ, या चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई, आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया, अगर आपने बड़े लोगों को क्लीन चिट दिया है तो उनको क्यों जेल भेजा, उन्हें भी बाहर करो।
1: जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, तब अखिलेश का हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को चुनौती देना बीजेपी को रास नहीं आ रहा, और इसीलिए वो इसकी काट के तौर पर जनता को समाजवादी सरकारों में हिंदुओं से कथित भेदभाव की याद दिलाती है।
6: आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी की कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।
1: चुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव सेट करने में जुटी, तो मुख्यमंत्री एक बार फिर अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा लगाने में जुट गए।
6: अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी।
1: बीजेपी की पूरी सियासी यात्रा में राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दे का अहम रोल रहा है, इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की घटना को समाजवादी पार्टी ने लपका, तो योगी आदित्यनाथ पहले कब्रिस्तान की चार दीवारी वाला मुद्दा उठाने से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे वाला 23 साल पुराना प्रकरण तक याद दिलाया।
6: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: इस तरह योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहते। SIT जांच करवाने का ऐलान करते हुए उन्होंने दोषियों को सजा दिए जाने की बात कही, तो वहीं विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि राम मंदिर के खिलाफ रहे लोग अब आस्था की बात करने लगे।
6: हम सब बजरंग बली के भक्त

0: यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: भगवा वेश में रहने वाले और गोरक्षपीठ की बहन के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व का चेहरा है। इसके अलावा उनके बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश से बाहर भी चर्चा होती। इस तरह योगी अपने विनिंग फॉर्मूले से पीछे हटने के मूड में नहीं।
2: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज और कल मथुरा और वृंदावन में रहेंगे। जन्माष्टमी के दिन उनका श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। सीएम की ओर से मथुरा वृंदावन के लिए करीब 1051 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रस्तावित है और इन सबके बीच चर्चा इस बात की भी है कि क्या पश्चिमी यूपी में जो बढ़त समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हासिल करती है, क्या उसी के लिए कृष्ण जन्मभूमि वाला दांव मुख्यमंत्री चलते हैं।
1: बुलडोजर एनकाउंटर, सैफई से रामपुर तक यानी अखिलेश यादव से आजम खान तक पर वार और वृंदावन बिहारी लाल का नाम लगातार लेते हुए क्या 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का सियासी चतुर्भुज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है।
3: अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
4: हर दिन राधे राधे कहते
5: श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे।
6: राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाएगा। वृंदा

0: बिहारी लाल के।
1: अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव सवाल चंदा चोरी पर करते हैं। सनातन के अपमान के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव घेरे जाते हैं तो फिर इटावा के केदारेश्वर मंदिर निर्माण की याद दिलाते हैं। और तब क्या समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट पर घेरने के लिए अब योगी आदित्यनाथ लगातार वृंदावन बिहारी लाल का नाम भाषणों में ले रहे हैं।
0: वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांस्कृतिक नैरेटिव में मथुरा की चर्चा तेज है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद क्या बीजेपी का अगला बड़ा फोकस मथुरा है? सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के हाल के भाषणों पर गौर करने पर श्री राम के साथ श्री कृष्ण का नाम लेकर वो जय कराते हैं।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के, सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: सिद्धार्थ नगर हो या आजमगढ़, इटावा हो या आगरा हो, हर सभा में वृंदावन बिहारी लाल की जय मुख्यमंत्री करा रहे हैं।
0: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
1: अयोध्या से बीजेपी को घेरते अखिलेश यादव क्या कृष्ण जन्मभूमि पर घिरेंगे? ये सवाल पहले से उठता आ रहा है।
2: अब तो बारी इसी ब्रज भूमि की है, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव गोवर्धन बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं।
1: 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ परिवार का नारा रहा अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और तब अब की बारी बांके बिहारी कहते मुख्यमंत्री ये चैलेंज सीधे अखिलेश यादव को देते आए कि राम जन्मभूमि पर आस्था के अपमान की बात करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष क्या कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलेंगे?
3: अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपकी झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को मालूम है।

0: कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है।
1: इसके जवाब में अब तक अखिलेश यादव ने यूं तो सिर्फ राधे राधे कहा है।
2: हमारे घर के पास वो बहुत है वो, और हर दिन राधे राधे कह रहे।
1: राधे राधे की बात तो अखिलेश यादव 4 साल पहले भी कहते दिखे जब चुनाव 2022 का आया।
3: भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं।
1: अखिलेश यादव ये तक कहते आए कि भगवान उनको सपने में आकर पहले ही सरकार बन जाने की बात कह चुके हैं।
4: हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है।
1: लेकिन अखिलेश के सपने की वो बात तो सच हुई नहीं, तो क्या 2027 में भी कृष्ण जन्मभूमि के मसले पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है?
5: अयोध्या धाम अभी तीनों का हो गया है, तो यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाए तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़े। मैं बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदुवंशी कहेंगे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है।
1: योगी आदित्यनाथ तब लगातार कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सवाल करते आ रहे हैं जब अयोध्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव सवाल करते हैं।
2: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है।
6: और
2: कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
1: अयोध्या पर बोलते अखिलेश, कृष्ण जन्मभूमि पर योगी आदित्यनाथ का चैलेंज मंजूर नहीं करते, और क्या इसीलिए योगी आदित्यनाथ के भाषण से लेकर चुनावी रणनीति तक में श्री कृष्ण का नाम बढ़ रहा है?
7: सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
8: योगी आदित्यनाथ जी भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म में उनकी आस्था है, इसलिए अपने संबोधन के पूर्व प्रभु राम और प्रभु कृष्ण का नाम लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो वामी हैं, जो कांगी हैं, जो सपाई हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो तुष्टिकरण करना है।
9: जब मुख्यमंत्री जी मथुरा का नाम लेते हैं तो वो शिक्षा का नाम नहीं लेना चाहते, शिक्षा व्यवस्था का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री जी किसी कम्युनल पोलराइज इशू की बात करना चाहते हैं तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करना चाहते हैं। वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी है।
10: जिस तरह से अमेरिका ने फिर से ईरान पर भीषण हमले किए, ईरान भी अब चुप बैठने वालों में नहीं है, क्योंकि अमेरिकी हमलों में ईरान के 19 लोगों की मौत हो गई है जबकि 70 के करीब लोग घायल हो गए हैं। अमेरिका ने दावा यह किया है कि उसने ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने एक शादी समारोह पर बमबारी की जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है।
11: अमेरिका ने ईरान पर फिर से शुरू किए हमले। ईरान के 100 ठिकानों पर हमले, अब भड़केगा महायुद्ध। 19 की मौत, 68 घायल, ईरान में शादी समारोह पर गिरा बम। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दी ईरान को मिटा देने की धमकी। ईरान का पलटवार, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर बमबारी। अमेरिकी हमलों से एक बार फिर ईरान तहल उठा है। अमेरिकी सेना ने बीती रात ईरान के सिरिक, खुजस्तान, केशम द्वीप और बंदर अब्बास में मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों में ईरान के 100 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन अमेरिका के इन हमलों से ईरान में एक शादी समारोह का जश्न मातम में बदल गया। जी हाँ, ईरान का दावा है कि दक्षिण ईरान के सिरिक प्रांत के कुहेस्ताक में एक शादी समारोह वाले घर पर अमेरिका ने मिसाइल से हमला कर दिया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को एक क्रूर युद्ध अपराध करार दिया है, जिसमें एक बच्चे की भी मौत हुई है। ईरान का एक रिपोर्टर उस जगह को दिखा रहा है जहां अमेरिका का हमला हुआ और शादी का जश्न मातम में तब्दील हो गया। उसने अमेरिकी मिसाइलों के टुकड़े दिखाए और ये दावा किया कि अमेरिका ने IRGC के ठिकानों को नहीं, नागरिकों को निशाना बनाया है। इस दर्दनाक खबर को ईरान के जेन जी एनिमेशन ग्रुप एक्सप्लोजिव मीडिया ने लेगो यानी खास तरह के खिलौनों की मदद से दिखाया है। एनिमेशन में दिखाया गया है कि शादी का जश्न चल रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं और फिर अचानक अंधेरा छा जाता है, जोरदार धमाका होता है और जश्न का माहौल नागरिकों की मौत के बाद मातम में बदल जाता है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उनके निशाने पर केवल ईरान के सैन्य ठिकाने थे और वो नागरिकों को निशाना नहीं बनाते। लेकिन बीनाब स्कूल में 120 बच्चों की मौत और लामेट के स्पोर्ट्स हॉल पर हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमेरिका अब शादी वाले घर को मातम में बदलने का गुनहगार भी ठहराया जा रहा है। ईरान पर हमले की पहली खबर अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने दी। भारत में रात के 10 बजते ही अमेरिका ने होर्मुज और उसके आसपास ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी कर आक्रमण की पुष्टि कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक रात के 12 बजे उसने ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। उसने हमलों की वजह बताई और कहा कि ये होर्मुज में कमर्शियल जहाजों और इस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई है। कुछ ही देर बाद दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, जास और सिरिक में एक के बाद एक कई धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने अलग अलग सूबों में तैनात अधिकारियों के हवाले से बताया कि दक्षिण चाबहार और कोनार्क में 4 मिसाइलें गिरी हैं। इस समय तक ईरान को हमलों से बची तबाही का अंदाजा नहीं था, लेकिन IRGC ने अमेरिका को धमकी देना शुरू कर दिया था। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स ने बताया कि IRGC प्रवक्ता ने दो टूक कहा है कि नए हमले करने के बाद अमेरिका पछताएगा। उसने दावा किया कि IRGC ने आक्रमणकारी को जवाब देना शुरू कर दिया है और पहली ही कार्रवाई में हमारे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका की हमलावर सेना के 50वें अत्याधुनिक MQ-9 ड्रोन को बात गिराया है। दूसरी तरफ इन हमलों को खुद डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति और सुप्रीम कमांडर की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब अमेरिका होर्मुज के पास ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ये हमले बड़े और शक्तिशाली हैं और ये ईरान की उस नाकाम कोशिश का जवाब है जिसमें उसने होर्मुज में 22 लगाने की कोशिश की थी। इस समय वहाँ कोई 22 नहीं है, उन्हें या तो पूरी तरह हटा दिया गया है या विस्फोट कर उड़ा दिया गया है। ईरान ने जॉर्डन में हमारे मिलिट्री बेस पर 8 मिसाइलें दागी हैं, जिन सभी को बार गिराया गया है। अगर नाकाम राष्ट्र ईरान इन बेहद जायज हमलों पर पलटवार करता है तो उन पर फिर से ज्यादा कठोर और भीषण प्रहार होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा हमला नहीं होगा, क्योंकि वो अभी होने वाला है और जब वो हमला खत्म होगा तब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से किए गए ये हमले बीते कुछ हफ्तों में हुए सबसे गंभीर हमले हैं। इन हमलों के कारण न केवल दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े हैं, बल्कि अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता भी कम हुई है। अमेरिका ने ये हमले बिना वजह नहीं किए हैं। दरअसल जुलाई के बाद बीते सोमवार को हुर्मुज से जा रहे दो टैंकरों पर हमले हुए। ईरान ने दुनिया को 20% तेल भेजने वाले रास्ते को ऐसे ही हमलों से बंद कर रखा है। ईरान के हमलों के बाद दुनिया भर में तेल के दाम $4 प्रति बैरल बढ़ गए, जिसके बाद कच्चा तेल 5 हफ्तों में सबसे ज्यादा महंगा हो गया। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी और उनका वीडियो भी रिलीज कर दिया। वीडियो में आग उगलती मिसाइल जॉर्डन की ओर बढ़ती दिख रही हैं। हमलों के तुरंत बाद जॉर्डन के मफरक और अकाबा सूबों में अलार्म के सायरन गूंज उठे। अकाबा के आसमान में हो रहे विस्फोट को देखा जा सकता था। दो अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान के हमलों से जॉर्डन में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जॉर्डन पर जब मिसाइलें गिर रही थीं, तब उनकी चमक इसराइल के एलात से ही दिख रही थी। एलात से लिए गए वीडियो में ईरान की मिसाइल रात के अंधेरे को चीरती दिख रही है। आईआरजीसी ने कहा कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी मरीन बेस पर भारी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। वहीं जॉर्डन की सेना ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 13 बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला किया। 13 में से 10 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि 3 आबादी से दूर खुले इलाके में गिरी। जब ये हमले चल रहे थे, तब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में अपने हमलों के समाप्त होने का ऐलान किया। उसने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने ईरान के एयर डिफेंस के ठिकानों, रडार सिस्टम, नावों और जहाजों, माइन बिछाने की क्षमता और संचार ठिकानों को निशाना बनाया। उसकी ये कार्रवाई हुर्मुज से गुजर रहे जहाजों और अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के हमले का जवाब थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व में तैनात हैं और कमांडर इन चीफ के आदेशों को लागू करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान का हमला जारी था। आईआरजीसी ने जॉर्डन के अलावा बहरीन में भी अमेरिकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का वीडियो जारी किया। यही नहीं, ईरान ने उन देशों को गंभीर नतीजों की चेतावनी दी है जो अमेरिकी हमलों में मदद कर रहे हैं। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाकर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागे हैं, जिनमें से केवल आधे ही जॉर्डन के हवाई क्षेत्र तक पहुंच पाए और उनमें से भी ज्यादातर को रोक दिया गया। लेकिन ईरान का कहना है कि आर पार की लड़ाई होकर ही रहेगी। आज तक ब्यूरो।
10: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। कहा, श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टियों के नामों का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। देश भर के जल संसाधन मंत्रियों से बैठक में प्रधानमंत्री का जल मंत्र। कहा, टीम इंडिया की भावना से करें काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख। कहा, पार्टी की विचारधारा से न करें समझौता, बोले मेरे हाथ पैर टूट जाएं तो भी आरएसएस का सिद्धांत नहीं करूंगा स्वीकार। ब्रिज की भूमि से उठेगा सबसे बड़ा शोर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े दिग्गजों से सबसे बड़े सवाल। आज दिन भर देखिए पंचायत आज तक मथुरा। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो और वायुसेना के दिग्गज पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ बनाया गया है। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, जिनका चयन 3 सदस्यों की कमेटी की तरफ से हुआ है। इस बड़े फैसले के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में और भी बदलाव हुए हैं।
1: पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जिनके नेतृत्व में वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाया।
2: We have gone 100 kilometers inside the international border, which is Bahawalpur, 75 to 80 kilometers Muridke, without unnecessary ruffling international feathers.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमान को लीड करने वाले, महिला पायलटों को आतंक पर वार करने के लिए चुनने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा।
2: The Commander-in-Chief, Squadron Leader Singh, or Squadron Leader Sharma, or Air Marshal Mishra, I don't look at the gender. Right. Like I said, when you select the pilots, it is the training that they have gone through, their experience, and most importantly, their performance in earlier gunnery exercises.
1: S-400 ko nishana banane ki Pakistani chaal ko nakam karne wale purv Air Marshal Jitendra Mishra.
2: They were desperate to find where this S-400, like you asked me, where did you fire it from? The Pakistanis were desperate to find out where they are. They employed all the tricks in the book. I'm very sure they were getting satellite help from other nations. I don't want to use the name of the country. They were using air intelligence. They were using these EW systems to find out, because that was the biggest threat as far as they were concerned. Every time they got airmen, they got shot by an S-400. They had deployed spies within our country, activated their sleeper cell within our country to find out where the S-400 was.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत तत्कालीन वेस्टर्न एयर कमान का नेतृत्व करते एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा करते हैं।
2: I had just asked him, can I travel with you in your vehicle? He just did not take a microsecond. Yes, he said yes, of course, why not? So for next 1.5 hours, I'm fortunate to have had the company of probably the bestest leader of the nation that we've had till.
1: Operation Sindoor mein Western Air Command ko lead karne wale Air Marshal Jitendra Mishra isi saal 30 April ko retire hue aur 3 mahine ke andar hi unhe Ram Mandir ke pehle CEO ki zimmedari di gayi. सवाल है कि सेना के एक पूर्व अफसर को इसके लिए क्यों चुना गया, जबकि उनका नाम उन 3 नामों में शामिल नहीं बताया गया जिसमें से एक को इस जिम्मेदारी मिलने की बात 24 घंटे पहले तक की जा रही थी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को संचालित करने वाला पहला सीईओ कौन होगा, इसे लेकर जिन नामों पर कयास लगाए जा रहे थे उनमें पूर्व आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा, पूर्व आईपीएस राजेश पांडे और बिहार कैडर के आईपीएस डॉक्टर परेश सक्सेना के अलावा आईएएस दिनेश सिंह का नाम शामिल था, लेकिन जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाया गया है।
3: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, और आपको जानकर के सबसे खुशी होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
1: जितेंद्र मिश्रा की छवि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है, इसके लिए उन्हें सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल भी मिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से उनका रिश्ता है, यानी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति में भी उनका यूपी कनेक्शन है। जितेंद्र मिश्रा करीब 40 वर्षों तक वायुसेना में रहे और कई महत्वपूर्ण कमांड संभाली। ऐसे में मंदिर के बढ़ते प्रशासन, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बड़े स्तर के ऑपरेशनल कामकाज के लिए उनका सैन्य प्रशासनिक अनुभव अहम माना जा रहा है।
3: बहुत अच्छा, हमारे इस जो मंदिर के संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो शायद पूरा कर सकेंगे, उनमें सफल नहीं है। नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता सकता है। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ते रहने के समय समय के अनुसार मुझे परिवर्तन होता है, आगे बढ़ता रहता है।
1: मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्य भी बनाए गए हैं। ये बदलाव मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के 3 महीने बाद हुआ है। इस मामले में 8 आरोपी जेल में है। इसके बाद जुलाई महीने में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना पद छोड़ा। आगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से एक ऐसे सैन्य अफसर को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनकी चर्चा 3 सबसे आगे बताए जा रहे नामों में थी ही नहीं।
2: As far as this dispensation is concerned, there was not a single restriction. It was left to the military to decide. It was left to the military to decide the ways that you fight them.
1: राम मंदिर के पहले सीईओ पद की जिम्मेदारी देश के कैसे बड़े सैन्य अफसर को दी गई है, जिनका करियर बेदाग है, जिनकी इमेज ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की है। इस तरह जितेंद्र मिश्रा को ये जिम्मेदारी देकर ये भरोसा देने की कोशिश की गई है कि संदेश ये पहुंचे कि सेना की तरह मंदिर ट्रस्ट में भी अनुशासन भक्तों के भरोसे को बरकरार रखेगा।
0: अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले के बाद इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार सवाल करते आए हैं। 5 से 6 महीने में यूपी में चुनाव होने हैं और उससे पहले योगी और अखिलेश दोनों ही इस मामले पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्रस्ट के नए सीईओ बनाए जाने पर पूछा है कि क्या नई चीज होने से पुरानी भूल जाएंगे।
1: श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी रहे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में करीब 40 साल सेवा दी। 3000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव उन्हें। करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 पर लेजर गाइडेड बमों को ऑपरेशनल बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे। लेकिन जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हो रहा विवाद भी क्या थम जाएगा? अखिलेश यादव के सियासी सवाल को देख कर ये बात सामने आती।
4: श्रद्धा और आस्था, उससे खिलवाड़ की बीजेपी ने, और अब तो क्लीन चीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। लेकिन रामधन की चोरी कोई माफ नहीं करेगा, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना भगवान माफ करेंगे, ना इंसान माफ करने वाला है।
5: और
4: कोई मंदिर जान लो आप, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे, गरीब भीख मांगने वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी चोरी नहीं करते मंदिर के।
1: राम मंदिर से दूरी रखने वाले अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मामले पर पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबकी आस्था से जुड़ा ये मुद्दा उन्हें 2027 में फायदा पहुंचा सकता है, बीजेपी की उस वोट बैंक में सेंध लगा सकता है जो अब तक उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बीच की सबसे बड़ी दीवार है।
6: नई चीज होने से हम और आप पुरानी चीज भूल जाएंगे क्या? हमें कोई शिकायत किसी से नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से, लेकिन जो राम धन के साथ हुआ, चंदा जिस तरीके से वहां से गायब हुआ, या चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई, आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया, अगर आपने बड़े लोगों को क्लीन चिट दिया है तो उनको क्यों जेल भेजा, उन्हें भी बाहर करो।
1: जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, तब अखिलेश का हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को चुनौती देना बीजेपी को रास नहीं आ रहा, और इसीलिए वो इसकी काट के तौर पर जनता को समाजवादी सरकारों में हिंदुओं से कथित भेदभाव की याद दिलाती।
7: आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।
1: चुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव सेट करने में जुटी, तो मुख्यमंत्री एक बार फिर अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा लगाने में जुट गए।
7: अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी।
1: बीजेपी की पूरी सियासी यात्रा में राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दे का अहम रोल रहा है, इसीलिए अयोध्या के राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की घटना को समाजवादी पार्टी ने लपका, तो योगी आदित्यनाथ पहले कब्रिस्तान की चार दीवारी वाला मुद्दा उठाने से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे वाला 23 साल पुराना प्रकरण तक याद दिलाया।
7: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: इस तरह योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहते। SIT जांच करवाने का ऐलान करते हुए उन्होंने दोषियों को सजा दिए जाने की बात कही, तो वही विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि राम मंदिर के खिलाफ रहे लोग अब आस्था की बात करने लगे।
7: हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: भगवा वेश में रहने वाले और गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व का चेहरा है। इसके अलावा उनके बुलडोजर मॉडल की उत्तर प्रदेश से बाहर भी चर्चा होती। इस तरह योगी अपने विनिंग फॉर्मूले से पीछे हटने के मूड में नहीं।
0: मध्य प्रदेश के राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को लेकर मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की तैयारियों में है। विश्वविद्यालय मध्य भारत, मालवा और महाकौशल के नाम से 3 भागों में बंट जाएगा। कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है।
5: ये मध्य प्रदेश की एकमात्र प्रमुख टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। नाम है राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। 1998 में बनी इस यूनिवर्सिटी में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी को 3 भागों में बांट दिया जाएगा। अभी तक ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल में थी, लेकिन अब इसे 3 हिस्सों में डेवलप किया जाएगा। पहला हिस्सा भोपाल में होगा, दूसरा हिस्सा उज्जैन में होगा, तीसरा हिस्सा जबलपुर में होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूर दराज से आने वाले छात्रों को राहत मिल सके। इसके साथ ही एक निर्णय और हुआ है कि राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जगह अब इसे मध्य भारत, मालवा और महाकौशल नाम से अपग्रेड किया जाएगा। मतलब यूनिवर्सिटी के नाम से राजीव गांधी का नाम हट जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि ये निर्णय विश्वविद्यालय को भौगोलिक पहचान दिलाने के लिए किया गया है।
8: हम किसी भी महापुरुष का, किसी भी पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री का हम नाम नहीं हटा रहे हैं, ना हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि किसी एक ही एक के नाम से सारी योजनाएं लागू करें। हमने तो भौगोलिक दृष्टि की पहचान दी है और मैं समझता हूं भौगोलिक दृष्टि की पहचान भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे कोई महापुरुष है, उन महापुरुषों के नाम हम स्थापित करते हैं, उसी प्रकार से ये भी स्थापित करने का अभियान है।
5: इतना ही नहीं, टेक्निकल के साथ कौशल शब्द भी जोड़ा जाएगा। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की सरकार राष्ट्रहित में काम करने वाले नेताओं का अपमान कर रही है।
9: इतना महान योगदान आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जिस व्यक्ति ने दिया है, उसका नाम बदल देना जो पहले से रखा हुआ है, बहुत दुर्भाग्यजनक है। और इनको देश के हर उस आदमी से आपत्ति है जिसने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया। इनको नेहरू जी के नाम पर आपत्ति है, इनको इंदिरा गांधी जी के नाम पर आपत्ति है, इनको महात्मा गांधी जी के नाम पर आपत्ति है, इनको राजीव गांधी जी के नाम पर आपत्ति है।
5: अब यूनिवर्सिटी के नाम पर कोहराम मचा हुआ है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: पाकिस्तान में जबरदस्त बाढ़ का मंजर है। सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं, आवाम रो रहा है। रावलपिंडी में तो भयानक सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
10: तस्वीरें इस्लामाबाद से सटे रावलपिंडी की हैं। वही रावलपिंडी जिसे पाकिस्तान का वेनिस कहने में अब किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। गलियां जलमार्ग बन चुकी हैं, घर पानी में समा चुके हैं और लाखों करोड़ों की गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है, नाले उफान पर हैं। कटारियन ब्रिज पर नालाए दई का पानी 29.5 फीट के पार पहुंच गया है और लोग अपनी आंखों के सामने अपनी तबाही का मंजर देख रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रावलपिंडी में सड़कों पर कहीं कारें कागज की नावों की तरह तैर रही हैं, तो कहीं पानी इतना गहरा है कि गाड़ियां पूरी तरह डूब चुकी हैं। सिर्फ गाड़ियों की छतें नजर आ रही हैं। रावलपिंडी का मंजर इतना खौफनाक है कि नाला और शहर की गलियां मिलकर एक हो चुकी हैं। पता ही नहीं चल रहा कि कहां नाला बह रहा है और कहां लोगों की रिहायशी गलियां थी। इस्लामाबाद को रावलपिंडी से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। गाड़ियों के पहिए थम गए हैं और राजधानी का संपर्क अपने सबसे महत्वपूर्ण सैन्य शहर से कट गया है।
11: हम पाकिस्तान में ये सलूक में हमारे साथ हो रहा है।
10: बिलखते रोते और मदद की गुहार लगाते ये पाकिस्तानी पंजाबी आवाम चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है कि आखिर उनका कसूर क्या है। महीनों में नालों की सफाई नहीं हुई और जब बारिश आई तो पूरा शहर जलमग्न हो गया।
11: मैं खुश हूँ, ये देखिए मेरे घर का नुकसान हो गया, ये मोटर तकरीबन 12,000 रुपए की मोटर है।
10: गनीमत देखिए, ये वो रावलपिंडी है जहाँ से पूरा पाकिस्तान चलाया जाता है। यही पाकिस्तानी सेना का जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ है और यही रहते हैं पाकिस्तान के असली हुक्मरान यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। जो सेना पूरे मुल्क पर राज करने का दावा करती है, जो फौज के बजट का एक बड़ा हिस्सा हड़प जाती है, आज उसी की नाक के नीचे पूरा शहर दरिया बना हुआ है। आलम यह है कि बेनजीर भुट्टो अस्पताल से लेकर होली फैमिली हॉस्पिटल तक सब पानी पानी हो चुके हैं। शमसाबाद में 201 मिलीमीटर, चकलाला में 191 मिलीमीटर बारिश ने पूरे रावलपिंडी के ड्रेनेज सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। G14 में छत गिरने से 20 साल के फैजान की जान चली गई तो 17 साल का यशवा नाले में बह गया। 50 साल के सोहेल असगर अपने पालतू कुत्ते को बचाते हुए करंट की चपेट में आ गए। बड़ी बड़ी डींगे हांकने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान आज कुदरत के एक थप्पड़ से बेबस नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: नेपाल में ग्लेशियर के पिघलने के बाद बाढ़ आई। ग्लेशियर ऊपर हिमालय पर पिघलने और जब वो नीचे आया तो अपने साथ भारी मात्रा में मलबा लेते आया, फोर्स बनता चला गया, तबाही मचती चली गई। और अब IIT मंडी की एक नई रिसर्च ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। उधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से हालात खराब हो रहे हैं।

0: क्या नेपाल की तबाही भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है? नेपाल में हुई तबाही से भारत को क्या सीखने की जरूरत है? गलते हिमालय के ग्लेशियर कौन सा खतरा बता रहे हैं? ठीक एक हफ्ते पहले नेपाल में हुई यह तबाही हिंदुस्तान के लिए बहुत से संकेत लेकर आई है, खास तौर पर भारत के वो हिमालयी राज्य जिन पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि यहां भी ग्लेशियर पिघलने से तबाही आ सकती है। ऐसा हुआ तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी तबाही मच सकती है। वैसे भी हर साल इन राज्यों में बरसात का सीजन बर्बादी लेकर आता है। कई जगह बादल फटते हैं, बहुत से फ्लैश फ्लड आते हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं। लेकिन क्या कोई बड़ी तबाही आगे इंतजार कर रही है? इस खतरे की बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि उत्तराखंड में सितंबर की शुरुआत में भारी बारिश कैसे बर्बादी का सबब बन रही है। ये उत्तरकाशी, बारिश की वजह से जगह जगह भारी भूस्खलन हुआ है। पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह मलबा गिरा पड़ा है। पूरे हाईवे पर मलबा आया, जिसकी वजह से हाईवे बंद करना पड़ा। मंगलवार को गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पापड़गाड़ उफान पर आ गई थी, जिससे मलबा और पत्थर बह रहे थे। उधर यमुनोत्री हाईवे पर राणा चट्टी के पास मलबे में एक यात्री बस फंस गई थी। पहाड़ों में भारी बारिश से हादसे भी बहुत हो रहे हैं। ये कोटद्वार की तस्वीरें हैं। कोटद्वार में कोहलू नदी एक 1.5 साल की बच्ची और उसकी माँ के लिए काल बन गई। नदी पार करते वक्त 1.5 साल की छोटी बच्ची उसकी माँ की गोद से छूट गई और पानी में बह गई। बच्ची को बचाने के लिए माँ भी नदी में कूदी और बह गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। काफी दूर तक तलाश के बाद SDRF और पुलिस ने नदी से माँ बेटी के शव बरामद किए।
1: घटनास्थल पर पहुंचने पर हमने सर्चिंग की तो हमें पता चला कि जो नदी का दूसरा साइड है, उधर वाला जंगल वाला, वहाँ वो दो व्यक्ति की डेड बॉडी मिल चुकी है, जिसमें से एक बच्चा था 1 साल का और एक महिला थी उसी की मम्मी। तो उनको मिलने के पश्चात वो उन्हें गांव नदी के दूसरे साइड ले गए थे, लेकिन उनको इस साइड लाना था, जिसके बाद हमारी टीम काफ़ी मशक्कत के बाद नदी पार की और उसके बाद डेड बॉडी को इस नदी के दूसरे साइड ला के जिले पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
0: पहाड़ों पर छोटी छोटी नदियां भी बहुत तेज बहाव में हैं। पौड़ी जिले में मंगलवार को पैठानी क्षेत्र में एक महिला पश्चिमी नयार नदी में बह गई। यहां रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 33 साल की आशा देवी के बहने की सूचना पर रात भर ये ऑपरेशन चला, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उधर उधम सिंह नगर में लगातार बारिश के बाद हालात चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ गौला नदी से पानी छोड़ने के बाद आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन बाकायदा मुनादी करके लोगों को सतर्क कर रहा है।
2: गोला नदी में अत्यधिक पानी छोड़ा गया है, जिस कारण गोला नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आप सभी लोगों से प्रशासन द्वारा अपील की जाती है, कृपया अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, नदी किनारे ना आएं।
0: किच्छा, पुलभट्टा, शांतिपुरी और सूर्यनगर समेत गौला नदी से सटे इलाकों में लोगों को नदी के आसपास न जाने की हिदायत दी गई है। हल्द्वानी से 27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
3: लगातार जो बरसात हो रही है, उसके पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार बरसात हो रही है, इस कारण गौला नदी में जलस्तर ऊपर है और वर्तमान में यह सूचना प्राप्त हुई है कि 27,000 क्यूसेक पानी काठगोदाम बैराज से छोड़ा गया है। मेरा सबसे अनुरोध है कि नदी क्षेत्रों से, तटीय क्षेत्रों से दूर रहें और गौला बैराज के अगल बगल रहने वाले, गौला नदी के अगल बगल रहने वाले लोग नदी से दूर रहें, नदी के पास न जाएं, सावधानी बरतें, सुरक्षा बरतें। वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में है, ऐसी कोई पैनिक करने की स्थिति नहीं है, लेकिन नदी तटों से दूर रहें।
0: उधर उधम सिंह नगर के नकाहा गांव में 4 फीट तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से यहां 7 परिवार बाढ़ में फंस गए थे। ये गांव बैगुल डैम के पास है, इसीलिए इसके कई इलाके जलमग्न हो गए, जिसमें गांव के कई परिवार फंस गए थे, जिसके बाद SDRF की टीम ने पहुंचकर इन परिवारों को यहां से सुरक्षित निकाला। उधर नैनीताल में सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार दो दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते नैनी झील लबालब, जबकि नदी नाले और गधेरे उफान पर हैं। मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल में अगले 24 घंटे के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश का असर नैनीताल जिले के रामनगर में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ कोसी नदी उफान पर है। रामनगर स्थित प्रसिद्ध गर्जिया माता मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया है। अगले 24 घंटे कुमाऊं मंडल के 6 जिलों के लिए बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं।
4: लगभग मंडे की शाम से लगातार बारिश हो रही है और कल जनहानि के 5 मामले अल्मोड़ा जनपद में हुए हैं और 1 नैनीताल जनपद में हुआ है। साथ ही आज सुबह 10 बजे जो मैंने अपडेट लिया सभी डिस्ट्रिक्ट से, तो 88 हमारे मार्ग हैं जो बंद हैं। यद्यपि इसमें अधिकांश मार्ग जो हैं वो विलेज रोड्स हैं, लेकिन 2 बॉर्डर रोड्स भी हैं और कुछ स्टेट हाईवेज भी हैं। और अभी जो मैंने फोरकास्ट पता किया था, इसमें अगले 24 घंटे में भी काफ़ी जगहों का ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें चंपावत के कुछ इलाके भी हैं, नैनीताल के भी कुछ इलाके हैं, बागेश्वर के भी कुछ इलाके हैं, तो एहतियात बरतने की आवश्यकता है।
0: पहाड़ों पर तो और ज्यादा बारिश हो रही है। ये बागेश्वर की तस्वीरें हैं, जहां लगातार भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी है। बागेश्वर में पिछले 2 दिनों से भीषण बारिश जारी है, कई जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। बागेश्वर में NH 109 सहित 16 अलग अलग मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट गया है। बागेश्वर देहरादून NH 109 रमाईखाल के पास पहाड़ दरकने से बाधित हो गया। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी बारिश का कहर जारी है। नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर सड़कें पानी से लबालब हो गई। सड़कों पर भारी तादाद में मलबा और बड़े बड़े पत्थर आ गए, जिससे सड़कों का नामोनिशान गायब हो गया है। बीते 3 दिनों से परवाणु में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते हालात काफी खराब हो गए। हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और बिलासपुर में भारी बारिश हुई है। मंगलवार शाम तक 60 सड़कें, 11 बिजली ट्रांसफार्मर और 39 पेयजल योजनाएं प्रभावित रहीं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 4 सितंबर तक बारिश से राहत के आसार नहीं है। 3 सितंबर को कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हिमाचल में कितनी बड़ी तबाही का अलर्ट है, ये IIT मंडी की एक रिसर्च बता रही है। IIT मंडी ने हिमाचल प्रदेश की 2000 ग्लेशियर झीलों पर एक रिसर्च की है और इनमें से 9 से 12 झीलों को बहुत संवेदनशील बताया है, क्योंकि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 साल में ये झीलें 30 से 60% तक बढ़ गई हैं। इस स्टडी को करने वाले IIT मंडी के प्रोफेसर का दावा है कि पहाड़ी इलाकों में लगातार होते निर्माण और ऑल वेदर रोड बनाने से भी नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से इन इलाकों में 12 महीने टूरिस्ट आते हैं, जिसका प्रभाव हिमालयी ग्लेशियर पर पड़ रहा है।
5: One of the case has been said कि भाई वहाँ परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग भी हुई है वहाँ। तो देन पूरे हिमालय में ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोग टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, सो देन काफी ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट तो है, प्लस वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। इट शुड बी मोर कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए था, ठीक है। इट इज गुड कि आपने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, बट उसके चलते मैं खुद देख रहा हूँ कि जैसे टनल खुल गई है तो अब हमें राउंड द ईयर कनेक्टिविटी मिल रही है। उस राउंड द ईयर कनेक्टिविटी में क्या हुआ है कि हर वक्त टूरिस्ट जा रहा है जो पहले नहीं जाता था, सो उससे आपका पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपसे वहाँ डस्ट वगैरह काफी जा रहे हैं और वो जाकर के ग्लेशियर को डिपॉजिट हो रहे हैं, वो हमने खुद देखा हुआ है जाकर के। यू गेट अ ब्लैक लेयर ऑफ डिपॉजिट्स, स्नो पे दिखता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम ब्लैक कलर है, वो काला कलर हमेशा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। गर्मियों में बोला जाता है कि गर्मियों में आपको लाइट कलर कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता। ब्लैक पहनेंगे हमें एनर्जी ज्यादा लगती है। तो सेम हमारे पास एक डस्ट की क्लियर आ गई, सन रेस पड़ेंगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, उसको मेल्टिंग ज्यादा कर देगी वो। सो वो हो रहा है, ये दिस इज फॉर श्योर, इट इज हैपनिंग इन दीज एरियाज। अपने एरिया में शिंकला वगैरह बहुत ज्यादा दिख रहा है वो।
0: कुल मिलाकर भारत के हिमालयी राज्यों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर इस खतरे पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर नेपाल जैसी तबाही यहां कभी भी हो सकती है। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
7: शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशि वालों की सेहत बिगड़ सकती है? शुक्र के राशि परिवर्तन से किनको धन का लाभ हो सकता है और शुक्र के राशि परिवर्तन से किनको संपत्ति का फायदा हो सकता है, क्या है शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ, कहा श्री राम की कृपा से करूंगा अच्छा काम। देवरिया के उनके गांव में जश्न, तीन ट्रस्टियों के नामों का भी ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा 27 में कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। देशभर के जल संसाधन मंत्रियों से बैठक में प्रधानमंत्री का जल मंत्र, कहा टीम इंडिया की भावना से करें काम, पानी बचाने के लिए 2 करोड़ नए निर्माण का लक्ष्य, एआई के इस्तेमाल पर जोर। नासिक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सीख, कहा पार्टी की विचारधारा से न करें समझौता, बोले मेरे हाथ पैर टूट जाएं तो भी आरएसएस का सिद्धांत नहीं करूंगा स्वीकार। और ब्रिज की भूमि से उठेगा सबसे बड़ा शोर, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े दिग्गजों से सबसे बड़े सवाल, आज दिन भर देखिए पंचायत आज तक मथुरा। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो और वायुसेना के दिग्गज पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ बनाया गया है। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया, जिनका चयन 3 सदस्यों की कमेटी की तरफ से हुआ है। इस बड़े फैसले के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में और भी बदलाव हुए हैं।
1: पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जिनके नेतृत्व में वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाया।
2: We have gone 100 kilometers inside the international border, which is Bahawalpur, 75 to 80 kilometers Murid ke, without unnecessary ruffling international feathers.
1: ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी कमान को लीड करने वाली, महिला पायलटों को आतंक परवार करने के लिए चुनने वाले